0: शाह, नरेंद्र मोदी और मोहन भगवत, ज्ञानेश कुमार, इन लोगों ने देश के लोकतंत्र को खत्म कर दिया है।
1: जो गलत तरीके से हुकूमत में उन्होंने आए हैं और जो गलत तरीके से उन्होंने आज कुर्सी पे बैठा, इसीलिए हम कर रहे हैं, पहले गद्दी छोड़ो, नहीं तो देश में हंगामा होगा, देश के लोग चुप नहीं बैठेंगे, ये मेरा वार्निंग है उनको।
2: चुनाव ने 17 में बेईमानी की, 19 में बेईमानी की, 22 में बेईमानी की, 24 में बेईमानी की, और बंगाल का तो पूरा का पूरा खुला खेल किया उन्होंने, किसको नहीं दिखाई देता है।
3: ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर भले ही ये इंडिया गठबंधन के 19 दलों का मार्च था, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दिल्ली पुलिस को गच्चा देकर आकाशवाणी भवन के परिसर में जाकर बैठ जाते हैं और वहीं से धरना शुरू कर देते हैं, ऐसे में सारी निगाहें राहुल गांधी पर जम जाती है। हम आपको विपक्षी सांसदों का पूरा मार्च दिखाएंगे, लेकिन पहले बात राहुल गांधी की करते हैं। उधर दिल्ली पुलिस विपक्षी सांसदों को हिरासत में लेकर बस में बैठाकर ले जाती है और आकाशवाणी में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एक पेड़ के नीचे बैठकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दो चुनाव आयुक्तों से मिलने की जिद करने लगते हैं।
0: कुछ समय पहले तकरीबन 300 लोकसभा और राज्यसभा के MPs आए थे और हम चाहते थे इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार और उनके दो जो कॉलीग्स हैं उनसे मिलना चाहते थे। यहाँ पे पुलिस ने हमें रोका, 300 MPs को यहाँ पे रोका गया और फिर उसके बाद अब हमें यहाँ बैठा रखे हैं। 50 गज दूर इलेक्शन कमीशन है, हमें जाने नहीं दे रहे हैं। 300 MPs ज्ञानेश कुमार से मिलना चाहते हैं और ज्ञानेश कुमार जी डरे हुए हैं।
3: दोपहर करीब 12:30 बजे से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का आकाशवाणी भवन के परिसर में धरना शुरू होता है और उसके बाद तमाम कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं की दौड़ आकाशवाणी की तरफ लगने लगती है।
4: यहाँ पे आप लोग का होना बिल्कुल ही गैर कानूनी है।
3: ऐसे में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और दिल्ली पुलिस के बीच जैसे एक जंग सी छिड़ जाती है और फिर पुलिस प्रदर्शनकारियों को जबरन हिरासत में लेती है।
5: हमारे नेता नरेंद्र राहुल जी ये लोगों की गलत जबरदस्ती उठा के ले जा रहे हैं, हम लोगों बार बार डिटेन कर रहे हैं, ज्ञानेश कुमार को बचाने का काम कर रहे हैं मोदी और शाह,
6: नरे और गणेश को बचाने के लिए पूरे क्राइम कर रहे हैं, ये गलत है, गैर कानूनी है।
3: धरने के करीब 2 घंटे बाद राहुल गांधी और आक्रामक होते हैं और सीधे सरकार, संघ और चुनाव आयोग पर वार करते हैं।
0: बीजेपी जो बोले उसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के को बचाने के लिए यहाँ खड़ा हुआ हूँ। मेरे साथ यहाँ पे कुछ घंटे पहले 300 लोकसभा और राज्यसभा के MPs आए थे, वो भी देश में लोकतंत्र को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अमित शाह, नरेंद्र मोदी और मोहन भगवत, ज्ञानेश कुमार, इन लोगों ने देश के लोकतंत्र को खत्म कर दिया है। इनमें से सारे के सारे सानों के खिलाफ कार्रवाई होगी, आप देखना, इनमें से एक व्यक्ति बच के नहीं जाएगा।
3: आकाशवाणी में 3 घंटे से ज्यादा बीतने पर राहुल गांधी और प्रियंका वहीं बरगद के पेड़ के नीचे चटाई बिछा लेते हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अलावा आकाशवाणी में पवन खेड़ा और KC वेणुगोपाल समेत कई और बड़े नेता भी पहुंच जाते हैं। धरने के 5 घंटे बाद राहुल गांधी फिर से मीडिया के सामने बोलते हैं और कहते हैं कि जब तक उन्हें ज्ञानेश कुमार से मिलने नहीं दिया जाता वहीं बैठे रहेंगे। वो कहते हैं कि आकाशवाणी में लंबा धरना देने का इंतजाम कर लिया है,
0: हमने यहाँ पे गद्दे भी लगा दिए हैं, ठीक है, टॉयलेट भी है, चाय भी मिल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना हमें बैठना है हम बैठ लेंगे।
3: छह घंटे बाद भी धरना जारी रहता है। इस बीच आकाशवाणी में दिल्ली पुलिस पहुंचती है। इस दौरान प्रियंका तिरंगे के सामने हाथ फैलाकर खड़ी नजर आती हैं, जबकि राहुल ने पुलिस अफसर से कहा इन्हें मत छूना,
0: इसको मत छुओ झंडे को।
3: धरने के 7.5 घंटे बाद दिल्ली पुलिस फिर से आकाशवाणी पहुंचती है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को धरने से उठने के लिए कहती है, लेकिन जब वो नहीं मानते हैं और बरगद के पेड़ के नीचे जमे रहते हैं तो काफी बहस होती है और आखिर में दिल्ली पुलिस राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को जबरन उठाकर आकाशवाणी से ले जाती है। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
7: राहुल गांधी के प्रोटेस्ट को लेकर बीजेपी ने क्या क्या आरोप लगाए हैं आपको सुनवाते हैं।
8: राहुल गांधी जी की ये आदत है, राहुल गांधी जी ने सुप्रीम कोर्ट को कोट करके राफेल के केस में राहुल गांधी जी ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राफेल में धांधली हुई। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ही राहुल गांधी को बोला कान पकड़ के उठक बैठक करो, कान पकड़ के उठक बैठक करो और एफिडेविट सब दो कि तुमने झूठ बोला था। राहुल गांधी चुपके से जाके घर के पीछे उन्होंने एफिडेविट लिखा, मेरे से गलती हो गई, मैंने झूठ बोला, सुप्रीम कोर्ट का नाम मैंने गलत तरीके से इस्तेमाल किया और उसे सबमिट किया सुप्रीम कोर्ट में। आज ठीक वही काम राहुल गांधी कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के नाम पर वो अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट को मिसकोट कर रहे हैं। ये हम होने नहीं देंगे, हम उन्हें एक्सपोज करते रहेंगे।
9: आज तक कांग्रेस ने देश की कितनी संस्थाओं के ऊपर आरोप लगाया है? एक दर्जन, आधा दर्जन, डेढ़ दर्जन, दो दर्जन। भारत की थल सेना से लेके, भारत की वायुसेना से लेके, भारत के डिफेंस से लेके, भारत की LIC से लेके, भारत के HAL, SBI, SEBI, वैक्सीन, कौन सी ऐसी चीज है, भारत का न्यायालय, भारत का मीडिया। तो मैं कांग्रेस पार्टी से आज देश के सामने पूछना चाहता हूं, इससे क्विज कॉन्टेस्ट होना चाहिए कि भारत के कितने संस्थानों को कांग्रेस ने अब तक, खासकर राहुल गांधी ने आरोपित किया है। हम पूछना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी से, आप 13 करोड़ बोलते हैं तो आप 2.8 करोड़ मृतक, 1 करोड़ डुप्लीकेट वोटरों को और 6.8 करोड़ शिफ्टेड। चलिए उसमें शिफ्टेड वालों में लोग ये तय कर सकते हैं कि वो किस जगह वोट रखना चाहिए, मगर मैं पूछना चाहता हूं कि 2.8 करोड़ डेड और 1 करोड़ डुप्लीकेट, ये भारत की इकोनॉमी को डेड बचाने वाले लोग ये डेड और डुप्लीकेट वोटरों को मताधिकार के साथ कैसे जोड़ रहे हैं? कांग्रेस से स्पष्ट हम पूछना चाहते हैं, वो इस बात का जवाब दे।
7: ओमान के आरोपी पायलट हमामी ने कबूल किया है कि गजा का बदला लेने के लिए उसने इजरायली यात्रियों से भरे विमान को हाईजैक करने की आतंकी साजिश रची थी। पूछताछ के दौरान हमामी ने जांचकर्ताओं को यही बताया है कि आत्मघाती हमले में सभी इजरायली नागरिकों को बेमौत मारने का प्लान था, सब कुछ प्लान के हिसाब से था, लेकिन आतंकी हमले को अंजाम देने में नाकाम रहा।

0: पूछताछ में आतंकी पायलट का बड़ा खुलासा। इंतकाम की आग में पायलट से बना आतंकी। गाजा का बदला लेने के लिए रची थी साजिश। इसराइलियों को बेमौत मारने की तैयारी थी। तेल अवीव में विमान को क्रैश करवाना था। आतंकी पायलट का सनसनीखेज कबूलनामा। ओमानी नागरिक हमाम अल हमामी ने पूछताछ के दौरान जांच एजेंसियों के सामने कई बड़े राज उगले हैं। पूछताछ के दौरान हमामी ने आतंकी साजिश की प्लानिंग से लेकर आत्मघाती हमले के पीछे मकसद का खुलासा किया है। पूछताछ के दौरान हमामी ने क्या क्या बताया, आपको सुनवाते हैं। सवाल, आतंकी साजिश के पीछे मकसद क्या था? जवाब, मैंने गाजा का बदला लेने के लिए ऐसा किया, मैं शहीद की तरह मरना चाहता था। सवाल, आतंकी साजिश में कौन कौन शामिल था? जवाब, मेरे साथ कोई नहीं, मैंने अकेले पूरी प्लानिंग की। सवाल, आखिर तुम्हारा प्लान क्या था? जवाब, प्लेन को हाईजैक कर 9/11 जैसी घटना को अंजाम देना। सवाल, क्या 9/11 हमले की तर्ज पर प्लान बनाया था? जवाब, मैं चाहता था कि वैसे ही हमले को अंजाम दूं। सवाल, क्या तुम किसी आतंकी संगठन से जुड़े हुए हो? जवाब, नहीं, मेरा किसी आतंकी संगठन से लिंक नहीं। सवाल, क्या फ्लाई दुबई में काम करते वक्त प्लान बनाया? जवाब, नहीं, प्लान बनाने के बाद एयरलाइन से जुड़ा। पूछताछ के दौरान हमामी ने कबूल किया है कि फ्लाई दुबई एयरलाइन से जुड़ने से पहले ही आत्मघाती हमले की स्क्रिप्ट लिख चुका था। प्लान को अंजाम देने के लिए ही फ्लाई दुबई से जुड़ा, क्योंकि उसे पता था कि फ्लाई दुबई एयरलाइन से जुड़ने के बाद वो आसानी से 9/11 जैसे आतंकी हमले को अंजाम दे सकता है। मतलब यही है कि हमामी आत्मघाती हमले की पूरी तैयारी कर चुका था।
1: He's lying there now. He's this attacker, and he calls out to the aircrew, "Kill me, kill me!" All right. So it's clear he was suicidal. That's not a question. It was clear he was going to down that plane. Oh, it's not clear, but it looks very likely that he was going to down the plane, and with all the passengers in there. And if you couple that with the what I just told you about the Islamist. Tendencies that radicalization that were found in his background, I think that's that'll give us the a pretty good clue. But again, I don't make final conclusions yet, but that's the indications we have now.
0: शुरुआती जांच में पता चला है कि हमामी ने कई मुल्कों का दौरा किया था, जिसमें अहम है सीरिया का दौरा। जांच एजेंसियों को शक है कि सीरिया में ही हमामी किसी आतंकी संगठन के संपर्क में आया या फिर किसी आतंकी संगठन की विचारधारा से जुड़ गया। मोसाद के हवाले से इजरायली मीडिया में छपी रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया है। हमें पता चला है कि हाल के सालों में उस आतंकवादी ने इजरायल के विरोधी देशों, जिनमें से कुछ दुश्मन देश भी थे, उनका दौरा किया था। ये दौरे कम समय के लिए थे। हम इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या उन दौरों के दौरान किसी व्यक्ति या संगठन ने उसे सक्रिय किया या भर्ती किया था। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सुरक्षा एजेंसी शिन बेट के एजेंट अल हमामी से पूछताछ में शामिल हैं। इजरायली अफसरों ने सवाल जवाब के लिए यूएई की यात्रा की थी। इसके पहले जानकारी मिली थी कि हमामी की कट्टरपंथी सोच के चलते एक बार उड़ान भरने से रोक दिया गया था। ये भी जांच का विषय है कि जब उसे ओमान की नेशनल एयरलाइंस से उड़ान भरने से रोका गया था, तो दुबई की एयरलाइंस में उसे मंजूरी कैसे मिली। बड़ी बात यह है कि अल हमामी ने 7 सालों तक ओमान एयर में काम किया और बीते साल फरवरी में नौकरी छोड़ दी। इसके बाद जून 2025 में मोरक्को की नेशनल एयरलाइंस से जुड़ा, लेकिन सिर्फ 3 महीने तक नौकरी की। इसके बाद फ्लाई दुबई एयरलाइंस में बतौर को पायलट नौकरी करने लगा। हमामी की माने तो इसराइल और गाजा के बीच चल रहे संघर्ष का बदला लेने के लिए उसने आतंकी हमले की साजिश रची थी। ऐसे में इजरायली जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या पायलट ने अकेले ही साजिश रची थी या फिर उसे किसी आतंकी संगठन ने इजरायली नागरिकों को मारने के लिए भेजा था। अभी तक इसराइल की तरफ से किसी मुल्क या आतंकी संगठन का नाम नहीं लिया गया है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति का आरोप यही है कि इस साजिश में ईरान का हाथ है।
2: On Fly Dubai, do you think Iran was responsible for that terrorist attack?
3: I do, I personally do.
2: On Fly Dubai, do you think Iran was responsible for that terrorist attack?
3: I do, I personally do.
0: ट्रंप का ईरान पर यह आरोप नया नहीं है। हाईजैक की कोशिश के ठीक बाद भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने पूरे मामले से ईरान का नाम जोड़ा था। तब ट्रंप ने शक जताया था कि इजरायली नागरिकों से भरे विमानों को हाईजैक करने के पीछे ईरानी सेना का हाथ हो सकता है। तब ट्रंप ने यह भी दावा किया था कि साजिश 9/11 जैसे आतंकी हमले को अंजाम देने की थी। वही ईरान की तरफ से ट्रंप के दावे को सिरे से खारिज कर दिया गया। ईरान का यही कहना है कि पूरा मामला यूएई और इसराइल की प्लानिंग का हिस्सा है, क्योंकि ईरान ने पूरे मामले को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दिया है। ईरान का आरोप है कि इसराइल और यूएई ने मिलकर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की स्क्रिप्ट लिखी है। दावे के पीछे तर्क यही है कि विमान वाली घटना से ठीक पहले नेतन्याहू यूएई की सीक्रेट विजिट पर गए थे, जहां पर उनकी मुलाकात यूएई के राष्ट्रपति से हुई थी। ईरान इसे इजरायली साजिश से जोड़कर देखता है। ईरानी मीडिया का दावा नंबर एक, इसराइल और यूएई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। ईरानी मीडिया का दावा नंबर दो, 27 अक्टूबर को होने वाले चुनाव में फायदा लेना। ईरानी मीडिया का दावा नंबर तीन, ईरान के साथ नए टकराव की स्क्रिप्ट लिखना। ईरानी मीडिया का दावा नंबर चार, नेतन्याहू पर लगे घोटाले के आरोपों से ध्यान भटकाना। ईरान ने इस घटना पर गंभीर सवाल उठाए हैं। अब देखना यही है कि जांच पूरी होने के बाद क्या सामने आता है, क्या आरोपी पायलट के तार ईरान से जुड़े हुए हैं। दूसरी तरफ ये भी सच सामने आया है कि प्लेन से इमरजेंसी सिग्नल मिलने के बाद विमान को मार गिराने के लिए इसराइल ने पूरी तैयारी कर ली थी, लड़ाकू विमानों को तुरंत भेजा था, लेकिन जब विमान ने सऊदी अरब की ओर मुड़कर आपातकालीन लैंडिंग की तो उन्हें वापस बुला लिया गया। सूत्रों के मुताबिक 9/11 जैसी संभावित घटना के लिए लंबे वक्त से चले आ रहे प्रोटोकॉल के तहत विमान के करीब 14,000 फीट नीचे गिरने के बाद इजरायली वायुसेना ने कॉकपिट से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, तो ऐसे मामलों को देखने वाली टीम को तुरंत बुलाया गया और एक कमांड सेंटर स्थापित किया गया। इसी कड़ी में लड़ाकू विमानों को भेजा गया और इसराइल ने अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया था। आज तक ब्यूरो।
4: मिडिल ईस्ट की जंग में पाकिस्तान और तुर्की की एंट्री होने जा रही है। लाल सागर में हूती विद्रोहियों की बढ़ती ताकत ने सऊदी अरब को सीधे सैन्य कार्रवाई करने के लिए मजबूर कर दिया है, और इसीलिए अब पाकिस्तान और तुर्की भी सऊदी अरब की सुरक्षा के लिए अपने सैन्य बल तैनात करने की तैयारी में है।
0: अब मिडिल ईस्ट की जंग में उतरेंगे तुर्की और पाकिस्तान। हूती विद्रोहियों के खिलाफ सऊदी का साथ देंगे तुर्की पाकिस्तान। अब हूती का होगा काम तमाम, खाड़ी में तेज हुआ घमासान। हूती विद्रोहियों के कब्जे से मुक्त होगा बाब अल मंदेब। सऊदी के साथ आई यमन सरकार, हूती के ठिकानों पर बमबारी शुरू। ईरान अमेरिका और इसराइल की जंग आगे बढ़ी तो पूरे मिडल ईस्ट में फैल गई। ईरान पर जब जब अमेरिका हमले करता है, पलटवार में ईरान सीधे मिडल ईस्ट के देशों में अमेरिकी ठिकानों पर हमले करता है, फिर चाहे वो यूएई हो, सऊदी अरब हो या फिर कतर और इराक। और जब से ईरान और अमेरिका के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जंग छिड़ी है, ऐसे में सऊदी अरब को शक है कि ईरान ने तेल के दूसरे समुद्री रास्ते बाब अल मंदेब पर भी अपने प्रॉक्सी यमन के हूती विद्रोहियों को लाल सागर में उतार रखा है, क्योंकि हॉर्मुज में तनाव के बाद सऊदी अरब अपने तेल को लाल सागर के तट पर स्थित यानबू बंदरगाह तक पहुंचाने के लिए ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन का उपयोग करता है। इसके बाद उस तेल को एशिया और यूरोप भेजने के लिए बाब अल मंदेब से गुजरना पड़ता है। आपको बता दें कि बाब अल मंदेब लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है, जिससे दुनिया का लगभग 10-12% समुद्री व्यापार और तेल की आपूर्ति होती है। लेकिन पिछले दिनों में हुती विद्रोहियों ने लाल सागर में सऊदी के कई तेल टैंकरों को निशाना बनाया है। और तो और, सऊदी अरब ने यह भी आरोप लगाया कि हुती विद्रोहियों ने मक्का को भी निशाना बनाने की कोशिश की। हालांकि हुती विद्रोहियों ने मक्का पर हमले से साफ इनकार किया। अब एक तरफ से हुती विद्रोहियों और यमन में सऊदी के समर्थन वाली सरकार में आर पार की लड़ाई शुरू हुई है, और पिछले 24 घंटों में यमन सरकार ने हुती विद्रोहियों के कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। साथ ही पहले हुती विद्रोहियों के साथ डील करने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने भी सऊदी अरब का साथ देने का ऐलान कर दिया है।
5: What's your view about the Saudis and Yemenis counterattack and offensive against the Houthis?
6: It'll all work out very well. It's going to work out very well.
0: तो दूसरी तरफ सऊदी का साथ देने के लिए मक्का पैक की भी मीटिंग हुई है, जिसमें तुर्की और पाकिस्तान हुती विद्रोहियों के खिलाफ सऊदी अरब को सैन्य मदद देने के लिए राजी हो गए हैं। आपको बता दें कि 7 अगस्त 2026 को हुए मक्का पैक के तहत ये तय हुआ था कि तीनों में से किसी एक देश पर हमला सभी देशों पर हमला माना जाएगा। और जब हुती विद्रोहियों ने लाल सागर में सऊदी के तेल टैंकरों पर हमले किए, तो उसने तुर्की और पाकिस्तान के सामने मक्का पैक की दुहाई दी, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान ने मना कर दिया। लेकिन अब दोनों देश सैन्य समर्थन के लिए राजी हो गए हैं। सऊदी अरब के रक्षा मंत्री खालिद बिन सलमान ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि मक्का रक्षा गठबंधन की रणनीतिक, राजनीतिक और रक्षा समिति की आपात बैठक में हमलों का सामना करने के लिए एकजुटता और साझे रुख पर मुहर लगाई गई। मक्का रक्षा गठबंधन के ढांचे के तहत इन हमलों और इनके पीछे खड़े सभी लोगों के खिलाफ सामूहिक जवाबी क्षमता को सक्रिय करने की पुष्टि की गई। इस समिति की बैठक में खासतौर पर पवित्र शहरों मक्का और मदीना को निशाना बनाने वाले हमलों की निंदा की गई। हालांकि उन्होंने हूतियों का नाम नहीं लिया, और ये बैठक ऐसे समय में हुई है जब सऊदी अरब के समर्थन वाली यमन की सरकारी सेनाओं ने बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान शुरू किया है। यमनी सरकार के मुताबिक इस अभियान का मकसद उन सभी इलाकों को फिर से हासिल करना है जिन पर हूतियों ने 12 साल से जारी युद्ध के दौरान कब्जा कर लिया है।
7: تهدف إلى استعادة كافة أراضي الدولة وبسط السيادة الوطنية الكاملة وإنهاء سائر مظاهر الانقلاب الغاشم في مناطق بلادنا الخاضعة بالقوة لسيطرة الميليشيا الحوثية والتي أضرت بالنسيج الاجتماعي الواحد وانتهكت الأعراف القبلية الثابتة وتخطت أضرارها اليمن إلى محيطه الإقليمي والدولي।
0: आपको बता दें कि पाकिस्तान के पहले से ही सऊदी अरब में सैकड़ों सैनिक तैनात हैं। रॉयटर्स ने पिछले सप्ताह खबर दी थी कि पाकिस्तान ने सऊदी समर्थित सरकार की मदद के लिए पोर्ट सिटी अदन में हथियारों से भरे 4 विमान भेजे थे। इस बीच संभावना ये भी है कि तुर्की की सरकार अगले 30 दिनों के भीतर मक्का समझौते या सैनिक तैनाती की मंजूरी को तुर्की की ग्रैंड नेशनल असेंबली के एजेंडे में लाएगी। जानकारों की माने तो तुर्की का शुरुआती योगदान यमन में लड़ाकू सैनिकों की तैनाती के बजाय सऊदी अरब की धरती पर वायु रक्षा, ड्रोन, खुफिया निगरानी और टोही से जुड़ी क्षमताओं के रूप में होने की ज्यादा संभावना जताई जा रही है। अब इस मक्का पैक की चुनौती क्या है वो भी आपको बता देते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया का एकमात्र परमाणु शक्ति संपन्न देश है। उसने ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थ के रूप में भी भूमिका निभाई है और खुद को एक निष्पक्ष मध्यस्थ के तौर पर पेश करने की कोशिश की है, जबकि तुर्की नाटो का सदस्य है और उसने खुद को इसराइल के प्रतिद्वंद्वी के तौर पर स्थापित किया है। और सवाल ये भी है कि जब यमन की सरकार हूतियों के खिलाफ निर्णायक अभियान छेड़ चुकी है, तब जाकर पाकिस्तान क्यों जागा है? क्या वो सिर्फ मक्का समझौते की औपचारिकता बनाए रखना चाहता है? इससे भी बड़ा सवाल ये है कि युद्ध छिड़ने पर ईरान अगर फिर सऊदी अरब पर हमले करता है तो फिर पाकिस्तान का रुख क्या होगा? आज तक ब्यूरो।
4: इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
8: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
9: कौन सा ग्रह किशोरावस्था में बच्चे को तेजस्वी बनाता है? कौन सा ग्रह किशोरावस्था में बच्चे की संगति बिगाड़ देता है? और कौन सा ग्रह बच्चे के अंदर भटकाव पैदा करता है? किशोरावस्था में किन ग्रहों का होता है प्रभाव, क्या आती हैं समस्याएं, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

का दिल्ली में प्रदर्शन, सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्षी सांसदों का हल्ला बोल, दिल्ली चुनाव आयोग के बाहर विरोध में आम आदमी पार्टी भी होगी शामिल। दिल्ली में धरना प्रदर्शन के बाद हिरासत में छूटते ही राहुल गांधी का बड़ा हमला, बोले हिसाब होगा, एक भी देशद्रोही बख्शा नहीं जाएगा, बीजेपी का पलटवार, राहुल को लॉन्च करने की विफल कोशिश। पीएम मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे, प्रधानमंत्री आज दिल्ली में विकसित भारत संकल्प सभा कार्यक्रम को करेंगे संबोधित, सेवा संकल्प अभियान के तहत देश भर में कई कार्यक्रम।

0: सभी का आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दरअसल दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में मंगलवार रात भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। रात करीब 10:30 बजे आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.4 मापी गई है। भूकंप के केंद्र उत्तराखंड के चमोली इलाके को बताया जा रहा है। साथ ही दिल्ली के अलावा नोएडा, गाजियाबाद, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, अल्मोड़ा और नैनीताल समेत उत्तराखंड के कई हिस्सों में धरती हिली है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर कंपन महसूस किया गया। नोएडा और देहरादून में कई लोग घबराकर घरों से बाहर निकल आए। फिलहाल नोएडा समेत प्रभावित इलाकों में किसी बड़े जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं आई है और अधिकारी स्थिति पर नजर भी बनाए हुए हैं। तो वही मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मंगलवार दिन भर हंगामा चलता रहा। दिल्ली के किंग्सवे कैंप से निकलने के बाद राहुल गांधी ने सरकार पर फिर से हमला बोल दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि गद्दारों को सरकार बचा रही है। राहुल प्रियंका को हिरासत में लिया गया था। दोनों को करीब 2 घंटे तक कैंपसवे कैंप में रखा गया, हालांकि बाद में उनको छोड़ दिया गया।
1: सरकार में इस्तीफे नहीं
0: देना चाहिए। राहुल गांधी के मुताबिक लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर विपक्ष के 300 सांसदों ने सीसी के खिलाफ मार्च निकाला, लेकिन पुलिस ने बैरिकेटिंग कर अखिलेश यादव समेत कई सांसदों को हिरासत में ले लिया। इस बीच पुलिस को चकमा देकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पहुंच गए आकाशवाणी के परिसर में और वहीं से शुरू कर दिया ज्ञानेश कुमार के खिलाफ धरना।
2: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर विपक्ष एक साथ उबला तो राजधानी दिल्ली में संसद से चुनाव आयोग के हेडक्वार्टर के रास्ते तक न सिर्फ विपक्ष ने एकता और एकजुटता दिखाई, बल्कि सरकार को गठघरे में खड़ा करके ये साबित करने की पूरी कोशिश की कि चुनाव आयोग और सरकार के बीच मिलीभगत है और चुनावों में सरकार वोट चोरी करवा रही है।
3: अमित शाह, नरेंद्र मोदी और मोहन भगवत, ज्ञानेश कुमार, इन लोगों ने देश के लोकतंत्र को खत्म कर दिया है।
4: जो गलत तरीके से हुकूमत में उन्होंने आए हैं और जो गलत तरीके से उन्होंने आज कुर्सी पे बैठा, इसीलिए हम कर रहे हैं, पहले गद्दी छोड़ो, नहीं तो देश में हंगामा होगा, देश के लोग चुप नहीं बैठेंगे। ये मेरा वार्निंग है उनको।
5: चुनाव ने 17 में बेईमानी की, 19 में बेईमानी की, 22 में बेईमानी की, 24 में बेईमानी की और बंगाल का तो पूरा का पूरा खुला खेल किया उन्होंने, किसको नहीं दिखाई देता है।
2: ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर भले ही ये इंडिया गठबंधन के 19 दलों का मार्च था, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दिल्ली पुलिस को गच्चा देकर आकाशवाणी भवन के परिसर में जाकर बैठ जाते हैं और वहीं से धरना शुरू कर देते हैं, ऐसे में सारी निगाहें राहुल गांधी पर जम जाती है। हम आपको विपक्षी सांसदों का पूरा मार्च दिखाएंगे, लेकिन पहले बात राहुल गांधी की करते हैं। उधर दिल्ली पुलिस विपक्षी सांसदों को हिरासत में लेकर बस में बैठाकर ले जाती है और आकाशवाणी में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एक पेड़ के नीचे बैठकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और 2 चुनाव आयुक्तों से मिलने की जिद करने लगते हैं।
3: कुछ समय पहले तकरीबन 300 लोकसभा और राज्यसभा के MPs आए थे और हम चाहते थे इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार और उनके 2 जो कॉलीग्स हैं उनसे मिलना चाहते थे। यहाँ पे पुलिस ने हमें रोका, 300 MPs को यहाँ पे रोका गया और फिर उसके बाद अब हमें यहाँ बैठा रखे हैं 50 गज दूर इलेक्शन कमीशन है, हमें जाने नहीं दे रहे हैं। 300 एमपी ज्ञानेश कुमार से मिलना चाहते हैं और ज्ञानेश कुमार जी डरे हुए हैं।
2: दोपहर करीब 12:30 बजे से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का आकाशवाणी भवन के परिसर में धरना शुरू होता है और उसके बाद तमाम कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं की दौड़ आकाशवाणी की तरफ लगने लगती है।
6: यहाँ पे आप लोग का होना बिल्कुल ही गैर कानूनी है।
2: ऐसे में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और दिल्ली पुलिस के बीच जैसे एक जंग सी छिड़ जाती है और फिर पुलिस प्रदर्शनकारियों को जबरन हिरासत में लेती है।
7: हमारे नेता नरे राहुल जी ये लोगों की गलत जबरदस्ती उठा के ले जा रहे हैं। हम लोगों बार बार डिटेन कर रहे हैं, ज्ञानेश कुमार को बचाने का काम कर रहे हैं मोदी और शाह।
8: नरे और गणेश को बचाने के लिए पूरे क्राइम कर रहे हैं, ये गलत है, गैर कानूनी है।
2: धरने के करीब 2 घंटे बाद राहुल गांधी और आक्रामक होते हैं और सीधे सरकार, संघ और चुनाव आयोग पर वार करते हैं।
3: बीजेपी जो बोले उसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के को बचाने के लिए यहाँ खड़ा हुआ हूँ। मेरे साथ यहाँ पे कुछ घंटे पहले 300 लोकसभा और राज्यसभा के एमपीज आए थे, वो भी देश में लोकतंत्र को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अमित शाह, नरेंद्र मोदी और मोहन भगवत, ज्ञानेश कुमार, इन लोगों ने देश के लोकतंत्र को खत्म कर दिया है। इनमें से सारे के सारे सानों के खिलाफ कार्रवाई होगी, आप देखना, इनमें से एक व्यक्ति बच के नहीं जाएगा।
2: आकाशवाणी में 3 घंटे से ज्यादा बीतने पर राहुल गांधी और प्रियंका वहीं बरगद के पेड़ के नीचे चटाई बिछा लेते हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अलावा आकाशवाणी में पवन खेड़ा और केसी वेणुगोपाल समेत कई और बड़े नेता भी पहुंच जाते हैं। धरने के 5 घंटे बाद राहुल गांधी फिर से मीडिया के सामने बोलते हैं और कहते हैं कि जब तक उन्हें ज्ञानेश कुमार से मिलने नहीं दिया जाता वहीं बैठे रहेंगे। वो कहते हैं कि आकाशवाणी ने लंबा धरना देने का इंतजाम कर लिया है,
3: हमने यहाँ पे गद्दे भी लगा दिए हैं, ठीक है, टॉयलेट भी है, चाय भी मिल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना हमें बैठना है हम बैठ लेंगे।

0: कर खड़ी नजर आती हैं, जबकि राहुल ने पुलिस अफसर से कहा इन्हें मत छूना,
1: इसको मत छुओ झंडे को।
2: हम कह रहे हैं झंडा तुम्हारे सर में लग जाएगा,
1: कुछ नहीं लगेगा।
0: धरने के 7.5 घंटे बाद दिल्ली पुलिस फिर से आकाशवाणी पहुंचती है, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को धरने से उठने के लिए कहती है, लेकिन जब वो नहीं मानते हैं और बरगद के पेड़ के नीचे जमे रहते हैं तो काफी बहस होती है और आखिर में दिल्ली पुलिस राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को जबरन उठाकर आकाशवाणी से ले जाती है। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
3: राहुल और प्रियंका को आकाशवाणी भवन में धरने से उठाने की काफी मशक्कत भी करनी पड़ी है। राहुल और प्रियंका ज्ञानेश से मिलने के लिए अड़े रहे लेकिन उन्हें नहीं मिलने दिया गया, जबकि इंडिया गठबंधन ने सुबह 10:30 बजे से धरना प्रदर्शन शुरू किया। अखिलेश यादव से लेकर टीएमसी के अभिषेक बनर्जी इस धरने में शामिल हुए, लेकिन विपक्ष के इस मार्च को पुलिस ने बीच में ही रोक दिया और सांसदों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया।

0: 2 अक्टूबर से लेकर 5 अक्टूबर तक 4 दिन तक ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सीजेपी, आयसा, आप और उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे के विरोध प्रदर्शन के बाद अब बारी इंडिया गठबंधन की आती है, क्योंकि सब कुछ 30 सितंबर की इंडिया गठबंधन की नई दिल्ली की बैठक में तय हो चुका था। ऐसे में विपक्ष के 19 दलों के सांसद ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हल्ला बोलने सड़क पर उतरते हैं। राहुल गांधी के मुताबिक विपक्ष के लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर 300 सांसद एक साथ इकट्ठा होते हैं और पोस्टरों, बैनरों के साथ निकल पड़ते हैं। राहुल जेन जी के कनेक्ट के लिए प्रदर्शन में ज्ञानेश इट्स डन ब्रो का पोस्टर लेकर पहुंचे थे। उनका मकसद इस वर्ग को सीधा मैसेज देना था। देश में आज हर चौथा वोटर जेन जी से है, तो अखिलेश यादव के हाथों में मुचुआ का पोस्टर रहता है। मुचुआ का मतलब अखिलेश यादव मुख्य चुनाव आयुक्त बताते हैं।
1: मुख्य चुनाव आयुक्त तो सुना था आपने, यूपी में जो एक रूमर फैला रहा था, ये देखिए मुचुआ डाओ पीडीए बचाओ।
2: अभी जब तक पैर चलेगा चलेगा।
3: चुनाव आयोग भेदभाव कर रहा है।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
3: देखिए ये तो आपको सरकार से पूछना चाहिए कि बार बार पूरे विपक्ष को सड़क पे आने की जरूरत क्यों पड़ रही है। हमारी सीधी सीधी तीन मांगे हैं। एक, ज्ञानेश कुमार का इमीडिएट इस्तीफा हो। दूसरा, एसआईआर रद्द हो। तीसरा, बैलेट पेपर से चुनाव हो।
0: इंडिया गठबंधन के सांसद संसद से चुनाव आयोग के हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन नीति आयोग के दफ्तर के पास इस मार्च को बैरिकेडिंग करके रोक दिया जाता है। ऐसे में राहुल गांधी हाथ में तिरंगा लेकर बैरिकेडिंग पर चढ़ जाते हैं और बैरिकेडिंग को फांदने की कोशिश करते हैं।
4: ज्ञानेश गुप्ता की गद्दारी साबित हो चुकी है।
5: सीसी अंडरग्राउंड कहाँ छुपाया है, बीजेपी के दफ्तर में है और कहाँ है पता नहीं। सीसी जो है बीजेपी का एजेंट है, उनको बचाने की कोशिश चल रही है।
6: चुनाव आयोग से लोगों का भरोसा खत्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट के जज भी बोल रहे हैं कि गलत वोट काटे गए। लोगों के वोट काट के विपक्ष को हराना ये साबित करता है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं रह गया है।
7: कि ये इलेक्शन मशीन की तरह काम करते हैं, केवल चुनाव आयोग से नहीं जीतते हैं, पैसा इनके पास बहुत है। बंगाल में देखा कि फोर्स के माध्यम से कैसे बूथ लूट लिया, और बंगाल में नहीं लूटा था, उससे पहले यूपी में लूटा। आपका जो सेमीफाइनल होता है, या कहें कि कोई चीज करने से पहले टेस्ट करने के लिए, कुंदरकी का चुनाव इन्होंने लूटा, मीरापुर का चुनाव इन्होंने लूटा, आपका अयोध्या का चुनाव, अंबेडकर नगर का बाई इलेक्शन। तो चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है।
8: ये तो पहले से था कि बीजेपी की चोरों की सरकार थी, अब ये पता चल गया कि अब ये चोरी की सरकार है। मुझे ये लगता है अब तो यही करना चाहिए कि ये सरकार बर्खास्त हो और फिर से लोकसभा के चुनाव हो, और कोई तरीका नहीं।
0: अब विपक्ष के सभी सांसद नीति आयोग के दफ्तर के पास ही धरने पर बैठ जाते हैं।
9: समाजवादी पार्टी के लोग संघर्ष पसीना से कभी घबराते नहीं है। बीजेपी के लोग घबराए हुए हैं, इसीलिए बैरिकेडिंग लगाई हुई है।

0: पहले तो पुलिस ने विपक्षी सांसदों को बैरिकेडिंग से रोका और जब इससे भी नहीं रुके तो उन्हें हिरासत में लेना शुरू कर देती है और बस में भर कर ले जाती है। बस के अंदर अखिलेश यादव दिल्ली पुलिस पर तंज मारते हुए कहते हैं कि पुलिस उन्हें ज्ञानेश कुमार से मिलवाने के लिए चुनाव आयोग ले जा रही है।
1: चुनाव आयोग ले जा रही पुलिस,
2: ज्ञानेश कुमार को
1: नहीं, उन्हीं से मिलाने ले जा रही हम लोगों को, सीसी से मिलाने ले जा रही है। बीजेपी ने अब कह दिया कि बस जा सकती है चुनाव आयोग।
0: अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव और अभिषेक बनर्जी समेत विपक्ष के कई सांसदों को दिल्ली पुलिस हिरासत में ले लेती है, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पुलिस को गच्चा देकर आकाशवाणी के दफ्तर के परिसर में घुस जाते हैं और वहीं से धरना देना शुरू कर देते हैं। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
3: इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आपका ही मन जाएगा, देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से।

लखनऊ में गोमती नदी का बढ़ता जलस्तर अब शहर के कई हिस्सों के लिए मुसीबत बन गया है। गोमती रिवर फ्रंट को बाढ़ के चलते बंद कर दिया गया है। जहां लोग बैठा करते थे वहां तक पानी पहुंच चुका है। बाढ़ का असर हनुमंत धाम पर भी दिखाई दे रहा है। हनुमंत धाम का बड़ा हिस्सा पानी में डूब चुका है। बैठने की जगह, झूले और मंदिर परिसर के कई हिस्से जलमग्न नजर आ रहे हैं। वहीं राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल में भी बाढ़ का पानी पहुंच गया है। सुरक्षा के लिहाज से इसे पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। यहां बने म्यूजियम तक पानी पहुंच चुका है। सबसे ज्यादा असर फैजुल्लागंज इलाके में देखने को मिल रहा है। यहां कई घर पानी में डूबे हैं और जलस्तर घरों के गेट को पार कर चुका है। प्रशासन और नगर निगम की टीमें लगातार राहत कार्य में जुटी हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित फैजुल्लागंज का हवाई सर्वेक्षण कर जमीनी हालात का जायजा लिया। हवाई सर्वेक्षण के दौरान सीएम ने जलभराव और प्रभावित इलाकों की स्थिति देखी। इसके बाद सीएम ने मौके पर पहुंचकर प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और राहत कार्यों की जानकारी ली। प्रशासन के मुताबिक करीब 150 नावों की मदद से लोगों को सुरक्षित निकालने का काम किया जा रहा है। जो लोग घर छोड़कर नहीं जाना चाहते उन तक नावों के जरिए राशन और जरूरी सामान पहुंचाया जा रहा है। संक्रमण से बचाव के लिए दवाइयों का भी वितरण किया जा रहा है। गोमती के बढ़े जलस्तर ने लखनऊ में दो दशकों बाद ऐसे बाढ़ जैसे हालात पैदा किए हैं। प्रशासन की नजर जल स्तर पर बनी हुई है और हालात सामान्य होने का इंतजार है। आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: कौन सा ग्रह किशोरावस्था में बच्चे को तेजस्वी बनाता है? कौन सा ग्रह किशोरावस्था में बच्चे की संगति बिगाड़ देता है? और कौन सा ग्रह बच्चे के अंदर भटकाव पैदा करता है? किशोरावस्था में किन ग्रहों का होता है प्रभाव? क्या आती हैं समस्याएं? जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से।

0: आज के युवाओं के लिए बैंक केवल पैसे जमा रखने की जगह नहीं रह गया है। पेमेंट से लेकर क्रेडिट कार्ड और निवेश तक उनकी जरूरतें तेजी से बदल रही हैं। यही वजह है कि देश के बैंक अब युवा ग्राहकों को जोड़ने के लिए अपनी रणनीति बदल रहे हैं। ट्रांस यूनियन सिबिल के आंकड़े बताते हैं कि भारत में नई पीढ़ी पहले के मुकाबले काफी कम उम्र में औपचारिक क्रेडिट सिस्टम से जुड़ रही है। डेटा के मुताबिक मार्च 2026 में पहले क्रेडिट कार्ड लेने वालों में 50% जेंजी थे, जबकि 2025 में यह हिस्सेदारी 43% थी। भारत में करीब 40 करोड़ जेंजी आबादी है और देश की कुल खपत में इनका 40% से ज्यादा योगदान है। वित्त मंत्रालय भी सरकारी बैंक को युवाओं की जरूरतें समझने और उनसे उनकी भाषा में जुड़ने की सलाह दे चुका है। बैंक की दिलचस्पी केवल आज के कारोबार में नहीं, भविष्य में सिस्टम से जुड़ने वाले ग्राहकों में है। फिलहाल बड़ी संख्या में युवा बैंकिंग सिस्टम का इस्तेमाल पेमेंट और रोजमर्रा के लेन देन के लिए कर रहे हैं, लेकिन आगे चलकर ये ग्राहक लोन लेंगे, क्रेडिट कार्ड का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे और अपनी बचत भी बैंकिंग सिस्टम में रखेंगे। जाहिर है इसके बाद बचत और निवेश भी इसी वर्ग से आएगा और जल्द ही जुड़ने वाला ग्राहक लंबे समय तक बैंक के साथ रहने की ज्यादा संभावना बढ़ाएगा। इसी वजह से बैंक अब अपनी ब्रांडिंग और मार्केटिंग का तरीका बदल रहे हैं। इसके लिए वो फिटनेस और स्पोर्ट्स इवेंट्स पर फोकस बढ़ा रहे हैं। वहीं तेजी से लोकप्रिय होते जा रहे AI प्लेटफॉर्म्स पर भी विज्ञापन चलाकर युवाओं को लुभाने की कोशिश की जा रही है। युवाओं को रिवॉर्ड्स में रनिंग शूज और जिम सब्सक्रिप्शन जैसे विकल्प दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही डिजिटल और आसान बैंकिंग अनुभव पर ध्यान बढ़ाया जा रहा है, यानी युवाओं को लुभाने के लिए पारंपरिक विज्ञापन के साथ साथ ChatGPT जैसे AI प्लेटफॉर्म्स पर भी अपने क्रेडिट कार्ड का प्रचार किया जा रहा है। वहीं रिवॉर्ड प्रोग्राम्स को भी युवाओं की पसंद के मुताबिक ढाला जा रहा है।
1: इट इज वेरी इजी, अब उनको बैंक जाना नहीं है, सिर्फ मोबाइल में बैठे बैठे उनको क्रेडिट कार्ड मिल रहा है। द सेकंड रीजन इज दैट कि UPI पे क्रेडिट कार्ड मिलने लगा है, तो उनको अभी बड़ी आसानी हो गई है सब पेमेंट करने में। एंड द तीसरा रीजन जो है वो ये है कि ब्रांजी को पता चल गया है कि कल जाके अगर होम लोन लेना है तो सिबिल स्कोर अच्छा करना पड़ेगा, एंड क्रेडिट कार्ड इज द बेस्ट सोर्स टू इम्प्रूव योर सिबिल स्कोर अगर आप टाइमली पेमेंट करेंगे तो।
0: यही वजह है कि कई बैंक मोबाइल एप्स में निवेश, वित्तीय योजना और व्यक्तिगत सुझाव जैसे फीचर्स जोड़ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक युवा ग्राहक छोटी रकम से शेयर और म्यूचुअल फंड में निवेश करना भी सीखना चाहते हैं। ऐसे में बैंकिंग सेक्टर की अगली बड़ी दौड़ सिर्फ अकाउंट खोलने की नहीं, भरोसा जीतने की भी होगी। आज तक ब्यूरो।
2: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
4: कौन सा ग्रह किशोरावस्था में बच्चे को तेजस्वी बनाता है? कौन सा ग्रह किशोरावस्था में बच्चे की संगति बिगाड़ देता है? और कौन सा ग्रह बच्चे के अंदर भटकाव पैदा करता है? किशोरावस्था में किन ग्रहों का होता है प्रभाव? क्या आती हैं समस्याएं? जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से।

त्योहारों और शादियों के सीजन में निवेश की बात हो तो सबसे पहले सोने का नाम याद आता है। ये पीली धातु सुंदरता और शोभा में निखार लाने के साथ साथ मुश्किल वक्त में काम आने वाला बेहतरीन एसेट बन जाती है। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है, क्योंकि सोने के मुकाबले चांदी की ज्यादा चर्चा हो रही है। दरअसल लगातार बढ़ती इंडस्ट्रियल डिमांड और सप्लाई की कमी के बीच एक रिपोर्ट में चांदी को लेकर बड़ा अनुमान लगाया गया है। केडिया एडवाइजरी की दिवाली 2027 सिल्वर रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले महीनों में चांदी की कीमतों में तेज बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। हालांकि ये अनुमान बाजार की मौजूदा परिस्थितियों पर आधारित है। रिपोर्ट का अनुमान है कि कॉमेक्स पर फिलहाल करीब $65 प्रति आउंस पर मौजूद चांदी का भाव अगले 6 महीनों में $85 से $90 प्रति आउंस तक पहुंच सकता है और दिवाली 2027 तक इसके $120 प्रति आउंस तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। यानी घरेलू बाजार में चांदी एक बार फिर से 4 लाख रुपए प्रति किलो तक पहुँच सकती है, जो मौजूदा स्तर के मुकाबले करीब 71% की बढ़ोतरी होगी। रिपोर्ट का कहना है कि इस तेजी के पीछे निवेशकों की दिलचस्पी के साथ साथ इंडस्ट्री की बढ़ती जरूरत भी बड़ी वजह है। सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरी इंडस्ट्रियल जरूरतों में चांदी की मांग लगातार बढ़ रही है। दूसरी तरफ खदानों से सप्लाई उसी रफ्तार से नहीं बढ़ पा रही है। इसी वजह से वैश्विक बाजार में डिमांड और सप्लाई के बीच अंतर बना हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक 2026 में 4.63 करोड़ आउंस सप्लाई डेफिसिट का अनुमान है और लगातार 6ठे साल कमी रहने की संभावना जताई गई है। एक तरफ माइन प्रोडक्शन 84.41 करोड़ आउंस रहने का अनुमान है और कुल उत्पादन का महज 1/4 हिस्सा प्राइमरी सिल्वर माइन से आएगा। रिपोर्ट के मुताबिक चांदी की कीमतें बढ़ने के बावजूद सप्लाई में तुरंत बड़ा इजाफा आसान नहीं है, क्योंकि ज्यादातर चांदी तांबा, जिंक और सीसा जैसी धातुओं के खनन के दौरान बाय प्रोडक्ट के तौर पर निकलती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो रिपोर्ट का आकलन है कि आने वाले समय में चांदी केवल गहनों तक सीमित नहीं रहेगी, ये तो निवेश और इंडस्ट्री दोनों के लिए अहम धातु बनी रहेगी। हालांकि कीमतों की दिशा वैश्विक अर्थव्यवस्था, डॉलर, ब्याज दरों और निवेशकों की मांग पर भी निर्भर करेगी। आज तक ब्यूरो।

कहा दिल्ली में प्रदर्शन सीएसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्षी सांसदों का हल्ला बोल दिल्ली चुनाव आयोग के बाहर विरोध में आम आदमी पार्टी भी होगी शामिल। दिल्ली में धरना प्रदर्शन के बाद हिरासत में छूटते ही राहुल गांधी का बड़ा हमला बोले हिसाब होगा एक भी देशद्रोही बख्शा नहीं जाएगा बीजेपी का पलटवार राहुल को लॉन्च करने की विफल कोशिश। पीएम मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे प्रधानमंत्री आज दिल्ली में विकसित भारत संकल्प सभा कार्यक्रम को करेंगे संबोधित सेवा संकल्प अभियान के तहत देश भर में कई कार्यक्रम।

0: आदित्य ठाकरे बोले घमंड में है सरकार, सीएम का आरोप, सियासी एजेंडे के लिए छात्रों को ढाल बनाने की कोशिश। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित बने भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख, 2028 तक कार्यकाल, कारगिल जंग समेत कई अहम ऑपरेशन में रहे शामिल। आज तक मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दरअसल दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में मंगलवार रात भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। रात करीब 10:30 बजे आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.4 मापी गई है। भूकंप के केंद्र उत्तराखंड के चमोली इलाके को बताया जा रहा है। साथ ही दिल्ली के अलावा नोएडा, गाजियाबाद, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, अल्मोड़ा और नैनीताल समेत उत्तराखंड के कई हिस्सों में धरती हिली है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर कंपन महसूस किया गया। नोएडा और देहरादून में कई लोग घबराकर घरों से बाहर निकल आए। फिलहाल नोएडा समेत प्रभावित इलाकों में किसी बड़े जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं आई है और अधिकारी स्थिति पर नजर भी बनाए हुए हैं। तो वही मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मंगलवार दिन भर हंगामा चलता रहा। दिल्ली के किंग्सवे कैंप से निकलने के बाद राहुल गांधी ने सरकार पर फिर से हमला बोल दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि गद्दारों को सरकार बचा रही है। राहुल प्रियंका को हिरासत में लिया गया था। दोनों को करीब 2 घंटे तक कैंपसवे कैंप में रखा गया, हालांकि बाद में उनको छोड़ दिया गया। राहुल गांधी के मुताबिक लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर विपक्ष के 300 सांसदों ने सीसी के खिलाफ मार्च निकाला, लेकिन पुलिस ने बैरिगेटिंग कर अखिलेश यादव समेत कई सांसदों को हिरासत में ले लिया। इस बीच पुलिस को चकमा देकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पहुंच गए आकाशवाणी के परिसर में और वहीं से शुरू कर दिया ज्ञानेश कुमार के खिलाफ धरना।
1: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर विपक्ष एक साथ उबला तो राजधानी दिल्ली में संसद से चुनाव आयोग के हेडक्वार्टर के रास्ते तक न सिर्फ विपक्ष ने एकता और एकजुटता दिखाई बल्कि सरकार को कटघरे में खड़ा करके ये साबित करने की पूरी कोशिश की कि चुनाव आयोग और सरकार के बीच मिलीभगत है और चुनावों में सरकार वोट चोरी करवा रही है।
2: अमित शाह, नरेंद्र मोदी और मोहन भगवत, ज्ञानेश कुमार, इन लोगों ने देश के लोकतंत्र को खत्म कर दिया है।
3: जो गलत तरीके से हुकूमत में उन्होंने आए हैं और जो गलत तरीके से उन्होंने आज कुर्सी पे बैठा, इसीलिए हम कर रहे हैं पहले गद्दी छोड़ो, नहीं तो देश में हंगामा होगा, देश के लोग चुप नहीं बैठेंगे, ये मेरा वार्निंग है उनको।
4: चुनाव ने 17 में बेईमानी की, 19 में बेईमानी की, 22 में बेईमानी की, 24 में बेईमानी की और बंगाल का तो पूरा का पूरा खुला खेल किया उन्होंने, किसको नहीं दिखाई देता है।
1: ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर भले ही ये इंडिया गठबंधन के 19 दलों का मार्च था, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दिल्ली पुलिस को गच्चा देकर आकाशवाणी भवन के परिसर में जाकर बैठ जाते हैं और वहीं से धरना शुरू कर देते हैं, ऐसे में सारी निगाहें राहुल गांधी पर जम जाती है। हम आपको विपक्षी सांसदों का पूरा मार्च दिखाएंगे, लेकिन पहले बात राहुल गांधी की करते हैं। उधर दिल्ली पुलिस विपक्षी सांसदों को हिरासत में लेकर बस में बैठाकर ले जाती है और आकाशवाणी में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एक पेड़ के नीचे बैठकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दो चुनाव आयुक्तों से मिलने की जिद करने लगते हैं।
2: कुछ समय पहले तकरीबन 300 लोकसभा और राज्यसभा के एमपीज आए थे और हम चाहते थे इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार और उनके दो जो कॉलीग्स हैं उनसे मिलना चाहते थे। यहाँ पे पुलिस ने हमें रोका, 300 एमपीज को यहाँ पे रोका गया और फिर उसके बाद अब हमें यहाँ बैठा रखे हैं। 50 गज दूर इलेक्शन कमीशन है, हमें जाने नहीं दे रहे हैं। 300 एमपी ज्ञानेश कुमार से मिलना चाहते हैं और ज्ञानेश कुमार जी डरे हुए हैं।
1: दोपहर करीब 12:30 बजे से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का आकाशवाणी भवन के परिसर में धरना शुरू होता है और उसके बाद तमाम कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं की दौड़ आकाशवाणी की तरफ लगने लगती है।
5: यहाँ पे आप लोग का होना बिल्कुल ही गैर कानूनी है।
1: ऐसे में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और दिल्ली पुलिस के बीच जैसे जंग सी छिड़ जाती है और फिर पुलिस प्रदर्शनकारियों को जबरन हिरासत में लेती है।
6: हमारे नेता नर राहुल जी ये लोगों की गलत जबरदस्ती उठा के ले जा रहे हैं। हम लोगों बार बार डिटेन कर रहे हैं, ज्ञानेश कुमार को बचाने का काम कर रहे हैं मोदी और शाह।
7: नर और गणेश को बचाने के लिए पूरे क्राइम कर रहे हैं, ये गलत है, गैर कानूनी है।
1: धरने के करीब 2 घंटे बाद राहुल गांधी और आक्रामक होते हैं और सीधे सरकार, संघ और चुनाव आयोग पर वार करते हैं।
2: बीजेपी जो बोले उसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के को बचाने के लिए यहाँ खड़ा हुआ हूँ। मेरे साथ यहाँ पे कुछ घंटे पहले 300 लोकसभा और राज्यसभा के एमपीज आए थे, वो भी देश में लोकतंत्र को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अमित शाह, नरेंद्र मोदी और मोहन भगवत, ज्ञानेश कुमार, इन लोगों ने देश के लोकतंत्र को खत्म कर दिया है। इनमें से सारे के सारे सानों के खिलाफ कार्रवाई होगी। आप देखना, इनमें से एक व्यक्ति बच के नहीं जाएगा।
1: आकाशवाणी में 3 घंटे से ज्यादा बीतने पर राहुल गांधी और प्रियंका वहीं बरगद के पेड़ के नीचे चटाई बिछा लेते हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अलावा आकाशवाणी में पवन खेड़ा और केसी वेणुगोपाल समेत कई और बड़े नेता भी पहुंच जाते हैं। धरने के 5 घंटे बाद राहुल गांधी फिर से मीडिया के सामने बोलते हैं और कहते हैं कि जब तक उन्हें ज्ञानेश कुमार से मिलने नहीं दिया जाता वहीं बैठे रहेंगे। वो कहते हैं कि आकाशवाणी में लंबा धरना देने का इंतजाम कर लिया है।
2: हमने यहाँ पे गद्दे भी लगा दिए हैं, ठीक है, टॉयलेट भी है, चाय भी मिल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना हमें बैठना है हम बैठ लेंगे।
1: छह घंटे बाद भी धरना जारी रहता है। इस बीच आकाशवाणी में दिल्ली पुलिस पहुंचती है। इस दौरान प्रियंका तिरंगे के सामने हाथ फैलाकर खड़ी नजर आती हैं, जबकि राहुल ने पुलिस अफसर से कहा इन्हें मत छूना,
2: इसको मत छुओ झंडे को।
1: धरने के 7.5 घंटे बाद दिल्ली पुलिस फिर से आकाशवाणी पहुंचती है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को धरने से उठने के लिए कहती है, लेकिन जब वो नहीं मानते हैं और बरगद के पेड़ के नीचे जमे रहते हैं तो काफी बहस होती है और आखिर में दिल्ली पुलिस राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को जबरन उठाकर आकाशवाणी से ले जाती है। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
0: राहुल और प्रियंका को आकाशवाणी भवन में धरने से उठाने की काफी मशक्कत करनी पड़ी। राहुल और प्रियंका ज्ञानेश से मिलने के लिए पहुंचे और लेकिन उन्हें नहीं मिलने दिया गया, जबकि इंडिया गठबंधन ने सुबह 10:30 बजे से ही धरना प्रदर्शन शुरू किया। अखिलेश यादव से लेकर टीएमसी के अभिषेक बनर्जी इस धरने में शामिल हुए, लेकिन विपक्ष के इस मार्च को पुलिस ने बीच में ही रोक दिया और सांसदों को हिरासत में ले लिया।

0: दो अक्टूबर से लेकर 5 अक्टूबर तक 4 दिन तक ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सीजेपी, आयसा, आप और उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे के विरोध प्रदर्शन के बाद अब बारी इंडिया गठबंधन की आती है, क्योंकि सब कुछ 30 सितंबर की इंडिया गठबंधन की नई दिल्ली की बैठक में तय हो चुका था। ऐसे में विपक्ष के 19 दलों के सांसद ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हल्ला बोलने सड़क पर उतरते हैं। राहुल गांधी के मुताबिक विपक्ष के लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर 300 सांसद एक साथ इकट्ठा होते हैं और पोस्टरों, बैनरों के साथ निकल पड़ते हैं। राहुल जेन जी के कनेक्ट के लिए प्रदर्शन में ज्ञानेश इट्स डन ब्रो का पोस्टर लेकर पहुंचे थे। उनका मकसद इस वर्ग को सीधा मैसेज देना था। देश में आज हर चौथा वोटर जेन जी से है, तो अखिलेश यादव के हाथों में मुचुआ का पोस्टर रहता है। मुचुआ का मतलब अखिलेश यादव मुख्य चुनाव आयुक्त बताते हैं।
1: मुख्य चुनाव आयुक्त तो सुना था आपने यूपी में जो एक रूमर फैला रहा था, ये देखिए मुचुआ डाओ पीडीए बचाओ।
2: अभी जब तक पैर चलेगा
3: चुनाव आयोग भेदभाव कर रहा है।
2: बिल्कुल
3: देखिए, ये तो आपको सरकार से पूछना चाहिए कि बार बार पूरे विपक्ष को सड़क पे आने की जरूरत क्यों पड़ रही है। हमारी सीधी सीधी तीन मांगे हैं। एक, ज्ञानेश कुमार का इमीडिएट इस्तीफा हो। दूसरा, एसआईआर रद्द हो। तीसरा, बैलेट पेपर से चुनाव हो।
0: इंडिया गठबंधन के सांसद संसद से चुनाव आयोग के हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन नीति आयोग के दफ्तर के पास इस मार्च को बैरिकेडिंग करके रोक दिया जाता है। ऐसे में राहुल गांधी हाथ में तिरंगा लेकर बैरिकेडिंग पर चढ़ जाते हैं और बैरिकेडिंग को फांदने की कोशिश करते हैं।
4: ज्ञानेश गुप्ता की गद्दारी साबित हो चुकी है।
5: सीसी अंडरग्राउंड कहाँ छुपाया है, बीजेपी के दफ्तर में है और कहाँ है पता नहीं। सीसी जो है बीजेपी का एजेंट है, उनको बचाने की कोशिश चल रही है।
6: चुनाव आयोग से लोगों का भरोसा खत्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट के जज भी बोल रहे हैं कि गलत वोट काटे गए। लोगों के वोट काट के विपक्ष को हराना ये साबित करता है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं रह गया है।
7: कि ये इलेक्शन मशीन की तरह काम करते हैं, केवल चुनाव आयोग से नहीं जीतते हैं, पैसा इनके पास बहुत है। बंगाल में देखा कि फोर्स के माध्यम से कैसे बूथ लूट लिया, और बंगाल में नहीं लूटा था, उससे पहले यूपी में लूटा। आपका जो सेमीफाइनल होता है, या कहें कि कोई चीज करने से पहले टेस्ट करने के लिए, कुंदरकी का चुनाव इन्होंने लूटा, मीरापुर का चुनाव इन्होंने लूटा, आपका अयोध्या का चुनाव, अंबेडकर नगर का बाई इलेक्शन। तो चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है।
8: ये तो पहले से था कि बीजेपी की चोरों की सरकार थी, अब ये पता चल गया कि अब ये चोरी की सरकार है। मुझे ये लगता है अब तो यही करना चाहिए कि ये सरकार बर्खास्त हो और फिर से लोकसभा के चुनाव हो, और कोई तरीका नहीं।
0: अब विपक्ष के सभी सांसद नीति आयोग के दफ्तर के पास ही धरने पर बैठ जाते हैं।
9: समाजवादी पार्टी के लोग संघर्ष पसीना से कभी घबराते नहीं है। बीजेपी के लोग घबराए हुए हैं, इसीलिए बैरिकेडिंग लगाई हुई है।
0: पहले तो पुलिस ने विपक्षी सांसदों को बैरिकेडिंग से रोका, और जब इससे भी नहीं रुके तो उन्हें हिरासत में लेना शुरू कर देती है और बस में भरकर ले जाती है। बस के अंदर अखिलेश यादव दिल्ली पुलिस पर तंज मारते हुए कहते हैं कि पुलिस उन्हें ज्ञानेश कुमार से मिलवाने के लिए चुनाव आयोग ले जा रही है।
10: चुनाव आयोग ले जा रही पुलिस, नहीं उन्हीं से मिलाने ले जा रही हम लोगों को, सीसी से मिलाने ले जा रही है। बीजेपी ने अब कह दिया कि बस जा सकती है चुनाव आयोग।
0: अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव और अभिषेक बनर्जी समेत विपक्ष के कई सांसदों को दिल्ली पुलिस हिरासत में ले लेती है, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पुलिस को गच्चा देकर आकाशवाणी के दफ्तर के परिसर में घुस जाते हैं और वहीं से धरना देना शुरू कर देते हैं। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
11: राहुल के प्रोटेस्ट को लेकर बीजेपी ने क्या क्या आरोप लगाया है, चलिए आपको सुनवाते हैं।
12: राहुल गांधी जी की ये आदत है, राहुल गांधी जी ने सुप्रीम कोर्ट को कोट करके राफेल के केस में राहुल गांधी जी ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राफेल में धांधली हुई। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ही राहुल गांधी को बोला कान पकड़ के उठक बैठक करो। कान पकड़ के उठक बैठक करो और एफिडेविट सब दो कि तुमने झूठ बोला था। राहुल गांधी चुपके से जाके घर के पीछे उन्होंने एफिडेविट लिखा, मेरे से गलती हो गई, मैंने झूठ बोला, सुप्रीम कोर्ट का नाम मैंने गलत तरीके से इस्तेमाल किया और उसे सबमिट किया सुप्रीम कोर्ट में। आज ठीक वही काम राहुल गांधी कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के नाम पर वो अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट को मिसकोट कर रहे हैं। ये हम होने नहीं देंगे, हम उन्हें एक्सपोज करते रहेंगे।
13: आज तक कांग्रेस ने देश की कितनी संस्थाओं के ऊपर आरोप लगाया है? एक दर्जन, आधा दर्जन, डेढ़ दर्जन, दो दर्जन। भारत की थल सेना से लेके, भारत की वायुसेना से लेके, भारत के डिफेंस से लेके, भारत की LIC से लेके, भारत के HAL, SBI, SEBI, वैक्सीन, कौन सी ऐसी चीज है? भारत का न्यायालय, भारत का मीडिया। तो मैं कांग्रेस पार्टी से आज देश के सामने पूछना चाहता हूं, इस पे क्विज कॉन्टेस्ट होना चाहिए कि भारत के कितने संस्थानों को कांग्रेस ने अब तक, खासकर राहुल गांधी ने आरोपित किया है। हम पूछना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी से, आप 13 करोड़ बोलते हैं तो आप 2.8 करोड़ मृतक, 1 करोड़ डुप्लीकेट वोटरों को और 6.8 करोड़ शिफ्टेड, चलिए उसमें शिफ्टेड वालों में लोग ये तय कर सकते हैं कि वो किस जगह वोट रखना चाहिए। मगर मैं पूछना चाहता हूं कि 2.8 करोड़ डेड और 1 करोड़ डुप्लीकेट, ये भारत की इकोनॉमी को डेड बचाने वाले लोग ये डेड और डुप्लीकेट वोटरों को मताधिकार के साथ कैसे जोड़ रहे हैं? कांग्रेस से स्पष्ट हम पूछना चाहते हैं, वो इस बात का जवाब दे।
11: यह वक्त हो गया एक ब्रेक का, आप देखते रहिए आज तक।
14: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: यूपी के चुनावी मौसम में दलित वोटों के लिए हर दल के तरकश में अलग लगती है, और इसी में से एक तीर बीजेपी ने अब यूपी में आजमाया है, जो दलित सियासत में प्रतीकों के तौर पर इस्तेमाल होते आ रहे हैं। सीएम योगी ने ऐसा ही एक ऐलान यूपी में किया, जहां भदोही का नाम संत रविदास के नाम पर किया गया है।
1: कालीन उद्योग के लिए जाना जाने वाला भदोही जनपद आने वाले समय में मध्यकालीन सन जिन्होंने अपनी साधना के माध्यम से समाज को जोड़ने का काम किया था, ऐसे सदगुरु रविदास जी महाराज के नाम पर भदोही जाना जाएगा।
0: भदोही नहीं, नामकरण की बात हो तो कन्नौज मेडिकल कॉलेज का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर बहाल किया गया है। वहीं अनुपूरक बजट में डॉक्टर अंबेडकर मूर्ति विकास योजना के लिए 407 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत अंबेडकर, संत रविदास, संत कबीर, ज्योतिबा फुले और महर्षि वाल्मीकि के प्रतिमाओं के संरक्षण, सौंदर्यीकरण और सुरक्षा पर काम होगा। बीजेपी कहती है कि अखिलेश यादव की सरकार ने दलित विरोधी सोच के कारण जिन महापुरुषों के नाम पर रखे गए जिलों, संस्थानों के नाम बदल डाले थे, उनका पुनर्नामकरण करके बीजेपी सम्मान दे रही है।
2: पूर्व में भी भदोही का नाम संत रविदास नगर था, किंतु अखिलेश यादव की दलित विरोधी सोच के नाते से उन्होंने संत रविदास नगर समेत उत्तर प्रदेश के कई जिलों के नाम बदले थे। आज उसको सही किया गया है।
3: समाजवादी पार्टी समाज में न किसी वर्ग को अपनी जागीर न वोट बैंक समझती है। वो सभी वर्गों को अपना साथी, सहयोगी और समाजवादी पार्टी के परिवार का हिस्सा समझती है।
0: मतलब ये कि दलितों को रिझाने के लिए दाव चलाए जाने लगे हैं। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।

0: यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन पर गदर मची है। कहा जा रहा था कि कांग्रेस 150 सीटें चाहती है, लेकिन कांग्रेस अब इससे आगे की बात कर रही है।
1: इसने किया 150 का, मैंने तो 200 की बात की थी। मैं शुरू से कह रहा हूँ बराबर का सम्मान और बराबर की इज्जत, बराबर का हिस्सा।
0: लेकिन राजेंद्र पाल गौतम को समाजवादी पार्टी के नेता दो टूक जवाब देते हैं।
2: मैं ये कहता हूँ उनको 50 सीट देना भी बहुत बड़ी बात होगी, उनको देखना चाहिए। दो तुम्हारे विधायक हैं, पिछली बार तुमने लड़के देख लिए, क्या इससे तुम्हें सबक नहीं मिलता?
0: अखिलेश यादव पहले ही कह चुके हैं कि जीत ही सीट का आधार है।
3: जीत ही आधार है, जीत ही सीट का आधार है।
0: और जीत बोले तो आखिरी चुनाव यानी 2024 लोकसभा में मेरी जीत, और वो जीत कुछ ऐसी थी कि 80 में 37 सीटें समाजवादी पार्टी जीती और 6 कांग्रेस को मिली थी। इसे विधानसभा के अनुपात में बांटा जाए तो 37 लोकसभा के हिसाब से अखिलेश के हिस्से 347 सीटें बनती हैं और कांग्रेस के हिस्से 56। लेकिन कांग्रेस की हसरतें 56 से 200 तक पहुंच चुकी हैं और हौसला बढ़ता ही जा रहा है। अब कांग्रेस ने उन्हीं इमरान मसूद को कांग्रेस का कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है, जो लगातार समाजवादी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे हैं और 403 सीटों पर लड़ने की चेतावनी देते रहते हैं। पॉलिटिकल मैसेजिंग के तौर पर कांग्रेस ने अपने पत्ते सामने रख दिए हैं। अब बारी समाजवादी पार्टी की ओर से फैसला लेने की है, और वो कांग्रेस की सीटों वाली शर्तों के साथ विधानसभा चुनाव में गठबंधन करना चाहती है या बीजेपी को हराने के मिशन के साथ। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: कौन सा ग्रह किशोरावस्था में बच्चे को तेजस्वी बनाता है? कौन सा ग्रह किशोरावस्था में बच्चे की संगति बिगाड़ देता है? और कौन सा ग्रह बच्चे के अंदर भटकाव पैदा करता है? किशोरावस्था में किन ग्रहों का होता है प्रभाव? क्या आती हैं समस्याएं? जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।
2: दुनिया भर की इकोनॉमी इस वक्त सुस्ती, अनिश्चितता और उठापटक के दौर से गुजर रही है। ऐसे माहौल में भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। घरेलू मांग, बढ़ती आय और मजबूत लेबर मार्केट के दम पर देश की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूती दिखा रही है। इसकी पुष्टि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF की ताजा रिपोर्ट से भी होती है, जिसके मुताबिक भारत का ग्रोथ आउटलुक दुनिया में सबसे मजबूत है। इस सर्वे में शामिल 74% चीफ इकोनॉमिस्ट ने मजबूत ग्रोथ की उम्मीद जताई है। वहीं 98% को अगले 12 महीनों में मध्यम या उससे बेहतर ग्रोथ की उम्मीद है। बढ़ती आय और मजबूत लेबर मार्केट से सपोर्ट मिलने का भरोसा रिपोर्ट में जताया गया है। ग्लोबल संस्थानों की इस भरोसे की झलक रेटिंग एजेंसियों के अनुमान में भी दिखाई दे रही है। 2026-27 के लिए फिच रेटिंग्स ने भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर 6.9% कर दिया है। इससे पहले ये अनुमान 6.4% था। भारत की अर्थव्यवस्था की मजबूती के पीछे कई फैक्टर्स काम कर रहे हैं। पहली तिमाही में भी अर्थव्यवस्था के शानदार प्रदर्शन ने दुनिया भर में भारत की साख को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल जून तिमाही में GDP ग्रोथ 7.8% रही। इसकी वजह मजबूत इंडस्ट्रियल एक्टिविटी रही थी। वहीं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में सुधार के संकेत से भी फायदा मिला था। एक्सपोर्ट और सरकारी निवेश ने भी ग्रोथ को मजबूत सहारा दिया है। इस प्रदर्शन के बाद कई एजेंसियों ने भी अपने अनुमान बेहतर किए हैं। फिच के बाद S&P ग्लोबल रेटिंग ने भी 2026-27 के लिए भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान 40 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाकर 7% कर दिया है। मूडीज ने भी 7% ग्रोथ का अनुमान जताया है। हालांकि मजबूत ग्रोथ के साथ आने वाले महीनों में महंगाई और ब्याज दरों पर सबसे ज्यादा नजर रहेगी। दरअसल फिच और S&P को उम्मीद है कि अक्टूबर की मॉनेटरी पॉलिसी में RBI रेपो रेट में 0.25% की बढ़ोतरी कर सकता है। बढ़ती मांग से महंगाई का दबाव बना हुआ है और कुछ सेक्टर्स में सप्लाई से जुड़ी चुनौतियां मौजूद हैं। ऐसे में ग्रोथ और महंगाई के बीच संतुलन बड़ी चुनौती बन गया है। ग्लोबल अनिश्चितताओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार मजबूती दिखा रही है। दुनिया की बड़ी एजेंसियों और अर्थशास्त्रियों का बढ़ता भरोसा इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में भी भारत वैश्विक ग्रोथ की बड़ी कहानी बना रह सकता है। आदित्य केराड़ा, आज तक।

0: कार खरीदने वाला हर ग्राहक एक ही सवाल पूछता है, माइलेज कितना मिलेगा और जेब पर कितना बोझ पड़ेगा। आने वाले समय में ये सवाल ऑटो कंपनियों के लिए भी सबसे जरूरी होने वाला है। वजह है सरकार के नए फ्यूल एफिशिएंसी नियम जो कार बाजार की तस्वीर बदल सकते हैं। सरकार ने कॉरपोरेट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी नॉर्म्स यानी CAFE 3 को नोटिफाई कर दिया है। ये नियम 1 अप्रैल 2027 से लागू होंगे और 2032 तक प्रभावी रहेंगे। इन नए नियमों को 2032 तक फेज वाइज सख्त तरीके से लागू किया जाएगा। इनके जरिए 5 साल में फ्यूल एफिशिएंसी में करीब 16.7% सुधार का लक्ष्य है और इसके लिए कंपनियों को पूरे बेड़े की औसत खपत कम करनी होगी। इन नियमों का असर किसी एक मॉडल पर नहीं, कंपनी की कुल गाड़ियों के औसत फ्यूल कंजम्पशन पर पड़ेगा। इसलिए कंपनियां अपनी पूरी रणनीति पर दोबारा काम कर सकती हैं। नए नियमों में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को खास जगह दी गई है। यही वजह है कि आने वाले वर्षों में ग्राहकों को ज्यादा किफायती ईवी देखने को मिल सकती है। नियमों के मुताबिक एक बैटरी ईवी को कैलकुलेशन में 3 गाड़ियों के बराबर वेटेज दी गई है। ऐसे में ज्यादा ईवी बिक्री से कंपनियों को नियम पूरा करने में मदद मिलेगी। वहीं एंट्री लेवल और किफायती ईवी लॉन्च पर भी फोकस बढ़ सकता है और हाइब्रिड गाड़ियों को भी अतिरिक्त क्रेडिट मिलेगा। इंडस्ट्री का मानना है कि ज्यादा बिक्री वाली किफायती ईवी कंपनियों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। इससे इलेक्ट्रिक कारों की रेंज बढ़ाने और नए मॉडल लाने पर जोर बढ़ सकता है। दूसरी तरफ बड़ी एसयूवी और ज्यादा ईंधन खपत वाली पेट्रोल डीजल गाड़ियों पर दबाव बढ़ सकता है। ऐसे में कंपनियां प्राइसिंग और मॉडल मिक्स बदल सकती हैं। कहीं बेहतर माइलेज वाली तकनीक पर निवेश बढ़ सकता है और ग्राहकों को ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट विकल्प मिल सकते हैं। जानकारों का मानना है कि कंपनियां नियमों को पूरा करने के लिए कुछ ज्यादा उत्सर्जन वाली गाड़ियों की कीमतों और पोर्टफोलियो में बदलाव कर सकती हैं। हालांकि कौन सी गाड़ी कितनी महंगी या सस्ती होगी, इसका फैसला कंपनियां अपने स्तर पर करेंगी। कुल मिलाकर नए नियमों का मकसद पेट्रोल और डीजल की खपत कम करना है, प्रदूषण घटाना और साफ तकनीक वाली गाड़ियों को बढ़ावा देना है। इसका असर अगले कुछ साल में कार बाजार में दिख सकता है, जहां ग्राहकों के सामने इलेक्ट्रिक और ज्यादा माइलेज वाली गाड़ियों के विकल्प बढ़ते नजर आ सकते हैं। आज तक ब्यूरो।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

दिल्ली में प्रदर्शन, सीसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्षी सांसदों का हल्ला बोल, दिल्ली चुनाव आयोग के बाहर विरोध में आम आदमी पार्टी भी होगी शामिल। दिल्ली में धरना प्रदर्शन के बाद हिरासत में छूटते ही राहुल गांधी का बड़ा हमला, बोले हिसाब होगा, एक भी देशद्रोही बख्शा नहीं जाएगा। बीजेपी का पलटवार, राहुल को लॉन्च करने की विफल कोशिश। पीएम मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे, प्रधानमंत्री आज दिल्ली में विकसित भारत संकल्प सभा कार्यक्रम को करेंगे संबोधित, सेवा संकल्प अभियान के तहत देश भर में कई कार्यक्रम।

आदित्य ठाकरे बोले घमंड में है सरकार, सीएम का आरोप, सियासी एजेंडे के लिए छात्रों को ढाल बनाने की कोशिश। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित बने भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख, 2028 तक कार्यकाल, कारगिल जंग समेत कई अहम ऑपरेशन में रहे शामिल।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे उन बच्चों की जो बचपन से निकल करके किशोरावस्था में तीन एज में प्रवेश कर रहे हैं। बढ़ती उम्र में बच्चों पर किन ग्रहों का प्रभाव होता है और उनकी समस्याएं क्या होती हैं, आज इस विषय पर बात करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना विशेष है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग।

2026 दिन बुधवार, तिथि है आश्विन कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि, रात के 11:16 तक। नक्षत्र है मघा नक्षत्र, रात के 9:40 तक। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय दोपहर 12:00 से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं बच्चों की बढ़ती उम्र में किन ग्रहों का प्रभाव होता है और उनके जीवन में किस तरह की समस्या आती है। सबसे पहले जानते हैं कि किशोरावस्था में 3 एज में किन ग्रहों का प्रभाव होता है। 12 वर्ष की उम्र के बाद सामान्यतः बच्चों पर बुध का प्रभाव होता है 12 साल से लेकर के 24 वर्ष तक। ये बच्चों को युवावस्था तक ले जाता है। किशोरावस्था का ग्रह बुध है। बुध की वजह से 12 साल से लेकर 24 साल की उम्र में बच्चों की सोच, उनकी वाणी और उनके शरीर में काफी बदलाव होते हैं और किशोरावस्था में बच्चों के अंदर काफी अच्छी और बुरी आदतें आ जाती हैं। शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो बच्चों के अंदर अच्छी आदतें आती हैं और अगर अशुभ ग्रह का प्रभाव हो तो बच्चा बिगड़ता है, बच्चा भटकता है। 12 साल से लेकर के 18 साल तक की उम्र में बच्चों के जीवन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। 12 साल से लेकर 18 साल तक बुध का प्रचंड प्रभाव होता है और इस समय में बच्चे का मन और शरीर बड़ी तेजी से बदलता है, जिस पर माता पिता को ध्यान बनाए रखना चाहिए। बच्चों पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जा रहे हैं तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, शिक्षा प्रतियोगिता में लाभ होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, भगवान गणेश की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा।
वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में लापरवाही ना करें, वाद विवाद से बचाव करें, हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। मिथुन राशि, धन लाभ के उत्तम योग हैं, नए काम की शुरुआत हो सकती है, पारिवारिक समस्या हल होगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। अब तीन एज में किशोरावस्था में किन ग्रहों के प्रभाव से बच्चों के अंदर किस तरह की आदतें आती हैं वो भी जानते हैं। अगर सूर्य का प्रभाव हो बच्चे के ऊपर तो बच्चा तेज होता है, तेजस्वी होता है, चीजों को आसानी से समझता है, पढ़ने में व्यवहार में चीजों को समझ जाता है।

बच्चों के बिगड़ने की संभावना कम होती है। चंद्रमा का अगर किशोरावस्था में प्रभाव हो तो बच्चा बहुत ज्यादा चंचल होता है, पढ़ाई में दिक्कतें पैदा करता है, एक जगह एकाग्र नहीं होता, उसके मन में दिल दिमाग में भटकाव बना रहता है। अगर बच्चे के ऊपर मंगल का प्रभाव हो तो बच्चा उद्दंड होता है, क्रोधी होता है, उपद्रव करता है। ऐसा बच्चा माता पिता की बात नहीं मानता, माता पिता से जबान लड़ाता है, क्रोध करता है, झगड़े करता है, अक्सर उसको चोट चपेट लगती रहती है। अगर किशोरावस्था में बुध का ही प्रभाव हो बच्चे पर तो बच्चा बहुत चैतन्य रहता है, बहुत अलर्ट रहता है। ऐसा बच्चा सामान्यतः बुद्धिमान होता है और चीजों को जल्दी समझता है। किशोरावस्था में जिन बच्चों पर बुध का प्रभाव होता है वो अक्सर स्पोर्ट्स में, खेल कूद में काफी तरक्की करते हैं और ज्यादातर जो स्पोर्ट्स का करियर बनाते हैं उनका झुकाव भी लगभग इसी उम्र से आरंभ हो जाता है। बाकी ग्रहों के प्रभाव को भी समझेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल।

समस्या हल होगी, महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा, किसी मित्र की सहायता मिलेगी। गणेश जी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, पारिवारिक समस्या हल होगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल।

धन खर्च बढ़ा रहेगा, संतान पक्ष पर ध्यान बनाए रखें, हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिख करके

कर दें bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न आस्था ने हमें लिखा है, नासिक महाराष्ट्र से लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 8 मई 1993, सुबह के 9:51 नासिक महाराष्ट्र। ये कह रही हैं कि अभी मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ, मेरी नौकरी चल रही है और नौकरी बदलने का अवसर आ रहा है मेरा, मैं नौकरी बदलने की कोशिश कर रही हूँ, तो क्या आगे भी मुझे वर्क फ्रॉम होम मिल पाएगा या ऑफिस जाना पड़ेगा। आस्था, आपकी कुंडली के हिसाब से अभी नौकरी बदलने का उचित समय नहीं है, अप्रैल 2027 तक नौकरी बदलने का प्रयास ना करें। अप्रैल 27 के बाद अगर आप नौकरी बदलें तो आपको पुनः वर्क फ्रॉम होम मिल जाएगा और पुनः स्थितियां आपके लिए फेवरेबल हो जाएंगी। फिलहाल रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और सुबह शाम एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि जो बाकी ग्रह हैं उनका प्रभाव अगर बच्चे के ऊपर किशोरावस्था में हो तो बच्चे के अंदर कैसी आदतें आती हैं। अगर बृहस्पति का प्रभाव किशोरावस्था में बच्चे के ऊपर आ जाए तो बच्चा धार्मिक होने लगता है, संस्कार के मामले में और गुणों के मामले में उत्तम होता है। सूर्य को जल चढ़ाना, हनुमान चालीसा पढ़ना, मंदिर में दर्शन करना, बड़ों का सम्मान करना, ये जो संस्कार वाली प्रबलता है ये बच्चे के अंदर आनी शुरू हो जाती है। अगर किशोरावस्था में शुक्र का प्रभाव हो तो बच्चे को सजने सवरने का बड़ा शौक होता है, अपने बालों पर, कपड़ों पर, जूतों पर ज्यादा ध्यान देता है। आकर्षण और प्रेम आदि के मामले में पड़ जाता है। 3 एज से ही लव अफेयर आदि शुरू हो जाते हैं, ऐसा देखा गया है। ऐसे बच्चे गलत आकर्षण में पड़ते हैं और पढ़ाई और संस्कार में अपना नुकसान करते हैं। अगर 3 एज में किशोरावस्था में शनि का प्रभाव हो तो बच्चे की शिक्षा में बाधा आती है, बच्चे के एजुकेशन में दिक्कत जरूर आती है। और शनि का प्रभाव होने से बच्चे को चीजों को पाने और समझने में संघर्ष करना पड़ता है, ऐसा देखा गया है कि बच्चे को मेहनत जरूरत से ज्यादा ये शनि करवा देता है। अगर किशोरावस्था में राहु का प्रभाव हो तो ये प्रभाव सबसे बुरा होता है, बच्चा काफी बिगड़ जाता है। गलत खान पान और संगति के चक्कर में जीवन नष्ट हो जाता है। गलत खान पान, गलत संगति, नशे के चक्कर में पड़ना, बुरी आदतें पालना, पढ़ाई से भागना, ये सब जो कुसंगति है, खराब आदत है, वो तब आती है जब 3 एज में बच्चे के ऊपर राहु का प्रभाव आ जाता है। चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है
और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, किसी यात्रा पर जा सकते हैं, धन और उपहार का लाभ मिलेगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। राशि, करियर में व्यस्तता बनी रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, चोट चपेट से बचाव करें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब अगर आपका बच्चा किशोरावस्था में है तो क्या उपाय करें, किन बातों का ध्यान रखें कि बच्चा भटके नहीं, सही रास्ते पर चलता रहे। सबसे पहला काम, अपने बच्चे को सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करना सिखाइए कि आपका बच्चा स्कूल जाने के पहले या कॉलेज जाने के पहले सूर्य देव को जल अर्पित करे। बच्चे को गायत्री मंत्र सिखाइए और सुबह या शाम किसी भी समय आपका बच्चा 27 बार या कम से कम 9 बार सुबह शाम गायत्री मंत्र का जप करे। बच्चे को रोज सुबह तुलसी का पत्ता खिलाइए ब्रश करने के बाद। और टीन एज में, किशोरावस्था में, बच्चे के ब्रेन बुद्धि विकास के लिए, बड़ी सफलता पाने के लिए सलाह लेकर बच्चे को पीला पुखराज या पन्ना, इसमें से एक रत्न धारण करवाइएगा। और बच्चे को कॉस्मेटिक्स और सुगंध का प्रयोग कम से कम करवाइएगा। और अगर बच्चा सुगंध लगाना चाहता है या चाहती है तो चंदन के सुगंध का प्रयोग करवाना अच्छा होगा। और बच्चे को सप्ताह में एक बार मंदिर यानी धर्म स्थान पर ले जा करके दर्शन करवाइएगा, इससे काफी फर्क पड़ेगा। तो अगर आप ये उपाय बच्चे से करवाएं और इन बातों में बच्चे का ध्यान रखें तो बच्चा किशोरावस्था में भटकेगा नहीं और पर्याप्त उन्नति कर पाएगा।
कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन कितना विशेष है और आज के दिन कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल।

रखें, मानसिक चिंताएं हो सकती हैं, धन के मैनेजमेंट पर ध्यान दें, हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद।

कर ही काम करें, गणेश जी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी।

दबाव कम होगा, करियर में सुधार होगा, यात्रा पर जा सकते हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा फिरोजी। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं।

के बाद बहुत सारे नियमों और सावधानियों का पालन करना चाहिए। क्या ऐसा है? देखिए, तुलसी की जो माला है जिसको आप गले में धारण करते हैं वो अत्यंत पवित्र माला है, साक्षात देवी का स्वरूप मानी जाती है। तो तुलसी की माला गले में धारण करें, मांस मदिरा प्याज लहसुन का सेवन नहीं करेंगे, झूठ बोलने से बचेंगे और अपवित्र व्यवहार नहीं करेंगे। रात में सोते समय माला अपने गले से निकाल दें और अगले दिन सुबह स्नान करने के बाद माला अपने गले में धारण करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 2, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। नंबर 3, काम का बोझ बढ़ा रहेगा। नंबर 4, लाभकारी यात्रा के योग हैं। नंबर 5, धन लाभ के योग हैं। नंबर 6, संपत्ति का लाभ हो सकता है। नंबर 7, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 8, करियर में नए अवसर मिलेंगे। और नंबर 9, दुर्घटनाओं से सावधान रहें। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है, इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में गणेश जी की आरती करिएगा। ऐसा करने से आपके तमाम रुके हुए काम पूरे होंगे। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो हरी धनिया खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है तो हरी सौंफ खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास इलाज या चिकित्सा के लिए जाना है तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन भूमि भवन, तो हरा रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा।

सिंह राशि वालों के लिए हर कार्य में सफलता मिलेगी, चिंताएं और तनाव दूर होंगे। आज का दिन मंगलमय होगा। तुला राशि वालों के लिए धन का लाभ होगा, चिंताएं समाप्त होंगी। आज सावधान रहना होगा। मकर राशि वालों को सेहत बिगड़ सकती है, चिंताएं बढ़ सकती हैं। अब जान लेते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन क्या करें क्या ना करें। आज द्वादशी तिथि है, इसके स्वामी भगवान विष्णु हैं और द्वादशी तिथि को यशोबला कहा जाता है। बुधवार की द्वादशी बड़ी शुभ मानी जाती है, इसलिए आज शुभ और नया कार्य आप बाकी चीजों को देख करके कर सकते हैं। और आज नया कपड़ा अगर आप पहनते हैं, नवीन वस्त्र अगर आप धारण करते हैं, तो आपके लिए बेहतर होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

आज भी एसआईआर के खिलाफ इंडिया ब्लॉक का हल्ला बोल जारी। दिल्ली इलेक्शन कमीशन कार्यालय के बाहर जुटेंगे विपक्षी दल। सीसी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग। कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएम, आरजेडी, एनसीपी और आरएसपी समेत कई दल होंगे शामिल। एसआईआर प्रक्रिया रद्द करने और मतदाता सूची में पारदर्शिता की मांग। आज विपक्ष के प्रदर्शन में शामिल होगी आम आदमी पार्टी। विधायक सौरभ भारद्वाज ने दी जानकारी। कल रात आकाशवाणी में धरने पर बैठे राहुल को पुलिस ने जबरन हटाया। प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के कई नेता रहे मौजूद। धरना प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी समेत कई कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लिया गया। कुछ ही घंटों बाद किंग्सवे कैंप थाने से राहुल, प्रियंका गांधी को रिहा किया गया। किंग्सवे कैंप से निकलते ही केंद्र सरकार पर बरसे राहुल गांधी। बोले, एक भी देशद्रोही को बख्शा नहीं जाएगा। राहुल गांधी का सरकार के खिलाफ पोस्ट लिखा। लोकतंत्र के गद्दारों को बचाने के लिए बचे कुचे लोकतंत्र को घसीटा गया। राहुल गांधी के धरने पर बीजेपी का पलटवार। आरोप लगाते हुए कहा, राहुल गांधी चुनाव आयोग से मिलना ही नहीं चाह रहे थे। राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। कहा, राहुल का झूठ बेनकाब हो गया। विपक्ष के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा। राहुल के धरने पर बीजेपी का हमला। कहा, उनकी सियासी लॉन्चिंग लगातार हो रही है फेल। 300 सांसदों के साथ की झूठ की बात। कांग्रेस के 300 सांसदों के दावे पर बीजेपी का पलटवार। कहा, दावा गलत। कांग्रेस के बड़े वकील चेहरे कहां गायब थे। विपक्षी मार्च के बाद हाई वोल्टेज ड्रामा। सीईसी से मुलाकात की मांग के साथ धरने पर बैठे थे राहुल, प्रियंका। विपक्षी मार्च और धरने पर चुनाव आयोग की सफाई। कहा, नहीं मांगा गया मीटिंग का टाइम। संसद भवन नेक्सी में बैठक के प्रस्ताव पर भी जताई आपत्ति। विपक्षी सांसदों के मार्च पर दिल्ली पुलिस का बयान। कहा, प्रदर्शन की अनुमति के लिए कोई भी आवेदन नहीं मिला। बैरिगेड तोड़ने और बीएनएसएस धारा 163 के उल्लंघन का आरोप। बिहार में आज एसआईआर के खिलाफ आरजेडी का प्रदर्शन। सभी प्रखंडों में विपक्ष का आक्रोश मार्च। कल जिला मुख्यालयों पर देंगे धरना। पीएम मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे। आज दिल्ली में विकसित भारत संकल्प सभा को करेंगे संबोधित। दिल्ली में आज सेवा ज्योति कार्यक्रम। दिल्ली बीजेपी के आयोजन में करीब 5000 लोगों के शामिल होने की संभावना। 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के सीएम पद से शुरू हुआ था पीएम मोदी का राजनीतिक सफर। बीजेपी सेवा संकल्प अभियान के तहत मना रही है अवसर। वडनगर से वाराणसी तक बीजेपी के खास आयोजन। पीएम मोदी के 25 साल के सार्वजनिक जीवन पर सेवा संकल्प अभियान में गुजरात सीएम से प्रधानमंत्री तक के सफर को किया गया चिन्हित। वडनगर से काशी तक जन्मभूमि से कर्मभूमि बाइक यात्रा। सेवा संकल्प अभियान के तहत निकली यात्रा आज वाराणसी में होगी समाप्त। पीएम मोदी के 25 साल के नेतृत्व पर केंद्रीय कैबिनेट का प्रस्ताव। राष्ट्र प्रथम नागरिक प्रथम की नीति को सराहा। छोटे कारोबारियों के लिए मोदी सरकार का गिफ्ट। 10,000 करोड़ के निवेश का ऐलान। एसएमई ग्रोथ फंड बढ़ाने पर भी जोर। आज से 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर नितिन नवीन। सेवा संकल्प यात्रा में शामिल लोगों का करेंगे स्वागत। आज गुरुग्राम में सेवा ज्योति यात्रा कार्यक्रम। मुख्य अतिथि होंगे अमित शाह। हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी करेंगे अध्यक्षता। ग्रेटर नोएडा में आयोजित एक्सपो मार्ट में कार्यक्रम में आज जेपी नड्डा होंगे शामिल। विकसित भारत संकल्प सभा में लेंगे हिस्सा। आज आरबीआई एमपीसी रेपो रेट पर सुनाएगी फैसला आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा। दोपहर 12 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। जीएसटी काउंसिल की 57वीं बैठक कल तक के लिए टली। जरूरी वजहों से एक दिन टली बैठक। रजिस्ट्रेशन रिटर्न और रिफंड सिस्टम में बदलाव की संभावना। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित बने भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख। 31 अक्टूबर को आईएएफ प्रमुख का संभालेंगे कार्यभार। कारगिल जंग में रहे शाम। आज से दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 10वां संस्करण। कल पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। स्केल विदाउट बाउंड्रीज थीम पर 7 से 10 अक्टूबर तक चलेगा मेगा इवेंट। पंजाब सीएम भगवंत मान के कैंप ऑफिस और ओएसडी के घर सीबीआई की छापेमारी। हाईकोर्ट के निर्देश पर भ्रष्टाचार मामले में एफआईआर। 8 ठिकानों पर रहे। पंजाब में सीएम मान के ओएसडी राजवीर गुम्मन के पैतृक गांव में सीबीआई रेड के दौरान जश्न। लोगों ने गाड़ियों पर बरसाए गुलाब के फूल। ढोल बजाकर किया स्वागत। पंजाब सीबीआई रेड पर बढ़ा सियासी घमासान। मान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। हाईकोर्ट के आदेश को दी गई चुनौती। बिना राज्य की सहमति हस्तक्षेप का लगाया आरोप। सीबीआई रेड पर सीएम भगवंत मान का बीजेपी पर हमला। बोले, पंजाब चुनाव की तैयारी शुरू। सरकार और मुझे बदनाम करने के लिए ईडी सीबीआई का इस्तेमाल। चुनाव से 2 महीने पहले सीएमओ पर सीबीआई रेड को लेकर आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर हमला। कहा, ईडी सीबीआई के सहारे पंजाब में चुनाव लड़ना चाहती है बीजेपी। ईडी ने चैलेंजर किंग महमूद भगाड़ के खिलाफ 157 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में तीसरी सप्लीमेंट्री शिकायत दाखिल की। रोहतास में सीएम सम्राट चौधरी ने 177 योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय ने खगोल प्रयोगशाला का किया उद्घाटन। दिशा सालियान केस में पिता सतीश सालियान फिर से पहुंचे बॉम्बे हाईकोर्ट। किसी को आरोपी ना मानने वाली शर्त हटाने की मांग। महाराष्ट्र के नांदेड़ समेत कई गांव में जल संकट। मराठवाड़ा विदर्भ सीमा पर सूखी पैनगंगा नदी और 100 से ज्यादा गांव में पानी की किल्लत। ग्रामीणों ने बचाव की मांग की।
जालना में सूखे की भयावह तस्वीर आई सामने, ड्रोन कैमरे में कैद हुआ नजारा, पानी की एक बूंद भी नहीं। लखनऊ के कैसरबाग इलाके में अवैध हुक्का बार का भांडाफोड़, 42 लोगों को हिरासत में लिया गया, 3 संचालक फरार। यूपी में मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का महिलाओं बेटियों को बड़ा लाभ, जन्म से लेकर उच्च शिक्षा तक मिलने वाली 25,000 की राशि से मिल रही आर्थिक मदद। कैप्टन स्मिथ की तबीयत में तेजी से हो रहा है सुधार, कैप्टन के परिवार से संपर्क में भारतीय दूतावास। अमेरिका में पायलट स्मिथ मजार को सम्मानित करने का प्रस्ताव किया गया पारित, कांग्रेस के प्रस्ताव में किसी व्यक्ति का नाम शामिल किया जाना बड़ी बात। चमोली बद्रीनाथ में बदला मौसम, 11 अक्टूबर तक बारिश का पूर्वानुमान, ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के आसार। पश्चिम बंगाल में जोर शोर से जारी है शक्ति पर्व की तैयारियां, पुरुलिया में बनाया जा रहा है विशाल भंडार। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत को एक बार फिर से बड़ी उपलब्धि, HAL कोरापुट में 2000वें एयरो इंजन का रक्षा मंत्री ने किया शुभारंभ। रक्षा मंत्री बोले, भारत अब केवल रक्षा उपकरणों का उपभोक्ता नहीं है, निर्माता और निर्यातक बनने की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ रहा। दिल्ली में सर्दियों के प्रदूषण से निपटने की तैयारी तेज, MCT की 6,127 किलोमीटर सड़कों पर निगरानी, 46 हॉटस्पॉट पर खास नजर, 4,00,000 से ज्यादा पौधे लगाएगी सरकार। उधम सिंह नगर में रोडवेज ड्राइवर से मारपीट का वीडियो वायरल, 3 आरोपी गिरफ्तार। लखनऊ में बाइक सवार युवक ने राइफल से कुत्ते को मारी गोली, मौके पर हुई मौत। बागेश्वर में बोलेरो गाड़ी ने स्कूटी को मारी टक्कर, 2 युवक गंभीर रूप से घायल, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। लुधियाना में ट्रैक्टर ने स्कूटी को मारी टक्कर, हादसे में 14 साल की हैंडबॉल खिलाड़ी की मौत हुई, सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। देहरादून में ट्रक और पुलिस वैन में टक्कर, IRB के 4 जवान और 2 बाइक सवार घायल। करनाल में प्राइवेट स्कूल की मिनी वैन को ट्रक ने पीछे से मारी टक्कर, हादसे में 8 बच्चे घायल। ग्रेटर नोएडा में स्लीपर बस में लगी भीषण आग, धू धू कर जली पूरी बस, बस से सभी सवारियों को उतारा गया नीचे। सूरत से कानपुर जा रही लग्जरी बस में हादसे का शिकार, ओवरब्रिज पर अधर में लटकी। वहीं नागपुर में 17 साल की बेटी ने अपने ही 45 साल के पिता की कर दी हत्या, लकड़ी की बैट से हमला कर उतारा मौत के घाट। ओडिशा के बरगढ़ में तेज रफ्तार बोलेरो ने स्कूटर को मारी भीषण टक्कर, महिला की मौत हुई, सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। देवघर में चोरों ने पूरा ATM ही उड़ा लिया, फिल्मी अंदाज में वारदात, मशीन कटाकर ले गए बदमाश और पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हुआ। देहरादून में ट्रिपल मर्डर से सनसनी, लूट के इरादे से घर में घुसे बदमाशों ने दंपति और नौकरानी को मार डाला। भावनगर में 2 गाड़ियों की भयंकर टक्कर, हादसे में 7 लोगों की हुई मौत। बिजनौर में एक कारखाने में गैस सिलेंडर लीक होने की वजह से लगी भयंकर आग, एक साथ हुए कई धमाके, गोदाम में रखा करीब 10,00,000 का सामान खाक। गुरुग्राम में हनी ट्रैप का बड़ा पर्दाफाश, प्यार के जाल में फंसाकर युवक से 90,00,000 ऐंठने वाली MBA पास युवती गिरफ्तार। पुणे में लोनावला में प्रॉपर्टी विवाद बना हत्या की वजह, 83 साल के दादा पर 31 साल के पोते की हत्या का आरोप। वहीं चेन्नई में नशे में महिला यात्री ने मचाया हंगामा, यात्रियों से मारपीट का वीडियो तेजी से वायरल। उधम सिंह नगर में युवती को बंधक बनाकर किया गया दुष्कर्म, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर शुरू की जांच। इंदौर में उज्जैन रोड पर सरकारी बस में लगी भीषण आग, कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री ने नई बस लिंक सेवाएं चालू की थी। रुद्रप्रयाग में अगस्त यमुनी खेल मैदान में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, हेलीकॉप्टर में 6 लोग सवार थे, सभी सुरक्षित। इंदौर में कचरा कलेक्शन वाली गाड़ी ने बच्ची को कुचला, घटना सीसीटीवी में कैद। रतलाम में नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी अतिथि शिक्षक को ग्रामीणों ने पेड़ से बांधकर पीटा, वीडियो हुआ वायरल। कटक के SCB मेडिकल कॉलेज में पानी की टंकी से कूदा युवक, हालत गंभीर। पालघर में एक कार ने लगातार 4 से 5 वाहनों को मारी टक्कर, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। रामगढ़ की चिटपुल पालू घाटी में अनियंत्रित होकर मछली लदा ट्रक पलटा, चालक घायल, मछलियां बिखरी। बालोद एसिड अटैक केस में आरोपियों को कोर्ट ले जाते समय भारी हंगामा, लोगों ने फांसी की मांग की, पुलिस सुरक्षा में हेलमेट पहनाकर भेजा जेल। लखनऊ में बाढ़ का कहर, 6 दोस्तों को बचाने के प्रयास में 19 साल के एक युवक की डूबकर मौत हुई। BCCI ने पुरुष चयन समिति में एक पद के लिए मांगे आवेदन, 14 अक्टूबर तक कर सकते हैं अप्लाई। टीम इंडिया की लगातार 10वीं T20 जीत, वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया।

0: सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ
1: एक हिंट तो देते।
2: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
3: तेरा प्यार प्यार प्यार उल्टा बार सर, एक बार दो तीन थमका लगाने पर।
4: मेरे पास एक आइडिया है।
3: क्या?
4: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है,
5: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिला पर स्टेज नहीं हिलता,
6: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
7: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
5: कौन सी बनानी है?
8: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा। अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया।
9: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद, लायन कश्मीर हनी।
8: असली शहद, असली स्वाद।
10: सर गैसो फास्ट की ग्रोथ तो चेक कीजिए।
11: गैसो फास्ट 27%,
10: इनो 9.2%।
12: गड़बड़ है।
13: गैसो फास्ट वाले जीरे का जादू चला रहे, इसीलिए इनके चाहने वाले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे। गैसो फास्ट, इंडिया की एसिडिटी का असली इंडियन सॉल्यूशन।
14: इतने पेमेंट ऐप्स पर सेफ कौन सा?
15: तो स्विच टू बीम, एकदम सेफ और भरोसेमंद, रिवॉर्ड्स भी मिलते रहते हैं। पाओ 40 रुपए का कैशबैक 40 रुपए से ज्यादा की पहली पेमेंट पर। भीम ऐप से करो पे।
16: इट्स अ माय वे।
17: और वही कहाँ गए थे घूमने?
18: जीके मैक्स।
19: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
18: जेके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
19: जेके वॉल मैक्स
18: बेस्ट पेंट,
19: जेके मैक्स।
18: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
20: माँ के पैरों की धूल माथे पर ले, मैं परिंदा खुले आसमान जहाँ जीत रू सारा।
21: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
22: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
21: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायबिटीज जूस।
23: In association with
24: Punjab National Bank, भरोसे का प्रतीक।
23: विमल बोलो जुबां केसरी, हिंट एक हिंट तो देते।
25: मुंबई में आदिवासी छात्रों के आंदोलन पर सियासी पारा चढ़ गया है। ये आदिवासी छात्र नासिक से मुंबई तक पैदल मार्च करके आए, लेकिन ये लोग जैसे ही मुंबई पहुंचने वाले थे, पुलिस ने इन्हें हिरासत में ले लिया। कांग्रेस का आरोप है कि पुलिस ने आदिवासी छात्र छात्राओं को मुंबई में कांग्रेस मुख्यालय से हिरासत में लिया।
26: छात्रों की गूंज प्रोग्राम में।
25: अब कांग्रेस आदिवासी छात्रों के आंदोलन के मुद्दे को सियासी रूप से भुनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। राहुल गांधी ने वीडियो संदेश जारी कर फडणवीस सरकार की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए।
26: छात्रों की गूंज प्रोग्राम में मैं अलग अलग स्टूडेंट ग्रुप से मिला था, जो आदिवासी स्टूडेंट्स हैं उनसे मिला, उनसे बातचीत की, और जो एमपीएससी के प्रोटेस्टर्स हैं उनसे भी मिले था, उनसे भी बातचीत की। देखिए इनकी जो मांगे हैं ये लेजिटिमेट हैं। ऐप के माध्यम से भी एमपीएससी स्टूडेंट्स ने मुझे कांटेक्ट किया था, और मैं दोनों स्टूडेंट्स को आश्वासन देना चाहता हूँ कि हम आपके साथ हैं, घबराइए मत, आपकी मांग पूरी होंगी। सरकार से मैं कहना चाहता हूँ आप जो करना चाहते हैं करिए, ये जो आपके खिलाफ प्रोटेस्ट चल रही हैं एमपीएससी की आदिवासियों की, ये रुकने वाली नहीं है। इनकी मांगे जल्दी से जल्दी आप पूरे कीजिए, क्योंकि ये रुकने वाले युवा नहीं।
25: आदिवासी छात्रों ने बताया कि सरकार की अनदेखी की वजह से आंदोलन के दौरान कई छात्रों की मौत हो चुकी है। इधर मुंबई पुलिस ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि तिलक भवन से किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया।
0: अब कांग्रेस लीडर्स जो है आरोप लगा रहे हैं कि सरकारें बदलती रहेगी लेकिन पॉलिटिकल ऑफिस के अंदर घुसकर लोगों को डिटेन करने का जो मुंबई पुलिस ने शुरुआत की है वो आने वाले समय में पॉलिटिक्स के लिए ठीक बात नहीं है। जयराम रमेश और बाकी सारे नेता जो है इस पर एक तरह से सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी जो है आदिवासी स्टूडेंट्स को कांग्रेस के महाराष्ट्र हेडक्वार्टर से डिटेन करने पे पैदा हो चुकी है। कैमरा पर्सन मंदा चौहान के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक।

0: presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ
1: एक हिंट तो देते।
2: तेरा प्यार प्यार प्यार उल्टा बार सर एक बार दो तीन थमका लगाने पर।
3: मेरे पास एक आइडिया है।
2: क्या?
3: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है,
4: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिला, पर स्टेज नहीं हिलता,
3: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
5: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
4: कौन सी बनानी है?
6: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
7: सर गैसो फास्ट की ग्रोथ तो चेक कीजिए। गैसो फास्ट 27%, इनो 9.2%।
8: गड़बड़ है।
9: आहा, गैसो फास्ट वाले जीरे का जादू चला रहे, इसीलिए इनके चाहने वाले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। गैसो फास्ट, इंडिया की एसिडिटी का असली इंडियन सॉल्यूशन।
10: और वही कहाँ गए थे घूमने?
11: जीके मैक्स।
12: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
11: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
12: जेके वॉल मैक्स
11: बेस्ट पेंट,
12: जेके मैक्स।
11: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।

0: यूपी के चुनावी मौसम में दलित वोटों के लिए हर दल के तरकश में अलग लगती है, और इसी में से एक तीर बीजेपी ने अब यूपी में आजमाया है, जो दलित सियासत में प्रतीकों के तौर पर इस्तेमाल होते आ रहे हैं। सीएम योगी ने ऐसा ही एक ऐलान यूपी में किया, जहां भदोही का नाम संत रविदास के नाम पर किया गया है।
1: कालीन उद्योग के लिए जाना जाने वाला भदोही जनपद आने वाले समय में मध्यकालीन संत जिन्होंने अपनी साधना के माध्यम से समाज को जोड़ने का काम किया था, ऐसे सदगुरु रविदास जी महाराज के नाम पर भदोही जाना जाएगा।
0: भदोही नहीं, नामकरण की बात हो तो कन्नौज मेडिकल कॉलेज का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर बहाल किया गया है। वहीं अनुपूरक बजट में डॉक्टर अंबेडकर मूर्ति विकास योजना के लिए 407 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत अंबेडकर, संत रविदास, संत कबीर, ज्योतिबा फुले और महर्षि वाल्मीकि के प्रतिमाओं के संरक्षण, सौंदर्यीकरण और सुरक्षा पर काम होगा। बीजेपी कहती है कि अखिलेश यादव की सरकार ने दलित विरोधी सोच के कारण जिन महापुरुषों के नाम पर रखे गए जिलों, संस्थानों के नाम बदल डाले थे, उनका पुनर्नामकरण करके बीजेपी सम्मान दे रही है।
2: पूर्व में भी भदोही का नाम संत रविदास नगर था, किंतु अखिलेश यादव की दलित विरोधी सोच के नाते से उन्होंने संत रविदास नगर समेत उत्तर प्रदेश के कई जिलों के नाम बदले थे। आज उसको सही किया गया है।
3: समाजवादी पार्टी समाज में न किसी वर्ग को अपनी जागीर न वोट बैंक समझती है। वो सभी वर्गों को अपना साथी, सहयोगी और समाजवादी पार्टी के परिवार का हिस्सा समझती है।
0: मतलब ये कि दलितों को रिझाने के लिए दाव चलाए जाने लगे हैं। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।

0: यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन पर गदर मची है। कहा जा रहा था कि कांग्रेस 150 सीटें चाहती है, लेकिन कांग्रेस अब इससे आगे की बात कर रही है।
1: इसने किया 150 का, मैंने तो 200 की बात की थी। मैं शुरू से कह रहा हूँ, बराबर का सम्मान और बराबर की इज्जत, बराबर का हिस्सा।
0: लेकिन राजेंद्र पाल गौतम को समाजवादी पार्टी के नेता दो टूक जवाब देते हैं।
2: मैं ये कहता हूँ, उनको 50 सीट देना भी बहुत बड़ी बात होगी, उनको देखना चाहिए। दो तुम्हारे विधायक हैं, पिछली बार तुमने लड़के देख लिए, क्या इससे तुम्हें सबक नहीं मिलता?
0: अखिलेश यादव पहले ही कह चुके हैं कि जीत ही सीट का आधार है।
3: जीत ही आधार है, जीत ही सीट का आधार है।
0: और जीत बोले तो आखिरी चुनाव यानी 2024 लोकसभा में मेरी जीत, और वो जीत कुछ ऐसी थी कि 80 में 37 सीटें समाजवादी पार्टी जीती और 6 कांग्रेस को मिली थी। इसे विधानसभा के अनुपात में बांटा जाए तो 37 लोकसभा के हिसाब से अखिलेश के हिस्से 347 सीटें बनती हैं और कांग्रेस के हिस्से 56। लेकिन कांग्रेस की हसरतें 56 से 200 तक पहुंच चुकी हैं और हौसला बढ़ता ही जा रहा है। अब कांग्रेस ने उन्हीं इमरान मसूद को कांग्रेस का कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है, जो लगातार समाजवादी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे हैं और 403 सीटों पर लड़ने की चेतावनी देते रहते हैं। पॉलिटिकल मैसेजिंग के तौर पर कांग्रेस ने अपने पत्ते सामने रख दिए हैं। अब बारी समाजवादी पार्टी की ओर से फैसला लेने की है, और वो कांग्रेस की सीटों वाली शर्तों के साथ विधानसभा चुनाव में गठबंधन करना चाहती है या बीजेपी को हराने के मिशन के साथ। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

तक सत्ता के केंद्र में मोदी के 25 साल पूरे। वडनगर से वाराणसी तक सेवा संकल्प कार्यक्रमों की गूंज। दिल्ली में विकसित भारत संकल्प सभा, पीएम मोदी का संबोधन। जापान के पीएम ने दी बधाई। 11 कुमार के खिलाफ हल्ला बोल पर राहुल गांधी और बीजेपी आमने सामने। नेता विपक्ष ने कहा एक भी देशद्रोही बख्शा नहीं जाएगा। बीजेपी बोली राहुल को रीलॉन्च करने की नाकाम कोशिश। एसआईआर के खिलाफ आज फिर से इंडिया ब्लॉक का दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन। सीसी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफिस का घेराव। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, लेफ्ट समेत विपक्षी दल होंगे प्रदर्शन में शामिल। फ्रांस की राजधानी पेरिस में शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ सड़कों पर उतरे हजारों प्रदर्शनकारी। पुलिस ने बरसाई लाठियां, दागे आंसू गैस के गोले। नाबालिग समेत कई प्रदर्शनकारी हुए घायल। ब्लैक सी में रूस के सोची बंदरगाह के पास तेल टैंकर में आग के बाद आसमान में छाया काले धुएं का गुबार। 23 भारतीयों को रेस्क्यू किया गया। रूसी सूत्रों का दावा आग की वजह अभी साफ नहीं।

0: स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। एक बार फिर से खास बुलेटिन सुपर 8 में आप सभी को अगले आधे घंटे तक तमाम अहम खबरें बताएंगे। शुरुआत करेंगे इंडिया ब्लॉक के प्रदर्शन से और आज विपक्षी मोर्चा की पूरी खबर आपको बताएंगे। विपक्ष के आरोपों पर कैसे सियासी घमासान मचा हुआ है ये भी डिटेल के साथ आपको बताएंगे। तो वहीं राहुल गांधी के देशद्रोही वाले बयान पर जारी सियासत की तस्वीर भी दिखाएंगे। साथ ही बीजेपी ने कैसे राहुल पर निशाना साधा इसका भी जिक्र करेंगे और प्रधानमंत्री मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे होने की खबर पर भी करेंगे बात। महाराष्ट्र में छात्रों के प्रदर्शन पर कैसे सियासत हो रही है इसका जिक्र भी करेंगे। साथ ही जिक्र करेंगे पंजाब में सीबीआई की कार्रवाई पर तेज सियासत की और यह भी बताएंगे कि काला सागर में कैसे टैंकर में भीषण आग लग गई। तो आज एक बार फिर से विपक्षी दल चुनाव आयोग और एसआईआर के मुद्दे पर बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन की तैयारी हो चुकी है और दिल्ली में इंडिया ब्लॉक के कई दल चुनाव आयोग के कार्यालय के बाहर संयुक्त रूप से विरोध प्रदर्शन करेंगे। इसमें कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएम, आरजेडी, एनसीपी और आरएसपी समेत कई विपक्षी दल शामिल होंगे। आम आदमी पार्टी ने भी आज विपक्ष के हल्ला बोल में शामिल होने का ऐलान किया है। तो वहीं विपक्षी दल विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की प्रक्रिया और मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं। विपक्ष एसआईआर को वापस लेने, मतदाता सूची के पुनरीक्षण में पारदर्शिता बरतने और साथ ही मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहा है। इन्हीं मांगों को लेकर जम्मू में इंडिया ब्लॉक सेव द वोट रैली आयोजित करने वाली है। वहीं बिहार के सभी प्रखंड मुख्यालयों में आरजेडी आक्रोश मार्च निकालने जा रही है। तो आज भी इसी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन होने वाला है दिल्ली में और कल भी तस्वीरें निकलकर सामने आई जब प्रदर्शन की शुरुआत हुई जहां पर राहुल गांधी मौजूद थे, प्रियंका गांधी। तो दिल्ली में विपक्ष का प्रदर्शन आज भी होने वाला है एसआईआर के खिलाफ। चुनाव आयोग कार्यालय के बाहर इंडिया ब्लॉक के दल वहां पर जुटेंगे और कांग्रेस, सीपीआईएम, सीपीआई, एनसीपी, आरजेडी और आरएसपी इसमें शामिल होंगे। वहीं आम आदमी पार्टी प्रदर्शन में हिस्सा लेने वाली है ये कहा गया है। आज से आम आदमी पार्टी भी इसमें शामिल होगी। तो दिल्ली में कथित वोट चोरी के आरोपों को लेकर विपक्षी दल आज दिल्ली सीईओ कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करेंगे। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज समेत पार्टी के अन्य नेता कांग्रेस, वाम दलों और दिल्ली के अन्य विपक्षी दलों के साथ प्रदर्शन में शामिल होंगे। सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि आम आदमी पार्टी वोट चोरी के खिलाफ दिल्ली सीईओ कार्यालय के बाहर दोपहर 1 बजे विरोध प्रदर्शन में शामिल होगी। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों से बड़ी संख्या में प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की है। तो दोपहर 1 बजे आम आदमी पार्टी शामिल होगी। सौरभ भारद्वाज समेत आम आदमी पार्टी नेता उसमें मौजूद रहेंगे। कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएम, आरजेडी, एनसीपी और आरएसपी के साथ अब आम आदमी पार्टी भी इस प्रदर्शन में शामिल होने वाली है। सौरभ भारद्वाज ने इसकी जानकारी दी। आम आदमी पार्टी ने कार्यकर्ताओं और समर्थकों के उनसे जुड़ने की भी अपील की है और पोस्ट करते हुए ये अपील की गई है। एसआईआर के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है और आज भी ये प्रदर्शन में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जुटने वाले हैं और ऐसे में 6 अक्टूबर को आपको याद होगा दिल्ली में चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष के प्रदर्शन को लेकर दिन भर घटनाक्रम चलता रहा यानी कि कल। वहीं राहुल गांधी समेत कई विपक्षी सांसदों ने संसद से चुनाव आयोग की ओर मार्च किया। क्या क्या हुआ, सुबह 10:30 बजे इस मार्च की शुरुआत हुई थी। राहुल, प्रियंका गांधी समेत कई विपक्षी नेता इस मार्च में शामिल हुए। सीईसी के इस्तीफे की मांग ने जोर पकड़ा और उस बीच प्रदर्शनकारियों को रोका भी गया। करीब 260 लोगों को हिरासत में लिया गया। संसद से चुनाव आयोग की ओर मार्च की कोशिश की गई। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को हिरासत में भी लिया गया। पुलिस ने बैरिगेटिंग लगाई हुई थी, बैरिगेटिंग को तोड़ने की कोशिश की गई। बाद में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अन्य नेता आकाशवाणी भवन में धरने पर बैठ गए और दूसरी बैरिगेटिंग के पास प्रदर्शनकारियों को भी रोका गया। तो कल प्रदर्शन की तस्वीरें तमाम सामने आई, उसमें क्या कुछ हुआ ये आप समझ रहे हैं। बीएनएस की धारा 163 के तहत प्रतिबंध का हवाला दिया गया और साथ ही करीब 260 प्रदर्शनकारी उस बीच हिरासत में भी लिए गए। प्रदर्शनकारियों को अलग अलग थानों में वहां पर ले जाया भी गया, हालांकि बाद में सभी को रिहा भी कर दिया गया है। राहुल, प्रियंका समेत कई नेता दिखे और आकाशवाणी भवन के पास विपक्षी नेताओं ने धरना दिया। ऐसे में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाया और राहुल, प्रियंका समेत कई नेताओं को हिरासत में भी लिया गया, हालांकि कुछ देर बाद उनको रिहा भी कर दिया गया है। नेताओं को किंग्सवे कैंप पुलिस स्टेशन के पास ले जाया गया, बाद में सभी नेताओं को रिहा किया गया। तो बीजेपी ने भी विपक्ष के आरोपों का पलटवार किया है। जिस तरीके से विपक्ष आरोप लगा रहा है, और अपना पक्ष रख रहा है, सवाल पूछ रहा है। ऐसे में चुनाव आयोग ने बैठक को लेकर अपना पक्ष रखा, जबकि बीजेपी ने भी विपक्ष के आरोपों पर पलटवार किया है। तो कल विपक्षी दलों का मार्च देखने को मिला और आज इस मार्च में आम आदमी पार्टी भी शामिल होने वाली है। विपक्ष के प्रदर्शन और चुनाव आयोग से मुलाकात को लेकर अब चुनाव आयोग ने अपना पक्ष रखा है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक शाम 4 बजे तक किसी भी राजनीतिक दल ने बैठक के लिए औपचारिक अनुरोध नहीं किया था। आयोग का कहना है कि करीब 4 बजे दिल्ली पुलिस से राहुल गांधी के नेतृत्व में 240 सांसदों के प्रतिनिधि मंडल के मिलने की जानकारी मिली। सांसदों ने संसद भवन एनेक्सी में बैठक का प्रस्ताव रखा, लेकिन आयोग ने कहा कि तय प्रोटोकॉल के मुताबिक बैठक इलेक्शन कमीशन परिसर में होनी चाहिए और आयोग ने अपना वरिष्ठ अधिकारी भेजकर ज्ञापन लेने का प्रस्ताव भी दिया, जिसे कि सांसदों ने स्वीकार नहीं किया है। इलेक्शन कमीशन का क्या बयान सामने आया? शाम 4 बजे तक बैठक की मांग नहीं मानी गई है, ये उन्होंने कहा। 4 बजे दिल्ली पुलिस से जानकारी सामने आई है, जिसके बाद ये पता चला है। विपक्ष की डेलीगेशन संघ इलेक्शन कमीशन ने मांग की है, जो 240 सांसदों के डेलीगेशन की जानकारी सामने आई है। तो संसद एनेक्सी में बैठक का प्रस्ताव रखा गया है। विपक्ष की मीटिंग की मांग को लेकर इलेक्शन कमीशन का ये बयान सामने आया है। उन्होंने बैठक की जगह पर आपत्ति जताते हुए ये कहा है और आयोग परिसर में बैठक कराने की मांग इलेक्शन कमीशन की तरफ से की गई है। तो देखिए, इलेक्शन कमीशन ने वरिष्ठ अधिकारियों को भेजने का प्रस्ताव भी इस बीच दिया है और सांसदों ने प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया है, ये बात सामने आई है। तो इलेक्शन कमीशन का बयान सामने जो आया है, उन्होंने कहा है कि अभी तक जो जगह है जहां पर यह बैठक होने वाली है उसे बदला नहीं गया है और राहुल गांधी की ओर से चुनाव आयोग को लेकर लगाए गए आरोपों पर अब बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी ने राहुल गांधी के दावों का खंडन करते हुए कहा है कि चुनाव आयोग में फैसले सामूहिक रूप से लिए जाते हैं और इलेक्शन कमीशन की ओर से बैठक को लेकर जारी स्पष्टीकरण का हवाला देते हुए बीजेपी ने कहा है कि शाम 4 बजे तक बैठक के लिए कोई भी औपचारिक अनुरोध नहीं मिला था। बीजेपी ने राहुल गांधी के आरोपों पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग के पक्ष को सामने रखा है और इस पर इलेक्शन कमीशन के बाद बीजेपी ने पलटवार किया है। वहीं राहुल गांधी ने दिल्ली में हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस के साथ हुई अपनी बातचीत का एक वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया और इस वीडियो में राहुल गांधी और पुलिस अधिकारियों के बीच बातचीत सुनाई दे रही है। राहुल गांधी ने इस पोस्ट के जरिए प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई और अपनी बातचीत को सामने रखा। देखिए,
1: इसको मत छुओ झंडे को।
2: हम कह रहे हैं डंडा तुम्हारे सर में लग जाएगा,
1: कुछ नहीं लगेगा।
2: डंडा लग गया तो मैंने
1: क्या प्रॉब्लम है?
3: नहीं सर, प्लीज सर
1: बैठा हूँ भाई।
3: नहीं नहीं,
1: वहाँ से हटा दिया आपने, यहाँ आ गया हूँ। अब यहाँ से कहाँ ले जाओगे? बस सिर्फ घर जा सकता हूँ और देश में कहीं और नहीं जा सकता। तो कोई और जगह बताओ जहाँ बैठ सकता हूँ। घर तो मैं राजनीतिक आदमी हूँ, घर से बाहर बैठना चाहता हूँ। एक जगह बता दो, कहीं भी। यू आर आस्किंग एन MP टू डू समथिंग दैट इज रॉन्ग। इट इज माई राइट टू सिट। इट इज माई राइट। आई एम इवन टेलिंग यू, गिव मी अ प्लेस टू सिट एनीवेयर एक्सेप्ट माई हाउस एंड यू आर सेइंग नो। आप क्या सोचते हो कि राजनेताओं को घर बैठना चाहिए?
3: नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं सर।
4: अगर इस देश का कोई भी व्यक्ति किसी चीज के लिए कुछ प्रोटेस्ट करना चाहता है तो उसे इजाजत है। ये नॉर्मल प्रोसीजर है इस देश के लोकतंत्र का, इस देश के संविधान का, ये नॉर्मल प्रोसीजर है।
0: देखिए, राहुल गांधी ने प्रदर्शन के बाद सोशल मीडिया पर तीखी

0: राजनीतिक विवाद के बीच सामने आया है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा पाठ के लिए मंदिर पहुंच गए हैं, क्योंकि 25 साल पूरे हो चुके हैं और ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मत्था टेकते हुए नजर आ रहे हैं। 25 साल पूरे होने पर जगह जगह पर कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं और ये मंदिर से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। दिल्ली के सरोजनी नगर के सिद्धि विनायक मंदिर की ये तस्वीरें हैं। सुबह सवेरे वो वहां पर पहुंचे और वहां पर मत्था टेका गया, पूजा अर्चना की जा रही है। 25 साल पीएम मोदी के सार्वजनिक जीवन के पूरे हो चुके हैं। 2001 से 2026 तक का ये कार्यकाल और जिम्मेदारी उन्होंने जो संभाली और उसके बाद पीएम तक का सफर उन्होंने जिस तरीके से तय किया। और ये दिल्ली के मंदिर से तस्वीरें देख रहे हैं आप विनायक मंदिर की, और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। वडनगर से वाराणसी तक बीजेपी ने तमाम कार्यक्रम का आयोजन आज इस बीच किया हुआ है 25 साल पूरे होने पर। और अभी ये सीधी तस्वीरें दिल्ली के विनायक मंदिर की, जहाँ पर पीएम मोदी मौजूद हैं। तो 25 सालों का सफर, 2001 में गुजरात के सीएम बने, 2014 में प्रधानमंत्री बने और 2026 अभी पीएम हैं। और पीएम मोदी की विकसित भारत संकल्प सभा जो कि दिल्ली में भी हो रही है, वाराणसी में भी है और इसका आयोजन जगह जगह पर किया जा रहा है 25 साल पूरे होने पर। ये दिल्ली के विनायक मंदिर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरफ पीएम मोदी के 25 साल पर देश भर में खास कार्यक्रम हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये सीधी तस्वीरें दिल्ली के विनायक मंदिर की सुबह सवेरे सामने आई। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना कर रहे हैं, उन्होंने मत्था टेका और वाराणसी में भी कई कार्यक्रम हो रहे हैं, गुरुग्राम में सेवा ज्योति यात्रा का कार्यक्रम हो रहा है। हिमांशु मिश्रा जुड़ गए हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए। हिमांशु, आज देखिए 25 साल और ऐसे में देश भर में कई खास कार्यक्रम आज देखने को मिलने वाले हैं। और
1: बिल्कुल
0: जी जी हिमांशु,
1: देखिए बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के जो 25 साल का प्रशासनिक अनुभव और काम है कि आज 25 साल पूरे हुए, उसको लेकर देश भर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो दिल्ली के श्री विनायक मंदिर पहुंचे हैं और उन्होंने देश के 140 करोड़ लोगों के लिए जो है वो पूजा अर्चना की है और सबके स्वास्थ्य के लिए कामना की है। और यही कारण है कि अगर आप देखें 25 साल का उनका जो एक लंबा अनुभव है, आज उसके पूरे अगर कहें तो सिल्वर जुबली जो है वो बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक गवर्नमेंट क्षण है। और इसीलिए ना सिर्फ प्रधानमंत्री जो है पूजा अर्चना कर रहे हैं, बल्कि देश भर में भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता अलग अलग जगहों पे अलग अलग कार्यक्रम जो है आज कर रहे हैं। और ये सेवा सप्ताह के रूप में था, जिसकी कई बार जो है वो गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने इन कार्यक्रमों की समीक्षा भी की थी। और आज ये जो है भारतीय जनता पार्टी का जो पिछले एक महीने से ये कार्यक्रम चल रहा था उसका समापन भी होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 25 वर्ष उन्होंने, चाहे वो मुख्यमंत्री के तौर पर हो का कार्यकाल रहा हो या प्रधानमंत्री के तौर पर कार्यकाल रहा हो, उनका जो कार्यकाल रहा है उसमें उन्होंने देश सेवा के लिए ही आगे आके काम किए हैं। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ही गौरव वाला क्षण है कि लगातार उनके प्रधानमंत्री का, चाहे वो मुख्यमंत्री के तौर पर कार्यकाल रहा हो प्रधानमंत्री के तौर पर कार्यकाल रहा, उन सबको लेकर चाहे वो अलग अलग प्रदर्शन हो, ब्लड डोनेशन कैंप्स हो या अन्य कार्यक्रम जो है पार्टी की तरफ से जो है आयोजित किए जा रहे हों, दिल्ली के अंदर भी कार्यक्रम आयोजित हो, प्रधानमंत्री खुद जो है श्री विनायक मंदिर पहुंचे हैं, देश की 140 करोड़ लोगों के लिए उन्होंने पूजा अर्चना की है। विधि विधान के साथ वो हमेशा पूजा अर्चना करते हैं और देश के लिए उन्होंने दुआएं मांगी है कि देश और आगे बढ़े।
0: हिमांशु, देश भर में तो कार्यक्रम आज इसी को लेकर हो रहे हैं, लेकिन अगर हम प्रधानमंत्री के सीएम से पीएम बनने के सफर तक नजर डालें तो कितनी चुनौतियां उस बीच सामने आई हिमांशु?
1: देखिए बिल्कुल बहुत सी चुनौतियों का उन्होंने सामना किया है, पार्टी के अंदर भी और पार्टी के बाहर भी। ठीक है, जब मुख्यमंत्री बन के गए थे तो गुजरात में कोई बहुत बड़ा उनको लेकर बहुत अच्छी वो नहीं थी, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे अपने काम को संभाला और जो उनके विरोधी थे उनको भी अपने साथ लाने की कोशिश की और एक तरीके से अपनी सरकार की छाप छोड़ी। चाहे पार्टी के अंदर बहुत से लोग उनके विरोधी रहे, लेकिन उन्होंने अपने काम में किसी भी तरीके से कोई कमी नहीं छोड़ी और पार्टी के संगठन और सरकार को हमेशा मजबूत रखा हुआ। 2000

0: दो के विधानसभा चुनाव जीते, 2007 का विधानसभा चुनाव जीता, 2012 का विधानसभा चुनाव उन्होंने वहां पर लगातार जीता, एक रिकॉर्ड बनाया। और आज भी गुजरात में भारतीय जनता पार्टी जो है वो अजय है, पिछले 27 वर्षों से ज्यादा समय से जो है वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और 2013 में 13 सितंबर को प्रधानमंत्री पद का उनको भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार घोषित किया था। और 2014 में जिस विक्ट्री की शायद भारतीय जनता पार्टी ने कभी कल्पना नहीं की थी कि पूर्ण बहुमत की सरकार, 283 सांसद चुनकर भारतीय जनता पार्टी के सबसे पूर्ण बहुमत की सरकार चलाई एनडीए के गठबंधन के साथियों के साथ। 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक और बड़ी जीत जो है वो 2014 से बड़ी जीत जो है वो दर्ज कराई। 303 सांसद भारतीय जनता पार्टी के जीते थे, ये एक अभूतपूर्व जो है भारतीय जनता पार्टी की विजय थी। और 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन की सरकार बनाई और भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में तीसरी बार उन्होंने सरकार बनाई थी। भारतीय जनता पार्टी को 240 लोकसभा सांसद जीते थे। तो ये एक तरीके से प्रधानमंत्री की अचीवमेंट्स भी रही है, उन्होंने विद इन पार्टी और पार्टी के बाहर भी कई ऐसी चीजों का सामना किया है, लेकिन वो कभी अपने कामकाज में या कभी उन्होंने छुट्टी ली हो अपने काम से, ऐसा कभी देखने को नहीं मिला।
1: हिमांशु, सीएम के बाद जो पीएम बनने के सफर में एक बात जो भारत को देश भर में जो पहचान दिलाई है और वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम उनका हमेशा जिक्र होता है, देश भर में भारत को एक पहचान दिलाई है।
0: देखिए बिल्कुल ग्लोबल स्तर पर अगर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को एक बड़ी पहचान दिलाई है। आप देखिए लगभग 25 के करीब जो है जो देश है उन्होंने अपने सबसे हाईएस्ट सिविलियन जो अवार्ड्स है जयंती अवार्ड्स है उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नवाजा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से लगातार भारतीय विदेश नीति जो है मजबूत हुई है और भारत जो है एक तरीके से एक ग्लोबल शक्ति के रूप में जो है वो उभर कर सामने आया है।
1: ठीक है मानसी, आपके पास लौटेंगे, आप जानकारी और दीजिएगा। तो तस्वीरें आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के सरोजनी नगर के श्री विनायक मंदिर में है और यहाँ पर आरती हो रही है। हिमांशु, आप बता रहे थे देश भर में जो आज भारत को पहचान दी है और उसमें पीएम मोदी का भी काफी एक जिक्र रहा है। तो हिमांशु के पास लौटेंगे, ये तस्वीरें आप देखिए, जनसेवा के 25 साल पूरे हो चुके हैं और सीएम से पीएम बनने का सफर जिस तरीके से पीएम मोदी ने तय किया है, काफी कठिनाइयों का सामना भी उस बीच करना पड़ा और आज देश भर में कई कार्यक्रम पीएम मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे होने पर हो रहे हैं। और ये दो तस्वीरें, सीधी तस्वीरें दिल्ली के श्री विनायक मंदिर की आप देख रहे हैं। सुबह सवेरे वो वहां पर पहुंचे और यहाँ पूजा अर्चना की, विधि विधान से पूजा की गई है और मत्था उन्होंने टेका श्री विनायक मंदिर में। देश भर में बीजेपी के आज कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, दिल्ली, वडनगर, वाराणसी तक। प्रधानमंत्री ने श्री तो जनसेवा के 25 साल पूरे होने पर श्री विनायक मंदिर में पीएम मोदी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। उन्होंने यहां पर पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की है। 2001 से 2026 तक जिम्मेदारी उन्होंने संभाली और आज उसी को लेकर जगह जगह पर कार्यक्रम किए जाएंगे। बीजेपी की तरफ से तमाम तैयारी की गई है। 25 साल पूरे होने पर एक तरीके से जश्न का माहौल है बीजेपी के लिए और जगह जगह पर उसको लेकर आयोजन किए जा रहे हैं। वडनगर से वाराणसी तक आयोजन किए गए हैं और सुबह सवेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के सरोजनी नगर के श्री विनायक मंदिर पहुंचते हैं और यहां पर पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना उन्होंने की है, आशीर्वाद उन्होंने लिया। श्री विनायक मंदिर में ये पीएम मोदी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। जनसेवा के 25 साल पूरे हो चुके हैं। 2001 जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीएम बने और उसके बाद आज वो प्रधानमंत्री हैं और देश भर में उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई है। संजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। संजय जी, अगर हम पीएम मोदी के सफर पर, जो 25 साल के सफर पर नजर डालें तो कैसे उसके बारे में आप बताएंगे और जिस मंदिर में अभी वो पहुंचे हुए हैं, पूजा अर्चना चल रही है, उस मंदिर की क्या खासियत है?
2: इस मंदिर की खासियत तो श्री विनायक का मंदिर है और किसी भी कार्य की शुरुआत को श्री गणेश करना कहते हैं, और प्रधानमंत्री ने अपने श्री गणेश की 25वीं वर्षगांठ यहाँ मनाई है और गणपति जी का आशीर्वाद लिया है, और उनका कहना है कि वो देश के सभी जनता, देश के सभी नागरिक, यानी लगभग 140 करोड़ से ज्यादा नागरिकों की ओर से उन्होंने भगवान के प्रति कृतज्ञता अर्पित की है और साथ ही भविष्य के लिए, देश के सुखद और विकसित भविष्य के लिए आशीर्वाद मांगा है, ऐसा पीएमओ का कहना है। और साथ ही प्रधानमंत्री की गणेश जी में काफी श्रद्धा भी है और लिहाजा उन्होंने ऐसी जगह चुनी है जो उत्तर और दक्षिण दोनों का प्रतिनिधित्व करती है। गणपति दोनों जगह पूज्य देवता हैं और इसलिए प्रधानमंत्री ने गणपति जी के यहाँ, और पितृपक्ष चल रहा है जिसमें कि आज इंदिरा एकादशी के बाद अगला दिन द्वादशी का है, तो ये एक पवित्र दिन माना जाता है भारतीय परंपरा में और ज्ञान परंपरा में, तो प्रधानमंत्री ने इसीलिए आज का दिन, ये द्वादशी का दिन है और चुना इसलिए है कि क्योंकि उनके 25 साल सेवा कार्य में पूरे हुए हैं गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में और देश के प्रधानमंत्री के रूप में, और वो भी अविरल लगातार।
1: चलिए ठीक है संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी। चलिए सुपर 8 में नई तस्वीरों के साथ वक्त हो गया, एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाएगा, देखते रहिए आज।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से, इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: मैडी, I need to open a savings account.
3: अरे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोल लो।
2: स्मॉल बैंक?
3: स्मॉल Privilege savings account, Garima savings account, Maxima business, Edge current account, business, Maxima business, Privilege, RD, everything. There's nothing small about them.
2: Okay.
3: Ujjivan, nothing small about us.
4: Sir, GasoFast ki growth to check kijiye. GasoFast 27%, Eno 9.2%.
5: Gadbad hai.
6: Aha, GasoFast wale jeere ka jadoo chala rahe. इसीलिए इनके चाहने वाले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। गैसोफा, इंडिया की एसिडिटी का असली इंडियन सॉल्यूशन।
2: आगे आगे, अरे उधर उधर, करेक्ट
7: करेक्ट, मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
8: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार। सर, एक बार ठुमका लगाने बस।
9: मेरे पास एक आइडिया है।
8: क्या?
9: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा TMT बार से जो बना है,
10: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिला, पर स्टेज नहीं हिलता,
11: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा TMT से बना है।
12: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही TMT बार से बना है।
13: कौन सी बनानी है?
14: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा। अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया।
15: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद, लायन कश्मीर हनी।
14: असली शहद, असली स्वाद।
16: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। Signature Finest Silver Elaichi, a premium product from Dilbar Group.
17: AU Savings Account में मिलते हैं amazing benefits, paperless banking and higher interest. वो भी हर महीने.
18: Money, money, money, money, every month.
19: सोच बदलो और बैंक भी.
5: गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं.
12: गोल्डी लाए हैं Fresh Lock Technology, जो रखे मसालों को हर समय fresh.
7: Love and Care, the world's finest range of rubber pet toys.
9: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर। मेंटर, तरक्की का ऑलराउंडर।
3: माँ के पैरों की धूल माथे पर लगा, परदेश की गलियों में अपने वतन की गीत सुनो।
14: इतने पेमेंट ऐप्स पर सेफ कौन सा?
15: तो स्विच टू बीम, एकदम सेफ और भरोसेमंद। रिवॉर्ड्स भी मिलते रहते हैं, पाओ 40 रुपए का कैशबैक 40 रुपए से ज्यादा की पहली पेमेंट पर। भीम ऐप से करो पे,
1: इट्स द माय वे।

0: in association with
1: Signature Finest Cardamom Seeds.
2: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा.
3: अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल.

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: आ गया सोमवार और आ गए
2: चकमक चाचा।
1: एक कचौड़ी, दो समोसा, चकमक तेरा क्या भरोसा।
3: चकमक चाचा से सीधे चकमक है।
1: अरे नारा है, दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है, महिला लोग एकदम नारा बुझ रहा ना।
3: लेकिन भैया नारा अरे फालतू सब बेकार, एकदम बेकार। अरे होते थे हमारे टाइम।
1: अच्छा
3: सुनाए, जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, जेपी भाई छूटेंगे।
1: अच्छा तो हमारे टाइम वाले सुनिए, दो कुलचा एक बिरयानी, इन नेताओं की खत्म कहानी।
3: अरे जमीन के चकबंदी में, जमीन के चकबंदी में क्या फाइनेंस बंदी में।
1: ठंडी चाय गरम करो चकमक चाचा, शर्म करो।
3: अरे राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर।
1: अरे लाठी गोली खाएंगे, इस्तीफा दे के जाएंगे।
3: अरे सुनो, इस दीपक में तेल नहीं, सरकार चलाना खेल नहीं।
1: अरे लाल फूल, नीला फूल, जंजी नंगे ब्यूटीफुल।
3: अरे बारी बारी सबकी बारी, अब की बारी अटल बिहारी।
1: चाय गरम, दूध गरम, चकमक चाचा भी शर्म
3: है।
1: हाँ,
3: जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है।
1: अरे मेरे सिर में दर्द है, जिसका कारण मर्द है आप जैसा।
4: हम जैसे, इधर आओ।
5: हम जैसे मर्द नहीं होते किसी नारे से ऑफेंड, हम तो भैया करते हैं हर सही मुद्दे को डिफेंड।
1: आई चाचा,

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

में 25 साल पूरे होने पर दिल्ली के श्री विनायक मंदिर पहुंचे पीएम मोदी। वडनगर से वाराणसी तक सेवा संकल्प कार्यक्रमों की गूंज। विकसित भारत संकल्प सभा में आज संबोधन। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हल्ला बोल पर राहुल गांधी और बीजेपी आमने सामने। नेता विपक्ष ने कहा एक भी देशद्रोही बख्शा नहीं जाएगा। बीजेपी बोली राहुल को रिलॉन्च करने की नाकाम कोशिश। एसआईआर के खिलाफ आज फिर से इंडिया ब्लॉक का दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन। सीसी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफिस का घेराव। कांग्रेस आम आदमी पार्टी लेफ्ट समेत विपक्षी दल होंगे प्रदर्शन में शामिल। फ्रांस की राजधानी पेरिस में शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ सड़कों पर उतरे हजारों प्रदर्शनकारी। पुलिस ने बरसाई लाठियां, दागे आंसू गैस के गोले। नाबालिग समेत कई प्रदर्शनकारी घायल। ब्लैक सी में रूस के सोची बंदरगाह के पास तेल टैंकर में आग लगने के बाद आसमान में छाया काले धुएं का गुबार। 23 भारतीयों को रेस्क्यू किया गया। रूसी सूत्रों का दावा आग की वजह अभी साफ नहीं।

पीएम मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे, आज दिल्ली में विकसित भारत संकल्प सभा को करेंगे संबोधित। दिल्ली में श्री विनायक मंदिर में की पूजा अर्चना। दिल्ली में आज सेवा ज्योति कार्यक्रम, दिल्ली बीजेपी के आयोजन में करीब 5000 लोगों को शामिल होने की संभावना। 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के सीएम पद से शुरू हुआ था पीएम मोदी का राजनीतिक सफर, बीजेपी सेवा संकल्प अभियान के तहत मना रही है अवसर। वडनगर से वाराणसी तक बीजेपी के खास आयोजन, पीएम मोदी के 25 साल के सार्वजनिक जीवन पर सेवा संकल्प अभियान में गुजरात सीएम से प्रधानमंत्री तक के सफर को किया गया है चिन्हित। वडनगर से काशी तक जन्मभूमि से कर्मभूमि बाइक यात्रा, सेवा संकल्प अभियान के तहत निकली यात्रा आज वाराणसी में होगी समाप्त। पीएम मोदी के 25 साल के नेतृत्व पर केंद्रीय कैबिनेट का प्रस्ताव, राष्ट्र प्रथम नागरिक प्रथम की नीति को सराहा। छोटे कारोबारियों के लिए मोदी सरकार का गिफ्ट, 10,000 करोड़ के निवेश का ऐलान, एसएमई ग्रोथ फंड बढ़ाने पर भी जोर। आज से 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर नितिन नवीन, सेवा संकल्प यात्रा में शामिल लोगों को करेंगे स्वागत। आज गुरुग्राम में सेवा ज्योति यात्रा कार्यक्रम, मुख्य अतिथि होंगे अमित शाह, हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी करेंगे अध्यक्षता। ग्रेटर नोएडा में आयोजित एक्सपो मार्ट में कार्यक्रम में आज जेपी नड्डा होंगे शामिल, विकसित भारत संकल्प सभा में लेंगे हिस्सा। आज भी एसआईआर के खिलाफ इंडिया ब्लॉक का हल्ला बोल जारी, दिल्ली इलेक्शन कमीशन कार्यालय के बाहर जुटेंगे विपक्षी दल, सीसी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग। कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएम, आरजेडी, एनसीपी और आरएसपी समेत कई दल होंगे शामिल, एसआईआर प्रक्रिया रद्द करने और मतदाता सूची में पारदर्शिता की मांग। आज विपक्ष के प्रदर्शन में शामिल होगी आम आदमी पार्टी विधायक सौरभ भारद्वाज ने दी जानकारी। कल रात आकाशवाणी में धरने पर बैठे राहुल को पुलिस ने जबरन हटाया, प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के कई नेता रहे मौजूद। धरना प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी समेत कई कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लिया गया, कुछ घंटों बाद किंग्सवे कैंप थाने से राहुल प्रियंका गांधी को रिहा किया गया। किंग्सवे कैंप से निकलते ही केंद्र सरकार पर बरसे राहुल गांधी, बोले एक भी देशद्रोही को बख्शा नहीं जाएगा। राहुल गांधी का सरकार के खिलाफ पोस्ट लिखा, लोकतंत्र के गद्दारों को बचाने के लिए बचे कुचे लोकतंत्र को घसीटा गया। वहीं राहुल गांधी के धरने पर बीजेपी का पलटवार, आरोप लगाते हुए कहा राहुल गांधी चुनाव आयोग से मिलना ही नहीं चाह रहे थे। राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार, कहा राहुल का झूठ बेनकाब हो गया, विपक्ष के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा। राहुल के धरने पर बीजेपी का हमला, कहा उनकी सियासी लॉन्चिंग लगातार हो रही है फेल, 300 सांसदों के साथ की झूठ की बात। कांग्रेस के 300 सांसदों के दावे पर बीजेपी का पलटवार, कहा दावा गलत, कांग्रेस के बड़े वकील चेहरे कहां गायब थे। विपक्षी मार्च के बाद हाई वोल्टेज ड्रामा, सीसी से मुलाकात की मांग के साथ धरने पर बैठे थे राहुल प्रियंका। विपक्षी मार्च और धरने पर चुनाव आयोग की सफाई, कहा नहीं मांगा गया मीटिंग का टाइम, संसद भवन एनएक्सी में बैठक के प्रस्ताव पर भी जताई आपत्ति। विपक्षी सांसदों के मार्च पर दिल्ली पुलिस का बयान, कहा प्रदर्शन की अनुमति के लिए कोई भी आवेदन नहीं मिला, बैरिगेड तोड़ने और बीएनएसएस धारा 163 के उल्लंघन का भी आरोप। बिहार में आज एसआईआर के खिलाफ आरजेडी का प्रदर्शन, सभी प्रखंडों में विपक्ष का आक्रोश मार्च, कल जिला मुख्यालयों पर देंगे धरना। आज आरबीआई एमपीसी रेपो रेट पर सुनाएगी फैसला, आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा दोपहर 12 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। जीएसटी काउंसिल की 57वीं बैठक कल तक के लिए टली, जरूरी वजहों से एक दिन के लिए टली बैठक, रजिस्ट्रेशन रिटर्न और रिफंड सिस्टम में बदलाव की संभावना। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित बने भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख, 31 अक्टूबर को आईएएफ प्रमुख का संभालेंगे कार्यभार, कारगिल जंग में रहे शामिल। आज से दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 10वां संस्करण, कल पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन, स्केल विदाउट बाउंड्रीज थीम पर 7 से 10 अक्टूबर तक चलेगा मेगा इवेंट। पंजाब सीएम भगवंत मान के कैंप ऑफिस और ओएसडी के घर सीबीआई की छापेमारी, हाईकोर्ट के निर्देश पर भ्रष्टाचार मामले में एफआईआर, 8 ठिकानों पर रेड। पंजाब में सीएम मान के ओएसडी राजवीर गुमन के पैतृक गांव में सीबीआई रेड के दौरान जश्न, लोगों ने गाड़ियों पर बरसाए गुलाब के फूल, ढोल बजाकर किया स्वागत। पंजाब सीबीआई रेड पर बढ़ा सियासी घमासान, मान सरकार ने एससी का रुख किया, हाईकोर्ट के आदेश को दी चुनौती, बिना राज्य की सहमति हस्तक्षेप का लगाया आरोप। सीबीआई रेड पर सीएम भगवंत मान का बीजेपी पर हमला, बोले पंजाब चुनाव की तैयारी शुरू, सरकार और मुझे बदनाम करने के लिए ईडी सीबीआई का इस्तेमाल। चुनाव से 2 महीने पहले सीएमओ पर सीबीआई रेड को लेकर आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर हमला, कहा ईडी सीबीआई के सहारे पंजाब में चुनाव लड़ना चाहती है बीजेपी। ईडी ने चैलेंजर किंग महमूद बगाड़ के खिलाफ 157 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तीसरी सप्लीमेंट्री शिकायत दाखिल की। रोहतास में सीएम सम्राट चौधरी ने 177 योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय ने खगोल प्रयोगशाला का किया उद्घाटन। दिशा सालियान केस में पिता सतीश सालियान फिर से पहुंचे बॉम्बे हाईकोर्ट, किसी को आरोपी न मानने वाली शर्त हटाने की मांग। महाराष्ट्र के नांदेड़ समेत कई गांवों में जल संकट, मराठवाड़ा विदर्भ सीमा पर सूखी पैनगंगा नदी, 100 से ज्यादा गांवों में पानी की किल्लत, ग्रामीणों ने बचाव की मांग की। जालना में सूखे की भयावह तस्वीर आई सामने, ड्रोन कैमरे में कैद हुआ नजारा, पानी की एक बूंद भी नहीं। लखनऊ के कैसरबाग इलाके में अवैध हुक्का बार का भंडाफोड़, 42 लोगों को हिरासत में लिया गया, 3 संचालक फरार। यूपी में मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का महिलाओं बेटियों को बड़ा लाभ, जन्म से लेकर उच्च शिक्षा तक मिलने वाली 25,000 की राशि से मिल रही आर्थिक मदद। कैप्टन स्मिथ की तबीयत में तेजी से हो रहा है सुधार, कैप्टन के परिवार से संपर्क में भारतीय दूतावास, कैप्टन के लिए दुआ करने वाले सभी लोगों का क्या शुक्रिया।
अमेरिका में पायलट स्मिथ मचार को सम्मानित करने का प्रस्ताव किया गया पारित। कांग्रेस के प्रस्ताव में किसी व्यक्ति का नाम शामिल किया जाना बड़ी बात। चमोली बद्रीनाथ में बदला मौसम, 11 अक्टूबर तक बारिश का पूर्वानुमान, ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के आसार। पश्चिम बंगाल में जोर शोर से जारी है शक्ति पर्व की तैयारियां, पुरुलिया में बनाया जा रहा है विशाल पंडाल। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत को एक और बड़ी उपलब्धि, एचएएल का कोरापुट में 2000वें एयरो इंजन का रक्षा मंत्री ने किया शुभारंभ। रक्षा मंत्री बोले, भारत अब केवल रक्षा उपकरणों का उपभोक्ता नहीं, निर्माता और निर्यातक बनने की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ रहा। दिल्ली में सर्दियों के प्रदूषण से निपटने की तैयारी तेज, एमसीडी की 6127 किलोमीटर सड़कों पर निगरानी, 46 हॉटस्पॉट पर खास नजर, 400,000 से ज्यादा पौधे लगाएगी सरकार। उधम सिंह नगर में रोडवेज ड्राइवर से मारपीट का वीडियो वायरल, 3 आरोपी गिरफ्तार। लखनऊ में बाइक सवार युवक ने राइफल से कुत्ते को मारी गोली, मौके पर मौत। बिहार के आरा में हथियारबंद बदमाशों ने घर के बाहर खड़े प्रॉपर्टी डीलर को मारी गोली, अपहरण मामले में केस वापस लेने पर दबाव बना रहे थे। मथुरा के गुरुकुल में दर्दनाक हादसा, 4 छात्रों की हुई मौत, टैंक सफाई के दौरान निकली जहरीली गैस। राजस्थान के अलवर में जूता फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। मुजफ्फरपुर में नाबालिग से छेड़खानी, ग्रामीणों की मदद से 2 आरोपी गिरफ्तार। महाराष्ट्र के उल्लासनगर में ट्रैफिक जाम का कहर, महिला ने रिक्शा में ही दिया बच्चे को जन्म। बागेश्वर में बोलेरो गाड़ी ने स्कूटी को मारी टक्कर, 2 युवक गंभीर रूप से घायल, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। लुधियाना में ट्रैक्टर ने स्कूटी को मारी टक्कर, हादसे में 14 साल की हैंडबॉल खिलाड़ी की मौत, सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। देहरादून में ट्रक और पुलिस वैन में टक्कर, आईआरबी के 4 जवान और 2 बाइक सवार घायल। करनाल में प्राइवेट स्कूल की मिनी वैन को ट्रक ने पीछे से मारी टक्कर, हादसे में 8 बच्चे घायल। ग्रेटर नोएडा में स्लीपर बस में लगी भीषण आग, धू धू कर जली पूरी बस, बस से सभी सवारियों को उतारा गया नीचे। सूरत से कानपुर जा रही लग्जरी बस में हादसे का शिकार, ओवरब्रिज पर अधर में लटकी। नागपुर में 17 साल की बेटी ने अपने ही 45 साल के पिता की कर दी हत्या, लकड़ी की बैग से हमला कर उतारा मौत के घाट। ओडिशा के बरगढ़ में तेज रफ्तार बोलेरो ने स्कूटर को मारी भीषण टक्कर, महिला की मौत, सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। देवघर में चोरों ने पूरा एटीएम ही उड़ा लिया, फिल्मी अंदाज में वारदात, मशीन काट कर ले गए बदमाश, पूरा मामला सीसीटीवी में कैद। देहरादून में ट्रिपल मर्डर से सनसनी लूट के इरादे से घर में घुसे बदमाशों ने दंपति और नौकरानी को मार डाला। भावनगर में 2 गाड़ियों की भयंकर टक्कर, हादसे में 7 लोगों की हुई मौत। बिजनौर में एक कारखाने में गैस सिलेंडर लीक होने की वजह से लगी भयंकर आग, एक साथ हुए कई धमाके, गोदाम में रखा करीब 10 लाख का सामान खाक। गुरुग्राम में हनी ट्रैप का बड़ा पर्दाफाश, प्यार के जाल में फंसाकर युवक से 90 लाख ऐंठने वाली एमबीए पास युवती गिरफ्तार, रेप केस में फंसाने की दे रही थी धमकी। पुणे में लोनावला में प्रॉपर्टी विवाद बना हत्या की वजह, 83 साल के दादा पर 31 साल के पोते की हत्या का आरोप। चेन्नई में नशे में महिला यात्री ने मचाया हंगामा, यात्रियों से मारपीट का वीडियो वायरल। उधम सिंह नगर में युवती को बंधक बनाकर किया दुष्कर्म, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर शुरू की जांच। इंदौर में उज्जैन रोड पर सरकारी बस में लगी भीषण आग, कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री ने नई बसें लिंक सेवाएं चालू की थी। रुद्रप्रयाग में अगस्त्य मुनि खेल मैदान में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, हेलीकॉप्टर में 6 लोग सवार थे, सभी सुरक्षित। इंदौर में कचरा कलेक्शन वाली गाड़ी ने बच्ची को कुचला, घटना सीसीटीवी में कैद। रतलाम में नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी अतिथि और शिक्षक को ग्रामीणों ने पेड़ से बांधकर पीटा, वीडियो वायरल। बीसीसीआई ने पुरुष चयन समिति में एक पद के लिए मांगे आवेदन, 14 अक्टूबर तक कर सकते हैं अप्लाई। टीम इंडिया की लगातार 10वीं टी20 जीत, वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। कप्तान श्रेयस अय्यर के पहले शतक से जीता भारत, और वहीं उन्होंने 42 बॉल में शतक लगाते हुए 10 चौके और 6 छक्के लगाए। ईशान किशन ने नाबाद 37 रन बनाए, दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए 67 बॉल पर 137 रन की हुई साझेदारी। भारत से डेब्यू कर रहे नमन धीर ने 3 विकेट लिए, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल को 2-2 विकेट मिले।

आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की। ये जानेंगे कि आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है और आज के दिन को बेहतर बनाने के उपाय क्या हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 7 अक्टूबर 2026 दिन बुधवार, तिथि है आश्विन कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि, रात के 11:16 तक। नक्षत्र है मघा नक्षत्र, रात के 9:40 तक। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय दोपहर 12 से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। मेष राशि, शिक्षा प्रतियोगिता में लाभ होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, भगवान गणेश की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में लापरवाही ना करें, वाद विवाद से बचाव करें, हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। मिथुन राशि, धन लाभ के उत्तम योग हैं, नए काम की शुरुआत हो सकती है, पारिवारिक समस्या हल होगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। कर्क राशि, परिवार की समस्या हल होगी, महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा, किसी मित्र की सहायता मिलेगी, गणेश जी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। सिंह राशि,

समस्या हल होगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा।

कन्या राशि स्वास्थ्य का ध्यान रखें, धन खर्च बढ़ा रहेगा, संतान पक्ष पर ध्यान बनाए रखें, हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम।

पर जा सकते हैं, धन और उपहार का लाभ मिलेगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। राशि, करियर में व्यस्तता बनी रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, चोट चपेट से बचाव करें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, मानसिक चिंताएं हो सकती हैं, धन के मैनेजमेंट पर ध्यान दें, हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा

काम पूरे होंगे, धन की प्राप्ति होगी, बड़ों की सलाह लेकर ही काम करें, गणेश जी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आज।

कम होगा, करियर में सुधार होगा, यात्रा पर जा सकते हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा फिरोजी। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: तेरा प्यार प्यार प्यार उल्टा बार सर एक बार दो तीन ठुमका लगाने बस।
3: मेरे पास एक आइडिया है।
2: क्या?
3: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है।
4: एक रॉकस्टार होता है अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है दुनिया हिला पर स्टेज नहीं हिलता
5: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
6: मेरा ना सिंपल है एक लड़की है उसका भाई जेल में है लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
4: कौन सी बनानी है?
7: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
8: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
9: जेके मैक्स वाइप इजी दीवारों के दाग का जवाब सिर्फ जेके मैक्स वाइप इजी।
10: चुनावी गड़बड़ी के आरोप और सीईसी ज्ञानेश कुमार के विरोध के बीच ये विपक्ष के साझा आक्रोश की तस्वीरें हैं। इंडिया गठबंधन के मार्च में विपक्षी एकजुटता दिखी जबरदस्त तनातनी हुई मार्च बढ़ने के साथ साथ पुलिस से तकरार की तस्वीरें भी सामने आई। इंडिया गठबंधन का साझा मार्च संसद के मकर द्वार से निकला। तैयारी थी चुनाव आयोग के दफ्तर की घेराबंदी की। मार्च बढ़ा नेताओं के जुटने का सिलसिला शुरू हुआ और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर सियासी हमले तेज हो गए। इंडिया गठबंधन के मार्च को देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती थी। आकाशवाणी केंद्र के पास मार्च को रोका गया तो राहुल गांधी बैरिकेड पर चढ़ गए। कुछ और विपक्षी सांसद भी इस विरोध में राहुल का साथ देते दिखे। बढ़ती तनातनी के बीच पुलिस ने नेताओं को हिरासत में लेना शुरू कर दिया। राहुल प्रियंका हिरासत में लिए गए। अखिलेश को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया लेकिन उस समय हंगामा और बढ़ गया जब राहुल पुलिस की हिरासत से निकलकर आकाशवाणी केंद्र में चले गए। हंगामा जारी रहा। कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष हमलावर दिखा लेकिन इस मार्च के बीच बड़ा सवाल ये सड़क पर छिड़े इस संग्राम से विपक्ष को हासिल क्या हुआ? क्या विपक्षी एकता के इस मार्च के जरिए चुनावी गड़बड़ी का संदेश सीधे जनता तक जाएगा? क्या विपक्षी एकता से चुनाव आयोग पर दबाव बढ़ेगा? क्या आने वाले दिनों में देश भर में जिस तरह के विरोध प्रदर्शन का प्लान तैयार किया गया इस मार्च से उसे और धार मिलेगी? क्या 1 नवंबर को दिल्ली में होने वाली इंडिया गठबंधन की रैली को इस विरोध प्रदर्शन से और ताकत मिलेगी? इंडिया गठबंधन के दल चुनाव आयोग पर हमलावर है वहीं बीजेपी हर हमलों का जवाब दे रही है। इस मार्च को राहुल गांधी को लॉन्च करने की फिर नाकाम कोशिश बता रही है। चुनाव आयोग पर आरोपों के बीच रण बढ़ता जा रहा है। संग्राम सड़कों पर छिड़ा है। सरकार और विपक्ष के बीच हमले तेज हो रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
11: हम पूछना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी से, आप 13 करोड़ बोलते हैं तो आप 2.8 करोड़ मृतक 1 करोड़ डुप्लीकेट वोटरों को और 6.8 करोड़ शिफ्टेड। चलिए उसमें शिफ्टेड वालों में लोग ये तय कर सकते हैं कि वो किस जगह वोट रखना चाहेंगे, मगर मैं पूछना चाहता हूं ये 2.8 करोड़ डेड और 1 करोड़ डुप्लीकेट, ये भारत की इकोनॉमी को डेड बचाने वाले लोग ये डेड और डुप्लीकेट वोटरों को मताधिकार के साथ कैसे जोड़ रहे हैं? कांग्रेस से स्पष्ट हम पूछना चाहते हैं, वो इस बात का जवाब दे। कांग्रेस पार्टी जो आंतरिक रूप से एक राजतंत्र है जिसने लोकतंत्र का लबादा ओढ़ा हुआ है वह वास्तविक लोकतंत्र को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, इसलिए वह लोकतंत्र के हर स्तंभ के ऊपर पिछले 12 सालों में निराधार निरर्थक अनर्गल आरोप लगा रहे हैं।
12: फॉर्म 6 पर छिड़ा घमासान, सुप्रीम कोर्ट ने कहा फॉर्म 6 में बदलाव को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी मंजूरी। विपक्ष का आरोप ज्ञानेश कुमार ने गैर कानूनी और एक तरफा तरीके से बदला फॉर्म 6। चुनाव आयोग का जवाब, मूल फॉर्म 6 में एक कोमा पूर्ण विराम तक नहीं बदला। फॉर्म 6 पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद इस पर घमासान तेज हो गया है। ज्ञानेश कुमार पर निशाना साधते हुए कल राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, अब ये बात बिना किसी शक के साबित हो चुकी है कि ज्ञानेश कुमार ने गैर कानूनी और एक तरफा तरीके से फॉर्म 6 में बदलाव किया। ये इस बात का एक और सबूत है कि उन्होंने बीजेपी की मदद करने के लिए अपने पद का गलत इस्तेमाल किया। राहुल गांधी के इस पोस्ट पर चुनाव आयोग ने भी एक्स पर फैक्ट चेक जारी किया। चुनाव आयोग ने कहा, बिहार में SIR के लिए 24 जून 2025 को जारी आदेश चुनाव आयोग की सर्वसम्मत मंजूरी से जारी किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 27 मई 2026 के अपने फैसले में इस आदेश को सही ठहराया है। चुनाव आयोग ने 26 सितंबर 2026 के अपने प्रेस नोट नंबर 120 के पॉइंट 13 में कहा है कि SIR के लिए फॉर्म 6 के साथ लगे घोषणा पत्र को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है। चुनाव आयोग के मुताबिक उसने फॉर्म 6 में बदलाव नहीं बस एक पन्ना जोड़ा और उसे सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया। सवाल उठता है कि फिर विवाद कहाँ है? लेकिन क्या फॉर्म 6 में अलग से पन्ना जोड़ने को बदलाव नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो पन्ना जुड़ने से SIR की प्रक्रिया तो प्रभावित हुई। जाहिर है इस मामले पर जब अगली सुनवाई होगी तो तस्वीर और साफ होगी। संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

सीएम से पीएम तक सत्ता के केंद्र में 25 साल पूरे होने पर दिल्ली के श्री विनायक मंदिर पहुंचे मोदी। पीएमओ का संदेश, 140 करोड़ भारतीयों के लिए की प्रार्थना। वडनगर से वाराणसी तक दिन भर सेवा संकल्प कार्यक्रम। राहुल प्रियंका के खिलाफ आकाशवाणी भवन की तरफ से दिल्ली पुलिस को दी गई शिकायत, हो सकता एक्शन। प्रदर्शन के दौरान आध घंटे वहीं बैठे थे कांग्रेस नेता, कल हुए प्रोटेस्ट पर राहुल बीजेपी आमने सामने। एसआर के खिलाफ आज फिर इंडिया ब्लॉक का दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन। सीईसी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर ईसी ऑफिस का घेराव, कांग्रेस आप लेफ्ट समेत विपक्षी दल होंगे प्रदर्शन में शामिल। पेरिस में शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ सड़कों पर उतरे हजारों प्रदर्शनकारी, पुलिस से बरसाई लाठियां, दागे आंसू गैस के गोले, नाबालिग समेत कई प्रदर्शनकारी घायल। और ब्लैक सी में रूस के सोची बंदरगाह के पास तेल टैंकर में आग के बाद आसमान में छाया काले धुएं का गुबार, 23 भारतीयों को रेस्क्यू किया गया, रूसी सूत्रों का दावा, आग की वजह अभी साफ नहीं।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका। घड़ी में 9 बज गए हैं, वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बातम। सुबह का सबसे पहला संपूर्ण न्यूज बुलेटिन लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं खबरें रफ्तार से और विस्तार से। लेकिन सबसे पहले खबरों की झलक के ऊपर एक नजर डाल लेते हैं। जनसेवा में पीएम मोदी के 25 साल, वाराणसी से वडनगर तक बनेगा जश्न। दिल्ली के श्री विनायक मंदिर में पीएम मोदी ने पूजा से की शुरुआत। चुनाव आयोग के खिलाफ आज फिर दिल्ली में इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन। पटना से लेकर जम्मू तक सड़कों पर होगा प्रदर्शन। बात पंजाब की करेंगे, जहां पर सीएम के कैंप ऑफिस से लेकर भगवान मान के ओएसडी के ठिकानों पर हुई है छापेमारी। इस खबर को विस्तार से दिखाएंगे और ठीक आधे घंटे बाद यानी कि सुबह 9:30 बजे 100 शहर 100 खबर बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। किस तरीके से 2001 में आज ही की वो तारीख थी यानी 7 अक्टूबर 2001 जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सीएम पद की शपथ ली थी। आज 7 अक्टूबर 2026 है। सार्वजनिक प्रशासन में पीएम मोदी के 25 साल पूरे हो चुके हैं। बिना रुके, बिना थके, बिना थमे ये सफर जारी है। 2001 से 2014 तक मुख्यमंत्री रहे, फिर 2014 से देश के प्रधानमंत्री रहे। आज जनसेवा में प्रधानमंत्री के 25 साल पूरे होने का देश भर में जश्न मनाया जाएगा। दिन की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने राजधानी दिल्ली के श्री विनायक मंदिर में पूजा अर्चना करके की। हिंदू धर्म में मान्यता है कि शुभ काम की शुरुआत भगवान गणेश की अर्चना से होती है। इसीलिए आज सार्वजनिक प्रशासन 25 साल पूरे होने के उपलक्ष में प्रधानमंत्री ने श्री विनायक मंदिर में पूजा अर्चना की। विनायक भगवान गणेश का ही नाम है और दिल्ली सरोजनी नगर इलाके में ये मंदिर स्थित है, जहां पर आज प्रधानमंत्री सुबह तड़के पहुंचे और यहां पर पूजा से शुरुआत की। उसके बाद उन्होंने प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि आज नई दिल्ली के श्री विनायक मंदिर में पूजा अर्चना करके परिवारजनों की सुख समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की कामना उन्होंने की है। विघ्नहर्ता की कृपा से सबका कल्याण हो, देश निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता रहे। प्रधानमंत्री मोदी के जनसेवा में 25 साल पर कई कार्यक्रम हैं। उनकी जन्मभूमि वडनगर से निकली सेवा संकल्प बाइक यात्रा उनकी कर्मभूमि वाराणसी आज पहुंचेगी। वहीं पर बाइक यात्रा वडनगर पहुंचेगी। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में प्रधानमंत्री विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित भी करेंगे। अब हम आपको प्रधानमंत्री की कर्मभूमि या उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी लिए चलेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट।
1: नरेंद्र दामोदर दास मोदी के कायदा के खातिर भारत में
2: 25 साल पहले 2001 को आज की ही तारीख जब पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी। 7 अक्टूबर 2001 से जनसेवा की जो शुरुआत हुई वो बिना रुके आज भी जारी है।
3: सात अक्टूबर 2001 को गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री के रूप में मोदी जी ने शपथ ली थी और तब से बिना रुके, बिना झुके, बिना डिगे चरेवेति चरेवेति के इस मंत्र के साथ उन्होंने अपनी इस यात्रा को आगे बढ़ाया।
2: गुजरात के मुख्यमंत्री से देश के प्रधानमंत्री तक का सफर और अब सरकार के मुखिया के तौर पर 25 साल पूरे। मोदी भारतीय राजनीति के सबसे लंबे समय तक सरकार का नेतृत्व करने वाले नेताओं में शामिल है।
4: मैं बात करूंगा 25 साल की, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री काल के 25 साल में ये आदमी एक भी दिन की छुट्टी लिए बगैर 25 साल तक अहर्निश देश सेवा में लगा रहा है। गरीबों की सेवा, पिछड़ों की सेवा, दलितों की सेवा, आदिवासियों की सेवा, इस सेवा में उन्होंने अपना पूरा जीवन निभाया है। एक भी दिन ऐसा नहीं गया है जहां 16 घंटे से 18 घंटे लगातार काम काम काम काम करना।
2: गुजरात में 3 लगातार चुनावी जीत के बाद 2014 में मोदी ने राष्ट्रीय राजनीति का रुख किया और प्रधानमंत्री बने। 2019 और 2024 में भी बीजेपी को लोकसभा में सरकार बनाने का जनादेश मिला। मोदी के 25 साल के शासन की कहानी को उनके समर्थक विकास और कल्याणकारी योजनाओं के विस्तार के रूप में देखते हैं। गुजरात में प्रशासनिक सुधारों से लेकर केंद्र में जनधन, उज्ज्वला आवास, स्वच्छ भारत, डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण जैसी पहलुओं तक सरकार ने गरीब और वंचित वर्गों तक सरकारी योजनाओं की पहुंच बढ़ाने पर जोर दिया।
5: सेवा का संदेश सिर्फ कथन से नहीं बल्कि हमारे कार्यों से आगे बढ़ना चाहिए और वो आप सभी मेरे नौजवान साथी, देश के कोने कोने से मोटरसाइकिल पर निकले हुए साथी, आप सबने करके दिखाया है।
2: आज जब जनसेवा के क्षेत्र में पीएम मोदी के 25 साल पूरे हो चुके हैं तो कई कार्यक्रमों के साथ इसका जश्न मनाया जाएगा। पीएम मोदी की जन्मभूमि वड़नगर से उनकी कर्मभूमि वाराणसी के लिए निकली सेवा संकल्प बाइक यात्रा वाराणसी पहुंचेगी तो वाराणसी से निकली बाइक यात्रा वड़नगर पहुंचेगी। इधर दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में पीएम मोदी विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित करेंगे। आज तक ब्यूरो।
0: मेरे दो सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कुमार अभिषेक हमारे साथ सीधे वाराणसी से जुड़ गए हैं, दिल्ली से हमारे साथ हिमांशु जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले कुमार अभिषेक, आपका रुख करते हुए, आज वाराणसी में प्रधानमंत्री किस तरीके से स्वागत करने वाले हैं, वहां पर उनके इस 25 साल के उपलक्ष्य में क्या कार्यक्रम रखा गया?
6: नेहा, देखिए वडनगर से वाराणसी और वाराणसी
7: में किया जा रहा है। और अगर आप देखें तो निश्चित तौर पर वाराणसी कर्म भूमि है। तीन बार यहाँ से सांसद रहे और अभी यहाँ के सांसद हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। बहुत कुछ बदला है वाराणसी में प्रधानमंत्री के यहाँ से लोकसभा जीतने के बाद, यहाँ से सांसद बनने के बाद। लेकिन आज जो कार्यक्रम है, दरअसल इसे आप कह सकती हैं यूथ कनेक्ट सबसे बड़ा, क्योंकि जिस दिन प्रधानमंत्री का जन्मदिन था उस दिन यहाँ से हजारों की तादाद में बाइकर्स वडनगर गए थे और वडनगर से बड़ी तादाद में जो बाइकर्स हैं वो यहाँ पर आज वाराणसी पहुंचे हैं। तो ये जो गुजरात और काशी का ये संगम या कनेक्ट है, ये दिखता है 9:30 बजे तमाम बाइकर्स को अभी सम्मानित किया जाएगा, उनके लिए एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। फिर ये बाइकर्स बड़ी तादाद में, जितने तादाद में आए हैं और कुछ उत्तर प्रदेश से वाराणसी के, ये सबके सब काशी विश्वनाथ मंदिर जाएंगे, वहां दर्शन करेंगे और उसके बाद इनका जो स्वागत है तकरीबन 3:30 बजे बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो करेंगे। और एक बड़ी
0: लौटूंगी, आपके साउंड में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। हिमांशु मेरे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, इंदिरा गांधी स्टेडियम में क्या कार्यक्रम आज प्रधानमंत्री के इस 25 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में रखा गया है?
8: देखिए, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में जो है भारत संकल्प जो है सभा होगी और उसमें खुद प्रधानमंत्री और नितिन नवीन वहां पर संबोधित करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो 25 साल का कार्यकाल रहा है प्रशासनिक, 7 अक्टूबर 2001 को उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और उसके बाद से लगातार वो चाहे मुख्यमंत्री के तौर पर या प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने लगातार देश की सेवा की है और इसी को लेकर आज देश भर के अंदर कई कार्यक्रम है। जैसा कि कुमार अभिषेक भी बता रहे थे कि वाराणसी में जो कार्यक्रम है वो वडनगर से बाइकर्स चले थे वाराणसी के लिए और वाराणसी से वडनगर के लिए। तमाम देश के अलग अलग हिस्सों के अंदर इस तरीके के कार्यक्रम होने वाले हैं। खुद गृह मंत्री जो है वो गुरुग्राम गए हैं जो सेवा संकल्प सभा को वहां पर संबोधित करेंगे। नितिन नवीन दिल्ली के बाद जो है वो वाराणसी जाएंगे। देश के अलग अलग हिस्सों में जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री हैं या वहाँ के मंत्री सांसद, वो अलग अलग तरीके के कार्यक्रम कर रहे हैं इस पूरे उपलक्ष्य में। और पिछले एक महीने से ये पूरा कार्यक्रम जो है वो चल रहा है और इसकी देखरेख खुद गृह मंत्री अमित शाह जो है वो कर रहे हैं, पार्टी के संगठन के स्तर पर भी। लेकिन बड़ी चीज ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ऐसा नेता जो 25 साल से अगर कहें देश और के लिए सेवा कर रहा और पार्टी संगठन को मजबूत करने का काम कर रहा है। 2001 में जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद की वहां कमान संभाली थी तो गुजरात में कई अलग अलग धड़े थे, लेकिन

0: संगठन को और ज्यादा मजबूत किया। 2002, 2007, 2012 में जो है वहां पर विधानसभा चुनाव जीते, तीन लगातार हैट्रिक के बाद जो है 13 सितंबर 2013 को जो है उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया था, और वहां से उनकी प्रधानमंत्री पद के लिए जो है यात्रा शुरू हुई, और जो जाकर जो है 20 मई के बाद वहां शुरू खत्म हुई थी। और पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी एनडीए के सहयोगी के साथ मिलकर, लेकिन 283 सीटें जीती भारतीय जनता पार्टी ने, जिसका अंदाजा शायद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कभी नहीं रहा होगा।
1: ठीक है,
0: उसके बाद 2019 में 303 सीटें और उसके बाद 240। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सर्वमान्य भारतीय जनता
1: ठीक
0: पार्टी
1: है,
0: के
1: बहुत
0: ऐसे
1: बहुत
0: नेता हैं।
1: शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो चुनाव आयोग के खिलाफ इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन चल रहा है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के आकाशवाणी भवन के धरने को लेकर इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। इन दोनों नेताओं समेत कई अज्ञात लोगों के खिलाफ दिल्ली पुलिस को शिकायत मिली है आकाशवाणी भवन की तरफ से। इस शिकायत के मुताबिक कानूनी कार्रवाई दिल्ली पुलिस कर सकती है। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ, क्या डिटेल्स हैं इस शिकायत के अरविंद?
2: देखिए, कल जब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत जो तमाम सांसद हैं वो ईसीआई के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए आकाशवाणी भवन में जबरन घुस गए थे, उसके बाद दोपहर में पहले एक पीसीआर कॉल दिल्ली पुलिस को की गई और उसके बाद शाम को एक आधिकारिक शिकायत आकाशवाणी भवन की तरफ से दिल्ली पुलिस को मिली है, जिसमें ये बताया गया है कि जबरन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तमाम जो सांसद हैं वो आकाशवाणी भवन में घुस गए। तो इस मामले में शिकायत दी गई है और साथ ही साथ ये पुलिस को कहा गया कि इस मामले में ट्रेसपासिंग की एफआईआर दर्ज की जाए। तो फिलहाल जो पुलिस, दिल्ली पुलिस है, वो इस पूरे मामले पर कानूनी कार्रवाई करने पर विचार कर रही है और बहुत मुमकिन है कि इस मामले में कोई एफआईआर भी दिल्ली पुलिस कुछ देर बाद दर्ज कर ले। ये शिकायत मिली है कल, आपने को नेहा मालूम होगा कि किस तरह से हंगामा हुआ था। आकाशवाणी भवन में घुसने की कोशिश की थी राहुल गांधी ने, उसके बाद अंदर वो घुस भी गए थे और घंटों बैठते रहे, हंगामा हुआ था। बाद में देर शाम दिल्ली पुलिस को राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत तमाम सांसदों को हिरासत में लेना पड़ा था और बाद में छोड़ना पड़ा था।
1: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। बात मुख्य चुनाव आयोग के खिलाफ इंडिया गठबंधन के मोर्चे की, क्योंकि आज दिल्ली में फिर विपक्षी दल एक बड़ा प्रदर्शन करने वाला है। दिल्ली में इंडिया ब्लॉक के कई दल चुनाव आयोग के कार्यालय के बाहर संयुक्त रूप से विरोध प्रदर्शन करेंगे। इसमें कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, लेफ्ट के दल आरजेडी, एनसीपी, शरद पवार समेत कई विपक्षी दल शामिल होने के आसार हैं। दिल्ली के अलावा बिहार और जम्मू के भी आज इंडिया गठबंधन का वहां प्रदर्शन है। विपक्ष एसआर को वापस लेने और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहा है।
3: दिल्ली के आकाशवाणी भवन में करीब 8 घंटे के धरने के बाद कुछ इस अंदाज में दिल्ली पुलिस ने लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी को हिरासत में लेकर धरने से उठा दिया। राहुल उठाकर बस में बिठाए गए, उनके साथ सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस के कई नेताओं को भी हिरासत में ले लिया गया। अलग अलग गाड़ियों में जब राहुल और प्रियंका समेत कांग्रेस नेताओं को किंग्सवे कैंप थाने लाया गया, बड़ी तादाद में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां विरोध प्रदर्शन करने के लिए पहुंच गए।
4: तो हम लोग किंग्सवे कैंप पुलिस स्टेशन पे हैं और यहां पे अंदर आप देखे कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी यहां पे पहुंच गए हैं। पहले राहुल गांधी यहां पे उनको लाया गया और इस वक्त पीछे हमारे आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी बात कर रहे हैं, उनके चारों तरफ तमाम कार्यकर्ता खड़े हैं। ये वो वक्त है जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को हिरासत में लिया गया है।
3: राहुल, प्रियंका और हिरासत में लिए गए बाकी नेताओं को करीब घंटे भर किंग्सवे कैंप में रखा गया और फिर रिहा कर दिया गया। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ राहुल की अगुवाई में इंडिया गठबंधन के प्रदर्शन की शुरुआत कल सुबह संसद भवन के मगर द्वार पर शुरू हुआ था। निर्वाचन सदन जाने के लिए इंडिया गठबंधन के सांसद मार्च करते आकाशवाणी भवन के करीब पहुंचे, पुलिस ने रास्ता रोक दिया।

0: पुलिस ने रोका तो राहुल और प्रियंका गांधी पुलिस को गच्चा देकर आकाशवाणी परिसर में पहुंच गए और एक पेड़ के नीचे वहीं धरने पर बैठ गए। राहुल का साफ कहना था कि ज्ञानेश कुमार और दो चुनाव आयुक्तों से मिले बिना नहीं जाएंगे।
1: यहाँ पे पुलिस ने हमें रोका, 300 MPs को यहाँ पे रोका गया और फिर उसके बाद अब हमें यहाँ बैठा रखे हैं। 50 गज दूर इलेक्शन कमीशन है, हमें जाने नहीं दे रहे हैं। 300 MPs ज्ञानेश कुमार से मिलना चाहते हैं और ज्ञानेश कुमार जी डरे हुए हैं।
0: आकाशवाणी में 3 घंटे से ज्यादा बीतने पर राहुल गांधी और प्रियंका वहीं बरगद के पेड़ के नीचे चटाई बिछा लेते हैं। तब तक केसी वेणुगोपाल समेत कई और बड़े नेता भी पहुंच जाते हैं।
1: अमित शाह, नरेंद्र मोदी और मोहन भगवत, ज्ञानेश कुमार, इन लोगों ने देश के लोकतंत्र को खत्म कर दिया है। इनमें से सारे के सारे किसानों के खिलाफ कार्रवाई होगी। आप देखना, इनमें से एक व्यक्ति बच के नहीं जाएगा।
0: धरने के करीब 5 घंटे बाद राहुल गांधी फिर से मीडिया के सामने बोलते हैं और कहते हैं कि जब तक उन्हें ज्ञानेश कुमार से मिलने नहीं दिया जाता वहीं बैठे रहेंगे। वो कहते हैं कि आकाशवाणी में लंबा धरना देने का इंतजाम कर लिया है।
2: हमने यहाँ पे गद्दे भी लगा दिए हैं, ठीक है, टॉयलेट भी है, चाय भी मिल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना हमें बैठना है हम बैठने।
0: धरने के दौरान दिल्ली पुलिस के साथ राहुल और प्रियंका की हल्की नोकझोंक की तस्वीर भी सामने आई। आखिरकार रात करीब 8 बजे दिल्ली पुलिस ने राहुल, प्रियंका समेत इंडिया गठबंधन के नेताओं को हिरासत में ले लिया। ऐश्वर्या पालीवाल और अमित भारद्वाज के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली।
3: तो विपक्षी प्रदर्शन और चुनाव आयोग से मुलाकात को लेकर चुनाव आयोग ने अपना पक्ष रखा है। ECI के मुताबिक शाम 4 बजे तक किसी भी राजनीतिक दल ने बैठक के लिए औपचारिक अनुरोध नहीं किया था। आयोग का कहना है कि करीब 4 बजे दिल्ली पुलिस से राहुल गांधी के नेतृत्व में 240 सांसदों के प्रतिनिधिमंडल के मिलने की जानकारी मिली। सांसदों ने संसद भवन NXC में बैठक का प्रस्ताव रखा, लेकिन आयोग ने कहा कि तय प्रोटोकॉल के मुताबिक बैठक ECI परिसर में ही होनी चाहिए। आयोग ने अपना वरिष्ठ अधिकारी भेजकर ज्ञापन लेने का प्रस्ताव भी दिया, जिसे सांसदों ने स्वीकार नहीं किया है। और इस बीच राहुल के प्रोटेस्ट को लेकर BJP ने क्या क्या आरोप लगाए हैं, देखिए।
4: राहुल गांधी जी की ये आदत है, राहुल गांधी जी ने सुप्रीम कोर्ट को कोट करके राफेल के केस में राहुल गांधी जी ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राफेल में धांधली हुई। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ही राहुल गांधी को बोला कान पकड़ के उठक बैठक करो और एफिडेविट सब दो कि तुमने झूठ बोला था। आज ठीक वही काम राहुल गांधी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के नाम पर वो अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं।
5: मैं कांग्रेस पार्टी से आज देश के सामने पूछना चाहता हूं, इस पे क्विज कॉन्टेस्ट होना चाहिए कि भारत के कितने संस्थानों को कांग्रेस ने अब तक, खासकर राहुल गांधी ने, आरोपित किया है। $2.8 करोड़ डेड और 1 करोड़ डुप्लीकेट, ये भारत की इकोनॉमी को डेड बचाने वाले लोग ये डेड और डुप्लीकेट वोटरों को मताधिकार के साथ कैसे जोड़ रहे हैं? कांग्रेस से स्पष्ट हम पूछना चाहते हैं, वो इस बात का जवाब दे।
3: अमित भारद्वाज मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। अमित, क्या क्या आरोप BJP की तरफ से लगाए गए हैं और आज के प्रोटेस्ट में आम आदमी पार्टी जुड़ रही है, ऐसी खबरें आ रही हैं, ये चेंज ऑफ प्लान या फिर चेंज ऑफ मूड कैसे हुआ आम आदमी पार्टी का?
6: नेहा, देखिए, आम आदमी पार्टी का जहां तक कल के मार्च का सवाल है तो आम आदमी पार्टी ने कहा था कि वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है, इसलिए राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी द्वारा इंडिया गठबंधन की जो जुटान की गई थी CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ, उसमें वो शामिल नहीं होंगे मार्च में। लेकिन वो उस मुद्दे पे विपक्ष के साथ है, यानी कि अगर पार्लियामेंट के अंदर कोई एक्शन होता तो उसमें आम आदमी पार्टी का समर्थन रहेगा। अब आज जो विरोध प्रदर्शन होने जा रहा है वो दिल्ली सीईओ के ऑफिस के बाहर 1 बजे प्रपोज किया गया है। इसमें आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट पार्टियों का जुटान होगा और ये सब दिल्ली यूनिट जो इन पार्टियों की है, विपक्षी दलों की दिल्ली इकाई, इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने जा रही है। और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी इसमें अपनी हिस्सेदारी करेगी, इस बात को सौरभ भारद्वाज ने भी कन्फर्म किया है। उनका कहना यह है कि देखिए दिल्ली में क्योंकि जो वो आरोप लगा रहे हैं विपक्ष वाले वोट चोरी का, वो हुआ है, SIR अभी हुआ है, तो उस लिहाज से बहुत जरूरी है कि इस मुद्दे पर सभी विपक्षी दल इकट्ठा रहे, एक साथ खड़े हो। तो ये कारण है कि दिल्ली में स्ट्रैटेजी में तब्दीली आई है। जहां इंडिया गठबंधन का मार्च था वहां आम आदमी पार्टी साथ नहीं थी, लेकिन दिल्ली में वोटर के मुद्दे पर, इलेक्टोरल रूल्स के मुद्दे पर सभी विपक्षी दल एक साथ आज 1 बजे दिल्ली सीईओ के ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन करते हुए दिखाई देंगे। वहीं बीजेपी सवाल उठा रही है कि राहुल गांधी ने कल जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए सीसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोला है, वो इससे पहले भी इस तरह से कर चुके हैं, लेकिन माफी मांगनी पड़ती है। बीजेपी लगातार जो कांग्रेस पार्टी है या इंडिया गठबंधन है उसके तर्कों पर हमला।
3: बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका अमित। और अब खबर चुनावी राज पंजाब की, जहां मुख्यमंत्री भगवंत मान के कैंप ऑफिस पर और उनके ओएसडी राजवीर घुम्मण के घर पर सीबीआई ने छापेमारी की। ये छापेमारी भ्रष्टाचार के एक मामले को लेकर की गई है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने सीएम ऑफिस जो भ्रष्टाचार के मामले को लेकर केस दर्ज करने और जांच करने का आदेश दिया था। इसी मामले को लेकर पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट जा चुकी है। इन सबके बीच सीबीआई ने छापेमारी की। कमलजीत संधु मेरे सहयोगी जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। कमलजीत, भ्रष्टाचार को लेकर ये छापेमारी है और हाईकोर्ट ने जब केस दर्ज करने का आदेश दिया था उसके बाद छापेमारी की जरूरत क्यों पड़ी है?
7: देखिए, चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं और उसका बड़ा कारण है कि मामला है ईडी वर्सेस पंजाब पुलिस का। और आपको बता दें कई ऐसी चिट्ठियां हैं जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने लिखी थी पंजाब पुलिस को कि करप्शन के मामले सामने आ रहे हैं, उस पर FIR की जाए, और खासतौर पर नाम लिया गया OST राजवीर घुमन का। लेकिन पंजाब पुलिस ने ऐसा नहीं किया, मामला पहुंचा पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट और 5 तारीख को डिसीजन हुआ कि ये जो पूरा मामला है वो CBI जांच करेगी। 6 तारीख को केस रजिस्टर हो जाता, 8 जगह छापेमारी की जाती है। जो आपको बता रहे हैं पीछे आपको नजर आ रहा है जहां पे सन्नाटा पसरा नजर आ रहा है 50x2, ये पंजाब चीफ मिनिस्टर का कैंप ऑफिस है और इसकी जानकारी खुद भगवंत मान मुख्यमंत्री ने दी थी और बताया है कि किस तरह से चरमरा चुकी है बीजेपी और ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है उनकी छवि खराब करने के लिए। लेकिन इसी बीच में बात आ रही है कि 3-4 चीजें हैं जहां पे सीबीआई ने कहा वो चेक कर रहे हैं कि किस तरह से ट्रांसफर पोस्टिंग है IAS और IPS की हुई है, दूसरी जगह किस तरह से इम्प्रोपराइटी हुई है जहां पे चेंज ऑफ लैंड यूज है, आर्म्स लाइसेंसेस हैं, और इसी तरह से पॉलिसी चेंजेस लाने के लिए धोखाधड़ी और गड़बड़ी की गई है। तो ये सारे जो चार्जेस हैं वो सीबीआई इन्वेस्टिगेट करेगी और इसकी जो रिपोर्ट है वो 2 महीने में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में सबमिट करेगी 7 तारीख को। और ये आपको बता दें 7 दिसंबर को वो 2 महीने के अंदर अंदर किया जाएगा। और उससे पहले पंजाब सरकार ने पिटिशन डाली है सुप्रीम कोर्ट में और कहा है कि ये जो ये एक पॉलिटिकल वेंडेटा है और इस तरह से नहीं होना चाहिए। लेकिन इस बीच में विपक्षी पार्टियां हैं वो आम आदमी पार्टी पे लगातार हमला करती आ रही हैं और वो बोल रही हैं जो बात करते थे कट्टर ईमानदार होने की।
3: मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच पंजाब में आपके अध्यक्ष अमन अरोड़ा क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए।
8: बीजेपी ने CBI की इस रेड के जरिए अपनी 2027 की कैंपेन का आगाज कर दिया है। पिछले 4.5 साल में जो भगवंत मान सरकार ने काम किए हैं उनको देख के बीजेपी घबराहट में है। ग्राउंड के ऊपर लोग बीजेपी को देखने को तैयार नहीं है, जिसकी वजह से आज अपनी एजेंसियों की दुर्वर्तों करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने ये रेड करवाई है। लेकिन मैं समझता हूँ कि पंजाब के लोग दलेर हैं, वो हमेशा धक्कों का मुंह तोड़ जवाब देते रहे हैं और इन इलेक्शन में भी भारतीय जनता पार्टी को इन्हीं धक्कों का मुंह तोड़ जवाब पंजाबियों द्वारा दिया जाएगा।
3: बात फ्रांस की करेंगे जहां शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर कल एक बड़ा प्रदर्शन हुआ और इस दौरान कई जगहों पर हिंसक झड़पें हुई।
9: तो फ्रांस के लियों शहर की ये तस्वीर है। सड़कों पर प्रदर्शनकारी छात्रों का हुजूम, जलती हुई गाड़ियां, धुआं धुआं आसमान और टियर गैस से बचने के लिए भागते प्रदर्शनकारी। फ्रांस में शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए जारी छात्रों का धरना प्रदर्शन कल बड़े आंदोलन में तब्दील हो गया। पेरिस, लियोन, मार्से और नैंट शहर कल बड़े प्रदर्शन का गवाह बना। एक अनुमान के मुताबिक कल फ्रांस भर में 2.5 लाख से ज्यादा छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया। हालांकि आयोजकों के मुताबिक प्रदर्शन में 4.5 लाख लोग शामिल हुए। ये इस अभियान में अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन था। इस दौरान कई जगहों पर हिंसक झड़पें भी हुई हैं। फ्रांस के गृह मंत्रालय के मुताबिक कल प्रदर्शनकारियों से झड़प में 43 पुलिस अधिकारी घायल हुए। तकरीबन 500 लोगों को गिरफ्तार किया गया। फ्रांस के प्रधानमंत्री सेबास्टियन लेकोर्नू के मुताबिक करीब 2 हफ्ते पहले शुरू हुए प्रदर्शनों में अब तक कम से कम 215 किशोर और 85 स्कूल कर्मचारी घायल हुए। फ्रांस के पीएम ने इसे दशकों में स्कूल व्यवस्था द्वारा चुकाई गई सबसे भारी कीमत बताया। फ्रांस में आंदोलन की शुरुआत 21 सितंबर को पेरिस के एक स्कूल से हुई थी। छात्रों ने स्कूल में स्टाफ और सुविधाओं को बढ़ाने की मांग के लिए आंदोलन शुरू किया था, लेकिन देखते ही देखते ये आंदोलन फ्रांस के दूसरे शहरों में फैल गया। आज तक ब्यूरो।
3: और अब बात क्रिकेट की करेंगे। श्रेयस अय्यर के तूफानी शतक ने भारत को कल T20 मैच में वेस्टइंडीज के खिलाफ जीत दिला दी। 8 विकेट से करारी पटकनी वेस्टइंडीज को भारत की टीम ने दी है। लखनऊ में खेले गए मैच में वेस्टइंडीज ने भारत के सामने 172 रन का टारगेट रखा था। भारत ने 14 ओवर 4 गेंद पर टारगेट हासिल कर लिया। कप्तान श्रेयस अय्यर प्लेयर ऑफ द मैच रहे, जिन्होंने 43 गेंदों पर 102 रन की नाबाद पारी खेली। तो बिना ब्रेक के खबरों का सिलसिला लगातार 9 बजे में जारी रहेगा। वक्त हो गया हेडलाइंस का।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से इन एसोसिएशन विद
11: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: पीएम से पीएम तक सत्ता के केंद्र में 25 साल पूरे होने पर दिल्ली के श्री विनायक मंदिर पहुंचे मोदी। पीएमओ का संदेश 140 करोड़ भारतीयों के लिए प्रार्थना की। वडनगर से वाराणसी तक दिन भर सेवा संकल्प कार्यक्रम। राहुल प्रियंका के खिलाफ आकाशवाणी भवन की तरफ से दिल्ली पुलिस को दी गई शिकायत। हो सकता है एक्शन। प्रदर्शन के दौरान 8 घंटे वहीं बैठे थे कांग्रेस के नेता। कल हुए प्रोटेस्ट पर राहुल बीजेपी आमने सामने। एसआर के खिलाफ आज फिर इंडिया ब्लॉक का दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन। सीईसी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर ईसी ऑफिस का घेराव। आप कांग्रेस लेफ्ट समेत विपक्षी दल होंगे प्रदर्शन में शामिल। वृंदावन के गुरुकुल में दिल दिलाने वाला हादसा। गुरुकुल में 4 छात्रों की मौत, समाचार कम। पानी की टंकी साफ करने उतरे थे बच्चे। एक लड़के की हालत गंभीर हो रहा था, जहरीली गैस का रिसाव। पेरिस में शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ सड़कों पर उतरे हजारों प्रदर्शनकारी। पुलिस ने बरसाई लाठियां, दागे आंसू गैस के गोले। नाबालिग समेत कई प्रदर्शनकारी घायल।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार।
0: आज भी एसआर के खिलाफ इंडिया ब्लॉक का हल्ला बोल। दिल्ली ईसी कार्यालय के बाहर जुटेंगे विपक्षी दल। सीसी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग। कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएम, आरजेडी, एनसीपी और आरएसपी समेत कई दल होंगे शामिल। एसआर प्रक्रिया रद्द करने और मतदाता सूची में पारदर्शिता की मांग। आज विपक्ष के प्रदर्शन में शामिल होगी आप, विधायक सौरभ भारद्वाज ने दी जानकारी। कल रात आकाशवाणी में धरने पर बैठे राहुल को पुलिस ने जबरन हटाया। प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के कई नेता रहे मौजूद। धरना प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी समेत कई कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लिया गया। कुछ घंटों बाद किंग्सवे कैंप थाने से राहुल और प्रियंका को रिहा किया गया। किंग्सवे कैंप से निकलते केंद्र सरकार पर बरसे राहुल, बोला एक भी देशद्रोही बख्शा नहीं जाएगा। राहुल गांधी का सरकार के खिलाफ पोस्ट लिखा, लोकतंत्र के गद्दार को बचाने के लिए बचे कुचे लोकतंत्र को घसीटा गया। राहुल गांधी के धरने पर बीजेपी का पलटवार, आरोप लगाते हुए कहा राहुल गांधी चुनाव आयोग से मिलना ही नहीं चाह रहे थे। राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार, बोला राहुल का झूठ बेनकाब हो गया है, विपक्ष के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा है। राहुल के धरने पर बीजेपी का हमला कहा, उनकी सियासी लॉन्चिंग लगातार हो रही है, 300 सांसदों के साथ की बात झूठ। कांग्रेस के 300 सांसदों के दावे पर बीजेपी का पलटवार, कहा दावा गलत। कांग्रेस के बड़े वकील के चेहरे कहां गायब थे। विपक्षी मार्च के बाद हाई वोल्टेज ड्रामा। सीसी से मुलाकात की मांग के साथ धरने पर बैठे थे राहुल प्रियंका। विपक्षी मार्च और धरने पर राहुल पर चुनाव आयोग की सफाई, कहा नहीं मांगा गया मीटिंग का टाइम। संसद भवन एनेक्सी में बैठक के प्रस्ताव पर जताई आपत्ति। विपक्षी सांसदों की मांग पर दिल्ली पुलिस का बयान, कहा प्रदर्शन की अनुमति के लिए कोई आवेदन नहीं मिला। बैरिकेड तोड़ने और बीएनएसएस धारा 163 के उल्लंघन का आरोप। बिहार में आज एसआर के खिलाफ आरजेडी का प्रदर्शन, सभी प्रखंडों के विपक्ष का आक्रोश मार्च। लगातार विपक्ष के प्रदर्शन के बीच चुनाव आयोग ने टाला छत्तीसगढ़ का दौरा। हालांकि चुनाव आयोग ने नई तारीख के बारे में किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दी है। राहुल प्रियंका समेत कई अज्ञात लोगों के खिलाफ दिल्ली पुलिस को शिकायत। आकाशवाणी भवन की तरफ से किया गया है कंप्लेंट। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने राज्यसभा सांसद और यूपीए सरकार मंत्री रह चुके कपिल सिब्बल का एक पुराना भाषण शेयर कर विपक्ष के विरोध प्रदर्शन पर सवाल उठाए। जापान के प्रधानमंत्री ने मोदी के कार्यकाल की 25वीं वर्षगांठ पर बधाई दी। पोस्ट कर कहा समाज और देश के विकास के लिए खुद को समर्पित किया।

0: पीएम मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 साल आज पूरे। दिल्ली में विकसित भारत संकल्प सभा को करेंगे संबोधित। दिल्ली में श्री विनायक मंदिर में की पूजा अर्चना। आज सेवा ज्योति का दिल्ली में कार्यक्रम। बीजेपी के आयोजन में करीब 5,000 लोगों के शामिल होने की संभावना। 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के बतौर सीएम से शुरू हुआ था प्रधानमंत्री का राजनीतिक सफर। बीजेपी सेवा संकल्प अभियान के तहत मना रही ये अवसर। वडनगर से वाराणसी तक बीजेपी के खास कार्यक्रम। प्रधानमंत्री मोदी के 25 साल के सार्वजनिक जीवन पर सेवा संकल्प अभियान में गुजरात सीएम से प्रधानमंत्री तक के सफर को किया जा रहा है चिन्हित। वडनगर से काशी तक जन्मभूमि से कर्मभूमि बाइक यात्रा सेवा संकल्प अभियान के तहत निकली यात्रा आज वाराणसी में समाप्त होगी। प्रधानमंत्री के 25 साल के नेतृत्व पर केंद्रीय कैबिनेट का प्रस्ताव। राष्ट्र प्रथम नागरिक प्रथम की नीति को सराहा। छोटे कारोबारियों के लिए मोदी सरकार का गिफ्ट। 10,000 करोड़ के निवेश का ऐलान। एसएमई ग्रोथ फंड बढ़ाने पर भी जोर। आज से 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर नितिन नवीन सेवा संकल्प यात्रा में शामिल लोगों का करेंगे स्वागत। आज गुरुग्राम में सेवा ज्योति यात्रा कार्यक्रम। मुख्य अतिथि होंगे अमित शाह। हरियाणा सीएम नारायण सैनी करेंगे अध्यक्षता। ग्रेटर नोएडा में आयोजित एक्सपो मार्ट में कार्यक्रम में आज जेपी नड्डा शामिल। विकसित भारत संकल्प सभा में लेंगे हिस्सा। आज आरबीआई एमपीसी रेपो रेट पर सुनाएगी फैसला। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा दोपहर 12 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। जीएसटी काउंसिल की 97वीं बैठक कल तक के लिए टली। जरूरी वजहों के लिए एक दिन टली बैठक। रजिस्ट्रेशन रिटर्न और रिफंड सिस्टम में बदलाव की संभावना। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित बने भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख। 31 अक्टूबर को आईएएफ प्रमुख का संभालेंगे कार्यभार। कारगिल जंग में रहे हैं शामिल। दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 10वां संस्करण। कल पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। स्केल विदाउट बाउंड्रीज थीम पर 7 से 10 अक्टूबर तक चलेगा मेगा इवेंट। पंजाब सीएम भगवंत मान के कैंप ऑफिस और ओएसडी के घर सीबीआई की छापेमारी। हाईकोर्ट के निर्देश पर भ्रष्टाचार में एफआईआर। पंजाब में सीएम मान के ओएसडी राजबीर घुमन के पैतृक गांव में सीबीआई रेड के दौरान जश्न। लोगों ने गाड़ियों पर बरसाए गुलाब के फूल। ढोल बजाकर किया स्वागत। पंजाब सीबीआई रेड पर सियासी घमासान। मान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। हाईकोर्ट के आदेश को दी चुनौती। सीबीआई रेड पर सीएम भगवंत मान का बीजेपी पर हमला। बोले पंजाब चुनाव की तैयारियां शुरू। सरकार ने मुझे बदनाम करने के लिए ईडी सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। चुनाव से 2 महीने पहले सीएमओ पर सीबीआई रेड को लेकर आपका बीजेपी पर हमला का। ईडी सीबीआई के सहारे पंजाब में चुनाव लड़ना चाहती है बीजेपी। ईडी के चैलेंजर किंग महमूद भगाड़ के खिलाफ 157 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तीसरी सप्लीमेंट्री शिकायत दाखिल की गई। रोहतास में सीएम सम्राट चौधरी ने 177 योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय ने खगोल प्रयोगशाला का किया उद्घाटन। दिशा सालियान मामले बिता सतीश सालियान फिर पहुंचे बॉम्बे हाईकोर्ट। किसी को आरोपी न मानने वाली शर्त हटाने की मांग। महाराष्ट्र के नांदेड़ समेत कई गांव में जल संकट। मराठवाड़ा विदर्भ सीमा पर सूखी पैनगंगा नदी। जालना में सूखे की भयावह तस्वीर आई सामने। ड्रोन कैमरे में कैद हुआ नजारा। पानी की एक बूंद भी नहीं है। लखनऊ के केसरबाग इलाके में अवैध हुक्काबार का भंडाफोड़। 42 लोगों को हिरासत में लिया गया। 3 संचालक गिरफ्तार। यूपी मुख्यमंत्री सुकन्या योजना की महिलाओं बेटियों को बड़ा लाभ। जन्म से लेकर उच्च शिक्षा तक मिलने वाली 25,000 की राशि से आर्थिक मदद दी जाएगी। कैप्टन स्मिथ मचार की तबीयत में तेजी से सुधार। कैप्टन के परिवार के संपर्क में भारतीय दूतावास। कैप्टन के लिए दुआएं करने वाले लोगों के लिए शुक्रिया। अमेरिका में भारत स्मिथ मचार को सम्मानित करने का प्रस्ताव किया गया पारित। कांग्रेस के प्रस्ताव में किसी व्यक्ति का नाम शामिल किया जाना बड़ी बात है। चमोली बद्रीनाथ में बदला मौसम। 11 अक्टूबर तक बारिश का पूर्वानुमान। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के आसार। पश्चिम बंगाल में जोर शोर से जारी है शक्ति पर्व की तैयारियां। पुरुलिया में बनाया जा रहा है विशाल पंडाल। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत का एक और बड़ा कदम। एचएएल कोरापुट में 2000वें एयरो इंजन का रक्षा मंत्री ने किया शुभारंभ। राजनाथ सिंह बोले भारत अब केवल रक्षा उपकरणों का उपभोक्ता नहीं निर्माता और निर्यातक बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। दिल्ली में सर्दियों के प्रदूषण से निपटने की तैयारी तेज। एमसीडी की 6,127 किलोमीटर सड़क पर निगरानी। उधम सिंह नगर में रोडवेज ड्राइवर से मारपीट का वीडियो वायरल। 3 आरोपी गिरफ्तार। लखनऊ बाइक सवार युवक ने राइफल से कुत्ते को मारी गोली मौके पर मौत। बिहार के आरा में हथियारबंद बदमाशों ने घर के बाहर खड़े प्रॉपर्टी डीलर को मारी गोली। अपहरण मामले में केस वापस लेने का दबाव बना रहे थे। मथुरा के गुरुकुल में दर्दनाक हादसा 4 छात्रों की मौत। टैंक सफाई के दौरान निकली जहरीली गैस। राजस्थान के अलवर में जूता फैक्ट्री में लगी भीषण आग लाखों का सामान जलकर खाक। मुजफ्फरपुर में नाबालिग से छेड़खानी ग्रामीणों की वजह से 2 आरोपी गिरफ्तार। महाराष्ट्र के उल्हासनगर में ट्रैफिक जाम का कहर महिला ने रिक्शा में दिया बच्चे को जन्म। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के काशवाणी भवन में धरने को लेकर यह खबर आ रही है। इन दोनों समेत कई अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में। आकाशवाणी भवन की तरफ से यह शिकायत दी गई, फिर FIR दर्ज हुई। आकाशवाणी भवन में जबरन घुसने के मामले में FIR दर्ज की गई है। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। क्या है इस FIR के डिटेल्स अरविंद?
1: आकाशवाणी भवन में घुसे थे, उस मामले में दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की है, ट्रेसपासिंग की FIR दर्ज की है। कल जब जबरन घुसने की कोशिश की थी, वो तस्वीरें भी सामने आई थी जब गार्ड ने रोकने की भी कोशिश की थी, उसके बाद राहुल गांधी प्रियंका गांधी आकाशवाणी भवन में घुस गए थे। तो दोपहर में पहले एक PCR कॉल भी चली थी दिल्ली पुलिस को, उसके बाद एक आधिकारिक शिकायत वो आकाशवाणी भवन की तरफ से दिल्ली पुलिस को मिली थी, जिसमें ये कहा गया था कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी और तमाम सांसद आकाशवाणी भवन के अंदर घुस गए थे, इस वजह से ट्रेसपासिंग की FIR दर्ज की जाए। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने उस शिकायत पर FIR दर्ज कर ली है और पूरे मामले की जांच कर रही है। नेहा,
0: बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। इसी के साथ यहां रुक लें, छोटे से ब्रेक के लिए फौरन होंगे हाजिर, देखते रहिए आज तक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
4: यार लोन भूल गया। मैरी
5: इट्स जस्ट अ गुड बैंक ना
6: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक।
4: स्मॉल फाइनेंस बैंक
6: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन होम लोन लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी माइक्रो मॉर्गेज लोन गोल्ड लोन प्री ओन कार लोन टू व्हीलर लोन।
7: देयर्स नथिंग स्मॉल अबाउट
8: उज्जीवन नथिंग स्मॉल अबाउट अस।
9: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार सर एक बार रोटी ठुमका लगाने बस।
10: मेरे पास एक आइडिया है।
9: क्या?
10: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है
11: एक रॉकस्टार होता है अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है दुनिया हिला पर स्टेज नहीं हिलता
12: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
13: मेरा ना सिंपल है एक लड़की है उसका भाई जेल में है लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
11: कौन सी बनानी है?
14: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना वहाँ खाया शहद पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा। अरे कश्मीर क्यों जाना कश्मीर ही यहाँ आ गया।
15: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद लायन कश्मीर हनी।
14: असली शहद असली स्वाद।
16: सर गैसो फास्ट की ग्रोथ तो चेक कीजिए।
17: गैसो फास्ट 27% इनो 9.2%
18: गड़बड़ है।
19: गैसो फास्ट वाले जीरे का जादू चला रहे इसीलिए इनके चाहने वाले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। गैसो फास्ट इंडिया की एसिडिटी का असली इंडियन सॉल्यूशन।
20: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर। मेंटर तरक्की का ऑलराउंडर।
21: इतने पेमेंट ऐप्स पर सेफ कौन सा?
22: तो स्विच टू बीम। एकदम सेफ और भरोसेमंद रिवॉर्ड्स भी मिलते रहते हैं। पाओ 40 रुपए का कैशबैक 40 रुपए से ज्यादा की पहली पेमेंट पर। भीम ऐप से करो पे।
23: इट्स अ माही वे।
24: माँ के पैरों की धूल माथे पर ले मैं परिंदा खुले आसमान जहाँ जीत रू सारा।
25: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है
26: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
25: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायबिटीज जूस।
27: In association with
28: Punjab National Bank, भरोसे का प्रतीक।
27: विमल बोलो जुबां केसरी। हिंट एक हिंट तो देते।
29: मुंबई में आदिवासी छात्रों के आंदोलन पर सियासी पारा चढ़ गया है। ये आदिवासी छात्र नासिक से मुंबई तक पैदल मार्च करके आए लेकिन ये लोग जैसे ही मुंबई पहुंचने वाले थे पुलिस ने इन्हें हिरासत में ले लिया। कांग्रेस का आरोप है कि पुलिस ने आदिवासी छात्र छात्राओं को मुंबई में कांग्रेस मुख्यालय से हिरासत में लिया।
30: छात्रों की गूंज प्रोग्राम में
29: अब कांग्रेस आदिवासी छात्रों के आंदोलन के मुद्दे को सियासी रूप से भुनाने के लिए पूरी तरह तैयार। राहुल गांधी ने वीडियो संदेश जारी कर फडणवीस सरकार की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए।
30: छात्रों की गूंज प्रोग्राम में मैं अलग अलग स्टूडेंट ग्रुप से मिला था। जो आदिवासी स्टूडेंट्स हैं उनसे मिला उनसे बातचीत की और जो एमपीएससी के प्रोटेस्टर्स हैं उनसे भी मिले था उनसे भी बातचीत की। देखिए इनकी जो मांगे हैं ये लेजिटिमेट हैं। ऐप के माध्यम से भी एमपीएससी स्टूडेंट्स ने मुझे कांटेक्ट किया था और मैं दोनों स्टूडेंट्स को आश्वासन देना चाहता हूँ कि हम आपके साथ हैं। घबराइए मत आपकी मांग पूरी होंगी। सरकार से मैं कहना चाहता हूँ आप जो करना चाहते हैं करिए। ये जो आपके खिलाफ प्रोटेस्ट चल रही हैं एमपीएससी की आदिवासियों की ये रुकने वाली नहीं है। इनकी मांगे जल्दी से जल्दी आप पूरी कीजिए क्योंकि ये रुकने वाले युवा नहीं।
29: आदिवासी छात्रों ने बताया कि सरकार की अनदेखी की वजह से आंदोलन के दौरान कई छात्रों की मौत हो चुकी है। इधर मुंबई पुलिस ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि तिलक भवन से किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया।
0: अब कांग्रेस लीडर्स जो है आरोप लगा रहे हैं कि सरकारें बदलती रहेगी लेकिन पॉलिटिकल ऑफिस के अंदर घुसकर लोगों को डिटेन करने का जो मुंबई पुलिस ने शुरुआत की है वो आने वाले समय में पॉलिटिक्स के लिए ठीक बात नहीं है। जयराम रमेश और बाकी सारे नेता जो है इस पर एक तरह से सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी जो है आदिवासी स्टूडेंट्स को कांग्रेस के महाराष्ट्र हेडक्वार्टर से डिटेन करने पे पैदा हो चुकी है। कैमरा पर्सन मंदा चौहान के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक।
1: आ गया सोमवार और आ गए
2: चकमक चाचा।
1: एक कचौड़ी दो समोसा चकमक, तेरा क्या भरोसा?
3: चकमक चाचा से सीधे चकमक है?
1: अरे नारा है, दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है, महिला लोग एकदम नारा लगाए जा रही, पूछ रहा ना।
3: लेकिन भैया नारे अरे फालतू में सब बेकार, एकदम बेकार। नारे होते थे हमारे टाइम।
1: अच्छा
3: सुनाए, जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, जेपी भाई छूटेंगे।
1: अच्छा तो हमारे टाइम वाले सुनिए, दो कुलचा एक बिरयानी, इन नेताओं की खत्म कहानी।
3: अरे जमीन की चकबंदी में, जमीन की चकबंदी में क्या फाइनेंस बंदी में,
1: ठंडी चाय गरम करो चकमक चाचा, शर्म करो।
3: अरे राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर।
1: अरे लाठी गोली खाएंगे, इस्तीफा देके जाएंगे।
3: अरे सुनो, इस दीपक में तेल नहीं, सरकार चलाना खेल नहीं।
1: अरे लाल फूल नीला फूल, जंजी नंगे ब्यूटीफुल।
3: अरे बारी बारी सबकी बारी, अब की बारी अटल बिहारी।
1: चाय गरम दूध गरम, चकमक चाचा भी शर्म
3: है।
1: हाँ
3: जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है।
1: अरे मेरे सिर में दर्द है जिसका कारण मर्द है आप जैसा।
4: हम जैसे? इधर आओ।
5: हम जैसे मर्द नहीं होते किसी नारे से ऑफेंड, हम तो भैया करते हैं हर सही मुद्दे को डिफेंड।
27: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
28: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
4: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार सर एक बार धोती ठुमका लगाने बस।
5: मेरे पास एक आइडिया है।
4: क्या?
5: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है।
6: एक रॉकस्टार होता है अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है दुनिया है पर स्टेज नहीं हिलता
7: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
8: मेरा ना सिंपल है एक लड़की है उसका भाई जेल में है। लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
6: कौन सी बनानी है?
9: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है।
10: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
9: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस

0: यूपी के चुनावी मौसम में दलित वोटों के लिए हर दल के तरकश में अलग लगती है, और इसी में से एक तीर बीजेपी ने अब यूपी में आजमाया है, जो दलित सियासत में प्रतीकों के तौर पर इस्तेमाल होते आ रहे हैं। सीएम योगी ने ऐसा ही एक ऐलान यूपी में किया, जहां भदोही का नाम संत रविदास के नाम पर किया गया है।
1: कालीन उद्योग के लिए जाना जाने वाला भदोही जनपद आने वाले समय में मध्यकालीन संत जिन्होंने अपनी साधना के माध्यम से समाज को जोड़ने का काम किया था, ऐसे सदगुरु रविदास जी महाराज के नाम पर भदोही जाना जाएगा।
0: भदोही नहीं, नामकरण की बात हो तो कन्नौज मेडिकल कॉलेज का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर बहाल किया गया है। वहीं अनुपूरक बजट में डॉक्टर अंबेडकर मूर्ति विकास योजना के लिए 407 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत अंबेडकर, संत रविदास, संत कबीर, ज्योतिबा फुले और महर्षि वाल्मीकि के प्रतिमाओं के संरक्षण, सौंदर्यीकरण और सुरक्षा पर काम होगा। बीजेपी कहती है कि अखिलेश यादव की सरकार ने दलित विरोधी सोच के कारण जिन महापुरुषों के नाम पर रखे गए जिलों, संस्थानों के नाम बदल डाले थे, उनका पुनर्नामकरण करके बीजेपी सम्मान दे रही है।
2: पूर्व में भी भदोही का नाम संत रविदास नगर था, किंतु अखिलेश यादव की दलित विरोधी सोच के नाते से उन्होंने संत रविदास नगर समेत उत्तर प्रदेश के कई जिलों के नाम बदले थे। आज उसको सही किया गया है।
3: समाजवादी पार्टी समाज में न किसी वर्ग को अपनी जागीर न वोट बैंक समझती है। वो सभी वर्गों को अपना साथी, सहयोगी और समाजवादी पार्टी के परिवार का हिस्सा समझती है।
0: मतलब ये कि दलितों को रिझाने के लिए दाव चलाए जाने लगे हैं। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।

0: यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन पर गदर मची है। कहा जा रहा था कि कांग्रेस 150 सीटें चाहती है, लेकिन कांग्रेस अब इससे आगे की बात कर रही है।
1: इसने किया 150 का, मैंने तो 200 की बात की थी। मैं शुरू से कह रहा हूँ, बराबर का सम्मान और बराबर की इज्जत, बराबर का हिस्सा।
0: लेकिन राजेंद्र पाल गौतम को समाजवादी पार्टी के नेता दो टूक जवाब देते हैं।
2: मैं ये कहता हूँ उनको 50 सीट देना भी बहुत बड़ी बात होगी, उनको देखना चाहिए। दो तुम्हारे विधायक हैं, पिछली बार तुमने लड़के देख लिए, क्या इससे तुम्हें सबक नहीं मिलता?
0: अखिलेश यादव पहले ही कह चुके हैं कि जीत ही सीट का आधार है।
3: जीत ही आधार है, जीत ही सीट का आधार है।
0: और जीत बोले तो आखिरी चुनाव यानी 2024 लोकसभा में मिली जीत, और वो जीत कुछ ऐसी थी कि 80 में 37 सीटें समाजवादी पार्टी जीती और 6 कांग्रेस को मिली थी। इसे विधानसभा के अनुपात में बांटा जाए तो 37 लोकसभा के हिसाब से अखिलेश के हिस्से 347 सीटें बनती हैं और कांग्रेस के हिस्से 56। लेकिन कांग्रेस की हसरतें 56 से 200 तक पहुंच चुकी हैं और हौसला बढ़ता ही जा रहा है। अब कांग्रेस ने उन्हीं इमरान मसूद को कांग्रेस का कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है, जो लगातार समाजवादी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे हैं और 403 सीटों पर लड़ने की चेतावनी देते रहते हैं। पॉलिटिकल मैसेजिंग के तौर पर कांग्रेस ने अपने पत्ते सामने रख दिए हैं। अब बारी समाजवादी पार्टी की ओर से फैसला लेने की है, और वो कांग्रेस की सीटों वाली शर्तों के साथ विधानसभा चुनाव में गठबंधन करना चाहती है या बीजेपी को हराने के मिशन के साथ। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

सत्ता के केंद्र में 25 साल पूरे होने पर दिल्ली के श्री विनायक मंदिर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। पीएमओ का संदेश, 140 करोड़ भारतीयों के लिए की प्रार्थना, विकसित भारत संकल्प सभा में प्रधानमंत्री का संबोधन। मोदी की जन्मभूमि से कर्मभूमि तक सेवा संकल्प कार्यक्रम, वाराणसी में नितिन नवीन का संबोधन। अमित शाह ने दी 25 साल के बेमिसाल सफर की बधाई। सीएम योगी की सेवा ज्योति यात्रा, धामी ने भी की पूजा। आकाशवाणी भवन की शिकायत पर राहुल प्रियंका के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर। प्रदर्शन के दौरान 8 घंटे वहीं बैठे थे नेता विपक्ष, जबरन घुसने का आरोप। एसआईआर के खिलाफ आज फिर विपक्ष का प्रदर्शन। वृंदावन के गुरुकुल में दिल दहला देने वाला हादसा, गुरुकुल में 4 छात्रों की मौत से मचा हड़कंप। पानी की टंकी साफ करने उतरे थे बच्चे, एक लड़के की हालत गंभीर, हो रहा है जहरीली गैस का रिसाव। फ्रांस की राजधानी पेरिस में शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ सड़कों पर उतरे हजारों प्रदर्शनकारी, पुलिस ने बरसाई लाठियां, दागे आंसू गैस के गोले, नाबालिग समेत कई प्रदर्शनकारी हुए घायल।

0: आपका मालिक नहीं, मैं आपका सेवक हूं, इसलिए जवाब देने आया
1: हूं। विकसित भारत का आधार भी है आत्मनिर्भर भारत।
2: एक महीने के भीतर भीतर 5 करोड़ गरीब परिवारों का बैंक का खाता खोलने का काम पूरा कर दिया।
3: ये कहानी है हौसले की, ये कहानी है हिम्मत की।
4: सुख चैन की जिंदगी जियो,
5: रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है।
6: एनसीसी के अच्छे कैडेट्स रह चुके हैं।
7: ये सिंदूर या मिजाज,
3: ये कहानी एक सफर की है।
8: अगर आपके दिल में समाज के लिए, देश के लिए कुछ करने की आग है, निकल पड़िए दोस्तों, रास्ता अपने आप मिल जाएगा।
9: हम कहते हैं मुकद्दर का सिकंदर, पर मुकद्दर का सिकंदर भी वही हो सकता है जिसने मेहनत की हो।
10: जीएसटी की सफलता ये किसी सरकार की सफलता नहीं, जीएसटी की सफलता इस सदन में बैठे हुए लोगों की इच्छा शक्ति का परिणाम है।
11: सामने घर में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का यहाँ पर जन्म हुआ था।
3: कितना मुश्किलों भरा उनका जीवन रहा, लेकिन कितना बड़ा लक्ष्य उन्होंने हासिल किया।
12: एक भारत श्रेष्ठ भारत का देश सर्वोपरि हो।

0: मोदी के लिए आपके ही सर्वोपरि है।
1: चुन चुन करके हिसाब लेना ये मेरी फितरत है।
2: राज्य के विकास से राष्ट्र का विकास, ये हमारा विकास का मंत्र हो।
0: 2047 के पहले विकसित राष्ट्र बना के रहेंगे, ये मोदी की गारंटी है।
3: वो आजादी के बाद जन्मे देश के पहले प्रधानमंत्री, देश के सबसे लंबे समय तक पीएम रहने वाले गैर कांग्रेसी नेता, पीएम के तौर पर लगातार दो कार्यकाल पूरे करने वाले भी पहले गैर कांग्रेसी नेता हैं। मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले देश के दूसरे नेता हैं। देश ने कई बार उनकी आंखों में आंसू देखे।
4: समाज का छोटे से छोटा व्यक्ति
3: जी
4: और परिवार का छोटे से छोटा बच्चा समान रूप से ये भाव व्यक्त करता है, तो मुझे लगता है कि पहला मुझसे कोई गलती ना हो जाए, दूसरा मेरे मन में भाव रहता है हो सकता है मेरी मां ने मुझे जन्म दिया, परमात्मा ने स्वयं ने मुझे किसी काम के लिए भेजा है।
3: तो देश पर आंच आते ही उनकी आवाज की हुंकार भी सुनी है।
4: घर में घुसकर मारेंगे और बचने का एक मौका तक नहीं देंगे।
3: किसी मंत्र की तरह उनका नाम पुकारती भीड़ के बीच लोगों से संवाद को देखा।
0: एक बेटी बहुत बढ़िया पेंटिंग बना करके लाई थी, बेटा वो पेंटिंग मुझे मिल जाएगी, आपने उसमें पता लिखा है अपना? ये कैसे कर दिया? अच्छा लिख करके दे दो, मैं आपको चिट्ठी भेजूंगा। बहुत बढ़िया चित्र बनाया आपने।
3: कूटनीतिक मसलों पर दुनिया की राजनीति में खलबली मचाते भी देखा है।
0: मेरी सरकार लघु उद्यमियों का, किसानों का, पशुपालकों का कभी भी अहित नहीं होने देंगी। दबाव कितना ही क्यों ना आए, हम झेलने की अपनी ताकत बढ़ाते जाएंगे।
3: पीएम मोदी के नेतृत्व में अयोध्या राम मंदिर निर्माण भी देखा, लाल चौक पर तिरंगे का सैलाब भी देखा, जनधन उज्ज्वला से दूर गांवों में उम्मीदों की चमकती किरणें भी देखी और आत्मनिर्भर भारत की बुलंद तस्वीर भी देखी। प्रधानमंत्री के तौर पर तीसरे कार्यकाल के पहले वर्ष में वो 75 वर्ष की रेखा से आगे निकल गए। काम करने की अपनी ऊर्जा की व्याख्या भी करते हैं।
5: परिश्रम में जो तपा है उसने ही तो इतिहास रचा है, जिसने फौरादी चट्टानों को तोड़ा है उसने ही समय को मोड़ा है, और समय को मोड़ देने का भी यही समय है, सही समय है।
3: समय चल रहा है तो पीएम मोदी समय के साथ चल रहे हैं। कई मील के पत्थर पार हुए, आगे की मंजिल भी समय ही तय करेगा। हालांकि पीएम मंजिलों की नहीं रास्तों और पड़ावों की ही परवाह करते हैं। बचपन में अपने इरादों में संकल्प का बीज बोया था प्रधानमंत्री मोदी ने, जिसे कई वर्ष तक अपने श्रम से सींचा और इस तरह वो संघर्षों के कठोर धरातल पर चलते चलते प्रधानमंत्री आवास तक पहुंचे। लेकिन इस एक रास्ते में कई रास्ते थे, कई मोड़ भी थे।

0: पौराणिक नगरी वडनगर, जहां महादेव की धरोहर भी है और तानसेन की सुरीली विरासत भी। वर्तमान में विलीन इस शहर का इतिहास यूं तो 2500 साल पुराना है, लेकिन 75 वर्ष पहले गूंजी किलकारी ने इस शहर को नई पहचान दी। तब दामोदर दास मूलचंद मोदी के घर उनके तीसरे बेटे का जन्म हुआ था।
1: बड़ी बड़ी शख्सियतों के पैतृक आवास को स्मारक बनाने के बारे में आपने कई बार सुना होगा, लेकिन अब एक ऐसे प्रधानमंत्री की कहानी भी सुनिए जिसकी शुरुआत एक 50 गज के घर से होती है। ये वही जगह है जहां पर नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ था। आज इसे कुछ ही महीनों पहले तोड़ना पड़ा है, क्योंकि आसपास के इमारतों पर इसके जर्जर हालत का प्रभाव पड़ रहा था। बहरहाल आप सोचिए कि कितनी कठिनाई से, कितने कठिन परिस्थितियों से, कितने सीमित दायरे से निकलकर एक व्यक्ति की उड़ान आसमान को पार कर गई।
0: 6 भाई बहनों में मोदी का बचपन बेहद गरीबी में गुजरा।
2: हमें गरीबी क्या होती है वो देखने के लिए जाना नहीं पड़ता है, क्योंकि हमने बचपन गरीबी में बिताया है। शाम को जब घर में चूल्हा न जले, बच्चे रात रात रोते रहें, तब पता चलता है गरीबी क्या होती है।
0: पिता को परिवार का पेट पालने के लिए चाय की दुकान चलानी पड़ती थी, तो मोदी भी उनका हाथ बटाते थे।
3: अरे नरेंद्र बेटा, ये सब अभी बराबर है, पहले बाकड़ा साफ करें, लोगों को बैठना है। सुन, काम जरा जल्दी जल्दी करें।
4: अरे तुम्हारा बेटा नरेंद्र बहुत अच्छा लड़का है,
3: आज्ञाकारी पुत्र है, देखना बड़ा होकर मेरा नाम रोशन करेगा ये।
5: बाबूजी केतली में चाय निकाल दो, ट्रेन आने वाली है।
3: हाँ बस बेटा ये निकाल दी है, ये ले जा। और सुन, ज्यादा तेज नहीं भागना, नहीं तो दोनों गिर जाओगे, चाय भी और तुम भी है? ये ले।
6: यहाँ से करीबन 200 मीटर इनकी स्कूल है। यहाँ ये रेलवे स्टेशन में इनके पिताजी की कैंटीन चलती थी। तब वो स्कूल से जब छूटते थे, रिसेस होती थी, तब वहाँ से सीधे अपने पिताजी को चाय के धंधे में मदद करने के लिए यहाँ आते थे।
2: मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया हूँ, अब किसी के गले नहीं उतरेगा लोगों के घर में, इसलिए खाने का कोई बचा जूत। अच्छा मैं कभी बता करके नहीं जाता, जाता था, पड़ा है तो खाता था, वरना चलाता था, ऐसे जिया।
0: सब कुछ साधारण था उनकी जिंदगी में, सब कुछ सिवाय उनके असाधारण व्यक्तित्व के।
7: ये सच्चा बोलो थे, इना में कोई कूड़ कपट नहीं, इना माने बाप नहीं गणतो, अने समाज नी पब्लिक बेट देव सरकुक गणत है, कोई भेदभाव नहीं।
8: शक्ति है वो, कोई स्वार्थी नहीं है, वो सब सेवा करते हैं।
9: स्कूल के अंदर हमने अच्छी तरह से सभी में पार्ट लिया था, रमत गमत में भी पार्ट लेता था, नाटक चेटक में भी पार्ट लेते थे, और कहीं ना कहीं कोई न कोई लेखन स्पर्धा होती उसमें भी पार्ट लेते थे। फिर कॉलेज में तो वो हमने नाटक एक साथ किया, पगर खानो पहाड़ियों। अच्छा। पगर खा इतने जूते। अच्छा। गुजराती में पगर खा बोलते हैं। अच्छा। एक दिन बापू बाहर बैठे थे तो उनकी मोजड़ी एक कुत्ता ले गया, तो उसके ऊपर पूरा नाटक था। अच्छा। और वो MN कॉलेज में हमने बहुत अच्छी तरह से पेश किया था, तो उनको बार बार तालियां बजती थी, तो बारंबार वंस बार होता था। अच्छा, तो उसमें हम 8-10 मित्र थे और नरेंद्र भाई बापू बने थे।
1: मैं इस समय अहमदाबाद के वडनगर रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ।

0: पर अब कुछ मरम्मत करके उस स्थान को रख दिया गया है, लेकिन यहां पर उनके पिता चाय बनाते थे। नरेंद्र मोदी बचपन में चाय को लेकर ट्रेनों में सवार यात्रियों को बेचा करते थे और इसके जरिए जीवन यापन उनका होता था। यहां से उनकी कहानी की शुरुआत होती है। ये कहानी बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन ये कहानी है संघर्ष की, तो ये कहानी है उम्मीद की। ये कहानी बताती है कि आप कितने भी नीचे से शुरुआत क्यों ना करें, आपका लक्ष्य कितना बड़ा है, आप कितनी ऊंचे तक सपना देख सकते हैं, आप उसे पूरा करने के लिए कितना परिश्रम कर सकते हैं, ये कहानी उन्हीं उसूलों की है।
1: रेलवे स्टेशन पर जहां पिता चाय की दुकान चलाते थे, उसके ठीक पीछे मोदी का स्कूल था। घंटी बजते ही वो दुकान छोड़ स्कूल चले जाते थे।
2: अरे जा नरेंद्र, ये ले अपना बस्ता और स्कूल जा, घंटी बज गई है।
3: और सुन, अच्छे से पढ़ना।
4: ठीक है बाबूजी, मैं अच्छे से पढ़ूंगा और आपका और माँ का नाम रोशन करूंगा।
2: सरस सरस सरस, जा जा जल्दी। और सुन, दोपहर को इधर ही है ना?
4: ठीक है बाबू,
2: आओ जे।
0: हम कहते हैं मुकद्दर का सिकंदर, पर मुकद्दर का सिकंदर भी तो वही हो सकता है जिसने मेहनत की हो। ये नरेंद्र मोदी का स्कूल है जहां पर कभी वो शिक्षा प्राप्त करते थे। लोग उनके अभिनय को भी याद करते हैं, एक एनसीसी कैडेट के तौर पर उनका समय याद करते हैं। और सबसे बढ़कर बात ये कि यहाँ पढ़ने वाले गरीब घरों के बच्चे भी ये सोचते हैं कि वो जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि उनके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उदाहरण है।
5: प्रधानमंत्री को जिन टीचरों ने पढ़ाया, उनमें से अधिकांश अब बहुत वृद्ध हैं। हालांकि अभी भी जो आयोजन होते हैं उसमें वो स्कूल आते हैं, लेकिन आप सब जो आप यहाँ पढ़ाते हैं, क्या प्रधानमंत्री को देखकर आप सब महसूस करते हैं? और जो टीचर सुनाते होंगे वो कहानियाँ तो सुनाते ही होंगे।
6: पहले तो मोदी जी हमारे स्कूल के छात्र रहे हैं, उस बात का हमें गर्व है। हमारे बच्चों के लिए ये सबसे बड़ा मैसेज है। हम बच्चों को कहते हैं कि एक सामान्य परिवार से आया हुआ बच्चा आज देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचा है। आप में भी ऐसी कई शक्तियां हैं कि आप भी कुछ कर पाते हैं। तो हमारे लिए सबसे बड़ा मैसेज माननीय नरेंद्र भाई मोदी साहब का जीवन ही है। उनके भूतपूर्व टीचर कहते थे कि नरेंद्र भाई बाल्यकाल से ही शिस्त वाले थे, एनसीसी के अच्छे कैडेट्स रह चुके हैं। उन्होंने नाटक किया था जिसमें जोगीदास कुमार का रोल किया था। जब जब उनके टीचर आते हैं तो वो ये बात अवश्य करते ही है। अभिनय में भी वो मशहूर थे और नेतृत्व के गुण तो बाल्यकाल से ही उनमें थे ही।
5: और ये तीसरी तस्वीर,
6: तीसरी जो वो तस्वीर है ना, 2017 में सर यहाँ पे पटनगर आए थे, तो यहाँ स्कूल में आकर उन्होंने अपनी स्कूल की मिट्टी को सर पर चढ़ाया और आंखों में आंसू आ गए। उनको बाल्यकाल का जीवन उनके सामने आ गया और हमारे लिए इससे बड़ा आनंद की बात तो और कुछ हो ही सकती नहीं।
1: सिर्फ स्कूल ही क्यों, पूरे वडनगर में मोदी के बचपन की तमाम कहानियां सबकी जुबान पर हैं।
7: और वो तालाब में तरने में नंबर वन थे। और एक दिन मगर के बच्चे को घर लाए थे घर पे, तो उन्होंने माता ने बोला कि तुम बच्चे को छोड़ के आओ, तुमको कोई उठा जाता तो हमको कैसा लगता, इसीलिए उन्होंने बच्चा वापस तालाब में रख दिया था।
1: बहरहाल जिस वक्त मोदी स्कूल में पढ़ रहे थे, गुजरात में आरएसएस का विस्तार हो रहा था। केवल 8 साल की उम्र में मोदी शाखा से जुड़ गए। लक्ष्मण राव इनामदार उर्फ वकील साहब ने मोदी को बाल स्वयं सेवक की शपथ दिलाई। आरएसएस की शाखा में शिरकत ने मोदी की शख्सियत में कई टहनियां जोड़ दी, लेकिन मोदी का मन बेचैन था। हिंदुत्व के प्रचार में वक्त बिताएं या एक सन्यासी का जीवन जिए, मोदी की जिंदगी में 2 साल ऐसे भी आए जब वो कहां थे कोई नहीं जानता।

0: गली गली में गूंजे नारा महा गुजरात, गली गली में गूंजे नारा।
1: केदार के नीचे गरुचट्टी में उन्होंने साधना की है ऐसा मैंने सुना है, वो गरुचट्टी भी मैंने देखी है। उनका जो अभी वहाँ के स्वामी है अभिराम जी करके, वो अभी नर्मदा किनारे उन्होंने आश्रम बनाया है, उनके साथ मेरे बात हुई थी तो उन्हें पता, हाँ नरेंद्र जी हमारे यहाँ आया करते थे ऐसा मेरे को, मेरे उन्होंने जो बताया था वो बात टैली हो गई।
2: कहते हैं दो साल के इस अज्ञातवास में मोदी ने हिमालय की खाक बिछानी, फिर वो लौट आए और अहमदाबाद जाने का फैसला किया। शहर के बस स्टैंड पर चाय का ठेला लगाया।
3: मेरा बैकग्राउंड भी बिल्कुल सामान्य गरीब परिवार का है। आप में से बहुत कम लोगों को मालूम होगा, मैंने पहली बार अभी दो दिन पहले दिल्ली में आया था तो पहली बार अपने मुंह से मैं बोला था, मित्रों मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था।
2: मोदी अहमदाबाद लौटे तो गीता मंदिर के नजदीक बस स्टैंड पर एक चाय की दुकान लगाई। चाय की दुकान पर स्वयं सेवक आया करते थे, नरेंद्र मोदी की उनसे बातचीत होती थी तो उनके अंदर का स्वयं सेवक एक बार फिर जाग उठा। ये वो वक्त था जब गुजरात ही नहीं पूरे देश में आरएसएस एक राजनीतिक शक्ति के तौर पर उभर रहा था। अकाल के दौरान समाज सेवा की वजह से संघ की छवि बदल रही थी, इमरजेंसी के खिलाफ गुस्सा लोगों के दिलों में उबल रहा था, संघ में मोदी की जिम्मेदारियां बढ़ रही थी और मोदी का शानदार मैनेजमेंट उनकी अहमियत के साथ साथ उनका कद भी बढ़ा रहा था। उन्हें विशेष ट्रेनिंग के लिए आरएसएस हेडक्वार्टर नागपुर बुलाया गया, जहां से वो प्रचारक बनकर गुजरात लौटे और उन्हें एबीवीपी की गुजरात शाखा का प्रभार सौंप दिया गया।
4: छात्र थे, कैसे पढ़ाई में थे, क्या कहते थे, क्या सोचते थे उस समय के जीवन में करेंगे?
5: वो आरएसएस के कार्यकर्ता थे, उसमें आरएसएस में होता है कि हर एक इंसान को आगे जाना चाहिए, कुछ न कुछ देश के लिए करना चाहिए। तो हम इसीलिए शाम को एक घंटा शाखा में मैदान में जाते थे और बराबर सभी देश प्रदेश की बातें करते थे, नई नई रमते रमते थे और चर्चा भी करते थे।
2: मोदी की जहनी तलाश, उनकी बेचैनी और उनके अंदर का ऐसा गुस्सा संघ के सिद्धांतों से मेल नहीं खाता था, लेकिन उनकी संगठनात्मक शक्ति, उनकी रणनीतियां, उनका मैनेजमेंट, काम हाथ में लिया तो उसे पूरा करने की जिद और एक कार्यकर्ता के तौर पर उनकी निष्ठा का ही नतीजा था कि मोदी के बगैर गुजरात आरएसएस का कोई काम नहीं चलता था। मणिनगर स्थित हेडगेवार भवन में नरेंद्र मोदी ने अपनी जिंदगी के कई अहम साल बिताए, पर मोदी ये अच्छे तरीके से जानते थे कि संघ के लीडरों के लिए एक कुशल मैनेजर होना अलग बात है और खुद एक कुशल लीडर होना अलग। मोदी अब सक्रिय राजनीति में प्रवेश चाहते थे, पर वो जानते थे कि इसके लिए उन्हें संघ की वैचारिक दुनिया से बीजेपी की वास्तविक राजनीति में कदम रखना होगा। 1987 में आरएसएस के संगठन सचिव के तौर पर मोदी की असली जिम्मेदारी गुजरात में बीजेपी की जड़ें मजबूत करने की थी। उन 8 सालों में जड़ें जमी भी और बढ़ी भी। 1985 की 11 सीटों से बीजेपी 1995 में 121 सीटों पर पहुंच गई। 1990 का वो दशक जब वीपी सिंह के मंडल पर बीजेपी का कमंडल भारी पड़ रहा था, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद चरम पर था। 25 सितंबर 1990 लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या की रथ यात्रा शुरू की थी और इस रथ यात्रा के सारथी बने थे नरेंद्र मोदी। संयोग देखिए कि जिस राम मंदिर के आंदोलन में आडवाणी के रथ पर मैनेजर की भूमिका में थे, वही राम मंदिर प्रधानमंत्री मोदी के ही कार्यकाल में पूरा हुआ। रथ यात्रा में मोदी की मैनेजमेंट कला पहली बार बीजेपी आलाकमान की नजर में आई और जब उस वक्त के बीजेपी अध्यक्ष डॉ. मुरली मनोहर जोशी की एकता यात्रा के मैनेजमेंट का पूरा जिम्मा नरेंद्र मोदी को सौंपा गया तो बीजेपी का हर छोटा बड़ा नेता उन्हें जानने लगा। लेकिन उस दौर में पार्टी में न तो मोदी की भूमिका बड़ी थी और न ही वो सीधे तौर पर नजर आते थे। उन दिनों देश में हिंदुत्व की लहर चल रही थी, बीजेपी गुजरात में विपक्ष में ही थी, शंकर सिंह वाघेला गुजरात के लोकप्रिय नेता थे और मोदी उनके रणनीतिकार की भूमिका में थे।
6: 1987 में जब बीजेपी को 121 सीटें मिली तो मुख्यमंत्री बनाया गया केशुभाई पटेल। उन दिनों पार्टी में वाघेला का जबरदस्त दबदबा था। वाघेला ने इतनी उठापटक मचाई कि केशुभाई को 221 दिनों में कुर्सी छोड़नी पड़ी। अटल बिहारी वाजपेयी को गुजरात जाना पड़ा और राज्य में डैमेज कंट्रोल के तहत नरेंद्र मोदी को राष्ट्रीय सचिव बनाकर दिल्ली भेज दिया गया। पार्टी ने सुरेश मेहता को गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया। गुजरात में वाघेला ने पार्टी छोड़ दी। केशुभाई का करिश्मा समय के साथ कम होता गया, लेकिन राष्ट्रीय सचिव बनाकर दिल्ली भेजे गए मोदी बड़े नेताओं के संपर्क में आते चले गए। दिल्ली में मोदी पार्टी महासचिव बनाए गए। उस दौरान वो दिल्ली में 9 अशोक रोड में एक कमरे में रहा करते थे, जो कभी पूर्व वित्त मंत्री और बीजेपी के दिवंगत कद्दावर नेता अरुण जेटली का कार्यालय हुआ करता था। मोदी गुजरात से गए तो इसका फायदा न तो उनके विरोधियों को मिला और न ही बीजेपी को। यहाँ तक कि स्थानीय निकाय चुनावों में भी बीजेपी को करारी हार मिली। 2001 में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए और बीजेपी दोनों हार गई। गुजरात में पार्टी का बेड़ा गर्क होता देख आला कमान को फिर से याद आए मोदी और याद आया मोदी का मैनेजमेंट। फैसला ये हुआ कि केशुभाई को हटाकर नरेंद्र मोदी को गुजरात की गद्दी सौंप दी जाए। हालांकि आरएसएस के कट्टर स्वयंसेवक मोदी को अंदाजा नहीं था कि अटल बिहारी वाजपेयी ने उनके लिए क्या सोच रखा है।
3: मुझे याद है जब मुझे मुख्यमंत्री का दायित्व मिला था तो अटल जी प्रधानमंत्री थे, उनका टेलीफोन आया कि भाई कहाँ हो। तो मैंने उनको कहा मैं स्मशान में हूँ। मैंने कहा ये माधवराव जी सिंधिया का जो एक्सीडेंट हो गया है उसमें उनके साथ एक पत्रकार कैमरामैन है गोपाल, उसका भी स्वर्गवास हुआ है, तो मैं उस गोपाल के फ्यूनरल में आया हूँ। तो मैं रात को अटल जी के यहाँ गया और फिर उसके बाद मेरे जिम में काम आ गया, अचानक आ गया। मुझे पता तक नहीं था, मैं गुजरात से दूर था, मैं गुजरात की गतिविधियों से भी परिचित नहीं था और वही जिंदगी की शुरुआत एक नए मोड़ पे आके कटी।
6: मोदी जब गुजरात लौटे तो पार्टी फूट और आपसी कलह से त्रस्त थी, पर मोदी के पास इतना वक्त नहीं था कि वो लोगों के गिले शिकवे दूर करते। एक साल बाद चुनाव थे, फूट से भरी पार्टी को दोबारा खड़ा करना था और सरकार में लौटना भी था। मोदी बीजेपी और गुजरात में डटकर अगले साल होने वाले चुनावों की रणनीति बनाने में लगे थे, पर उन्हें कुर्सी संभाले कुल 4 महीने ही हुए थे जब गुजरात में वो हो गया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था।
7: पहली बात है कि सरकार का एजेंडा है लॉ एंड ऑर्डर और मैं सरकार का दायित्व तो संभालता हूँ। सरकार संविधान की सीमाओं को लेकर के चलती है। सरकार किसका क्या एजेंडा है उसको पूरा करने के लिए काम सरकार का नहीं है, सरकार का काम है कानून और व्यवस्था को बहाल करना।
8: आपके लिए
7: सरकार पहली बार गुजरात में कम्युनल वायलेंस है जो 72 घंटे में इतने बड़े वायलेंस को रोकने में हम सफल हुए हैं।
2: बहरहाल मोदी ने ठान लिया था कि दामन पर इन छींटों को वो अपने काम से भुला देंगे। पूरा देश इस वक्त हैरान रह गया जब मोदी के पहले ही कार्यकाल में गुजरात की सकल घरेलू उत्पाद दर में 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई। ये हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी थी। गुजरात विकास के रास्ते पर चल निकला था।
9: 72% जॉब अकेले गुजरात में।

0: गुजरात की शक्लो सूरत बदली तो मोदी भी बदले बदले से नजर आने लगे। सूट बूट और हैट लगाकर मोदी किसी सीईओ की तरह नजर आते थे। बदलते गुजरात के साथ मोदी के तेवर भी बदलने लगे। अब मोदी अपनी आलोचनाओं का करारा जवाब देने लगे थे विकास के रिपोर्ट कार्ड के जरिए।
1: हमने पाइपलाइन डाल करके पाकिस्तान की सीमा पर जहां हिंदुस्तान की सेना का जवान तैनात है वहां तक पाइपलाइन से नर्मदा का शुद्ध पानी पहुंचाया, रेगिस्तान में भी पानी पहुंचाया और दुनिया की सबसे लंबी पाइपलाइन लगाई। पाइपलाइन की साइज इतनी बड़ी है कि हमारे मित्र भाई अखिलेश मारुति कार में बैठ करके परिवार के साथ उस पाइपलाइन के अंदर गाड़ी चला सकते हैं और जिसमें से हम नर्मदा का पानी ले जाते हैं 9000 गांवों में पीने का शुद्ध पानी पहुंचाते हैं।
0: 2003 में मोदी ने दुनिया में वाइब्रेंट गुजरात का नारा दिया ताकि गुजरात का आंतरिक ढांचा भी मजबूत किया जा सके, गुजरात के लोगों को रोजगार मिल सके। इसके लिए मोदी ने देश विदेश के निवेशकों के लिए गुजरात के दरवाजे खोल दिए।
1: मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हम सबके मार्गदर्शक माननीय नितिन नवीन जी, देश के कोने कोने में उपस्थित सभी आदरणीय मुख्यमंत्री, मंत्रीगण, विधायकगण, सभी जनप्रतिनिधि, सेवा ज्योति यात्रा के सभी यात्री, करोड़ों करोड़ों देशवासी, देवी और सज्जनों, मैं आप सभी का, सभी देशवासियों का आभार व्यक्त करता हूं। सात अक्टूबर 2001 को जब मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी तब सोचा नहीं था कि कभी ये पड़ाव भी आएगा। आज मुझे हेड ऑफ द गवर्नमेंट के तौर पर निरंतर सेवा करते हुए 25 वर्ष पूरे हो गए हैं।

ये जनता जनार्दन के निरंतर आशीर्वाद का परिणाम है। ये भारतीय जनता पार्टी एनडीए लोकतंत्र के प्रति अपार श्रद्धा रखने वाले सभी राजनीतिक साथियों का मैं आभार व्यक्त करता हूं। मैं देश की जनता के चरणों में शीश झुकाकर नमन करता हूं। इस दौरान इतने सारे चुनाव हुए, चाहे वो विधानसभाओं में चुनाव हुए हो या लोकसभा के चुनाव, जनता ने हमेशा मुझे अपनी सेवा के लिए चुना। मैं आज भारत के लोकतंत्र का, भारत के संविधान का भी वंदन करता हूं। मैं सेवा ज्योत यात्रा में हिस्सा लेने वाले सभी नागरिकों का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज प्रातः मैं श्री विनायक मंदिर में दर्शन के लिए गया था। मैंने परमात्मा के सामने देश के लिए प्रार्थना की। 140 करोड़ भारतवासियों के लिए प्रार्थना की और अपने लिए भी प्रार्थना की। प्रार्थना ये कि परमात्मा मुझे इतनी शक्ति और सामर्थ्य दीजिए कि मैं अपने देश के लिए और अधिक ऊर्जा के साथ काम कर सकूं। देशवासियों की और अधिक सेवा कर सकूं, दिन रात सेवा कर सकूं। आज मैं जो कुछ हूं, जहां भी हूं, जिस दायित्व पर हूं, उसमें सबसे बड़ा योगदान जनता जनार्दन का ही है। मेरे लिए जनता जनार्दन भी ईश्वर का ही रूप है। लाखों करोड़ों देशवासियों का विश्वास और लाखों कार्यकर्ताओं का परिश्रम ही मेरी सबसे बड़ी शक्ति रही है। देश ने मुझे बहुत कुछ दिया है, इसलिए देश के लिए मेरा दायित्व भी सबसे अधिक है। और मैं हृदय से ये मानता हूं कि देश के हर नागरिक का मुझ पर सबसे बड़ा हक है। ये 25 वर्ष का जनविश्वास, ये 25 वर्षों का अनुभव
बहुत बड़ी पूंजी है और ये पूंजी सिर्फ मोदी की नहीं है, ये पूंजी देश की है। मां भारती की हर संतान इस पूंजी की अधिकारी है। साथियों, मुझे याद है जब मैं वड़नगर के स्कूल में पढ़ने जाता था तो हमारे मास्टर जी तरह तरह से अलग अलग पाठ पढ़ाते थे और क्लास में सबसे पहले पहुंचने वाले स्टूडेंट्स में हमेशा मेरा नाम होता था। सीखने की वो ललक, सीखने की वो ललक मेरे जीवन का हिस्सा बन गई और मैं आज भी स्वयं को एक विद्यार्थी ही मानता हूं। हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करता हूं और इसलिए आज मंदिर में मैंने मेरे लिए भी एक प्रार्थना की। मैंने ईश्वर से मांगा कि मेरी सीखने की शक्ति कभी कम न हो। मैं जितना सीखूंगा देश के लिए कुछ करने का सामर्थ्य उतना ही बढ़ेगा। साथियों, आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो केवल कृतज्ञता का भाव ही आता है। मैं कृतज्ञ हूं हर उस व्यक्ति, हर उस घटना के प्रति जिसने मुझे कुछ न कुछ सिखाया है, जिसने मुझे जिताया उसने मुझे विनम्र होना सिखाया, जिसने मुझे गिराया उसने मुझे फिर खड़ा होना सिखाया। शुभचिंतकों ने मुझे प्रोत्साहित किया और आलोचकों ने मुझे अपने भीतर झोंकना सिखाया। जिसने मेरा साथ दिया उसने मुझे विश्वास की शक्ति दिखाई। जिसने मेरा विरोध किया उसने मुझे लोकतंत्र की शक्ति समझाई। हर संकट मेरे धैर्य की परीक्षा रहा, हर सफलता ने मेरे दायित्व बोध को विस्तार दिया और हर सिद्धि ने बड़े लक्ष्यों की तरफ बढ़ने का साहस दिया, जज्बा दिया।

साथियों, आज मैं कह सकता हूं मेरे जीवन में कोई घटना व्यर्थ नहीं गई। हर घटना ने मुझे सिखाया। मोरबी की बाढ़ ने मुझे दिन रात सेवा कार्यों में जुटने का रास्ता सिखाया। मुझे सेवा करने का भाव। भूज के भूकंप ने मुझे पुनर्निर्माण के लिए डटे रहना सिखाया। चंद्रयान ने मुझे असफलता से उठना सिखाया। कोरोना महामारी ने मुझे राष्ट्र की सामूहिक चेतना का महत्व समझाया। मीडिया ने मुझे खट्टे मीठे अनुभवों के बीच आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। जीवन के हर प्रवास ने मुझे नीतियों में संवेदना का रास्ता दिखाया। हर गांव, हर गरीब ने मुझे सिखाया कि साधन संसाधन भले ही सीमित हो, लेकिन सपने बड़े होने चाहिए। और हौसले बुलंद होने चाहिए। साथियों, वेद से विवेकानंद तक जिस राष्ट्र ने महान विचारों का अनवरत अनुष्ठान किया है, जिस राष्ट्र का सांस्कृतिक अनुभव हजारों वर्षों का है, जिस राष्ट्र ने मनुष्य को मानवता का भरोसा दिलाया है, उस राष्ट्र की सेवा करते हुए मुझे कभी भी एकाकी महसूस नहीं हुआ। कभी लगा ही नहीं कि मैं अकेला हूं। कोटि कोटि स्वयंसेवक जो भारत की सांस्कृतिक आत्मा के प्रहरी है, जिनके जीवन का एकमात्र ध्येय है मां भारती की निस्वार्थ सेवा, जो उस मंत्र को लेकर जीते हैं, हर पल कहते हैं हम सेवक हैं, हम सेवक हैं मानवता के, सेवा धर्म हमारा है, दिन दुखी की सेवा करना निश्चित कर्म हमारा है। ऐसे कोटि कोटि स्वयंसेवकों का, कार्यकर्ताओं का भी मुझे भरपूर साथ मिला है। मैं आज अपनी यात्रा के इस पड़ाव पर प्रत्येक स्वयंसेवक को, प्रत्येक साथी कार्यकर्ता को भी
आदरपूर्वक नमन करता हूं। साथियों, आज का ये दिन सिर्फ यादों के लिए नहीं है, ये अपने संकल्पों को नई ऊर्जा से भरने का दिन है। ये दिन उस वादे को दोहराने का दिन है, उस इरादे को व्यक्त करने का दिन है जो कहता है हम करके रहेंगे, हम वी विल डू इट, वी विल डू इट, वी विल डू इट। साथियों, लाल किले से मैंने सबका प्रयास की बात की थी, भारत को नई बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए जो जोश, जो जज्बा चाहिए वो एक ही संदेश देता है, हम करके रहेंगे, हम वी विल डू इट, वी विल डू इट, वी विल डू इट। विकसित भारत बाय 2047, वी विल डू इट। विकसित भारत बाय 2047, मेरे साथ बोलिए, टॉप थ्री इकोनॉमी, आत्मनिर्भर भारत, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, ओलंपिक्स का आयोजन, अंतरिक्ष में कदम। साथियों, ये ऊर्जा, ये उत्साह, ये आत्मविश्वास, ये अद्भुत है।

सज्जनों, जिस राष्ट्र के लोगों की धमनियों में ऐसा आत्मविश्वास लहू बनकर दौड़ता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। साथियों, सरकार के मुखिया के तौर पर 25 वर्षों की यह निरंतर यात्रा, लोग इसे उपलब्धि मानते हैं, लेकिन मैं इसे कैसे देखता हूं, मेरे लिए ये व्यक्तिगत महिमा मंडन का विषय नहीं है और न ही ये इसका अवसर है। आज से 25 साल पहले 50 वर्ष की आयु में जंगलों में आदिवासियों की सेवा करते करते गुजरा, पहाड़ों में जिंदगी बिताई और भारतीय जनता पार्टी में संगठन की राह चुनी। मेरा राजनीतिक रिपोर्ट कार्ड सिर्फ संगठन का काम करने वाले का ही था। मैंने चुनाव लड़ाए थे लेकिन एक भी चुनाव नहीं लड़ा था। चुनावी राजनीति में चमकने की चाहत होती तो बहुत पहले ही मैदान में उतर सकता था, लेकिन ये मेरा मिजाज नहीं था। मैं जीवन में क्या बनूंगा, मेरा क्या होगा, ये कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि बाल्यकाल से जो मुझे शिक्षा दीक्षा मिली, वो शिक्षा दीक्षा यही थी कि मैं एम्बिशन के लिए नहीं, मिशन के लिए जीवन जीने वाला इंसान रहा हूं। मुझे जो भी जिम्मेदारियां मिली, मैं उन्हें निभाता चला गया। जीवन का एक ही ध्येय था, देश के लिए निस्वार्थ कर्म। मेरे लिए कर्म ही सब कुछ है, कर्म ही मेरा धर्म है। गीता ने हमें सिखाया है कर्मण्येवाधिकारस्ते, मेरा अधिकार मेरे कर्म पर है। इसलिए मैं कर्म को अपना कर्तव्य मानता हूं। नियतम कुरु कर्मत्वम, नियतम कुरु कर्मत्वम, और हर कर्म पूरी क्षमता से करता रहूं। योग कर्मसु कौशलम, गीता ने ये भी कहा है, तस्मात् असक्तः सततम कार्य कर्म समाचर, निरंतर कर्म करो, बिना आसक्ति के कर्म करो, काम रुकना नहीं चाहिए, प्रयास रुकना नहीं चाहिए। इसलिए मेरे लिए
कर्म सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है, यह देश के प्रति, ये देश के प्रति मेरी साधना है। कर्म देश के लिए, कर्म देशवासियों के लिए, और इसमें भाव यही है, मा फलेषु कदाचन, फल की चिंता नहीं, श्रेय की भी चिंता नहीं। देश ने अवसर दिया, लोगों ने विश्वास दिया, परिस्थितियों ने सीख दी, जिसकी वजह से मुझे देशवासियों की अविरल सेवा का अवसर मिल रहा है।

0: और सज्जनों, पद प्रतिष्ठा अधिकार, जब बात देश की होती है तो इन सब का कोई महत्व नहीं रहता। हमने इस अनादि राष्ट्र में जन्म लिया है, ये एहसास ही अमृत है। इसके सामने सत्ता सुख कुछ भी नहीं है। पद प्रतिष्ठा तो दुनिया में कहीं भी मिल सकती है, लेकिन भारत जैसी पुण्य भूमि नहीं मिलेगी। वो भारत जिसने अंधकार के युग में भी मानवता को ज्ञान दिया, मूल्यों का प्रकाश दिया, उस राष्ट्र की सेवा का अवसर मिलना ही अमूल्य है। इन 25 वर्षों का आकलन करना है तो इससे नहीं होगा कि मैं कहां पहुंचा, बल्कि असली मूल्यांकन इससे होगा कि मेरा देश कहां पहुंचा है।
1: भारत माता की।
0: साथियों, जब मैं गुजरात में था तो एक मंत्र के साथ जीता था, और वो मंत्र था, गुजरात के विकास से देश का विकास। लेकिन वो दौर चुनौतियों से भरा था। तब मेरे पास न तो सरकार चलाने का अनुभव था और न ही प्रशासनिक व्यवस्था का बहुत ज्ञान था। मेरे पास तब कुछ था तो वो था जनता पर विश्वास, जन शक्ति पर यह भरोसा। सामाजिक कार्यकर्ता के नाते मेरे वर्षों के काम का निचोड़ था। इसी विश्वास को मैंने अपना सामर्थ्य बनाया। मैंने निर्णय लिए जनता को साथ लेकर, नीतियां बनाई जनता को साथ लेकर, नीतियों को लागू किया जनता को साथ लेकर, और वही मंत्र मैंने कहा, वी विल डू इट, वी विल। और साथियों, जब जनता साथ हो तो परिणाम भी आते हैं। गुजरात ने करके दिखाया। आज गुजरात जहां पहुंचा है उसका उदाहरण दुनिया देती है। साथियों, गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में जो अनुभव मिला उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। जमीन पर समस्या क्या है, समाधान क्यों नहीं हो पाता, फाइल क्यों अटकती है, लास्ट माइल डिलीवरी कैसे सुनिश्चित होती है, ऐसे अनेक प्रश्नों का उत्तर मैंने खोजा। और फिर मैंने जो सीखा वो अनुभव आज तक काम आ रहा है। साथियों, वर्ष 2014 में देश ने मेरे दायित्व का विस्तार किया। प्रधान सेवक के रूप में सेवा का दायरा बढ़ा दिया और तब भी देश के सामने विकराल चुनौतियां मुंह बाएं खड़ी थी। चारों तरफ समस्याएं ही समस्याएं नजर आती थी। देश का हर नागरिक नया रास्ता खोज रहा था। भारत की इकोनॉमी को लेकर दुनिया कहने लगी थी, इट्स अ गॉन केस। तब ग्रोथ कहीं दिखती नहीं थी, महंगाई आसमान छू रही थी। घोर निराशा में डूबे देश को फिर एक नए विश्वास की जरूरत थी। साथियों, मैंने फिर वही काम किया जो मुझे आता था। कोटि कोटि भारतीयों की जनशक्ति का आह्वान किया, उनके सामने फिर दोहराया, We will do it। और आज 12 वर्ष बाद तस्वीर एकदम बदल गई है। तब एक संकट आता था तो भारत की इकोनॉमी हिल जाती थी। आज संकट आता है तो भारत के सामर्थ्य की चर्चा होती है, भारत के रिजिलियंस की चर्चा होती है। साथियों, तब पॉलिसी पैरालिसिस की चर्चा होती थी और आज रिफॉर्म्स एक्सप्रेस की चर्चा होती है। तब इंपोर्ट बढ़ाने के रास्ते खोजे जाते थे और आज एक्सपोर्ट के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। तब हम अपनी जरूरत के मोबाइल फोन भी इंपोर्ट करते थे और आज मेड इन इंडिया मोबाइल फोन का जलवा है। तब पूरे भारत में ब्लैकआउट ये ग्लोबल हेडलाइन बनती थी और आज भारत की सोलर पावर कैपेसिटी के चर्चे होते हैं। साथियों, बदलाव की इसी कहानी का एक और उदाहरण, शानदार उदाहरण खेती भी है। आजादी के बाद से लेकर अब तक खेती की विकास दर अगर किसी दशक में निरंतर सबसे अधिक रही, आजादी के इतने दशक बीत गए, अभी का जो दशक है, बीता 10 वर्ष है, वो सबसे अधिक रहा है। साल 2015 से 2025 तक का दशक, 2015 से 2025 तक का दशक इतने खेती की ग्रोथ के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। खेती के लिए जाने वाले बड़े देशों में भी इतनी तेज ग्रोथ नहीं रही है। ये तभी होता है जब नीयत साफ होती है और नीति स्पष्ट होती है।

साथियों, सबका साथ सबका विकास, यही मेरे लिए सुशासन का आधार रहा है। हमारे देश की एक बड़ी त्रासदी रही है, राजनीति के लिए समाज को वोटों के हिसाब से बांट दिया गया। आप सोचिए, खेत में पानी नहीं आता तो किसको नुकसान होता है? क्या एक जाति के किसान ही इससे प्रभावित होते हैं? बिजली नहीं आती तो क्या सिर्फ एक समुदाय के घर में अंधेरा रहता है? इन सभी सवालों का जवाब है नहीं। समस्या सबकी है तो समाधान भी सबके लिए होना चाहिए, और इसलिए हमने सुशासन को सैचुरेशन से जोड़ा। सैचुरेशन यानी हर लाभार्थी जुड़े, कोई पात्र छूटे नहीं, कोई हकदार पीछे रहे नहीं, और किसी के हक पर कोई डाका न डाल सके। यही सैचुरेशन है, यही बदलाव की असली गाथा है। साथियों, हमने इस देश पर जन्म लिया, मां भारती की गोद में पलने बढ़ने का सौभाग्य हमें मिला। ये हमारे ऊपर मां भारती का ऋण है, इस देश की पावन पुनीत माटी का ऋण है। क्या हर भारतीय का यह संकल्प नहीं होना चाहिए कि वो कर्तव्य की पराकाष्ठा से कुछ कर्ज उतारे? हमारे दिल की हर धड़कन में क्या एक ही संकल्प नहीं गूंजना चाहिए? हमें भारत के प्राचीन गौरव को पुनर्जीवित करना है। भाइयों बहनों, जो भारत कभी विश्व की अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करता था, जिसके किस्से सुनकर दुनिया समृद्धि की कल्पना करती थी, लेकिन समय का चक्र बदला, गुलामी का कालखंड आया, आक्रांताओं और लुटेरों ने उसी भारत को लूटकर तबाह कर दिया। जो भारत दुनिया को दिशा दिखाता था, उसके विश्वविद्यालय नष्ट कर दिए गए, उसके पुस्तकालय जला दिए गए। एक ऐसा भी समय आया, छोटे छोटे संकट भी विकराल होने लगे, भयावह भुखमरी, विदेशियों के हमले, संस्कृति सम्मान और स्वाभिमान पर कृत प्रहार, ऊपर से ऐसी गरीबी और विभीषिकाएं, लेकिन तब भी मां भारती की संतानों का साहस नहीं टूटा। हर बार बार बार कोई दिग्दर्शक जन्म लेता रहा, सामान्य मानवी में नई सुबह का आत्मविश्वास जगाता रहा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, विवेकानंद जी की वाणी है, एक दिन एक अद्भुत गौरवशाली और महान भारत का उदय होगा, विवेकानंद जी कह के गए हैं। महर्षि अरबिंदो ने भी कहा था,
महर्षि अरविंदो ने कहा था, भारत के भाग्य का सुरूर, भारत के भाग्य का सूरज जरूर उगेगा और उसकी रोशनी पूरे विश्व को आलोकित करेगी, श्री अरबिंदो ने कहा था। साथियों, अदम्य साहस और अमिट जिजीविषा में तपे हमारे वो पूर्वज, हम उन्हीं की संतान है, उन्हीं के तप, त्याग और बलिदानों का परिणाम है। आज हमारे पास एक ऐसा देश है जहां हमारे सपने स्वतंत्र है और उन्हें पूरा करने का सामर्थ्य भी हमारे पास है। आज हम खुद ही अपनी नियति

करेंगे, ये राष्ट्र के सामर्थ्य के साथ अन्याय होगा अगर हम आसान लक्ष्यों को लेकर चलेंगे। ये समय है जब हम एक देश के रूप में बड़े लक्ष्य रखें, ऐसे लक्ष्य जो अभूतपूर्व हो, ऐसे लक्ष्य जो असाधारण हो। विकसित भारत का लक्ष्य, आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य, इकोनॉमी को टॉप थ्री में लाने का लक्ष्य, गरीबी का नामो निशान मिटाने का लक्ष्य, ड्रग्स फ्री इंडिया बनाने का लक्ष्य। साथियों, हमें ऐसा भारत बनाना है कि टूरिज्म की बात हो तो दुनिया भारत का नाम ले, पढ़ाई की बात हो तो दुनिया भारत को चुने, मनोरंजन का डेस्टिनेशन हो वो भारत हो, हेल्थ एंड वेलनेस की प्राथमिकता भारत ही बने, स्पोर्ट्स का सिरमौर भारत हो, इनोवेशन का हब भारत हो, टेक्नोलॉजी में भारत का डंका पूरे विश्व में बजे। लक्ष्य ऐसे हो कि हर क्षेत्र में तिरंगा शान से लहराए। साथियों, आज पूरे विश्व में भारत के पायलट की चर्चा है। एक दिन वो भी आएगा, जब दुनिया मेड इन इंडिया प्लेन की चर्चा करेगी। साथियों, ये लक्ष्य तभी पूरे होंगे जब वर्तमान में हम दूरदर्शी नीतियां भी बनाएं और परिश्रम की पराकाष्ठा भी करें। हमारे देश में समस्याएं हैं, लेकिन हमारे पास 140 करोड़ समाधान भी है। अब यह समय आराम का नहीं है, ये समय जोश के साथ आगे बढ़ने का है, खुद को देश के लिए खपा देने का है। आज भारत जितना युवा है, आज भारत में जितने युवा है, वो इतिहास से मिला एक बहुत बड़ा मौका है। ये मौका हमें गंवाना नहीं है। मैं अपने युवा साथियों से कहूंगा, आपके दादा दादी, नाना नानी, उस पीढ़ी के लोगों ने जो कष्ट झेले, वो आपको झेलने न पड़े, आपकी संतानों के भाग्य में वो कष्ट न हो, इसके लिए हमें आज ही काम करना होगा, और मैं वही कर रहा हूं। साथियों, कुछ लोग कहते हैं ये विकसित भारत का लक्ष्य तो बहुत दूर का लक्ष्य है, लेकिन मैं हर देशवासी को कहूंगा, आप आज से ठीक जरा इतिहास की तरफ नजर कर लीजिए। आज से ठीक 100 साल पहले के भारत को याद कीजिए। 20वीं सदी का वो तीसरा दशक, 1920-30 का कालखंड, हजार साल की गुलामी का असर और आघात, टूटा हुआ मनोबल, गरीबी में जकड़ा भारत, समाज को बांटने के षड्यंत्रों से घिरा भारत, ऐसे में आजादी का भरोसा करना कितना मुश्किल।

0: चल रहा होगा। 100 साल पहले की कल्पना कीजिए, लोग लड़ तो रहे थे, अपने बलिदान भी दे रहे थे, लेकिन भारत फिर से उठ खड़ा होगा, इसकी कल्पना भी कितनी कठिन रही होगी। लेकिन इतिहास साक्षी है कि जो असंभव लगता था वो हुआ। करीब 20 साल बाद ही, मैं उस कालखंड की बात कर रहा हूं, 1925-30 की बात कर रहा हूं, 20 साल के भीतर भीतर देश ने अंग्रेजों को खदेड़ कर दिखा दिया था। गुलामी की बेड़ियों को तोड़कर भारत आजाद हुआ। और इसलिए मेरा विश्वास है आज 2026 में हम विकसित भारत का जो सपना देख रहे हैं वो जरूर पूरा होगा, अवश्य पूरा होगा। कोई कारण ही नहीं है कि भारत अब रुके। और साथियों, तब तो 100 साल पहले की बात कर रहा हूं, तब तो हम 40 करोड़ से भी कम थे, आज हम 140 करोड़ से भी ज्यादा है। 140 करोड़ देशवासी हम मिलकर 2047 का विकसित भारत बनाएंगे और जरूर बनाएंगे। वी विल डू इट। साथियों, मेरा ये विश्वास देश की सिद्धियों से मजबूत हुआ है। यही भारत है जिन्होंने फ्रजाइल 5 इकोनॉमी को टॉप 5 में बनाया। हमें $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने में करीब 60 वर्ष लगे, लेकिन जब सही नीतियां मिली, सही दिशा मिली, तो उसी भारत ने 12 वर्षों में ही $2 ट्रिलियन से अधिक ग्रोथ करके दिखा दी। आप कोरोना का वो दौर याद कीजिए, दुनिया कहती थी कि भारत का क्या यही कर लेगा क्या। भारत तो जैसे मौत के ढेर पर बैठा ऐसा माना जाता था, लेकिन 140 करोड़ भारतीयों ने दुनिया को गलत सिद्ध किया। भारत ने खुद को भी बचाया और दुनिया के 100 से अधिक देशों में भी लाखों लोगों का जीवन बचाने में अहम भूमिका निभाई। और इसलिए हमें भारत के सामर्थ्य को कभी भी कम नहीं आंकना है। साथियों, मुझे पेरिस में हुई COP21 की बैठक याद है। भारत ने रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में अपने संकल्पों को दुनिया के सामने रखा। तब भी भारत पर अविश्वास करने वाले बहुत थे, लेकिन भारत ने तय समय से पहले ही वो लक्ष्य हासिल किए। ऐसा करने वाला भारत G20 का इकलौता देश है। साथियों, आज विकसित भारत का हमारा सपना भी है, हमारा संकल्प भी है, और उसे पूरा करने का हमारे पास सामर्थ्य भी है। आज देश अपनी चुनौतियों का स्थायी समाधान कर रहा है। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की समस्या, ऐसा लगता था कि यह अंतहीन है और देश इसके दुष्प्रभावों से बाहर नहीं निकल पाएगा, लेकिन आज आर्टिकल 370 की दीवार पूरी तरह टूट चुकी है। इसी तरह नक्सलवाद की समस्या को देश का दुर्भाग्य मान लिया गया था, लेकिन आज इसकी कमर तोड़ी जा चुकी है। साथियों, आतंकवाद भारत के भाग्य को ही चुनौती दे रहा था। देशवासी मान चुके थे कि न तो ये आतंकवादी मानेंगे और न ही उनके आका मानेंगे, लेकिन ये भारत की अदम्य इच्छा शक्ति है, हमने घर में घुसकर मारा। घर में घुसकर मारा और दुश्मनों को बता दिया कि भारत की ताकत क्या है। साथियों, एक दशक में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकल सकते हैं, ये भी किसने सोचा था, लेकिन भारत ने यह करके दिखाया है। यानी जिसको कल्पना से परे समझा जाता था, वो सिद्धियां भारत ने हासिल की है। इसलिए मुझे 140 करोड़ भारतीयों के सामर्थ्य पर भरोसा है और 25 साल का मेरा अनुभव कहता है कि हम अपनी आंखों के सामने भारत को विकसित होते देखेंगे। साथियों, आज सवाल सिर्फ ये नहीं है कि 2047 में हमें कहां पहुंचना है, हमें आज ये तय करना है कि उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अभी से क्या करना है। और इसलिए आज देश हर वो कदम उठा रहा है जो विकसित भारत के लिए, आधुनिक भारत के लिए आवश्यक है। भारत के युवा स्टार्टअप से लेकर स्पोर्ट्स के मैदान तक छाए रहे हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट में भारत की दुनिया में पहचान बने, किसी हिंदुस्तानी के पैर चंद्रमा पर पड़े, भारत जेनेटिक जैसी फील्ड में लीडर बने, भारत क्वांटम कंप्यूटिंग में सबसे आगे खड़ा हो, हम एआई की फील्ड में ग्लोबल हब बने, हमारी यूनिवर्सिटी दुनिया की टॉप रैंकिंग में गिनी जाए, मेड इन इंडिया उत्पादों का गौरव दुनिया भारत का सामान खरीदने के लिए लालायित हो, दुनिया की डाइनिंग टेबल पर हमारे किसानों के उत्पाद हो, जब क्लाइमेट चेंज की बात हो, जब वाटर गवर्नेंस की बात हो, गरीबों को एम्पावर करने की बात हो, तो दुनिया भारत के सॉल्यूशंस को अपनाए। आने वाले वर्षों में हमारी सामूहिक ऊर्जा, हमारी सामूहिक फोकस इसी दिशा में होना चाहिए। साथियों, भारत 140 करोड़ सपनों का भारत है, भारत असीमित ऊर्जा का, अनगिनत इन आकांक्षाओं का राष्ट्र है, सामर्थ्य की कोई कमी नहीं है, हमें बस हर कदम हर प्रयास को जोड़ना है, हमें एक ध्येय एक मकसद से जुटना है। हमें आजादी मिली क्योंकि हमारे देश के लोगों ने जान दी। अब जब विकसित भारत बनाना है तो हमें देश के लिए जीना होगा। किसके लिए जीना होगा? किसके लिए जीना होगा? किसके लिए जीना होगा? हम बढ़ेंगे तो, हम सीखेंगे तो, हमारे संकल्प होंगे, हमारा परिश्रम होगा, हमारी शक्ति होगी, हमारी भक्ति होगी, हम इनोवेट करेंगे, हम रिसर्च करेंगे, हम क्रिएट करेंगे, हमारा प्रण होगा, हम जिएंगे। साथियों, जब हम ये भावना लेकर चलेंगे तो कोई लक्ष्य असंभव नहीं रह जाएगा। हमें आज से शपथ लेकर आगे बढ़ना है कि राष्ट्र प्रथम मेरा संकल्प होगा, राष्ट्र समृद्धि मेरा प्राण रहेगा, राष्ट्र की सेवा मेरा लक्ष्य रहेगा और नागरिक देवो भव का मंत्र मेरी राष्ट्र आराधना साधना का आधार रहेगा, कर्म मेरा धर्म रहेगा, कर्तव्य पालन मेरा प्रण होएगा, स्वयं से समष्टि तक, स्वयं से व्यय तक, मेरे जीवन का कण कण, क्षण क्षण भारत भूमि को समर्पित रहेगा। और जब तक भारत विकसित नहीं होता, जब तक भारत विकसित नहीं होता, तब तक मैं न रुकूंगा, न थकूंगा, न अपने पद से डिगूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर आज के इस कार्यक्रम के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे।
1: नरेंद्र मोदी का संबोधन आपने सुना इंदिरा गांधी स्टेडियम से। 25 साल सेवा संकल्प के 25 साल के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी लंबी उनकी एक स्पीच रही, एक लंबा संबोधन रहा, और आज उन्होंने वी विल डू इट, आज ये नारा उन्होंने दिया, कहा कि हम सेवक हैं और हम सेवक हैं मानवता के, सेवा धर्म है हमारा, दीन दुखी की सेवा करना निश्चित कर्म है हमारा। इस तरह की बातें आज उन्होंने कही। और मैं कुछ भी नहीं हूं, भरपूर साथ मुझे स्वयंसेवकों का मिला, कार्यकर्ताओं का मिला, उन्हीं के यात्रा मेरी यात्रा बनी।
2: और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि नितिन नवीन भी वहां मौजूद है, और ये दिया जो जलाया है प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में, सारे कार्यकर्ता वहां पर जोश से भरे हुए, और खुद प्रधानमंत्री ने उनके अंदर इस जोश को भरा नारे लगाकर, और वी विल डू इट का नारा आज उन्होंने दिया है, एक नया नारा प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिया गया है।
1: तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा भाव के 25 साल किए पूरे, और एक नारा उन्होंने जो दिया, वी विल डू इट। आमतौर पर पीएम जो नारे देते हैं वो हिंदी में देते हैं, लेकिन इस बार अंग्रेजी में, जिसमें हम कर दिखाएंगे, हम कर देंगे, वी विल डू इट। और प्रधानमंत्री ने कहा कि यह आत्मनिर्भर भारत है, विकसित भारत 2047, यानी कि हम 2047 में भारत को विकसित भारत बना देंगे, और वी विल डू इट, हम एक कर देंगे, ये उन्होंने कहा है। और अलग अलग क्षेत्रों में उनके कार्यकाल में क्या क्या उपलब्धियां रही वो कहा, और पहले की सरकारों का डायरेक्ट नाम ना लेकर इनडायरेक्टली कि पहले क्या क्या समस्याएं, क्या क्या चुनौतियां थी वो उन्होंने कहा कि वो लगातार दिखती थी, वो लगातार दुख भी देती थी, और फिर जब हम सरकार में आए तो हमने उन्हें बदला।
2: तो पीएम मोदी कहते हैं कि कई ऐसी चीजें हैं जो एक लक्ष्य है, उनको वो करके पूरा दिखाएंगे। आइए सुनिए क्या कहा।
0: विकसित भारत बाय 2047, We will do it. विकसित भारत बाय 2047, मेरे साथ बोलिए, मेरे साथ बोलिए, टॉप थ्री इकोनॉमी, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, ओलंपिक्स का आयोजन, अंतरिक्ष में कदम।
2: और आइए एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर।

0: सीएम से पीएम तक जनसेवा के 25 साल पर मोदी ने फूंका विकसित भारत के संकल्प का बिगुल, कहा वी विल डू इट। एम्बिशन के लिए नहीं बल्कि मिशन के लिए जीता हूं, श्री विनायक से लिया देश की समृद्धि का आशीष।
1: मोदी की जन्मभूमि से कर्म भूमि तक सेवा संकल्प के कई कार्यक्रम, वाराणसी में रहेंगे नितिन नवीन। शाह ने दी 25 साल के बेमिसाल सफर की बधाई, सीएम योगी और धामी की सेवा ज्योति यात्रा।
0: आकाशवाणी भवन में जबरन घुसने के मामले में राहुल प्रियंका समेत कई कांग्रेस नेताओं के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर, प्रदर्शन के दौरान 8 घंटे वहीं बैठे थे नेता विपक्ष। एसआईआर के खिलाफ आज फिर विपक्ष का प्रोटेस्ट।
1: बढ़ सकता है आपकी ईएमआई का बोझ, आरबीआई के रेपो रेट में 0.25% की बढ़ोतरी, होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन हो सकता है महंगा, नया रेपो रेट 5.5% हुआ।
0: वृंदावन के गुरुकुल में दिल दहला देने वाला हादसा, गुरुकुल में 4 छात्रों की मौत से मचा हड़कंप, पानी की टंकी साफ करने उतरे थे बच्चे, एक लड़के की हालत गंभीर, हो रहा था जहरीली गैस का रिसाव।

0: और सीधा गुरुग्राम आपके लिए चलते हैं। गृहमंत्री अमित शाह का संबोधन चल रहा है।
1: सुना है और आज यहां से 800 मीटर दूर चौराहे पर युवा एक सेवा ज्योति यात्रा लेकर पहुंचेंगे और वहां मशाल को प्रस्थापित करेंगे। अभी आप सबके सामने मशाल को प्रज्वलित कर मैं और श्री नायब सिंह सैनी युवाओं को ये सेवा ज्योति यात्रा के लिए प्रस्थान कराएंगे। मेरा आप सभी से आग्रह है कि जितने लोग हो सके इस सेवा ज्योति यात्रा में जुड़े। मेरे साथ मोदी जी के 25 साल पहले गुजरात और फिर देश के करोड़ों करोड़ों नागरिकों के कल्याण के 25 साल रहे हैं, भारत के गौरव के 25 साल रहे हैं और हम आज के दिन परम कृपालु परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि मोदी जी दीर्घायुष हो, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे और लंबे समय तक इस देश का नेतृत्व करते रहें। यही प्रार्थना के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं और अब सेवा ज्योति यात्रा हम आगे बढ़ाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की।
2: माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय से आग्रह, सेवा ज्योति प्रज्वलित कर।
3: तो आप सुन रहे थे अमित शाह को और सेवा ज्योति भी वो प्रज्वलित करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की स्पीच हुई जिसमें उन्होंने वी विल डू इट का नारा दिया। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे गोल हैं, लक्ष्य हैं जो उनके हैं और वो पूरे करके दिखाएंगे, चाहे वो विकसित भारत का हो, अंतरिक्ष जाने का हो या अर्थव्यवस्था को तीसरे नंबर पर पहुंचाने का हो।
0: अर्थव्यवस्था पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है काफी ज्यादा जोर रहा, ध्यान रहा कि अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर जब पूरा विश्व डगमगा रहा था, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था डगमगा रही थी, तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसे स्थिर है, वो आंकड़े भी उन्होंने रखे। उन्होंने ये भी कहा कि पहले क्या होता था, पहले कोई भी ग्लोबल क्राइसिस आता था तो फिर भारत की इकोनॉमी पर उसका इंपैक्ट पड़ जाता था, लेकिन हमने उसे स्थिर करके रखा और जो नंबर आज के समय में है उसका भी उन्होंने उल्लेख किया कि भारत की अर्थव्यवस्था की तारीफ हर तरफ हो रही है। वी विल डू इट का नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया और क्यों, किन किन मोर्चों पर हम कर दिखाएंगे, कर देंगे, वो एक के बाद एक उन्होंने कहा। सामने जो आवाम, जो जनता बैठी हुई थी, वो भी वी विल डू इट का नारा उस समय लगा रही थी। एक नारा फिर से 2047 विकसित भारत का, जो लगातार बीजेपी अपने समय में देती रही कि 2047 तक हमारा लक्ष्य है कि भारत को विकसित बना देंगे। आपको सुनाते हैं प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में क्या कहा।
4: आज का ये दिन सिर्फ यादों के लिए नहीं है, ये अपने संकल्पों को नई ऊर्जा से भरने का दिन है। ये दिन उस वादे को दोहराने का दिन है, उस इरादे को व्यक्त करने का दिन है जो कहता है हम करके रहेंगे, हम वी विल डू इट। साथियों, लाल किले से मैंने सबका प्रयास की बात की थी, भारत को नई बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए जो जोश, जो जज्बा चाहिए, वो एक ही संदेश देता है, हम करके रहेंगे, हम वी विल डू इट, वी विल डू इट। विकसित भारत बाय 2047, वी विल डू इट। विकसित भारत बाय 2047, मेरे साथ बोलिए, मेरे साथ बोलिए, टॉप थ्री इकोनॉमी, टॉप थ्री इकोनॉमी, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, ओलंपिक्स का आयोजन, ओलंपिक्स का आयोजन, अंतरिक्ष में कदम, अंतरिक्ष में कदम। साथियों, ये ऊर्जा, ये उत्साह, ये आत्मविश्वास, ये अद्भुत है।

0: सज्जनों, जिस राष्ट्र के लोगों की धमनियों में ऐसा आत्मविश्वास लहू बनकर दौड़ता है, उसे कोई रोक नहीं सकता।
1: और आइए सीधा रुख करते हैं दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम का, जहां पर मौजूद है हमारे सहयोगी पीयूष मिश्रा। पीयूष, जो लोग वहां पर मौजूद थे, प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन सुन रहे थे, जिनमें उन्होंने कई बातें कही और एक नया नारा दिया, वी विल डू इट, तो किस तरह का उत्साह वहां देखने को मिला?
2: जी देखिए अंजलि, उत्साह तो चरम सीमा पर था, क्योंकि 25 साल पीएम नरेंद्र मोदी के पूरे हो रहे हैं गवर्नमेंट में रहते हुए, गवर्नमेंट हेड रहते हुए। 2001 में 7 अक्टूबर को उन्होंने शपथ ली थी गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर, और उसके बाद से जो पूरी गाथा है वो लगातार चलती रही, और आज 25 साल पूरे हो गए हैं। हमें आज वो दिन भी याद आता है जब 2014 से पहले जब चुनाव थे, तब गुजरात मॉडल जो एक विकास का मॉडल था उसको लेकर उस वक्त नरेंद्र मोदी सामने आए थे, बीजेपी ने उनको अपना चेहरा बनाया था, कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाया था, और उसके बाद जब 2014 में एक बंपर मेजोरिटी के साथ वो प्रधानमंत्री बने, तब उसके बाद उन्होंने कई बड़े बड़े फैसले लिए, जिसमें सबसे बड़ा फैसला तो अगर आज तक भी अगर हम माने तो 370 को हटाने का हो सकता है। उसके बाद एक बड़ा संकल्प रहा है बीजेपी का, राम मंदिर बनाने का, वो फैसला भी पूरा हुआ, और उसके बाद लगातार कई फैसले, और आज प्रधानमंत्री ने एक और नारा दिया कि वी विल डू इट, 2047 में विकसित भारत हम बना के रहेंगे। टॉप 3 इकोनॉमी की प्रधानमंत्री ने बात की, साथ साथ बताया कैसे कि हिंदुस्तान को एक सबसे बड़ा ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। तो जो काम पिछले 25 सालों में हुए, चाहे वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए या देश के प्रधानमंत्री रहते हुए, उन्हीं कामों को आगे लेके जाने, और जैसे विकास की गति पर देश आगे बढ़ रहा है, इसी विकास की गति को आगे बढ़ाते हुए विकसित भारत 2047 का सपना भी पूरा करना है। लोगों में काफी जोश जुनून, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां मौजूद थे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अलावा, दिल्ली बीजेपी के कई बड़े नेता, कई मंत्री, कई कार्यकर्ता, पूरा स्टेडियम भरा हुआ था, और सबके चेहरे पर इस बात की खुशी थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 25 साल गवर्नमेंट हेड रहते हुए पूरे कर लिए। और प्रधानमंत्री ने कई सारी बातें कही, उन्होंने कहा कि आज जब उन्होंने दिन की शुरुआत की तो उन्होंने भगवान विनायक के मंदिर जाकर माथा टेका और उनसे आशीर्वाद मांगा कि उनको और क्षमता और शक्ति दे, ताकि वो और बेहतर तरीके से देश के लिए काम कर सके। मैं एक बार आपको तस्वीर भी दिखाऊं कि यहाँ पर क्या माहौल क्या बना हुआ है। इंदिरा गांधी स्टेडियम के आसपास के जितने इलाके हैं जो दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर से होते हुए यहां तक आते हैं, उन सभी इलाकों को सजा दिया गया। ये देखिए बीजेपी के झंडों से पूरा इलाका सजा हुआ है, प्रधानमंत्री के पोस्टर्स भी यहां पर लगे हुए हैं, और जिस विकसित भारत संकल्प की बात प्रधानमंत्री ने की उसके बारे में जानकारी भी यहां पर दी गई। आप देखिए बड़ा सा पोस्टर यहां पर लगा हुआ है, मेरे सहयोगी मनीष भिदुड़ी जूम करके आपको दिखा रहे होंगे। तो इस तरह से तैयारियां पूरी दिल्ली में बीजेपी ने की हुई है। इसी के साथ साथ एक तरफ जहां इस तरह की तैयारी दिल्ली में आपको दिख रही है, वहीं दूसरी ओर देश भर में अलग अलग तरह के कार्यक्रम जो है वो भी बीजेपी कर रही है। आज जो सेवा यात्रा बनारस से शुरू होकर वडनगर गई थी और वडनगर से शुरू होकर बनारस की तरफ बढ़ी थी, वो सेवा यात्रा भी आज पूरी होने जा रही है, और इन सेवा यात्राओं में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी के अलावा कई मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं, और वहां जाकर आप जो अब तक अचीवमेंट्स रही है मोदी सरकार की, इन सभी चीजों को लेकर चर्चाएं
3: जी। पीयूष, आप बने रहे हमारे साथ, आपके पास हम लौटते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन आज हुआ, इस संबोधन में जीवन के अलग अलग पड़ाव में या अपने कार्यकाल के दौरान अलग अलग पड़ाव में क्या क्या उन्होंने सीखा, क्या क्या चुनौतियों का सामना किया, इस पर भी उन्होंने अपनी बात रखी। आपको सुनाते हैं क्या कहा।
0: साथियों, आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो केवल कृतज्ञता का भाव ही आता है। मैं कृतज्ञ हूं हर उस व्यक्ति, हर उस घटना के प्रति जिसने मुझे कुछ न कुछ सिखाया है, जिसने मुझे जिताया उसने मुझे विनम्र होना सिखाया, जिसने मुझे गिराया उसने मुझे फिर खड़ा होना सिखाया। शुभचिंतकों ने मुझे प्रोत्साहित किया और आलोचकों ने मुझे अपने भीतर झोंकना सिखाया। जिसने मेरा साथ दिया उसने मुझे विश्वास की शक्ति दिखाई। जिसने मेरा विरोध किया उसने मुझे लोकतंत्र की शक्ति समझाई। हर संकट मेरे धैर्य की परीक्षा रहा। हर सफलता ने मेरे दायित्व बोध को विस्तार दिया और हर सिद्धि ने बड़े लक्ष्यों की तरफ बढ़ने का साहस दिया, जज्बा दिया।
1: वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: तेरा प्यार प्यार प्यार उल्टा बार सर एक बार दो ठुमका लगाने पर
3: मेरे पास एक आइडिया है।
2: क्या?
3: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है
4: एक रॉकस्टार होता है अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है दुनिया हिला पर स्टेज नहीं हिलता
5: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
6: मेरा ना सिंपल है एक लड़की है उसका भाई जेल में है लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
7: कौन सी बनानी है?
8: सर गैसो फास्ट की ग्रोथ तो चेक कीजिए। गैसो फास्ट 27% इनो 9.2%
9: गड़बड़ है।
10: आहा गैसो फास्ट वाले जीरे का जादू चला रहे इसीलिए इनके चाहने वाले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। गैसो फास्ट इंडिया की एसिडिटी का असली इंडियन सॉल्यूशन।
11: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर बेबाक है मेरा सिग्नेचर Signature Finest Silver Elaichi, a premium product from Dilbagh Group.
12: यार लोन भूल गया मैरी
13: सजेस्ट अ गुड बैंक ना
14: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक
12: स्मॉल फाइनेंस बैंक
14: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन होम लोन लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी माइक्रो मॉर्गेज लोन गोल्ड लोन प्री ओन कार लोन टू व्हीलर लोन
15: देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट
16: उज्जीवन नथिंग स्मॉल अबाउट अस
17: Love and Care, the world's finest range of rubber pet toys.
18: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर मेंटर तरक्की का ऑलराउंडर
19: डायबिटीज की वजह से मुझे बार बार बाथरूम जाना पड़ता है
20: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
19: अब मैं चैन की नींद सो पाता कपीवा डायबिटीज जूस।
21: जेके मैक्स वाइप इजी दीवारों के दाग का जवाब सिर्फ जेके मैक्स वाइप इजी।
22: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
23: सोच बदलो और बैंक भी।
24: इन एसोसिएशन विद
25: पंजाब नेशनल बैंक भरोसे का प्रतीक।
24: विमल बोलो जुबां केसरी हिंट एक हिंट तो देते।

0: प्यार प्यार उनका बात सर एक बार दो ठुमका लगाने बस।
1: मेरे पास एक आइडिया है।
0: क्या?
1: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है,
2: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिला, पर स्टेज नहीं हिलता,
3: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
4: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
2: कौन सी बनानी है?
5: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर, सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
6: डायबिटीज की वजह से मुझे बार बार बाथरूम जाना पड़ता है,
7: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
6: अब मैं चैन की नींद सो पाता हूं। कपिवा डायट्री जूस।
8: जेके मैक्स वाइप इजी, दीवारों के दाग का जवाब सिर्फ जेके मैक्स वाइप इजी।
9: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
10: सोच बदलो और बैंक भी।
11: In association with
12: Punjab National Bank, भरोसे का प्रतीक।
11: विमल बोलो जुबां केसरी, हिंट एक हिंट तो देते।
13: आ गया सोमवार और आ गए
14: चकमक चचा।
13: एक कचौड़ी दो समोसा चकमक, तेरा क्या भरोसा?
15: चकमक चाचा से सीधे चकमक है?
13: अरे नारा है, दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है, महिला लोग एकदम नारा लगाए जा रही, बुझ रहा ना।
15: लेकिन भैया नारे अरे फालतू सब बेकार, एकदम बेकार। नारे होते थे हमारे टाइम।
13: अच्छा
15: सुनाए, जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, जेपी भाई छूटेंगे।
13: अच्छा तो हमारे टाइम वाले सुनिए, दो कुलचा एक बिरयानी, इन नेताओं की खत्म कहानी।
15: अरे जमीन के चकबंदी में, जमीन के चकबंदी में क्या फाइनेंस बंदी में,
13: ठंडी चाय गरम करो चकमक चाचा, शर्म करो।
15: अरे राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर।
13: अरे लाठी गोली खाएंगे, इस्तीफा दे के जाएंगे।
15: अरे सुनो, इस दीपक में तेल नहीं, सरकार चलाना खेल नहीं।
13: अरे लाल फूल नीला फूल, जंजी नंगे ब्यूटीफुल।
15: अरे बारी बारी सबकी बारी, अब की बारी अटल बिहारी।
13: चाय गरम दूध गरम, चकमक चाचा भी शरम
15: है।
13: हाँ,
15: जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है।
13: अरे मेरे सिर में दर्द है, जिसका कारण मर्द है आप जैसा।
16: हम जैसे? इधर आओ।
17: हम जैसे मर्द नहीं होते किसी नारे से ऑफेंड, हम तो भैया करते हैं हर सही मुद्दे को डिफेंड।
13: आई चचा।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: सीएम से पीएम तक जन सेवा के 25 साल पर मोदी ने फूंका विकसित भारत के संकल्प का बिगुल, कहा वी विल डू इट एम्बिशन के साथ नहीं मिशन के लिए जीता हूं। श्री विनायक से लिया देश की समृद्धि का आशीष। मोदी की जन्मभूमि से कर्मभूमि तक सेवा संकल्प के कई कार्यक्रम, वाराणसी में रहेंगे नितिन नवीन, शाह और राजनाथ ने दी 25 साल के बेमिसाल सफर की बधाई, सीएम योगी और धामी की सेवा ज्योति यात्रा। आकाशवाणी भवन में जबरन घुसने के मामले में राहुल प्रियंका समेत कई कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ दर्ज हुए एफआईआर, प्रदर्शन के दौरान 8 घंटे वहीं पर बैठे थे नेता विपक्ष, विपक्ष के साथियों को राहुल ने दिया लंच। सीएम योगी की हुंकार, यूपी में राज्यसभा के चुनावों को बता दिया 2027 का नतीजा, लड़ाई फिर 80-20 पर ही आई, 10 में सिर्फ 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट उतारने पर कटाक्ष। अब बढ़ सकता है आपकी ईएमआई का बोझ, आरबीआई ने रेपो रेट में 0.25% की बढ़ोतरी की, होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन हो सकता है महंगा, नया रेपो रेट 5.5% हुआ।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
0: नमस्कार, 12 बजे 12 रिपोर्टर देख रहे हैं आप, मैं हूं राजीव ढोंडियाल। 12 बजे 12 रिपोर्टर की शुरुआत आज बड़ी खबर से करते हैं। जन सेवा में 25 साल पूरा करने के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को पूरा करने का संकल्प दोहराया, वी विल डू इट का नारा दिया और उन्होंने कहा कि मैं एम्बिशन नहीं मिशन के लिए जीने वाला इंसान।
2: आज का ये दिन सिर्फ यादों के लिए नहीं है, ये अपने संकल्पों को नई ऊर्जा से भरने का दिन है। ये दिन उस वादे को दोहराने का दिन है, उस इरादे को व्यक्त करने का दिन है जो कहता है हम करके रहेंगे, हम वी विल डू इट, वी विल डू इट, वी विल डू इट। साथियों, लाल किले से मैंने सबका प्रयास की बात की थी, भारत को नई बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए जो जोश, जो जज्बा चाहिए वो एक ही संदेश देता है, हम करके रहेंगे, हम वी विल डू इट, वी विल डू इट, वी विल डू इट। साथियों, आज प्रातः मैं श्री विनायक मंदिर में दर्शन के लिए गया था। मैंने परमात्मा के सामने देश के लिए प्रार्थना की, 140 करोड़ भारतवासियों के लिए प्रार्थना की और अपने लिए भी प्रार्थना की। प्रार्थना ये कि परमात्मा मुझे इतनी शक्ति और सामर्थ्य दीजिए कि मैं अपने देश के लिए और अधिक ऊर्जा के साथ काम कर सकूं। देशवासियों की और अधिक सेवा कर सकूं, दिन रात सेवा कर सकूं। आज मैं जो कुछ हूं, जहां भी हूं, जिस दायित्व पर हूं, उसमें सबसे बड़ा योगदान जनता जनार्दन का ही है। मेरे लिए जनता जनार्दन भी ईश्वर का ही रूप है। लाखों करोड़ों देशवासियों का विश्वास और लाखों कार्यकर्ताओं का परिश्रम ही मेरी सबसे बड़ी शक्ति रही है। देश ने मुझे बहुत कुछ दिया है, इसलिए देश के लिए मेरा दायित्व भी सबसे अधिक है। और मैं हृदय से ये मानता हूं कि देश के हर नागरिक का मुझ पर सबसे बड़ा हक है।
0: हमारे संवाददाता पीयूष मिश्रा इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। पीयूष, पीएम ने नारा दिया वी विल डू इट, क्या करेंगे, क्या विजन रखा है पीएम ने, बताएं।
3: ये देखिए, वी विल डू इट का सबसे बड़ा इंडिकेशन यही है कि हम 2047 में विकसित भारत बनकर रहेंगे, हम ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनकर रहेंगे और देश तरक्की की राह पर आगे बढ़ता रहेगा। इस तरह की बातें प्रधानमंत्री ने आज अपने इस संबोधन से दी है। आज 25 साल उनको हो गए पब्लिक लाइफ में, पहले गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर लंबे समय तक रहना और उसके बाद प्रधानमंत्री के तौर पर काफी लंबे समय तक रहना और 3 टर्म्स एज गुजरात चीफ मिनिस्टर और 3 टर्म्स अब देश के प्रधानमंत्री के तौर पर भी उनके पूरे होने की कगार पर है। और आज जब 25 साल पूरे हो गए तो प्रधानमंत्री ने नारा दिया वी विल डू इट और हम तीसरी बड़ी इकोनॉमी की और भी हैं, और इस तरह की बातें भी प्रधानमंत्री ने कही। इसी के साथ साथ एक विजन देश के सामने रख दिया है कि हमको मेक इन इंडिया पर ज्यादा फोकस करना है, हमको जो टेक्नोलॉजी है नैनो टेक्नोलॉजी उन सभी के ऊपर काम करना है। हमने पिछले कुछ दिनों में राजीव ये भी देखा है कि प्रधानमंत्री का जोर मेक इन इंडिया पर ज्यादा रहा, तो मेक इन इंडिया के पुश के माध्यम से विकसित भारत कैसे बन सके, इन सभी चीजों पर जोर प्रधानमंत्री का है। और बेहद महत्वपूर्ण ये है कि ये मैसेज तब आ रहा है जब एक तरफ लगातार प्रधानमंत्री को घेरने के लिए और मोदी सरकार को घेरने के लिए विपक्ष रणनीति कर रहा है। कल हमने धरना प्रदर्शन देखा, आज भी धरना प्रदर्शन संभवतः हो सकता है। इसी बीच भारत कैसे आगे बढ़े, इस तरह की बातें प्रधानमंत्री आज करते हैं।
0: बहुत शुक्रिया पीयूष आपका इस तमाम जानकारी के लिए। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने राजधानी दिल्ली के श्री विनायक मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की। हिंदू धर्म में मान्यता है कि शुभ काम की शुरुआत भगवान गणेश की पूजा आराधना से होती है, इसलिए सार्वजनिक प्रशासन में 25 साल पूरे होने के शुभ दिन की शुरुआत पीएम मोदी ने श्री विनायक मंदिर पहुंचकर पूजा कर की। विनायक भगवान गणेश का ही नाम है और दिल्ली के सरोजनी नगर में श्री विनायक मंदिर स्थित है, वहीं पर पीएम मोदी पहुंचे।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आज एक अहम दिन है। आज उन्होंने अपने 25 साल हेड ऑफ गवर्नमेंट यानी सरकार के मुखिया के तौर पर पूरे किए हैं। ये जर्नी, ये पूरा उनका दौर शुरू हुआ जब 2001 में 7 अक्टूबर को वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर के तौर पर उन्होंने शपथ ली। फिर उन्होंने उस पोजीशन पे लगभग 12 साल तक काम किया है और फिर 2014 में उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के तौर पर शपथ ली और अब वो अपने लगातार तीसरे टर्म पे काम कर रहे हैं। हम इस समय श्री विनायक टेम्पल में मौजूद हैं और यहाँ पे आज सुबह प्रधानमंत्री आए थे, उन्होंने गणेश भगवान के सामने पूजा अर्चना की और उन्होंने अपने देशवासियों के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके सुख समृद्धि के लिए, अपने देश की लगातार उन्नति के लिए प्रार्थना की यहाँ पे। और वो सिर्फ वो ही नहीं, पूरे बीजेपी ने आज के दिन के लिए कई प्रोग्राम सेट किए हैं। देश भर में कई प्रोग्राम्स होने वाले हैं, टॉर्च मार्चेस हैं, सेवा तीर्थ यात्रा है और संकल्प अभियान जो है इनका, उसका भी शुभारंभ आज हम देखने को मिलेगा।
0: 12 बजे 12 रिपोर्टर में अब रिपोर्ट वाराणसी से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म स्थान वडनगर से बाइक से निकाले गए सेवा संकल्प यात्रा वाराणसी पहुंच गए। 500 सेवा संकल्प यात्रियों ने 22 दिन में लगभग 2200 किलोमीटर का सफर तय किया। हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उन्हीं के पास चलते हैं। क्या इस समय वहां पर दृश्य दिखाई दे रहे हैं, कैसे यात्रा आगे बढ़ रही है और क्या कुछ इस समय हो रहा है अभिषेक?
5: राजीव, हम तो इस वक्त वाराणसी में हैं। पप्पू की अड़ी, जो बहुत मशहूर पप्पू की अड़ी है जहां चाय पे लोग चर्चा करते हैं, वहां हमारी मौजूदगी है। मगर मैं आपको बताऊं कि वडनगर से चला जो काफिला है 500 बाइक सवारों का, वो पहुंच करके उसको बाकायदा सम्मानित किया गया है। बाकायदा ये जो तमाम बाइकर्स हैं, चूंकि प्रधानमंत्री के सेवा संकल्प के 25 साल पूरे हुए हैं और 15 साल में आप देख लें तो इस वक्त 2014 के बाद से लगातार वो वाराणसी से सांसद हैं, तो एक तरीके से प्रधानमंत्री रहते हुए वाराणसी उनकी कर्मभूमि बन गई। तो वाराणसी से वडनगर, इसे जोड़ने का जो एक प्रयास है, दो राज्य और दो ऐसे जगहों को जो सुदूर पूरब और एकदम से पश्चिम में है, तो प्रधानमंत्री के इस सेवा संकल्प पर आज बड़े बड़े कार्यक्रम हैं। दो कार्यक्रम इस वक्त हो चुके हैं। बाकायदा जो बाइकर्स यहां से वहां गए थे उनका सम्मान और जो वहां से यहां आए हैं उनका सम्मान हो रहा है। नितिन नवीन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, थोड़ी देर में वाराणसी पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे, हेमंत विश्व शर्मा आसाम के मुख्यमंत्री होंगे और बाइकर्स के साथ साथ जितने भी वाराणसी के लोग हैं उनको बुलाया गया है। 50,000 की उम्मीद की जा रही है कि लोग होंगे और आज प्रधानमंत्री के इस सेवा संकल्प के दिन लोगों को संबोधित करेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। प्रधानमंत्री ने दिल्ली में बहुत सारी बातें कही हैं, सुनना होगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन क्या कहते हैं। बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं का जमावड़ा है और ये जो सेवा के 25 साल है उसको बड़ा करने की कोशिश है। राजीव
0: कुमार अभिषेक, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और अगली रिपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म स्थान वडनगर से। वाराणसी से 17 सितंबर को सेवा संकल्प सभा यात्रा पर निकले 500 सेवा यात्री वडनगर भी पहुंच चुके हैं और वहां पर और क्या कुछ हो रहा है बताने संवाददाता अतुल तिवारी।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री के तौर पर सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूर्ण हो चुके हैं, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सेवा संकल्प अभियान चलाया गया। इसी सेवा संकल्प अभियान के तहत 250 जितने बाइकर्स वाराणसी का पवित्र जल लेकर वडनगर पहुंचे हैं। इसी पवित्र जल से आज सुबह वडनगर में स्थित हाटकेश्वर मंदिर पर जलाभिषेक किया गया है। अब इसके बाद शिवराज सिंह चौहान और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, साथ ही में बंगाल के मुख्यमंत्री शिवेंदु अधिकारी की मौजूदगी में इस सेवा अभियान की पूर्णाहुति को लेकर एक भव्य समापन कार्यक्रम का आयोजन वडनगर में किया गया है। इससे पहले जो बाइकर्स पहुंचे हैं वो वृक्षारोपण करेंगे और वडनगर में स्थित म्यूजियम की मुलाकात का कार्यक्रम आयोजित किया गया है।
0: अब रिपोर्ट काशी से है। काशी से क्योटो तक भारत जापान मैत्री की नई राह को आज नई पहचान मिलने वाली है। वाराणसी में आज शिंजो आबे की स्मृतियों को समर्पित आबे मेमोरियल कॉरिडोर का लोकार्पण किया जाएगा। वाराणसी रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर एक पोस्ट किया। भारत जापान संबंधों को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी। सीएम योगी ने कहा कि काशी से क्योटो तक भारत जापान मैत्री की नई राह बन रही है। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में शिंजो आबे की स्मृतियों को समर्पित आबे मेमोरियल कॉरिडोर का आज लोकार्पण होगा।
7: उत्तर प्रदेश में काशी से क्योटो का सफर आस्था से अर्थव्यवस्था और संस्कृति को मजबूत करता आज काशी में लोकार्पण। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की स्मृति में इस मेमोरियल का लोकार्पण दिखाता है

0: आ रही है। यही वजह है कि पूरा देश और आस्था, संस्कृति, अर्थव्यवस्था से जुड़ता हुआ ये काशी से क्योटो का सफर आज लोकार्पण होगा चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ की तरह।
1: 12:12 रिपोर्टर में अब बात दिल्ली के आकाशवाणी भवन में, जहां पर कल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के धरने की अब दिल्ली पुलिस ने आकाशवाणी भवन में जबरन घुसने पर FIR की है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उनके साथ मौजूद कांग्रेसी नेता, सांसदों के खिलाफ FIR की गई है। राहुल और प्रियंका समेत कई अज्ञात लोगों के खिलाफ ये दिल्ली पुलिस ने उनको शिकायत मिली थी आकाशवाणी भवन की तरफ से, और उसके बाद ये FIR हुई।
2: आकाशवाणी भवन में जबरन घुसने के मामले में दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। आपको बता दें कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कई सांसद चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, और इसी दौरान तस्वीरें सामने आई थी जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कई सांसद आकाशवाणी भवन में जबरन दाखिल हो गए थे। उस दौरान आकाशवाणी भवन से दिल्ली पुलिस को एक PCR कॉल चली थी, उसके बाद देर शाम आकाशवाणी भवन की तरफ से आधिकारिक शिकायत दी गई, जिसमें यह बताया गया कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आकाशवाणी भवन में जबरन घुसे, इसलिए उनके खिलाफ ट्रेसपासिंग की FIR दर्ज की जाए। शिकायत मिलने के बाद दिल्ली पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज कर ली है और पूरे मामले की जांच की जा रही है।
1: अब बात मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ इंडिया गठबंधन के आंदोलन के। आज दिल्ली में एक बार फिर विपक्षी दल बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं। दिल्ली में इंडिया ब्लॉक के कई दल चुनाव आयोग के कार्यालय के बाहर संयुक्त रूप से विरोध प्रदर्शन करेंगे। इसमें कांग्रेस, आम आदमी पार्टी भी जुड़ गए, लेफ्ट दल, RJD, NCP, शरद पवार समेत कई विपक्षी दल होने वाले। दिल्ली के अलावा बिहार और जम्मू में भी आज इंडिया गठबंधन का प्रोटेस्ट है। विपक्ष SIR को वापस लेने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहा है।
3: चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इंडिया गठबंधन ने कल मोर्चा खोल दिया, तो आज दिल्ली की विपक्षी पार्टियां दिल्ली CEO यानी कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के खिलाफ मोर्चाबंदी करेगी। आज 2 बजे दिन में कांग्रेस पार्टी से लेकर लेफ्ट दलों का जुटान दिल्ली के कश्मीरी गेट के दिल्ली CEO के दफ्तर के बाहर होगा, जहां पर ये पार्टियां आरोप लगा रही हैं कि दिल्ली में वोट चोरी हो रही है और उसी के खिलाफ उनका विरोध प्रदर्शन होगा। अहम बात यह है कि कल के विरोध प्रदर्शन में आम आदमी पार्टी ने हिस्सेदारी नहीं दिखाई थी, लेकिन आज इस विपक्षी दलों के जुटान में आम आदमी पार्टी भी शामिल होने जा रही है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि दिल्ली में चल रहे SIR में 1/3 नामों को जिस तरह से काटा गया है, ये वोट चोरी से कम नहीं है, और यही वजह है कि वो आज के इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे। कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन न केवल राष्ट्रीय स्तर पर इलेक्शन कमिश्नर को घेरने का काम कर रहा है, बल्कि अब राज्य स्तर पर भी इलेक्शन कमीशन के दफ्तरों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का दौर शुरू होता हुआ दिख रहा है।
1: अब रिपोर्ट पटना से, जहां पर बिहार के सभी प्रखंड मुख्यालयों में इंडिया गठबंधन आक्रोश मार्च निकालने वाला है, और कल आपको बता दें कि सभी जिला मुख्यालयों पर धरना भी दिया जाएगा, और इसी दिन पटना में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राजभवन मार्च भी निकाला जाएगा। पूरी खबर बता रहे हैं संवाददाता रोहित सिंह।
4: चुनाव आयोग और SIR के खिलाफ RJD का आज से 2 दिवसीय आंदोलन बिहार में शुरू हो चुका है। आज पहले दिन यानी 7 अक्टूबर को सभी प्रखंड मुख्यालयों पर RJD के नेता और कार्यकर्ता आक्रोश मार्च निकालेंगे, तो वहीं कल यानी 8 अक्टूबर को सभी जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा, और तेजस्वी यादव खुद राजधानी पटना में शहीद स्मारक से लेकर लोक भवन तक आक्रोश मार्च में शामिल होंगे। आने वाले दिनों में इस बात की भी सूचना है कि RJD के नेता राष्ट्रपति से भी इस मुद्दे पर मुलाकात कर सकते हैं, यानी कि बिहार में अब चुनाव आयोग और SIR को लेकर RJD बड़ा आंदोलन करने जा रही है।
1: विपक्ष के प्रदर्शन और चुनाव आयोग से मुलाकात को लेकर चुनाव आयोग ने भी अपना पक्ष रखा है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मुताबिक शाम 4 बजे तक किसी भी राजनीतिक दल ने बैठक के लिए औपचारिक अनुरोध नहीं किया था। आयोग का कहना है कि लगभग 4 बजे तक दिल्ली पुलिस से राहुल गांधी के नेतृत्व में 240 सांसदों के प्रतिनिधिमंडल के मिलने की जानकारी मिली। सांसदों ने संसद भवन NXC में बैठक का प्रस्ताव रखा, लेकिन आयोग ने कहा कि तय प्रोटोकॉल के मुताबिक बैठक ECI परिसर में होनी चाहिए। आयोग ने अपने वरिष्ठ अधिकारी को भेजकर ज्ञापन लेने का प्रस्ताव भी दिया, जिसे सांसदों ने स्वीकार नहीं किया।
5: इंडिया ब्लॉक के सांसदों से।

0: नहीं मिलने पर चुनाव आयोग ने अपनी सफाई पेश की है। चुनाव आयोग का कहना है कि कल शाम 4 बजे दिल्ली पुलिस के माध्यम से उनको ये रिक्वेस्ट भेजी गई कि राहुल गांधी अपने कुछ सांसदों के साथ उनसे मिलना चाहते हैं और एक मेमोरेंडम सौंपना चाहते हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि जब वो इस रिक्वेस्ट पर विचार कर ही रहे थे तभी विपक्षी दलों के द्वारा इस रिक्वेस्ट को दोबारा से मॉडिफाई किया गया और कहा गया कि ये बैठक चुनाव आयोग की बिल्डिंग में ना होकर संसद भवन की एनेक्सी बिल्डिंग में होनी चाहिए जिसमें तमाम 240 लोग शामिल होंगे। चुनाव आयोग ने कहा क्योंकि ये प्रोटोकॉल के तहत नहीं आता है ऐसे में इस मांग को ठुकरा दिया गया। हालांकि चुनाव आयोग ने यह भी दावा किया कि इसके बावजूद तमाम विपक्षी दलों को यह न्योता दिया गया कि आप मुख्य चुनाव आयोग की जो बिल्डिंग है वहां पर आकर इसको लेकर बातचीत कर सकते हैं और अपना पक्ष रख सकते हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि एक तरफ राहुल गांधी और समूचा विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लामबंदी कर रहा है, वहीं चुनाव आयोग भी अपने पक्ष को लेकर मजबूती से खड़ा दिखाई दे रहा है।
1: 12:12 रिपोर्ट। अब रिपोर्ट पंजाब से है जब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के कैंप ऑफिस समेत 8 जगहों पर सीबीआई ने बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया था। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री ऑफिस से जुड़े हुए भ्रष्टाचार के मामले को लेकर केस दर्ज करने और जांच करने का आदेश दिया था और इस मामले को लेकर पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट भी जा चुकी है। आम आदमी पार्टी इसे राजनीतिक छापेमारी बता रही है।
2: देर रात सीबीआई की छापेमारी की गई पंजाब मुख्यमंत्री के कैंप ऑफिस में। हम उसके बाहर खड़े हैं, आपको दिखाएं, सन्नाटा पसरा हुआ है, सिक्योरिटी बरकरार बनी हुई है और उसी बीच में पूरा फोकस आ गया है ओएसडी राजबीर घुमन में जो कि करीबी बताए जाते हैं भगवंत मान के। पूरा मामला क्या है हम आपको बताते हैं। मामला है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ने कई चिट्ठियां लिखी हैं पंजाब पुलिस को और कहा कि करप्शन के मामले सामने आ रहे हैं, उसकी जांच की जाए। मामला पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में पहुंचा जब पिटीशन फाइल की गई और उस बीच में सुनवाई के बाद यह तय किया गया पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा कि यह जांच सीबीआई करेगी। 5 तारीख को यह फैसला आया, ये ऑर्डर आया, उसके बाद 6 तारीख को सीबीआई रजिस्टर कर देती है एफआईआर और तुरंत ही छापेमारी 8 ठिकानों पे की जाती है। अब बात क्या आ रही है जहां पे ट्रांसफर पोस्टिंग्स है, आईएएस आईपीएस की चेंज ऑफ लैंड यूज पॉलिसी है उसको लेकर, आर्म्स लाइसेंसेस को लेकर, और उसके बाद अगर हम बात करें पॉलिसी चेंजेस को लेकर जहां पे बात की गई है ब्राइबरी और इम्प्रोप्राइटी, उसकी जांच करेगी सीबीआई और इस फैसले के खिलाफ पहुंची है आम आदमी पार्टी सरकार सुप्रीम कोर्ट में जहां पे जल्द ही सुनवाई होगी।
3: बीजेपी ने सीबीआई के इस रेड के जरिए अपनी 2027 की कैंपेन का आगाज कर दिया है। पिछले 4.5 साल में जो भगवंत मान सरकार ने काम किए हैं उनको देख के बीजेपी घबराहट में है। ग्राउंड के ऊपर लोग बीजेपी को देखने को तैयार नहीं है, जिसकी वजह से आज अपनी एजेंसियों की दुर्वर्तो करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने ये रेड करवाई है। लेकिन मैं समझता हूँ कि पंजाब के लोग दलेर हैं, वो हमेशा धक्कों का मुंह तोड़ जवाब देते रहे हैं और इन इलेक्शन में भी भारतीय जनता पार्टी को इन्हीं धक्कों का मुंह तोड़ जवाब पंजाबियों द्वारा दिया जाएगा।
1: 12:12 रिपोर्ट। में रिपोर्ट फ्रांस से। फ्रांस में कल प्रदर्शन हुए, फ्रांस में शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए छात्रों का धरना प्रदर्शन जारी और कल ये बड़े पैमाने में ही बड़ा जो है बन गया। पेरिस, लियो, मार्से और नेंट शहर में कल बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला, उगाह बना। एक अनुमान के मुताबिक कल फ्रांस भर में 2.5 लाख से ज्यादा छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों ने प्रदर्शन में भाग लिया। हालांकि आयोजकों के मुताबिक प्रदर्शन में 4.5 लाख लोग शामिल हुए। इस दौरान कई जगहों पर हिंसक झड़पें भी हुई। फ्रांस के गृह मंत्रालय के मुताबिक कल प्रदर्शनकारियों ने झड़प में 43 अधिकारी इसमें घायल हुए, तकरीबन 500 लोगों को इसमें गिरफ्तार भी किया गया।
4: फ्रांस के स्कूली शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की कमी और इमारतों की मरम्मत समेत कई जरूरी सुधारों को लेकर हो रहा छात्रों और उनके अभिभावकों का प्रदर्शन लगातार उग्र होता चला जा रहा है। फ्रांस की राजधानी पेरिस समेत करीब 1 दर्जन शहरों के अंदर बीते 2 दिनों के दौरान हिंसक प्रदर्शन हुए। नौबत यहां तक पहुंच गई कि पुलिस को आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा, बल का प्रयोग करना पड़ा। फ्रांस की सरकार ने स्कूलों में करीब 1 हफ्ते की छुट्टी का ऐलान कर दिया है। फ्रांस में जहां इसे घरेलू राजनीति में आने वाले राष्ट्रपति चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है, तो वहीं इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक टिप्पणी सामने आई जिसमें उन्होंने इसे फ्रांस पर बढ़ते हुए इस्लामिक प्रभाव और साथ ही फ्रांस में बढ़ती हुई प्रवासियों की संख्या का असर करार दिया है।
1: और अब रुकने छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार, इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
7: आगे आगे
8: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: माँ के पैरों की धूल माथे पर लगा, परदेश की गलियों में अपने वतन के गीत सुनो।
2: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार। सर एक बार दो तुम थमका लगाने बस।
3: मेरे पास एक आइडिया है।
2: क्या?
3: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है,
4: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिला, पर स्टेज नहीं हिलता,
5: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
6: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
4: कौन सी बनानी है?
7: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
8: सर कैसो फास्ट की ग्रोथ तो चेक कीजिए। कैसो फास्ट 27%, इनो 9.2%।
9: गड़बड़ है।
10: आहा, कैसो फास्ट वाले जीरे का जादू चला रहे, इसीलिए इनके चाहने वाले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। कैसो फास्ट, इंडिया की एसिडिटी का असली इंडियन सॉल्यूशन।
11: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
12: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
13: सोच बदलो और बैंक भी।
14: Love and Care, the world's finest range of rubber pet toys.
15: Sorry!

0: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
1: जीके मैक्स।
2: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
1: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
3: जेके वॉल मैक्स।
1: बेस्ट पेंट
4: जेके मैक्स।
1: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स। खुशियों के रंग।
5: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
6: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
5: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।
7: In association with
8: Signature Finest Cardamom Seeds, E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल।

नवरात्रि, धनतेरस और शादी ब्याह का सीजन आते ही कई परिवारों की शॉपिंग लिस्ट में सोना सबसे ऊपर आ जाता है। लेकिन इस बार ज्वेलरी शोरूम तक पहुंचने वाले ग्राहक पहले की तरह केवल डिजाइन नहीं, वजन और बजट का हिसाब भी लगा रहे हैं। इसकी वजह सोने की ऊंची कीमतें हैं। हालांकि इसके बावजूद ज्वेलरी की मांग बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। आंकड़ों को देखें तो फिलहाल गोल्ड पिछले साल के त्योहारी पीक रेट से करीब 9% ऊपर है, जबकि इस साल जनवरी में सोना करीब 2 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम की ऊंचाई को भी पार कर गया था। महंगे सोने के बावजूद बाजार को उम्मीद है कि त्योहारी और वेडिंग सीजन में ग्राहक खरीदारी के लिए पहुंचेंगे। हालांकि खरीदारी का तरीका पहले से अलग दिख रहा है। ज्वेलर्स के मुताबिक ग्राहक सोना खरीदने का इरादा नहीं बदल रहे, लेकिन तय बजट में ज्यादा वैल्यू तलाश रहे हैं। इसी वजह से भारी ज्वेलरी की जगह हल्के डिजाइन और कम ग्राम वाली ज्वेलरी की मांग बढ़ रही है। ऐसे में ज्वेलरी डिमांड 20-25% बढ़ने का अनुमान है, लेकिन वॉल्यूम 10-15% कम रह सकता है। इसकी वजह हल्की ज्वेलरी पर फोकस का बढ़ना है और लोअर कैरेट और स्टडेड ज्वेलरी की मांग भी बढ़ी है। कई ग्राहक ऐसी ज्वेलरी चुन रहे हैं जिसे शादी, त्योहार और रोजमर्रा के अलग अलग मौकों पर इस्तेमाल किया जा सके। डिजाइन और इस्तेमाल की उपयोगिता पर पहले से ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। इसके चलते गोल्ड एक्सचेंज वॉल्यूम 15-20% बढ़ने का अनुमान है। वही भारी ज्वेलरी खरीद में पुराने सोने का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, जिससे बजट संभालने में मदद मिल रही है और नई खरीद के लिए एक्सचेंज लोकप्रिय विकल्प बनता जा रहा है। यानी पुराने सोने के एक्सचेंज का ट्रेंड भी तेजी से बढ़ रहा है। कई ग्राहक पुरानी ज्वेलरी देकर नई खरीद रहे हैं, जिससे उन्हें अतिरिक्त रकम कम खर्च करनी पड़ रही है। साफ है कि त्योहारी सीजन आगे बढ़ने के साथ बाजार की तस्वीर साफ है। सोने की ऊंची कीमतों ने ग्राहकों को खरीदारी से दूर नहीं किया है, लेकिन खरीदारी का तरीका जरूर बदल दिया है। इस बार ज्वेलरी बाजार में मुकाबला ज्यादा बिक्री का नहीं, ग्राहकों को तय बजट में ज्यादा वैल्यू देने का है। और यही वजह है कि सोने की चमक के साथ हल्की ज्वेलरी का ट्रेंड भी तेजी से बढ़ता दिख रहा है। आज तक ब्यूरो।

लखनऊ में आयोजित सेवा ज्योति यात्रा विकसित भारत संकल्प सभा में मुख्यमंत्री योगी हुए शामिल। राज्यसभा के चुनावी नतीजों का जिक्र करते हुए विपक्षी दलों पर निशाना। सीएम योगी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि राज्यसभा के चुनाव ने बता दिया कि विधानसभा का चुनाव परिणाम क्या होने जा रहा है। सीएम योगी ने कहा यह लड़ाई 80-20 पर फिर आ गई, 80% एनडीए, 20% में पीडीए में, और पीडीए का हाल फिर से सामने आने वाला है। आज से 2 दिवसीय वाराणसी के दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सेवा संकल्प यात्रा में शामिल लोगों का करेंगे स्वागत। वाराणसी में पीएम मोदी के सार्वजनिक जीवन और शासन में 25 वर्ष पूरे होने के मौके पर सेवा संकल्प अभियान के तहत विशेष गंगा आरती, अच्छे स्वास्थ्य की कामना। वाराणसी में सेवा संकल्प यात्रियों का भव्य स्वागत, ढोल नगाड़ों के बीच में फूलों की बारिश और चंदन का तिलक लगाकर अभिनंदन किया गया। ग्रेटर नोएडा में आयोजित एक्सपो मार्ट में कार्यक्रम में शामिल जेपी नड्डा आज होंगे और विकसित भारत संकल्प सभा में भी लेंगे हिस्सा। काशी से क्योटो तक भारत जापान मैत्री की नई राह को मिलेगी नई पहचान। शिंजो आबे की स्मृतियों को समर्पित आबे मेमोरियल कॉरिडोर का लोकार्पण आज। सीएम योगी ने एक्स पर पोस्ट करके भारत जापान संबंधों को लेकर रखी अपनी बात, बोले कि काशी से क्योटो तक भारत जापान मैत्री की नई राह बन रही है। यूपी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले गठबंधन इंडिया में सीट शेयरिंग को लेकर खींचना जारी। एसपी कांग्रेस दोनों ही 403 सीटों पर अपनी चुनावी तैयारी का दे रहे हैं संकेत। विराट कोहली की टीम ने फलाहारी महाराज की ओर से लगाए गए 5 करोड़ के आरोपों को तथ्यहीन फर्जी बताया। कहा कि अपनी गहरी आस्था और श्रद्धा के कारण ही उनसे मिलने जाते हैं। झांसी में बीजेपी विधायक को विकास कार्यों को लेकर युवाओं ने सुनाई खरी खोटी, जमकर हुआ हंगामा। कहा कि जो सरकार अच्छा काम करेगी उसी को वोट देंगे। वीडियो वायरल होने के बाद से बीजेपी विधायक ने दी सफाई, बोले कि हमसे नहीं बल्कि लोकल समस्याओं को लेकर वो नाराज थे। भदोही कार्पेट एक्सपो में कालीनों की एक नए अनोखे डिजाइन आकर्षण का केंद्र बने अमिताभ बच्चन की 3 पीढ़ियों को कलाकारों ने कालीन पर उतारा। मथुरा में जमीनी विवाद को लेकर 2 गुटों में भीषण झड़प, गोलीबारी का लाइव वीडियो हुआ वायरल, 7 लोगों के खिलाफ FIR। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर खौफनाक हादसा, तेज रफ्तार कार और ट्रक की जबरदस्त टक्कर, 3 टेनिस खिलाड़ियों की मौत। मथुरा के गुरुकुल में दर्दनाक हादसा, 4 छात्रों की मौत, टैंक सफाई के दौरान जहरीली गैस का रिसाव, सीएम योगी ने शोक किया व्यक्त। मेरठ में रिटायर्ड सूबेदार के घर पर आग लगाने की साजिश में कई झुलसे और सीसीटीवी में बाइक सवार 2 संदिग्ध कैद। लखनऊ में बाइक सवार युवक ने राइफल से कुत्ते को गोली मार दी, 1 की मौत हो गई। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन लगातार 16वें दिन जारी, तारीख ऐलान होने तक प्रदर्शन जारी रखने का ऐलान।

0: यूपी की सियासत में अब वाराणसी की बात, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन यानी कि पहली बार गुजरात के सीएम बनने के बाद से 25 साल पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर देश भर में कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी सुबह सुबह सरोजनी नगर के श्री विनायक मंदिर में पूजा अर्चना करके सेवा का आशीर्वाद उन्होंने मांगा। पीएम मोदी ने इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में विकसित भारत संकल्प सभा और सेवा ज्योति यात्रा में सेवा के संकल्प लिए, तो लखनऊ में नमो सेवा की अनकही कहानियों का मंचन हुआ। उधर वाराणसी में सेवा संकल्प बाइक रैली का समापन अभी बाकी है। इस मौके पर बीजेपी की ओर से व्यापक रूप से मनाए जा रहे सेवा ज्योति यात्रा में पीएम मोदी ने नए संकल्प लिए।
1: मेरे साथ बोलिए, टॉप थ्री इकोनॉमी, टॉप थ्री इकोनॉमी, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, ओलंपिक्स का आयोजन, अंतरिक्ष में कदम। साथियों, ये ऊर्जा, ये उत्साह, ये आत्मविश्वास, ये अद्भुत है।
0: तो दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी, तो लखनऊ में सीएम योगी इस मौके पर सेवा का संकल्प दोहरा रहे हैं। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने जनता को ईश्वर का स्वरूप बताया, तो लखनऊ में सीएम योगी ने पीएम मोदी की सराहना करते हुए यूपी में अपने धुर विरोधियों पर निशाना साधा। पीएम मोदी के सार्वजनिक जीवन में 25 साल पूरे होने पर बीजेपी देश भर में कार्यक्रम कर रहे हैं, तो वाराणसी में उन बाइक सवारों के स्वागत की तैयारियां हैं जो पीएम मोदी के जन्मदिन यानी कि 17 सितंबर को वडनगर से वाराणसी की यात्रा पर निकले थे। देश के 7 राज्यों से गुजरते हुए ये नौजवान वाराणसी पहुंच रहे हैं, जिनका स्वागत करने के लिए खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर सीएम योगी वहां रहने वाले हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वाराणसी पहुंचे हुए हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर हैं, और वो जो बाइकर्स हैं जो वाराणसी पहुंचेंगे उनका स्वागत, उनका अभिनंदन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जहां इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में उनका संबोधन हुआ और उसमें उन्होंने 2047 तक के अपने लक्ष्य को सामने रखा, वी विल डू इट का नारा उन्होंने बुलंद किया, तो दूसरी तरफ सेवा ज्योति यात्रा, एक बाइक रैली, और वो जो बाइकर्स जो वडनगर से रवाना हुए थे वो वाराणसी पहुंचेंगे, और वाराणसी में आज कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं वो भी हम आपको सिलसिलेवार बताएंगे। तो सबसे पहले उन बाइकर्स का स्वागत होगा, और स्वागत करने के लिए कोई और नहीं बल्कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक भी हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उन्हें का रुख करते हैं। तो कुमार अभिषेक, क्या क्या कार्यक्रम है, कितनी देर में बाइकर्स पहुंचने वाले हैं, स्वागत की क्या तैयारियां हैं?
2: देखिए, सुबह तकरीबन 10 बजे के आसपास जो 500 बाइकर्स वडनगर से आए थे उनका स्वागत किया गया संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी में, जहां कई बीजेपी के नेता मंत्री मौजूद रहे, प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहे, और इन तमाम बाइकर्स को पहुंचे हैं ये सब अब सीधा बाबा विश्वनाथ के मंदिर में कॉरिडोर में वहां दर्शन करेंगे। इसके बाद जो लोग भी वडनगर से आए हैं, जो प्रधानमंत्री के घर से आए हैं, उन सभी लोगों की जो को ले जाया जाएगा, वो सब के सब जाएंगे जगतपुरा इंटर कॉलेज, जहां पर नितिन नवीन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हिमंता विश्व शर्मा दोनों डिप्टी सीएम और कई मंत्री वहां मौजूद होंगे। और कहा यह जा रहा है कि 40-50 हजार लोगों को भी बुलाया गया है, ताकि आज प्रधानमंत्री के इस सेवा संकल्प के जो 25 साल पूरे हो रहे हैं तो लोगों को भी बताया जाए। वैसे 12 सालों से प्रधानमंत्री का एक अटूट रिश्ता इस वाराणसी के साथ बना हुआ है, तीसरी बार यहां से सांसद हैं, और कर्मभूमि से जन्मभूमि की जो उनकी का जो कनेक्ट है उसको आज इस 25 साल पूरे होने पर कहीं ना कहीं सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो पूरे शहर में तोरण द्वार बनाए गए हैं, बैनर पोस्टर लगे हैं, लेकिन चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे तो देखना होगा कि पीएम ने चूंकि दिल्ली में बोला है और अब नितिन नवीन वाराणसी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे। लेकिन लोगों में एक फीलिंग है कि इन 12 सालों में जब से प्रधानमंत्री यहां से सांसद हैं तब से बहुत कुछ बदला है। बनारस, राजीव।
0: बिल्कुल कुमार अभिषेक, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। प्रधानमंत्री मोदी के प्रशासन में 25 साल पूरे होने पर आज पूरा देश मोदी में हो रहा है। बीजेपी ने आज के लिए विस्तृत कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की है जिसमें बीजेपी के तमाम बड़े बड़े नेता हिस्सा ले रहे हैं।
3: जनसेवा के 25 साल पूरे होने वाले दिन की शुरुआत आराधना से हुई। पीएम मोदी सुबह सुबह दिल्ली के सरोजनी नगर स्थित विनायक मंदिर पहुंचे। विनायक मंदिर में पीएम मोदी ने पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की। पीएम मोदी ने तिलक लगाया, माला पहनी और पुजारी के बताए प्रावधानों के मुताबिक पूजा अनुष्ठान किया।
1: मैं श्री विनायक मंदिर में दर्शन के लिए गया था। मैंने परमात्मा के सामने देश के लिए प्रार्थना की। 140 करोड़ भारतवासियों के लिए प्रार्थना की और अपने लिए भी प्रार्थना की। प्रार्थना ये कि परमात्मा मुझे इतनी शक्ति और सामर्थ्य दीजिए कि मैं अपने देश के लिए और अधिक ऊर्जा के साथ काम कर सकूं। देशवासियों की और अधिक सेवा कर सकूं, दिन रात सेवा कर सकूं।
3: पीएम मोदी के प्रशासन में 25 साल पूरे होने पर बीजेपी की तरफ से देश भर में बड़े पैमाने पर कार्यक्रम हो रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, यानी बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे अलग अलग शहरों में कार्यक्रम कर रहे हैं। लखनऊ में भी एक कार्यक्रम हुआ जिसमें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए।
4: इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के प्रत्येक उस फील्ड में जो आज की युवा की आकांक्षाओं को पूर्ति कर सकता है, वो मोदी जी के इस परिश्रम और विजन के परिणाम के स्वरूप हम सबको प्राप्त हो रहा है। बहन और भाइयों, बिना भेदभाव के सबका साथ और सबके विकास के उस भाव को जमीनी धरातल पर उतारने का काम आजाद भारत में किसी एक महापुरुष ने किया है, वह नाम है श्री नरेंद्र मोदी।
3: उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी भी एक कार्यक्रम में शामिल हुए जहां उन्होंने बाकायदा पूजा पाठ कर पीएम मोदी के लिए दुआएं मांगी। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जिसमें लिखा, अथक परिश्रम, अद्भुत संकल्प शक्ति व राष्ट्र प्रथम को जीवन का लक्ष्य बनाने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सेवा और समर्पण के 25 वर्ष पूरे होने पर उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं।
5: सर नरेंद्र दामोदर दास मोदी कायदा के स्थापित भारत का।
3: आज ही के दिन 7 अक्टूबर 2001 को मोदी जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। तब से लगातार मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उनकी सेवा, संघर्ष और समर्पण की ये यात्रा गरीबों का कल्याण, महिलाओं का सशक्तिकरण, युवाओं का उत्थान और हर वर्ग की समृद्धि का पर्याय बन गई है। आज तक ब्यूरो।
0: पीएम मोदी के 25 साल के मौके पर देश के अंदर बीजेपी तो आयोजन कर रहे हैं, विदेशों से भी पीएम मोदी को शुभकामनाएं मिल रहे हैं। भूटान के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को विष्णु के अवतार की तरह माना है और पीएम शेरिंग तोपगे ने लिखा है कि भूटान के चुनावों में 10 महीने पहले मेरी पार्टी हार गई थी और संसद में अब उसका कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं था। मैं ना तो प्रधानमंत्री था और ना ही सांसद, मैं पीएम मोदी से बस एक आम नागरिक के तौर पर मिला। और आगे तारीफ करते हुए भूटान के पीएम लिखते हैं कि मैंने उनसे एक और बात कही, मैंने उन्हें विष्णु का अवतार माना, मैंने बताया कि हमारे इलाके में ज्ञानी शासकों को लंबे समय से ऐसा ही माना जाता है। भूटान के पीएम ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ में काफी सारे शब्द कहे, और ये उनका जो पोस्ट है वो भी हम आपको आप दिखा रहे हैं जिसमें पीएम मोदी की वो जमकर तारीफ करते दिख रहे हैं। साल 2001 में वो आज ही की तारीख थी, यानी कि 7 अक्टूबर 2001, जब नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। आज 7 अक्टूबर 2026 है। सार्वजनिक प्रशासन में पीएम मोदी के 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं। बिना रुके बिना थके ये सफर जारी है। जनसेवा में पीएम मोदी के 25 साल पूरे होने पर देश भर में कार्यक्रम हो रहे हैं। दिन की शुरुआत पीएम ने राजधानी दिल्ली के श्री विनायक मंदिर में पूजा अर्चना करके शुरू की। हिंदू धर्म में मान्यता है कि शुभ काम की शुरुआत भगवान गणेश की पूजा से होती है, इसलिए सार्वजनिक प्रशासन में 25 साल पूरे होने का शुभ दिन की शुरुआत भी पीएम मोदी ने श्री विनायक मंदिर में पूजा अर्चना करके ही की। और वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देख रहे हैं आज तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
8: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार सर एक बार दो ठुमका लगाने पर
9: मेरे पास एक आइडिया है।
8: क्या?
9: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुमटा टीएमटी बार से जो बना है,
10: एक रॉकस्टार होता है अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है दुनिया हिला, पर स्टेज नहीं हिलता
11: क्योंकि वो मजबूत रुमटा टीएमटी से बना है।
12: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है उसका भाई जेल में, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
10: कौन सी बनानी है?
13: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
14: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
15: जीके मैक्स।
16: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
15: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
17: जेके वॉल मैक्स
18: बेस्ट पेंट,
19: जेके मैक्स।
20: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ
21: जेके मैक्स पेंट्स।
20: जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
22: उफ, ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
23: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
22: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपिवा डायफ्री जूस।
24: हम पूछना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी से, आप 13 करोड़ बोलते हैं तो आप 2.8 करोड़ मृतक, 1 करोड़ डुप्लीकेट वोटरों को और 6.8 करोड़ शिफ्टेड। चलिए उसमें शिफ्टेड वालों में लोग ये तय कर सकते हैं कि वो किस जगह वोट रखना चाहेंगे, मगर मैं पूछना चाहता हूं ये 2.8 करोड़ डेड और 1 करोड़ डुप्लीकेट, ये भारत की इकोनॉमी को डेड बचाने वाले लोग ये डेड और डुप्लीकेट वोटरों को मताधिकार के साथ कैसे जोड़ रहे हैं? कांग्रेस से स्पष्ट हम पूछना चाहते हैं, वो इस बात का जवाब दे। कांग्रेस पार्टी जो आंतरिक रूप से एक राजतंत्र है, जिसने लोकतंत्र का लबादा ओढ़ा हुआ है, वह वास्तविक लोकतंत्र को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, इसलिए वह लोकतंत्र के हर स्तंभ के ऊपर पिछले 12 सालों में निराधार निरर्थक अनर्गल आरोप लगा रहे हैं।

0: आ गया सोमवार और आ गए
1: चकमक चचा।
0: एक कचौड़ी दो समोसा चकमक तेरा क्या भरोसा।
2: चकमक चाचा से सीधे चकमक है।
0: अरे नारा है, दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है, महिला लोग एकदम नारा लगाए जा रही, गूंज रहा।
2: लेकिन भैया नारे अरे फालतू में सब बेकार एकदम बेकार। अरे होते थे हमारे टाइम।
0: अच्छा
2: सुनाए, जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, जेपी भाई छूटेंगे।
0: अच्छा तो हमारे टाइम वाले सुनिए, दो कुलचा एक बिरयानी, इन नेताओं की खत्म कहानी।
2: अरे जमीन के चकबंदी में, जमीन के चकबंदी में क्या फाइनेंस बंदी में,
0: ठंडी चाय गरम करो चकमक चाचा शर्म करो।
2: अरे राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर।
0: अरे लाठी गोली खाएंगे, इस्तीफा दे के जाएंगे।
2: अरे सुनो, इस दीपक में तेल नहीं, सरकार चलाना खेल नहीं।
0: अरे लाल फूल नीला फूल जंजी नंग है ब्यूटीफुल।
2: अरे बारी बारी सबकी बारी, अब की बारी अटल बिहारी।
0: चाय गरम दूध गरम चकमक चाचा भी शरम
2: है।
0: हाँ
2: जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है।
0: अरे मेरे सिर में दर्द है जिसका कारण मर्द है आप जैसा।
3: हम जैसे इधर आओ।
4: हम जैसे मर्द नहीं होते किसी नारे से ऑफेंड, हम तो भैया करते हैं हर सही मुद्दे को डिफेंड।
0: आई चचा।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: चुनावी गड़बड़ी के आरोप और सीईसी ज्ञानेश कुमार के विरोध के बीच ये विपक्ष के साझा आक्रोश की तस्वीरें हैं। इंडिया गठबंधन के मार्च में विपक्षी एकजुटता दिखी, जबरदस्त तनातनी हुई, मार्च बढ़ने के साथ साथ पुलिस से तकरार की तस्वीरें भी सामने आईं। इंडिया गठबंधन का साझा मार्च संसद के मकर द्वार से निकला, तैयारी थी चुनाव आयोग के दफ्तर की घेराबंदी की। मार्च बढ़ा, नेताओं के जुटने का सिलसिला शुरू हुआ और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर सियासी हमले तेज हो गए। इंडिया गठबंधन के मार्च को देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती थी। आकाशवाणी केंद्र के पास मार्च को रोका गया तो राहुल गांधी बैरिकेड पर चढ़ गए। कुछ और विपक्षी सांसद भी इस विरोध में राहुल का साथ देते दिखे। बढ़ती तनातनी के बीच पुलिस ने नेताओं को हिरासत में लेना शुरू कर दिया। राहुल प्रियंका हिरासत में लिए गए, अखिलेश को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। लेकिन उस समय हंगामा और बढ़ गया जब राहुल पुलिस की हिरासत से निकलकर आकाशवाणी केंद्र में चले गए। हंगामा जारी रहा, कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष हमलावर दिखा। लेकिन इस मार्च के बीच बड़ा सवाल ये, सड़क पर छिड़े इस संग्राम से विपक्ष को हासिल क्या हुआ? क्या विपक्षी एकता के इस मार्च के जरिए चुनावी गड़बड़ी का संदेश सीधे जनता तक जाएगा? क्या विपक्षी एकता से चुनाव आयोग पर दबाव बढ़ेगा? क्या आने वाले दिनों में देश भर में जिस तरह के विरोध प्रदर्शन का प्लान तैयार किया गया, इस मार्च से उसे और धार मिलेगी? क्या 1 नवंबर को दिल्ली में होने वाली इंडिया गठबंधन की रैली को इस विरोध प्रदर्शन से और ताकत मिलेगी? इंडिया गठबंधन के दल चुनाव आयोग पर हमलावर है, वहीं बीजेपी हर हमलों का जवाब दे रही है। इस मार्च को राहुल गांधी को लॉन्च करने की फिर नाकाम कोशिश बता रही है। चुनाव आयोग पर आरोपों के बीच रण बढ़ता जा रहा है, संग्राम सड़कों पर छिड़ा है, सरकार और विपक्ष के बीच हमले तेज हो रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
2: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: मोदी ने फूका विकसित भारत के संकल्प का बिगुल, कहा वी विल डू इट एम्बिशन के लिए नहीं, मिशन के लिए जीता हूं। श्री विनायक से लिया देश की समृद्धि का आशीष। मोदी की जन्मभूमि से कर्मभूमि तक सेवा संकल्प के कई कार्यक्रम, वाराणसी में रहेंगे नितिन नवीन। शाह और राजनाथ ने दी 25 साल के बेमिसाल सफर की बधाई। सीएम योगी और धामी की सेवा ज्योति याद। आकाशवाणी भवन में जबरन घुसने के मामले में राहुल प्रियंका समेत कई कांग्रेस नेताओं के खिलाफ दर्ज हुई FIR। प्रदर्शन के दौरान 8 घंटे वहीं बैठे थे नेता विपक्ष। विपक्ष के साथियों को राहुल ने दिया लंच। सीएम योगी की हुंकार, यूपी में राज्यसभा के चुनाव ने बता दिया 2027 का नतीजा। लड़ाई फिर 80-20 पर आई। 10 में सिर्फ 2 सीट पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट उतारने पर किया कटाक्ष। बढ़ सकता है आपकी ईएमआई का बोझ। आरबीआई के रेपो रेट में 0.25% की बढ़ोतरी। होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन हो सकता है महंगा। नया रेपो रेट 5.5% हुआ।
1: रेलवे स्टेशन से आपका सफर शुरू होता है।
2: जहाँ तक मेरी अपनी व्यक्तिगत जिंदगी की कहानी है, मेरी जिंदगी के संघर्ष का वो एक स्वर्णिम पृष्ठ है जिसने मुझे जीना सिखाया, जूझना सिखाया। अगर आज देश मुझसे ज्यादा अपेक्षा रखता है, इसलिए रखता है कि उनको भरोसा है यार, आज नहीं तो कल उसके दिमाग में भर दो, कभी तो करके रहेगा ही। मैं मानता हूं जिस दिन मेरी बेसब्री खत्म हो जाएगी, उस दिन मैं इस देश के काम नहीं आऊंगा। मैं चाहता हूं मेरे भीतर वो बेसब्री बने रहनी चाहिए, क्योंकि वो मेरी ऊर्जा है, वो मुझे ताकत देती है, मुझे दौड़ाती है। हर शाम सोता हूं तो दूसरे दिन का सपना लेकर के सोता हूं, और सुबह उठता हूं तो लग पड़ता हूं।
3: भारत के युवा एसी के बंद कमरों में बैठकर नहीं सोच रहे। भारत के युवा की सोच का विस्तार आसमान से भी ऊंचा है।
4: आज भारत में दुनिया की तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। किसकी वजह से? भारत के युवाओं के सामर्थ्य से।
5: मोदी कड़े और बड़े फैसले लेता है क्योंकि उसे 140 करोड़ भारतीयों के सपने पूरे करने हैं।

0: नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में हुआ। वो दामोदर दास मोदी और हीराबेन मोदी की तीसरी संतान थे। परिवार आर्थिक रूप से साधारण था और एक छोटे से घर में रहता था। बचपन से ही परिवार की चाय की दुकान के काम में हाथ बटाने लगे। पढ़ाई के साथ काम करना उनकी दिनचर्या का हिस्सा रहा। मुश्किल आर्थिक परिस्थितियों ने बचपन में ही मेहनत और आत्मनिर्भरता से उनका परिचय करा दिया। वडनगर में बचपन बीत रहा था और स्कूल की पढ़ाई के साथ परिवार की चाय की दुकान पर भी हाथ बटाते थे। प्रधानमंत्री ने कई बार अपने इंटरव्यू में बताया है कि रेलवे स्टेशन पर आने जाने वाले यात्रियों को चाय देने का काम भी किया करते थे। पढ़ाई और परिवार की जिम्मेदारी साथ साथ चलती रही। बचपन का यही दौर उनके जीवन में संघर्ष और मेहनत से जुड़ी यादों का हिस्सा बना। स्कूल के दिनों में नरेंद्र मोदी पढ़ाई के साथ दूसरी गतिविधियों में भी सक्रिय रहते थे। उनके स्कूल के साथियों के मुताबिक उन्हें किताबें पढ़ने का शौक था और स्थानीय लाइब्रेरी में काफी समय बिताते थे। बहस और चर्चा में हिस्सा लेने की भी रुचि थी। बचपन से ही पढ़ने, नई चीजें जानने और अलग अलग गतिविधियों में हिस्सा लेने की आदत उनके व्यक्तित्व का हिस्सा बनती गई। पढ़ाई के साथ नरेंद्र मोदी का झुकाव स्कूल की गतिविधियों की तरफ भी था। नाटकों और वाद विवाद जैसी गतिविधियों में हिस्सा लेते थे। कम उम्र में ही आयोजन करने, साथियों को जोड़ने और किसी काम के लिए लोगों को साथ लाने की क्षमता दिखाई देने लगी थी। बचपन और किशोरावस्था के दौरान नरेंद्र मोदी सेना में जाने का सपना देखते थे। जामनगर के सैनिक स्कूल में पढ़ने की इच्छा भी थी, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति के कारण ये संभव नहीं हो पाया। सेना में जाने का सपना पूरा नहीं हुआ, लेकिन देश और समाज के लिए काम करने की इच्छा बनी रही।
1: यहाँ से दूर एक मेहसाणा स्टेशन है मेरे गांव से, तो वहाँ स्टेशन पे सब लोग जो फौज के लोग ट्रेनों में जाते थे उनका बड़ा सत्कार करते थे, चाय वगैरह, तो मैं भी चला जाता था। तो जाकर के मैं भी वो, तो मुझे बड़ा मजा आता था। तो मन पे हो गया कि हाँ, ये देश के लिए जीने मरने वाला रास्ता है, तो कभी उस दिशा में सोचता।
0: बचपन में नरेंद्र मोदी अपने दोस्त के साथ शर्मिष्ठा सरोवर गए थे। वहां से मगरमच्छ का एक बच्चा पकड़कर घर ले आए। माँ हीराबेन ने समझाया कि बच्चे को उसकी माँ से अलग करना ठीक नहीं है। माँ की बात समझ में आने के बाद उसे वापस सरोवर में छोड़ दिया। ये किस्सा उनके बचपन की शरारत और माँ की सीख से जुड़ा है। गुजरात की पतंगबाजी का रंग नरेंद्र मोदी के बचपन में भी दिखाई देता था। उन्हें पतंग उड़ाने का शौक था। इसके अलावा गुजराती में लिखने और कविता करने में भी रुचि रही। आगे चलकर उन्होंने अपने लेखन रुचि को भी जारी रखा। सार्वजनिक जीवन शुरू होने से काफी पहले पढ़ना, लिखना, कविता और पतंगबाजी जैसी अलग अलग रुचियां उनके जीवन का हिस्सा बन चुकी थीं।
2: उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो।
0: लगभग 17 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी ने घर छोड़ दिया। अगले करीब 2 सालों में उन्होंने देश के अलग अलग हिस्सों की यात्रा की। इस दौरान उन्हें विभिन्न स्थानों, संस्कृतियों और लोगों को करीब से देखने का मौका मिला। प्रधानमंत्री कार्यालय की आधिकारिक जीवनी के मुताबिक इस यात्रा के बाद जब वो वापस लौटे तो उनकी जीवन को लेकर सोच और दिशा में बदलाव आया। युवावस्था के शुरुआती दौर में नरेंद्र मोदी का झुकाव अध्यात्म और संन्यास की तरफ भी रहा। स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रधानमंत्री मोदी बहुत प्रभावित थे। भारत भ्रमण के दौरान आध्यात्मिक स्थानों पर भी गए। बाद में उनका रास्ता संन्यास की जगह सामाजिक और संगठनात्मक काम की ओर मुड़ गया। आध्यात्मिक चिंतन उनके जीवन में आगे भी दिखाई देता रहा। देश भ्रमण के बाद नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंचे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े। लगभग 1972 से आरएसएस के प्रचारक के तौर पर काम करने लगे। उनकी दिनचर्या सुबह करीब 5 बजे शुरू होकर देर रात तक चलती थी। संगठन के काम, कार्यकर्ताओं से संपर्क और रोजमर्रा की जिम्मेदारियों के बीच उनकी संगठनात्मक क्षमता धीरे धीरे सामने आने लगी। आरएसएस में प्रचारक के तौर पर नरेंद्र मोदी की जिंदगी बेहद अनुशासित और व्यस्त रही। संगठन के काम के लिए लगातार यात्रा करना, कार्यकर्ताओं से मिलना और कार्यक्रमों की जिम्मेदारी संभालना उनकी दिनचर्या का हिस्सा था। सीमित साधनों से हटकर संगठन के लिए काम करना और अलग अलग परिस्थितियों में खुद को ढालना इसी दौर में सीखा। प्रचारक के तौर पर बिताए इस समय ने उनके भीतर अनुशासन, संगठन और आत्मनिर्भरता की सोच को और मजबूत किया। 1975 से 1977 के बीच देश में आपातकाल लगा। इस दौरान नरेंद्र मोदी आंदोलन से जुड़े और संगठन के लिए भूमिगत तरीके से काम किया। पुलिस और खुफिया एजेंसियों को चकमा देने के लिए उन्होंने अपनी पहचान छिपाई और पगड़ी पहनकर सरदार के रूप में काफी समय तक यात्राएं की और काम किया। इस दौर में संगठन के संदेश और साहित्य को लोगों तक पहुंचाने और संपर्क बनाए रखने जैसे काम भी उनकी जिम्मेदारियों में शामिल रहे। आपातकाल खत्म होने के बाद आरएसएस में नरेंद्र मोदी की संगठनात्मक जिम्मेदारियां बढ़ती गई। कार्यक्रमों की तैयारी, कार्यकर्ताओं से संपर्क और संगठन के संदेश को लोगों तक पहुंचाने का काम जारी रहा। मुश्किल परिस्थितियों में काम करने का अनुभव उनके साथ था। धीरे धीरे संगठन के भीतर उनकी पहचान ऐसे कार्यकर्ता के रूप में बनने लगी जो योजना बनाने के साथ उसे जमीन पर लागू करने की जिम्मेदारी भी संभाल सकता था। उन्नीस सौ अस्सी के दशक में नरेंद्र मोदी ने आरएसएस के भीतर कई जिम्मेदारियां संभाली। कार्यक्रमों की योजना बनाना, कार्यकर्ताओं को जोड़ना और संगठन के काम को जमीन तक पहुंचाना उनकी भूमिका का हिस्सा बना। इसी दौरान उनकी संगठनात्मक क्षमता और ज्यादा उभर कर सामने आई। आरएसएस में हासिल किया गया यही अनुभव आगे चलकर बीजेपी के संगठनात्मक काम में उनके लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ। अब उनकी पहचान एक सक्रिय संगठनकर्ता के तौर पर बनने लगी थी। उन्नीस सौ सतासी में नरेंद्र मोदी ने गुजरात में बीजेपी के संगठनात्मक काम की जिम्मेदारी संभाली। आरएसएस में लंबे समय तक काम करने के बाद सक्रिय राजनीतिक संगठन में ये उनके लिए एक नया पड़ाव था। आधिकारिक जीवनी के अनुसार अहमदाबाद नगर निगम चुनाव में भी उनकी संगठनात्मक भूमिका रही, जिसमें बीजेपी ने पहली बार जीत हासिल की। इसके बाद गुजरात की राजनीति में नरेंद्र मोदी की संगठनकर्ता के तौर पर भूमिका और स्पष्ट होती गई। 1990 के गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी कांग्रेस के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी। कई किताबों में नरेंद्र मोदी की संगठनात्मक भूमिका का उल्लेख मिलता है। कार्यकर्ताओं को जोड़ना, चुनावी तैयारियों को व्यवस्थित करना और पार्टी के विस्तार पर काम करना उनकी जिम्मेदारियों में शामिल रहा। उन्नीस सौ पचानवे के गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 121 सीटें जीती। प्रधानमंत्री कार्यालय की जीवनी में इस दौर में नरेंद्र मोदी के संगठन कौशल का उल्लेख किया गया है। गुजरात में पार्टी संगठन को मजबूत करने के बाद उनकी भूमिका अब राज्य से बाहर भी बढ़ने लगी। इसके साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन में उन्हें नई जिम्मेदारियां मिलने लगी। गुजरात से शुरू हुआ उनका संगठनात्मक सफर अब राष्ट्रीय स्तर की ओर बढ़ रहा था। उन्नीस सौ पचानवे के बाद नरेंद्र मोदी बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन में सक्रिय हुए। उन्हें हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में पार्टी के काम की जिम्मेदारी दी गई। इसके बाद संगठन महासचिव के तौर पर राष्ट्रीय स्तर पर उनकी भूमिका बढ़ी। 1998 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के संगठनात्मक अभियान में भी उन्होंने काम किया। गुजरात में संगठन के अनुभव के बाद अब नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय राजनीति के बड़े मैदान में अपनी भूमिका निभा रहे थे। 2001 में नरेंद्र मोदी के राजनीतिक जीवन में बड़ा मोड़ आया। गुजरात उस समय कई चुनौतियों से गुजर रहा था और केशुभाई पटेल मुख्यमंत्री थे। सितंबर 2001 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का फोन नरेंद्र मोदी के लिए एक नई जिम्मेदारी का संकेत लेकर आया। कई वरिष्ठ पत्रकारों के मुताबिक इसके बाद संगठन की राजनीति से प्रशासन की दुनिया में उनके प्रवेश का रास्ता खुला। 7 अक्टूबर 2001 को नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। यही वो पड़ाव था जहां वडनगर का लड़का, जिसने बचपन में परिवार की चाय की दुकान पर काम किया था, आरएसएस के प्रचारक से बीजेपी के संगठन करता और फिर राज्य के मुख्यमंत्री तक पहुंचा। इसके साथ ही उनकी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ।
3: नरेंद्र दामोदर दास मोदी।
0: 7 अक्टूबर 2001 को नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उस वक्त राज्य कई चुनौतियों से गुजर रहा था। 2001 का कच्छ भूकंप, सूखा और राजनीतिक अस्थिरता जैसी परिस्थितियां उनके सामने थी। संगठन में काम करने के लंबे अनुभव के बाद अब पहली बार सीधे सरकार चलाने की जिम्मेदारी थी। ये तस्वीर साल 2002 की है, जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। स्कूलों की पढ़ाई और वहां की व्यवस्थाओं को देखने के लिए मोदी अचानक स्कूल पहुंचते और बच्चों के बीच बैठकर क्लास का माहौल समझते थे। कई बार वो आगे नहीं बल्कि बच्चों के पीछे बैठकर चुपचाप पढ़ाई देखते नजर आते थे। मकसद था किताबों में दर्ज आंकड़ों से अलग स्कूल में जाकर जमीनी हकीकत को देखना। मुख्यमंत्री के तौर पर उनका ये अंदाज उनकी अलग कार्यशैली की एक तस्वीर पेश करता। गुजरात विधानसभा भंग होने के बाद दिसंबर 2002 में चुनाव हुए, नरेंद्र मोदी के लिए ये मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बड़ी चुनावी परीक्षा थी। बीजेपी ने 182 सदस्य विधानसभा में 127 सीटें जीती और नरेंद्र मोदी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। सरकार चलाने के साथ अब चुनावी राजनीति में भी उनका कद गुजरात में और स्पष्ट हो चुका था। कांग्रेस 2007 में गुजरात विधानसभा चुनाव हुए, बीजेपी ने 117 सीटें जीती और नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। इस दौर में गुजरात के विकास, निवेश और औद्योगिक विस्तार को लेकर उनकी सरकार का मॉडल राष्ट्रीय चर्चा में आया। मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी की पहचान अब सिर्फ गुजरात तक सीमित नहीं रह गई थी। दो हजार नौ के लोकसभा चुनाव के बाद भी नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने रहे, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में उनकी चर्चा लगातार बढ़ती गई। गुजरात में उनके प्रशासन और विकास मॉडल को लेकर देश भर में बहस होने लगी। बीजेपी के भीतर भी नरेंद्र मोदी की राष्ट्रीय भूमिका को लेकर चर्चा बढ़ रही थी। राज्य के मुख्यमंत्री से राष्ट्रीय स्तर के नेता तक उनका सफर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। दो हजार बारह के गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने

0: करीब 11 साल सरकार चलाने के बाद अब सवाल सिर्फ मुख्यमंत्री के अगले कार्यकाल का नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में उनकी भूमिका का भी बनने लगा था। ২০১৩ नरेंद्र मोदी के राजनीतिक सफर का निर्णायक साल बना। बीजेपी ने उन्हें 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार तक का ये बदलाव उनकी राजनीतिक यात्रा में बड़ा पड़ाव था। अब उनका चुनावी मैदान गुजरात नहीं बल्कि पूरा देश था। प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने देश भर में चुनावी अभियान शुरू किया। रैलियां, जनसभाएं, लगातार यात्राएं उनके अभियान का हिस्सा बनी। गुजरात में विकास और प्रशासन के जिस मॉडल को उनकी पहचान से जोड़ा गया था वही अब राष्ट्रीय चुनावी अभियान के प्रमुख संदेशों में शामिल हुआ। 2014 का चुनाव उनके लिए गुजरात से निकलकर पूरे देश में जन समर्थन हासिल करने की परीक्षा थी।
1: भारत माता की, देखिए सारे मीडिया वाले उधर मुड़ गए ना, तो यही तो ताकत है दोस्तों आपकी।
0: ২০১৪ के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 282 सीटें जीती और अपने दम पर बहुमत हासिल किया। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पार्टी ने केंद्र में सरकार बनाने का दावा पेश किया। ये 30 साल के बाद पहली बार था जब किसी एक पार्टी को अपने दम पर बहुमत मिला था। गुजरात के मुख्यमंत्री से राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र तक नरेंद्र मोदी का सफर अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका था। ২৬ মে ২০১৪ को नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर शुरू हुआ शासन का सफर करीब 13 साल बाद देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचा। वडनगर से शुरू हुई कहानी अब रायसीना हिल्स तक पहुंच चुकी थी। एक प्रचारक, संगठनकर्ता, मुख्यमंत्री और फिर प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के राजनीतिक सफर का ये सबसे बड़ा पड़ाव था। मुख्यमंत्री बनने के करीब 2 साल बाद नरेंद्र मोदी ने गुजरात को निवेश के बड़े केंद्र के तौर पर पेश करने के लिए वाइब्रेंट गुजरात की शुरुआत की। पहला शिखर सम्मेलन 28 सितंबर 2003 को हुआ। उस समय गुजरात प्राकृतिक आपदाओं, राजनीतिक अस्थिरता और 2002 की हिंसा के बाद की परिस्थितियों से निकल रहा था। तत्कालीन मुख्य सचिव पी के लहरी ने बाद में बताया कि मोदी खुद उद्योगपतियों को फोन करके सम्मेलन में आने का न्योता देते थे। यही आयोजन आगे चलकर गुजरात की पहचान का बड़ा हिस्सा बना। मुख्यमंत्री के दौर में नरेंद्र मोदी के पहनावे ने भी अलग पहचान बनाई। खास तौर पर उनकी आधी बाजू वाली कुर्ते की शैली चर्चा में आई जिसे बाद में आमतौर पर मोदी कुर्ता कहा जाने लगा। लंबी बाजू के पारंपरिक कुर्ते की तुलना में छोटा और असुविधाजनक ये डिजाइन उनके सार्वजनिक लुक का हिस्सा बन गया। राजनीति में जहां नेताओं की पहचान अक्सर भाषण और विचारों से बनती है वहीं मोदी के मामले में उनका पहनावा भी उनकी सार्वजनिक छवि का एक अलग हिस्सा बना।
2: आपना शहर मा आप सौ साथे जोड़ान साथवा पधार्या छे नरेंद्र भाई।
0: 2012-13 के दौर में नरेंद्र मोदी के चुनाव प्रचार में तकनीक का एक अलग प्रयोग सामने आया। उनके भाषणों का 3D होलोग्राम तकनीक के जरिए एक साथ कई जगहों पर दिखाया गया। यानी मोदी एक जगह पर मौजूद थे लेकिन उनका डिजिटल रूप अलग अलग स्थानों पर लोगों के सामने दिखाई देता था। 2014 के चुनाव अभियान में तकनीक का ये इस्तेमाल और व्यापक हुआ। पारंपरिक रैलियों के बीच ये प्रचार का बिल्कुल अलग तरीका था और मोदी के अभियान की पहचान बन गया। ২০১১ में नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन के मौके पर 3 दिन का सद्भावना उपवास किया। 17 सितंबर से शुरू हुए इस

0: कार्यक्रम को उन्होंने सद्भाव और गुजरात की एकता के संदेश से जोड़ा। उस वक्त यह आयोजन इसलिए भी चर्चा में रहा क्योंकि मोदी की राजनीति और गुजरात सरकार की भूमिका को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर लगातार बहस चल रही थी। मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने इस उपवास को सामाजिक सद्भाव के संदेश के रूप में प्रस्तुत किया।
1: तो दुनिया के कई देश जो हमारे बाद आजाद हुए,
0: 2014 के चुनाव अभियान में नरेंद्र मोदी ने अपने बचपन में चाय बेचने की कहानी को एक बड़े जनसंपर्क अभियान से जोड़ा। नाम था चाय पे चर्चा। चाय की दुकानों पर बैठे लोगों से तकनीक के जरिए संवाद किया गया और कई शहरों को एक साथ जोड़ा गया। यानी जिस चाय की दुकान से नरेंद्र मोदी के बचपन की कहानी जुड़ी थी, चुनाव के वक्त वही चाय देश भर के मतदाताओं से संवाद का एक प्रतीक बन गई।
2: और कोई साधन ये हमारा रास्ता नहीं।
3: पूर्ण बहुमत से आएंगे, सुंदर भविष्य बनाएंगे, आशा के दीप जले यहाँ, जगमग है ये।
0: प्रधानमंत्री बनने से पहले ही नरेंद्र मोदी ने राजनीतिक संवाद में इंटरनेट, सोशल मीडिया और डिजिटल तकनीक का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल शुरू कर दिया था। 2014 के चुनाव तक उनकी रैलियों के साथ सोशल मीडिया, ऑनलाइन संवाद और तकनीकी माध्यम अभियान का अहम हिस्सा बन चुके थे। इससे उनका प्रचार सिर्फ मैदान में होने वाली रैलियों तक सीमित नहीं रहा। गुजरात के मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार तक पहुंचते पहुंचते उनके चुनावी अभियान का तरीका भी काफी बदल चुका था।
1: आपका वोट भारत के भाग्य को बदलने के लिए।
0: 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। गुजरात के मुख्यमंत्री से देश के प्रधानमंत्री तक का सफर पूरा हो चुका था। शपथ ग्रहण में दक्षिण एशिया के नेताओं की मौजूदगी ने इसे खास बनाया। अब तक गुजरात की राजनीति के केंद्र में रहने वाले नरेंद्र मोदी के सामने पूरे देश की जिम्मेदारी थी। प्रधानमंत्री के रूप में पहला दिन उनके राजनीतिक सफर की एक नई शुरुआत थी। पंद्रह अगस्त 2014 को नरेंद्र मोदी ने पहली बार लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया। खास बात ये रही कि उन्होंने परंपरागत लिखित भाषण के बजाय बिना कागज के भाषण दिया। जनधन योजना, स्वच्छता और कई सामाजिक मुद्दों का जिक्र इस भाषण में हुआ। प्रधानमंत्री के तौर पर लाल किले से उनका पहला संबोधन उनके संवाद के अलग अंदाज की शुरुआत भी माना गया।
2: भारत के संविधान के निर्माताओं को इस पर नमन करता।
0: दो अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई। नरेंद्र मोदी ने खुद झाड़ू उठाकर सफाई की और लोगों से इसे जन आंदोलन बनाने की अपील की। प्रधानमंत्री के हाथ में झाड़ू वाली तस्वीर देश भर में चर्चा में रही। राजनीति और सत्ता के औपचारिक मंच से अलग ये एक ऐसी तस्वीर थी जिसने प्रधानमंत्री के सार्वजनिक अंदाज की नई तस्वीर पेश की। अक्टूबर 2014 में मन की बात का पहला प्रसारण हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो को लोगों तक सीधे पहुंचने के माध्यम के तौर पर चुना। इसमें सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि स्वच्छता, पर्यावरण, परीक्षा, बेटियों और सामाजिक मुद्दों पर भी बात होती रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 अगस्त 2026 को मन की बात का 137वां एपिसोड किया था।
4: सभी श्रोताजनों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।
0: 2015 में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि बने। ये पहली बार था जब कोई अमेरिकी राष्ट्रपति भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि बना। नरेंद्र मोदी और बराक ओबामा की मुलाकातें और सार्वजनिक कार्यक्रम पहले कार्यकाल की चर्चित तस्वीरों में शामिल रहे। दोनों देशों के रिश्तों को लेकर भी इस यात्रा पर खास फोकस रखा गया। जनवरी 2015 में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने जो पिन स्ट्राइप सूट पहना था उसकी खासियत थी। उस पर बारीक अक्षरों में नरेंद्र दामोदर दास मोदी लिखा था। फरवरी 2015 में इस सूट की नीलामी हुई और सूरत के हीरा कारोबारी लालजी पटेल ने इसे 4,31,00,000 रुपए में खरीदा। नीलामी से मिली रकम को गंगा की सफाई से जुड़े कामों के लिए देने की बात कही गई थी। सितंबर 2014 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत आए। उनकी यात्रा का एक हिस्सा गुजरात में भी रहा, जहां नरेंद्र मोदी ने उनके साथ कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। साबरमती नदी के किनारे दोनों नेताओं की झूला झूलने वाली तस्वीरें सामने आई। कूटनीतिक बातचीत के साथ भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक छवि को सामने रखने की कोशिश भी दिखाई दी। ये मुलाकात मोदी के पहले कार्यकाल की चर्चित विदेशी मेहमान वाली तस्वीरों में रही। दिसंबर 2015 में नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान यात्रा ने सबको चौंका दिया। अफगानिस्तान से लौटते समय उनका विमान लाहौर में उतरा और उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मुलाकात की। ये दौरा पहले से घोषित पूर्ण द्विपक्षीय यात्रा नहीं था। कुछ ही दिनों बाद पठानकोट आतंकी हमला हुआ और दोनों देशों के रिश्तों में फिर तनाव बढ़ गया। मोदी के पहले कार्यकाल का ये सबसे अप्रत्याशित कूटनीतिक पल रहा। जून 2015 को पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहल के बाद ये दिन वैश्विक स्तर पर मनाया गया। हर साल पीएम मोदी योग दिवस पर हो रहे कार्यक्रम में शामिल होते हैं। योग को भारत की प्राचीन परंपरा से जोड़ा जाता है, अब अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर का हिस्सा बन चुका है। प्रधानमंत्री के पहले कार्यकाल में ये भारत की सांस्कृतिक कूटनीति की एक बड़ी तस्वीर बनी। मई 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगोलिया के दौरे पर पहुंचे। वहां उन्होंने पारंपरिक तीरंदाजी का अनुभव लिया। मंगोलिया के प्रधानमंत्री चिमेदिन सेखान बिलेग ने उन्हें एक भूरा घोड़ा कंथ का उपहार में दिया। ये भारत के किसी प्रधानमंत्री का मंगोलिया का पहला दौरा था। मोदी ने घोड़े के साथ तस्वीर भी साझा की। 8 नवंबर 2016 की रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों को अमान्य करने की घोषणा की। कुछ ही घंटों में देश की नकदी व्यवस्था बदल गई। बैंक और एटीएम के बाहर लंबी कतारें लगी। सरकार ने इसे काले धन, भ्रष्टाचार और नकली मुद्रा के खिलाफ कदम बताया। नोटबंदी उनके पहले कार्यकाल का ऐसा फैसला बना जिसका असर आम जिंदगी तक सीधे पहुंचा।
5: यानी ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी।
0: सितंबर 2016 में उरी आतंकी हमले के बाद भारत ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की घोषणा की। राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति को लेकर ये घटना लंबे समय तक चर्चा में रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल में ये सुरक्षा से जुड़ी सबसे चर्चित घटनाओं में शामिल हुई।
6: लोकसभा के अध्यक्षा जी,
0: जून 2017 की आधी रात संसद के सेंट्रल हॉल में विशेष कार्यक्रम हुआ और 1 जुलाई से जीएसटी लागू हुआ। अलग अलग अप्रत्यक्ष करों की जगह नई कर व्यवस्था आई। आधी रात को संसद में हुआ यह आयोजन अपने आप में खास था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस मौके पर संबोधित किया। देश की टैक्स व्यवस्था में बड़ा बदलाव अब जमीन पर उतर चुका था। दो हजार 2017 में मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना की आधारशिला रखी गई। नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे इस कार्यक्रम में शामिल हुए। भारत में पहली बुलेट ट्रेन का सपना अब परियोजना के रूप में सामने था। आधुनिक परिवहन तकनीक और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर सरकार की सोच की ये एक बड़ी तस्वीर बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल में दिवाली पर जवानों के बीच पहुंचना एक चर्चित परंपरा बन गया। 2018 में उन्होंने उत्तराखंड के हर्षिल में सेना और आईटीबीपी के जवानों के साथ दिवाली मनाई। हर साल प्रधानमंत्री और जवानों की मुलाकात की तस्वीरें सामने आती हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में तैनात सैनिकों के साथ त्योहार मनाने का यह सिलसिला उनके सार्वजनिक जीवन की अलग पहचान बना।
7: आयुष्मान भारत योजना का लक्ष्य आर्थिक सुविधा देने का।
0: 2018 में आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत हुई। सरकार ने इसे गरीब और कमजोर परिवारों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा की बड़ी योजना के तौर पर पेश किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के रांची से योजना की शुरुआत की। आयुष्मान भारत योजना के तहत पात्र परिवारों को हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता है। अब 70 साल से ज्यादा उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिक भी इस योजना के दायरे में हैं। पहले कार्यकाल में नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं का एक खास पहलू भारतीय समुदाय से संवाद भी रहा। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन जैसे देशों में भारतीय समुदाय के बड़े कार्यक्रम हुए। विदेश यात्रा सिर्फ सरकारी बैठकों तक सीमित नहीं रही, बल्कि प्रवासी भारतीयों के साथ बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम भी उनकी यात्राओं का हिस्सा बने। विदेशों में मोदी के ऐसे कार्यक्रम उनके पहले कार्यकाल की अलग तस्वीर बने। अगस्त 2018 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का 93 वर्ष की उम्र में एम्स दिल्ली में निधन हुआ। अगले दिन उनका अंतिम संस्कार स्मृति स्थल पर राजकीय सम्मान के साथ किया गया। अटल जी की अंतिम यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए और पार्थिव शरीर के साथ काफी दूर तक पैदल चले। सत्ता के शीर्ष पर होने के बावजूद मोदी का इस तरह अंतिम यात्रा में पैदल चलना कैमरों में दर्ज हुआ। अटल जी के साथ उनके लंबे राजनीतिक और संगठनात्मक रिश्ते की ये एक भावुक तस्वीर बन गई। चौदह फरवरी 2019 को पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों पर आतंकी हमला हुआ, जिसमें 40 जवानों की मौत हुई। इसके बाद 26 फरवरी को भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के प्रशिक्षण शिविर पर हवाई कार्रवाई की घोषणा की। भारत ने बड़ी संख्या में आतंकियों के मारे जाने की बात कही, जबकि करीब 300 का आंकड़ा बाद में अधिकारियों ने बताया। ...2019 में नरेंद्र मोदी का पहला कार्यकाल पूरा हुआ। 5 वर्षों में स्वच्छ भारत, मन की बात, नोटबंदी, जीएसटी, सर्जिकल स्ट्राइक, उज्ज्वला, आयुष्मान भारत और बालाकोट जैसे कई पड़ाव उनके कार्यकाल की पहचान बन चुके थे।
8: मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी।
0: 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 303 सीटें जीती। 30 मई 2019 को नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। पहला कार्यकाल खत्म हुआ और कहानी दूसरे अध्याय में पहुंच गई।
8: अंतःकरण से निर्वहन करूंगा।
0: ...2019 में नरेंद्र मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। चुनावी जीत के बाद जब वो अपनी माँ हीराबेन से मिलने पहुँचे तो माँ ने उन्हें आशीर्वाद दिया। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी माँ के साथ उनका ये रिश्ता सार्वजनिक जीवन में कई बार दिखाई देता रहा। राजनीति के बड़े मंच से अलग ये तस्वीरें नरेंद्र मोदी की निजी जीवन का एक भावुक पक्ष सामने लाती रहीं।

0: 2019 में दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी अपनी माँ हीराबेन से मिलने गुजरात पहुँचे। उन्होंने माँ के पैर धोए और उनका आशीर्वाद लिया। प्रधानमंत्री की माँ के साथ ये निजी तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में रही। सत्ता और राजनीति से अलग ये पल एक बेटे और माँ के रिश्ते की साधारण तस्वीर जैसा था। पांच अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने संसद में अनुच्छेद 370 और 35 ए के प्रावधानों को हटाने का फैसला लिया, जिससे जम्मू कश्मीर का विशेष संवैधानिक दर्जा समाप्त हुआ। नरेंद्र मोदी लंबे समय से जम्मू कश्मीर के पूर्ण एकीकरण की राजनीति से जुड़े रहे थे और प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी सरकार ने ये फैसला लागू किया। राष्ट्र के नाम संबोधन में मोदी ने इसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए नए दौर की शुरुआत बताया। ২০২০ में कोरोना महामारी के दौरान प्रधानमंत्री मोदी का सार्वजनिक जीवन भी बदल गया। देशव्यापी लॉकडाउन, घर से काम और डिजिटल संवाद के बीच प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लगातार बैठकें की। नेताओं और अधिकारियों के साथ संवाद का बड़ा हिस्सा ऑनलाइन हुआ। प्रधानमंत्री का कामकाज पहली बार इतने बड़े पैमाने पर डिजिटल स्क्रीन के जरिए दिखाई देने लगा। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। इसके करीब 3.5 साल बाद 22 जनवरी 2024 को नरेंद्र मोदी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में हिस्सा लिया। अयोध्या में हुआ यह आयोजन उनके प्रधानमंत्री कार्यकाल के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक सांस्कृतिक आयोजनों में से एक रहा। भूमि पूजन से प्राण प्रतिष्ठा तक राम मंदिर का सफर मोदी के राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन की एक प्रमुख कहानी बन गया।
1: ये जो मन में रहता है ना,
0: परीक्षा पे चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक अलग रूप सामने आता रहा। वो छात्रों से पढ़ाई, तनाव, परीक्षा और सपनों को लेकर सीधे संवाद करते रहे। मंच पर सवाल पूछने वाले बच्चों के साथ उनका सहज अंदाज और बातचीत का तरीका उनकी राजनीतिक भूमिका से अलग तस्वीर पेश करता है। धीरे धीरे ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री के सार्वजनिक संवाद का अलग अध्याय बन गया।
2: जिस प्रोफेशन में इंटरेस्ट है इसमें लगातार नया करते जाना।
0: 2013 की बाढ़ में केदारनाथ में भारी तबाही के बाद नरेंद्र मोदी ने पुनर्निर्माण का संकल्प लिया था। प्रधानमंत्री बनने के बाद 2017 में उन्होंने केदारनाथ पुनर्विकास के लिए मास्टर प्लान को आगे बढ़ाया और 20 अक्टूबर को कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी। 2021 में 130 करोड़ रुपए से ज्यादा के कई काम पूरे हुए और आदि शंकराचार्य समाधि का पुनर्निर्माण हुआ। 5 नवंबर को मोदी ने केदारनाथ में कई परियोजनाओं का लोकार्पण किया था।

17 सितंबर 2022 को अपने जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के कोनो नेशनल पार्क पहुंचे। वहां उन्होंने नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को खुद कैमरे के सामने बॉक्स खोलकर जंगल में छोड़ा। खास बात ये थी कि ये सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम नहीं था, मोदी ने खुद चीतों की तस्वीरें भी कैमरे से ली। दशकों बाद भारत की धरती पर चीते लौटे और प्रधानमंत्री का जन्मदिन भी इसी ऐतिहासिक पल का गवाह बना। दिसंबर 2022 में नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का 99 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। 30 दिसंबर की सुबह प्रधानमंत्री गुजरात पहुंचे और मां को अंतिम विदाई दी। इसके कुछ ही समय बाद वो अपने तय सरकारी कार्यक्रम में भी शामिल हुए। मां के निधन के बाद प्रधानमंत्री ने उनके जीवन को तपस्या, कर्मयोग और मूल्यों से जोड़कर याद किया। अक्टूबर 2023 में नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ पहुंचे। उन्होंने पार्वती कुंड में पूजा की और आदि कैलाश के दर्शन किए। प्रधानमंत्री ने इस यात्रा के अनुभव को खुद साझा किया। ऊंचे पहाड़ों, सीमावर्ती क्षेत्र और आध्यात्मिक स्थल की तस्वीरें सामने आई। बाद में उन्होंने कहा कि आदि कैलाश के दर्शन का अनुभव उनके लिए विशेष रहा। दिसंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के द्वारका में समुद्र के नीचे जाकर प्राचीन द्वारका के अवशेषों से जुड़े स्थल पर पूजा की। बाद में उन्होंने इस अनुभव को साझा करते हुए कहा कि समुद्र के भीतर द्वारका के दर्शन उनके लिए विशेष अनुभव था। प्रधानमंत्री का समुद्र में उतरकर पूजा करना और उसके बाद सामने आई तस्वीरें इस यात्रा को सामान्य राजनीतिक कार्यक्रम से अलग बनाती रही।

जनवरी 2024 में नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप पहुंचे। अगत्ती, बंगाराम और कवरत्ती में उन्होंने समय बिताया और समुद्र किनारे सुबह की सैर भी की। उन्होंने लक्षद्वीप की तस्वीरें और अपने अनुभव सोशल मीडिया पर साझा किए। प्रधानमंत्री के इस दौरे में सरकारी कार्यक्रमों के साथ समुद्र, समुद्र तट और द्वीपों की तस्वीरें भी खूब चर्चा में आईं।

0: 2023 में भारत ने पहली बार G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की और 9-10 सितंबर को दिल्ली में दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के नेता जुटे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में मेहमानों का स्वागत किया और अफ्रीकी संघ को G20 का स्थायी सदस्य बनाने पर सहमति बनी। सम्मेलन के दौरान भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली घोषणा पत्र भी सर्वसम्मति से स्वीकार हुआ। भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्लोबल साउथ की आवाज को प्रमुखता देने पर जोर दिया।
1: मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी
0: 9 जून 2024 को नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इस बार भी शपथ समारोह में भारत के पड़ोसी और हिंद महासागर क्षेत्र के कई देशों के नेता मौजूद रहे। श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मॉरिशस और सेशल्स के प्रतिनिधियों की मौजूदगी ने समारोह को क्षेत्रीय कूटनीति का मंच भी बनाया। जुलाई 2024 में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नरेंद्र मोदी को रूस के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मानों में शामिल ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल प्रदान किया। ये सम्मान 2019 में घोषित हुआ था, लेकिन 2024 में मॉस्को में औपचारिक रूप से दिया गया। आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार नरेंद्र मोदी इस सम्मान को पाने वाले पहले भारतीय नेता हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में जानवरों के साथ उनकी तस्वीरें भी सामने आती रही। कभी गायों को चारा खिलाते हुए, कभी वन्य जीवों के बीच और कभी किसी पशु को दुलारते हुए उनकी तस्वीरें चर्चा में आई। राजनीति की गंभीर तस्वीरों के बीच ऐसे छोटे और सहज पल प्रधानमंत्री की सार्वजनिक छवि का अलग पक्ष दिखाते हैं। अप्रैल 2025 के पहलगाम आतंकी हमले के बाद 7 मई 2025 को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। भारतीय सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे आतंक के खिलाफ भारत की कार्रवाई बताया और कहा कि देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। ऑपरेशन में जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े ठिकानों को निशाना बनाया गया था। जुलाई 2026 में न्यूजीलैंड दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय समुदाय से बातचीत में करीब 25-30 साल पहले मिले एक मफलर, टोपी और दास्ताने दिखाए। उन्होंने बताया कि ये सामान उन्हें न्यूजीलैंड के एक व्यक्ति ने उनकी पहली यात्रा के दौरान दिए थे और इतने साल बाद भी उन्होंने इन्हें संभाल कर रखा है। प्रधानमंत्री बनने से बहुत पहले की ये छोटी सी याद सामने आई, जिसने उनके सार्वजनिक जीवन के एक पुराने अध्याय की झलक दिखाई।

0: 25-30 साल पहले जब मैं किसी सरकार में भी हिस्सा नहीं था, सार्वजनिक जीवन में मुझे कोई जानता नहीं था, तब भी मुझे यहां न्यूजीलैंड आने का अवसर मिला था। और उस समय मुझे किसी ने गिफ्ट में 3 चीजें दी थी जो मैं वापस इंडिया लेकर के गया था। एक ये मफलर, एक कैप और एक दस्ताना, क्योंकि ठंड का मौसम था। और उसमें से एक चीज मैं अभी यहां इस कार्यक्रम में भी लेकर आया हूं।
1: 2026 में भी नरेंद्र मोदी की विदेशी नेताओं के साथ मुलाकातों में औपचारिक बैठकों के अलावा अनौपचारिक बातचीत और व्यक्तिगत संवाद की तस्वीरें सामने आई। सितंबर 2026 में नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन और दूसरे नेताओं के साथ उनके अनौपचारिक क्षण कैमरे में कैद हुए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन पर देश भर में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए। बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने कहीं सेवा कार्यक्रम, कहीं रक्तदान शिविर और कहीं स्वच्छता अभियान चलाए। मंदिरों में पूजा और हवन भी हुए, जबकि दिन भर प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाइयां देने का सिलसिला चलता रहा। कई राज्यों में उनके जन्मदिन के मौके पर अलग अलग सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए गए थे।

0: प्यार प्यार उल्टा बात सर एक बार दो तुम थमका लगाने बस
1: मेरे पास एक आइडिया है।
0: क्या?
1: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है
2: एक रॉकस्टार होता है अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है दुनिया हिला पर स्टेज नहीं हिलता
3: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
4: मेरा ना सिंपल है एक लड़की है उसका भाई जेल में है लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
2: कौन सी बनानी है

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: यार लोन भूल गया। मैरी
3: सजेस्ट अ गुड बैंक ना।
4: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक।
2: स्मॉल फाइनेंस बैंक
4: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन, होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, माइक्रो मॉर्गेज लोन, गोल्ड लोन, प्री ओन कार लोन, टू व्हीलर लोन।
5: देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट
6: उज्जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस।
7: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
8: AU सोच बदलो और बैंक भी।
9: सर कैसो फास्ट की ग्रोथ तो चेक कीजिए।
10: कैसो फास्ट 27%,
9: इनो 9.2%।
11: गड़बड़ है।
12: आहा, कैसो फास्ट वाले जीरे का जादू चला रहे, इसीलिए इनके चाहने वाले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे। कैसो फास्ट, इंडिया की एसिडिटी का असली इंडियन सॉल्यूशन।
13: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर। मेंटर तरक्की का ऑलराउंडर।
14: माँ के पैरों की धूल माथे पर ले, मैं परिंदा खुले आसमान जहाँ जीत रू सारा।
15: JK Maxx Wipe Easy।
16: दीवारों के दाग का जवाब सिर्फ JK Maxx Wipe Easy।

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. In association with
1: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
2: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार सर एक बार दो तीन ठुमका लगाने बस
3: मेरे पास एक आइडिया
2: क्या
3: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है
4: एक रॉकस्टार होता है अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है दुनिया है पर स्टेज नहीं हिलता
5: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है
6: मेरा ना सिंपल है एक लड़की है उसका भाई जेल में है लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है
7: कौन सी बनानी है
8: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम AU
9: सोच बदलो और बैंक भी
10: डायबिटीज की वजह से मुझे बार बार बाथरूम जाना पड़ता है
11: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपिवा डायबिटीज जूस जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे
10: अब मैं चैन की नींद सो पाता कपिवा डायट्री जूस
12: जेके मैक्स वाइप इजी दीवारों के दाग का जवाब सिर्फ जेके मैक्स वाइप इजी

0: इन एसोसिएशन विद
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबां केसरी, हिंट एक हिंट तो देते।
2: क्या कहती है आपकी राशि, कैसा बीतेगा आपका दिन, किस दिन क्या करें क्या ना करें, क्या है आपके लिए शुभ रंग, कौन सा उपाय आपके दिन को बनाएगा बेहतर, देखिए राशि चक्र सिर्फ एस्ट्रो तक पर।

0: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
1: सोच बदलो और बैंक भी।
2: डायबिटीज की वजह से मुझे बार बार बाथरूम जाना पड़ता है,
3: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
2: अब मैं चैन की नींद सो पाता हूँ। कपीवा डायबिटीज जूस।
4: आ गया सोमवार और आ गए
5: चकमक चाचा।
4: एक कचौड़ी, दो समोसा, चकमक तेरा क्या भरोसा।
6: चकमक चाचा से सीधे चकमक है।
4: अरे नारा है, दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है, महिला लोग एकदम नारा लगाए जा रहे, गूंज रहा नारा।
6: लेकिन भैया नारा फालतू में सब बेकार, एकदम बेकार। नारे होते थे हमारे टाइम।
4: अच्छा
6: सुनाए, जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, जेपी भाई छूटेंगे।
4: अच्छा तो हमारे टाइम वाले सुनिए, दो कुलचा एक बिरयानी, इन नेताओं की खत्म कहानी।
6: अरे जमीन के चकबंदी में, जमीन के चकबंदी में क्या फाइनेंस बंदी में।
4: ठंडी चाय गरम करो चकमक चाचा, शर्म करो।
6: अरे राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर।
4: अरे लाठी गोली खाएंगे, इस्तीफा लेके जाएंगे।
6: अरे सुनो, इस दीपक में तेल नहीं, सरकार चलाना खेल नहीं।
4: अरे लाल फूल, नीला फूल, जंजी नंगे ब्यूटीफुल।
6: अरे बारी बारी, सबकी बारी, अबकी बारी अटल बिहारी।
4: चाय गरम, दूध गरम, चकमक चाचा भी शर्म
6: है।
4: हाँ,
6: जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है।
4: अरे मेरे सिर में दर्द है, जिसका कारण मर्द है आप जैसा।
7: हम जैसे, इधर आओ।
8: हम जैसे मर्द नहीं होते किसी नारे से ऑफेंड, हम तो भैया करते हैं हर सही मुद्दे को डिफेंड।
4: आई चाचा।

0: presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: यूपी के चुनावी मौसम में दलित वोटों के लिए हर दल के तरकश में अलग अलग तीर है, और इसी में से एक तीर बीजेपी ने अब यूपी में आजमाया है, जो दलित सियासत में प्रतीकों के तौर पर इस्तेमाल होते आ रहे हैं। सीएम योगी ने ऐसा ही एक ऐलान यूपी में किया, जहां भदोही का नाम संत रविदास के नाम पर किया गया है।
1: कालीन उद्योग के लिए जाना जाने वाला भदोही जनपद आने वाले समय में मध्यकालीन संत जिन्होंने अपनी साधना के माध्यम से समाज को जोड़ने का काम किया था, ऐसे सदगुरु रविदास जी महाराज के नाम पर भदोही जाना जाएगा।
0: भदोही नहीं, नामकरण की बात हो तो कन्नौज मेडिकल कॉलेज का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर बहाल किया गया है। वहीं अनुपूरक बजट में डॉक्टर अंबेडकर मूर्ति विकास योजना के लिए 407 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत अंबेडकर, संत रविदास, संत कबीर, ज्योतिबा फुले और महर्षि वाल्मीकि के प्रतिमाओं के संरक्षण, सौंदर्यीकरण और सुरक्षा पर काम होगा। बीजेपी कहती है कि अखिलेश यादव की सरकार ने दलित विरोधी सोच के कारण जिन महापुरुषों के नाम पर रखे गए जिलों, संस्थानों के नाम बदल डाले थे, उनका पुनर्नामकरण करके बीजेपी सम्मान दे रही है।
2: पूर्व में भी भदोही का नाम संत रविदास नगर था, किंतु अखिलेश यादव की दलित विरोधी सोच के नाते से उन्होंने संत रविदास नगर समेत उत्तर प्रदेश के कई जिलों के नाम बदले थे। आज उसको सही किया गया है।
3: समाजवादी पार्टी समाज में न किसी वर्ग को अपनी जागीर न वोट बैंक समझती है। वो सभी वर्गों को अपना साथी, सहयोगी और समाजवादी पार्टी के परिवार का हिस्सा समझती है।
0: मतलब ये कि दलितों को रिझाने के लिए दाव चलाए जाने लगे हैं। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।

0: पड़े
1: नहीं।
0: फ्लाइट में कम से कम सफर करें मेरे हिसाब से भाई। ट्रैवल एजेंट कोई गांजा फूंक के चला रहा है, कोई चाकू लेके घुस रहा है, क्या हो रहा है ये?
2: लेकिन हम तो हर कीमत पर समझौते के आदि हैं।
0: तुम्हारा
2: लेकिन हम तो हर कीमत पर समझौते के आदि हैं, गाल पे चाटा खाते रहने वाले गांधीवादी हैं।
0: यार काट देना ये।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: पंजाब की सियासत का सबसे बड़ा मंच मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ हर सवाल पर होगी खुलकर बात। देखिए पंचायत आज तक पंजाब 8 अक्टूबर दिन भर सिर्फ आज तक पर।

0: यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन पर गदर मची है। कहा जा रहा था कि कांग्रेस 150 सीटें चाहती है, लेकिन कांग्रेस अब इससे आगे की बात कर रही है।
1: इसने किया 150 का, मैंने तो 200 की बात की थी। मैं शुरू से कह रहा हूँ, बराबर का सम्मान और बराबर की इज्जत, बराबर का हिस्सा।
0: लेकिन राजेंद्र पाल गौतम को समाजवादी पार्टी के नेता दो टूक जवाब देते हैं।
2: मैं ये कहता हूँ, उनको 50 सीट देना भी बहुत बड़ी बात होगी, उनको देखना चाहिए। दो तुम्हारे विधायक हैं, पिछली बार तुमने लड़के देख लिए, क्या इससे तुम्हें सबक नहीं मिलता?
0: अखिलेश यादव पहले ही कह चुके हैं कि जीत ही सीट का आधार है।
3: जीत ही आधार है, जीत ही सीट का आधार है।
0: और जीत बोले तो आखिरी चुनाव यानी 2024 लोकसभा में मिली जीत, और वो जीत कुछ ऐसी थी कि 80 में 37 सीटें समाजवादी पार्टी जीती और 6 कांग्रेस को मिली थी। इसे विधानसभा के अनुपात में बांटा जाए तो 37 लोकसभा के हिसाब से अखिलेश के हिस्से 347 सीटें बनती हैं और कांग्रेस के हिस्से 56। लेकिन कांग्रेस की हसरतें 56 से 200 तक पहुंच चुकी हैं और हौसला बढ़ता ही जा रहा है। अब कांग्रेस ने उन्हीं इमरान मसूद को कांग्रेस का कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है, जो लगातार समाजवादी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे हैं और 403 सीटों पर लड़ने की चेतावनी देते रहते हैं। पॉलिटिकल मैसेजिंग के तौर पर कांग्रेस ने अपने पत्ते सामने रख दिए हैं। अब बारी समाजवादी पार्टी की ओर से फैसला लेने की है, और वो कांग्रेस की सीटों वाली शर्तों के साथ विधानसभा चुनाव में गठबंधन करना चाहती है या बीजेपी को हराने के मिशन के साथ। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
4: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
6: इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

सीएम से पीएम तक जन सेवा के 25 साल पर मोदी ने फूका विकसित भारत के संकल्प का बिगुल, कहा वी विल डू इट, एम्बिशन के लिए नहीं मिशन के लिए जीता हूं, श्री विनायक से लिया देश की समृद्धि का आशीष। मोदी की जन्मभूमि से कर्म भूमि तक सेवा संकल्प के कई कार्यक्रम, वाराणसी में रहेंगे नितिन नवीन, शाह और राजनाथ ने दी 25 साल के बेमिसाल सफर की बधाई, सीएम योगी और धामी की सेवा ज्योति यात्रा।

दिल्ली के जनपद सागर रत्न में खड़गे के लंच में पहुंचे विपक्षी सांसद राहुल ने इंडिया ब्लॉक के सांसदों को खाने पर बुलाया, आसपास कड़ी सुरक्षा। आकाशवाणी भवन में जबरन घुसने के मामले में FIR दर्ज। सीएम योगी की हुंकार, यूपी में राज्यसभा के चुनाव ने बता दिया 2027 के नतीजा, लड़ाई फिर 80-20 पर आई। 10 में सिर्फ 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट उतारने पर किया कटाक्ष। बढ़ सकता है आपकी ईएमआई का बोझ, आरबीआई के रेपो रेट में 0.25% की बढ़ोतरी। होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन हो सकता है महंगा, नया रेपो रेट 5.5% हुआ।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। दो बज चुके हैं, न्यूज रूम लाइव का वक्त हो गया। और न्यूज रूम लाइव में कौन सी खबरें आज हम आपको दिखाने वाले हैं, सबसे पहले मैं आपको वो बता देते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए, 25 साल पूरे हो गए, पहले मुख्यमंत्री और उसके बाद फिर प्रधानमंत्री। तो आज क्या संकल्प लिया, क्या नया नारा दिया, वी विल डू इट कहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वो हम आपको डिटेल में बताएंगे। जो हमारी जो दूसरी बड़ी खबर होगी वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई होगी। वड़नगर से लेकर वाराणसी तक पीएम मोदी के कार्यकाल में क्या क्या हुआ, क्या क्या उपलब्धियां रही, ये भी हम आपको बताएंगे। तीसरी जो बड़ी खबर होगी वो होगी राहुल गांधी के सियासी लंच से जुड़ी हुई। सागर रत्न में लंच शुरू हो गया है, बहुत से बड़े बड़े नेता पहुंच रहे हैं, उनके साथी पहुंच रहे हैं, उसको लेकर क्या खबरें आ रही है ये भी हम आपको बताएंगे। और ठीक आधे घंटे बाद हम आपको बताएंगे प्रधानमंत्री के विकसित भारत संकल्प के बारे में, वो भी अनकट। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की आपको एक बड़ी खबर बता दो। बड़ी खबर आ रही है जहां राहुल गांधी की तरफ से अब एक विपक्ष की तरफ से लंच अब होने वाला है। और लंच कहां हो रहा है, सागर रत्न में हो रहा है, सुरक्षा वहां पर बढ़ा दी गई है, बड़े बड़े नेता भी वहां पर पहुंच रहे हैं, ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी और विपक्ष के जितने बड़े नेता हैं वो इस वक्त अब लंच पर पहुंच रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं। और ये भी आपको बता दें, कांग्रेस ने खाने पर बुलाया है विपक्षी सांसदों को, कल प्रदर्शन में जो उतरे थे। अब कांग्रेस का विरोध वाला जायका का मंच दिल्ली के जनपद के सागर रत्न रेस्टोरेंट में सजा हुआ है। सारे बड़े सांसद पहुंच रहे, मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंच गए हैं, राहुल गांधी का भी इंतजार हो रहा है, राहुल गांधी भी कुछ ही देर में वहां पहुंचने वाले होंगे। रुख कर लेते हैं सीधे मौसमी सिंह का, हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई है, कल भी सारी तस्वीरें खबरें सबसे पहले पहुंचा रही थी। मौसमी, कांग्रेस का ये विरोध वाला जायका और जो लंच शुरू हो रहा है, इसको लेकर अभी तक क्या खबर है, कौन कौन से बड़े नेता पहुंचे हैं, किनका पहुंचना बाकी है?
1: देखिए हिमांशु, ये लंच को ज्यादा ही स्पॉटलाइट मिल गई है, और वो इसलिए भी है कि उसका एक बैकग्राउंड है कि कल जिस तरीके से एक धरना हुआ और उसके बाद एक लंबा धरना हुआ, यानी कि धरने पे धरना हुआ, उससे काफी दिक्कत सरकार और पुलिस को हुई, और उसको लेके जो है अब ये जो लंच है वो सागर रत्ना, कई सागर रत्ना है, एक 5 सितारा होटल में भी सागर रत्ना है। लोकेशन जो तय की गई जनपद, ये जनपद लोकेशन दिल्ली पुलिस के लिए बेहद शक और परेशानी का शायद सबब बन गई, वरना ये ना होता। आप जरा देखिए कि आपको यहाँ पैरामिलिट्री भी नजर आ जाएगी, बसें भी नजर आ जाएंगी, दिल्ली पुलिस की नीली बस भी नजर आ जाएगी, जिसमें राहुल गांधी इसी तरह की बस में लेके जाया गया था उनको कल। तो इस तरीके का सुरक्षा का पहरा, जाहिर तौर पे मेहमान नवाजी में मेहमानों को बसों में तो लाया नहीं जाएगा, आ तो अपनी गाड़ी में रहे हैं, लेकिन क्या जाएंगे बस में, ये बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि लंच कितना लंबा चलता है और लंच के बाद क्या होता है। तो सबकी नजरें आप देखिए सागर रत्ना है, पूरा सिक्योरिटी कॉर्डन है, पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस जो है पूरा घेरा बनाई हुई है। अमूमन ऐसा घेरा कोई पार्टी के लंच या नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के लंच पर सेवा दल के सफेद यूनिफॉर्म में आपको कर्मी नजर आ रहे हैं, पर ऐसे पुलिस कर्मी नजर नहीं आते। और अभी आप देखिए कुछ आला अधिकारी भी यहाँ पे उतरते हुए नजर आ रहे हैं। तो बड़ा दिलचस्प है, इतना सुरक्षा का ताता और इतना पहरा, तो शायद नजर इस बात पर है कि ये लंच कितना लंबा चलता है, और लंच के बाद जंतर मंतर यहाँ से बहुत दूर नहीं है, और सीपी का गोल चक्कर भी यहाँ से बहुत दूर नहीं है मानसू, तो बेहद सियासी ये लंच हो सकता है।
0: बिल्कुल, वो तस्वीरों में दिखाई भी दे रहा है जैसा आप यहाँ पर बता रही हैं। मौसमी, एक बार जरा सुरक्षा व्यवस्था, जैसे आपने बताया कि जनपद जो इलाका है उसकी अहमियत भी बहुत ज्यादा है, और वहां पर अभी बहुत से नेता पहुंच भी रहे हैं, कल हमने देखा पुलिस के लिए बहुत सरदर्दी भी रही थी, पुलिस के अधिकारी मनाते रहे लेकिन राहुल गांधी मानने को तैयार नहीं थे। अब आज जरा सुरक्षा को लेकर थोड़ा और बता दीजिए, और तस्वीरों के जरिए ये समझाने की कोशिश कीजिए सुरक्षा को लेकर, और क्या व्यापक इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं, और क्या बैरिकेटिंग और कहाँ कहाँ पर क्या कुछ बदलाव किया गया है आम लोगों के लिए भी?
2: आप लोग बताओ, ये लोग क्यों इतना सुरक्षा का घेरा रख रहे हैं?
1: आपने बुलाई है पैरामिलिट्री?
2: नहीं, हम थोड़ी बुलाते हैं, हमारी सरकार होती तब ना बुलाते।
1: वहाँ देख रहे हैं कि काफी गाड़ियां हैं और वज्र वाहन भी है, तो लंच पे वज्र वाहन का क्या?
2: अब प्रधानमंत्री के 25 साल पूरे हुए हैं, हम यहाँ भोजन कर रहे हैं इसी खुशी में, क्या दिक्कत होगी?
1: भोजन कितना लंबा चलेगा, डिनर तक तो नहीं चल जाएगा?
2: अब देखते हैं।
1: तो ये देखिए पवन खेरा जो कल काले कुर्ते में राहुल गांधी के साथ नजर आ रहे थे, और वही पवन खेरा बता रहे हैं कि हम तो लंच के लिए आए हैं, दिल्ली पुलिस किस लिए आई है ये तो पुलिस ही जाने, और मुस्कुराते हुए चले गए। आपको सुरक्षा दिखाते हैं यहाँ पे कि आप यहाँ देखिए कि जनपद लगभग जाम हो गया है। ये बसें देखिए यहाँ पे अमूमन अलाउड नहीं है खड़ा होना, बढ़िया नारंगी रंग की टूरिस्ट बसें यहाँ पे आपको नजर आ रही है। थोड़ा सा अगर नासिर कैमरा घुमा दे और पूरी जनपद को हाइट पे दिखा दे तो कितनी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बसें, यानी कि पर्याप्त है। सांसदों को अगर ले जाना हो नंबर से पता चल जाता है, इक्का दुक्का बसे हो तो समझ में आता है। जंतर मंतर को भी कॉर्डन ऑफ कर दिया है, तो ये सिक्योरिटी का बंदोबस्त है। जाहिर है कि सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस कोई कोताही बरतना नहीं चाहती। राहुल गांधी का इंतजार हो रहा है और यहाँ पे देखिए पुलिस की गाड़ियां कैवलकेड से पता चल रहा है कि अभी भी सांसदों का आना जो है वो चल रहा है। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी हमने चेक किया है, हालांकि नहीं आई है, देखना होगा। अखिलेश यादव
3: नहीं, लेकिन एक बात बताइए मौसमी, जैसे आपने बसों की संख्या गिनाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इतनी सारी बसें खड़ी हुई है वहां पर। अमूमन आमतौर पर वहां पर बसें नहीं रहती हैं, कल भी हमने देखा बहुत सारी बसें खड़ी थी वहां पर। क्या ये लंच के बाद कुछ और कार्यक्रम भी हो सकता है, मतलब धरना प्रदर्शन या ऐसा कुछ?
1: अब देखिए अब आपको बता दें,
3: लेकिन आम आदमी पार्टी का भी प्रदर्शन इस वक्त चल रहा है, देखिए बैरिकेडिंग पर चढ़ गए। मैं मौसमी दोबारा आता हूँ आपके पास, लेकिन देखिए दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ सागर रत्न रेस्टोरेंट जनपद दिल्ली, मौसमी जुड़ी है वहां की तस्वीरें दिखा रही है, बसें वहां पर भी पहुंच गई, और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन चल रहा है, और यहां पर जो सौरभ भारद्वाज और भी कई लोग पहुंचे हैं। अब वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर बैरिकेडिंग पर आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता चढ़ गए, तो वहां पर भी अब इस वक्त हंगामे की स्थिति बनी हुई है।
4: और ये हम नहीं माने, उच्चतम न्यायालय ने ही कहा है कि फॉर्म 6 पे बदलाव में कोई सुप्रीम कोर्ट की सहमति नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद तुमने किया है, संविधान का अपमान किया है। ऐसे गद्दार ज्ञानेश कुमार को तो सत्ता में चुनाव आयोग रहने का अधिकार नहीं है। दिल्ली में वोट चोरी करके तुमने दिल्ली का चुनाव जीता, तुमने हर जगह वोट काटे, तो तुम बीजेपी के शील्ड बन करके तुम वोट की चोरी करा रहे थे। अब वक्त आ गया है ज्ञानेश कुमार जैसे गद्दार को यहां से हटाया जाए, देशद्रोह का केस चले, और इसीलिए 2025 में
3: फिर से रुक कर लेते हैं मौसमी का। हमारी सहयोगी हमारे साथ में बनी हुई कहां से, जनपद से, जहां पर लंच चल रहा है। मौसमी बताइए क्या अपडेट है आपके पास, राहुल गांधी पहुंच गए क्या?
1: आपको बता रहे थे हम कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी एक साथ आ गए हैं सागर रत्ना, और मुस्कुराते हुए प्रियंका गांधी से हमने पूछा कि ये इतनी पुलिस की क्या जरूरत है लंच पे, तो मुस्कुराते हुए वो राहुल गांधी की तरफ देखने लगी। ये पहली बार है पूरे धरने के बाद, अभी देखिए अंदर भीतर जाते हुए राहुल गांधी और उनके साथ प्रियंका गांधी भी हैं, और कुछ उस तरह की तस्वीर यहाँ पे आप देखिए कि कहीं
3: आप देखिए, आपने पूछा और उन्होंने जवाब दिया, ये तस्वीरें दिखा देते हैं मौसमी। आपने जैसे बताया कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी सब साथ में आए थे, और वो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि वो रेस्टोरेंट के अंदर जाते हुए राहुल गांधी और प्रियंका दिखाई दे रहे हैं। और जैसे कि हमारी सहयोगी मौसमी ने पूछा कि इतनी पुलिस यहाँ पर क्यों है, पहले पवन खेड़ा से पूछा, उसके बाद जब प्रियंका से पूछा गया तो प्रियंका गांधी की तरफ से ये बात कही गई, हंसते हुए निकल गई। अब मौसमी बनी हुई है हमारे साथ, मौसमी और बताइए वहां पर और क्या तस्वीरें देख पा रही हैं? जी,
1: आप देखिए कि ये तो होता है जो चीफ गेस्ट होता है वो आखिरी में आता है। अब राहुल गांधी चीफ गेस्ट है या नहीं, लेकिन खड़गे साहब उनसे पहले आ गए, निमंत्रण खड़गे साहब का था, होस्ट वो है। बहरहाल राहुल गांधी प्रियंका गांधी आ गए, आप देखिए यहाँ पे सिक्योरिटी बिल्कुल टाइट हो गई है, यहाँ पे गाड़ियों की जगह भी नहीं बची है, और मुझे लगता है कि सभी लोग आ गए हैं भीतर। ये सिक्योरिटी क्यों है समझ नहीं आ रहा है, इतनी सिक्योरिटी देखिए ना, यानी कि खाना खाइए और घर जाइए, इससे बाहर अगर आपको जनपद भी घूमना है सांसदों को तो उसकी शायद अनुमति नहीं है। पूछा जाएगा कि आप कहाँ जा रहे हैं और एक साथ तो चलने नहीं देंगे क्योंकि राहुल गांधी का ट्रैक रिकॉर्ड इस मामले में दिल्ली पुलिस के हिसाब से खराब है। राहुल गांधी जन्मदिन विश करने जाते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे को और उसके बाद प्रधानमंत्री आवास पहुंच जाते हैं। वो पार्लियामेंट स्ट्रीट जाते हैं पूछने के लिए FIR दर्ज करोगे और फिर वहीं बैठ जाते हैं शाम तक धरने में। तो इस तरीके का ट्रैक रिकॉर्ड दिल्ली पुलिस जब पूरा वो कर रही होगी अपना आंकलन कर रही होगी कि क्या हो सकता है लंच में तो शक ज्यादा होगा ये भरोसा होगा कि राहुल गांधी जंतर मंतर चल पड़ेंगे। तो नासिर से मैं कहूंगी कि आप विजुअल दिखाते रहिए और हम लोग अपनी बात बताते रहें। ये वो दौर है जब लगातार ऑपोजिशन की धरना पॉलिटिक्स जो है वो पीक पर आ गई है क्लाइमैक्स कर गई है। अब उसके बाद उसका अंजाम क्या होगा जनता के बीच क्या होगा क्या चुनावी परिणाम होगा वो अलग बात है। लेकिन अगर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और सियासी समीकरणों की बात करें तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 25 साल बतौर एडमिनिस्ट्रेटर पूरे हो रहे हैं और राहुल गांधी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। वो जानते हैं कि मामला मैसेजिंग का भी है मामला परसेप्शन का भी है। तो एक सोची समझी रणनीति के तहत ये लंच बुलाया गया है वरना क्या जरूरत थी एकदम से लंच की। पार्लियामेंट सेशन में नहीं है ऐसा कोई बड़ी बैठक नहीं हो रही है। राज्य इकाइयों को अलग अलग जगह जो है प्रोटेस्ट करना है इंडिया ब्लॉक के। तो दिल्ली में लंच कराने का मायने मैसेजिंग का था और आज के दिन जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलसा और उनके सेलिब्रेशन हो रहे हैं तो यहाँ पे विपक्ष एक मैसेज देना चाह रहा है कि इंडिया ब्लॉक एक साथ है हम साथ लड़ते हैं साथ उठते बैठते हैं और ना सिर्फ विचारधारा से लेकिन हम लोग सारे एक्शन में भी एक साथ है एक तरीके से ये मैसेजिंग का।
3: अच्छा लेकिन एक बात बताइए मौसमी अभी अभी आपने बताया वहां पर हालात बताए हालांकि वो पवन खेड़ा का भी कटाक्ष बहुत अच्छा लगा था कि पीएम मोदी को तो 25 साल हो गए इसीलिए हम लोगों ने लंच यहां पर रखा है अब पुलिस क्यों आई है ये पता नहीं है। लेकिन पुलिस प्रशासन इतनी भारी संख्या में वहां पर मौजूद है जैसा आप बता रही हैं और लंच अभी 1.5-2 घंटे तो करीबन 1.5 घंटे तो लगभग चलेगा तो ऐसे में

0: पैदल कहीं और पहुंच जाते तो मुसीबत बढ़ जाती है यहाँ पर पुलिस की, तो ऐसा हो सकता है आज।
1: देखिए अगर मैं चलना शुरू करूँ यहाँ से सागर रत्ना से तो जंतर मंतर हम 5 मिनट में पहुंच जाएंगे, और वहाँ पहुंचने के लिए अगर बैरिकेडों को जोड़ लिया जाए तो 100, 200, 300 बैरिकेड लगे हैं। तो यानी कि वो 5 मिनट का फासला 50 मिनट और 2 घंटे का करने का की पूरी मंशा। अभी तो सीजेपी का भी नहीं है आंदोलन, और मुझे ये भी बताया गया कि कल जंतर मंतर से आज सुबह सारे बैरिकेड हट गए थे, लेकिन जैसे ही मल्लिकार्जुन खड़गे का मैसेज गिरता है, संदेश जाता है, निमंत्रण जाता है, उसके बाद डबल बैरिकेड लग जाते हैं। तो बेसिकली ये है कि राहुल गांधी ने कहा आपने हमें जगह नहीं दी दूसरी धरने की, ना सही, हम अपनी धरने की जगह ढूंढ लेंगे, आपने आकाशवाणी से हटाया, आज हम फिर धरने पर बैठ जाएंगे क्योंकि दाल अभी
0: चलिए मौसमी आप मौसमी आप नजर बनाए रखिए, अगर कुछ चलचल होती है तो हम दोबारा आपके पास आएंगे। लेकिन अभी आपको लिए चलते हैं आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन पर। देखिए हर तरफ से वार इस वक्त किया जा रहा है सरकार पर, तो आम आदमी पार्टी की तरफ से बैरिकेडिंग पर चढ़ने की कोशिश की जा रही है। सुशांत मेहरा हमारे सहयोगी हमारे साथ में बने हुए हैं मौके से। सुशांत बताइए क्या हो रहा है वहां अभी।
2: देखिए मानशु मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं, इंडिया ब्लॉक के जो अलग अलग घटक दल थे उनका आज प्रदर्शन है। आम आदमी पार्टी भी इस पूरे प्रोटेस्ट में जो है वो कूदी है। कल जिस तरीके से राहुल गांधी और पूरा कांग्रेस जो है वो सड़कों पर 8 घंटे तक प्रदर्शन चला, वहीं अब देखेंगे कि कांग्रेस के साथ साथ अब आम आदमी पार्टी भी जो है वो इस पूरे मुद्दे पर जो है वो केंद्र सरकार को और सीईसी को जो घेरने की कोशिश में जो है वो लग गई है। ये कश्मीरी गेट का दिल्ली का इलेक्शन कमीशन का दफ्तर है जहां पर आम आदमी पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता है वो यहां पर पहुंचे हुए हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि कांग्रेस की तरफ से ये पूरा कॉल जो है वो दिया गया था लगभग 2:30 बजे के आसपास कांग्रेस ने पूरे प्रदर्शन की कॉल की थी, लेकिन आम आदमी पार्टी जो है वो लगभग 2 बजे के आसपास यहां पर पहुंच गई और अपना प्रदर्शन जो है वो शुरू किया। और अब से थोड़ी देर बाद कांग्रेस भी जो है वो यहां पर पहुंचेगी। और आपको तस्वीरें दिखा दूं कि इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर और आसपास की तो पूरा हिस्सा है उसको पुलिस ने किस तरीके से छावनी में जो है वो इस वक्त तब्दील कर रखा है। जहां पर भी आप देखेंगे वहां पर आपको भारी पुलिस बल पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान जो है वो आपको नजर आएंगे। इसके अलावा यह आईपी यूनिवर्सिटी का रास्ता है, यहां से कांग्रेस के लीडर्स जो है वो ना आ जाए इसलिए इसको भी बंद कर दिया गया है। ये पूरा हिस्सा जो कि जीपीओ की तरफ जाता है उसको बंद कर दिया गया है। ये इलेक्शन कमीशन का दफ्तर है ये दिल्ली का, और क्योंकि आज तमाम राज्यों की इकाइयों को जो है वो प्रदर्शन करना है, इसी को लेकर के तमाम राज्यों के जो इलेक्शन कमीशन के दफ्तर है वहां पर कांग्रेस और अन्य घटक दल जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी फिलहाल पुलिस की तरफ से लगातार अनाउंसमेंट की जा रही है कि अगर बैरिगेटिंग टूटता है तो तीसरा जो मेन बैरिगेटिंग है ताकि इलेक्शन कमीशन के दफ्तर तक प्रदर्शनकारी ना पहुंच सके उसकी पूरी निगरानी जो है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई है। आप देख सकते हैं कई लेयर की बैरिगेटिंग जो है वो की गई है, और एक बैरिगेटिंग पर आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो इस वक्त झंडे लेकर के पोस्टर बैनर लेकर के यहां पर चढ़ चुके हैं बैरिगेट पर। लगातार ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग जो है वो की जा रही है एसआईआर के मुद्दे पर जो है वो सरकार को घेरने में। यहां पर अब जो तमाम विपक्षी दल हैं वो यहां पर लगे हुए हैं। और इसके अलावा एक दिलचस्प बात मैं भी ये अभी बता दूं कि इस प्रदर्शन से पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में सोशल मीडिया एक्स पर जो है वो लगातार एक युद्ध भी जो है वो छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। देवेंद्र यादव जो कि दिल्ली कांग्रेस के चीफ हैं उनकी तरफ से ये सौरभ भारद्वाज जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं उनके ऊपर तंज कसा गया कि आखिरकार जब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के तमाम विपक्षी दल पिछले कई दिनों से इस मुद्दे को उठा रहे थे, कल 8 घंटे उन्होंने प्रदर्शन किया तब जाकर के आम आदमी पार्टी की नींद जो है वो खुली और आम आदमी पार्टी अब इस मुद्दे पर जो है वो सामने आई। पहले क्यों सामने नहीं आई इस पूरे मुद्दे पर, आम आदमी पार्टी पर तंज कसते हुए जो है वो कांग्रेस के देवेंद्र यादव जो है वो नजर आ रहे हैं। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर के भी अगर कहा जाए तो सौरभ भारद्वाज की तरफ से ट्वीट किया गया देवेंद्र यादव को लेकर के, लेकिन आप तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से यहां पर अभी लगातार जो प्रदर्शनकारी है वो इस वक्त बैरिगेट पर आपको नजर आएंगे और आगे आने की कोशिश जो है वो की जा रही है। लेकिन फिलहाल पुलिस ने उनको वहीं पर रोक दिया है, पैरामिलिट्री फोर्सेस ने उनको रोका हुआ है।
0: तैयारी मतलब पुलिस की तरफ से भी पर्याप्त की गई है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सुशांत, जानकारी के लिए नजर बनाए रखिएगा, दोबारा हम आपसे जुड़ेंगे। लेकिन अब बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 साल की मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहते हुए। देखिए 7 अक्टूबर 2001 वो वक्त था जब मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी की तरफ से शपथ ली गई, और उसके बाद आज देखिए इतने साल यहां पर हो चुके हैं। अब सबसे पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया, आज सरोजिनी नगर के दिल्ली के श्री विनायक मंदिर में जाते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं, उसके बाद जाते हैं इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में, और स्टेडियम में जाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा जाता है वी विल डू इट।

0: ये नारा दिया जाता है और किन पहलुओं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बात की वो हम आपको बताते हैं।
1: आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो केवल कृतज्ञता का भाव ही आता है। मैं कृतज्ञ हूं हर उस व्यक्ति, हर उस घटना के प्रति जिसने मुझे कुछ न कुछ सिखाया है, जिसने मुझे जिताया उसने मुझे विनम्र होना सिखाया, जिसने मुझे गिराया उसने मुझे फिर खड़ा होना सिखाया। शुभचिंतकों ने मुझे प्रोत्साहित किया और आलोचकों ने मुझे अपने भीतर झोंकना सिखाया। जिसने मेरा साथ दिया उसने मुझे विश्वास की शक्ति दिखाई, जिसने मेरा विरोध किया उसने मुझे लोकतंत्र की शक्ति समझाई। हर संकट मेरे धैर्य की परीक्षा रहा, हर सफलता ने मेरे दायित्व बोध को विस्तार दिया और हर सिद्धि ने बड़े लक्ष्यों की तरफ बढ़ने का साहस दिया, जज्बा दिया।
0: देखिए फिर आपको बता रहे हैं, 7 अक्टूबर 2001 वही तारीख थी जब मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी गुजरात के नरेंद्र मोदी ने, और उसके बाद से अब आप वो तस्वीरें देखिए, सीएम से पीएम तक का सफर, पहला कार्यकाल, दूसरा कार्यकाल, और उसके बाद फिर वो बढ़ता चला गया, फिर मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बने, और 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली तो उसके बाद से दूसरा कार्यकाल और तीसरा कार्यकाल, मुख्यमंत्री रहते हुए 4 कार्यकाल और उसके बाद प्रधानमंत्री रहते हुए तीसरी बार उन्होंने शपथ ली है, और दावा यह किया जा रहा है कि चौथी बार भी शपथ ली जाएगी। यहां पर रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से, इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
4: JK Maxx Wipe Easy, दीवारों के दाग का जवाब सिर्फ JK Maxx Wipe Easy।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: मैडी आई नीड टू ओपन अ सेविंग्स अकाउंट।
3: अरे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोल लो।
2: स्मॉल बैंक
3: स्मॉल Privilege savings account, Garima savings account, Maxima business, Edge current account, business, Maxima business, Privilege, RD, everything. There's nothing small about them.
2: Okay.
3: Ujjivan, nothing small about us.
4: Sir, Gaso Fast ki growth to check kijiye. Gaso Fast 27%, Eno 9.2%.
5: Gadbad hai.
6: Aha, Gaso Fast wale jeere ka jadoo chala rahe. इसीलिए इनके चाहने वाले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। गैसोफा इंडिया की एसिडिटी का असली इंडियन सॉल्यूशन।
2: आगे आगे
7: अरे उधर
2: उधर करेक्ट करेक्ट
8: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
9: तेरा प्यार प्यार प्यार उल्टा बार सर एक बार गोटी थमका लगाने बस।
10: मेरे पास एक आइडिया है।
9: क्या?
10: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा TMT बार से जो बना है,
11: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है दुनिया हिला, पर स्टेज नहीं हिलता
12: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा TMT से बना है।
13: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही TMT बार से बना है।
14: कौन सी बनानी है?
15: फिर डायबिटीज मुझे बार बार थका देता है।
16: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
15: अब मुझे जल्दी थकान नहीं होती। कपीवा डायबिटीज जूस।
17: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। Signature Finest Silver Elaichi, a premium product from Dilbagh Group.
18: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर। मेंटर तरक्की का ऑलराउंडर।
19: माँ के पैरों की धूल माथे पर लगे, परदेश की गलियों में अपने वतन की गीत।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: ये डायबिटीज मुझे बार बार थका देता है,
3: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
2: अब मुझे जल्दी थकान नहीं होती। कपीवा डायफ्री जूस।
4: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
5: In association with Signature Finest Cardamom Seeds, E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल।
6: हरियाणा की सियासत का सबसे बड़ा मंच, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ हर सवाल पर होगी खुलकर बात। देखिए पंचायत आज तक हरियाणा 8 अक्टूबर दिन भर सिर्फ आज तक पर।
7: दो सौ किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पैदल तय करके आदिवासी छात्र नासिक से मुंबई आए थे। छात्रों को लगा था कि नासिक में उनकी सुध किसी ने नहीं ली, लेकिन राजधानी मुंबई में सरकार उनकी मांग सुनेगी, उनसे संवाद करेगी, उनकी मांगें मंजूर करेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुंबई पुलिस ने आदिवासी छात्रों को जबरन बसों में ठूस कर वापस नासिक भेज दिया। इस दौरान जिन छात्रों ने पुलिस का विरोध किया तो पुलिस ने अपनी शैली में उन्हें समझाकर बस में जबरन भर दिया। ऐसे में छात्रों ने पुलिस पर पीटने का आरोप लगाया है।
8: ये पुलिस गुंडा कर दिया, गुंडा कर दी, गुंडा कर दिया। हम स्टूडेंट है, हमें गुंडा कर देने करते, हमें अकेला है।
7: नासिक से मुंबई पहुंचने के बाद से आदिवासी छात्र कांग्रेस मुख्यालय तिलक भवन में शरण लिए हुए थे। आदिवासी छात्रावासों से जुड़ी मांगों को लेकर महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों से 300 से ज्यादा आदिवासी छात्र मुंबई पहुंचे थे। इन आदिवासी छात्रों ने मुंबई के आजाद मैदान में प्रदर्शन की अनुमति मांगी थी, लेकिन मंजूरी नहीं मिलने के बाद वो तिलक भवन में रुके हुए थे। छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती वो अपना आंदोलन अलग अलग जिलों में जारी रखेंगे।
9: विद्यार्थ्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून आपलं राजकारण चालवण्याचा प्रयत्न आहे। विद्यार्थ्यांना वेठीस धरून या ठिकाणी अराजकता तयार करण्याचा प्रयत्न आहे।
7: अब आदिवासी छात्र अपनी मांगों को लेकर सरकार के रुख का इंतजार कर रहे हैं। छात्रों ने 25 अक्टूबर को दोबारा मुंबई आकर अपनी मांगों को लेकर बड़ा आंदोलन खड़ा करने का अल्टीमेटम दिया है। दीपेश त्रिपाठी, मुंबई आज तक।
6: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
5: इन एसोसिएशन विद
11: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
12: सीएम से पीएम तक जन सेवा के 25 साल पर मोदी ने फूका विकसित भारत के संकल्प का बिगुल, कहा वी विल डू इट। एम्बिशन के लिए नहीं मिशन के लिए जीता हूं। श्री विनायक से लिया देश की समृद्धि का आशीष। मोदी की जन्मभूमि से कर्मभूमि तक सेवा संकल्प के कई कार्यक्रम वाराणसी में रहेंगे नितिन नवीन शाह और राजनाथ नंदी। 25 साल के बेमिसाल सफर की बधाई सीएम योगी और धामी की सेवा ज्योति यात्रा। दिल्ली के जनपद सागर रत्न में खड़गे के लंच में पहुंचे विपक्षी सांसद, राहुल ने इंडिया ब्लॉक के सांसदों को खाने पर बुलाया, आसपास कड़ी सुरक्षा। आकाशवाणी भवन में जबरन घुसने के मामले में FIR दर्ज। सीएम योगी की ओंकार, यूपी में राज्यसभा के चुनाव ने बता दिया 2027 के नतीजा, लड़ाई फिर 80-20 पर आई, 10 में सिर्फ 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट उतारने पर किया कटाक्ष। सकता है आपकी ईएमआई का बोझ। आरबीआई के रेपो रेट में 0.25% की बढ़ोतरी। होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन हो सकता है महंगा। नया रेपो रेट 5.5% हुआ।

अक्टूबर 7 अक्टूबर 2001 को जब मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, तब सोचा नहीं था कि कभी ये पड़ाव भी आएगा। आज मुझे हेड ऑफ द गवर्नमेंट के तौर पर निरंतर सेवा करते हुए

भी आएगा। आज मुझे हेड ऑफ द गवर्नमेंट के तौर पर निरंतर सेवा करते हुए 25 वर्ष पूरे हो गए हैं। मैं देश की जनता, आज मुझे हेड ऑफ द गवर्नमेंट के तौर पर निरंतर सेवा करते हुए 25 वर्ष पूरे हो गए हैं। मैं देश की जनता, साथियों, आज प्रातः मैं श्री विनायक मंदिर में दर्शन के लिए गया था। मैंने परमात्मा के सामने देश के लिए प्रार्थना की। 140 करोड़ भारतवासियों के लिए प्रार्थना की और अपने लिए भी प्रार्थना की। प्रार्थना ये कि परमात्मा मुझे इतनी शक्ति और सामर्थ्य दीजिए कि मैं अपने देश के लिए और अधिक ऊर्जा के साथ काम कर सकूं। देशवासियों की और अधिक सेवा कर सकूं, दिन रात सेवा कर सकूं। आज मैं जो कुछ हूं, जहां भी हूं, जिस दायित्व पर हूं, उसमें सबसे बड़ा योगदान जनता जनार्दन का ही है। कभी लगा ही नहीं कि मैं अकेला हूं। कोटि कोटि स्वयंसेवक जो भारत की सांस्कृतिक आत्मा के प्रहरी है, जिनके जीवन का एकमात्र ध्येय है मां भारती की निस्वार्थ सेवा, जो उस मंत्र को लेकर जीते हैं, हर पल कहते हैं हम सेवक हैं, हम सेवक हैं मानवता के, सेवा धर्म हमारा है, दिन दुखी की सेवा करना निश्चित कर्म हमारा है। आज का ये दिन सिर्फ यादों के लिए नहीं है, ये अपने संकल्पों को नई ऊर्जा से भरने का दिन है। ये दिन उस वादे को दोहराने का दिन है, उस इरादे को व्यक्त करने का दिन है जो कहता है हम करके रहेंगे, हम वी विल डू इट, वी विल डू इट, वी विल डू इट। साथियों, लाल किले से मैंने सबका प्रयास की बात की थी। भारत को नई बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए जो जोश, जो जज्बा चाहिए,

वो एक ही संदेश देता है, हम करके रहेंगे, हम वी विल डू इट। विकसित भारत विकसित भारत बाय 2047 वी विल डू इट। विकसित भारत बाय 2047 मेरे साथ बोलिए। टॉप थ्री इकोनॉमी आत्मनिर्भर भारत ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब ओलंपिक्स का आयोजन अंतरिक्ष में कदम। साथियों, ये ऊर्जा, ये उत्साह, ये आत्मविश्वास ये अद्भुत है।

सज्जनों, जिस राष्ट्र के लोगों की धमनियों में ऐसा आत्मविश्वास लहू बनकर दौड़ता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। साथियों, सरकार के मुखिया के तौर पर 25 वर्षों की यह निरंतर यात्रा, लोग इसे उपलब्धि मानते हैं, लेकिन मैं इसे कैसे देखता हूं, मेरे लिए ये व्यक्तिगत महिमा मंडन का विषय नहीं है। भारत की इकोनॉमी को लेकर दुनिया कहने लगी थी इट्स अ गॉन केस। तब ग्रोथ कहीं दिखती नहीं थी, महंगाई आसमान छू रही थी, घोर निराशा में डूबे देश को फिर एक नए विश्वास की जरूरत थी। साथियों, मैंने फिर वही काम किया जो मुझे आता था। कोटि कोटि भारतीयों की जनशक्ति का आह्वान किया, उनके सामने फिर दोहराया, वी विल डू इट। और आज 12 वर्ष बाद तस्वीर एकदम बदल गई है। तब एक संकट आता था तो भारत की इकोनॉमी हिल जाती थी। आज संकट आता है तो भारत के सामर्थ्य की चर्चा होती है, भारत के रिजिलियंस की चर्चा होती है। साथियों, तब पॉलिसी पैरालिसिस की चर्चा होती थी और आज रिफॉर्म्स एक्सप्रेस की चर्चा होती है। तब इंपोर्ट बढ़ाने के रास्ते खोजे जाते थे और आज एक्सपोर्ट के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। तब हम अपनी जरूरत के मोबाइल फोन भी इंपोर्ट करते थे और आज मेड इन इंडिया मोबाइल फोन का जलवा है। तब पूरे भारत में ब्लैकआउट ये ग्लोबल हेडलाइन बनती थी और आज भारत की सोलर पावर कैपेसिटी के चर्चे होते हैं। साथियों, बदलाव की इसी कहानी का एक और उदाहरण, शानदार उदाहरण खेती भी है। आजादी के बाद से लेकर अब तक खेती की विकास दर अगर किसी दशक में निरंतर सबसे अधिक रही, आजादी के इतने दशक बीत गए, अभी का जो दशक है, बीता 10 वर्ष है, वो सबसे अधिक रहा है। साल 2015 से 2025 तक का दशक, 2015 से 2025 तक का दशक इतने खेती की ग्रोथ के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। खेती के लिए जाने वाले बड़े देशों में भी इतनी तेज ग्रोथ नहीं रही है। ये तभी होता है जब नीयत साफ होती है और नीति स्पष्ट होती है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, विवेकानंद जी की वाणी है, एक दिन एक अद्भुत
गौरवशाली और महान भारत का उदय होगा, विवेकानंद जी कह के गए हैं। महर्षि अरबिंदो ने भी कहा था, भारत के भाग्य का सुरूर, भारत के भाग्य का सूरज जरूर उगेगा और उसकी रोशनी पूरे विश्व को आलोकित करेगी, श्री अरबिंदो ने कहा था। आज सवाल सिर्फ यह नहीं है कि 2047 में हमें कहां पहुंचना है, हमें आज ये तय करना है कि उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अभी से क्या करना है। और इसलिए आज देश हर वो कदम उठा रहा है जो विकसित भारत के लिए, आधुनिक भारत के लिए आवश्यक है। भारत के युवा स्टार्टअप से लेकर स्पोर्ट्स के मैदान तक छाए रहे हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट में भारत की दुनिया में पहचान बने, किसी हिंदुस्तानी के पैर चंद्रमा पर पड़े, भारत जेनेटिक जैसी फील्ड में लीडर बने, भारत क्वांटम कंप्यूटिंग में सबसे आगे खड़ा हो, हम एआई की फील्ड में ग्लोबल हब बने, हमारी यूनिवर्सिटी दुनिया की टॉप रैंकिंग में गिनी जाए, मेड इन इंडिया उत्पादों का गौरव दुनिया भारत का सामान खरीदने के लिए लालायित हो, दुनिया की डाइनिंग टेबल पर हमारे किसानों के उत्पाद हो, जब क्लाइमेट चेंज की बात हो, जब वाटर गवर्नेंस की बात हो, गरीबों को एम्पावर करने की बात हो, तो दुनिया भारत के सॉल्यूशंस को अपनाए। आने वाले वर्षों में हमारी सामूहिक ऊर्जा, हमारी सामूहिक फोकस इसी दिशा में होना चाहिए। साथियों, भारत 140 करोड़ सपनों का भारत है, भारत असीमित ऊर्जा का, अनगिनत इन आकांक्षाओं का राष्ट्र है, सामर्थ्य की कोई कमी नहीं है, हमें बस हर कदम हर प्रयास को जोड़ना है, हमें एक ध्येय एक मकसद से जुटना है। हमें आजादी मिली क्योंकि हमारे देश के लोगों ने जान दी। अब जब

0: विकसित भारत बनाना है तो हमें देश के लिए जीना होगा। किसके लिए जीना होगा? किसके लिए जीना होगा? किसके लिए जीना होगा? हम बढ़ेंगे तो, हम सीखेंगे तो, हमारे संकल्प होंगे, हमारा परिश्रम होगा, हमारी शक्ति होगी, हमारी भक्ति होगी, हम इनोवेट करेंगे, हम रिसर्च करेंगे, हम क्रिएट करेंगे, हमारा प्रण होगा, हम जिएंगे। साथियों, जब हम ये भावना लेकर चलेंगे तो कोई लक्ष्य असंभव नहीं रह जाएगा। हमें आज से शपथ लेकर आगे बढ़ना है कि राष्ट्र प्रथम मेरा संकल्प होगा, राष्ट्र समृद्धि मेरा प्राण रहेगा, राष्ट्र की सेवा मेरा लक्ष्य रहेगा और नागरिक देवो भव का मंत्र मेरी राष्ट्र आराधना साधना का आधार रहेगा। कर्म मेरा धर्म रहेगा, कर्तव्य पालन मेरा प्रण होएगा। स्वयं से समष्टि तक, स्वयं से व्यम तक मेरे जीवन का कण कण क्षण क्षण भारत भूमि को समर्पित रहेगा। और जब तक भारत विकसित नहीं होता, जब तक भारत विकसित नहीं होता, तब तक मैं न रुकूंगा, न थकूंगा, न अपने पद से डिगूंगा।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: आ गया सोमवार और आ गए
4: चकमक चाचा।
3: एक कचौड़ी दो समोसा चकमक तेरा क्या भरोसा।
5: चकमक चाचा से सीधे चकमक है।
3: अरे नारा है, दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है, महिला लोग एकदम नारा लगाए जा रही, गूंज रहा ना।
5: लेकिन भैया नारे अरे फालतू में सब बेकार, एकदम बेकार। नारे होते थे हमारे टाइम।
3: अच्छा
5: सुनाए, जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, जेपी भाई छूटेंगे।
3: अच्छा तो हमारे टाइम वाले सुनिए, दो कुलचा एक बिरयानी इन नेताओं की खत्म कहानी।
5: अरे जमीन की चकबंदी में, जमीन की चकबंदी में क्या फाइनेंस बंदी में।
3: ठंडी चाय गरम करो चकमक चाचा, शर्म करो।
5: अरे राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर।
3: अरे लाठी गोली खाएंगे, इस्तीफा लेके जाएंगे।
5: अरे सुनो, इस दीपक में तेल नहीं, सरकार चलाना खेल नहीं।
3: अरे लाल फूल नीला फूल जंजी नन्हे ब्यूटीफुल।
5: अरे बारी बारी सबकी बारी, अब की बारी अटल बिहारी।
3: चाय गरम दूध गरम चकमक चाचा भी शर्म
5: है।
3: हाँ,
5: जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है।
3: अरे मेरे सिर में दर्द है जिसका कारण मर्द है आप जैसा।
6: हम जैसे, इधर आओ।
7: हम जैसे मर्द नहीं होते किसी नारे से ऑफेंड, हम तो भैया करते हैं हर सही मुद्दे को डिफेंड।
8: हम पूछना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी से, आप 13 करोड़ बोलते हैं तो आप 2.8 करोड़ मृतक, 1 करोड़ डुप्लीकेट वोटरों को और 6.8 करोड़ शिफ्टेड। चलिए उसमें शिफ्टेड वालों में लोग ये तय कर सकते हैं कि वो किस जगह वोट रखना चाहेंगे, मगर मैं पूछना चाहता हूं ये 2.8 करोड़ डेड और 1 करोड़ डुप्लीकेट, ये भारत की इकोनॉमी को डेड बचाने वाले लोग ये डेड और डुप्लीकेट वोटरों को मताधिकार के साथ कैसे जोड़ रहे हैं? कांग्रेस से स्पष्ट हम पूछना चाहते हैं, वो इस बात का जवाब दे। कांग्रेस पार्टी जो आंतरिक रूप से एक राजतंत्र है, जिसने लोकतंत्र का लबादा ओढ़ा हुआ है, वो वास्तविक लोकतंत्र को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है।

0: इसलिए वह लोकतंत्र के हर स्तंभ के ऊपर पिछले 12 सालों में निराधार, निरर्थक, अनर्गल आरोप लगा रहे हैं।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: 2 अक्टूबर से लेकर 5 अक्टूबर तक 4 दिन तक ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सीजेपी, आयसा, आप और उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे के विरोध प्रदर्शन के बाद अब बारी इंडिया गठबंधन की आती है, क्योंकि सब कुछ 30 सितंबर की इंडिया गठबंधन की नई दिल्ली की बैठक में तय हो चुका था। ऐसे में विपक्ष के 19 दलों के सांसद ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हल्ला बोलने सड़क पर उतरते हैं। राहुल गांधी के मुताबिक विपक्ष के लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर 300 सांसद एक साथ इकट्ठा होते हैं और पोस्टरों, बैनरों के साथ निकल पड़ते हैं। राहुल जेन जी के कनेक्ट के लिए प्रदर्शन में ज्ञानेश इट्स डन ब्रो का पोस्टर लेकर पहुंचे थे। उनका मकसद इस वर्ग को सीधा मैसेज देना था, देश में आज हर चौथा वोटर जेन जी से है। तो अखिलेश यादव के हाथों में मुचुआ का पोस्टर रहता है। मुचुआ का मतलब अखिलेश यादव मुख्य चुनाव आयुक्त बताते हैं। इंडिया गठबंधन के सांसद संसद से चुनाव आयोग के हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन नीति आयोग के दफ्तर के पास इस मार्च को बैरिकेडिंग करके रोक दिया जाता है। ऐसे में राहुल गांधी हाथ में तिरंगा लेकर बैरिकेडिंग पर चढ़ जाते हैं और बैरिकेडिंग को फांदने की कोशिश करते हैं। अब विपक्ष के सभी सांसद नीति आयोग के दफ्तर के पास ही धरने पर बैठ जाते हैं। पहले तो पुलिस ने विपक्षी सांसदों को बैरिकेडिंग से रोका और जब इससे भी नहीं रुके तो उन्हें हिरासत में लेना शुरू कर देती है और बस में भरकर ले जाती है। बस के अंदर अखिलेश यादव दिल्ली पुलिस पर तंज मारते हुए कहते हैं कि पुलिस उन्हें ज्ञानेश कुमार से मिलवाने के लिए चुनाव आयोग ले जा रही है।
1: चुनाव आयोग ले जा रही पुलिस, नहीं उन्हीं से मिलाने ले जा रही हम लोगों को, सीसी से मिलाने ले जा रही है। बीजेपी ने अब कह दिया कि बस जा सकती है चुनाव आयोग।
0: अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव और अभिषेक बनर्जी समेत विपक्ष के कई सांसदों को दिल्ली पुलिस हिरासत में ले लेती है, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पुलिस को गच्चा देकर आकाशवाणी के दफ्तर के परिसर में घुस जाते हैं और वहीं से धरना देना शुरू कर देते हैं। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।

पूछताछ में आतंकी पायलट का बड़ा खुलासा। इंतकाम की आग में पायलट से बना आतंकी। गाजा का बदला लेने के लिए रची थी साजिश। इसराइलियों को बेमौत मारने की तैयारी थी। तेल अवीव में विमान को क्रैश करवाना था। आतंकी पायलट का सनसनीखेज कबूल।

नामा। ओमानी नागरिक हमाम अल हमामी ने पूछताछ के दौरान जांच एजेंसियों के सामने कई बड़े राज उगले हैं। पूछताछ के दौरान हमामी ने आतंकी साजिश की प्लानिंग से लेकर आत्मघाती हमले के पीछे मकसद का खुलासा किया है। पूछताछ के दौरान हमामी ने कबूल किया है कि फ्लाई दुबई एयरलाइन से जुड़ने से पहले ही आत्मघाती हमले की स्क्रिप्ट लिख चुका था। प्लान को अंजाम देने के लिए ही फ्लाई दुबई से जुड़ा, क्योंकि उसे पता था कि फ्लाई दुबई एयरलाइन से जुड़ने के बाद वो आसानी से 9/11 जैसे आतंकी हमले को अंजाम दे सकता है। मतलब यही है कि हमामी आत्मघाती हमले की पूरी तैयारी कर चुका था। शुरुआती जांच में पता चला है कि हमामी ने कई मुल्कों का दौरा किया था, जिसमें अहम है सीरिया का दौरा। जांच एजेंसियों को शक है कि सीरिया में ही हमामी किसी आतंकी संगठन के संपर्क में आया या फिर किसी आतंकी संगठन की विचारधारा से जुड़ गया। मोसाद के हवाले से इजरायली मीडिया में छपी रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया है। हमें पता चला है कि हाल के सालों में उस आतंकवादी ने इसराइल के विरोधी देशों, जिनमें से कुछ दुश्मन देश भी थे, उनका दौरा किया था। ये दौरे कम समय के लिए थे। हम इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या उन दौरों के दौरान किसी व्यक्ति या संगठन ने उसे सक्रिय किया या भर्ती किया था। टाइम्स ऑफ इसराइल की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सुरक्षा एजेंसी शिन बेट के एजेंट अल हमामी से पूछताछ में शामिल हैं। इजरायली अफसरों ने सवाल जवाब के लिए यूएई की यात्रा की थी। इसके पहले जानकारी मिली थी कि हमामी की कट्टरपंथी सोच के चलते एक बार उड़ान भरने से रोक दिया गया था। ये भी जांच का विषय है कि जब उसे ओमान की नेशनल एयरलाइंस से उड़ान भरने से रोका गया था, तो दुबई की एयरलाइंस में उसे मंजूरी कैसे मिली। बड़ी बात यह है कि अल हमामी ने 7 सालों तक ओमान एयर में काम किया और बीते साल फरवरी में नौकरी छोड़ दी। इसके बाद जून 2025 में मोरक्को की नेशनल एयरलाइंस से जुड़ा, लेकिन सिर्फ 3 महीने तक नौकरी की। इसके बाद फ्लाई दुबई एयरलाइंस में बतौर को पायलट नौकरी करने लगा। हमामी की माने तो इसराइल और गाजा के बीच चल रहे संघर्ष का बदला लेने के लिए उसने आतंकी हमले की साजिश रची थी। ऐसे में इजरायली जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या पायलट ने अकेले ही साजिश रची थी या फिर उसे किसी आतंकी संगठन ने इजरायली नागरिकों को मारने के लिए भेजा था। अभी तक इसराइल की तरफ से किसी मुल्क या आतंकी संगठन का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति का आरोप यही है कि साजिश में ईरान का हाथ है।

सीएम सीपीएम तक जनसेवा के 25 साल पर मोदी ने फूंका विकसित भारत के संकल्प का बिगुल, कहा वी विल डू इट, एम्बिशन के लिए नहीं मिशन के लिए जीता हूं, श्री विनायक से लिया देश की समृद्धि का आशीष। मोदी की जन्मभूमि से कर्मभूमि तक सेवा संकल्प के कई कार्यक्रम वाराणसी में रहेंगे। नितिन नवीन शाह और राजनाथ ने 25 साल के बेमिसाल सफर पर दी बधाई। सीएम योगी और धामी ने सेवा ज्योति यात्रा की। दिल्ली के जनपद सागर रत्ना में खड़गे के लंच में पहुंचे विपक्षी सांसद, राहुल के इंडिया ब्लॉक के सांसदों को उन्होंने खामने पर बुलाया, आसपास कड़ी सुरक्षा। आकाशवाणी भवन में जबरन घुसने के मामले में FIR। सीएम योगी की हुंकार, यूपी में राज्यसभा के चुनावों ने बता दिया 2027 का नतीजा, लड़ाई फिर भी 80-20 पर आई, 10 में से सिर्फ 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट उतारने पर कटाक्ष। दूसरी बार टली 72वीं बीपीएससी की प्री परीक्षा, बिहार लोक सेवा आयोग ने स्थगित किया 25 अक्टूबर को होने वाला इम्तिहान, जुलाई से अब तक 2 बार रोका जा चुका एग्जाम।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। 13 साल बतौर गुजरात के मुख्यमंत्री और 11 साल देश के प्रधानमंत्री, उनकी कामयाबियां, उनकी चुनौतियां, सफर कैसा रहा? एक ऐसी शख्सियत जो देश के गृहमंत्री भी हैं और इसी के साथ साथ शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूरे सफर को सबसे करीब से उन्होंने देखा है। हमेशा कहा जाता था कि प्रधानमंत्री कुछ कहते हैं तो फिर रास्ता अमित शाह जी निकालेंगे। बहुत बहुत स्वागत।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार। मेरा पहला प्रश्न आपसे यही है सर, क्योंकि ये इंटरव्यू जरा हटके है। अक्सर हम लोग बहुत जटिल और सख्त मुद्दों पर आपसे चर्चा करते हैं, आप भी उसी आक्रामक अंदाज में जवाब देते हैं, लेकिन आज चर्चा प्रधानमंत्री के सफर को लेकर है और शायद इतिहास के पन्नों में आपकी कही हुई बातें जो आज आप बताएंगे वो जाएगा। इसीलिए पहला प्रश्न यही है, पहली बार आप प्रधानमंत्री से कब मिले थे और क्या आजकल जेंजी भाषा यूज करती है सर, BFF, ये बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर, ये कैसे आप लोग हुए?
1: देखिए, सवाल में काफी सारी चीजें आपने अपने तरीके से जोड़ी है, इसको मैं एक्नॉलेज नहीं करता। मैं पहली बार लगभग 80 के दशक में मिला था मोदी जी, उस वक्त 80 की शुरुआत में, 80 के दशक की। उस वक्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम करते थे और एक संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी, उनका एक कार्यक्रम था अहमदाबाद के कॉलेजियन युवाओं से बातचीत करने का, तो उसकी तैयारी करने के लिए मैं जहाँ रहता था वो वार्ड में आए थे, नानपुरा वार्ड में आए थे, बहुत कम युवा थे और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने RSS का काम, RSS के बारे में, वो उद्देश्यों की पूर्ति से देश को किस प्रकार से बदला जा सकता है, ये सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से बताई थी और अंत में बताया कि अगर RSS को जानना है तो इनको सुनना चाहिए, तो आप लोग जितने हो सके उतने युवाओं को लेकर ये कार्यक्रम में आई। उस वक्त मैं RSS का स्वयंसेवक बन चुका था, परंतु पहली बार संघ के माध्यम से देश का युवा क्या कर सकता है वो उन्होंने बहुत अच्छे सटीक तरीके से बहुत कम समय में समझाया था। और मुझे याद है कि मेरे साथ जितने भी युवा थे वो सभी लोग इस कार्यक्रम को सफल करने में लगे थे और बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ।
0: क्या सार था या कुछ ऐसी लाइन आपको याद हो उसमें से?
1: लाइन छोड़ दीजिए, मगर उन्होंने संघ के सिद्धांतों का एक समृद्ध, शक्तिशाली और संस्कारित राष्ट्र बनाने में कितना बड़ा योगदान हो सकता है वो जरूर समझाया था।
0: बीजेपी से पहले कौन जुड़ा सर, आप जुड़े या प्रधानमंत्री?
1: मैं जुड़ा था।
0: आप पहले जुड़े थे बीजेपी से, पर ये लगभग कब तय हुआ अगर आप मुड़ के देखते हैं कि आप लोग दोनों मतलब साथ ही काम करेंगे, मतलब इस तरह का एक रिश्ता बना?
1: हम दोनों भाजपा में काम करें, जैसे करोड़ों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं उन मोदी जी के साथ है, सब उनके साथ ही है और अब उनके काम के कारण करोड़ों लोग मोदी जी के साथ है, न केवल देश, दुनिया भर में करोड़ों लोग उनके साथ जुड़े हैं जो देश की समस्याओं के लिए, दुनिया की समस्याओं के लिए मोदी जी से निराकरण की अपेक्षा रखते हैं। ये एक व्यक्ति है जो डिलीवर कर सकता है।
0: लेकिन आप PM बने, वो मई में 26 मई को उन्होंने शपथ ली और उसके बाद ये तय हुआ और राजनाथ जी ने बीजेपी दफ्तर में, मुझे आज भी वो तस्वीरें हम दर्शकों को दिखाएंगे, आपके नाम का ऐलान किया कि हमारे पार्टी अध्यक्ष अमित शाह होंगे। PM भी थे एक तरफ, सुषमा जी थी, तमाम नेता थे, वो भरोसा कि आप दोनों का जो की जो एक केमिस्ट्री या काम करने का तरीका मिलता था, वो भरोसे की वजह क्या?
1: नहीं, देखिए, पार्टी अध्यक्ष तय करने में प्रधानमंत्री का रोल बहुत अहम होता है, परंतु अकेले प्रधानमंत्री का नहीं होता है, पार्टी का होता है और मेरे अलावा कोई भी कार्यकर्ता बन सकता था, बाद में नड्डा जी बन गए, तो आप इस चीजों को इस तरह से मत जोड़िए।
0: दुनिया ऐसे ही देखती है कि भाई दोनों मिल के काम करते हैं, बड़े बड़े फैसले, और जब 303 सीट आ गया,
1: अगर दुनिया हमारे ही नजरिए को देखती है तो हम कोई चुनाव हारते ही नहीं। दुनिया का नजरिया मैं नहीं गढ़ सकता, मैं आपको वास्तविकता बता रहा हूं।
0: प्रधानमंत्री के साथ आपने जो भी काम किया, आपको उनमें उस दौरान की मैं बात कर रही हूं जब गुजरात से आप लोग दिल्ली आए और आपने उनको शुरू से

0: क्या फर्क था? क्या कुछ उन्होंने अपने तरीके को बदला, रणनीति बदली?
1: देखिए, गुजरात में भी नरेंद्र मोदी जी के लिए राष्ट्र प्रथम था, यहां पर भी राष्ट्र प्रथम है। हाँ, एक बात जरूर है कि गुजरात से यहां आने में समस्याओं का फलक बदला है, समस्याएं बदली हैं जिसको उन्होंने एड्रेस करना है। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने वहां पर भी, उस वक्त गुजरात में गांव में 8 घंटा ही बिजली आती थी, 12 घंटा ही बिजली आती थी, 12 घंटा नहीं आती थी, लोग अंधेरे में जीते थे। देश में सबसे पहले 24 घंटा बिजली मिलने वाला राज्य गुजरात था, जो नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री रहते बना। हमारे यहाँ बच्चियों को माँ के गर्भ में ही मार देते थे। पहली बार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की यात्रा निकली और बच्चियों की शिक्षा और बच्चियों के अस्तित्व पर किसी एक नेता ने संवेदनशीलता के साथ जनता को जोड़ा। और ऐसे समाज थे, जहां कुछ समाज ऐसे थे जहां बच्चियां ज्यादा कम होती थी, वो समाजों के बीच में जाकर सबको समझाने का काम उन्होंने किया। बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत कम लोग ऐसा सोच सकते हैं। गुजरात में बड़ा ट्राइबल इलाका है, तो उन्होंने वन बंधु कल्याण योजना चालू करी और उसमें ट्राइबल व्यक्ति, ट्राइबल गांव, ट्राइबल क्षेत्र, इस सब के लिए, तीनों के लिए, गांव के लिए, व्यक्ति के लिए और क्षेत्र के लिए डेवलपमेंट के काम ढूंढे। और आज ट्राइबल क्षेत्र गुजरात का सभी ट्राइबल क्षेत्रों में सबसे डेवलप्ड क्षेत्र है। हमारे यहाँ बहुत सारा बड़ा सागर किनारा भी है, वहां भी डेवलपमेंट नहीं पहुंचा था, तो सागर खेड़ू विकास योजना लेकर आए और आज गुजरात का सागर किनारा पूरा उद्योगों से लचा हुआ है, लदा हुआ है। तो उस वक्त भी वो सर्वस्पर्शीय, सर्वसमावेशी विकास के लिए काम करते थे, यहां पर भी किया। जैसे यहां है तो 11 साल के कम समय के अंदर देश के 60 करोड़ गरीबों को घर, बिजली, शौचालय, गैस, शुद्ध पीने का पानी, 5 किलो अनाज हर व्यक्ति को प्रति माह और 5 लाख तक का दवाइयों की और हॉस्पिटल की सुविधाएं दे दी, जिसके लिए 60 करोड़ लोग लगभग लगभग 7 दशक से राह देखते थे। एक ही दशक में सारी समस्याओं को निर्मूल कर देश के 3 बड़े हॉटस्पॉट थे, कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट और वामपंथी उग्रवाद, ये 10 साल के अंदर तीनों हॉटस्पॉट में हिंसा में 75% की कमी आई। और वामपंथी उग्रवाद तो 31/3/26 को समाप्त हो गए। देश की सुरक्षा, टेररिज्म को कोर से, टेररिज्म के खिलाफ टफ स्टैंड रखना, ये बहुत कम लोग कर सकते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर इसका उदाहरण है। 14वें नंबर की इकोनॉमी आज चौथे नंबर पर पहुंच गई और देखते देखते हम तीसरे नंबर पर पहुंच जाएंगे। ये जो परिवर्तन है वो वहां पर भी हुए थे, यहां पर भी हुए थे, यहां आकर साइज और स्केल बदल गया।
0: तो गुजरात की बात मुझे लगता है अधूरी रह जाएगी, क्योंकि जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा होती है 2001 का 26 जनवरी का वो भूकंप, वो शायद सबसे बड़ा इम्तिहान था। और वहां से, क्योंकि उसके बाद फिर वो सीएम भी बने नरेंद्र मोदी जी, लेकिन भूकंप के दौरान का अनुभव क्या था?
1: देखिए, मोदी जी देश में ऐसे पहले मुख्यमंत्री है और अब प्रधानमंत्री है, जो पहली बार सीएम का शपथ हुआ तब पंच सरपंच का भी चुनाव नहीं लड़े थे। मोदी जी अपने जीवन में एक भी चुनाव नहीं लड़े, एमएलए भी नहीं थे और सीधा मुख्यमंत्री बने। तो वो व्यक्ति जो कभी एक चुनाव नहीं लड़ा है, कभी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर सर नहीं खपाया है, इसको गुजरात जैसा समृद्ध राज्य चलाना बहुत बड़ी चैलेंज थी। और मुझे बरोबर याद है, मोदी जी नवरात्रि के आसपास मुख्यमंत्री बने, नवरात्रि के पहले या दूसरे दिन ही बने। और दीपावली में, दीपावली के पहले उन्होंने पूरी योजना बना दी, भूकंप के क्षतिग्रस्त विस्तार सबको बूझे याद है, अगर अहमदाबाद तक भूकंप था, लगभग 18 जिले भूकंप से क्षतिग्रस्त जिले थे गुजरात के, मोदी जी जब संगठन का काम दिल्ली से करते थे तब भी बुझ जाते थे। उन्होंने वहां सारे मंत्री, सारे एमएलए, सारे एमपी, सारे सचिव और मुख्यमंत्री स्वयं दीपावली भूकंप ग्रस्त एक एक तहसील में बिताने का तय किया। फिर एक मंत्री और एक सचिव को, एक विधायक और एक सचिव को एक तहसील की जिम्मेदारी दी कि भाई इसको आप 26 जनवरी के पहले क्लियर करें। अब सितंबर में तय किया और 26 जनवरी के पहले इतनी बड़ी समस्या का समाधान करना, सारे सचिव गए तब उनको मालूम पड़ा, फिर उन्होंने रिव्यू किया तो सचिवों ने ही बताया कि हमारा ये सर्कुलर गलत है, ये सर्कुलर में इसके कारण नीचे तक पहुंचता नहीं है। तो मोदी जी ने कहा भाई आपने ही बनाया है, सुधार लो इसको। तो सारी समस्या का जो समाधान था 15 दिन के अंदर ही हो गया और 26 जनवरी को पूरे देश के मुंह से निकला था कि गुजरात भूकंप से उभर चुका है। खैर पुनर्वसन का काम 2-3 साल तक चला, परंतु मलबे के ढग थे, बड़े बड़े कई प्रकार के ऐसे दृश्य थे, वो सारा साफ सूफ होकर नीतियां स्पष्ट हो चुकी थी, पुनर्निर्माण शुरू हो चुका था, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट शुरू हो चुका था, ये पूरा परिवर्तन इतने कम समय के अंदर।
0: मोदी सरकार के 11 साल में आपकी नजर में और करीब से चुकी आप काम कर रहे थे, सबसे चैलेंजिंग टाइम कब आया और कैसे उसको फेस किया?
1: मुझे लगता है कोविड प्रबंधन
0: वो सबसे
1: चैलेंजिंग समस्या थी। उस वक्त देश भर के, दुनिया भर के पंडितों को लगता था कि भारत जैसा देश

0: वो सबसे चैलेंजिंग समस्या थी। उस वक्त देश भर के, दुनिया भर के पंडितों को लगता था कि भारत जैसा देश कोविड का मुकाबला कैसे करेगा, क्योंकि हम सब जानते थे उस वक्त हमारी स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर अभी इतना अच्छा नहीं हुआ था। कोविड के बाद में मोदी जी ने कॉन्सेंट्रेट करके उसमें आमूलचूल परिवर्तन करा है, परंतु स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा इतना अच्छा नहीं था, सब लोग ऐसा मानते थे। मगर कोविड होने के बाद, सब समाप्त होने के बाद, सब कहने पर सबसे अच्छा प्रबंधन भारत ने किया है। और इसकी मेन बात यह है, नेतृत्व की क्वालिटी। दुनिया भर में कोविड प्रबंधन, कोविड के खिलाफ की लड़ाई सिर्फ सरकारें लड़ी। यहां केंद्र सरकार, राज्य सरकार, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जिला पंचायत और 140 करोड़ नागरिक साथ में मिलकर ये लड़ाई लड़े और इसी के कारण सफल हुए। मुझे ठीक याद है, उन्होंने कहा था जनता कर्फ्यू कर दो, सब लोग मजाक करते थे, और जनता कर्फ्यू हुआ था। 130 करोड़ की आबादी रोड पर नहीं निकली थी एक दिन, कोई सर्कुलर नहीं था, कोई लॉकडाउन नहीं था, मगर वो मन बनाकर लॉकडाउन किया। फिर दिया जलाने से कोविड चला जाएगा, सारे वामपंथी भाई हम पर टूट पड़े थे, घंटी बजाने से कोविड चला जाएगा। उनको मालूम नहीं था कोविड के खिलाफ लड़ने की एक प्रकार से जनता का मन बनाने की एक कवायद है, जो जनता के बीच में रहते हैं, संगठन के शास्त्र को समझते हैं, वो ही समझते हैं कि लड़ाई के अंदर सबको इन्वॉल्व करना पड़ता है, अकेले नहीं लड़ सकते। और मोदी जी ने बहुत अच्छे तरीके से ये किया। एक बार उन्होंने सारे डॉक्टर, सारे सीएपीएफ के लोग, सारे पुलिस के जवान जो ड्यूटी करते करते मरे थे, उनके सम्मान में भी कार्यक्रम किया, और देश भर की जनता ने इसको किया। तो एक प्रकार से बहुत बड़ी उपलब्धि थी। सबसे पहले रस्सी बनाने के लिए, मतलब अपना वैक्सीन बनाने के लिए कमिटी गठित कर दी, रिसर्च करने वालों को लगाया। भारत सबसे पहले रस्सी बनाने वाले दो तीन देशों में एक था।
1: कभी किसी बिंदु पर ऐसा हुआ कि पीएम की कुछ और सोच थी और आपकी कुछ और सोच थी, ऐसा कभी कोई अनुभव हुआ?
0: ऐसा तो कई बार होता है, कई साथियों की सोच अलग होती, कई बार पीएम इसको मान लेते हैं तो फिर ये पीएम का फैसला होता है। टीम में जो चर्चा होता है, उस वक्त नरेंद्र मोदी जी कभी किसी फैसले को प्रभावित नहीं करते। जो फैसला होता है वो सभी का फैसला होता है, और वो मोदी का फैसला होता है। मैंने नरेंद्र मोदी से अच्छा लिसनर आज तक नहीं देखा है।
1: आपने इतने दिन उनके साथ काम किया, आपको क्या रीड आपने किया? प्रधानमंत्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है?
0: सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक ऐसा प्रधानमंत्री है जिसका कोई नहीं है। ये नरेंद्र मोदी जी का है ऐसा कोई कह नहीं सकता, पर एक ऐसा प्रधानमंत्री है, 130 करोड़ लोग उसके हैं। ना आप इसके परिवार को जानोगे, ना किसी को जानोगे। हमेशा उन्होंने पूरे देश की जनता के लिए काम किया, संघ और भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों के लिए।
1: आप दोनों ही सफलता के चरम पर हैं, कोई फॉर्मूला होता है क्या?
0: मैंने कम से कम इतना सीखा है कि पार्टी कहे वो करते जाओ, बस
1: जो पार्टी कहे वो करते
0: वो
1: जाओ,
0: करते जाओ, तो
1: तो
0: अपने
1: आप
0: आप
1: ही लोग
0: रास्ता।
1: पार्टी हैं।
0: नहीं, ऐसा नहीं होता है, ये आपकी व्याख्या है। पार्टी बहुत बड़ी होती है, 11 करोड़ सदस्य है, और कई ऐसे लोग हैं जीवन जिन्होंने कुछ नहीं मांगा जीवन में और हमसे भी लंबे समय से काम कर रहे हैं।
1: कोई जो टॉप ऑफ द माइंड आपके बात आती है, जो आप चलते चलते बोलना चाहें
0: नहीं,
1: उनके
0: मैं तो
1: बारे
0: इतना ही
1: में?
0: कहना चाहता हूं कि ये 11 साल जब भी देश का इतिहास लिखा जाएगा, उपलब्धियों की दृष्टि से सबसे स्वर्णिम काल के रूप में मोदी जी की क्रिटिक एनालिसिस करने वालों ने भी नोट करना पड़ेगा। चाहे आर्थिक सुधार की बात हो, अर्थतंत्र की उपलब्धियों की बात हो, देश का सुरक्षा का क्षेत्र हो, चाहे विदेश नीति में रीढ़ की हड्डी डालने की बात हो, शिक्षा नीति नई बनाने की बात हो, तीन नए अपराधी जगत के, अपराधी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के कानून बनाने के, ढेर सारे लोगों में। और सबसे बड़ी उपलब्धि है, उन्होंने 2047 के लिए 140 करोड़ लोगों को महान भारत बनाने के संकल्प के साथ जोड़ दिया है। तो ये कारवा चलता ही रहेगा, जब 140

0: करोड़ लोग महान भारत के लिए मेहनत करेंगे, संकल्प बदलेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, तो मुझे तो पक्का भरोसा है 47 तक दूर भी नहीं जाना पड़ेगा, इसके पहले महान भारत की रचना हो जाएगी।
1: गृहमंत्री अमित शाह जी, आप आज तक पर आए और प्रधानमंत्री के बारे में आपने अपने अनुभव और किस तरह से आप दोनों काम करते रहे और क्या आप सोचते हैं या उनकी क्या चैलेंजेस है, इन सब पर आज तक से बातचीत की। उम्मीद है कि जल्दी ही एक अच्छा पॉलिटिकल इंटरव्यू भी आपके साथ करेंगे, लेकिन फिलहाल इस बातचीत में आपका बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से, इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर, सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
5: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
6: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
7: सोच बदलो और बैंक भी।
8: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार। सर एक बार दो ठुमका लगाने बस।
9: मेरे पास एक आइडिया है।
8: क्या?
9: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा TMT बार से जो बना है।
10: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है दुनिया हिला, पर स्टेज नहीं हिलता,
11: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा TMT से बना है।
12: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही TMT बार से बना है।
13: कौन सी बनानी है?
14: सर गैसो फास्ट की ग्रोथ तो चेक कीजिए। गैसो फास्ट 27%, इनो 9.2%।
15: गड़बड़ है।
16: आहा, गैसो फास्ट वाले जीरे का जादू चला रहे, इसीलिए इनके चाहने वाले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। गैसो फास्ट, इंडिया की एसिडिटी का असली इंडियन सॉल्यूशन।
17: Love and Care, the world's finest range of rubber pet toys.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
3: जीके मैक्स।
4: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
3: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
5: जेके वॉल मैक्स।
3: बेस्ट पेंट
6: जेके मैक्स।
3: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
7: माँ के पैरों की धूल माथे पर ले, मैं परिंदा खुले आसमान जहाँ जीत रू सारा।
8: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
9: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
8: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।
10: इन एसोसिएशन विद
11: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
10: विमल बोलो जुबां केसरी। हिंट, एक हिंट तो देते।
12: पंजाब की सियासत का सबसे बड़ा मंच मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ हर सवाल पर होगी खुलकर बात। देखिए पंचायत आज तक पंजाब 8 अक्टूबर दिन भर सिर्फ आज तक पर।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: EU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: और वही कहाँ गए थे घूमने?
4: जीके मैक्स।
5: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
4: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
6: जेके वॉल मैक्स।
7: बेस्ट पेंट
8: जेके मैक्स।
9: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ
10: जेके मैक्स पेंट्स।
9: जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
11: इन एसोसिएशन विद
12: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
11: विमल बोलो जुबा केसरी, हिंट एक हिंट तो देते।
13: साथियों, वेद से विवेकानंद तक जिस राष्ट्र ने महान विचारों का अनवरत अनुष्ठान किया है, जिस राष्ट्र का सांस्कृतिक अनुभव हजारों वर्षों का है, जिस राष्ट्र ने मनुष्य को मानवता का भरोसा दिलाया है, उस राष्ट्र की सेवा करते हुए मुझे कभी भी एकाकी महसूस नहीं हुआ। कभी लगा ही नहीं कि मैं अकेला हूं। कोटि कोटि स्वयंसेवक जो भारत की सांस्कृतिक आत्मा के प्रहरी है, जिनके जीवन का एकमात्र ध्येय है मां भारती की निस्वार्थ सेवा, जो उस मंत्र को लेकर जीते हैं, हर पल कहते हैं हम सेवक हैं, हम सेवक हैं मानवता के, सेवा धर्म हमारा है, दिन दुखी की सेवा करना निश्चित कर्म हमारा है। ऐसे कोटि कोटि स्वयंसेवकों का, कार्यकर्ताओं का भी मुझे भरपूर साथ मिला है। मैं आज अपनी यात्रा के इस पड़ाव पर प्रत्येक स्वयं सेवक को, प्रत्येक साथी कार्यकर्ता को भी आदरपूर्वक नमन करता हूं।

सीएम से पीएम तक जनसेवा के 25 साल मोदी ने फूका विकसित भारत का बिगुल, बोले हम करके रहेंगे, एम्बिशन नहीं मिशन के लिए जीता हूं। जन्मभूमि से कर्मभूमि तक मोदी के 25 साल पर जुटे दिग्गज, अमित शाह राजनाथ ने दी बधाई, वाराणसी में नितिन नवीन मौजूद, योगी धामी की सेवा ज्योति यात्रा। दिल्ली के जनपद सागर रत्न में खड़गे के लंच के बाद निकले विपक्षी सांसद, राहुल बोले जंतर मंतर पर शुरू करेंगे प्रदर्शन, आकाशवाणी भवन में जबरन घुसने के मामले में FIR। सीएम योगी की हुंकार, यूपी में राज्यसभा के चुनाव ने बता दिया 2027 का नतीजा, लड़ाई फिर 80-20 पर आई, 10 में सिर्फ 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट उतारने पर किया कटाक्ष। दूसरी बार टली 72वीं BPSC की प्री परीक्षा, बिहार लोक सेवा आयोग ने स्थगित किया 25 अक्टूबर को होने वाला इम्तिहान, जुलाई से अब तक 2 बार रोका जा चुका है एग्जाम।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ वांशु दक्षित और शुरुआत एक बड़ी खबर से करेंगे। इंडिया गठबंधन के लंच के बाद राहुल गांधी ने फिर से सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष के सांसद अब जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। इंडिया गठबंधन के लंच के बाद राहुल गांधी की तरफ से बयान दिया गया और उन्होंने कहा कि मैं FIR से नहीं डरता हूं, आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे।
1: राहुल जी, बस एक सवाल आपसे, कल जिस तरह का दिन बीता आपका, राहुल जी
2: सर लीटर लाउड
3: पकड़ा हुआ है तो देखना पड़ेगा थोड़ा सा।
4: वी आर ऑल हियर टुगेदर, फोटो में किनारा है, वी आर ऑल हियर यूनाइटेड एंड वी आर ऑल हियर विदाउट एनी ईगोस, वी विल फाइट दिस गाइस टिल दे आर आउट। इसी का मतलब सौ एकदम कमिश्नर है और इसको जाना चाहिए, जरूर जाना चाहिए।
5: तो आज हमारी सोच है कि जो डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट है जंतर मंतर, वहां पे हम जाकर सब आज फिर से बैठे और देश को बताएं कि हमारे लिए ज्ञानेश कुमार जी देश के लेजिटिमेट इलेक्शन कमिश्नर नहीं है। मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, मोहन भगवत, ज्ञानेश कुमार जी ने देश के लोकतंत्र को खत्म किया है और मैंने कल भी कहा था जिन्होंने ये काम किया है ये देशद्रोही है और इन पर हम एक्शन लेंगे। मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा देना पड़ेगा।
6: वहाँ बैठे थे, आज दिल्ली पुलिस ने FIR कर दिया आप पे, प्रियंका जी।
5: मेरे पास 45 FIR हैं, मेरा लक्ष्य है कि मुझे 100 चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मेरे ऊपर 100 FIR लगे, हर FIR मेरे लिए एक मेडल है।
0: मौसमी सिंह हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ी हुई है। मौसमी, विपक्ष का जो लंच था उसमें CEC के विरोध का तड़का तो लग गया, लेकिन अब आगे कांग्रेस क्या रणनीति लेकर अब बढ़ रही है?
7: चलते रहना भैया, आगे आगे आगे चलो जी। देखिए, हम लोग तैयारी में हैं अभी। जो बसें हैं उन बसों को में सारे सांसद बैठ गए हैं। ये जनपद से बस अब निकलेगी, राहुल गांधी ने पहले ही बोल दिया है कि जंतर मंतर बस जाएगी। और यानी कि आप मान लीजिए हिमांशु, लगभग 1 किलोमीटर का फासला होगा जंतर मंतर यहाँ से, जनपद से 1 किलोमीटर लगभग होगा। पैदल भी जा सकते थे लेकिन क्योंकि उनको हिरासत में ना लिया जाए और पुलिस का पहरा बहुत था, इसलिए मुझे लगता है जो नारंगी बसों की हम बात कर रहे थे वो कांग्रेस ने ही बुलाई थी। और सारे सांसदों को अब बैठा लिया गया है उस बस में। पीछे जो है, जरा नासिर उतर के एक बारी दिखाइए क्योंकि अभी बसें चल नहीं रही हैं, हम लोग गाड़ी में बैठ गए हैं। और हिमांशु पीछे जी। हम जैसे ही बसें चलती हैं हम लोग बैठ जाएंगे। ये पीछे देखिए आप, ऑरेंज कलर की जो बसें दिख रही हैं उसमें सांसद आपको सफेद कुर्तों में नजर आ रहे होंगे। पूरी जो डिटेन करने के लिए बसेस थी बाएं और दाएं वो भी आपको नजर आ रही हैं। और ये जनपद का वो चौक है जो अमूमन काफी बिजी रहता है लेकिन अभी तो सिर्फ सियासतदानों और पुलिस कर्मियों से भरा हुआ है। आवाजाही भी रुकी है, धीरे धीरे बस आगे बढ़ रही है। और क्लोजअप करके जरा दिखा दीजिए नासिर, फिर उसके बाद हम लोग भी पीछे टेल करेंगे। हालांकि जंतर मंतर यहाँ से बहुत दूर नहीं है और ये बताया जा रहा था कि शायद चुनाव आयोग जाए हिमांशु, लेकिन चुनाव आयोग ना जाके अब जंतर मंतर में धरना देने की प्लानिंग राहुल गांधी ने बना ली है।
0: मौसमी, आपने बताया था कि आज जंतर मंतर से सुबह बैरिकेडिंग हटवा दी गई थी लेकिन जैसे ही ये पता पड़ा कि लंच कार्यक्रम में दोबारा वहां पर बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है। अब ये बताइए कि यहां पर कांग्रेस के सांसदों के अलावा इंडिया ब्लॉक के और कौन कौन से सांसद हैं? क्या इसमें TMC, समाजवादी पार्टी या फिर सुप्रिया सुले या कोई और शामिल हुआ है आज?
7: देखिए मुझे ना एक बात, मैंने 3-4 सांसदों को फोन किया और तीन चार जो समाजवादी के सांसद कल नजर आए थे वो आज सब या तो बहुत कोई अस्पताल में है, कोई चेकअप के लिए गया है, तो कोई दिल्ली से बाहर गया है, कोई अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वापस चला गया है, तो इस पर संशय है। हालांकि हो सकता है कि किन्हीं और सांसदों को भेजा गया हो प्रतिनिधित्व करने के लिए। अब इस बस में कौन कौन है भैया, आप बैठ जाओ गाड़ी में, गाड़ी ऑन कर लो, कौन कौन होगा इस बस में उससे पता चल जाएगा। लेकिन ये जरूर है कि टीएमसी के सांसद, लेफ्ट पार्टी के सांसद हमें नजर आए, वो लोग जरूर इसमें मौजूद हैं। और एक तरीके से कहीं ना कहीं ये इंडिया ब्लॉक का लंच शायद खड़गे साहब ने इसलिए भी रखा था कि जिस तरीके से एक तरीके से एक कांग्रेस के अकेले की इमेज, एकला चलो रे की इमेज कल शाम को आई, बाद में टीएमसी के सांसद जुड़े, बाकी सब घर जा चुके।
0: ये भी खबर आ रही है कि मनोज झा भी दिखे आज इसमें, आरजेडी के
7: प्रियंका है लेकिन अखिलेश यादव नहीं आए। जी आरजेडी के भी थे, एनसीपी के भी थे, शिवसेना यूबीटी के भी, लेकिन समाजवादी पार्टी का इसलिए मैंने कहा कि क्योंकि काफी ज्यादा संख्या है, अभी स्पष्ट हो जाएगा कि कौन कौन था और कौन कौन नहीं, लेकिन सस्पेंस समाजवादी पार्टी को लेके बरकरार है। हो सकता है कोई और सांसदों को दिया गया हो यहाँ पे दारोमदार कि खड़गे साहब का जो निमंत्रण है उसको ऑनर किया जाए, लेकिन अब आगे की रणनीति ये है कि लगातार कल 8-9 घंटे धरने और प्रदर्शन के बाद राहुल गांधी जो हैं अब यहाँ पे तमाम सांसदों के साथ है। भैया आप इधर आ जाओ, आ जाओ। हाँ तो अब हम लोग क्योंकि धीरे ही चल रहा है काफिला, हम लोग भी पैदल पैदल चल लेंगे। यहाँ आप देखिए कि पुलिस का कैविलकेड भी है, दिल्ली पुलिस बिल्कुल इंतजाम में कोई कमी नहीं है दिल्ली पुलिस के, आगे पीछे राहुल गांधी कह रहे हैं जंतर मंतर और कई प्रधानमंत्री आवास। आप लोग किसी काफिले के साथ हैं? देखिए दिल्ली पुलिस तो ये कोई कैविलकेड के साथ नहीं है, पायलट व्हीकल दिल्ली पुलिस पर निगरानी बनाई हुई है कि जो दिल्ली पुलिस निगरानी बनाई हुई है कि पीछे सांसद जो आ रहे हैं वो कहां जा रहे हैं, इस पर भी दिल्ली पुलिस की।
0: अच्छा मौसमी एक बात और बताइए, आपने जो शुरुआत में कहा था कि यहां पर बसें किसकी तरफ से लाई गई हैं ये पता नहीं है, यहां पर 2 से ज्यादा बसें होती नहीं है लेकिन आपने गिनवाई थी बहुत सारी बसें थी, ये बस कांग्रेस की तरफ से मंगवाई गई थी या फिर दिल्ली पुलिस की तरफ से मंगवाई गई थी, और अब 1 किलोमीटर का डिस्टेंस वो पैदल तय किया जाएगा या बस में?
7: देखिए हम लोग पैदल तय करेंगे और बस में तय करें, सांसद बस में तय करेंगे। दाई तरफ जो बसें आप कह रहे हैं ये तो दिल्ली पुलिस ने मंगाई थी, ये सारी बसें उसमें दिल्ली पुलिस की भी बसें हैं, ये तो सारा कार्यक्रम दिल्ली पुलिस का तैयार था, पर कांग्रेस ने या ये कह लीजिए कि विपक्ष ने एक और अपनी स्ट्रेटजी अपनाते हुए, और जिस तरह से राहुल गांधी लगातार कभी टॉप गियर लगाते हैं कभी पहला गियर लगाते हैं, तो स्ट्रेटजी बदल के कह एक तरीके से मैसेज दे रही है दिल्ली पुलिस को, आपको बसों में भर के हमको ले जाने की जरूरत नहीं है, हम अपनी बसें खुद मंगाएंगे, उसमें टूरिस्ट लिखा हुआ है, ऑरेंज कलर की इत्तेफाक से ऑरेंज कलर की बसेस है।
0: अच्छा सुन लेते हैं, बस में सवार कुछ सांसदों के बयान आ रहे हैं, सुन लेते हैं।
7: जी
0: अच्छा चलिए जैसे ही वो आएगा। हाँ ये देखिए राहुल गांधी है बस में बैठे हुए हैं, उनके साथ में जो साथी सांसद है कांग्रेस के वो भी स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, और बस में बिल्कुल आगे की तरफ राहुल गांधी बैठे हुए हैं, और ये वो बस है जिसको मौसमी बता रही थी जो ऑरेंज और पीले कलर की जो बस है, ये वो बस है, और इसमें देखिए राहुल हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे ठीक उनके पास में, उनके बाईं ओर मल्लिकार्जुन खड़गे बैठे हुए हैं, और बीच बीच में शायद पत्रकारों से उन्होंने बात भी की, वो भी हम आपको जल्दी सुनवाएंगे। लेकिन देखिए भीड़ एक बार फिर से जुट चुकी है, मतलब जो कल तस्वीरें आपको देखी थी आकाशवाणी भवन पर जो कल तस्वीरें दिखी थी, जो रात तक हंगामा चलता रहा, राहुल गांधी पेड़ के नीचे चबूतरे पर डटे रहे। अब लंच के बाद जैसा कि मौसमी ने पहले भी बताया था कि बहुत अप्रत्याशित है राहुल गांधी, अचानक कहां वो क्या कदम फैसला उठाए नहीं पता चलता है, तो जैसा मौसमी ने बताया था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। और अब आप देखिए बस में बैठ के राहुल गांधी आगे की ओर बढ़ने लगे। मौसमी बताइए अब आपने कहा था वो बिल्कुल सही साबित हो रहा है?
7: अब देखिए आपको अब आपको तस्वीर दिखाते हैं बसों की, ये पहली बस है यानी कि ये है बस नंबर 1। अब इसमें देखिए आगे ज्योतिमणि और तमाम सांसद नजर आ रहे हैं, मुझे साइड में आना पड़ेगा,
0: इसी में शायद राहुल गांधी
7: नहीं है।
0: अच्छा नहीं,
7: ठीक है, नहीं नहीं, आप देखते हैं दूसरी बस, ये है दूसरी बस, राहुल जी किस बस में है? राहुल गांधी पीछे वाली बस में, तो ये देखिए दूसरी बस है, इसमें भी सांसद भरे ऊपर दिखाइए, ओजला साहब हैं और तमाम जो सांसद हैं वो भरे हुए हैं। अच्छा, ये एसी बस है या तो बिल्कुल देखिए दिख नहीं रहा है, बात नहीं हो पा रही। अब यहाँ पे सिक्योरिटी जहाँ बढ़ गई है एकदम से बहुत ज्यादा, और ये जो है पैरामिलिट्री जिसमें मार्च कर रही है, पूरा उनका दस्ता है, हेलमेट भी पहने हुए हैं, पूरा अपना इक्विपमेंट्स उनके पूरे पास हैं, बेटन भी है। और देखिए ये आपको याद होगा, आपने दिखाया था ये टियर गैस वाला, ये इनका एसओपी होता है वैसे रैपिड एक्शन फोर्स का, टियर गैस के भी जो एक्सप्लोसिव्स, टियर गैस का जो प्रेपरेशन होता है, ये रैपिड एक्शन फोर्स जो है वो पूरा अपना इक्विपमेंट्स लेके चलती है। तो रैपिड एक्शन फोर्स के पीछे राहुल गांधी की बस है, रैपिड एक्शन फोर्स को भी बुलाया गया है, यानी कि पूरी तैयारी, दिल्ली पुलिस कोई किसी मूड में नहीं है, कोई कोताही बरतने की। अब वो आखिरी दूर नजर दौड़ा लीजिए, राहुल गांधी की जिस बस में सवार है वो तीसरी नंबर की बस है। राहुल गांधी शायद और कांग्रेस ये इंश्योर करना चाहती थी कि बाकी दो को ना रोक दिया जाए, तो अगर वो दो आगे बढ़ती हैं तो पीछे तीसरी बस ढकेलेगी, हो सकता है कि दिल्ली पुलिस स्प्लिट करना चाहे। और एक तरीके से ये कहते हैं ना कैट एंड माउस गेम, कैट एंड माउस गेम चल रहा है दिल्ली पुलिस और विपक्षी नेताओं या इंडिया ब्लॉक या राहुल गांधी के बीच में। जिस तरह की
0: अच्छा मौसम अब ये कहना चाह रही है, जैसे कल एक व्यवस्था को बनाया गया था दिल्ली पुलिस की तरफ से कि सबसे पहले राहुल गांधी जिस आकाशवाणी भवन में बैठे हुए थे वहां से कांग्रेस के बाकी के नेता, एनएसयूआई के कार्यकर्ता, उन सभी को हटा दिया गया था, बसों में भरकर डिटेन कर दिया गया था। दो बस आगे निकल गई है, कांग्रेस के सांसद आगे निकल चुके हैं, अब तीसरी बस की ओर जब आप आगे बढ़ रही है तो हो सकता है कि दिल्ली पुलिस ने इस तरह की कुछ रणनीति बनाई हो कि राहुल को वहां पर रोका जा सके और बाकियों को अलग ले जाया जा सके ताकि जंतर मंतर पर भीड़ एकजुट ना हो।
7: बिल्कुल बिल्कुल ऐसा बिल्कुल संभव है। हालांकि देखिए जंतर मंतर पर धरने की इजाजत, जंतर मंतर में प्रोटेस्ट करना, इसकी बात को कि विपक्ष को नहीं रोक सकते, ये बात तमाम कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। तो ऐसे में किस धारा के तहत, किस कानून के तहत विपक्ष के नेताओं को रोका जाएगा, ये सवाल बना हुआ है। और यहाँ पर दिलचस्प है कि राहुल गांधी की बस आगे बढ़ नहीं पा रही है या बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि अभी बढ़ नहीं पा रही है, भीड़ काफी है। आप देखिए ये ट्रेडमार्क अंदाज जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में और राहुल गांधी की छात्रों की गूंज में नजर आता है या कोई रोड यात्रा में, कि वो एक ये लाल रंग की गाड़ी होती है जिसमें ये खुद कांग्रेस का की मीडिया टीम होती है जो सारी रीले बनाती है। आजकल कहते हैं कि रीलों का दौर है, इंस्टाग्राम और इस पे जो यूथ को जेंजी का आउटरीच है, तो ये यहाँ पे स्टेशन है बिल्कुल सामने। तो इसका मतलब ये है कि कांग्रेस योजनाबद्ध तरीके से एक एक पूरी स्ट्रैटेजी के तहत, आज का कोई इत्तेफाकन एकदम से प्लान्ड कोई आंदोलन नहीं था, ये पहले से राहुल गांधी की दिमाग की और स्ट्रैटेजी की उपज है। तो जंतर मंतर
0: मौसमी अब
2: अभी हम राहुल जी के नेतृत्व में जहाँ जहाँ राहुल जी जाएंगे उनके पीछे पूरी टीम पूरी तरह से लगी हुई है और पूरी तरह से प्रजातंत्र के न्याय के आगे खड़ी हुई है।
7: राहुल गांधी तो बिल्कुल गुरिल्ला वॉरफेयर कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस कुछ सोचती है, राहुल गांधी कुछ सोचते हैं, इस तरीके का।
2: देखो सवाल ये प्रजातंत्र में जब सुनी नहीं जा रही है तो आखिर धरना और प्रदर्शन ही एक माध्यम है, उसी माध्यम के आधार पर राहुल जी के साथ में उनके नेतृत्व में पूरे सड़क से संसद तक लड़ाई लड़ रहे हैं और आम जन पूरे जिले हेडक्वार्टर से लेकर दिल्ली हेडक्वार्टर तक पूरी तरह लड़ाई लड़ रहे हैं।
7: ये इंदौर के नेता हैं, इंदौर के नेता भी यहाँ पे नजर आ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि माजरा क्या है। और यहाँ पे आप हिमांशु कुछ कह रहे थे, बोलते रहिए, हम आपको तस्वीर दिखाते
0: रहेंगे। मुझे आपकी वो बात, अब आपकी वो बात मुझे याद आ रही है जिसमें मौसमी आपने कहा था कि आखिर क्या वजह है कि जनपद के ही जो सागर रत्न रेस्टोरेंट है उसको चुना गया है, जबकि और जगह पर कई आलीशान रेस्टोरेंट थे, अब क्यों चुना गया है? अब ये समझ में आ रहा है कि रणनीति स्पष्ट थी कि यहां पर एकजुट होते हैं और फिर उसके बाद सीधे रुख करेंगे जंतर मंतर जो सबसे नजदीक होगा।
7: बिल्कुल, देखिए आप देख लीजिए हिमांशु, ये दाहिने हाथ पे जंतर मंतर है, दाहिने हाथ चलते तो जंतर मंतर पहुंच जाते, अब ये दाहिने हाथ तो चल नहीं सकते क्योंकि पूरा यहाँ पे बैरिकेड लगा हुआ है, क्यों नहीं चल सकते दाहिने हाथ, बस नहीं जा सकती जंतर मंतर। यानी कि अगर राहुल गांधी ने सोचा होगा तो दिल्ली पुलिस ने बहुत सोचा होगा। और ये हाल है देखिए, पूरी एक तरीके से किले बंदी, आप देखिए नासिर ज्यादा आगे मत आइए, वहां से मिस हो जाएगा, इधर दिखा दीजिए पहले आप, पूरी किले बंदी यहाँ पे है, यहाँ से तो जाने की कोई गुंजाइश नहीं है, यहाँ से जाने की गुंजाइश नहीं है तो उस तरफ चलते हैं। तो इसलिए अब ये जनपद के रास्ते से होते हुए अशोका रोड होती है, दिल्ली से जो लोग वाकिफ है, मतलब कि नाक इधर से पकड़िए या उधर से पकड़िए, तो नाक घुमा के पकड़ने की कोशिश हो रही है और हम लोग आगे चलते हैं क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ है, पर राहुल गांधी यहाँ पे आपको नजर आएंगे। नासिर आ जाइए, दूर से आप दिखाइएगा,
3: सामने देखिए राहुल,
7: वो देखिए उधर देखिए, राहुल गांधी आपको दिखा देते हैं
3: यहाँ पे मौजूद है,
7: वो
3: देखना है कि ये क्या जंतर
7: यहाँ पे देखिए, इस बस में केसी वेणुगोपाल, इधर है नासिर, आप आए ऊपर वहाँ पे उस तरफ, ये केसी वेणुगोपाल हैं, डेरिक ओब्रायन हैं, महुआ मोइत्रा हैं, चले यहीं से अंदाजा लगा लेते हैं, दीपेंद्र हुड्डा हैं, राजा वारेंगे उधर देखिए, डेरिक ओब्रायन के बगल में है राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल के उस तरफ आइए, इधर दिखाइए। वैसे हिमांशु आपको जाहिर तौर पे तस्वीरें भी मिल रही होंगी,
0: बिल्कुल,
7: लेकिन ये यहाँ से क्लियर पिक्चर है, नो वोट चोरी, नो वोट चोरी, नो डेमोक्रेसी चोरी, प्रियंका गांधी, खरगे साहब, और खरगे साहब के बगल में राहुल गांधी बैठे हुए हैं। यहाँ प्रियंका गांधी आपसे सुबह हमने जब पूछा था कि भैया कि मैडम पुलिस बहुत आई है, तो हंसते हुए राहुल गांधी की तरफ देखने लगी, यही पे खरगे के पीछे आपको राहुल गांधी नजर आएंगे। तो ये तस्वीर,
0: तो ये बात अब स्पष्ट हो रही है, जब आपने प्रियंका गांधी से पूछा था कि इतनी पुलिस यहाँ पर क्या कर रही है, तो प्रियंका गांधी उस वक्त हंस पड़ी थी राहुल गांधी को देख के, और अब वो स्पष्ट हो रहा है कि रणनीति पहले से ही कांग्रेस की तय थी और उसी पर कांग्रेस अब अमल कर रही है, अब वो हंसी के पीछे की वजह समझ में आ गई।
7: बिल्कुल, देखिए ये एक साइकोलॉजिकल बैटल ग्राउंड भी है, दिल्ली पुलिस का ये काम है कि दिल्ली पुलिस प्रीएम्प्ट करे हर एक प्रोटेस्ट को और प्लानिंग और कैसे होना है, यहाँ कांग्रेस कह रही है दिल्ली पुलिस धरने से कैसे रोक सकती है हमारे लोकतंत्र में। अब ये तस्वीर बिल्कुल देश की राजधानी दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस से आ रही है, जहाँ पे पीछे आप देखें तो NSUI के कार्यकर्ता बस में भरे, बस के ऊपर खड़े हुए हैं, आगे तमाम कार्यकर्ता हैं, बगल में राहुल गांधी का काफिला जा रहा है, राहुल गांधी की बस जा रही है, और पूरा इंतजाम के साथ, गाजे बाजे के साथ कह लीजिए, हालांकि कोई बारात नहीं है लेकिन जो सियासी यात्रा निकल रही है पूरे इंतजाम के साथ, ये दिखाइए नासिर, पूरा इंतजाम है कि कवरेज पूरा हो और इस तरह की बातचीत जो है वो जो संदेश है वो जनता में भी जाए।
0: आज एक और बयान राहुल गांधी का बहुत चर्चा में है, मौसमी आप तस्वीरें तो दिखाते रहिए, एक और बयान राहुल गांधी का बहुत ज्यादा चर्चा में है क्योंकि राहुल गांधी की तरफ से, राहुल गांधी पर कल के लिए एक FIR दर्ज की गई है, और जब इस बारे में उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझ पर 45 FIR तो है, मैं चाहता हूं कि मुझ पर 100 FIR हो जाए, हर FIR मेरे लिए एक मेडल की तरह है, और हो सकता है कि आज अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो एक और FIR के बारे में सुनने को मिल जाए आने वाले वक्त में, और यही राहुल गांधी की रणनीति भी है।
7: बिल्कुल, देखिए ये बड़ा बयान है राहुल गांधी का, एक तरफ कहा जा रहा है कि FIR के डर से कांग्रेस ये जताने की कोशिश कर रही है, ED CBI के डर से नेता जो है पाला पलट रहे हैं और उनको खौफ दिया जा रहा है, मजबूरन पाला पलट रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस ये बताना चाहती है कि राहुल गांधी किसी से नहीं डरते, 45 FIR हो या 100 FIR, उनका एक बयान बार बार कांग्रेस।
0: ये मौसमी पिछले कुछ वक्त से जब से आपसे चर्चा हो रही है और आप एक एक घटना के हम बता रही हैं, हमें बहुत बखूबी पता चल रहा है कि कांग्रेस क्या रणनीति लेकर आगे बढ़ रही है, CEC का घेराव करने के लिए और सरकार का घेराव करने के लिए, हर एक तस्वीरें आप तक पहुंचाते रहेंगे, मौसमी के पास भी दोबारा जुड़ेंगे, लेकिन रुकेंगे यहां बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
9: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
10: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने,
11: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ,
12: सोच बदलो और बैंक भी।
13: आ गया सोमवार और आ गए चकमक चचा। एक कचौड़ी दो समोसा चकमक तेरा क्या भरोसा।
14: चकमक चाचा से सीधे चकमक है।
13: अरे नारा है दिल्ली में, प्रोटेस्ट चल रहा है, महिला लोग एकदम नारा लगाए जा रहे, गूंज रहा नारा।
14: लेकिन भैया नारा अरे फालतू में सब बेकार है, एकदम बेकार। नारे होते थे हमारे टाइम।
13: अच्छा
14: सुनाए, जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, जेपी भाई छूटेंगे।
13: अच्छा तो हमारे टाइम वाले सुनिए, दो कुलचा एक बिरयानी, इन नेताओं की खत्म कहानी।
14: अरे जमीन की चकबंदी में, जमीन की चकबंदी में क्या फाइनेंस बंदी में,
13: ठंडी चाय गरम करो चकमक चाचा शर्म करो।
14: अरे राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर।
13: अरे लाठी गोली खाएंगे, इस्तीफा दे के जाएंगे।
14: अरे सुनो, इस दीपक में तेल नहीं, सरकार चलाना खेल नहीं।
13: अरे लाल फूल नीला फूल जंजी नंगे ब्यूटीफुल।
14: अरे बारी बारी सबकी बारी, अब की बारी अटल बिहारी।
13: चाय गरम दूध गरम चकमक चाचा भी शर्म
14: है।
13: हाँ
14: जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है।
13: अरे मेरे सिर में दर्द है जिसका कारण मर्द है आप जैसा।
15: हम जैसे इधर आओ।
16: हम जैसे मर्द नहीं होते किसी नारे से ऑफेंड, हम तो भैया करते हैं हर सही मुद्दे को डिफेंड।
13: आई चाचा।

0: नहीं पड़े
1: नहीं,
0: है।
1: नहीं, नहीं, नहीं।
0: फ्लाइट में कम से कम सफर करें मेरे हिसाब से भाई, ट्रैवल एंस कोई गांजा फूक के चला रहा है, कोई चाकू लेकर घुस रहा है, क्या हो रहा है ये?
2: लेकिन हम तो हर कीमत पर समझौते के आदि हैं।
0: तुम्हारा
2: लेकिन हम तो हर कीमत पर समझौते के आदि हैं, गाल पे चाटा खाते रहने वाले गांधीवादी हैं।
3: यार काट देना।
4: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: के मुखिया के तौर पर 25 वर्षों की ये निरंतर यात्रा, लोग इसे उपलब्धि मानते हैं, लेकिन मैं इसे कैसे देखता हूं, मेरे लिए ये व्यक्तिगत महिमा मंडन का विषय नहीं है और न ही ये इसका अवसर है। आज से 25 साल पहले 50 वर्ष की आयु में जंगलों में आदिवासियों की सेवा करते करते गुजरा, पहाड़ों में जिंदगी बिताई और भारतीय जनता पार्टी में संगठन की राह चुनी। मेरा राजनीतिक रिपोर्ट कार्ड सिर्फ संगठन का काम करने वाले का ही था। मैंने चुनाव लड़ाए थे लेकिन एक भी चुनाव नहीं लड़ा था। चुनावी राजनीति में चमकने की चाहत होती तो बहुत पहले ही मैदान में उतर सकता था, लेकिन ये मेरा मिजाज नहीं था। मैं जीवन में क्या बनूंगा, मेरा क्या होगा, ये कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि बाल्यकाल से जो मुझे शिक्षा दीक्षा मिली, वो शिक्षा दीक्षा यही थी कि मैं एम्बिशन के लिए नहीं, मिशन के लिए जीवन जीने वाला इंसान रहा हूं।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत और इस समय रण दिल्ली की सड़कों पर है। चुनाव आयोग बनाम कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन, विपक्ष का खेमा दिल्ली की सड़कों पर उतर आया है। कल भी आज भी दिल्ली में चुनाव आयोग के खिलाफ कांग्रेस पार्टी और विपक्ष का प्रदर्शन आज फिर तेज हो रहा है। बड़ी खबर इस समय यह है कि कांग्रेस के नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी विपक्षी सांसदों के साथ, पहले उन्होंने दिल्ली में एक मंथन किया भोजन, दोपहर के भोजन पर, और उसके बाद अब सब रवाना हो गए हैं नेता प्रतिपक्ष जंतर मंतर की ओर, बड़े नेताओं के साथ और रवाना हो रहे हैं। और अब से थोड़ी देर पहले राहुल गांधी ने जनपद में ही सागर रत्ना रेस्टोरेंट में विपक्षी दलों के साथ बैठक की। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, विपक्षी सांसद अब जंतर मंतर की ओर बढ़ रहे हैं। दरअसल ये जो लंच था सागर रत्ना में, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से आयोजित किया गया था। लंच के बाद राहुल गांधी ने मीडिया से बात की, साफ किया कि विपक्ष अब जंतर मंतर में चुनाव आयोग के खिलाफ जाकर अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेगा। दो तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं, जनपथ नई दिल्ली से ये लाइव तस्वीरें हैं, और बस में विपक्ष के नेता सीसी से आर पार, ये आप राहुल गांधी को इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं। अब से थोड़ी देर पहले आप केसी वेणुगोपाल को देख सकते थे। राहुल गांधी ने कहा कि कल लगभग 300 सांसदों की तरफ से ये गुजारिश की गई थी कि वो मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलना चाहते हैं, लेकिन उन्हें निर्वाचन सदन तक भी जाने की अनुमति नहीं दी गई। और इसके बाद विपक्ष के सांसदों ने पहले संसद मार्ग पर और फिर आकाशवाणी भवन पर धरना दिया। लगभग 9 घंटों तक ये प्रदर्शन हुआ, उसके बाद नेताओं को हिरासत में लिया गया। क्या कहना है राहुल गांधी का, सुनिए।
1: तो आज हमारी सोच है कि जो डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट है जंतर मंतर, वहां पे हम जाकर सब आज फिर से बैठे और देश को बताएं कि हमारे लिए ज्ञानेश कुमार जी देश के लेजिटिमेट इलेक्शन कमिश्नर नहीं है। मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, मोहन भगवत, ज्ञानेश कुमार जी ने देश के लोकतंत्र को खत्म किया है। और मैंने कल भी कहा था, जिन्होंने ये काम किया है ये देशद्रोही है और इन पर हम एक्शन लेंगे। मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा देना पड़ेगा।
2: वहाँ बैठे थे, आज दिल्ली पुलिस ने एफआईआर कर दिया आप पे, प्रियंका जी पे।
1: मेरे पास 45 एफआईआर हैं। मेरा लक्ष्य है कि मुझे 100 चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मेरे ऊपर 100 एफआईआर लगे। हर एफआईआर मेरे लिए एक मेडल है।
0: हर एफआईआर मेरे लिए एक मेडल है। 45 एफआईआर राहुल गांधी पर हो चुके हैं, 100 का लक्ष्य उन्होंने अपने लिए रखा है। मौसमी सिंह मेरे सहयोगी ताजा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रही हैं। मौसमी, कल भी विपक्ष का प्रदर्शन था, आज भी इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन है, कल संसद मार्ग, आज जंतर मंतर। क्या आज भी ये दिन भर शाम भर चलने वाला है या अब ये जंतर मंतर पर बैठे रहेंगे तब तक जब तक ज्ञानेश कुमार की इस्तीफे की इनकी मांग इनके मुताबिक मानी नहीं जाती?
3: गौरव, आपको बता सकती हूँ कि ये स्ट्रैटेजी जो है ना, जो लगातार औचक प्लानिंग चल रही है और औचक धरने चल रहे हैं, मुझे लगता है कि ये कांग्रेस में सिर्फ टॉप कोर नेताओं को पता है। और ये शुरुआत हुई थी इसकी प्रधानमंत्री आवास में, जिस तरीके से धरना हुआ उसके बाद से, यानी कि खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अलावा किसी को, तीसरे को पता नहीं होता कि क्या होने वाला है। एक तरफ खड़गे निमंत्रण देते हैं और राहुल गांधी धरने पर निकल पड़ते हैं। तो अभी आप बहरहाल देखिए कि जो तस्वीर आ रही है उससे तो ये पता है कि जंतर मंतर जा रहे हैं। राहुल गांधी ने कम से कम ये साफ कर दिया है कि हम वहां पे धरना देंगे, लेकिन कब तक धरना देंगे टाइमलाइन नहीं बताया है। तो लगातार क्या दूसरे दिन भी राहुल गांधी को दिल्ली पुलिस को हिरासत में लेना पड़ेगा? उसकी तैयारी तो आप देख ही रहे हैं, दाएं बाएं जिस तरीके से बसेस है गौरव, तो उसकी तैयारी तो पूरी है
0: जी। अच्छा मौसमी, ये बताइए, चुनाव आयोग की तरफ से ये कहा गया कि अगर वो हमसे मिलने का समय मांगेंगे तो जो एक प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत जो निर्वाचित सदस्य हैं या जो सांसद हैं वो हमसे मिलने के लिए आ सकते हैं, लेकिन प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा। क्या कांग्रेस पार्टी उस प्रक्रिया के तहत या विपक्ष उस प्रक्रिया के तहत मिलने को तैयार है?
3: देखिए, ये बात साफ हुई है गौरव कि कांग्रेस ने और हम लोग ने ये कल भी कहा था कि बातचीत चल रही है। ये बात साफ है कि प्रियंका गांधी बातचीत कर रही थी, वो डीसीपी सचिन शर्मा से भी उन्होंने कल बात की, उसकी तस्वीरें भी आई, और ये कहा गया कि पार्लियामेंट एनेक्सी में मिलिए, सारे इंडिया ब्लॉक के 300 कुछ सांसदों से मिलिए, और तीनों मिलेंगे ईसी और सीईसी, यानी कि ये तीन शर्तें, एक पार्लियामेंट एनेक्सी में इंडिया ब्लॉक के सारे सांसद, और लोकेशन भी हम तय करेंगे जो चुनाव आयोग को मंजूर नहीं है।
0: जी,
3: चुनाव आयोग ने कहा कि आप दरख्वास्त दीजिए कब मिलना है कैसे, और मिलना तो चुनाव आयोग में ही पड़ेगा, एक संवैधानिक संस्था है।
0: जी,
3: आप चुनाव आयोग में मिलिए और कब मिलना है ये औपचारिकता के तौर पे, प्रोटोकॉल के तौर पे चुनाव आयोग तय करेगा।
0: तो क्या ये मौजूद, क्या ये मानते हैं ये नेता, या इनको लगता है कि रोज रोज विरोध प्रदर्शन करने से, क्योंकि जब चुनाव आयोग से मिलने जाएंगे तो चुनाव आयोग हर मुद्दे पर अपना पक्ष रखेगा, ये जो 13 करोड़ का आंकड़ा कांग्रेस पार्टी या विपक्ष दे रही है वो उस पर अपना जवाब देंगे, ये क्या जवाब नहीं सुनना चाहता विपक्ष, क्या ये स्थिति है मौसमी, इसीलिए मिलने नहीं जा रहे हैं क्योंकि चुनाव आयोग ने कहा है कि आप अपनी बात कहिए हम भी अपनी बात कहेंगे?
3: देखिए, ये यहाँ पे आप समझ लीजिए कि बहुत पानी बह गया है इस पूरी लड़ाई में। ये मामला यहाँ तक आ गया था कि चुनाव आयोग ने गेट आउट बोल दिया था जब टीएमसी के तमाम नेताओं से मिले थे और उनको उनसे कुछ अभद्र टिप्पणी कर दी थी टीएमसी के नेताओं ने। कांग्रेस भी वॉकआउट कर चुकी है, जयराम रमेश को चुनाव आयोग बाहर बैठा चुका है कि इतने नेता नहीं आ सकते मिलने के लिए। तो कांग्रेस से भी तू मैं हो गई है, फाटक पर बैठ के तमाम नेता विरोध कर चुके हैं। तो मुझे लगता है कि अब शर्तों की बात आ गई है, शर्त उधर से भी लग रही है, शर्त इधर से भी लग रही है, और बीच में कोई मामला सुलझ नहीं रहा और उलझता जा रहा है, और आ गया इस बात पर कि आप देखिए ये तीनों बसें आपको पीछे दिख रही हैं।
0: जी,
3: जिन तीनों बसों में तमाम सांसद बिल्कुल रेंग रेंग के ये बसें चल रही हैं, और इतना कम फासला है गौरव, आप अच्छी तरह से जानते हैं इस इलाके को।
0: जी,
3: कि जंतर मंतर से अब आधा घंटा हो गया और कुछ 50 मीटर भी बस आगे नहीं बढ़ पाई।
0: निश्चित तौर पर, अच्छा, इसको कांग्रेस भुनाने की कोशिश कर रही है, जिन राज्यों में चुनाव होना है, और उसमें अगर हम सबसे पहले बात करें उत्तर प्रदेश की, अगर बात करें या पंजाब की बात करें, वहां के कितने नेता इसमें जुड़ रहे हैं, क्योंकि कल अखिलेश यादव ने शक्ल दिखाई, कुछ समय रहे, फिर वो चले गए। क्या कांग्रेस पार्टी इसको बड़े रूप में बढ़ा रही है? हमको तृणमूल कांग्रेस के सांसद यहां दिख रहे हैं, लेकिन बंगाल में तो चुनाव हो चुके हैं, अब 2029 में होंगे। हमको केरला के सांसद दिख रहे हैं, लेकिन केरला में भी चुनाव हो चुके हैं। तो जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं वहां के बड़े नेता यहां आ रहे हैं, या वो चुनाव प्रचार के और चुनाव के कार्य में लगे हैं?
3: गौरव, ये स्क्रिप्ट रिप्ले होते हुए मुझे नजर आ रही है, चाहे बिहार ले लीजिए, बंगाल ले लीजिए, केरल ले लीजिए, आप जिस तरीके से केरल में लड़ाई हुई, तो ये सही बात है कि जब चुनाव होता है तो उस पार्टी से दूरियां बना ली जाती हैं, वरना टीएमसी इतना कहाँ समर्थन करते हुए नजर आती। ममता बनर्जी और सोनिया गांधी की केमिस्ट्री आप देखते हैं मंच पर, जब इंडिया ब्लॉक की मीटिंग हुई थी सुनने में आया कि ममता बनर्जी सोनिया गांधी को लेके आए प्रेस वार्ता के लिए। अमूमन सोनिया गांधी कभी प्रेस वार्ता पे इस तरीके से बैठती नहीं है, तो सोनिया गांधी के कहने पे आ गई। अब देखिए, लगातार सपा और कांग्रेस के बीच में सीटों को लेके पहले सरफुटाउल मचा। अब कल अखिलेश यादव आए थे हमारे सामने, वो बस पे बैठ के चले गए हिरासत में, और यहाँ पे राहुल गांधी बस से उतर गए, और सुबह से लेके 5-6 घंटे हो गए, समाजवादी पार्टी को इतला नहीं दी गई कि आप धरना पे बैठ गए आकाशवाणी भवन में, समाजवादी छोड़िए किसी और भी इंडिया ब्लॉक के दल को इतला नहीं दी गई। शाम को आप फोन कर रहे हैं कि आप आ जाइए, अखिलेश यादव लखनऊ पहुंच गए थे। तो सवाल यह है कि क्या कांग्रेस ये जानबूझ के कर रही है या कोऑर्डिनेशन की कमी है? कई बार संदेश आप अनजान बन के दे देते हैं, तो ये बहुत मतलब बात बहुत गहरी है और पानी में कौन कितने हैं ये चुनाव में पता चल जाएगा, पर ये सच बात है कि अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव है, बार्गेनिंग चल रही है। पिछली बार अखिलेश जो है एक साल पहले बैरिकेड लांग गए थे, उनकी तस्वीर फ्रंट पेज पे थी कि किस तरीके से बैरिकेड चढ़ के उस तरफ पहुंच गए थे अखिलेश यादव। तो अब इस बारी राहुल गांधी बैरिकेड के ऊपर तिरंगा लेके खड़े हैं। कंपैरिजन हो सकता है कांग्रेस और सपा नहीं करना चाहे, लेकिन ये सच बात है कि हमें बताया गया कि समाजवादी पार्टी के एक नेता ने कहा कि हमें फोन नहीं आया, जब तक फोन आया कांग्रेस के से शाम को अखिलेश जी अध्यक्ष जी लखनऊ पहुंच गए।
0: बताइए, रहिए मेरे साथ, पीयूष मिश्रा भी मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मौसमी रहिए मेरे साथ। चर्चा इस समय राहुल गांधी के इस औचक धरने की है या इंडिया गठबंधन के, कितना मजबूती से गठबंधन यहां पहुंच रहा है जनपद इस समय पीयूष, क्योंकि कहा तो यह भी जा रहा है कि आम आदमी पार्टी अपना अलग प्रदर्शन कर रही है और उसकी तैयारी कर रही है 10 तारीख के लिए, वो इनका भाग नहीं है। कितना कितना संगठित है विपक्ष का यह गठबंधन?
4: जी देखिए, ये तो तस्वीर तभी साफ हो गई थी जब इंडिया ब्लॉक की बैठक हुई थी, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने साफ कह दिया था कि वो इसका हिस्सा नहीं लेंगे। डीएमके साफ कर चुकी थी कि वो इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। अखिलेश यादव खुद नहीं आए थे, उन्होंने अपने दो सांसदों को भेजा था। लेकिन आज की तस्वीर कहीं ना कहीं ये बयां कर रही है कि ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे से कम पर राहुल गांधी तो मानने वाले नहीं है। कल हमारी एक जो मौसमी जी बता रही थी, हमारी एक समाजवादी पार्टी के सांसद से बात हो रही थी, वो ये कह रहे थे कि पूरा धरना जो है वो इंडिया ब्लॉक का ना रहकर राहुल गांधी का हो गया, क्योंकि वो खुद आकाशवाणी भवन चले गए, उसके बारे में जानकारी समाजवादी पार्टी के नेताओं की नहीं थी। तो फ्रेगमेंटेड अलायंस से कहा जाता है शब्द, वो कहीं ना कहीं इस वक्त होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन राहुल गांधी पूरी तरह से अडिग है। कल वो घंटों तक बैठे रहे आकाशवाणी भवन पर और मांग करते रहे कि ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दे, और जब तक वो इस्तीफा नहीं देते वो वहां से नहीं उठेंगे। रात को अचानक से दिल्ली पुलिस ने ये फैसला किया कि कहीं स्थिति और भयावह ना हो जाए, क्योंकि आकाशवाणी भवन के चारों तरफ जो बिल्डिंग्स है बहुत सिक्योरिटी के हिसाब से बहुत ज्यादा सेंसिटिव बिल्डिंग्स है, तो वहां पर रात में कहीं कोई एंटी सोशल एलिमेंट ना पहुंच जाए। और कानून व्यवस्था को देखते हुए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को वहां से हटाया गया। कल हटने के बाद राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये डिसाइड किया कि एक लंचन मीटिंग की जाए और उसमें सभी सांसदों को बुलाया जाए। सभी सांसद पहुंचे, उस वक्त तक ये 3 बसें नहीं आई थी, जो पीछे आप 3 बसें देख रहे हैं उस वक्त ये 3 बसें नहीं आई थी। लेकिन जब लंच चल रहा था हमने अचानक से देखा कि 3 एक रंग की बसेस पहुंचती हैं। उन बसेस में धीरे धीरे करके सभी सांसद बैठना शुरू होते हैं और फिलहाल गौरव आप स्थिति समझ सकते हैं कि सभी सांसद इसके अंदर बैठ चुके हैं और आगे बढ़ रहे हैं। इस वक्त मैं आपको अपनी मौजूदगी बताऊं, इस वक्त हम मौजूद हैं जंतर मंतर से महज 250 से 300 मीटर की दूरी पर। जनपद रोड आधा कवर किया जा चुका है, इससे अगर आगे बढ़ेंगे तो ली मेरिडियन होटल आता है और नेशनल मीडिया सेंटर आता है, अगला गोल चक्कर ली मेरिडियन का है। इस वक्त हमारी महामारी मौजूदगी है बिल्कुल जनपद मेट्रो स्टेशन के ठीक सामने और वेस्टर्न कोर्ट के सामने। यहां से आगे अगर जंतर मंतर जाना है तो अगले गोल चक्कर के ठीक बाद जंतर मंतर आ जाएगा, लेकिन अभी वहां तक पहुंचना क्या वह मुनासिब होगा, क्या इंडिया ब्लॉक के सांसदों को वहां पहुंचने की परमिशन दी जाएगी, क्योंकि एक ही मांग है राहुल गांधी की कि हमें एक डेजिग्नेटेड स्पॉट दिया जाए, हमें बैठने की जगह दी जाए ताकि हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहे और हम मांग कर सकें कि इलेक्शन कमिश्नर जो है वो इस्तीफा दें।
0: तो ये अनिश्चितकालीन, अब के बाद पीयूष क्या ये अनिश्चितकालीन धरना है, रिले धरना है, राहुल गांधी मतलब रात तक बैठेंगे फिर चले जाएंगे, या अब बैठे ही रहेंगे विपक्ष के सांसद जब तक उनकी सुनवाई नहीं होती, और फिर क्या धरना बनाम धरना हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस जनता पार्टी भी धरना करना चाहती है, वो भी जगह की मांग कर रही है, तो क्या धरना बनाम धरना हो जाएगा?
4: देखिए एक बात साफ है गौरव, अगर राहुल गांधी बैठ गए और उनके सांसद उनके साथ बैठ गए तो

0: मान लिया जाएगा। अब आपने एक सवाल पूछा धरना वर्सेस धरना, सीजेपी ने तो ये कॉल दे दी है कि पूरे देश भर से लोग दिल्ली पहुंचे 10 तारीख को, और ये धरना ना सिर्फ ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे तक सीमित रहेगा, उसके बाद भी धरना जारी रहेगा और मांग रहेगी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे, क्योंकि इनका ये मानना है कि ज्ञानेश कुमार जो भी कर रहे हैं वो इशारे पे कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री के। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी बड़ी रणनीति और कितने लंबे टाइम तक इस पूरे धरना पॉलिटिक्स के ऊपर इस वक्त विपक्ष जो है वो फोकस कर चुका है। हालांकि बीजेपी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और बार बार बोल रही है कि ये सारे के सारे अनर्गल आरोप है, लेकिन राहुल गांधी मन बना चुके हैं कि जब तक ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देंगे तब तक वो धरना लगातार जारी रखेंगे।
1: ठीक, क्योंकि जो विपक्ष के सांसद हैं वो ये कह रहे हैं कि उनको मिलने नहीं दिया जा रहा है। चुनाव आयोग का कहना है कि मिलने के लिए वो आ सकते हैं, लेकिन पहले अपनी अर्जी दें और कौन कौन आना चाहता है, एक प्रोटोकॉल है, उसी प्रोटोकॉल के तहत वो मिलने आ सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अब क्या कहना है मल्लिकार्जुन खड़गे का, आरजेडी भी उनके साथ है, आरजेडी कांग्रेस के नेताओं का क्या कहना है, मनोज झा का क्या कहना है, सुनिए।
2: इलेक्शन कमीशन कर रही है और मोदी जी करा रहे हैं, और जब मोदी जी ऐसी गलती करा रहे हैं इसका मतलब यह है कि इस देश में डेमोक्रेसी को खत्म करने की कोशिश वो कर रहे हैं और संविधान को भी वो सुनते नहीं। तो इसीलिए हमने तय किया ये जनता की बात पूरे देश में पहुंचाना ये हमारा काम है। इसलिए राहुल जी लड़ रहे हैं और सभी पार्टी के लोग हम मिलके एक होके इस इशू पे पूरे देश के लोगों को बताना चाहते हैं तुम्हारा हक जा रहा है, तुम्हारे राइट्स जा रहे हैं, उस राइट्स के हिफाजत के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, चाहे किसी का कितने भी केसेस डालने दो, कितना भी डराने दो, हम डरने वाले नहीं है, लड़ते रहेंगे और आगे बढ़ते।
3: राहुल जी हम हमारे कांग्रेस की तरफ से कह दिया गया हम सब साथ हैं, सारे गुनहगार सामने लाए जाएंगे, एक एक के गुनाह का हिसाब।
1: राहुल जी
4: वी आर ऑल हियर टुगेदर, वी आर ऑल हियर यूनाइटेड एंड वी आर ऑल हियर विदाउट एनी ईगोज, वी विल फाइट दीज गाइज टिल दे आर आउट।
1: कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, तृणमूल कांग्रेस, आपने डेरेक ओब्रायन को सुना, मौसमी बहुत ही डंके की चोट पर डेरेक ओब्रायन कह रहे हैं कि कोई अहम की बात नहीं है, कोई अहंकार नहीं है, हम सब एक साथ हैं। प्रश्न यहां ये उठता है कि जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, बंगाल में भी चुनाव हो चुके हैं और बिहार में भी, दोनों के नतीजे जनता के सामने हैं, मौसमी चुनाव अगर बड़े चुनावों की बात करें तो पंजाब पर सबकी निगाहें हैं, उत्तर प्रदेश पर सबकी निगाहें हैं, गोवा का मसला उठता आ रहा है, वहां से कितने गुट के नेता एकजुट हो रहे हैं एक मंच पर यहां मौसमी।
5: देखिए आपको बता दें कि अभी जो है पीछे आप तस्वीर देख रहे हैं गौरव, जितने भी नेता एकजुट हुए हैं इंडिया ब्लॉक के सब इन बसों में हैं। अब यहाँ पे देखिए आप जहाँ जहाँ चुनाव है, पंजाब में तो कोई गठबंधन ऐसा है नहीं कांग्रेस का, पंजाब में कांग्रेस अकेले लड़ेगी, उत्तराखंड में अकेले लड़ेगी, उत्तर प्रदेश की बात है तो सपा के सांसद जो यहाँ दिल्ली में कल तक थे आज यहाँ नजर नहीं आ रहे हैं। अब देखते हैं किसी और सांसद को निमंत्रण न्योता दिया गया है, उसकी कहानी मैं आपको बता रही थी कि कैसे अखिलेश यादव को भी नहीं पता था कि आकाशवाणी भवन में राहुल गांधी बैठ गए। अब हालांकि इंडिया ब्लॉक का जो लंच है, मुझे भी ताज्जुब हुआ कि एक दिन बाद इतना पूरा आपने 8-10 घंटे आंदोलन किया, तो एक स्ट्रैटेजी के तौर भी था, तौर पे भी था, क्योंकि गौरव जनपद जो है बिल्कुल जंतर मंतर के करीब है, चुनाव आयोग के करीब है, बिल्कुल दिल्ली के दिल में है, तो लंच करने से कौन दिल्ली पुलिस मना करेगी, तो लंच भी कर लिया, टूरिस्ट बसेस बुला भी ली है। और एक ऐसी सियासत
1: मौसमी, आप और पीयूष इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिए ताजा जानकारी के लिए, फिर आपके पास लौट कर आएंगे। क्या और FIR होंगे राहुल गांधी के खिलाफ, क्या अनिश्चितकाल का होगा यह धरना, इस खबर पर रहेगी नजर। फिलहाल एक ब्रेक, देखते रहिए आज तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का।

0: भरोसा प्यार से
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: आगे आगे
4: उधर
3: करेक्ट करेक्ट
5: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: तेरा प्यार प्यार प्यार उल्टा बार। सर एक बार दो ठुमका लगाने बस।
2: मेरे पास एक आइडिया है।
1: क्या?
2: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है।
3: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है दुनिया हिला, पर स्टेज नहीं हिलता
4: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
5: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
6: कौन सी बनानी है?
7: सर गैसो फास्ट की ग्रोथ तो चेक कीजिए। गैसो फास्ट 27%, इनो 9.2%।
8: गड़बड़ है।
9: आहा, गैसो फास्ट वाले जीरे का जादू चला रहे, इसीलिए इनके चाहने वाले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे। गैसो फास्ट, इंडिया की एसिडिटी का असली इंडियन सॉल्यूशन।
10: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर। मेंटर तरक्की का ऑलराउंडर।
11: माँ के पैरों की धूल माथे पर ले, मैं परिंदा खुले आसमान जहाँ जीत रू सारा।

0: in association with Signature Finest Cardamom Seeds.
1: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा.
2: अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल.
3: हरियाणा की सियासत का सबसे बड़ा मंच, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ हर सवाल पर होगी खुलकर बात. देखिए पंचायत आज तक हरियाणा 8 अक्टूबर दिन भर सिर्फ आज तक पर.

0: पड़े
1: नहीं,
0: है।
1: नहीं, नहीं, नहीं।
0: फ्लाइट में कम से कम सफर करें मेरे हिसाब से भाई, ट्रैवल एजेंट कोई गांजा फूंक के चला रहा है, कोई चाकू लेके घुस रहा है, क्या हो रहा है ये?
2: लेकिन हम तो हर कीमत पर समझौते के आदि हैं।
0: तुम्हारा
2: लेकिन हम तो हर कीमत पर समझौते के आदि हैं, गाल पे चाटा खाते रहने वाले गांधीवादी हैं।
3: यार काट देना।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
3: जनसेवा के 25 साल पूरे होने वाले दिन की शुरुआत आराधना से हुई। पीएम मोदी सुबह सुबह दिल्ली के सरोजनी नगर स्थित विनायक मंदिर पहुंचे। विनायक मंदिर में पीएम मोदी ने पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की। पीएम मोदी ने तिलक लगाया, माला पहनी और पुजारी के बताए प्रावधानों के मुताबिक पूजा अनुष्ठान किया।
4: मैं श्री विनायक मंदिर में दर्शन के लिए गया था। मैंने परमात्मा के सामने देश के लिए प्रार्थना की। 140 करोड़ भारतवासियों के लिए प्रार्थना की और अपने लिए भी प्रार्थना की। प्रार्थना ये कि परमात्मा मुझे इतनी शक्ति और सामर्थ्य दीजिए कि मैं अपने देश के लिए और अधिक ऊर्जा के साथ काम कर सकूं। देशवासियों की और अधिक सेवा कर सकूं, दिन रात सेवा कर सकूं।
3: पीएम मोदी के प्रशासन में 25 साल पूरे होने पर बीजेपी की तरफ से देश भर में बड़े पैमाने पर कार्यक्रम हो रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, यानी बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे अलग अलग शहरों में कार्यक्रम कर रहे हैं। लखनऊ में भी एक कार्यक्रम हुआ जिसमें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी भी एक कार्यक्रम में शामिल हुए जहां उन्होंने बाकायदा पूजा पाठ कर पीएम मोदी के लिए दुआएं मांगी। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जिसमें लिखा, अथक परिश्रम, अद्भुत संकल्प शक्ति व राष्ट्र प्रथम को जीवन का लक्ष्य बनाने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सेवा और समर्पण के 25 वर्ष पूरे होने पर उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं।
5: नरेंद्र दामोदर दास मोदी के कायदा से स्थापित भारत का
3: आज ही के दिन 7 अक्टूबर 2001 को मोदी जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। तब से लगातार मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उनकी सेवा, संघर्ष और समर्पण की ये यात्रा गरीबों का कल्याण, महिलाओं का सशक्तिकरण, युवाओं का उत्थान और हर वर्ग की समृद्धि का पर्याय बन गई है। आज तक ब्यूरो।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

पिगुल बोले हम करके रहेंगे, एम्बिशन नहीं मिशन के लिए जीता हूं। जन्मभूमि से कर्म भूमि तक नरेंद्र मोदी के 25 साल पर जुटे दिग्गज अमित शाह, राजनाथ सिंह ने दी बधाई, वाराणसी में नितिन नवीन मौजूद, योगी आदित्यनाथ पुष्कर सिंह धामी की सेवा ज्योति यात्रा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हुंकार, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के चुनाव ने बता दिया 2027 का नतीजा, लड़ाई फिर 80-20 पर आई, 10 में से

0: और इस समय बात हो रही है विपक्ष इंडिया गठबंधन बनाम चुनाव आयोग की लड़ाई। ये जो रण है इसमें चुनाव आयोग भी विपक्ष के हर आरोप का तथ्यों के साथ उत्तर दे रहा है। दिल्ली में चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष का प्रदर्शन आज फिर तेज हो गया है। बड़ी खबर यह कि कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी विपक्ष के सांसदों के साथ जंतर मंतर अब पहुंचने वाले हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने ये अपने समर्थकों को एक फ्लाइंग किस दी। बड़ी संख्या में जो विपक्ष के सांसद हैं, नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो जंतर मंतर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत ही मंथर गति से, बहुत ही धीरे उनका काफिला आगे बढ़ पा रहा है। हालांकि चुनाव आयोग, जब कांग्रेस पार्टी आरोप लगाती है कि उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा है, तो चुनाव आयोग का कहना है कि विपक्ष की तरफ से मिलने की कोई औपचारिक गुजारिश नहीं की गई। 4 बजे तक का की यही स्थिति थी। अच्छा, जो चुनाव आयोग के लिए वो कह रहे हैं विपक्ष नेता की पार्लियामेंट एनेक्सी में आके मिले और सभी 300 सांसदों से मिले। चुनाव आयोग का कहना है कि जो भी 240 सांसद ने पत्र लिखा, तो वो उन्होंने कहा कि हमने उन्हें कहा कि हम वहां नहीं आएंगे, हम अपना एक अधिकारी भेज देंगे, वो आपका ज्ञापन ले लेगा। लेकिन इसे विपक्ष ने नकार दिया है। और इस समय मेरे सहयोगी, कई सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशांत जुड़ चुके हैं जनपद से हमारे साथ। सुशांत, इस समय क्या स्थिति है? राहुल गौतम भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, क्या ये काफिला आगे बढ़ पाया है?
1: देखिए, काफिला बिल्कुल आगे बढ़ चुका है सागर रत्ना से, जहां पर तमाम लोग जुटे थे। मैं आपको तस्वीरों के जरिए समझाता हूं कि आखिर हो क्या रहा है इस जनपद रोड पर, जहां से तमाम जो बसेस हैं, तीन तीन बसेस यहां से निकली हैं सांसदों से भरी हुई। और आप देख सकते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे को, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके ठीक पीछे आपको नजर आ रही होंगी प्रियंका गांधी वाड्रा। प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ में पवन खेड़ा है, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ में राहुल गांधी बैठे हैं। ये तीसरी बस है जिसके अंदर कांग्रेस के और विपक्ष के नेता मौजूद हैं। इससे आगे भी दो बसेस चल रही हैं गौरव, जिसके अंदर भी जो सांसद है कांग्रेस के या जो विपक्षी दलों के, वो मौजूद है। यहाँ पर लगातार नारेबाजी हो रही है मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ, सरकार के खिलाफ। तमाम जो कार्यकर्ता है वो मोबिलाइज हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा खुद अभिवादन कर रही थी थोड़ी देर पहले, और वोट चोर गद्दी छोड़ का जो नारा है उस पर ताली बजाकर लोगों का उत्साह बढ़ा रही थी अपने कार्यकर्ताओं का। तो कम से कम कांग्रेस के लिए आप ये कह सकते हैं कि वो लगातार सड़क पर बनी हुई है। कल भी हमने देखा एक बड़ा प्रोटेस्ट मार्च निकाला गया इलेक्शन कमीशन के दफ्तर तक। हालांकि उनको अलाउ नहीं किया गया, लेकिन उसके बाद फिर 7 घंटे का धरना हुआ, धरने के बाद डिटेंशन हुई। और आज ठीक आप कह सकते हैं कि कुछ ही मतलब आधे दिन के बाद जो है वो तमाम जो लोग हैं वो फिर जुट चुके हैं और फिर सड़क पर हैं और फिर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना गंभीर मुद्दा ये जो विपक्ष है वो कम से कम मानता है, कम से कम राहुल गांधी मानते हैं। यहाँ पर कुछ प्लेकार्ड्स भी लगे हुए हैं, आप प्लेकार्ड्स भी देख सकते हैं, नो वोट चोरी, नो डेमोक्रेसी चोरी। तो कम से कम जो विपक्ष है वो इस बात से पूरी तरीके से कन्विंस्ड है कि इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज है और जो मुख्य चुनाव आयुक्त है ज्ञानेश कुमार, उनको इस्तीफा देना चाहिए। उससे कम कतई कुछ भी मंजूर नहीं है। और जिसकी वजह से आप देखिए, चाहे धरना हो, चाहे प्रोटेस्ट मार्च हो, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंसिस हो, लगातार सरकार पर, चुनाव आयोग पर दबाव बनाने की कोशिश है कि आखिर इस पूरी लड़ाई को किसी निर्णायक मोड़ पर लेकर जाया जाए या किसी कंक्लूजन पॉइंट पर लेकर जाया जाए, जिस प्रकार से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के मामले में हुआ था।
0: जी अच्छा, ये बताइए, क्योंकि आप लगातार समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ भी संपर्क में हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से इस तरह की बात की जा रही है कि उनको बताया ही नहीं गया कि वो आकाशवाणी भवन की तरफ बढ़ रहे हैं, वहां बैठ रहे हैं, 8 घंटे वहां बैठेंगे। या आज क्या समाजवादी पार्टी के नेता, सांसद, कार्यकर्ता यहां इस विरोध प्रदर्शन का भाग है या आज नहीं है? राहुल,
1: देखिए, आज की अगर बात करें तो आज समाजवादी पार्टी की तरफ से जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो बिल्कुल यहाँ पर मौजूद नहीं है। आप देख सकते हैं कल की तस्वीरें आपको याद होंगी, बहुत सारी लाल टोपियाँ आपको नजर आ रही थी। जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे वो लगातार जो प्रदर्शन था, जो मार्च था, उसमें भी बढ़त बनाए हुए थे।
0: आपको एक मिनट रोकना चाहूंगा, इस समय एक और बड़ी खबर आ रही है। समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं की गैर हाजिरी पर सफाई दी है जयराम रमेश ने, और यही प्रश्न इस समय हम पूछ भी रहे थे कि वो लाल टोपियां आज मौजूद नहीं नजर आ रही हैं। तो लंच का फैसला देर रात लिया गया था, देरी होने से कुछ पार्टियां शामिल नहीं हो पाई। ये जयराम रमेश की सफाई अभी अभी सामने आई है, बेवजह तूल दिया जा रहा है इस मुद्दे को, हम बिल्कुल एकजुट है, ये जयराम रमेश ने अभी इस पर सफाई दी है। समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं की गैर हाजिरी पर ये कांग्रेस पार्टी की ओर से सफाई आई है, और ये सफाई देने की जरूरत संभवतः राहुल इसीलिए पड़ रही है यहां पर कि अच्छा सुशांत के पास चलते हैं, जंतर मंतर पर सुशांत इस समय क्या हो रहा है बताइए हमारे दर्शकों को।
2: देखिए गौरव मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं, क्योंकि यहां से अगर देखेंगे तो राहुल गांधी का जो काफिला है जो कि जिन बसेस के अंदर वो जंतर मंतर की तरफ जाने वाला है, लेकिन ये जो जंतर मंतर के पास जनपद का सर्कल है यहाँ पर बीजेपी के आज कई सारे पोस्टर्स जो है बैनर्स जो है वो लगाए गए थे, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से उन तमाम बैनर पोस्टर्स को जो है वो हटाया जा रहा है, फाड़ा जा रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे सड़कों पर किस तरीके से बीजेपी के तमाम पोस्टर्स बैनर्स जितने भी फ्लैग्स यहाँ पर लगे हुए थे प्रधानमंत्री के, उन तमाम पोस्टर्स को यहाँ पर कांग्रेस वर्कर्स की तरफ से देखिए हटाया गया है। और आज बीजेपी का कार्यक्रम भी था दिल्ली के अंदर प्रधानमंत्री के 25 साल के सार्वजनिक कार्यक्रम को लेकर के, वो तमाम पोस्टर्स जो है वो फाड़े गए हैं। और आपको मैं तस्वीरें दिखा दूं कि ये जनपद का सर्कल है और यहाँ से तकरीबन 400 मीटर की दूरी पर जंतर मंतर है पे जहाँ पर कांग्रेस के लीडर्स जो है वो धरना देने के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन इस पूरी सड़क पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कांग्रेस के कार्यकर्ता इस वक्त सड़कों पर जो है वो नजर आएंगे, ट्रैफिक की आवाजाही जो है वो पूरी थम सी गई है, और सर्कल पर अगर आप देखेंगे तो बड़ी संख्या में कांग्रेस के तमाम वर्कर्स, और उसके पीछे अगर आप देखेंगे झंडों के साथ एक बस आपको ऑरेंज कलर की नजर आएगी जिसमें राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम सांसद इस वक्त मौजूद है,
0: धीरे धीरे वो वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन राहुल ये बात कई लोग उठा रहे हैं और कई विशेषज्ञ भी इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी क्या एक मन है कांग्रेस पार्टी के साथ इस मुद्दे को लेकर, समाजवादी पार्टी के सांसद नेता कार्यकर्ता आज भोजन के समय और भोजन के बाद इस धरने के समय क्यों नहीं है।
1: देखिए अगर कांग्रेस से अगर आप ये सवाल पूछेंगे तो जैसा कि जयराम को रमेश को आपने कोट भी किया, वो साफ कह रहे हैं कि कोई मनमुटाव नहीं है, केवल कोऑर्डिनेशन की कमी थी जिसकी वजह से नहीं आए। कल खुद अखिलेश यादव खास तौर पर इंडिया ब्लॉक का जो मार्च था उसके अंदर आए, ना वो सिर्फ अकेले आए बल्कि अपने साथ में तमाम एक बड़ा आप कह सकते हैं कि दल बल के साथ वो अपने आए, तमाम सांसदों को लेकर आए, आए धरना भी दिया लगातार, उन्होंने सरकार को कटघरे में भी खड़ा किया। तो ऐसी कोई बहुत बड़ी आप कह सकते हैं कि मनमुटाव नहीं है, ठीक है कुछ कोऑर्डिनेशन में कमी हुई जिसकी वजह से वो नहीं आ पाए, लेकिन जाहिर है सवाल तो उठेंगे। बीजेपी आपको ये कह सकते हैं कि उनके लिए एक एप्ट अपॉर्चुनिटी है ये कहने की कि देखिए जो विपक्षी एकता है वो मात्र पेटी इंटरेस्ट के लिए होती है या छोटे छोटे मुद्दों के लिए तो साथ में आ जाते हैं, लेकिन असल में जब राजनीतिक हितों की बात आती है तब लोग अपने अपना आप कह सकते हैं कि अपनी अपनी डफली अपना अपना राग वाला किस्सा है। अभी भी मैं आपको ये बता सकता हूं कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे सभी के जितने भी बड़े बड़े नेता हैं वो यहां पर मौजूद हैं। अभी भी कोशिशें हो रही हैं कि जितना बड़ा दल बदल हम ला सकें सड़क पर या इस प्रदर्शन के अंदर उससे हमको फायदा होगा ऑप्टिक्स वाइज, और जाहिर है बीजेपी नहीं मिलेगा।
0: अच्छा इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, देवेंद्र यादव उनको दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। कल प्रदर्शन करने की इजाजत या क्योंकि वो राहुल गांधी प्रियंका गांधी वाड्रा खुद आकाशवाणी भवन में उस समय घुस चुके थे तो उनका प्रदर्शन रात लगभग 8 बजे तक 8:30 बजे तक चलता रहा, लेकिन आज जंतर मंतर पर सीसी के खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहा है उसमें देवेंद्र यादव कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष को पहले ही हिरासत में ले लिया गया है। तो क्या इस बार पुलिस ज्यादा चौकन्ना है या इस बार केवल कुछ लोग जो अलग से वहां पहुंच रहे थे उनको हिरासत में लिया गया, क्या रणनीति सुशांत इस समय नजर आ रही है दिल्ली पुलिस की?
2: देखिए गौरव फिलहाल अगर बात की जाए तो जनपद का ये सर्कल है, देवेंद्र यादव जो कि दिल्ली कांग्रेस के चीफ है उनको डिटेन कर लिया गया है और यहाँ से अब उनको थाने जो है वो लेके जाया जाएगा, लेकिन सर्कल तक पहुंचने में लगभग कांग्रेस और पुलिस को कड़ी जद्दोजहद जो है वो इस वक्त करनी पड़ी है, क्योंकि बड़ी संख्या में कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो अब सड़कों पर पहुंच गए हैं। कल जिस तरीके से संग्राम देखने को मिला था इलेक्शन कमीशन के बाहर, उससे ज्यादा बड़ी भीड़ तमाम जो कार्यकर्ताओं के साथ है, एक एक करके यूथ कांग्रेस हो, तमाम जो वर्कर्स है, अब वो सड़कों पर पहुंच चुके हैं और झंडों के साथ अगर आप देखेंगे तो आगे बढ़ने की कोशिश। अब पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती, क्योंकि किस तरीके से स्ट्रेटेजी के साथ उन लोगों को, तमाम लीडर्स को जो है वो जंतर मंतर पर लेके जाया जाए, पुलिस की क्या स्ट्रेटेजी है, क्या उनको जंतर मंतर ले जाने की इजाजत जो है वो दी जाएगी या उनको रोका जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि बसों पर किस तरीके से कांग्रेस के वर्कर्स और आपको यहाँ पर सड़कों पर जो है वो नजर आएंगे। दीपेंद्र,
0: अपने कार्यकर्ताओं में लगातार उत्साह भरने का प्रयास कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। सुशांत, आप और राहुल, आप इस बड़ी खबर पर नजर रखिए, लगातार इस पर रहेगी नजर रणभूमि में। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।

0: 200 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पैदल तय करके आदिवासी छात्र नासिक से मुंबई आए थे। छात्रों को लगा था कि नासिक में उनकी सुध किसी ने नहीं ली, लेकिन राजधानी मुंबई में सरकार उनकी मांग सुनेगी, उनसे संवाद करेगी, उनकी मांगे मंजूर करेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुंबई पुलिस ने आदिवासी छात्रों को जबरन बसों में ठूस कर वापस नासिक भेज दिया। इस दौरान जिन छात्रों ने पुलिस का विरोध किया तो पुलिस ने अपनी शैली में उन्हें समझाकर बस में जबरन भर दिया। ऐसे में छात्रों ने पुलिस पर पीटने का आरोप लगाया है।
1: ये पुलिस गुंडा कर दिया, गुंडा कर दी, गुंडा कर दिया। ये बका, ये बका काय केले? आम्ही स्टूडेंट आहे, आम्ही गुंडा कर दे नाही करत आहे, आम्हाला यांनी केलंय।
0: नासिक से मुंबई पहुंचने के बाद से आदिवासी छात्र कांग्रेस मुख्यालय तिलक भवन में शरण लिए हुए थे। आदिवासी छात्रावासों से जुड़ी मांगों को लेकर महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों से 300 से ज्यादा आदिवासी छात्र मुंबई पहुंचे थे। आदिवासी छात्र राज्यपाल से मिलने और अपनी मांगे रखने की मांग को लेकर तिलक भवन के बाहर बड़ी संख्या में इकट्ठा हो रहे थे, लेकिन भारी पुलिस बल की तैनाती ने इनके इरादों पर पानी फेर दिया।
2: जो पूर्ण भारत में पूरे भारत में बोलते हैं मुंबई पुलिस क्यूट पुलिस है, आपने देखा होगा हम विद्यार्थियों को कैसे लातों से मार रहे हैं। हमको हम सीधे सीधे आ रहे थे, लातों बुक्के से देखा दिया। जब महाराष्ट्र की पुलिस क्यूट पुलिस बोलते हैं ना, हम 300-400 किलोमीटर चल के आ रहे हैं, वहाँ से आए, हमको आंदोलन का कुछ भी नहीं मतलब परमिशन नहीं दे रहे, इसलिए हम घर जा रहे, फिर भी हमको मार रहे वो लोग।
0: इन आदिवासी छात्रों ने मुंबई के आजाद मैदान में प्रदर्शन की अनुमति मांगी थी, लेकिन मंजूरी नहीं मिलने के बाद वो तिलक भवन में रुके हुए थे। छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती, वो अपना आंदोलन अलग अलग जिलों में जारी रखेंगे। 5 अक्टूबर को राहुल गांधी ने आदिवासी छात्रों की मांग को लेकर फडणवीस सरकार को घेरा था। आज सीएम फडणवीस ने कहा कि सरकार हमेशा छात्रों के हितों के साथ है और विपक्ष छात्रों के कंधों का इस्तेमाल करना बंद करे।
3: विद्यार्थ्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून आपलं राजकारण चालवण्याचा प्रयत्न आहे। विद्यार्थ्यांना वेठीस धरून या ठिकाणी अराजकता तयार करण्याचा प्रयत्न आहे। राज्य सरकारने विद्यार्थ्यांचे जे जे प्रश्न आले, प्रश्न आहेत का तर हो आहेत, ते जेन्युइन आहेत का तर हो 100% जेन्युइन आहेत, असे सगळे विद्यार्थ्यांचे जेन्युइन प्रश्न सोडवण्याकरता पुढाकार घेतला, निर्णय घेतले। राज्य सरकार पूर्ण त्याबाबतीत सकारात्मक आहे, पण केवळ या ठिकाणी आपल्या लीडरशिप करता, आपल्या पक्षाकरता विद्यार्थ्यांना कोणी वेठीस धरून राजकारण करत असेल, राजकारणाला उत्तर राजकारण, विद्यार्थ्यांचं उत्तर हे कृतीतून।
0: अब आदिवासी छात्र अपनी मांगों को लेकर सरकार के रुख का इंतजार कर रहे हैं। छात्रों ने 25 अक्टूबर को दोबारा मुंबई आकर अपनी मांगों को लेकर बड़ा आंदोलन खड़ा करने का अल्टीमेटम दिया है। दीपेश त्रिपाठी, मुंबई आज तक।
4: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. In association with
1: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
2: और इस समय नेता विपक्ष राहुल गांधी, इंडिया गठबंधन के और नेता जंतर मंतर की तरफ बढ़ रहे हैं। तस्वीरें इस समय आप सीधे देख रहे हैं, इमरान मसूद, इमरान प्रतापगढ़ी दोनों को आप देख सकते हैं, बस के ऊपर चढ़े हुए हैं कांग्रेस पार्टी के दो बड़े नेता, इमरान मसूद और इमरान प्रतापगढ़ी, और कई अन्य नेता और कार्यकर्ता इस समय कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए बस की छत पर आप उनको देख भी सकते हैं। इन तस्वीरों में प्रयास अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाए रखना और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ पूरी तरह से ये कह रहे हैं कि जब तक वो इस्तीफा नहीं देते प्रदर्शन ये चलते रहेंगे। राहुल गांधी समय जैसा आप देख सकते हैं बस के अंदर है और इन्हीं तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जाते हैं एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए आज तक।
3: So sorry.

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: आ गया सोमवार और आ गए
1: चकमक चाचा।
0: एक कचौड़ी दो समोसा चकमक तेरा क्या भरोसा।
2: चकमक चाचा से सीधे चकमक है।
0: अरे नारा है, दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है, महिला लोग एकदम नारा लगाए जा रही, बुझ रहा ना।
2: लेकिन भैया नारे अरे फालतू में सब बेकार, एकदम बेकार। नारे होते थे हमारे टाइम।
0: अच्छा
2: सुनाए, जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, जेपी भाई छूटेंगे।
0: अच्छा तो हमारे टाइम वाले सुनिए, दो कुलचा एक बिरयानी इन नेताओं की खत्म कहानी।
2: अरे जमीन के चकबंदी में, जमीन के चकबंदी में क्या फाइनेंस बंदी में।
0: ठंडी चाय गरम करो चकमक चाचा, शर्म करो।
2: अरे राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर।
0: अरे लाठी गोली खाएंगे, इस्तीफा देके जाएंगे।
2: अरे सुनो, इस दीपक में तेल नहीं, सरकार चलाना खेल नहीं।
0: अरे लाल फूल नीला फूल जंजी नंगे ब्यूटीफुल।
2: अरे बारी बारी सबकी बारी, अबकी बारी अटल बिहारी।
0: चाय गरम दूध गरम चकमक चाचा बेसरम
2: है।
0: हाँ
2: जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है।
0: अरे मेरे सिर में दर्द है जिसका कारण मर्द है आप जैसा।
3: हम जैसे इधर आओ, हम जैसे मर्द नहीं होते किसी नारे से ऑफेंड, हम तो भैया करते हैं हर सही मुद्दे को डिफेंड।
4: दिल्ली पुलिस से कांग्रेस नेताओं की कई बार नोकझोंक हुई, जब पुलिस ने मीडिया को हटाया तो राहुल भी पास आकर खड़े हो गए। राहुल को धरने पर बैठा देख गेट के बाहर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आकाशवाणी कैंपस में खूब हंगामा किया। गेट के पास जाने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने हटा दिया।
5: देश को नरेंद्र मोदी ने वोट चोरी करके हाईजैक किया है, अमित शाह जी ने हाईजैक किया है, मोहन भगवत जी ने हाईजैक किया और ज्ञानेश कुमार ने उनकी मदद की है।
6: ईमानदारी से चुनाव में जनता बार बार उनको परास्त करती है तो रोज नया नया जो बतंगा खड़ा करते हैं।
4: राहुल गांधी से अलग समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को पुलिस ने बस में बिठा लिया, उनके साथ तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन भी थे। इस दौरान अखिलेश चुनाव आयोग पर चुटकी लेना नहीं भूले।
7: अभी पुलिस हमें ज्ञानेश जी से मिलाने ले जा रही है, चीफ इलेक्शन कमीशन। उन्होंने ये कहा है कि वो व्यक्तिगत इस्तीफा देंगे, ऐसे इस्तीफा नहीं देंगे।
4: अखिलेश ने चुनाव आयोग और बीजेपी में मिली भगत का आरोप लगाया और कहा कि बीजेपी चुनाव हारने के डर से बच रही है। दिल्ली पुलिस ने भले ही विपक्षी सांसदों को हिरासत में लेकर संसद नहीं जाने दिया लेकिन विपक्षी सांसद आर पार के मूड में है।
8: बीजेपी जब से आई है तब से चुनाव आयोग ने बीजेपी के लिए काम करना शुरू कर दिया।
9: वो वोट चोर गणेश को रिजाइन करना चाहिए, उसका पहले जाना चाहिए देश से।
10: जया जी कहाँ तक जाएंगे आप लोग, लगातार आप लोग का ये आंदोलन चलेगा?
11: अभी जब तक पैर चलेगा चलेगा।
12: हम पूछना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी से, आप 13 करोड़ बोलते हैं तो आप 2.8 करोड़ मृतक, 1 करोड़ डुप्लीकेट वोटरों को और 6.8 करोड़ शिफ्टेड, चलिए उसमें शिफ्टेड वालों में लोग ये तय कर सकते हैं कि वो किस जगह वोट रखना चाहेंगे। मगर मैं पूछना चाहता हूं ये 2.8 करोड़ डेड और 1 करोड़ डुप्लीकेट, ये भारत की इकोनॉमी को डेड बचाने वाले लोग ये डेड और डुप्लीकेट वोटरों को मताधिकार के साथ कैसे जोड़ रहे हैं? कांग्रेस से स्पष्ट हम पूछना चाहते हैं, वो इस बात का जवाब दे। कांग्रेस पार्टी जो आंतरिक रूप से एक राजतंत्र है जिसने लोकतंत्र का लबादा ओढ़ा हुआ है, वो वास्तविक लोकतंत्र को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, इसलिए वह लोकतंत्र के हर स्तंभ के ऊपर पिछले 12 सालों में निराधार निरर्थक अनर्गल आरोप लगा रहे हैं।

0: सीसी के खिलाफ आर पार के मूड में राहुल गांधी, जंतर मंतर पर देंगे धरना, कहा ज्ञानेश को देना होगा इस्तीफा, बस पर चढ़े कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता। सीएम से पीएम तक जनसेवा के 25 साल, मोदी ने फूंका विकसित भारत का बिगुल, बोले हम करेंगे करके रहेंगे, एम्बिशन नहीं मिशन के लिए जीता। जन्मभूमि से कर्मभूमि तक मोदी के 25 साल पर जुटे दिग्गज, अमित शाह राजनाथ ने दी बधाई, वाराणसी में नितिन नवीन मौजूद, योगी धामी की सेवा ज्योति यात्रा। यूपी में लड़ाई फिर 80-20 पर आई, राज्यसभा चुनाव के नतीजों पर सीएम योगी का एसपी पर तीखा तंज, 2027 का परिणाम साफ, अखिलेश का पलटवार, घमंड का मिलेगा दंड। दिल्ली के सीमापुरी इलाके में गिरी 4 मंजिला इमारत, मलबे में कई लोगों के फंसे होने की आशंका, राहत बचाव का काम जारी।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आज का दंगल चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्षी दलों के आंदोलन को लेकर है। यह आंदोलन आज भी जारी है। दोपहर में लंच के बाद राहुल गांधी ने ऐलान किया है कि इंडिया गठबंधन के सांसद अब जंतर बंतर पर प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि कल चुनाव आयोग के तीनों आयुक्तों ने 300 विपक्षी सांसदों से मुलाकात नहीं की। हालांकि राहुल गांधी और दूसरे प्रदर्शनकारियों को पुलिस जंतर बंतर की ओर बढ़ने से रोका हुआ है। लेकिन दिल्ली में आज कश्मीरी गेट इलाके में भी प्रदर्शन हुआ, जहां पास में ही दिल्ली चुनाव आयोग का दफ्तर है। कल के प्रदर्शन में आम आदमी पार्टी शामिल नहीं थी, लेकिन आज केजरीवाल की पार्टी और लेफ्ट का प्रदर्शन था। दो दिनों के प्रदर्शन और आगे के प्लान को देखकर एक बात साफ लग रही है कि सभी विपक्षी दल अब मुख्य चुनाव आयोग के इस्तीफे की मांग पर एकजुट होते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि यह आंदोलन इस्तीफे से पहले खत्म नहीं होगा, चाहे दिल्ली पुलिस 100 मुकदमे क्यों ना करे। राहुल गांधी कहते हैं कि 300 सांसद चुनाव आयुक्तों से मिलना चाहते थे, पुलिस ने उन्हें उनको मिलने नहीं दिया। उधर चुनाव आयोग कल ही कह चुका है कि विपक्षी सांसदों से मुलाकात की कोई मांग उन्हें नहीं मिली थी और न ही पुलिस से किसी तरह के प्रदर्शन की मंजूरी मांगी गई थी। तो दिल्ली की सड़कों पर यह जोर आजमाइश जो चल रही है वो अभी भी जारी है। इस बीच बंगाल से एक खबर आई है। बंगाल में SIR के दौरान ड्राफ्ट लिस्ट में जिनके नाम कट गए थे उनके नाम और कारण चुनाव आयोग ने वेबसाइट पर जारी कर दिए हैं। दोबारा नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 6 भरने का विंडो भी खोल दिया गया है। तो एक तरीके से चुनाव आयोग की ओर से इस आंदोलन को लेकर कोई लोड तो नहीं लिया जा रहा, लेकिन पिछले कुछ दिनों में लगातार सुधारात्मक कदम आयोग उठाता नजर आ रहा है। ऐसे में दंगल में हम यह चर्चा करेंगे कि क्या चुनाव आयोग के खिलाफ इस आंदोलन का कुछ हासिल निकलेगा आखिरकार। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, जंतर मंतर की तरफ भी आपको लिए चलेंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट।
1: चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ दिल्ली में सीरियल प्रोटेस्ट चल रहे हैं। कल इंडिया गठबंधन के सभी दल सड़क पर थे। आज आम आदमी पार्टी लेफ्ट प्रदर्शन करने पहुंची। इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन ज्ञानेश कुमार के खिलाफ था। केजरीवाल के कार्यकर्ता दिल्ली चुनाव आयोग के दफ्तर जाने की कोशिश कर रहे थे। प्रदर्शन करने तो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के कार्यकर्ता भी उतरे थे, लेकिन कश्मीरी गेट से दिल्ली चुनाव आयोग के दफ्तर तक कोई नहीं पहुंच पाया। एक तरफ ये प्रदर्शन चल रहा था, दूसरी तरफ मंथन। कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के नेताओं को आगे की प्लानिंग के लिए बुलाया, मगर कांग्रेस के अलावा बाकी दलों का कोई बड़ा नेता नहीं दिखा। ना तो अखिलेश यादव, ना अभिषेक, ना सुप्रिया सुले, ना संजय राउत लंच पर पहुंचे। इनमें से कुछ दलों के नेता वहां जरूर पहुंचे। उधर दिल्ली पुलिस ने लंच वाली जगह से जंतर मंतर की ओर जाने वाली हर सड़क पर सख्त निगरानी और चौकसी बढ़ा दी। पुलिस तैयार है फ्लैश प्रोटेस्ट की सूरत में हिरासत में कैसे लेना है।
2: सभी पार्टी के लोग हम मिलके एक होकर इस इशू पे पूरे देश के लोगों को बताना चाहते हैं, हमारा हक जा रहा है, चाहे किसी का कितने भी केसेस करने दो, कितना भी डराने दो, हम डरने वाले नहीं हैं, लड़ते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे।
1: कल दोपहर से रात 10:30 तक आकाशवाणी भवन परिसर में राहुल प्रियंका ने जो धरना दिया, खबर है कि दोपहर में मिली PCR कॉल और लिखित शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया।
3: मेरे पास 45 FIR हैं। मेरा लक्ष्य है कि मुझे 100 चाहिए। मैं चाहता हूं कि मेरे ऊपर 100 FIR लगे। हर FIR मेरे लिए एक मेडल है।
4: Thousands of FIR. Who bothered about it? Let them do.
1: प्लान बस एक, ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा लेना। इसके लिए आंदोलन जारी रखने की योजना। दिल्ली की सड़कों से इंडिया के सहयोगी दल लौट चुके हैं। अब प्रदर्शन की कमान कांग्रेस के हाथ में बच गई है। अभी राष्ट्रपति को ज्ञापन का काम बचा। चेन्नई में राहुल का छात्रों की गूंज कार्यक्रम भी है।
3: तकरीबन 300 MPs लोकसभा के, राज्यसभा के MPs कल इलेक्शन कमिश्नर से मिलना चाहते थे, तीन इलेक्शन कमिश्नर से मिलना चाहते थे, वो हमसे मिले नहीं। दिल्ली पुलिस ने हमें रोका और कल उन्होंने कहा कि आप यहां प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। तो आज हमारी सोच है ये जो डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट है जंतर मंतर, वहां पे हम जाकर सब आज फिर से बैठे और देश को बताएं कि हमारे लिए ज्ञानेश कुमार जी देश के लेजिटिमेट इलेक्शन कमिश्नर नहीं है। मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, मोहन भगवत, ज्ञानेश कुमार जी ने देश के लोकतंत्र को खत्म किया है और मैंने कल भी कहा था जिन्होंने ये काम किया है ये देशद्रोही है और इन पर हम एक्शन लेंगे। मैं आपको अभी बता रहा हूँ ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा देना पड़ेगा।
1: वैसे राहुल गांधी ने कल जो मांगे रखी थी उसे लेकर चुनाव आयोग ने राहुल के दावों को गलत करार देते हुए कहा है कि मीडिया से पता चला कि कुछ सांसद मिलना चाहते हैं। शाम 4 बजे तक कोई समय नहीं मांगा गया था। दिल्ली पुलिस से सूचना मिली राहुल गांधी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल मिलना चाहता है। दलों के साथ मुलाकात की प्रक्रिया तय है। 240 सांसदों के साथ संसद एनेक्सी में मुलाकात असामान्य है, स्वीकार नहीं। वो चुनाव आयोग के अधिकारी को ज्ञापन देने को तैयार नहीं। प्रोटोकॉल का सम्मान करें, आयोग मुलाकात के लिए तैयार है।
5: 60% देश के प्रतिनिधि हैं ये विपक्ष के नेता, ये MPs जो हैं 64% लोगों के प्रतिनिधि हैं। इनसे इस तरह की बदतमीजी करने का ये जो इसने जरूरत की है ज्ञानेश गुप्ता ने, आप ज्ञानेश कुमार बोलते हैं, ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने, इनको समझ में आ जाएगा, होश ठिकाने आ जाएंगे। जब ये देश अपनी वाली पर आ जाता है ना, अच्छे अच्छों के होश ठिकाने आ जाते हैं।
1: जब एक तरफ कांग्रेस पार्टी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग पर बेमियादी आंदोलन कर रही है, तब चुनाव आयोग की 3 खबरें हैं। एक तो आयोग ने कहा कि विपक्षी दलों के सांसदों ने ज्ञानेश कुमार से मुलाकात की कोई मांग नहीं की थी। दूसरी ओर दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में स्पेशल ड्राइव जोर शोर से चल रहा है। और तीसरी ओर बंगाल में जिन वोटर्स के नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं थे उनकी सूची कारण सहित जारी हो गई है और वाजिब वोटर के लिए फॉर्म 6 विंडो खोल दिया गया है। इसी बीच एक खबर अदालत से भी आई जहां मुख्य चुनाव आयुक्त की तैनाती वाला मसला सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच को गया है, जिस पर चीफ जस्टिस ने विचार करने की बात कही है। आज तक देरो।
0: तो लोकतंत्र की नींव होती है निष्पक्ष चुनाव होना, और निष्पक्ष चुनाव पर ध्यान रखने का काम एक तरीके से अंपायर करते हैं जो चुनाव आयोग का काम होता है। तो क्या चुनाव आयोग एक निष्पक्ष तरीके से काम कर रहा है, और इसी बात को लेकर विपक्ष दरअसल सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, इस पर ही चर्चा करेंगे। हमारे साथ सिद्धार्थ यादव भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, प्रोफेसर रतन लाल कांग्रेस पार्टी की तरफ से चर्चा में आ रहे हैं, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी से, राघवेंद्र द्विवेदी प्रवक्ता SBSP के, और स्वयं प्रकाश पुरोहित तृणमूल कांग्रेस के तरफ से चर्चा में शामिल होंगे। 3 सवाल इस पैनल के सामने। क्या CEC के इस्तीफे की मांग पर राहुल गांधी जंतर बंतर पर बेमियादी आंदोलन करेंगे, क्योंकि राहुल 10 तारीख को वहां पर कांग्रेस जनता पार्टी ने भी कॉल दिया है कि जंतर मंतर पर वहां आंदोलन करना चाहते हैं, लेकिन क्या यह बेमियादी आंदोलन होगा। दूसरा सवाल, विपक्ष के सांसद CEC ज्ञानेश कुमार से क्यों मुलाकात करना चाहते हैं। और तीसरा सवाल, राहुल गांधी ने ज्ञानेश कुमार को अवैध CEC क्यों कहा है। 3 सवालों के आसपास ये चर्चा होगी, लेकिन शुरुआत सिद्धार्थ यादव वापिस से करनी होगी। लेकिन आपके पास आने के पहले जरा एक बार देख लेते हैं कि क्या जंतर मंतर की तरफ जो कांग्रेस के सांसद विपक्षी सांसद निकले वो कहां तक पहुंचे। हमारे साथ सुशांत मेहरा और मौसमी सिंह इस वक्त जुड़ रही है। मौसमी, बसें वहां से निकल गई थी, मैं आपकी रिपोर्ट देख रहा था इससे पहले, लेकिन बैरिकेटिंग सब जगह पे इतनी तेज कर दी गई है कि क्या जंतर मंतर पर उन्हें जाने दिया जाएगा, और क्या कांग्रेस पार्टी का ये प्लान बेमियादी तौर पर वहां पर आंदोलन करने का है या आज का आंदोलन होगा।
6: देखिए साहिल, अभी आपको बता दें कि ग्राउंड पे सिचुएशन क्या है। पीछे मेरे दाहिने हाथ पे आप देखें तो ये राहुल गांधी की बस है जो यहाँ पे पहुंच गई है। यहाँ पे आप देखें तो जंतर मंतर पर यहाँ पे जो रास्ता जाता है जंतर मंतर, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अनाउंसमेंट हो रही है। ये वो लक्ष्मण रेखा है जो दिल्ली पुलिस ने खींची है, और इससे आगे राहुल गांधी और इंडिया ब्लॉक के सांसदों को जाने नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे ये बताया गया है कि कांग्रेस देख रही है कि अगर जंतर मंतर, वो ECI जाना चाहते हैं, पर अगर जंतर मंतर में प्रोटेस्ट करने देंगे तो फिर जंतर मंतर पर बैठेंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं लगता कि दिल्ली पुलिस का कोई भी मूड है कि राहुल गांधी जंतर मंतर पर धरने पर बैठे। यहाँ पे आप देखिए कि तमाम यूथ कांग्रेस के और NSUI के कार्यकर्ता ऊपर बस पे चढ़ गए हैं, और ये है राहुल गांधी की बस। यहाँ पे आप देखिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और खड़गे इस बस में नजर आ रहे हैं। वो देखिए आप राहुल गांधी को देख सकते हैं, खड़गे को देख सकते हैं और प्रियंका गांधी इशारा कुछ करना चाह रही है, ऊपर आपको इशारा कर रही है कि ये लोग जो ऊपर चढ़ रहे हैं उनकी तरफ इशारा करिए। बहरहाल राहुल गांधी यहाँ पे बैठे हैं, तमाम सांसद भी है, माई वोट माई राइट। और ये वो तस्वीर है जिसके बाद आगे की रूपरेखा तय होगी कि आखिर राहुल गांधी यहाँ से आगे यहीं धरने पर बैठेंगे या यहीं।
0: सुशांत के पास जाने से पहले जल्दी से मौसमी एक सवाल का जवाब कि जिस तरीके से कल चुनाव आयोग ने एक प्रेस रिलीज निकाला था और कहा था कि एक प्रोसीजर के तहत हमसे मीटिंग मांगी, हम आपसे मिलने के लिए तैयार है, तो क्या कोई खत विपक्षी पार्टियों की तरफ से ज्ञानेश कुमार को भेजा जाएगा या चुनाव आयोग को भेजा जाएगा मीटिंग के लिए? एक एक मिनट, सुशांत के यहां पर कुछ एक्शन हो रहा है, पहले सुशांत से अपडेट ले लेते हैं। सुशांत क्या हो रहा है?
7: देखिए
0: जी हम देख पा रहे हैं।
7: साहिल मैं आपको बता दूं कि पुलिस की स्ट्रैटेजी देखिए किस तरीके से तमाम जो कांग्रेस के वर्कर्स हैं उनको डिटेन करना पुलिस ने शुरू कर दिया है। राहुल गांधी की बस जैसे ही जंतर मंतर के गोल चक्कर के पास पहुंची वहां पर तमाम जो वर्कर्स हैं अब उनको दिल्ली पुलिस की तरफ से देखिए बड़ा एक्शन। क्या स्ट्रैटेजी थी दिल्ली पुलिस की कि किस तरीके से जंतर मंतर के पास लाए बड़ी संख्या में पुलिस बल और एक एक करके जो बसों पे तमाम जो वर्कर्स चढ़े थे राहुल गांधी की बस के आगे जो तमाम कार्यकर्ता इस वक्त नारेबाजी लगा रहे थे उन सबको अब दिल्ली पुलिस ने डिटेन करना यहाँ पर शुरू कर दिया है। लाइन से अगर आप देखेंगे तो कई सारी बसेस जो है वो लगाई गई थी। दिल्ली पुलिस लगातार ये हम सब सोच रहे थे कि क्या स्ट्रेटेजी है, क्या इनको जंतर मंतर पर जाने दिया जाएगा, लेकिन जो तमाम वर्कर्स हैं उनको यहाँ पर अब दिल्ली पुलिस की तरफ से देखिए किस तरीके से एक स्ट्रेटेजी के तहत वर्कर्स को जो है वो अब डिटेन करती हुई पुलिस जो है वो नजर आ रही है। इसके अलावा जो
0: क्या दिल्ली पुलिस से कोई इसके बारे में इत्तला की गई है कि जंतर मंतर पर आंदोलन की इजाजत उन्हें दी जाएगी या नहीं दी जाएगी? क्या जंतर मंतर पर जाने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा?
7: देखिए इस तरीके से देखिए फिलहाल जिस तरीके से पुलिस यहाँ पर डिटेन कर रही है यानी निश्चित तौर पर अब जंतर मंतर जाने की इजाजत जो है वो तमाम कांग्रेस के नेताओं को शायद ना दी जाए क्योंकि बीएनएस 163 जो है वो इम्पोज है। ऐसे में जो कांग्रेस की स्ट्रेटेजी थी वो वहां जाकर के जंतर मंतर पर धरना दे उससे पहले ही पुलिस ने तमाम जो वर्कर्स हैं जो कि यहाँ पर नारेबाजी कर रहे थे पोस्टर बैनर्स फाड़ रहे थे उन सबको यहाँ पर अब डिटेन कर रहे हैं। पुलिस और वर्कर्स के बीच में इस वक्त जबरदस्त जो झड़प है वो देखने को मिल रही है किस तरीके से वर्कर्स जो है वो भिड़ते हुए पुलिस से नजर आ रहे हैं और पुलिस एक एक करके तमाम बसों के अंदर जो है वो यहाँ पर वर्कर्स को जो है वो भरती हुई नजर आ रही है। देखिए कि एक एक दो दो कार्यकर्ताओं पर 10 पुलिसकर्मी जो है वो उठा रहे हैं। यहाँ पे देखिए अभी दूसरी तस्वीर दिखाता हूँ, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि यहाँ पर महिला जितनी भी वर्कर्स थी उनको भी पुलिस की तरफ से यहाँ पर डिटेन जो है वो किया गया है। देखिए
0: ठीक है
7: साहिल ये तस्वीरें देखिए अभी मैं आपको ये तस्वीर और दिखाऊं कि पीछे अगर आप देखेंगे तो राहुल गांधी इस वक्त जो है वो बस में आपको यहाँ पर नजर आएंगे, वो बस में इस वक्त मौजूद है और अब आगे की तरफ जितने भी कार्यकर्ता थे उन सब को अब धीरे धीरे पुलिस जो है वो बसों में भर रही है क्योंकि
0: एक तरीके से दिल्ली पुलिस की पूरी घेराबंदी करके रखी है। ये तस्वीरें जरा लाइव रखिएगा, ये तस्वीरें जरा लाइव रखिएगा, ये तस्वीरें मेरे ख्याल से दीपेंद्र हुड्डा कुछ कहना चाह रहे हैं, जरा सुनते हैं।
7: और पुलिस
0: जी दीपेंद्र हुड्डा कुछ कह रहे हैं, जरा सुनते
7: हैं।
8: ये सही नहीं है, ये चोर इलेक्शन कमीशन को बचाने के लिए सारा काम कर रहा हूँ।
9: देखिए चुनाव आयोग और भाजपा की मिलीभगत से सरकार बनी है और इसीलिए सरकार जनता ने नहीं बनाई, इसीलिए सरकार जनता पर इस तरह की बर्बरता करने का एक साहस कर पा रही है।
10: कार्यकर्ताओं को आपको डिटेन किया जा रहा है, सभी कार्यकर्ता
9: कुछ करें, हमारी लड़ाई जारी रहेगी, हम ऐसे पुलिस की बर्बरता से पीछे हटने वाले नहीं है, हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे।
10: प्रदर्शन कल की तरह आज भी रहेगा?
9: जब तक देशवासियों को न्याय नहीं मिलेगा, देश में प्रजातंत्र और संविधान का राज नहीं आएगा, तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी।
0: मौसमी अभी सुशांत मेहरा की यह रिपोर्ट है कि दीपेंद्र हुड्डा के साथ साथ बाकी सारे जो वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता है उनको हिरासत में लिया जा रहा है। राहुल गांधी वहां से कितनी दूरी पर है, कितनी दूर है वहां से राहुल गांधी?
6: साहिल सभी लोग वहीं पे हैं जहां पे हिरासत में लिया जा रहा है। राहुल गांधी इस बस में है, यहाँ पे ये जो धक्का मुक्का देख रहे हैं आप थोड़ा नासर खींच रहिएगा, ये जो धक्का मुक्की आप देख रहे हैं वो यहीं पे हो रही है, थोड़ा हाइट में दिखाइए कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो ये आप देखिए यहीं पे हिरासत में लिया जा रहा है राहुल गांधी। ये सीन अपने आंखों के सामने उनको क्लियर कट नजर आ रहा है और यहाँ पैरामिलिट्री फोर्स काफी ज्यादा भारी तादाद में बढ़ गई है। ऊपर आप देखिए राहुल गांधी अब उतरने वाले हैं, उधर दिखाइए अब राहुल गांधी आगे बस के दरवाजे की तरफ जा रहे हैं और प्रियंका गांधी यहाँ पे वो भी आगे आते हुए सभी सांसद अब उतरने जा रहे हैं। और ये वो वक्त है जब आप देखिए ऊपर ड्रोन चल रहा है, एनएसयूआई के कार्यकर्ता बस के ऊपर है और राहुल गांधी बस से बाहर आ गए हैं, उनके पीछे राजा वारिंग और उनके पीछे प्रियंका गांधी और सारे नेता जो हैं अब बाहर उतर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे बस में बैठे हैं और उनके सामने ही राहुल गांधी के सामने जब कार्यकर्ताओं को
0: लगता है मौसमी की वो खुद ही पैदल ही अब जंतर मंतर के पास चलेंगे। आपने कहा कि जंतर मंतर के गोल चक्कर के पास वहां पर ये बसें रोकी गई थी, क्या पैदल ही अब जंतर मंतर की तरफ चलेंगे या वहीं पर आंदोलन होगा? यह राहुल गांधी की तस्वीरें यहां पर दिख रही है, राजा वारिंग भी उसमें दिखाई दे रहे हैं, बस से उतर कर राहुल गांधी जंतर मंतर की तरफ जाते हुए।
6: जी बिल्कुल, देखिए राजा वारिंग और राहुल गांधी लोग जो जहाँ पे उतरे हैं वो बिल्कुल 300-500 मीटर की दूरी है सिर्फ। ये रास्ता है जो आप देख रहे हैं, ये रास्ता है, ये जैसे ही आप 2-4 मिनट आगे चलेंगे तो जंतर मंतर का गोल कर आ जाता है और ऐसे में राहुल गांधी पैदल जा तो सकते हैं पर उनको जाने नहीं दिया जाएगा। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा बंदोबस्त है सुरक्षा का, बहुत कड़ा बंदोबस्त है और देखिए कि मैं कह सकती हूँ 100-200 सुरक्षा कर्मी सिर्फ इस गोल चक्कर के पॉइंट पर तैनात है। आप नासिर हाइट हम लोग कोशिश करेंगे अगर खड़गे बात करेंगे तो उनसे भी बात करते हैं,
0: ठीक है।
6: पर राहुल गांधी बस के बाहर,
0: तो राहुल गांधी को हम ट्रैक कर रहे हैं। राहुल गांधी क्या पैदल ही जंतर मंतर की तरफ चलेंगे, तस्वीरें लाइव रहेगी और बीच बीच में हम मौसमी और सुशांत मेहरा के पास अपडेट के लिए जाते रहेंगे। लेकिन सिद्धार्थ यादव, क्या राहुल गांधी को आज प्रदर्शन नहीं करने दिया जाएगा? कल वो कह रहे थे कि एक जगह बताइए वहां जाके बैठ जाएंगे, क्योंकि कल तो FIR जो हुआ है उसमें सरकारी काम में बाधा डालने का और BNSS की धारा 163।
11: ये कोई तरीका है? आप देख रहे क्या कर रहे हैं उनको और आप यहाँ क्यों खड़े हो? जाके बचाओ उसको।
0: सिद्धार्थ यादव।
12: साहिल जी नमस्कार, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। साहिल जी, जहां प्रदर्शन वो करना चाहे और कानून संगत देश के संविधान का पालन करते हुए जब वो करना चाहे

0: अपने पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट स्कोर करने के लिए उस पर आरोप लगाते रहेंगे और फिर बोलेंगे हम तो वहां जाना चाहते थे। तो ये जो राहुल गांधी के पॉलिटिकल थिएट्रिक्स है, देश इसको अच्छे से समझता है और मैं यूं कहूं कि देश इससे उब चुका है। आप जिस बात को सैद्धांतिक रूप से कहना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जिस बात का विश्लेषण ऑलरेडी चल रहा है, वहां पार्टी आप स्वयं ना बन करके उससे पहले कि सुप्रीम कोर्ट कुछ कहे अपना वर्डिक्ट फाइनल करके, उस वर्डिक्ट को सुना करके और पॉलिटिकल थिएट्रिक्स के लिए उतर जाए, देश इसका हिसाब मांगेगा। ये केवल किसी पार्टी का विषय नहीं है
1: रतनलाल,
0: या ये किसी के, मैं 10 सेकंड ले रहा हूं केवल, मैं बड़ी गंभीरता से एक बात कहता हूं,
1: ये
0: किसी एक पार्टी या किसी एक नेता का विषय नहीं है, ये देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था, देश की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का विषय है। कोई भी शब्द जो इन विषय में कहा जाता है, जो अनसब्सटेंशिएटेड है, जिसका सत्यापन नहीं हो सकता, वो देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करने का शब्द है। तो राहुल गांधी अपने गिरबान में झांक करके देखें कि केरल की जीत तो बहुत अच्छी लगी और दूसरी नहीं लगी, खारते क्यों हैं, किस लिए वो चुनावों में परास्त हो जाते हैं, उसका विश्लेषण करेंगे तो बेहतर होगा, इस थिएट्रिक्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
1: ठीक है, लेकिन अगर ज्ञानेश कुमार को या चीफ इलेक्शन कमिश्नर को विपक्षी सांसद मिलना चाहते हैं तो क्या आपको लगता है कि सीईसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए उस बात को लेकर? आखिरकार वो अंपायर है, एक मैच खेली जा रही है जिसमें विपक्ष भी है, पक्ष भी है, और अगर विपक्ष कहता है कि अंपायर गलत कर रहा है, थर्ड अंपायर के पास मुझे जाना चाहिए, थर्ड अंपायर की भी सिस्टम होती है, तो क्या उसमें गलत है? देखिए, मुझे 2011-12 याद आ रहा है, जब रामलीला मैदान पर रामदेव बाबा बैठे थे आंदोलन के लिए और पुलिस ने उन पर एक्शन लिया था, उसके बाद अरुण जेटली
0: छोटा सा कॉन्फ्रेंस की थी,
1: उन्होंने राज्यसभा के नेता विपक्ष थे और उन्होंने इस बारे में कहा था कि आंदोलन करना अधिकार है, पुलिस इस तरीके से एक्शन नहीं ले सकती। मुझे सिर्फ याद आ रहा है, मैं आपको याद दिला रहा हूं।
0: मैं छोटा सा उत्तर देता हूं आपको, 2011-12 याद करने की जरूरत नहीं है, आप मई 2025 ही याद कर लीजिए। इलेक्शन कमीशन ने सभी पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाया था, केवल कांग्रेस पार्टी नहीं गई थी, केवल कांग्रेस पार्टी, इलेक्शन कमीशन को आकर के कहना पड़ा था कांग्रेस पार्टी इज द ओनली नेशनल पार्टी जो नहीं आई। अगस्त 2025 को याद कर लीजिए, जब इलेक्शन कमीशन ने 30 सांसदों की डेलीगेशन को बुलाया था, कांग्रेस पार्टी मना कर गई थी, तब भी सड़क पर थिएट्रिक्स करे और चले गए। कल भी इलेक्शन कमीशन ने बोला कि हम आ जाइए, आप हम आपको बुलाते हैं, फिर भी नहीं गए। ये इलेक्शन कमीशन के पास नहीं जाना चाहते, ये थिएट्रिक्स करना चाहते हैं साहिल जी। इनको समझ में आ गया, इनको ऐसा अच्छा लग रहा है कि हमें अच्छा कैमरा फुटेज मिल जाएगा, हम सड़क पर बैठेंगे, चार बात सुन ली जाएंगी, जनता हमारी बात सुनती नहीं, केवल और केवल पॉलिटिकल थिएट्रिक्स है। नहीं तो इलेक्शन कमीशन बार बार बुलाए और आप जाएंगे नहीं, सुप्रीम कोर्ट बार बार बुलाए और आप जाएंगे नहीं, और सड़क पर कुछ और बात कहेंगे, ये बात नहीं चलेगी।
1: लगता है सरकार मानने को तैयार नहीं है इस बात को लेकर, ना ही सीईसी। रतनलाल जी आवाज आ रही है आपको?
2: जी
1: आवाज आ रही है।
2: नहीं, पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिक्स करेगी कि भजन करेगी, ये सवाल इनसे पूछिए। ज्ञानेश कुमार इज अ क्रिमिनल, डेमोक्रेसी हाईजेक कर लिया है और उसका सरगना जो है अमित शाह और मोदी। पॉलिटिकल पार्टी का काम भजन करना थोड़ी, इनके नेता जाके भजन करते हैं, पॉलिटिक्स में इतना राम मंदिर में चंदा चोरी ये लोग किए हुए सारे इनके नेता। अरे डेमोक्रेसी हाईजेक हो चुका है और ज्ञानेश कुमार पूरे देश परसेप्शन से चलता है। क्या मनमोहन सिंह ने करप्शन की थी क्या? तुझी और कोल आवंटन आपने सीएजी को लेकर परसेप्शन बना दिया और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी किया उनको। परसेप्शन ये बन गया है कि ये चंदा चोर है, वोट चोर है, नेता चोर है, पार्टी चोर है और उसका सरगना अमित शाह मोदी है, अब पीछे आरएसएस बैठा हुआ है। अब देश में उबाल हो रहा है, पॉलिटिकल पार्टी
1: बना रहे हैं ना
2: जी।
1: बड़ी दिलचस्प बात आपने कही रतनलाल जी, इस बात ये बात तो मानते हैं कि मनमोहन सिंह को बरी कर दिया अदालत ने इस पूरे उन पूरे मामलों से, लेकिन ये भी आप परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का इंतजार करेंगे।
2: हम कॉलेज, सुनिए साहिल भाई, हम कॉलेज में पढ़ाते हैं, हमको प्रिंसिपल से मिलने के लिए हमको मेमोरेंडम देना पड़ेगा क्या? हैं? ज्ञानेश कुमार आके देश की जनता के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, 12-14 साल हो गया, एक भी नरेंद्र मोदी का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है क्या? आप इतने बड़े, इतने पॉपुलर हैं आप, तो आप बैलेट पेपर से चुनाव करा लो, फिर भी जीत जाओगे, कराओ ना चुनाव। ये वोट चोर है, क्रिमिनल है, पता कीजिए साहिल भाई कि ये अभी ज्ञानेश कुमार देश में भाग गया, इसका पासपोर्ट जब्त करिए पहले, सबसे पहले
1: जल्दी से एक बात का जवाब दीजिए। ज्ञानेश कुमार, आप ज्ञानेश कुमार को मिलना क्यों चाहते हैं? कांग्रेस पार्टी ज्ञानेश कुमार को मिलना क्यों चाहती है? आप
2: सुनिए ना साहिल भाई,
1: तो आप ज्ञानेश कुमार को मिलना क्यों चाहते हैं? आप तो उनका इस्तीफा चाहते हैं।

0: राष्ट्रीय अधिकार मेरे
1: मिलना क्यों चाहते हैं आप उनसे?
0: जहाँ पे संविधान जिंदाबाद ये बोले कि डेमोक्रेसी जिंदाबाद, मनुस्मृति मुर्दाबाद, बोले जरा इनसे। ये अम्बेडकर नेहरू का पुतले फूकने वाले लोग हैं, संविधान चलाने वाले लोग हैं, संविधान बदलने वाले लोग हैं, डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं? इनको डेमोक्रेसी का डी नहीं पता है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेहरू कैबिनेट में थे कि नहीं थे? अम्बेडकर नेहरू कैबिनेट में थे कि नहीं थे?
1: सिद्धार्थ यादव,
2: मैं
1: जी यही दिक्कत होती है, हम इतिहास से ज्यादा अगर हम लोग
0: मुखर्जी
1: अगर आज की स्थिति पर बात करें तो बेहतर होगा। इतिहास खंगालने जाएंगे तो कुछ पन्ने ऐसे निकलेंगे कि सबकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी, इसीलिए हम आज की स्थिति पर रहते हैं और ये आंदोलन यहाँ पर चल रहा है उस पर बात करेंगे, ज्यादा बेहतर होगा मेरे ख्याल से।
2: नहीं ठीक है, साहिल जी मैं उत्तर देता हूँ। देखिए कांग्रेस पार्टी के
1: प्रवक्ता ने, मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है,
2: मैं छोटा सा उत्तर दे रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने आपके शो पर यह कबूल लिया कि वो केवल राजनीति कर रहे हैं, भजन कर थोड़ी करने गए हैं, राजनीति करने गए हैं, राजनीति कर रहे हैं, सड़कों पे दिखा रहे हैं, मैं उनको बधाई देता हूं। पर उन्होंने कहा मैं टीचर हूं, प्रिंसिपल से मुझे मिलना होगा तो मैं मेमोरेंडम दूंगा। नहीं, प्रिंसिपल से कमरे में कभी भी घुस जाइए, कभी भी आ जाइए, ना जाने कौन से कॉलेज में पढ़ाते हैं ऐसा। अरे कोई टीचर होगा, कोई स्टूडेंट होगा, टीचर से मिलेगा, आप भी टीचर बता रहे हैं खुद को, कोई बोलेगा समय तय कर लेते हैं। ये लॉकडाउन प्रिंसिपल है। अरे अरे रतनलाल जी, आपके बीच में नहीं बोला था, ये लॉकडाउन प्रिंसिपल है, लिखित में ऑर्डर है, ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव है हर पार्टी का, इलेक्शन कमीशन से मिलने का प्रोसीजर सेट है। आप इलेक्शन कमीशन एक बायस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, अनबायस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वहां पर आप मिलने जाएंगे, क्या तरीका होगा, तौर होगा? नहीं, छोड़िए उसको,
0: आप विपक्ष में थे तो स्मृति नारी या
2: राजनाथ तरीका नहीं है। इनकी स्थिति इतनी बुरी हो चुकी है कि टीवी पे भी लगातार बड़बड़ाते रहेंगे, बड़बड़ाते रहेंगे, ना जाने कहां इनके दिमाग में क्या चलता है।
0: रामलीला ग्राम में
2: सुन लीजिए ना, प्रभु बात सुन लीजिए, आपने बात बोली, आपके बीच में कोई बोला क्या? आप झूठ बोल रहे
1: हैं। दोनों को दिखाइए विंडो में, एक सवाल सिद्धार्थ यादव,
0: आचार बनाने जा रहे थे, सारे देश को लूटा है आपने।
1: एक सवाल पूछिए, धन चोरी की है, ठीक है रतनलाल जी, सिद्धार्थ यादव एक मिनट, रतनलाल जी प्लीज एक एक आज चुनाव आयोग पर बात करेंगे हम लोग। सिद्धार्थ यादव एक सवाल, तमाम विपक्षी पार्टियां देखिए, कल तक तो अरविंद केजरीवाल भी वहां पर नहीं थे, वो भी आज आंदोलन में उतर गए, सीपीएम भी आंदोलन में उतर गई। यहां पर हम देख रहे हैं कि बीजू जनता दल जो एक वक्त पे समान दूरी बनाए रखा था कांग्रेस पार्टी से और आपसे भी, वो भी कल वहां पर आंदोलन में नजर आए। तमाम विपक्षी पार्टियां अगर किसी बात को लेकर सवाल उठा रही है, आपको नहीं लगता? मैंने इसलिए क्रिकेट की एनालॉजी दी, दो टीमें खेल रही है, एक टीम कहती है कि हमें अंपायर पर भरोसा नहीं है, अंपायर गलत कर रहा है, अंपायर का यह दायित्व नहीं बनता कि कम से कम उनसे मिले, उनसे बात करे, उनके मन में जो सवाल है उसके जवाब दे, खास करके जिस तरीके से माहौल आज की स्थिति में बना है, कम से कम इतना तो हो सकता है ना सिद्धार्थ यादव जी, मिल तो सकते हैं ना, मिलने में क्या दिक्कत है?
2: नहीं, कागज दिखा रहे हैं, उन्होंने मिलने का समय दिया, ये नहीं पहुंचे, उससे ज्यादा ही है, उससे ज्यादा ही इलेक्शन कमीशन आउट ऑफ बाउंड, आउट ऑफ रूल्स जाकर के इनको मिलने का बुला रहा है, पर ये पहुंचे नहीं। पर आपने कहा तमाम विपक्षी पार्टियां, नहीं साहिल जी बिल्कुल तमाम नहीं, ये आज ही इंडियन एक्सप्रेस तो बहुत इनका फेवरेट अखबार है, उसी की खबर है आज सुबह की, ये क्या लिखा है इस खबर के अंदर, इंडिया अलायंस नॉट हैप्पी विद गांधीज इम्प्रॉम्प्टू प्रोटेस्ट, कांग्रेस फायर फाइट्स। सभी विपक्षी पार्टियों ने जो कल फुटेज खाने के लिए राहुल गांधी ने अपना पॉलिटिकल थिएट्रिक्स करा, उस पर विरोध दर्ज कराया है, कोई नहीं पहुंचा। कहां थे? आपने मीटिंग करी, हेमंत सोरेन पहुंचे नहीं, अखिलेश यादव पहुंचे नहीं, उद्धव ठाकरे पहुंचे नहीं, डीएमके ने तो कह दिया जहां कांग्रेस होगी वहां जाएंगे नहीं।
1: राजनीति में इंटरेस्टेड है तो आप रही है, ठीक है। नहीं देखिए, मैं राजनीति में इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं सिर्फ इस बात को समझता हूं कि अगर, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा कि लोकतंत्र की नींव होती है निष्पक्ष चुनाव, निष्पक्ष चुनाव पर नजर रखने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है, अगर इतने सारे सवाल चुनाव आयोग पर उठाए जा रहे हैं तो एक छोटी प्रेस कॉन्फ्रेंस तीनों चुनाव आयुक्त एक साथ बैठकर करें, हर सवाल का जवाब दे, ये तो जनता डिजर्व करती है ना, आखिरकार जनता जा रही है वहां पर वोट देने के लिए, इतना तो जनता डिजर्व करती है ना। बाकी कांग्रेस पार्टी विपक्षी दल अपनी राजनीति करते रहेंगे, आप उसका जवाब देते रहेंगे, लेकिन अगर किसी के मन में संदेह है तो कम से कम चुनाव आयोग को सामने आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में क्या दिक्कत है? यह बात मुझे आज तक नहीं समझ में आ रही है। वो प्रेस रिलीज शाम को भेज देते हैं कि हमको मिलने के लिए एप्लीकेशन दीजिएगा, लेकिन इतने दिन से जो सवाल उठा जा रहे हैं, एक के बाद एक प्रेस रिलीज आता है, कहते हैं कि आप स्पेशल ड्राइव करेंगे, कहते हैं कि आप अभी जो जैसे बंगाल के भीतर हुआ है, आज उन्होंने सारे रीजनिंग बता दिया है कि ड्राफ्ट लिस्ट में से नाम क्यों निकाल दिए गए थे, अब उनको बोला गया फॉर्म नंबर 6 भरिएगा, दोबारा आपको लिया जाएगा। भाई ये सब करेक्शन हो रहा है, उससे बेहतर है कि वो सामने आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, क्यों नहीं हो सकती प्रेस कॉन्फ्रेंस? ये बात मुझे अभी तक नहीं समझ में आ रही है सिद्धार्थ यादव जी, अगर आप समझा सकते हैं तो आप बताइए, उसके बाद स्वयं प्रकाश पुरोहित के पास चलूंगा। नहीं समझ में आ रही है मुझे, क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती, क्यों नहीं जनता का अधिकार है प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने का उनका?
2: नहीं देखिए साहिल जी, आप मुझसे पूछेंगे तो इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करे, इलेक्शन कमीशन आपके शो पर भी आकर के बातचीत करे, इलेक्शन कमीशन मैक्सिमम कम्युनिकेशन के चैनल का प्रयोग करे, ऑलरेडी कर भी रहा है इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट जवाब भी दे रहा है इलेक्शन कमीशन, प्रेस रिलीज भी दे रहा है इलेक्शन कमीशन, इनके झूठ को फैक्ट चेक भी कर रहा है, वो माध्यम और बनने चाहिए, आपकी बात है। हम अब राजनीतिक पार्टियों को तो हम ओल्ड अकाउंटेबल कर सकते हैं, मैं तो खुद एक पॉलिटिकल पार्टी हूं, पर मेरा प्रश्न दूसरा है, मेरा कहना यह है कि आप सूरज को चांद कहते रहेंगे और फिर कहेंगे कि नहीं सब लोग चांद कहिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताइए कि ये चांद नहीं सूरज है, और रोज करिए प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो कितनी बार होगा कैसे होगा वो भी चिंता का विषय है। दूसरी बात, इलेक्शन कमीशन ने तो मिलने का प्रोसीजर प्रिस्क्राइब कर दिया, आपको वो पसंद नहीं आया, आप पहुंच गए थिएट्रिक्स करने, उसके बावजूद आपको बुला लिया। मैं कहता हूं सोल्यूशन पर क्यों नहीं काम कर रहे, केवल और केवल ड्रामा क्यों, आप सोल्यूशन पर काम कर लेते, कोई सुझाव दे देते, आपको पहले
1: बुलाया।
2: कौन सा
1: बंगाल के भीतर आप लाखों वोटर्स को निकाल देंगे? मैं बता रहा हूं ना कि लाखों लोगों का वोटर लिस्ट से नाम कट जाता है, और अभी आप ड्राइव वहां पर चला रहे हैं, वहां पर आप बता रहे हैं कि आप दोबारा आप आ जाइए करके, आपका नाम कट गया था ये कारण से कट गया था, आप फॉर्म नंबर 6 भर के दोबारा आ जाइए, आपका एक चुनाव में आपका वोट नहीं डाला
2: साहिल जी। फिर तो मुझे लगता है कि आप
1: प्रश्न कोई तो सवाल पूछेगा ना,
2: पूरी बंगाल की एक्सरसाइज सुप्रीम कोर्ट
1: ने, सुप्रीम कोर्ट पर नहीं सवाल उठा रहा, मैं तो चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहा,
2: एक एक स्टेप बंगाल का एक एक स्टेप सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में हुआ, तो आप वहां भी प्रश्न पूछ और पूछ सकते हैं आप, पूछिए मेरे को, मैं मना नहीं कर रहा आपको,
1: मैं बता रहा हूं आपको सवाल किस पर उठा रहा हूं, मैं बता रहा हूं स्वयं प्रकाश पुरोहित आपको इसमें आना है, मैं बता रहा हूं सवाल किस बात पर उठा रहा हूं, या तो चुनाव आयोग उस वक्त सही था जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भरोसा रखा, उस प्रक्रिया पर वो सही था, मान लेते हैं सुप्रीम कोर्ट ने उन पर भरोसा रखा, बोल दिया उनको कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, फिर ये करेक्शन क्यों कर रहे हैं अभी आप? कहीं ना कहीं तो गलती हुई है, तभी तो आप करेक्शन कर रहे हैं ना,
2: करेक्शन नहीं है,
1: नहीं गलती हुई होती तो करेक्शन की नौबत ही नहीं आती।
2: कंटीन्यूअस एक्सरसाइज है, एसआईआर होगा या नहीं होगा, फॉर्म 6 से वोट बन सकता है, आज से नहीं बन रहा।
1: प्रकाश पुरोहित जवाब दीजिए, ये कंटीन्यूअस एक्सरसाइज किसके तहत हो रहा है?
3: देखिए पूरा देश देख रहा है,
1: जवाब दीजिए,
3: आपके चैनल के माध्यम से भी लोग दिखा रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता को बचाने के लिए किस तरह से पहले इम्यूनिटी दी जाती है, और अभी उसकी उसके पीछे उसको रोकने के लिए कि विपक्षी सांसद जब उनसे मिलने जाते हैं, जब ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के सांसद जब उनसे प्रक्रिया एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान मिलने जाते हैं, तब उनको बोला जाता है गेट लॉस्ट। वो सर्विस प्रोवाइडर है, वो हमें सर्विस देने के लिए बैठे हैं और वो हमें गेट लॉस्ट कर रहे हैं। हम जो कस्टोडियन है वो कस्टोडियन की बात नहीं मान रहे हैं। आज उन्होंने फॉर्म 6 के बारे में झूठ बोला है और वो आदमी गद्दी पर बैठा है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हमने इसके बारे में कुछ नहीं कहा। अभी आपको जो चीफ सीईओ जो था पश्चिम बंगाल के अग्रवाल जी, उनको आपने चीफ सेक्रेटरी बना दिया। क्यों बनाया भाई, क्यों बनाया? क्योंकि उन्होंने आपको तस्तरी में रख करके पश्चिम बंगाल में वोट डिलिटेशन में आपका साथ दिया, भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया, पश्चिम बंगाल के चुनाव को लूटने के लिए, वोट चोरी करने के लिए भाजपा का साथ दिया, और हंस रहे ये लोग।
1: मुझे एक बात बताइए,
3: दुर्भाग्यजनक
1: है स्वयं प्रकाश जी, मैंने जो सवाल पूछा है उस पर आइए प्लीज। मैंने आप सिद्धार्थ यादव ये कह रहे हैं कि फॉर्म नंबर 6 की प्रक्रिया जो वहां पर शुरू हुई है भरने की, वो एक रूटीन प्रक्रिया है, लेकिन उस प्रक्रिया को मैं जिस तरीके से देख रहा हूं कि पहले तो एक सूची जारी कर दी गई, रीजनिंग दिया गया है उसमें, हर वोटर का नाम क्यों निकाला गया वोटर लिस्ट से एसआईआर की प्रक्रिया के बाद में, ठीक है, और उसके बाद कहा गया है कि जो डिलीटेड वोटर्स हैं उनको ज्वाइन करना है तो फॉर्म नंबर 6 भरिए, यही हुआ है ना जो नोटिफिकेशन निकला है उसमें, उसका मतलब क्या निकलता है वो बताइए।
3: नहीं, ये संदिग्ध कृत्य है, मगर जब आपने पहले फॉर्म 6 के नाम से तो आपने नहीं जुड़ा है, तब तो हमें सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा कि नाम जुड़वाने के लिए जुडिशियल ऑफिसर्स, अब जुडिशियल ऑफिसर्स काम नहीं कर पा रहे हैं, बोल रहे हैं 12 साल लगेंगे, तब आपने ये फॉर्म 6 का रास्ता खोल रहे हैं। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में इन्होंने कहा था भय मुक्त वातावरण करेंगे, ये मैं आपको दिखा रहा हूं, यहाँ के पश्चिम बंगाल की क्राइम रिपोर्ट है ये आप दर्शकों को दिखा सकते हैं।
2: छोड़िए क्राइम रिपोर्ट साहब,
3: सुनिए, ये जनता को पता चलना चाहिए,
2: क्राइम रिपोर्ट बताने चले हैं, पूरा पश्चिम बंगाल क्राइम में धकेल गया।
1: देखिए सिद्धार्थ यादव जवाब देंगे उससे पहले स्वयं प्रकाश जी,
3: नहीं नहीं साहिब जी,
1: एक और एक बात का जवाब, एक और एक बात का जवाब दीजिए, एक और एक बात का जवाब दीजिए,
3: स्वयं प्रकाश जी पहले बोलने दीजिए, मुझे मेरी बात को खत्म करने दीजिए,
1: एक और बात जरूरी है, अरे पश्चिम बंगाल पे अलग डिस्कशन रखेंगे ना, आज के हीरो आज वहां पर प्रदर्शन चल रहा है, जरा उस पर बात करिए ना, आपके नेता भी वहां पर पहुंचे हुए हैं, मुझे एक बात का जवाब दीजिए, रेजी नगर में
3: नंदीग्राम
1: और रेजी नगर में जो वोटिंग हुआ है, नहीं एक मिनट, नंदीग्राम और रेजी नगर में वोटिंग हुआ है, वोट परसेंटेज कितना है, कितना
3: वोट परसेंटेज होती है, क्या
1: कितना वोट परसेंटेज
3: वैसे वोटिंग होती है? नहीं नहीं, आप मुझे बताइए वैसे वोटिंग होती है क्या? वो वोटिंग है, आप एक ही सिंबल दो पार्टियों को बांट देते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या कर रहा है? लिफाफा सिंबल दो पार्टियों को बांट दिया, हाई कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, हमारा सिंबल ले लिया, चार महीने बाद की डाइट दे दी, डेट दे दी उनको चार महीने बाद में, कि चार महीने
1: द्विवेदी
3: सामने कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव
1: यहाँ पर बोलते यहाँ पर पश्चिम बंगाल में वहां पर स्पेशल ड्राइव शुरू हो गया नया लिस्ट डालने के लिए, वहां पर उत्तर प्रदेश में भी यह ड्राइव शुरू हो गया नाम जोड़ने के लिए, और अब स्पेशल ड्राइव के तहत समाजवादी पार्टी सवाल उठा रही है कि 50 लाख नाम गलत जोड़े जाएंगे, ये आरोप लगा रहे वहां पर, नया आरोप लगा रहे वहां पर। और उसके बाद अनुराग
0: जी, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि हम क्या करें, भजन करें क्या, राजनीति ना करें, तो राजनीति करिए, लेकिन लोकतंत्र पर इस तरह का जो प्रश्न चिन्ह आप खड़ा कर रहे हैं ये मत खड़ा करिए। मैं आपके सामने कुछ अभी पुराना डाटा उपलब्ध करा रहा हूं, ये 2017 में 2014 में जब सरकार आई मोदी जी की, तो 14 में कांग्रेस की सरकार असम में थी, अरुणाचल में 14 में कांग्रेस की सरकार थी, 16 तक थी, कर्नाटक में अभी भी सरकार है, हिमाचल में अभी भी सरकार है, उसके बाद पंजाब में अभी भी सरकार है, राजस्थान में सरकार बनी, मध्य प्रदेश में बनी, छत्तीसगढ़ में बनी, तेलंगाना में बनी, मिजोरम में बनी, उत्तराखंड में बनी, तमाम राज्यों में सरकार बनी। तो मुझे तो लगता है कि जो सरकार बनी वहां इस्तीफा दे देना चाहिए, चलिए वहां आपसे भूल हो गई, आज राहुल गांधी जी के पास कम से कम उन तीन राज्यों के मुख्यमंत्री होने चाहिए इस्तीफा देने के बाद, कि भैया हम गलती से चुन लिया गया, चुनाव आयोग ने हमको फर्जी तरीके से मुख्यमंत्री बनवा दिया या उस राज्य में सरकार बनवा दिया। इस जो ये राजनीतिक रैली निकाल रहे हैं या जो अपना ये प्रदर्शन दिखा रहे हैं, इसमें इंडिया गठबंधन के लोग भी होने चाहिए, अखिलेश यादव जी होने चाहिए, तमाम वो बड़े चेहरे होने चाहिए कि भाई जी
1: कैसे
0: तमाम
1: अनुराग जी कैसे 50 लाख शामिल हो जाइएगा, ये 50 लाख वोटर कहां से जुड़ जाइएगा, कहां से नंबर लाएंगे?
4: देखिए अभी भारतीय जनता पार्टी का अपने डबल चेहरा देखा, आपके शो में ही पता चल गया, आज उनको इंडियन एक्सप्रेस की खबर पढ़नी पड़ रही है, आज उनको विश्वास हो रहा है इंडियन एक्सप्रेस पे, इंडियन एक्सप्रेस ने आज जो लिखा है उसको तो बीजेपी के प्रवक्ता कोट कर रहे हैं, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस ने जब ये छापा था, नहीं इंडियन एक्सप्रेस ने जब चुनाव आयोग के बारे में लिखा था तब कह रहे थे यार
2: तो इंडियन एक्सप्रेस खड़ा है,
4: इस पे आप विश्वास कैसे कर सकते हैं?
2: तो
4: आप ही ये नहीं आपके बीच में नहीं बोला, सुनिए मैं आपके बीच में नहीं बोला, देखो गलत बात है, मैं आपको सुना धैर्यपूर्वक, आप बेचैन मत होइए। दूसरी बात, आज इंडियन एक्सप्रेस पे आपको विश्वास हो रहा है, आपको इंडियन एक्सप्रेस पे तब विश्वास नहीं था जब चुनाव आयोग के खिलाफ उन्होंने लिखा था, चुनाव की खबर उन्होंने लिखी थी, एक बात। दूसरी बात, जनता की सरकार नहीं है, अगर जनता की सरकार होती तो लोकतंत्र का सम्मान करती, क्योंकि देश की जनता लोकतंत्र का सम्मान और संविधान का सम्मान करती है। लोकतंत्र में क्या होता है, विपक्ष के नेता अगर धरनी पे बैठते हैं, अगर लोकतांत्रिक तरीके से सरकार के खिलाफ अपनी बात को रखना चाहते हैं, तो उनको भी उतनी सम्मानपूर्वक आदरपूर्वक उनको जगह दी जाती है, वो लोकतांत्रिक तरीके से अपना प्रदर्शन करते हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप तानाशाही अपना रहे हैं, आप चुनाव आयोग के प्रवक्ता बने हुए हैं, कमाल की बात तो ये है आपको, तो मुझे तो लगता है बीजेपी को बुलाते ही क्यों है इसमें टीवी डिबेट में, चुनाव के प्रवक्ताओं को बुलाइए, तो बीजेपी के हैं ये, चुनाव के प्रवक्ता बनके यहाँ बात करते हैं, जनता की बात ही नहीं करते, कमाल है। जितनी देर से आपने इनसे बात की
1: वो तो कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी पे आप सवाल उठा रहे हैं, इसीलिए उनके समर्थन में वो खड़े हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो अथॉरिटी है उस पर आप सवाल उठा रहे हैं,
2: मेरे को उत्तर देने दीजिए।
4: नहीं, सवाल जनता के न्याय का हो रहा है, सवाल जनता के वोट का है, और आपने देखा होगा पश्चिम बंगाल में ये साफ देखने को मिला है, 90 लाख वोट कटे, और मजेदार बात देखिए, जस्टिस भुइया जी कह रहे हैं, सोचो अब आपको जज पे भी, सुप्रीम कोर्ट के जज पे विश्वास नहीं, अगर भारतीय जनता पार्टी बोल दे कि सुप्रीम कोर्ट के जज पे विश्वास नहीं करते, वो कह रहे हैं 90 लाख वोटे का वहां वोट कटे, 22 लाख लोगों ने अपील किया,
1: 93%
4: तो इसके मतलब यहाँ पे
1: एक सेकंड
4: बड़े देर बाद आए आप, अरे एक सेकंड दे दीजिए, बड़े देर बाद आए। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी को, मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी को सरकार खुद छोड़ देनी चाहिए, ये डिजर्व नहीं करते हैं, इन्होंने देश को लूटा है, इन्होंने वोट को लूटा है, लोकतंत्र को लूटा है, तानाशाही अपनाई है, ये सरकार रहने लायक नहीं है,
1: खुद छोड़कर चले जाना चाहिए। दो मिनट पहले, एक मिनट आपके पास, फिर सिद्धार्थ यादव, अंपायर पे भरोसा नहीं है, अंपायर पे भरोसा नहीं है, तो क्या मैच में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, और क्या ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे से काम ठीक हो जाएगा चुनाव आयोग का?
0: हेलो, डॉक्टर अंबेडकर का भाषण कोट कर रहा हूं, कि हमने मंदिर बनाया था कि उसमें देवता निवास करें, लेकिन उसमें राक्षसों ने कब्जा कर लिया है। ये हमने टेक्नोलॉजी लाया था, राजीव जी को सलाम करिए, इन लोग कुछ भी नहीं किया, पुष्पक विमान में उड़ने वाले लोग हैं। टेक्नोलॉजी लाया था इस देश में कि देश का विकास हो, आरएसएस बीजेपी ज्ञानेश कुमार ने टेक्नोलॉजी को हाईजेक करके डेमोक्रेसी की हत्या कर दी। नरेंद्र
1: अंपायर पे पीछे कर दो, पीछे करो, थोड़ा पीछे जाओ, थोड़ा एक स्टेप पीछे जाओ, अरे एक स्टेप जाओ भाई, पीछे करो, एक स्टेप पीछे करो, पीछे करो यार, आप कहां गए,
5: नहीं जाने वाले, नहीं छीनो
1: जाएंगे। और वहां पर सड़क पे ही सीधे ये आंदोलन चल रहा है।
6: This is how they treat members of parliament who are asking simply to meet the election commissioner. This is how they treat us. They are beating members of parliament. Their policemen have scratched me all over. They have thrown us to the ground. And now we are not going to move from here. Let them call their forces back. I will not move from here.
1: तो अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बस से नीचे उतर कर आई है। थोड़ी देर पहले हम जो तस्वीरें दिखा रहे थे जंतर मंतर से कुछ ही मीटर दूरी पर, यहां पर यह आंदोलन अब चल रहा है, क्योंकि जंतर मंतर पर जाने से पुलिस ने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और विपक्षी सांसदों को रोक दिया। और उसके बाद अब प्रियंका गांधी सीधे वहीं पर जमीन पर लेटी हुई है, जनपद से वहां से निकलने के बाद बस में बैठकर विपक्षी सांसद सीधे जंतर मंतर की तरफ जा रहे थे। वहां पर पुलिस फोर्स वहां पर काफी संख्या में है और जमीन पर प्रियंका गांधी लेटी हुई है। प्रियंका गांधी कह रही थी कि उन्हें विपक्षी सांसदों को चुनाव आयोग से मिलने नहीं दिया जा रहा है, जबकि चुनाव आयोग का बार बार ये कहना है कि हमें हमारे पास कोई ऑफिशियल परमिशन या एप्लीकेशन नहीं आया हुआ है। पुलिस की कार्रवाई अब हम देख सकते हैं, सीधी कार्रवाई यहां से प्रियंका गांधी और उनके साथ बाकी सांसद। मौसमी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है। मौसमी, प्रियंका गांधी वहां पर सड़क पर लेट गई है और उनके साथ में कुछ सांसद भी दिखाई दे रहे हैं।
7: बिल्कुल, देखिए साहिल, ये प्रियंका गांधी, राहुल गांधी हमने देखा है, कल वो गेट के ऊपर चढ़ के उन्होंने अंदर से गेट खोल दिया था, उसके बाद वो जब बस से उतर रही थी किंग्सवे कैंप में, तो बस की खिड़की से प्रियंका गांधी बाहर निकल आई थी और उसके बाद फिर से किंग्सवे कैंप का जो गेट था उसको धक्का खुद दिया था। तो एक तरीके से यहाँ पे जो धरना पॉलिटिक्स है उसमें देख रहे हैं जुगलबंदी जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की, सड़क पर लेट गई है प्रियंका गांधी। तमाम सांसद तब उतरे जब सामने तमाम कार्यकर्ताओं को डिटेन किया जा रहा था और बिल्कुल ठीक पीछे ये पूरा जो हंगामा है वो बरम रहा है। ये वो जगह है जो पूरी लटियंस दिल्ली कहलाती है, चारों तरफ बंगले हैं, सरकारी बंगले हैं, सांसदों के बंगले हैं, पार्लियामेंट बहुत दूर नहीं है और जंतर मंतर बहुत दूर नहीं है। और यहाँ पे प्रियंका गांधी और राहुल गांधी यही बात कह रहे हैं कि हमें धरना देने दिया जाए, जंतर मंतर जाने दिया जाए। और इसको लेके कम से कम 3-4 बसेस अभी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। और ये जो तस्वीर है ये बहुत कुछ कहती है, ये तस्वीर लगातार
1: दूसरी तस्वीर हम यहाँ से दिखा रहे हैं, हिरासत, ये लाइव तस्वीरें हम प्रोटेस्ट की जगह से यहाँ पर दिखा रहे हैं। मौसमी सिंह भी वहां पर मौजूद है, सुशांत बेहरा भी हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद है। प्रियंका गांधी वहां पर जमीन पर लेट गई है, इससे पहले हमने देखा कि बस में बैठकर जंतर मंतर की तरफ उनका रुख हो रहा था, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने जंतर मंतर के गोल चक्कर के पास यानी 200 से 300 मीटर की दूरी पर हिरासत में लेना शुरू किया और उसके बाद बस से उतरकर अब वहीं पर सड़क पर यहां पर आंदोलन चल रहा है। कल इसी तरीके से आकाशवाणी केंद्र में उस कैंपस में जाकर राहुल गांधी धरने पर बैठ गए थे।
6: Who are asking simply to meet the election commissioner. This is how they treat us. They are beating members of parliament. Their policemen have scratched me all over. They have thrown us to the ground. And now we are not going to move from here. Let them call their forces back. I will not move from here.
1: क्योंकि अब सड़क पर ही प्रियंका गांधी वहां पर धरना प्रदर्शन कर रही है, पुलिस भी वहां पर काफी संख्या में इकट्ठा है।
8: अरे मेरा माइक गिर गया।
1: मौसमी अगर आपको आवाज आ रही है, आगे की रणनीति क्या हो सकती है क्योंकि प्रियंका गांधी वहां पर सड़क पर लेट गई है।
7: जी जी देखिए काफी गुस्से में नजर आ रही है प्रियंका गांधी और उन्होंने तीन बातें कही। उन्होंने कहा कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को इस तरह से उन्होंने बर्ताव किया, पीट रहे हैं सांसदों को ये लोग, पुलिस कर्मियों ने मुझे जगह जगह पे छुआ, दे हैव टच्ड मी एवरीवेयर एंड नाउ वी आर नॉट गोइंग टू मूव फ्रॉम हियर, यानी कि हम यहाँ से नहीं जाएंगे। और इसी बात को लेकर प्रियंका गांधी और तमाम सांसद वहाँ पे दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। और यहाँ पे आप देखिए कि ये पूरी जो इलाका है इसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जमावड़ा जो है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ पे आप देखिए कि पूरे
1: वहाँ पर एक्शन शुरू हो गया है, राहुल गांधी उनके बगल में वहाँ पर खड़े नजर आ रहे हैं।
7: आकाशवाणी और या
1: नहीं, पुलिस का घेरा उनके आसपास काफी नजर आ रहा है, राहुल गांधी भी वहां पर खड़े हैं और महिला पुलिस कर्मियों को आगे कर दिया गया है। महिला पुलिस कर्मी क्योंकि उनके साथ में कुछ महिला सांसद भी वहां पर नजर आ रही है, महिला पुलिस कर्मी भी वहां पर नजर आ रही है और महिला पुलिस कर्मियों के जरिए बाकी कार्यकर्ता भी वहां पर नजर आ रहे हैं, बाकी नेता भी वहां पर नजर आ रहे हैं, खुद राहुल गांधी वहां पर खड़े हैं। दीपेंद्र हुड्डा को मैं वहां पर देख सकता हूं, जो तस्वीरें हम सीधी वहां से आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद अगर उन्हें हिरासत में लिया जाता है तो कांग्रेस पार्टी दोबारा आंदोलन करेगी क्योंकि आज के आंदोलन के बारे में उनकी दिशा नहीं थी। दिल्ली पुलिस के अधिकारी वहां पर है, राहुल गांधी से कुछ बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें समझाने की कोशिश चल रही है। एक बार फिर जरा सुनते हैं क्या बोल रहे हैं, जरा आवाज बढ़ाइएगा। दिल्ली पुलिस के साथ में बातचीत जो राहुल गांधी की चल रही है।
9: आप बताइए सर, आप बताइए सर कैसे होगा, आप कोऑपरेट कीजिए सर, आप सर किसी बस में चलते हैं सर, हम यहाँ हैं सर, हटाओ हमें यहाँ सर, मैं एकदम मैं तो हटा दें सर, मैं कल भी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था, रिक्वेस्ट कर रही थी सर, ये हजारों की भीड़ है सर, सर ये हजारों की भीड़ है, किसी को चोट लग जाएगी।
1: को कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम पर एक्शन लीजिए, किसी को बुला भी रहे हैं, इन तस्वीरों में हम देख सकते हैं। जरा आवाज एक बार फिर बढ़ाइए, क्या दरअसल पूछना चाह रहे हैं, क्या जंतर मंतर जाने की रिक्वेस्ट की जा रही है, क्या किस चीज की रिक्वेस्ट की जा रही है, जरा आवाज बढ़ाइएगा, एक बार फिर सुनेंगे।
6: This is how they treat members of parliament who are asking simply to meet the election commissioner. This is how they treat us. They are beating members of parliament. Their police members have scratched me all over. They have thrown us to the ground. And now we are not going to move from here. Let them call their forces back.
1: Priyanka Gandhi ka aarop hai ki Priyanka Gandhi keh rahi hai ki unko un sansadon ko marpeet kar
10: आज आप जिंदर मंदिर प्रोटेस्ट करने के लिए जा रहे थे, पुलिस के द्वारा आपको रोक दिया गया है और पुलिस डिटेन भी कर रही है, क्या कहना चाहिए?
11: देखिए, पुलिस दमन कर रही है, पुलिस तानाशाही पर उतारू है, पुलिस जिस तरीके के बर्बरतापूर्ण कार्रवाई कर रही है, संवैधानिक धज्जियां उड़ा रही।
1: मौसमी प्रियंका गांधी वहां पर जिद पर अड़ी हुई है कि किसी भी हालत में वहां से नहीं हटेंगी। उनका यह भी आरोप है कि पुलिस ने सांसदों के साथ बर्बरता करने की कोशिश की, उनको पीटने की कोशिश की है, और उसके साथ साथ पुलिस के अधिकारी वहां पर राहुल गांधी से रिक्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन राहुल गांधी कहे कि अब हम यहां से नहीं हटेंगे। तो इसका मतलब यह कि अभी वहीं पर धरना प्रदर्शन होगा या तो जंतर मंतर की इजाजत दी जाएगी। मौसमी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है
7: और पूरे एरिया में, जी जी मुझे आवाज आ रही है, दरअसल पूरे एरिया में जामर लगा दिए गए हैं और ये मुसीबत जो है हम लोग को देखनी पड़ रही है। मैं नासिर से बोलूंगी कि वो फ्रेम आपको दिखाएं, यहाँ पे मैं हूँ जी। तो यहाँ पे पीछे देखने गई थी कि क्या घट रहा है, वहाँ पे सारे कई नेता सांसद जमीन पर लेट गए हैं और प्रियंका गांधी ने बड़ा आरोप लगाया है कि एमपीज को पीटा गया है, एमपीज को जमीन पर ढकेल दिया गया है और पुलिस कर्मियों ने उनको अलग जगह जगह छुआ है और अब वो यहाँ से नहीं हटेंगी। तो यहाँ ये स्थिति आप देखिए, एक लॉन्ग शॉट पे यहाँ दर्शकों को हम दिखाना चाहेंगे, ये देखिए यहाँ पे भागते हुए राजेंद्र पाल गौतम को जो कि यूपी के इंचार्ज हैं और इनको एससी डिपार्टमेंट के अध्यक्ष हैं, उनको इस तरीके से उठाया गया है और उनको ले जाया जा रहा है। तो ये तस्वीर दोबारा एक तरीके से रिपीट होते हुए कि किस तरीके से आप देखिए कि उनको कहाँ लेके जा रहे हैं, हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे बस में उनको डाल दिया गया है, ये भी प्रियंका गांधी के साथ थे और ये तस्वीर आप देख रहे हैं यहाँ पे कि कितनी बसें भरी गई हैं, बिल्कुल जो चौराहा है वहाँ पे बसों की बसें भर दी गई हैं और राजेंद्र पाल गौतम यहाँ पे काफी रस्सा कशी करते हुए, नासिर जरा टॉप एंगल से दिखाइए कि क्या आप टॉप एंगल से दिखाइए नेता को कि क्या किस तरीके से ये रेजिस्टेंस जो है कांग्रेस का, ये एक नया मोड दिखाई दे रहा है साहिल। जिस तरीके से कहा जाता था कि कांग्रेस जमीन की लड़ाई नहीं लड़ रही है, रेयरली हम लोग ने देखा होगा बहुत कम कि स्टेट के इंचार्ज, उत्तर प्रदेश के इंचार्ज है इस तरीके से सड़क पर लेटे हुए हैं, उनको उठाया जा रहा है और एक एक नहीं तमाम नेता यहां पे चले आए हैं, प्रियंका गांधी समेत सांसद तो हैं ही, तमाम राज्यों के इंचार्ज और इसी तरीके से इमरान मसूद और तमाम नेताओं को इस तरीके से भरा गया है बसों में। तो ये मैं आपको एरियल व्यू दिखा रही थी लॉन्ग शॉट में, ये देखिए एक बस यहाँ पे है, एक दो तीन चार पांच, लगभग पांच से छह।
12: देखिए राहुल जी पीसफुल मार्च करना चाह रहे थे मगर अमित शाह के कहने पे ये फिर प्रोवोक किया गया है और ये देखिए हम अपनी डिमांड मांग रहे हैं कि
7: आप तो बस में भर गए थे, बाहर आ गए आप, तो यहाँ पे देखिए कितने कार्यकर्ता हैं, ये कह रहे हैं कि हाथ तोड़ दिया यहाँ इस तरीके से कार्यकर्ता, इनका आरोप है और यहाँ पे आपको मेरा
1: भी है हमारे साथ
7: कि ये देखिए कि लगातार विसिल का साउंड आ रहा है, जी विसिल का साउंड आ रहा है, बसें अभी इसी में प्रियंका गांधी को लाया जाएगा, राहुल गांधी को लाया जाएगा, पीछे आप देखिए उनका राहुल गांधी की मीडिया वैन कुछ चल पड़ी है, हो सकता है राहुल गांधी भी चल पड़े हों या पुलिस उनको यहां से हटाने को कह रही है और एक तरीके से पूरा एक्शन मोड में यहां पे ये तस्वीर अनफोल्ड करते हुए किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि बैक टू बैक कांग्रेस इस तरह से सड़क पर आएगी। डेरिक ओब्रायन और कुछ और नेताओं को भी हमने देखा, और यहाँ पे देखिए आपकी तमाम, ये प्रियंका गांधी हैं या आइए यहाँ पे आप देखिए कि तमाम नेता जो है वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है प्रियंका गांधी या राहुल गांधी सड़क पर उतरे हैं, तो नेता भी रिचार्ज हो जाते हैं अपने आप में। तो
1: मैं अभी एक्शन शुरू हो गया वहां पर, दिल्ली पुलिस की महिला कर्मचारी वहां पर पहुंची, मैं जरा लाइव तस्वीरें यहां पर दिखा रहा हूं मौसमी, उनके आसपास जो बाकी नेता थे उनको उठाना शुरू कर दिया है, एक बार फिर दिल्ली पुलिस ने उनको हिरासत में लेना शुरू कर दिया है। दिल्ली पुलिस की महिला कर्मचारी वहां पर आई और उन्होंने प्रियंका गांधी के आसपास जो बाकी महिला कार्यकर्ता वहां पर उनके आसपास लेटी हुई थी उनको एक एक करके वहां से उठाना शुरू किया है। और वहां पर जो दूसरी बस वहां पर दिखाई थी, राहुल गांधी को पहले ही वहां से हिरासत में लेकर पुलिस ने बस में भर दिया है। ये सीधी तस्वीर है, राहुल गांधी को एक बार फिर हिरासत में लिया गया है और प्रियंका गांधी अभी भी सड़क पर वहां पर लेटी हुई है और उसके उनके आसपास जो बाकी कांग्रेस पार्टी की बाकी कार्यकर्ता और नेता वहां पर थी उनको उठाकर अब दिल्ली पुलिस की महिला कर्मचारी वहां पर उठाकर उन्हें बस में भरने का काम कर रही है। सुशांत मेरा भी हमारे साथ में है। सुशांत, अब राहुल गांधी को तो हिरासत में ले लिया गया है, उनको बस में बिठा दिया गया है, प्रियंका गांधी अभी भी वहां पर सड़क पर नजर आ रही है और उनके आसपास कांग्रेस पार्टी की महिला कार्यकर्ताएं भी है।
13: हाँ देखिए साहिल, राहुल गांधी को फिलहाल जो है वो डिटेन कर लिया गया है। मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो व्हाइट कलर की दिल्ली पुलिस की जो बस है उसमें राहुल गांधी को जो है वो डिटेन किया गया है, लेकिन जो ऑरेंज कलर की बस जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तमाम कांग्रेस के बड़े सीनियर लीडर आगे बैठे हुए थे उसके बाहर प्रियंका गांधी अभी भी जो है वो बैठी हुई है। उनके आसपास जितनी महिलाओं ने घेरा बांध रखा था उनको अब धीरे धीरे पुलिस जो है वो एक घेराबंदी करके एक कॉरिडोर बनाया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से बस के आगे एक पुलिस का कॉरिडोर आपको यहां पर नजर आएगा जिसमें पैरामिलिट्री फोर्स दोनों तरफ नजर आएंगी और बीच के हिस्से में जितनी भी महिलाएं बैठी हुई हैं उनको यहां से डिटेन जो है वो यहां पर किया जा रहा है। एक अलग स्ट्रेटजी जो है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से बनाई गई है। इस बीच यहां पर किसी को आने की इजाजत नहीं है। आप देखिए किस तरीके से यहां पर महिला पुलिसकर्मी और महिला कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उसमें नूरा कुश्ती होती हुई आपको नजर आएगी। पुलिस जो है वो उनको डिटेन करना चाह रही है, बसों में भरना चाह रही है और महिला जो वर्कर्स है वो जमीन पर बैठ गई हैं। और जस्ट इसके पीछे अगर देखेंगे तो जहां तक कैमरा जाएगा इस बस के आगे, ऑरेंज कलर की बस के आगे प्रियंका गांधी जो है वो बैठी हुई है, लेकिन वो जो व्हाइट कलर की बस है जो ऑरेंज बस के साथ में आपको नजर आ रही है उसमें राहुल गांधी है। दूसरी बार राहुल गांधी को यहाँ पर डिटेन जो है वो किया गया है एक बार फिर से। और यहाँ पर देखिए ये तस्वीरें किस तरीके से बसों में अब तमाम महिलाओं को जो प्रियंका गांधी के आसपास थी उनका घेरा बना के रखी हुई थी, नारेबाजी कर रही थी, उनको डिटेन किया गया। और अब देखिए कई और कार्यकर्ता एक एक करके यहाँ पर दिल्ली पुलिस की एक अलग स्ट्रेटेजी और तमाम कार्यकर्ताओं किस तरीके से यहाँ पर जो जमीन पर लेट रहे हैं उन सबको यहाँ पर
1: स्ट्रेटेजी तो दिख रही है।
13: और भी कई सारे
1: दिल्ली पुलिस की महिला अधिकारी और वहां उनके उनके जो बाकी कर्मचारी है वो वहां पर नजर आ रहे हैं, दिल्ली पुलिस की महिला कर्मी वहां पर नजर आ रही है और वो अब प्रियंका गांधी को उठा रही है। वो तस्वीरें एक बार दिखाइए एक बार फिर, प्रियंका गांधी को उठाने की वहां से कोशिश हो रही है। जो पहले की तस्वीरें चल रही थी वो एक बार फिर दिखाइएगा, जो टॉप एंगल शॉट था उसमें साफ था, यही तस्वीरें रखिएगा। इसके पहले की इसके बाद जो तस्वीरें चल रही थी लाइव तस्वीरें, प्रियंका गांधी के आसपास महिला पुलिसकर्मी अब इकट्ठा हो गई है, जो सुशांत पेरा भी वहां पर बता रहे हैं और तस्वीरें हम जो सीधे यहां पर देख सकते हैं, ये देखिए अब प्रियंका गांधी को वहां से हिरासत में लेने के लिए वो सड़क पर लेट गई है, उनको उठाने की कोशिश महिला पुलिसकर्मी वहां पर कर रही है। पुलिस ने तय किया है कि किसी भी हालत में कांग्रेस पार्टी के सांसदों को या विपक्षी सांसदों को जंतर मंतर में आंदोलन के लिए नहीं बैठने दिया जाएगा। और अब प्रियंका गांधी को वहां से उठाने की कोशिश चल रही है, उसका विरोध प्रियंका गांधी के जरिए हो रहा है लेकिन महिला पुलिसकर्मी वहां पर है और उनके जरिए प्रियंका गांधी को वहां से उठा लिया जाएगा। उनके आसपास जो बाकी कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ता थी उनको पहले ही उठा दिया गया है, वहां से सड़क से उठा दिया गया है क्योंकि सड़क पर प्रियंका गांधी लेट गई थी। कल राहुल गांधी को इसी तरीके से उठा लिया गया था जब उन्होंने आकाशवाणी का जो कैंपस था वो छोड़ने से इनकार कर दिया था। उसके बाद अब महिला कर्मचारी उनको पकड़ रही है, महिला पुलिसकर्मियों ने प्रियंका गांधी को वहां से उठा लिया है लेकिन अभी भी वो उठने को तैयार नहीं है। सुशांत, क्या सभी कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लिया गया है क्योंकि राहुल गांधी को अब वहां पर पुलिस ने अपनी बस में डाल दिया है उनको हिरासत में लेकर?
13: देखिए फिलहाल जो तमाम कांग्रेस के नेता हैं उन सब को पुलिस ने डिटेन किया। कई सारे अभी जो कार्यकर्ता हैं और कई सारे सीनियर मल्लिका अर्जुन खड़गे अभी उसी बस के अंदर मौजूद हैं। खुद दिल्ली के जो डीसीपी है सचिन जी वो भी यहाँ पर लगातार पुलिस कर्मियों के साथ कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे जो है प्रियंका गांधी और को जो है वो डिटेन किया जाए। ये प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की गाड़ियों का काफिला है, आप देखेंगे तो किस तरीके से उसके गाड़ी के काफिला को उनके स्कॉर्ट्स को आगे भेजा जा रहा है और पीछे अगर देखेंगे तो राहुल गांधी की जो बस
1: प्रियंका गांधी को
13: राहुल गांधी की बस है उसको अपोजिट दिशा के अंदर अपोजिट दिशा में साहिल ये देखिए अपोजिट दिशा में यहाँ पर राहुल गांधी की बस को लेके जाया जा रहा है ताकि राहुल गांधी को किसी तरीके से यहाँ से हटाया जाए, डिटेन किया जाए। ये देखिए राहुल गांधी की ये बस है उसके पास हम आपको दिखा रहे हैं कि अभी राहुल गांधी इसके अंदर यहाँ पर मौजूद है और उनके साथ कई सारे लीडर्स जो है वो आपको नजर आएंगे। और ये तस्वीरें देखिए उस बस की जिसमें राहुल गांधी खुद मौजूद है और आसपास पैरामिलिट्री फोर्स का एक बड़ा घेरा इस वक्त जो है वो बना हुआ है, नारेबाजी लगातार हो रही है। राहुल गांधी आपको यहाँ पर नजर आएंगे, देखिए कि आगे की सीट पर इस वक्त राहुल गांधी जो है वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे और लगातार राहुल गांधी जो है वो देखेंगे जो कार्यकर्ता है वो भी यहाँ पर मौजूद है, कोशिश चीज जो करने की कोशिश।
14: देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ है राहुल गांधी जिनको पुलिस हिरासत में ले रही है और दूसरी तरफ प्रियंका वाड्रा गांधी जो कि हिरासत में ली जा रही हैं। जंतर मंतर की तरफ आज ये दोनों कूच कर रहे थे, जा रहे थे और इस बीच दिल्ली पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया। यानी बीते दिन जो आपने हाई वोल्टेज एक्शन देखा था आकाशवाणी भवन के पास जहां पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मौजूद थे, आज वही आज पूरी तरह से यहां पर शिफ्ट हो गया है और जंतर मंतर जाने की इनकी कोशिश थी। दोनों तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि एक बार फिर कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत झोंकते हुए इस बात में कि एसआईआर के मुद्दे पर वो सरकार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को घेरे। और उसी कड़ी में जब आप देख रहे हैं ये तस्वीरें तो एक तरफ राहुल गांधी को हिरासत में लिया जा रहा है और वहीं दूसरी तरफ प्रियंका वाड्रा गांधी को हिरासत में लिया जा रहा है। एक क्षण को ऐसी तस्वीर भी आई कि वो जमीन पर लेट गई थी और पुलिस उनको हिरासत में ले रही है। तो दोनों को डिटेन किया जा रहा है। कल शाम लगभग समझिए 8-9 बजे के आसपास जो हुआ आकाशवाणी भवन के बाहर दोनों को हिरासत में लिया गया और उसके बाद डिटेन करके बस में ले जाया गया, किंग्सवे कैंप ले जाया गया। वैसे ही आज दोनों को फिर से नए सिरे से डिटेन किया जा रहा है। सुशांत मेहरा हमारे सहयोगी इस वक्त वहीं पर मौजूद है। सुशांत इस वक्त क्या स्थिति बनी हुई है एक बार बताएं और एग्जैक्टली कहां पर ये सब कुछ हो रहा है और क्या बीते दिन जो हमने देखा था कि बसों में भरकर ले जाया गया था वही आज भी तैयारी है दिल्ली पुलिस की? मौसमी हमारे साथ जुड़ गई हैं, सुशांत थोड़ी देर में जुड़ेंगे। मौसमी क्या तस्वीरें हैं वहां पर, कहां पर ये हो रहा है और क्या फिर कल की तरह डिटेन करके इनको बस में ले जाया जाएगा, क्या समझ में आ रहा है वहां पे?
15: बैंडविड्थ कम हो जाएगी, यहीं खड़े रहो।
14: दरअसल मुझे लगता है वहां पर थोड़ी मुश्किलें आ रही हैं क्योंकि कई जगहों पर जैमर्स लगे हैं या जो भी है उसकी वजह से जो स्थिति बन रही है सीधा लाइव कर पाना रिपोर्टर्स के लिए मुश्किल हो रहा है। एक बार सुशांत के पास चलते हैं। सुशांत क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं?
13: हाँ देखिए अंजना मैं आपको सुन पा रहा हूँ, मैं तस्वीरें दिखा दूंगी। राहुल गांधी का काफिला है जो इस वक्त कार्यकर्ताओं से पूरी तरीके से घिरा हुआ है, चारों तरफ पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान आपको यहां पर नजर आएंगे। राहुल गांधी को फिलहाल अब डिटेन कर लिया गया, उनकी पूरी इस बस को जो है वो वापस मोड़ा जा रहा है जनपद की तरफ क्योंकि पूरे इस जनपद सर्किल पर अगर आप देखेंगे तो बड़ी संख्या में कार्यकर्ता ही इस वक्त जो है वो नजर आ रहे हैं और पुलिस को एक बड़ी चुनौती का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। किस तरीके से राहुल गांधी के जो बस है जिसमें राहुल गांधी खुद मौजूद है उसके ऊपर तक इस वक्त कार्यकर्ता को यहाँ पर नजर आएंगे नारेबाजी करते हुए और कई आगे की फ्रंट सीट पर मैं कोशिश करूंगा कि अपने कैमरामैन से कहूँ कि वो आगे की तरफ जाएं। राहुल गांधी से हम कोशिश करेंगे कि उनसे कि राहुल गांधी इस वक्त बस में सबसे आगे की सीट पर जो है वो बैठे हुए हैं। अभी देखा जाए तो जबरदस्त देखिए पैरामिलिट्री फोर्सेस का जो है वो एक बार फिर से धक्का मुक्की जो है वो एक बार फिर से नजर आई है। पैरामिलिट्री फोर्स के जवान जो है वो उनको लाया गया ताकि बस के आसपास ये जो कार्यकर्ता उनको हटाया जाए। अब मैं आपको कोशिश करूंगा कि आगे की तरफ लेके जाएं कि कैसे आप देखिए कि यहाँ पर कांग्रेस के जो कई सारे वर्कर्स हैं वो आगे नहीं जाना चाहते और नारेबाजी के साथ यहाँ पर देखिए पुलिस का किस तरीके से घेरा चारों तरफ आपको इस वक्त जो है वो नजर आएगा। आगे की तरफ राहुल गांधी की बस को ले जाते हुए सुरक्षा के घेरे में आप देखिए उस बस के ऊपर यहाँ पर कई कार्यकर्ता और मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो आगे आए। ये देखिए ये मुमताज पटेल आपको नजर आएंगी। देखिए बस के आगे एकदम फ्रंट बोनट पर आपको बस में जो है वो मुमताज पटेल नजर आएंगी और इसी बस में राहुल गांधी। हालांकि प्रियंका गांधी इस बस के आगे हैं, उनको भी फिलहाल दिल्ली पुलिस की तरफ से डिटेन करने की कोशिश। आसपास की तमाम जो घेर रखा था, देखिए आसपास जो कार्यकर्ता जाने की कोशिश कर रहे हैं उनको किस तरीके से खंदेड़ा जा रहा है फोर्सेस की तरफ से, पैरामिलिट्री फोर्सेस की तरफ से कि राहुल गांधी के पास जो है वो आने ना दिया जाए। यानी एक अलग स्ट्रेटजी के साथ
14: सुशांत तस्वीरें आ रही है। राहुल गांधी को ऐसा लगता है कि बस, हालांकि अभी जितना स्क्रीन दिख रहा है, एक बार फुल स्क्रीन काट दीजिए, पता चलेगा कि कार है या बस है जिसमें उनको डाला गया है। तो लगभग कई लोग हाथों हाथ उठाकर उनको बस में डाल रहे हैं। एक बार फुल स्क्रीन काट दीजिए, ये बस की तस्वीर है। बस में राहुल गांधी को डाल दिया गया है और इसी के साथ आप अंदाजा लगा सकते हैं दोनों को ही, पहले पुलिस बात कर रही थी लेकिन उसके बाद से अब बस में उनको भी डाल दिया गया है। तो ये तस्वीर है एक जिसमें आप देख रहे हैं राहुल गांधी, वहीं दूसरी तरफ प्रियंका, जो कि प्रियंका गांधी को वो जमीन पर लेट गई थी और वहां पर उसके बाद उनको भी अब डिटेन कर लिया गया है। प्रियंका गांधी का ये आरोप है कि सांसदों के साथ मारपीट की गई है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बस के अंदर जो विरोध प्रदर्शनकारी हैं, कांग्रेस के नेता हैं, उनको डाला गया है और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों को ही हिरासत में ले लिया गया है। सुशांत, क्या इस बारे में पता चल रहा है? बीते दिन हमने देखा था बस में डालकर फिर सबको किंग्सवे कैंप पुलिस ले गई थी दूर की जगह पर। आज कहां पर ले जाया जाएगा, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? क्या कल की ही तरह एक बार फिर से, मतलब एक तरह से रिप्ले कल के हाई वोल्टेज एक्शन का?
13: देखिए फिर से एक तरीके से एक हाई वोल्टेज ड्रामा एक बार फिर से अंजना जो है वो नजर आएगा और इस वक्त नजर भी आ रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर राहुल गांधी जो है वो इस वक्त आपको यहाँ पर नजर आएंगे। प्रियंका गांधी को जो है वो यहाँ पर डिटेन कर लिया गया है और कार्यकर्ताओं से घिरी हुई है पूरी बस, पुलिस के चारों तरफ आपको यहाँ पर पुलिस बल नजर आएगा और यहाँ से आप हो सकता है कि सीधा कल की तरह एक बार फिर से किंग्सवे कैंप जो है वो उनको लेके जाया जाए। ये बस है, मिनी बस है जिसमें राहुल गांधी है और आसपास देखिए मैं कोशिश करूंगा कि राहुल गांधी की तस्वीरें आपको दिखाएं कि देखिए कि राहुल गांधी के आसपास कोशिश है।
14: इस बीच प्रियंका गांधी इस वक्त कहां है पता चला है? शांत, मौसमी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? मौसमी,
16: हाँ आ रही है अंजना, आ रही है आपकी आवाज, आ रही है जी, बोलिए।
14: तो बताइए, राहुल गांधी की तो तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, मौसमी बस में उनको अंदर डाल दिया गया है, पुलिस ले जा रही है डिटेन करके, कहाँ ले जा रही है और साथ ही दूसरी क्या कोई और भी बस है? क्योंकि प्रियंका गांधी कहाँ है, दो तीन बसें दिख रही है।
16: देखिए वहाँ पे पीछे आप देखिए जिस रास्ते से राहुल गांधी सागर रत्न से आए थे वो बस वहाँ पे राहुल गांधी को लेके चली गई है। उस मिनी बस में ऊपर भी तमाम कार्यकर्ता बैठे हैं और ये जो सड़क है राहुल गांधी के बस के पीछे ही कार्यकर्ता भाग गए हैं, भाग रहे हैं सारे। आप देखिए कि उसी स्पीड से सारे कार्यकर्ता वहीं पे बस के पीछे भाग रहे हैं और सीपी की तरफ इस बस को ले जाया गया है। आप देखिए कि पीछे भी इस तरीके का रेला नजर आ रहा है जहाँ पे सारे कार्यकर्ता उस तरफ चल पड़े हैं जहाँ राहुल गांधी की बस गई है और प्रियंका गांधी लगातार सड़क पर धरने पर बैठी हुई थी, उनको भी लगातार उठाने की कवायद चल रही है। ये देखिए आप, एक और बस है जिसमें सांसदों को, सांसद तमाम बैठे हुए हैं, तो आप ये क्या उसी राहुल गांधी की बस के पीछे जाएंगे? ये देखना होगा, ये वही बस है जिसमें राहुल गांधी सवार थे और पवन खेरा और तमाम नेता इसमें, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए कहाँ गए राहुल गांधी, तो राहुल गांधी यहाँ पे और उनके पीछे ये बस भी चल पड़ी है, ये सारा काफिला। ये तस्वीर जंतर मंतर की नहीं है अंजना, ये तस्वीर जनपद की है। ये जनपद रोड है जो 10 जनपद भी जाती है, कांग्रेस ऑफिस भी जाती है और सीपी जाती है। उस रोड पे कुछ इस तरह की तस्वीर जहाँ पे आप देखिए कि कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं और तमाम लोग जो राहुल गांधी के पीछे बस में गए हैं, तमाम सांसद भी एक बस में उनको भेजा गया है और लगातार हिरासत में लेने का सिलसिला जारी है। देखिए वो तस्वीर बहुत कुछ कहती है, हाइट दीजिए जरा, कितनी पैरामिलिट्री फोर्स है। मैंने सैकड़ों दर्जन यहाँ पे फोर्स को आते हुए देखा है, इस रोड से उस रोड तक, पूरा खाकी का समुंदर यहाँ पे, और पूरी तैयारी से यहाँ पे मैंने देखा कि दिल्ली पुलिस आई थी, उसको पूरा ये शक था कि राहुल गांधी सिर्फ लंच नहीं करेंगे, लंच के बाद ये सियासी धरना शुरू होने वाला है।
14: बिल्कुल मौसमी, एक बड़ी खबर आ रही है, पहले अपने दर्शकों को बता दें, क्योंकि एक संगीन आरोप लगाया है प्रियंका वाड्रा गांधी ने दिल्ली पुलिस पर, और उन्होंने कहा है कि महिला पुलिस कर्मियों ने उनको कई जगहों पर खरोचा है, ऐसा प्रियंका गांधी का दावा है। और उनका कहना है कि उनको जबरन जमीन पर पटक दिया गया। तो ये दो बड़ी बातें इस वक्त बताई जा रही हैं जो कि प्रियंका वाड्रा गांधी का दावा है। उनका ये कहना है कि जो महिला पुलिस उनको वहां पर हैंडल कर रही थी, उन्होंने उनको कई जगहों पर जगह जगह खरोचा, महिला पुलिस ने हमें जगह जगह खरोचा है। और इसी के साथ वो कह रही हैं कि जबरन उनको जमीन पर डाल दिया गया। आइए आपको सुना देते हैं उन्होंने क्या कहा है।
6: दिस इज हाउ दे ट्रीट मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हु आर आस्किंग सिंपली टू मीट द इलेक्शन कमिश्नर। दिस इज हाउ दे ट्रीट अस, दे आर बीटिंग मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, their police members have scratched me all over, they have thrown us to the ground, and now we are not going to move from here. Let them call their forces back. I will not move from here.
14: तो प्रियंका गांधी का ये संगीन आरोप है मौसमी, वो ये कह रही है कि महिला पुलिस कर्मियों ने उनको जगह जगह खरोचा है और जबरन जमीन पर पटक दिया है। आप लोग वहां पर मौजूद थी, क्या दिखा है, क्या बताएंगे?
16: देखिए लगातार अगर मैं देख रही थी कि जैसे ही काफिला जंतर मंतर की ओर बढ़ा तो जो गोल चक्कर है ली मेरिडियन का, वहां पे बसों को रोका गया और जो कार्यकर्ता है उनको हिरासत में लेने की प्रक्रिया शुरू हुई। ये कार्यकर्ता जमीन पर थे और जमीन पर चल रहे थे बस के साथ साथ, और जब कार्यकर्ताओं को बसों में भरना शुरू किया गया तो राहुल गांधी ने बस का दरवाजा खोल दिया जिस बस में वो सवार थे और वो नीचे उतर गए। जब वो नीचे उतर गए, खड़गे भी उसी बस में थे, प्रियंका गांधी भी थी, तो उसके 2-4 मिनट बाद राहुल गांधी जैसे नीचे उतरे प्रियंका गांधी भी उतर गई। और डेरिक ओब्रायन से मैंने बातचीत की तो वो बस में उनको डिटेन किया गया था, वो अपना हाथ पैर दिखाने लगे और बोले मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ। और श्रीनिवास थे, उनके कान से हमने रिकॉर्ड भी वो किया है कि कान से शायद खींचा तनी में उनको खून निकला, उन्होंने बोला मुझे मारा। और उसी बीच प्रियंका गांधी नीचे लेट जाती है, क्योंकि लगातार कल भी हमने देखा था ये टैक्टिक उन्होंने इस्तेमाल की थी कि गद्दे पर वो नीचे लेट गई थी, तो प्रियंका गांधी जमीन पर नीचे लेट जाती है। लेकिन अंजना वो जो घेरा था वो पुलिस कर्मियों से भरा हुआ था, महिला टुकड़ियां थी, लेकिन जो मेल पुलिस पर्सनल है उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी। और प्रियंका गांधी को बस में डालने, मेरे सामने ही उनको बस में डालने की पूरी कोशिश हो रही थी, लेकिन उसके 15-20 मिनट बाद तक भी वो बस में नहीं उनको डाल पाए। और क्योंकि लगातार ये जद्दोजहद चलती रही और वो जमीन पर लेटी रही, अब उनका आरोप है कि जिस तरीके से पुलिस वालों ने उनको सब जगह छुआ और अब वो नहीं जाएंगे क्योंकि एमपीओ को नीचे फेंक दिया गया, उनको पीटा गया, ये उन्होंने खुद अपने बयान में बोला है, ऐसा आरोप लगाया है। और फिर वो उन्होंने कहा कि मैं यहीं पे बैठी रहूंगी, मैं अब कहीं नहीं जाने वाले, हम अब कहीं नहीं जाने वाले, आप सांसदों के साथ ये बर्ताव कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा आरोप प्रियंका गांधी ने लगाया। जाहिर तौर पे जब भीड़ होती है आप देखते हैं तो महिला टुकड़ियां होती है, पर अगर आंदोलनकारी मूवमेंट में होते हैं तो ये ऐसी स्थिति आती है। अब देखिए महिला टुकड़ी अगर आप देखें तो रैपिड एक्शन फोर्स की ये महिला टुकड़ी हमने पहले भी दिखाई थी, इसमें देखिए महिला पुलिसकर्मी भी हैं, आरएएफ भी हैं और पुरुष भी हैं। लेकिन इस तरह का आरोप प्रियंका गांधी ने लगाया है और वो तस्वीरें हमने देखी कि किस तरीके से वो जमीन पर लेटी हुई थी।
14: प्रियंका गांधी इस वक्त दिख रही हैं, अब लगता है कि बस में उनको भी डिटेन करके रखा गया है क्योंकि बस से वो संविधान की प्रति दिखाती हुई दिख रही हैं इस वक्त। मौसमी, क्या यहां से अब कुछ जानकारी मिल रही है, क्या कौन कौन से अन्य लोग हैं जो इन गाड़ियों में, क्या अन्य जैसे बीते दिन का दावा था कि बहुत सारे सांसद थे, क्या आज भी कई सांसद हैं कौन या फिर कांग्रेस पार्टी के ही नेता हैं?
16: चलिए नासिर उधर चलते हैं। अंजना देखिए ये मैं बताती हूँ, अब आपको चीज ये शुरू होगी क्योंकि हमने देखा था समाजवादी पार्टी से, तो हमने हमारे सूत्रों ने बताया कि समाजवादी पार्टी ने इस लंच में और इस धरने में हिस्सा नहीं लिया, कोई भी उनका सांसद इस लंच में नहीं आया था, शायद कम्युनिकेशन गैप था क्योंकि उन्होंने कहा कोई औपचारिक तौर से किसी को इत्तला नहीं दी गई, ये समाजवादी पार्टी ने कहा है। हालांकि जयराम रमेश कह रहे हैं अननेसेसरी टूल दिया जा रहा है, लास्ट मोमेंट हमने प्लानिंग की और कोई मतभेद नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी का कोई भी नुमाइंदा यहाँ पे नहीं था, तो ये तो बात स्पष्ट हो गई। अब बाकी इंडिया ब्लॉक के जो सांसद हैं वो इसमें थे, डेरिक ओब्रायन से लेके लेफ्ट के जॉन ब्रिटास वो सब नजर आए। आप देखिए यहाँ प्रियंका गांधी को ले जाया जा रहा है तो उनके पीछे भी मजमा चल पड़ा है और प्रियंका गांधी को अलग रास्ते से ले जाया जा रहा है। देखिए कल भी हमने देखा था कि अलग अलग बसों में, छोटी बसों में कम नेताओं को डाल के कम से कम 20 से 40 बसें हैं अंजना, जंतर मंतर से, जंतर मंतर मतलब जनपद से अगर आप ली मेरिडियन के गोल चक्कर तक बोले तो 40 बसें हमने दिन में देखी थी। इतने तो सांसद भी नहीं है, तो कम सांसदों को भर के एक बस में रवाना किया जाता है, कार्यकर्ताओं को रवाना किया जाता है ताकि ज्यादा प्लानिंग ना हो पाए। और प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को एक बस में कभी नहीं रखा जाता क्योंकि फिर वो बिल्कुल आपस में प्लानिंग करके कब धरना करने लगे या गेट खोलने लगे। हमने देखा यहाँ पे, ये देखिए प्रियंका गांधी को बस में डाल दिया गया है और उनको भी यहाँ से ले जाया गया है। अब ये जंतर मंतर में क्लियरिंग, सॉरी जनपद में क्लियरिंग की स्थिति हम देख रहे हैं जहाँ पे जो तमाम कार्यकर्ता हैं उनको भरने का सिलसिला और लगातार विसिल ब्लोइंग हो रही है। दिल्ली पुलिस के लिए भी ये बहुत बड़ी परेशानी का सबब बन गया है।
14: बिल्कुल मौसमी, और देखिए जो तस्वीर है उसमें प्रियंका वाड्रा गांधी बार बार बस से भी संविधान दिखाती हुई दिख रही हैं। तो ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ राहुल गांधी को भी अब बस में डिटेन करके डाल दिया गया है, दूसरी तरफ प्रियंका गांधी को भी डाल दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री, मौजूदा सांसद लोकसभा के और वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के रविशंकर प्रसाद जी आज तक पर जुड़ रहे हैं। रविशंकर प्रसाद जी, प्रधानमंत्री के गुजरात से लेकर दिल्ली तक और पूरा जो उनका शासनकाल रहा है बतौर सीएम बतौर पीएम 25 साल हुए हैं उस पर हम चर्चा कर रहे थे, लेकिन ये बड़ी खबर और तस्वीरें जो इस वक्त हम दर्शकों पर को दिखा रहे हैं तो मैं चाह रही थी कि इसी पर प्रतिक्रिया के साथ शुरुआत करते हैं क्योंकि विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त के मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए आज सड़कों पर है। लगातार दूसरे दिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ये पूरा आंदोलन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका ये आरोप है कि नेताओं के साथ सांसदों के साथ बदसलूकी हुई है, इस पर आप क्या प्रतिक्रिया देंगे रविशंकर जी?
17: देखिए मैं इसके लिए नहीं आया था, आज एक ऐतिहासिक दिन है, मोदी जी दुनिया के एकमात्र शासक हैं जो 25 साल से लगातार पॉपुलर सपोर्ट से जीत कर आए हैं। मैं सिर्फ आपसे एक ही टिप्पणी करना चाहता हूं, ये हारे हुए हताश लोग
14: जी।
17: जो लोकतंत्र की दुहाई और संविधान दिखाते हैं बस की खिड़की से, वो संविधान की सारी संस्थाओं का खुला अपमान करते हैं। भारत के कानून में इस बात का प्रावधान है कि एसआईआर होगा। अगर इतने 13 करोड़ में कितने करोड़ लोग मरे हैं, एक से अधिक वोटर आप नहीं हो सकते, जो घुसपैठिए वोटर नहीं हो सकते, ये प्रक्रिया चली है ना। बिहार में तो राहुल गांधी ने बहुत प्रचार किया, तेजस्वी ने नहीं ज्वाइन किया, यहां सफाया हो गया, महाराष्ट्र में सफाया हो गया, दिल्ली में सफाया हो गया, हरियाणा में सफाया हो गया, आसाम में सफाया हो गया और आपके बंगाल में सफाया हो गया। और केरला के तो गृहमंत्री ने साफ साफ कहा कि हमारी जीत इसीलिए हुई कि एसआईआर के कारण सारे जो डूबियस मतदाता थे, जो लेफ्ट ने घुसवाए थे, वो हटा दिए गए। ये सच्चाई है।

0: कल वो दिन भर दिल्ली में बैठे हुए थे और आपने पूछा है तो मुझे बोलने दीजिए, उनकी अपनी क्षमता कितनी है पूरा देश जानता है। आप नेता इसीलिए हैं कि आपके पिताजी प्रधानमंत्री, आपकी दादी जी प्रधानमंत्री और नाना प्रधानमंत्री सभी, आप जाके प्रधानमंत्री के घर की सैंक्टिटी समझते हैं, सुरक्षा की। आप जाके बिना परमिशन के वहां धरना पर बैठ गए। पूरा दिल्ली का जो सेंट्रल इलाका है, वो सेंसिटिव इलाका है, वहां जबरदस्ती आप बैठे हुए हैं 8-9 घंटा। क्या मतलब है इसका? और आप एलओपी हैं तो आज मैं अंजना ओम कश्यप के चैनल पर एक बात कहना चाहता हूं। इस देश में एलओपी इंदिरा गांधी भी हुई हैं, अटल बिहारी वाजपेयी भी हुए हैं, लालकृष्ण आडवाणी रहे हैं, राम मनोहर लोहिया रहे हैं, सुषमा स्वराज रही हैं। एक उनका आचरण देखिए और एक इनका आचरण देखिए। तो इसलिए माय वे और हाईवे से ये देश नहीं चलेगा। जाइए, जनता का विश्वास प्राप्त करिए, हरा दीजिए, देश के प्रधानमंत्री बन जाइए। ऐसी बचकानी हरकत से राहुल गांधी जी, न आपका भला होगा न कांग्रेस का होगा। और कृपया करके लोकतंत्र को लेकर दुहाई देते हैं तो आज जिस तरह संस्थाओं का अपमान करते हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट परोक्ष रूप से राफेल के मामले में, क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर, क्या सीवीसी, क्या आर्मी, किसको छोड़ा है इन्होंने। तो इसलिए कृपया करके संस्थानों की बात न करिए हमसे। आज मैं ये नहीं बोलना चाह रहा था लेकिन आपने मुझे प्रवोक किया, क्षमा करेंगे। आज वो कल तो धरने पर थे 8-8 घंटा, तो फिर आज क्यों कर रहे हैं? तो फिर लंच करवा रहे हैं तो वहां समाजवादी पार्टी लोग नहीं आ रहे हैं? क्या लोकतंत्र में तमाशा बनेगा? क्षमा करिए आप, लोकतंत्र एक सीरियस बिजनेस है, आप अपना काम करिए। और मैं उनकी पार्टी का विरोधी हूं जबरदस्त, लेकिन एक आपको बात कहूंगा, मुंबई में धरना हुआ विरोधी दलों के द्वारा, 2 घंटे मीटिंग करी, अपना जुलूस निकाला, जो कहना था कहा, चले गए। एक तो यह भी विपक्ष का आचरण है मुंबई में, और यहां पर आपने कैओस करा कर रखा है, पूरी दिल्ली को एक प्रकार से जाम कर रखा है। ये राहुल गांधी कौन सा आचरण दिखाना चाहते हैं? मैं एक और बात कहना चाहता हूं। एक समय उनका स्टेटमेंट था कि हम इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं, याद है ना आपको, उनने कहा था, बड़ी उसकी आलोचना हुई थी, मैंने भी किया था। वो जाते हैं विदेश तो भारत की आलोचना करते हैं। तो राहुल गांधी न लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, न लोकतांत्रिक संस्थान में विश्वास करते हैं। बस मैं जीतूं, मैं प्रधानमंत्री बनूं, उसकी कसक, उसकी तलखी दिखाई पड़ती।
1: ठीक है जी, ठीक रवि जी, एक बात तो तय है कि देखिए, चुनाव लोकतंत्र की दुहाई दी जा रही है, तो लोकतंत्र में चुनाव से ही कोई सत्ता में आता है या सत्ता से जाता है, कम से कम भारत में तो ऐसा ही होता है, जब तक कोई खुद इस्तीफे की बात नहीं करे। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूं कि आप भी जेपी आंदोलन से जुड़े रहे, छात्र आंदोलन आप भी उसका हिस्सा बने हैं, तो आप तो जानते हैं कि आंदोलन से लोकतंत्र मजबूत होता है, उसे कमजोर नहीं होता है। पहला हिस्सा मेरे सवाल का। दूसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ये पूरा सफर 25 साल का रहा है, क्या आपको लगता है कि जिस तरह का विरोध का सामना उनको इस वक्त करना पड़ रहा है, वो अपने आप में एक बड़ी चुनौती है या फिर उनके सफर का ये एक हिस्सा रहा है?
0: पहली बात, मुझे गर्व है कि मैं जेपी का शिष्य रहा हूं, और जेपी की पहली नसीहत थी हम लोग को ये, अंजना जी, हमला चाहे जैसा होगा, हाथ हमारा नहीं उठेगा, संवैधानिक तरीके से आंदोलन करो। ये नहीं कि पूरा दिल्ली जाम करके बैठे हुए हैं, जेल चले गए, मिसा में बंद हो गए, गिरफ्तार हो गए, लाठी खाए तो गिरफ्तार होकर चले गए जेल में। यही तो मैं कह रहा हूं, मुंबई का उदाहरण मैंने दिया कि नहीं दिया आपको? अधिकार है लोकतंत्र में अपनी बात कहने का, लेकिन राहुल गांधी का पूरी सोच है कि मैं दिल्ली में कैओस करूंगा, जाम करूंगा। और आज मैं आपके सामने एक बात कहना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट में लोग गए थे ना, आज सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस किया, मुझे कुछ नहीं कहना इसके अलावे, लेकिन पूरा जो मई का फैसला मैंने भी पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा, सारे स्टेजेस पर ये लोग बार बार गए, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार आदेश दिया। कलकत्ता में तो उन्होंने जुडिशल ऑफिसर्स को नियुक्त किया पोलिंग करवाने के लिए चुनाव के निमित्त, और उनके साथ क्या बदतमीजी और बदसलूकी हुई आप भी जानती हैं। तो चाहते क्या हैं लोग, न कोर्ट की बात मानेंगे न कुछ करेंगे। तो ठीक है, गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसका जवाब दिया जाएगा।

0: आपसे एक बात जरूर कहता हूं, देश राजनीतिक फूहड़पन को कभी पसंद नहीं करता है। भारत का लोकतंत्र अब लगभग 78 साल पुराना हो चुका है आजादी के बाद से, तो वो गंभीर आचरण की अपेक्षा करता है। अब आपने जो मोदी जी की बात कही, तो मोदी जी तो ऐसे सोना हैं जो हर तब से निखरते हैं। कितना तंग किया गया उनको, मैं उनका कई मामलों में वकील रहा हूं सुप्रीम कोर्ट में, अंजना ओम कश्यप जी आप भी जानती हैं। कुछ लोग तो दिल्ली में कांग्रेस पार्टी में बैठे हुए थे कि मोदी जी को किसी प्रकार से फंसाना है, याद है ना आपको। ये राहुल गांधी को बुलाया जाता है तो जाते नहीं है अपनी बात कहने के लिए, 12 घंटा उनको इंट्रोगेट किया गया था, सिटिंग चीफ मिनिस्टर वो गए, सुप्रीम कोर्ट ने SIT बनाई राघवन की अध्यक्षता में, बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी हुआ। जो पूरा अमित शाह के खिलाफ केस था शराबुद्दीन वाला, उसको मैंने लीगली एग्जामिन किया है, बिल्कुल फालतू केस था। लेकिन क्या कोशिश थी, मैं नाम लूंगा, स्वर्गीय अहमद पटेल, उनके कलीग चिदम्बरम, सलाहकार कपिल सिब्बल, इन सबों की योजना क्या थी कि मोदी को भी फंसाओ, अमित शाह को भी फंसाओ। एक साल अमित शाह जी को गुजरात से बदर किया गया, एंड आई एम टेलिंग यू फुल सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अंजना, वो सुप्रीम कोर्ट का गलत आदेश था, ये फुल बेल का केस था। चलिए अब सुप्रीम कोर्ट में कुछ जजेस थे, अपनी बात है। तो आप ये क्या कह रही हैं, वो तो तब से आई हैं और जनता उनके हर, चाहे वो केदारनाथ हो, चाहे वो गुजरात के मुख्यमंत्री हो या भारत के प्रधानमंत्री हो, उनके काम से जनता उनको लाइक करती है, उनके कमिटमेंट से। और आज आप चर्चा करेंगी इस विषय पर, मैं तो 3-4 बात ही कहूंगा। आज भारत पॉलिसी पैरालिसिस से कहां पहुंच गया। आज अंजना मैं आपको चैनल पर एक बात कहना चाहता हूं, मैं 13 में अब न्यूयॉर्क गया था एक कार्यक्रम में, जो भारत की हालत थी, तो सारे इन्वेस्टर्स कह के नहीं आपसे हम बात करना चाहते हैं, अपना पैसा विड्रॉ कर लें क्या करें, हमने चिंता मत करिए हम लोग आ रहे। और मैं तो राहुल गांधी नहीं हूं कि विदेश में जाके भारत की आलोचना करूंगा, हमने कहा हैव पेशेंस। आज देखिए लेटेस्ट IMF का क्या रिकमेंडेशन आया है, 7% प्लस ग्रोथ रेट, जितने इंटरनेशनल रेटिंग से उन्होंने क्या कहा है, पाकिस्तान के अंदर घुसकर पीटते हैं कि नहीं, मोबाइल में दुनिया की ताकत बन गए कि नहीं। 14 में मैं IT मंत्री रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक मंत्री अंजना, सिर्फ 2 मोबाइल फैक्ट्री थी, आज भारत में चाइना के बाद नंबर 2 है हम। मैं एप्पल की 16 फैक्ट्री चाइना से उठा के लेके आया था। आज सड़क, इंफ्रास्ट्रक्चर, गांव में पैसा, अकाउंट में पैसा, ये बदलाव की जो तस्वीर है वो जनता देखती है। कोरोना में जो काम हुआ, जिस तरह से भारत का मेड इन इंडिया वैक्सीन, आज आपको बताऊं, मुझे आज का 25 साल उनके पूरे हुए हैं, मैं संचार मंत्री था उस समय, मोदी जी ने कहा तुम लोग कहते हो इतना मोबाइल फोन है तो चिंता करो PMO के लोगों के साथ कि हर व्यक्ति के मोबाइल पर खबर हो कि तुम्हारा पहला टीका कहां लगेगा, दूसरा टीका कहां लगेगा, बूस्टर कहां लगेगा। लगभग 100 करोड़ टीके लगाए गए अंजना, ये छोटी बात है क्या, ये उन्होंने करके दिखाया है। ये मोदी जी का विजन है, ये उनकी सोच है। ये जो राहुल गांधी गब्बर सिंह टैक्स बोलते थे GST को, तो आज 2 लाख करोड़ से अधिक GST हो गया कि नहीं, तो मैं कितना गिनाऊ आपको। आज भारत की बेटियां जो अंतरिक्ष में काम कर रही हैं, हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ी, सरकारी स्कूल से पढ़ी हुई इंजीनियर्स, क्या क्या काम कर रही हैं। आज भारत की बेटियां राफेल उड़ा रही कि नहीं उड़ा रही है, परेड करती हैं तो दिल बिल्कुल उत्साह से भर जाता है। तो ये हिंदुस्तान है, और इसीलिए आज जो मोदी जी ने कहा ना, वी विल डू इट, हम करके दिखाएंगे, मुझे जरा भी संदेह नहीं है कि 2047 तक भारत एक बहुत बड़ी ताकत बनेगा, और भारत की नियति है दुनिया की बड़ी ताकत बनना।
1: जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रविशंकर प्रसाद जी, सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए, और आपने प्रतिक्रिया भी दी जो इस वक्त विरोध प्रदर्शन चल रहा था राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का, बहुत धन्यवाद सर आपका। हमारे साथ अब 2 मेहमान इस बहस में जुड़ रहे हैं, गौरव भाटिया जी राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, और चरण सिंह सापरा साहब कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो गौरव जी, चूंकि अभी रविशंकर प्रसाद जी ने बीजेपी की तरफ से लंबा बोला है, तो मैं चरण सिंह सापरा जी के साथ आज शुरुआत करना चाहती हूं। सापरा जी, आज राहुल गांधी, प्रियंका गांधी एक बार फिर से विरोध कर रहे हैं और ये पूरा देश मानता है कि देखिए लोकतंत्र में कभी भी एक तरफा पावर सही नहीं होता है और विपक्ष की भूमिका होती है कि वो चेक्स एंड बैलेंसेस करे। और सड़कों पर अगर आज विपक्ष है एसआईआर के मुद्दे पर, चुनाव आयोग के मुद्दे पर, तो वो लोकतंत्र को मजबूत ही करता है। लेकिन आज जब 25 साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूरे हो रहे हैं, गुजरात में 7 अक्टूबर 2001 को वो मुख्यमंत्री बने थे और वहां से अब पीएम तक, वी विल डू इट का नारा आज वो दे रहे हैं, क्या गलत?
2: देखिए अंजना जी, सर्वप्रथम तो आपने जो आज का धरना था अभी राहुल गांधी जी का और आदरणीय प्रियंका गांधी जी का, उस पर मैं 3-4 लाइन में उत्तर देना चाहूंगा कि जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, ये विपक्ष का ये दायित्व होता है कि वो जनता की आवाज बनके संघर्ष करे, जनता के मुद्दों को सत्ता के गलियारे तक पहुंचाए। और दूसरी लाइन में कहना चाहूंगा कि जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। तो ये जो आप दृश्य देख रहे हैं ना, ये इनकलाब आ रहा है। ऐसा इनकलाब 1947 में आया था जब महात्मा गांधी जी ने गोरों से आजादी दिलाई थी, अब राहुल गांधी इन चोरों से आजादी दिला रहे हैं, इसीलिए आप ये दृश्य देख रहे हैं। अब मैं आता हूं नरेंद्र मोदी जी के 25 साल वाली बात पर। उसकी शुरुआत मैं इस तरह से करना चाहूंगा कि जनता त्रस्त है और आदरणीय मोदी जी मस्त है। ऊंची दुकान फीके पकवान, हो क्या रहा है? अपने आप को विश्वगुरु कह दो, और आज तो मौका था 25 साल का, तो डंकापति ने अपना डंका भी बजाया है, अपनी पीआर टीआरपी हेडलाइन मैनेजमेंट करने का बहुत बढ़िया मौका था उनके पास में, वो उन्होंने किया। ये मैं नहीं कह रहा हूं खाली, ये तो लाल कृष्ण अडवाणी खुद कह चुके हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो बेहतर इवेंट मैनेजर है, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी अच्छी चलाते हैं। अब आपके वी विल डू इट वाले नारे पर मैं आता हूं। वी विल डू इट जो उन्होंने कहा है, मुझे बताइए 25 साल के बाद भी एक नेता कहता है कि वी विल डू इट, वो ये नहीं कहता है कि आई हैव डन इट या वी हैव डन इट, यानी कहीं ना कहीं उनके अंदर का जो आत्मविश्वास है वो भी कम है, दिल के अंदर चोर है और कहीं ना कहीं चोर की दाढ़ी में तिनका है, इसीलिए चोर मचाए शोर, इस तरह की डायलॉगबाजी चल रही है। और मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा रहे हैं, 2047 की बात कर रहे हैं भाई, अरे वर्तमान की बात करिए ना, वर्तमान के अंदर जो आपने देश का बेड़ा गर्क किया है, जो यहाँ की न्याय प्रणाली का बेड़ा गर्क किया है, आज मुझे खुशी होती अगर नरेंद्र मोदी जी ये बताते कि महंगाई को किस तरह से कम किया जाए, बेरोजगारी आज चरम पर पहुंच चुकी है, हवाई चप्पल से लेकर के हवाई जहाज तक सब कुछ महंगा हो चुका है, आर्थिक विषमता बढ़ती जा रही है, आपकी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम हो गई है, एफडीआई बाहर जा रहा है,
3: मैं जी उत्तर दे दूं ना, समय खत्म हो जाएगा,
2: हो रही है ये तमाम सारी चीजें हो रही, किसानों की आय, किसानों की आय की तो इन्होंने कोई चर्चा नहीं की है, इसी तरह से घरेलू बचत
1: जो वादे किए थे बीजेपी ने उस पर जवाब ले रहे हैं, ठीक है, जो वादे किए थे जी, जो वादे किए थे तमाम भारतीय जनता पार्टी ने अच्छे दिन से लेकर 2014 में, वो कहां तक सफल हुआ, इन सब पर चर्चा करेंगे। लेकिन एक एक छोटा सा सवाल है सापरा साहब आपसे, आपने कहा कि ये आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और ये जो व्यवस्था है उससे आजादी के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन देखिए सत्ता में तो अभी भी लोकतंत्र में तो लोकप्रियता ही मायने रखती है और चुनाव से ही जीतकर कोई पीएम बनता है ना, या कोई दूसरा रास्ता भी है?
2: नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, लोकतंत्र में यही मार्ग है, उसी मार्ग पर हम चल रहे हैं। लोकतंत्र का ये भी मार्ग है कि विपक्ष को अपना दायित्व निभाना है, सरकार जहां जहां पर गलती करती है सरकार को उस गलती से चेताना है, हम इनको चेता रहे हैं, हम इनको बता रहे हैं कि यहां पर पेपर लीक भी हो रहा है, हमने कहा धर्मेंद्र प्रधान,
1: गौरव भाटिया जी अब आप उनकी बातों का जवाब दीजिए,
2: इन्होंने चंदा चोरी की, अब ये वोट चोरी,
1: बतौर गुजरात के सीएम और वहां से सफर आते आते भारत के प्रधानमंत्री तक जो रिपोर्ट कार्ड होता है, ठीक है, आप ही के सवाल उनके पास ले जा रही हूं, उनका ये कहना है कि भाई जो वादे आपने किए थे जिसमें किसानों की आय दोगुनी को लेकर बहुत सारे वादे हैं, हालांकि जो आपने कहा कि वी विल डू इट का नारा, वो प्रधानमंत्री ने 2047 के विकसित भारत के संकल्प के लिए वो नारा गढ़ा था, तो वो वाला हिस्सा तो अलग है, लेकिन जो वादे किए थे उनमें से कितने पूरे हुए हैं, ये हिसाब तो विपक्ष मांगेगा ही ना। गौरव जी।
3: अंजना जी, क्योंकि ये मेरा ओपनिंग स्टेटमेंट है, मैं अपनी बात रख देता हूं और उसके बाद आपके प्रश्न का उत्तर दे दूंगा। हर भारतीय के लिए आज गौरव का क्षण है। गौरव का क्षण इसलिए है कि हमारे पास वो नेता है जो गंगा जल की तरह पवित्र है, 25 साल संवैधानिक पदों पर रहे, जनता की सेवा करी है और गंगा जल की तरह पवित्र होके दामन पे कोई दाग नहीं है। अपनी मेहनत, अपनी निष्ठा, अपनी कर्तव्य परायणता के आधार पे जनता ने उनको आशीर्वाद दिया है और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनाया है। आज तक कभी भी कोई चुनाव नहीं हारे हैं और ये सब तब हुआ है जब लोग कहते थे कि असंभव है कि कोई व्यक्ति प्रो इनकम्बेंसी में 3 लोकसभा चुनाव लगातार जीत जाए, जो 62 साल में कभी नहीं हुआ। और क्या ये सत्य नहीं है? अब मैं आता हूं, आई हैव डन इट, क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा। तो आप देखिए, संविधान में कांग्रेस के नेता भी थे जब गढ़ा जा रहा था और अनुच्छेद 370 को कहा गया कि ये स्थाई नहीं अस्थाई है, 55 साल सत्ता में रहे, हटा नहीं पाए। किसने कहा आई हैव डन इट? नरेंद्र मोदी जी ने हटा के दिखाया, भारत की संप्रभुता का आदर किया। क्या इनमें दम था? नहीं। दूसरा, जीएसटी की बात किसने करी? कांग्रेस पार्टी सपने देख रही थी मुंगेरी लाल के। किसने जीएसटी लागू किया संविधान संशोधन करके? सबसे बड़ा आर्थिक बदलाव, 2 लाख करोड़ का कलेक्शन हर माह होता है, ये कहते थे फेल हो जाएगा, पी चिदम्बरम नहीं ला पाए, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे नहीं ला पाए। आई हैव डन इट। तीसरा, महिला आरक्षण, सपना किसने देखा था? कौन था मुंगेरी लाल, राहुल गांधी, सोनिया गांधी? क्या ला पाए थे? लोकतंत्र का नया मंदिर, नई संसद, पहला संवैधानिक बदलाव हुआ, संशोधन हुआ, महिला आरक्षण लाए, आई हैव डन इट। अब क्यों कहा वी विल डू इट? वी विल डू इट इसलिए कहा क्योंकि अभी विकसित भारत 2047 तक हमें बनाना है। जैसा आपने कहा, नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ा लक्ष्य रखा है। भाई, बड़ी सोच के व्यक्ति हैं, ऊंचा सोचेंगे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा की तरह थोड़ी ना हवा में उड़ते थे, वो भी सरकारी जहाजों में आज रेंग रहे थे धरती पर, हमने देखा। क्योंकि हमें थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाना है। अभी तो पीओके जो चाचा नेहरू ने दे दिया, वो पीओके पाकिस्तान से वापस लाना है। हमें 5th और 6th जनरेशन फाइटर प्लेन्स भारत में बनाने हैं। हमें सुनिश्चित करना है कि इंडिया का अपना स्पेस स्टेशन हो, जो 15 अगस्त 2025 को लाल किले की प्राचीर से नरेंद्र मोदी जी ने कहा। अब मैं एक बात जरूर कहूंगा अंजना जी, क्या ये बड़ी बात नहीं है? मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा।
1: गौरव जी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। एक छोटा सा मेरा भी कमेंट है इस पर कि आज देखिए, इस बात की अनदेखी नहीं की जा सकती कि विपक्ष लगातार अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन कर रहा है। अब ये सवाल भी आ रहा है ना कि भाई, मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलने के लिए अगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कल आगे बढ़ रहे थे तो मुख्य चुनाव आयुक्त क्यों नहीं मिल सकते हैं? मतलब ये क्यों ऐसी स्थिति बना दी जा रही है? आज ये सवाल पूछा जा रहा है कि भाई, जब जा रहे थे, फिर सूत्रों से ये खबर चुनाव आयोग से आती है कि उनको 4 बजे पुलिस की तरफ से पता चला कि उनसे मिलना चाहते हैं, तो भाई ऐसी स्थिति क्यों बनाई जा रही है? ये एसआईआर को लेकर, लोगों के नाम कटने को लेकर, जो एक वाजिब मुद्दा इस वक्त देश में चर्चा में है, सुर्खियों में है, उस पर सामने आकर बात करके उसको खत्म कीजिए। कुछ कंफ्यूजन है, उसको खत्म कीजिए। आप समझाइए कि भाई, हमने ये किया है या क्या नहीं किया है, क्या गलत है।
3: अंजना जी, काश प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी आपकी तरह सच्चे और भोले होते। सामने आइए, बात करिए, खत्म हो जाएगा। कितने अच्छे से आपने कह दिया। मेरा पहला सवाल यह है, ये एक प्रेस नोट है, ये कल का है। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि 240 सांसद चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी इलेक्शन कमिश्नर से मिलना चाहते हैं और पूर्व में कोई सूचना नहीं दी है। पहला सवाल तो यही पूछा जाएगा, संवैधानिक पद है, संवैधानिक संस्था है, अगर राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, जो कि स्टैट्यूटरी पोजीशन है, मिलना चाहते हैं, क्या पहले से समय नहीं लेंगे? क्या अराजकता की मूर्ति बन जाएंगे? कभी भी घुस जाओ और बात कर लो, ऐसे नहीं होता है। दूसरा, 240 एमपी क्या धरना प्रदर्शन करने के लिए जा रहे हैं? बातचीत के लिए तो 5 एमपी भी बहुत है, 10 भी बहुत है,
1: ठीक है,
3: एक प्रतिनिधि मंडल बनाइए और चले जाइए। तीसरी बात जो बड़ी महत्वपूर्ण इसमें लिखी है, 2025 में सभी पार्टियों से विचार विमर्श के बाद अंजना जी तय हुआ था किस प्रारूप में किस तरह से पहले से निर्वाचन आयोग को सूचना देनी है, उनसे अनुमति लेनी है। क्या राहुल गांधी ने यह अनुमति ली है? अब मैं आता हूं एक बड़ी बात पे जो आपके चैनल पे कहना चाहता हूं। देखिए, मान लीजिए कोई परेशानी है इलेक्शन कमिश्नर से या चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, हाँ जल्दी जल्दी कर रहा हूं, जल्दी कर रहा हूं, एक एलओपी जो संविधान की शपथ लेता है संविधान के दायरे में रहकर ही काम करता है। संविधान क्या कहता है? अगर आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर से परेशानी है तो महाभियोग लाइए, रिमूव द चीफ इलेक्शन कमिश्नर थ्रू अ कॉन्स्टिट्यूशनल मीन, एनार्किस्ट नहीं बन सकते। दूसरा, कांग्रेस पार्टी और तमाम पार्टियों के सांसद सर्वोच्च न्यायालय में
1: ठीक है, सापरा साहब इस पर रिस्पॉन्ड कीजिए, हो गया सर, टाइम कम है, सापरा जी इस पर रिस्पॉन्ड कीजिए, क्योंकि क्योंकि क्योंकि आपको भी पता होगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त को कैसे हटाया जा सकता है ना, वो सरकार नहीं हटा सकती है, वो पार्लियामेंट के थ्रू ही हो सकता है। बोले साहब,
2: मुख्य चुनाव आयोग को कैसे हटाया जा सकता है उस पर भी मैं आता हूं, लेकिन मुख्य चुनाव आयोग को मिला क्यों नहीं जा सकता? ये सरकार की और मुख्य चुनाव आयुक्त जो है उनकी बेशर्मी है, उनकी हठधर्मी है, सरकार की निरंकुशता है, निर्लज्ज सरकार है, निर्दयी सरकार है, और ये सरकार हठधर्मी है, इसीलिए इस तरह के नौटंकी हो रही है, इसीलिए निर्वाचन आयुक्त को लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं मिल सकता। निर्वाचन आयुक्त को जो है अब ये देखिए व्याकुल हो रहा है,
1: वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप दोनों का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनंत बहस इस पर होती रहेगी, लेकिन आज ये मुद्दा बड़ा बना हुआ है। वहीं दूसरी तरफ 25 साल पर आज बीजेपी की तरफ से एक बड़ा आयोजन जिसमें प्रधानमंत्री ने 2047 के लिए वी विल डू इट का, विकसित भारत का नारा दिया। हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार 7 तक देखते रहिए।

0: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा। अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया।
1: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद, लायन कश्मीर हनी।
0: असली शहद, असली स्वाद।
2: आगे आगे,
3: अरे उधर
2: उधर,
3: करेक्ट करेक्ट।
4: मिल गया, आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: यार लोन भूल गया मैरी।
2: इट्स
1: जस्ट अ गुड बैंक ना।
3: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक।
1: स्मॉल फाइनेंस बैंक।
3: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन, होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, माइक्रो मॉर्गेज लोन, गोल्ड लोन, प्री ओन कार लोन, टू व्हीलर लोन।
4: देयर्स नथिंग स्मॉल अबाउट
5: अस। उज्जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस।
6: तेरा प्यार प्यार प्यार उल्टा बार। सर एक बार गुप्त ठुमका लगाने बस।
7: मेरे पास एक आइडिया है।
6: क्या?
7: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है।
8: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिलाती पर स्टेज नहीं हिलता,
9: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
10: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
11: कौन सी बनानी है?
12: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
13: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
14: सोच बदलो और बैंक भी।
15: सर कैसो फास्ट की ग्रोथ तो चेक कीजिए।
16: कैसो फास्ट 27%,
17: इनो 9.2%।
18: गड़बड़ है।
19: आहा, कैसो फास्ट वाले जीरे का जादू चला रहे, इसीलिए इनके चाहने वाले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। गैसोफा, इंडिया की एसिडिटी का असली इंडियन सॉल्यूशन।
20: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
21: इतने पेमेंट ऐप्स पर सेफ कौन सा?
22: तो स्विच टू भीम, एकदम सेफ और भरोसेमंद। रिवॉर्ड्स भी मिलते रहते हैं। पाओ 40 रुपए का कैशबैक 40 रुपए से ज्यादा की पहली पेमेंट पर। भीम ऐप से करो पे।
23: इट्स अ माय वे।
24: और वही कहाँ गए थे घूमने?
25: जीके मैक्स।
26: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
25: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
26: जेके वॉल मैक्स
25: बेस्ट पेंट,
24: जेके मैक्स।
25: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
27: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
28: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
27: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।
29: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर। मेंटर तरक्की का ऑलराउंडर।
30: माँ के पैरों की धूल माथे पर ले, मैं परिंदा खुले आसमान जहाँ जीत रू सारा।

0: in association with Signature Finest Cardamom Seeds.
1: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा.
2: अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल.
3: हरियाणा की सियासत का सबसे बड़ा मंच, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ हर सवाल पर होगी खुलकर बात. देखिए पंचायत आज तक हरियाणा 8 अक्टूबर दिन भर सिर्फ आज तक पर.
4: करणार काय तू?
5: तस्वीर पुणे की है जहां MPSC यानी महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन जारी है. परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी, भर्ती में देरी और MPSC के कामकाज को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज होता जा रहा है.
6: अभी सिर्फ MPSC पे है, वो फोकस वाइड होने तक सरकार को विनती कर रहा, मत रोकिएगा, रुकना नहीं तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा.
5: छात्रों के इस प्रदर्शन को नई बनी कोकरो जनता पार्टी के साथ साथ बड़े राजनीतिक दलों का भी समर्थन मिल रहे हैं. कांग्रेस, शिवसेना, UBT, NCP, शरद पवार गुट के नेता लगातार धरना स्थल पर पहुंचकर छात्रों के आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं.
7: हमारे साथ 20 लाखाचे जवळपास MPSC जो विद्यार्थी आहे, ज्यांचं भविष्यावर खूप मोठा प्रश्नचिन्ह आहे, कारण की वारंवार पेपर लीक होत असतात आणि त्यानंतरही सरकारला कुठेही याचं सिरियसनेस कळत नाहीये. आणि ज्या मुलांच्या डिमांड आहेत की भीमनवार यांचा राजीनामा झालाच पाहिजे, त्याचा कॉक्रोच जनता पार्टी पूर्णपणे समर्थन करते. आणि जोपर्यंत त्यांचा राजीनामा होणार नाही ते हे आंदोलन चालू राहील आणि या आंदोलनाला कॉक्रोच जनता पार्टीचा पूर्णपणे पाठिंबा आहे.
5: छात्रों के आंदोलन में मराठी सिंगर और रैपर भी पहुंच रहे हैं.
8: कुछ पत्र पोस्ट लागना हाताला कारण 200 जागा सुटल्या आणि 4 लाख फॉर्म भरले, पुस्तकांनी खोली भरली, दुःख काळ तात पुरले, जाळून काढल्या राती.
5: इन छात्रों की मुख्य मांगे हैं MPSC चेयरमैन का इस्तीफा हो, 70,000 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया को तुरंत लागू किया जाए, छात्रों से सलाह मशविरे के बाद साफ छवि वाले नए चेयरमैन की नियुक्ति हो, सभी MPSC परीक्षाएं ऑफलाइन हो, परीक्षा से जुड़े कई मामलों की SIT निष्पक्ष जांच करे, राजस्थान की तर्ज पर साल भर आयोजित होने वाली सभी परीक्षाओं के लिए एक कैलेंडर बने.
9: शुरुआत में विद्यार्थियों ने सत्याग्रह शुरू किया था जिसमें रोहित पवार खुद शामिल थे, लेकिन उसके बाद कल से अनशन पर 5 स्टूडेंट्स बैठ गए हैं. और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि सबसे अहम यह है कि खाना और पानी दोनों उन्होंने बंद कर दिया है. अब कल सरकार की कैबिनेट होनी है, उससे पहले अगर इस्तीफा नहीं होता है तो अपनी स्ट्रैटेजी बदली जाएगी और अलग तरीके से आंदोलन करेंगे, यही अब रोहित पवार का भी कहना है. इससे पहले भी पुणे में एक मोर्चा निकला था जिस पूरे मोर्चा में पूरे राज्य भर से लगभग 15,000 से 20,000 ऐसे स्टूडेंट्स थे जो MPSC से अफेक्ट हुए हैं, जिनको शक है कि महाराष्ट्र का जो आयोग है वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा और उसमें सवाल उठाए जा रहे हैं.
5: छात्रों ने मोर्चा खोल दिया है, गेंद फडणवीस सरकार के पाले में है, देखना है सरकार इन मांगों पर क्या फैसला लेती है. ओंकार वाबले, पुणे आज तक.
3: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर. पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक. एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com.

0: presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: पंजाब चुनाव से पहले सबसे बड़ी पंचायत। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ हर सवाल पर होगी खुलकर बात। देखिए पंचायत आज तक पंजाब 8 अक्टूबर दिन भर सिर्फ आज तक पर।
1: रियल्टी पार्टनर TDI इंफ्राटेक नॉर्थ इंडियाज लीडिंग टाउनशिप डेवलपर। हेल्थ पार्टनर वृंदा लाइफ, वी आर नोन फॉर क्वालिटी मेडिसिंस। बैंकिंग पार्टनर पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक। स्पेशल पार्टनर ग्रेट खलीज चॉइस फॉर पावरफुल फिटनेस लिफ्ट्स बाय पोलो एलिवेटर। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार। सर एक बार दो ठुमका लगाने बस।
2: मेरे पास एक आइडिया है।
1: क्या?
2: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है।
3: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिला पर स्टेज नहीं हिलता,
4: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
5: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
6: कौन सी बनानी है?
7: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
8: जीके मैक्स।
9: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
8: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
10: जेके वॉल मैक्स
11: बेस्ट पेंट,
12: जेके मैक्स।
13: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
14: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
15: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
14: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।
16: आ गया सोमवार और आ गए
17: चकमक चाचा।
16: एक कचौड़ी, दो समोसा, चकमक तेरा क्या भरोसा?
18: चकमक चाचा से सीधे चकमक है?
16: अरे नारा है, दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है, महिला लोग एकदम नारा लगाए जा रही, गूंज रहा नारा।
18: लेकिन भैया नारे, अरे फालतू में सब बेकार, एकदम बेकार। नारे होते थे हमारे टाइम।
16: अच्छा
18: सुनाए, जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, जेपी भाई छूटेंगे।
16: अच्छा तो हमारे टाइम वाले सुनिए, दो कुलचा एक बिरयानी, इन नेताओं की खत्म कहानी।
18: अरे जमीन की चकबंदी में, जमीन की चकबंदी में क्या फाइनेंस बंदी में?
16: ठंडी चाय गरम करो चकमक चाचा, शर्म करो।
18: अरे राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर।
16: अरे लाठी गोली खाएंगे, इस्तीफा लेके जाएंगे।
18: अरे सुनो, इस दीपक में तेल नहीं, सरकार चलाना खेल नहीं।
16: अरे लाल फूल, नीला फूल, जंजी नंगे ब्यूटीफुल।
18: अरे बारी बारी, सबकी बारी, अब की बारी अटल बिहारी।
16: चाय गरम, दूध गरम, चकमक चाचा भी शर्म। हाँ,
18: जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है।
16: अरे मेरे सिर में दर्द है, जिसका कारण मर्द है आप जैसा।
19: हम जैसे? इधर आओ।
20: हम जैसे मर्द नहीं होते किसी नारे से ऑफेंड, हम तो भैया करते हैं हर सही मुद्दे को डिफेंड।
16: आई चाचा,

0: वी विल डू इट। सीएम से पीएम पद की अनवरत यात्रा के 25 साल पूरे हुए तो 2047 के विकसित भारत के लिए यही नरेंद्र मोदी का मंत्र था।
1: स्वागत है भाई, स्वागत है।
0: दिल्ली में विकसित भारत सेवा संकल्प सभा में प्रधानमंत्री मोदी ने 25 साल की अपनी सियासी जमा पूंजी को कुछ यूं शब्दों में बांधा। 7 अक्टूबर 2001 को नरेंद्र मोदी ने भूकंप से तबाह हुए गुजरात की कमान संभाली थी। राजनीतिक उथल पुथल भी मची हुई थी, लेकिन लगातार 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से लेकर लगातार 3री बार प्रधानमंत्री बनने की उपलब्धि उनके खाते में आई। सरकारों के प्रमुख के तौर पर मोदी के 25 साल पूरे होने पर बीजेपी ने आज देश भर में विकसित भारत संकल्प सभाएं आयोजित की हैं। आज तक से इंटरव्यू में अमित शाह ने बताया था कि गुजरात से दिल्ली की इस यात्रा में मोदी में क्या बदला और क्या बना रहा। बीते 12 वर्षों से मोदी की सरकार में कई ऐसे काम हुए हैं जिन्हें पहले असंभव माना जाता रहा है। राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक हर मोर्चे पर मोदी की उपलब्धियों का गुलदस्ता सजा हुआ है। कोविड से लेकर पहलगाम आतंकी हमले जैसे संकट आए हो, या पायलट स्मित मछार की बहादुरी का क्षण, पीएम हर जगह अपने नेतृत्व से पहली पंक्ति में दिखे। सेवा संकल्प सभा में मोदी ने स्मित की बहादुरी को भी देश के विकास के मिशन से जोड़ा। गुजरात हो या अब देश, नरेंद्र मोदी के अगर करोड़ों समर्थक हैं तो उन्हें विपक्ष का कड़ा विरोध भी झेलने को मिला है। राजनीति की यही रफ्तीली राहें शायद नरेंद्र मोदी को शक्ति देती होंगी। आज तक ब्यूरो।

नमस्कार, मैं हूं मारिया शकील। शाम के 7 बजने वाले हैं। आज दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ कांग्रेस जोरदार विरोध प्रदर्शन कर रही है। राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस के सांसद जंतर मंतर जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया। इस दौरान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पूरी खबर तफसील से आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। जंतर मंतर नहीं पहुंच सका विपक्षी मार्च। हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच रास्ते से हिरासत में लिए गए राहुल और प्रियंका गांधी। कहा पुलिस ने सांसदों को पीटा। ज्ञानेश कुमार पर सियासी घमासान तेज।

खड़गे ने कहा, तानाशाह मोदी सरकार और चुनाव आयोग के गठबंधन का पर्दाफाश, नितिन नवीन का पलटवार, अराजकता फैला रहे हैं राहुल गांधी। चीफ मिनिस्टर से प्राइम मिनिस्टर तक जनसेवा के 25 साल, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने फूका विकसित भारत का बिगुल, बोले हम करके रहेंगे, एम्बिशन नहीं मिशन के लिए जीता हूं। यूपी में लड़ाई फिर 80-20 पर आई, राज्यसभा चुनाव के नतीजों पर सीएम योगी का एसपी पर तीखा तंज, 2027 का परिणाम साफ, अखिलेश का पलटवार, घमंड का मिलेगा दंड। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, आतंकियों का बड़ा ठिकाना ध्वस्त, भारी मात्रा में हथियार बरामद। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर हंगामा बरपा हुआ है। हंगामे की शुरुआत कर से ही चल रही है, लेकिन आज ये बढ़ गया। जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों और कांग्रेस नेताओं के बीच जबरदस्त झड़प हुई। राहुल गांधी को पुलिसकर्मियों ने जबरदस्ती बस में धकेल दिया और हिरासत में ले लिया। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी को जब पुलिस ने हिरासत में लेने की कोशिश की तो प्रियंका गांधी सड़क पर लेट गईं। इस दौरान प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया है कि पुलिस वालों ने उनके साथ बदसलूकी की है। इस विरोध प्रदर्शन से पहले राहुल गांधी ने जनपद पर सागर रत्ना रेस्टोरेंट में विपक्षी सांसदों को लंच पर बुलाया था, जिसमें तय किया गया था कि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मार्च निकाला जाएगा। इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है, राहुल गांधी को जो बस ले जा रही थी उसका पंचर हो गया है। अगरसेन की बावली के पास हुई पंचर, अब दूसरी बस से राहुल गांधी को छत्रसाल स्टेडियम ले जाया जाएगा। जहां बस पंचर हुई है वहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोरदार हंगामा जारी है। बता दें कि ये जो है वो टॉलस्टॉय मार्ग है जहां पर हंगामा हो रहा है। टॉलस्टॉय मार्ग सेंट्रल दिल्ली का इलाका है जहां पर अभी भी हंगामा हो रहा है।

0: This is all panic reaction. This is all fear. They are going to be brought to justice. Mark my words.
1: They have attacked the most sacred thing in this country.
2: No, I'm not doing it.
1: They have attacked the constitution. They have attacked the voice of the people. They are going to pay for this.
0: Amit Shah and
3: Narendra Modi,
0: Ramesh Kumar, Mohan Bhagwat, and they can do all this stuff, but we are going to bring them to justice. My guarantee that all four of them will be brought to justice.
4: सीधा रुख करते हैं पीयूष मिश्रा का जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष बताइए वहां पर क्या स्थिति है और क्या ये टॉलस्टॉय का जो मार्ग है और इसके अलावा क्या पूरी सेंट्रल दिल्ली अभी ग्रिड लॉक्ड है?
5: जी फिलहाल जो है सेंट्रल दिल्ली से थोड़ा सा दूर टॉलस्टॉय मार्ग जो कनॉट प्लेस के वहां पर राहुल
4: वहां पर जैमर्स लगे हुए हैं और इसीलिए शायद वो नेटवर्क इशू है, लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं वो साफ तौर पे दिख रहा है कि ये टॉलस्टॉय मार्ग है जहां पर अब कोशिश की जा रही है कि एक नया पुलिस बस आए जिसमें राहुल गांधी और उनके साथ साथ जो सांसद हैं उनको बिठा करके छत्रसाल स्टेडियम ले जाया जा सके। चलिए फिर से रुक करते हैं पीयूष का। पीयूष अगर आप सुन सकते हैं एक बार फिर से सुनाते हैं हम आपको कि राहुल गांधी क्या कह रहे हैं।
0: बट वी आर गोइंग टू ब्रिंग देम टू जस्टिस। माय गारंटी दैट ऑल फोर ऑफ देम विल बी ब्रॉट टू जस्टिस। दिस इज ऑल पैनिक रिएक्शन। This is all fear. They are going to be brought to justice. Mark my words.
1: They have attacked the most sacred thing in this country.
2: No, I'm not doing it.
1: They have attacked the constitution. They have attacked the voice of the people. They are going to pay for this.
0: Amit Shah and
3: Narendra Modi,
0: Ramesh Kumar, Mohan Bhagwat, and they can do all this stuff.

0: we are going to bring them to justice. My guarantee that all four of them will be brought to justice. This is all panic reaction. This is all fear. Yes, they are going to be brought to justice. Mark my words. They have attacked the most sacred thing in this
1: country. No, I'm not doing it. Sushant Mehra हमारे साथ जुड़ गए हैं. सुशांत, वहाँ पे आप क्या देख रहे हैं और आप एग्जैक्टली अभी कहाँ पर मौजूद हैं?
2: अगर देखिए यहाँ से राहुल गांधी थे जो लगातार घेर रहे थे राहुल गांधी की बस को, आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे, उनको आगे जाने से रोक दिया गया. अभी देखिए किस तरीके से फोर्स जो है वो लगातार यहाँ पर कार्यकर्ताओं को रोक रही है, आगे जाने की इजाजत जो है वो नहीं दी गई है. राहुल गांधी को फिलहाल अब यहाँ से तमाम जो कार्यकर्ता उनके साथ डिटेन करके फिर से छत्रसाल स्टेडियम की तरफ जो है वो ले जाया गया है. जनपद के पास से राहुल गांधी को जो है वो डिटेन किया गया था, उसके बाद टोल स्ट्राय मार्ग के पास उनकी जो बस थी मिनी बस वो पंचर हो गई थी, जिसके बाद कई देर तक, काफ़ी समय तक अगर कहा जाए आधे पौन घंटे तक उनकी बस जो है वो यहाँ पर खड़ी रही, पुलिस फोर्स जो है वो इस्तेमाल करनी पड़ी और उसके बाद कार्यकर्ताओं को वहाँ से
3: हटते हैं. बाकी कोई तय तरीके ये मरने वाला नहीं है.
2: वो इस वक्त यहाँ पर गश्त कर रहे हैं ताकि कार्यकर्ता जो है वो अब आगे की तरफ ना जाएं, क्योंकि बताया ये जा रहा था कि जब राहुल गांधी की बस आगे की तरफ बढ़ रही थी तो कार्यकर्ताओं ने उनको बस को घेरा और कहीं ना कहीं उसकी गाड़ी को जो बस थी उसको पंचर किया ताकि छत्रसाल स्टेडियम तक ना जा सके. लेकिन फिलहाल सुरक्षा के घेरे के बीच में अब राहुल गांधी को जो है वो छत्रसाल स्टेडियम की तरफ जो है वो ले जाया गया. तमाम कार्यकर्ताओं को फिलहाल फोर्स की तरफ से जो है वो रोक दिया गया ताकि वो आगे की तरफ ना बढ़ सके.
1: सुशांत, आज जो दिखा वो साफ तौर पर ये एक फ्लैश प्रोटेस्ट था जब राहुल गांधी और जो इंडिया ब्लॉक के सांसद हैं उनके साथ एक लंच मीटिंग होती है सागर रत्ना में और उसके बाद उन लोगों ने तय किया कि इस तरह का प्रोटेस्ट करेंगे. तो क्या कांग्रेस की आगे की रणनीति क्या होगी? क्या इस तरह का प्रोटेस्ट और क्या ये हर दिन होगा? क्या उन्होंने सोचा है? उनकी रणनीति क्या है?
2: देखिए कल जिस तरीके से राहुल गांधी की तरफ से लगभग 9 घंटे तक
4: जिस तरीके से डिटेन किया है, दूसरा दिन है, बिल्कुल गलत. आप ये डर किस बात का? एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन से इतना डर क्या? ये क्या लगता है कि हमको डिटेन करके हमारे आवाज को बंद कर देंगे? इससे हमारी आवाज बंद होने नहीं वाली.
1: गौरव गोगोई कुछ बोल रहे थे. चलिए फिर से रुक करते हैं सुशांत का. सुशांत, आप बता रहे थे कि कांग्रेस की रणनीति क्या होगी, क्या इस तरह के प्रोटेस्ट हर दिन होंगे?
2: देखिए फिलहाल जिस तरीके से राहुल गांधी ने एक अलग स्ट्रेटेजी अपनाई, किसी को भी पता नहीं था कि राहुल गांधी अचानक से जो है वो जनपद पे पहुंचेंगे, सागर रत्न रेस्टोरेंट पहुंचेंगे, तमाम सांसदों का लंच वहां पर था और अचानक से वहां से मूवमेंट जो है वो शुरू हुई जंतर मंतर की, ताकि जंतर मंतर जाकर के अपना प्रोटेस्ट कर सके. पुलिस ने उनके लिए बसेस का इंतजाम किया लेकिन राहुल गांधी ने मना किया कि वो अपनी बसेस के अंदर जाएंगे. उनकी बस आई, तमाम सांसद उस बसेस के अंदर बैठे और उसके बाद जनपद के गोल चक्कर सर्किल तक जैसे ही पहुंचे उसके बाद पुलिस का एक बड़ा एक्शन देखने को मिला. जनपद से जो जंतर मंतर जाने वाला रास्ता है उस रास्ते पर भारी पुलिस बल जो है वो तैनात किया गया. जो कार्यकर्ता बस के आगे थे उनको एक के बाद एक दिल्ली पुलिस की तरफ से डिटेन किया गया. खुद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी जो है वो डिटेन किया गया. और जिस तरीके से देखा जाए तो कल के बाद एक बार फिर से राहुल गांधी की एक स्ट्रेटेजी में एकदम से बदलाव जो है वो देखने को मिला. पुलिस को एक के बाद एक चकमा जो है वो कहीं ना कहीं दे रहे हैं और यही वजह लगता है कि हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों तक इसी तरीके का प्रदर्शन जो है वो दिल्ली की सड़कों पर राहुल गांधी एक बड़े एक्शन में जो है वो नजर आए.
1: चलिए मौसमी सिंह का रुख करते हैं. मौसमी सिंह मेरी सहयोगी भी जुड़ गई हैं. मौसमी, जिस बस में राहुल गांधी को दिल्ली पुलिस ले जा रही थी छत्रसाल स्टेडियम, अब वो बस पंचर हो गई है, तो एक नई बस का इंतजाम किया जा रहा है, उसके बाद शायद ये मूवमेंट होगा. आप बताइए, जब इस तरह का फ्लैश प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज हुआ तो क्या कांग्रेस के नेता सब प्रिपेयर्ड थे और क्या ये राहुल गांधी का बस डिसीजन था?

0: थोड़ा दूर रखना,
1: इतना ही हो जाएगा।
0: देखिए मारिया, अभी आपको ये भी बता दूं कि मैं प्रियंका गांधी को छत्रसाल स्टेडियम ले जाया जा रहा है, तो उनके उनके बस के पीछे हम लोग जा रहे हैं और लगभग ये दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रियंका गांधी की बस पहुंच गई है। दूसरी बात यह है कि एक तरफ राहुल गांधी की बस पंक्चर हो जाती है, वहाँ पे तमाम कार्यकर्ता पंक्चर कर देते हैं और उसको लेके लगातार काफ़ी हंगामा वहाँ पे चल रहा है। राहुल गांधी के लगातार प्रियंका गांधी राहुल गांधी दोनों ऑडियो और विजुअल्स मतलब कि बस के भीतर से सुप्रिया श्रीनेत के साथ एक इंटरेक्शन भी प्रियंका गांधी का आया है कि जिस तरीके से उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है कि उनके साथ हाथापाई हुई, सांसदों को पीटा गया और तमाम पुलिसकर्मी ने उनको छुआ और जमीन पर ढकेल दिया गया, इस तरह की बात तो बता रही है कि किस तरीके से कि दिल्ली पुलिस ये नहीं कर रही है, दिल्ली पुलिस से कराया जा रहा है, निर्देश आ रहे हैं। तो कुल मिला के मारिया लगातार दूसरे दिन भी हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके की सिचुएशन यहाँ पे बन रही है और यहाँ पे एक जो लंच के लिए निकले थे राहुल गांधी और तमाम विपक्षी सांसद, कहीं ना कहीं एक सोची समझी रणनीति थी कि जनपद में लंच करेंगे, कहीं और लंच नहीं करेंगे। पांच सितारा होटल में भी वही रेस्टोरेंट है और जगह भी है उसकी ब्रांचेस पर, जनपद एक ऐसी जगह है जो बिल्कुल जंतर मंतर से सटा हुआ है और ये लोकेशन चुनी गई, तमाम सांसदों को बुलाया गया, पहले से बसें तैयार की गई, पहले से ही वो बसें वहां पे खड़ी थी, हमने दिखाया भी था लाइव विजुअल में। तो एक तरीके से बैक टू बैक धरना पॉलिटिक्स राहुल गांधी के गुरिल्ला वॉरफेयर स्टाइल यहां पे हम देखने को मिल रही है, जहां पे औचक तरीके से वो कभी इंस्पेक्शन करते हैं या औचक तरीके से वो लोकेशंस पे पहुंच जाते हैं और धरने पर बैठ जाते हैं।
2: मौसमी हमारे साथ जुड़ी रही है, चुनाव ऑडियो चला
3: उनको धक्के मारे, एक मैं पहचान करता हूँ, कोई आईपीएस ऑफिसर थे, नहीं आईपीएस नहीं थे लेकिन कंधे पे छेर लगा हुआ है, आई थिंक कोई एसपी कैटेगरी के, उसके बाद उन्होंने धक्के मारे मैडम को और उन्होंने धक्के मार के मैडम को गिराया।
4: तो वो कैसे, जब बस से उतरी तब धक्का लगा?
3: बस से उतरी क्योंकि मारा जा रहा था, लोगों को मारे जा रहा था और राहुल जी उतरे और राहुल जी के पीछे वो उतरी थी और जो व्यवहार किया, आपके पास वीडियोस होंगे, हमारे पास हैं, लेकिन बहुत ही गंदा तरीका था। ऐसा थोड़ी कोई करता है कि ऑपोजिशन एलओपी लीडर है भाई।
4: वहाँ पे हमने फिर महिला पुलिसकर्मी भी देखे वहां पर, जब
3: बाद में महिला पुलिस आई लेकिन पहले महिला पुलिस नहीं थी।
4: क्या मांग आप कर रहे हैं अब?
3: हमारी तो मांग एक ही है कि राहुल गांधी को अगर जनेश कुमार से मिलना है तो मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा, झगड़ा क्या है?
4: अपने प्रियंका गांधी जी के जो साथ जो हुआ उसको लेके क्या आप कोई कंप्लेंट फाइल करेंगे?
3: 100% मैडम से अभी बात करके, कोई मैडम कहाँ है हमें पता नहीं है, उनसे बातचीत करके हम डेफिनेटली लड़ाई लड़ेंगे।
2: तो आप देख सकते हैं राजा वड़िंग जो कांग्रेस सांसद हैं वो भी मौजूद थे उस पूरे कमोशन में। जब के खिलाफ राहुल गांधी का रण जारी है, इस बीच बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने राहुल गांधी पर करारा हमला बोला है। बड़ी खबर आ रही है, राहुल गांधी को बाराखंबा पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा है और प्रियंका गांधी वाड्रा छत्रसाल स्टेडियम उनको पुलिस ले गई है, तो दोनों को अलग अलग पुलिस स्टेशन ले जाया गया है। चलिए मौसमी का फिर से रुख करते हैं, मौसमी डिटेल्स बताइए। मौसमी अगर आपको आवाज आ रही है, इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि राहुल गांधी को बाराखंबा पुलिस स्टेशन ले जाया गया है। कुछ ही देर पहले राहुल गांधी को दिल्ली पुलिस ने डिटेन किया है और उनके साथ साथ कांग्रेस के काफी सांसद मौजूद हैं। राहुल गांधी ने कुछ देर पहले एक साउंड बाइट दी है, उसमें उन्होंने कहा है कि केंद्र संविधान। चलिए सीधे मौसमी का रुख करते हैं, मौसमी बताइए।
0: जी मारिया, मैं ये बोल रही थी कि देखिए दो दिन हो गए हैं, पहले दिन हम देखते हैं कि राहुल गांधी धरने का ऐलान करते हैं और फिर अपनी वेन्यू बदल देते हैं, मतलब वहां जाना होता है चुनाव आयोग।

0: अगर आकाशवाणी भवन में ही डेरा डाल देते हैं। दूसरे दिन एक सोची समझी रणनीति के तहत मुझे लगता है कि कांग्रेस के टॉप ब्रास को तो ये पता होगा, चाहे वो खड़गे हों, प्रियंका गांधी हों, राहुल गांधी, ज्यादा लोगों की इसकी भनक नहीं थी। एक रणनीति के तहत लंच पे जाया जाता है। मैंने पवन खेरा से भी वो सवाल पूछा था कि अभी लंच कितना लंबा चलेगा, क्या डिनर तक धरना तो नहीं में तब्दील हो जाएगा, और वही हुआ। क्योंकि जो लोकेशन चुनी गई थी वो दो बसें पहले से खड़ी थी, तीन बसें, यानी कि आपने गिनती की हुई थी कितने विपक्ष के सांसद आएंगे, उनको आप लेके जाएंगे, और उस पर उसी तरीके की समझ शायद दिल्ली पुलिस की भी थी। एहतियातन 30-40 बसें हमने देखी कि जनपद पर खड़ी हुई थी। तो कुल मिला के ये एक प्लानिंग हुई, और राहुल गांधी ने सीधे लंच के बाद रुख किया जंतर मंतर का, और उन्होंने ऐलान करके किया। सागर रत्ना में जब वो अपना लंच करके बाहर निकले तो उन्होंने कह दिया कि हम जंतर मंतर पे धरने पे जा रहे हैं, और इसकी कहानी उन्होंने एक दिन पहले ही कह दी थी, कल ही कह दिया था कि अगर यहाँ पे धरना नहीं करना है हमें आकाशवाणी भवन में, तो आप बता दीजिए कहाँ धरना करना है, वहां कर लेंगे। तो कुल मिला के एक तरीके से राहुल गांधी, मैं कह रही थी कि जो गुरिल्ला वॉरफेयर वाली टैक्टिक्स है वो इख्तियार कर रहे हैं कि औचक तरीके से जाके धरना करना, औचक इंस्पेक्शन करना, औचक तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी को लेके आना, चाहे वो साहिल लोचब हो या नेहा बोरा हो, वो भी उनको भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले आना, 10 जनपद के बाहर कर देना। तो एक तरीके से जो सरप्राइज फैक्टर है, या एक टेक योर अपोनेंट बाय सरप्राइज और एक रेजिस्टेंस वाला फैक्टर है, वो मुझे दिखता है कि राहुल गांधी की रणनीति में काफी हावी होता जा रहा है।
1: और ये प्रोटेस्ट पॉलिटिक्स काफी बार बार दिख रहा है। राहुल गांधी अब साफ तौर पे ये दिख रहा है आर पार की लड़ाई में है। चुनाव आयोग के खिलाफ राहुल गांधी का रण जारी है। इस बीच बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने राहुल गांधी पे क्या कहा है, सुनिए।
2: कि जिस प्रकार से आज असामाजिक तत्वों के साथ अराजकता के वातावरण में इस देश के विपक्ष के नेता काम कर रहे हैं, मैं स्पष्ट रूप से उनके कहता हूं, जो उनका मकसद है, जो उनकी नीयत है, मैं उनके मकसद और नीयत को कभी भी भारत की जनता पूरी नहीं होने देगी। क्योंकि आपने केवल उन लोगों की चिंता की है जो यहाँ के लोगों का हक छीनते रहे। आज जिस प्रकार की चर्चा और जिस प्रकार के असामाजिक तत्वों को लेकर अराजकता को फैलाने का काम कर रहे हैं दिल्ली के अंदर, मैं आज कहना चाहता हूँ नेता प्रतिपक्ष को कि आप जिन लोगों को हक दिलाने की बात करते हैं, उन घुसपैठियों को भारत की जनता कभी हक नहीं देने देगी। आपने किसके लिए चिंता की, आप किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं? मैं यहाँ पर बैठे हुए हैं हमारे असम के मुख्यमंत्री जी, यहाँ पर बैठे हुए हैं उत्तर प्रदेश के अपने माननीय मुख्यमंत्री जी। अगर SIR के माध्यम से अगर उन घुसपैठियों का नाम कटता है और उसके लिए देश के लोकतंत्र को आप सवाल उठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सवाल आपके ऊपर उठ रहा है। और मैं कह सकता हूँ कि इस अराजकतावादी मानसिकता को और इस अराजकतावादी सोच को भारत की जनता पूरी तरह से करारा जवाब देगी।
1: फिर से ग्राउंड जीरो चलते हैं और पीयूष मिश्रा अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष बताइए क्या हो रहा है वहां।
3: जी बिल्कुल मार्या, इस वक्त की अगर मैं स्थिति बताऊं तो टॉलस्टॉय मार्ग पर लगभग एक घंटे तक राहुल गांधी मौजूद थे। उनकी गाड़ी को पंचर कर दिया गया था NSUI के कार्यकर्ताओं के द्वारा, लेकिन फिलहाल उसको ठीक करा लिया गया। टायर को ठीक कराने के बाद उनकी गाड़ी को वहां से लेकर जाया जा चुका है और अब इस पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है। मैं एक बार तस्वीर दिखाऊं आपको, देखिए भारी मात्रा में जो पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान है वो यहां पर मौजूद है और यहां पर एक मार्च भी निकाला गया है, और ये इसलिए किया गया है ताकि जो स्थिति यहां पर लगभग एक डेढ़ घंटे तक बनी हुई थी उसको अब दोबारा से सुचारू किया जा सके, यहां पर लॉ एंड ऑर्डर को एस्टेब्लिश किया जा सके, क्योंकि भारी संख्या में NSUI के कार्यकर्ता यहां पर जम गए थे। पूरा का पूरा इलाका जो है, इस पूरे इलाके में NSUI के कार्यकर्ता आ गए थे और इसको फिर से दूसरा एक धरना स्थल बनाने की कोशिश कार्यकर्ताओं के द्वारा की जा रही थी, लेकिन दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी यहां पहुंचे, जो अर्धसैनिक बल के जवान है उनको यहां पर डिप्लॉय किया गया। लेकिन अब तस्वीर में देख सकता हूं सभी जवान यहां से पैदल जाते हुए नजर आ रहे हैं और इस पूरे इलाके को फिलहाल सैनिटाइज किया जा रहा है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी NSUI के कार्यकर्ता यहां पर मौजूद ना हो और किसी भी तरह की कोई स्थिति यहां
1: तस्वीरें आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने LK अडवाणी से मुलाकात की है और ये तस्वीरें सीधे आ रही हैं आपको, आपके स्क्रीन पर हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने LK अडवाणी से उनके घर पर मुलाकात की है, 25 साल उनके सेवा के पूरे हुए हैं और ये मुलाकात खास है। आपको याद होगा कि

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 25 इयर्स ऑफ गवर्नमेंट या 25 इयर्स ऑफ गवर्नेंस होता है, जिसकी शुरुआत उन्होंने मुख्यमंत्री गुजरात के तौर पर की थी 7 अक्टूबर 2001 को, और आज वो 25 साल पूरा होता है। ये खास दिन है, इसलिए प्रधानमंत्री ने अपने मेंटोर एल के आडवाणी से मुलाकात की।

0: वक्त है अब एक ब्रेक का, देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: इतने पेमेंट ऐप्स पर सेफ कौन सा?
4: तो स्विच टू बीम, एकदम सेफ और भरोसेमंद, रिवॉर्ड्स भी मिलते रहते हैं। पाओ 40 रुपए का कैशबैक 40 रुपए से ज्यादा की पहली पेमेंट पर, भीम ऐप से करो पे।
5: इट्स अ माय वे।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबा केसरी।
0: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
2: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा। अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया।
3: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद, लायन कश्मीर हनी।
2: असली शहद, असली स्वाद।
4: सर गैसो फास्ट की ग्रोथ तो चेक कीजिए। गैसो फास्ट 27%, इनो 9.2%।
5: गड़बड़ है।
6: आहा, गैसो फास्ट वाले जीरे का जादू चला रहे, इसीलिए इनके चाहने वाले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। गैसो फास्ट, इंडिया की एसिडिटी का असली इंडियन सॉल्यूशन।
7: मैडी, आई नीड टू ओपन अ सेविंग्स अकाउंट।
8: अरे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोल लो।
7: स्मॉल बैंक,
8: स्मॉल प्रिविलेज सेविंग्स अकाउंट, गरिमा सेविंग्स अकाउंट, मैक्सिमा बिजनेस, एज करंट अकाउंट, बिजनेस मैक्सिमा, बिजनेस प्रिविलेज, आरडीएफ, देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट देम।
7: ओके
8: उज्जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस।
9: आगे आगे, अरे उधर उधर, करेक्ट करेक्ट।
10: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
11: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार। सर एक बार दो थमका लगाने बस।
12: मेरे पास एक आइडिया।
11: क्या?
12: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा TMT बार से जो बना है,
13: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिला, पर स्टेज नहीं हिलता,
14: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा TMT से बना है।
15: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही TMT बार से बना है।
13: कौन सी बनानी है?
16: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
17: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
18: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
19: सोच बदलो और बैंक भी।
20: डायबिटीज की वजह से मुझे बार बार बाथरूम जाना पड़ता है,
21: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
20: अब मैं चैन की नींद सो पाता हूं। कपीवा डायबिटीज जूस।
22: लव एंड केयर, द वर्ल्ड्स फाइनेस्ट रेंज ऑफ रबर पेट टॉयज।
23: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर। मेंटर, तरक्की का ऑलराउंडर।
24: माँ के पैरों की धूल माथे पर लगा, परदेश की गलियों में अपने वतन की गीत सुनो।
25: एक दो, एक श्राम।

0: इन एसोसिएशन विद
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबा केसरी, हिंट एक हिंट तो देते।
2: जेके मैक्स वाइप इजी, दीवारों के दाग का जवाब सिर्फ जेके मैक्स वाइप इजी।
3: जहां खबर वहां न्यूज तक, ग्राउंड रिपोर्ट से लेकर एक्सक्लूसिव कवरेज तक, खबरों का सच तथ्यों के साथ, जनता के सवालों से लेकर सत्ता के जवाबों तक, देश दुनिया की हर बड़ी खबर सिर्फ न्यूज तक पर।
4: पंजाब चुनाव से पहले सबसे बड़ी पंचायत, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ हर सवाल पर होगी खुलकर बात। देखिए पंचायत आज तक पंजाब, 8 अक्टूबर दिन भर सिर्फ आज तक पर।
5: पुणे में महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन जारी है। छात्रों ने ऐलान कर दिया है कि जब तक एमपीएससी के चेयरमैन का इस्तीफा नहीं हो जाता वो पीछे हटने वाले नहीं।
6: पहले इस्तीफा होना चाहिए, मतलब कुछ अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए अध्यक्ष की, उसके बाद मतलब ये पूरा सिस्टम ही भ्रष्ट हो चुका है।
5: पुणे के नवी पेठ इलाके में 6 दिन से महाराष्ट्र भर के छात्र जिद पर अड़े हुए हैं। ये छात्र सिस्टम के खिलाफ गुस्से में, छात्र महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन की आयोजित परीक्षाओं की प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं। इन छात्रों को विपक्षी दलों का पूरा समर्थन मिल रहा है। विपक्ष भी छात्रों के साथ मिलकर महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग के चेयरमैन के इस्तीफे से कम में मानने को राजी नहीं है। इसीलिए छात्रों के प्रदर्शन पर सीएम फडणवीस का बयान सामने आया।
7: अतिशय स्पष्टपणे सांगतो की एमपीएससीच्या अध्यक्षांचा राजीनामा घेणं किंवा त्यांना हटवणं हे राज्य सरकारच्या हातामध्ये नाही। राष्ट्रपतींना सुप्रीम कोर्टाच्या शिफारसीवरनंच फक्त त्यांना हटवता येतं हे संविधानात लिहिलेलं आहे, ते त्यांनाही माहिती आहे, सर्व लोकांना माहिती आहे।
5: इन प्रदर्शनकारी छात्रों के धरने में रोज नए नए रैपर और मराठी कलाकार पहुंच रहे हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे भी छात्रों के प्रदर्शन में पहुंचे और छात्रों को भरोसा दिलाया कि पूरा विपक्ष उनकी लड़ाई में साथ खड़ा है।
8: एमपीएससी स्टूडेंट जो है महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए जो पढ़ाई करते हैं उन सभी छात्रों का अभी तक मोर्चा जारी है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि 5 से 6 ऐसे यहाँ स्टूडेंट्स हैं जो पिछले 3 दिन से अनशन पर बैठे हैं और पूरे आंदोलन का वैसे आज 6ठा दिन है। उपकरवा ले आज तक
5: लखनऊ के ग्रामीण इलाकों में बाढ़ का असर साफ दिखाई दे रहा है। इन तस्वीरों में पानी से घिरे गांव और जलमग्न सड़कें नजर आ रही हैं। कई जगहों पर पानी का बहाव तेज है और लोगों की आवाजाही भी प्रभावित हुई है। लोगों को आने जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। तस्वीरों में ग्रामीण पानी के बीच नाव से सफर करते दिखाई दे रहे हैं। कई इलाकों में घरों और रास्तों तक पानी पहुँच चुका है। सड़कें पूरी तरह पानी में डूबी नजर आ रही है और लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुँचने में परेशानी हो रही है। बाढ़ के बीच ग्रामीण जरूरी काम के लिए पानी से होकर गुजर रहे हैं। इसी दौरान पानी के तेज बहाव में डूबने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसके साथ मौजूद 5 दोस्तों को सुरक्षित बचा लिया गया। मौके पर प्रशासन और पुलिस की टीमों की मौजूदगी भी दिखाई दे रही है। इन तस्वीरों में लखनऊ के ग्रामीण इलाकों में बाढ़ से बने हालात और पानी के बीच लोगों की मुश्किलें साफ नजर आ रही हैं। लखनऊ से अंकित मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।

0: नहीं पड़े
1: नहीं, नहीं, नहीं, नहीं।
2: फ्लाइट में कम से कम सफर करें मेरे हिसाब से भाई, ट्रैवल एजेंट कोई गांजा फूंक के चला रहा है, कोई चाकू लेके घुस रहा है, क्या हो रहा है ये?
3: लेकिन हम तो हर कीमत पर समझौते के आदि हैं।
2: तुम्हारा
3: लेकिन हम तो हर कीमत पर समझौते के आदि हैं, गाल पे चाटा खाते रहने वाले गांधीवादी हैं।
0: यार काट देना ये।
4: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

चंदन मंदिर नहीं पहुंच सका विपक्षी मार्च, हाई वोल्टेज सियासी ड्रामे के बीच रास्ते से हिरासत में लिए गए राहुल और प्रियंका गांधी, उन्होंने कहा कि पुलिस ने सांसदों को पीटा। ज्ञानेश कुमार पर सियासी घमासान तेज, खड़गे ने कहा तानाशाह मोदी सरकार और चुनाव आयोग के गठबंधन का पर्दाफाश। नितिन नवीन का पलटवार, अराजकता फैला रहे हैं राहुल गांधी। सीएम से पीएम तक जनसेवा के 25 साल, मोदी ने फूंका विकसित भारत का बिगुल, बोले हम करके रहेंगे, एम्बिशन नहीं मिशन के लिए जीता हूं। कई शहरों में बीजेपी के कार्यक्रम, अडवाणी से मिले प्रधानमंत्री मोदी। यूपी में लड़ाई फिर 80-20 पर आई, राज्यसभा चुनाव के नतीजों पर सीएम योगी का एसपी पर तीखा तंज, 2027 का परिणाम साफ, अखिलेश का पलटवार, घमंड का मिलेगा दंड। सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, आतंकियों का बड़ा ठिकाना ध्वस्त, भारी मात्रा में हथियार बरामद।

0: इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को दिल्ली के बाराखंबा थाने ले जाया गया है। कुछ देर पहले उन्हें जंतर मंतर जाते हुए हिरासत में लिया गया था, जिसके बाद वो जब बस में जा रहे थे उस बस के टायर पंक्चर कर दिया गया था। अब खबर आ रही है कि राहुल गांधी को बाराखंबा थाने ले जाया गया है, जबकि प्रियंका गांधी वाड्रा को छत्रसाल स्टेडियम ले जाया गया है। सुशांत मेहरा और शिवानी शर्मा हमारे साथ इस स्टोरी पर जुड़ गए हैं। शिवानी, हमें डिटेल्स बताइए कि राहुल गांधी के साथ साथ और कितने सांसद हैं?
1: देखिए मारे, आपको बता दूं कि राहुल गांधी को पहले ले जाया जा रहा था छत्रसाल, और उसके बाद रास्ते में जिस बस पर वो सवार थे उस बस के टायर्स पंचर कर दिए, जो एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता साथ साथ चल रहे थे, और फिर उसके बाद डाइवर्ट किया गया। इस बस को बाराखंबा पुलिस स्टेशन ले जाया गया है और तमाम यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता, एनएसयूआई के कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं, तमाम दूसरे एमपीज भी यहां पर मौजूद हैं, और दूसरी तरफ प्रियंका गांधी को छत्रसाल स्टेडियम ले जाया गया है। तो लगभग अब एक घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है मारिया, क्योंकि लगभग 6 बजे ये डिटेनमेंट हुआ था। जहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूं अशोका रोड पर, आप पीछे बैरिकेड्स देख रहे होंगे, ये वही जगह है जिसको पूरी तरह से मल्टीलेयर्ड बैरिकेडिंग से बंद कर दिया गया था, क्योंकि ये वही रास्ता है जो आगे इलेक्शन कमीशन तक जाता है। और काफी देर तक, लगभग 1 से 1.5 घंटे जब ये बसेज यहां पर पहुंची थी, उसके बाद लगातार जो एनएसयूआई के कार्यकर्ता थे, जो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम दूसरे सांसद थे जो अलग अलग बसेज में सवार थे, वो यहां पर मौजूद रहे, और उसके बाद उन्हें डिटेन किया गया। धक्का मुक्की भी हुई, जिस तरह के तस्वीरें हमने देखी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को जबरदस्ती बहुत उन्होंने कोशिश की कि उन्हें रोक लिया जाए, उन्होंने काफी अपना कोशिश की।
0: चलिए ब्रुक करते हैं सुशांत मेहरा का, जो बाराखंबा रोड पर मौजूद है। क्या राहुल गांधी को बाराखंबा पुलिस स्टेशन ले जाया गया है, और कितने देर में उनको लगभग पुलिस छोड़ेगी, कब तक हिरासत में रखने का उनको इरादा है?
2: देखिए मारे, मैं सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा दूं। ये मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो बाराखंबा पुलिस स्टेशन है। पहले राहुल गांधी को जो है डिटेन किया गया जनपद सर्कल से, और उनको कहा गया था कि छत्रसाल स्टेडियम जो है वो लेकर के जाया जाएगा, लेकिन बीच रास्ते में ही कांग्रेस के वर्कर्स ने जिस तरीके से उनकी बस जो थी, मिनी बस, उसको पंचर किया, वहां पर पुलिस डिप्लॉय करनी पड़ी, कार्यकर्ताओं ने पूरी तरीके से उनको घेर लिया, उसके बाद पैरामिलिट्री फोर्सेस को बुलाना पड़ा। एक बार फिर से राहुल गांधी को बस से वहां से डिटेन करके बाराखंबा लाया गया है। स्ट्रेटेजी जो है वो पुलिस ने चेंज करी ताकि कार्यकर्ता जो है वो छत्रसाल स्टेडियम पर ना पहुंचे, क्योंकि काफी मशक्कत जो है वो कल भी दिल्ली पुलिस को करनी पड़ी थी। कल जिस तरीके से दिल्ली पुलिस लाइन पर ले जाया गया था और हजारों कार्यकर्ता पहुंच गए थे, और पुलिस की स्ट्रेटेजी ये थी कि किसी तरीके से कार्यकर्ता यहां पर ना पहुंचे, लेकिन जैसे ही ये बात सामने आई कि बाराखंबा लेके जाया गया, उसके बाद से ही एकाएक आप सड़कों पे देखेंगे किस तरीके से बड़ी संख्या में कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो अब यहाँ पे जुटना जो है वो शुरू हो गए हैं। केरल के सीएम भी जो है वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं, और आप तस्वीरों में देखेंगे कि केरल के सीएम, मैं अपने कहूंगा कि कैमरा पर्सन से कहें कि वो बाराखंबा पुलिस स्टेशन के बाहर इस वक्त जो है वो नजर आ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वो भी अंदर जाएं, लेकिन राहुल गांधी को फिलहाल कड़ी सुरक्षा के बीच में यहाँ पर।
0: सुशांत हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। चलिए सीधा रुख करते हैं वहां।
3: दिल्ली की सड़कों पर कांग्रेस के प्रथम परिवार ने किया है वो निहायत ही दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। इससे एक बात बहुत साफ हो गई है कि उनको संवैधानिकता से मतलब नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ अराजकता से मतलब रख रहे हैं, और इसका प्रमाण यह है कि जब चुनाव आयोग ने उनसे मिलने के लिए तैयार था तो मिलने को तैयार नहीं हुए। और संविधान यह कहता है कि चुनाव आयुक्त, मुख्य न्यायाधीश या सीएजी को किसी प्रश्न के उत्तर के लिए संसद के पटल पर नहीं बुलाया जा सकता, मगर वो कह रहे हैं कि हमारे पार्टी के सांसदों के सामने आना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि आपका संवैधानिक अधिकार नहीं, खानदानी अहंकार बोल रहा है। कांग्रेस पार्टी से मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी आपको 50 सीटें देने के लायक समझ रही है, और 50 से ज्यादा घंटे आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर फुटेज खा चुके हैं।
0: आज जंतर मंतर पर जाते वक्त जो तस्वीरें दिखी हैं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने जिस तरह से खुद को हिरासत में लिए जाने से बचने की कोशिश की है, उससे ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये कांग्रेस का और राहुल गांधी का बदला हुआ रूप है? राहुल गांधी को जब दिल्ली पुलिस ने, पुलिस के जवान बस के अंदर धकेल रहे थे, तो अपने शरीर को पीछे की तरफ कर रहे थे, हवा में लटके थे। प्रियंका गांधी तो जहां बैठी थी वहीं पर वो लेट गई। पुलिस वालों को उन्हें हटाने की बहुत कोशिश करनी पड़ी, बहुत मशक्कत करनी पड़ी। इसके बाद जब वो उन्हें बस के अंदर डाला गया तो फिर से वो गेट पर रुक गई और लटक गई। इसलिए ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या राहुल गांधी का ये बदला हुआ रूप है।
4: FIR है, मेरा लक्ष्य है कि मुझे 100 चाहिए। मैं चाहता हूं कि मेरे ऊपर 100 FIR लगे। हर FIR मेरे लिए एक मेडल है। ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा देना पड़ेगा।
5: सिर्फ 15 घंटे के बाद राहुल गांधी फिर से प्रदर्शन के लिए आज दिल्ली की सड़कों पर उतर गए। कल चुनाव आयोग के लिए विपक्ष के सांसदों के साथ राहुल गांधी निकले थे, जाने नहीं दिया गया तो आकाशवाणी भवन पर धरने पर बैठे। रात को 8 बजे पुलिस ने उठाया और 11 बजे रात में छोड़ा और आज फिर राहुल गांधी सड़क पर उतर आए। आज का कार्यक्रम था विपक्ष के सांसदों के साथ लंच का। इसके लिए चुना गया जनपद का सागर रत्ना रेस्टोरेंट। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के दूसरे सांसदों के अलावा टीएमसी और आरजेडी के सांसद भी उनके साथ थे। अंदर नेताजी लंच कर रहे थे और बाहर कार्यकर्ताओं का हुजूम तैयार हो गया था। घंटे डेढ़ घंटे के बाद जैसे ही लंच खत्म हुआ तुरंत कॉल दी गई कि चलो जंतर मंतर। तुरंत बसें बुला ली गई जिसमें राहुल और प्रियंका के अलावा कांग्रेस के दूसरे सांसद भी थे। नारेबाजी शुरू हो गई। अंदर नेता नारा लगा रहे थे, बाहर कार्यकर्ता थे। मुद्दा था मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा।
4: तकरीबन 300 एमपी लोकसभा के, राज्यसभा के एमपी कल इलेक्शन कमिश्नर से मिलना चाहते थे, तीन इलेक्शन कमिश्नर से मिलना चाहते थे, वो हमसे मिले नहीं। दिल्ली पुलिस ने हमें रोका और कल उन्होंने कहा कि आप यहां प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। तो आज हमारी सोच है कि जो डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट है जंतर मंतर, वहां पे हम जाकर सब आज फिर से बैठे और देश को बताएं कि हमारे लिए ज्ञानेश कुमार जी देश के लेजिटिमेट इलेक्शन कमिश्नर नहीं है। मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, मोहन भगवत, ज्ञानेश कुमार जी ने देश के लोकतंत्र को खत्म किया है। और मैंने कल भी कहा था जिन्होंने ये काम किया है ये देशद्रोही है और इन पर हम एक्शन लेंगे। मैं आपको अभी बता रहा हूं, ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा देना पड़ेगा।
5: ऐसा लगता है कि राहुल गांधी सरकार के लिए रोजाना ऐसे ही सरप्राइज लाते रहते हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता इसे गुरिल्ला वॉरफेयर बता रहे हैं। दिल्ली पुलिस पूरी बैरिकेडिंग करके रखती है लेकिन राहुल गांधी को जहां जगह मिलती है वो वहीं पर धरने पर बैठ जाते हैं, जैसे कल आकाशवाणी भवन के बाहर बैठ गए थे।
6: सभी पार्टी के लोग हम मिलके एक होके इस इशू पे पूरे देश के लोगों को बताना चाहते हैं, तुम्हारा हक जा रहा है, चाहे किसी का कितने भी केसेस करने दो, कितना भी डराने दो, हम डरने वाले नहीं हैं, लड़ते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे।
0: चलिए सीधा रुख करते हैं सुशांत के पास जो अब पुलिस स्टेशन से बाहर है। जी बताइए सुशांत, वहां पे क्या हो रहा है?
2: मारिया मारिया की तस्वीर देखिए, राहुल गांधी की तस्वीरें हैं जो इस वक्त बाराखंबा पुलिस स्टेशन से पुलिस अब उनको दूसरे हिस्से में लेके जा रही है। ये तस्वीरें देखिए राहुल गांधी इस वक्त यहाँ पर, उनको बाराखंबा लाया गया था, अब यहाँ से उनको दूसरे हिस्से में जो है वो लेके जाया जाएगा। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाएं, आज तक पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें राहुल गांधी की, पहले छत्रसाल स्टेडियम और उसके बाद बाराखंबा दूसरे गेट से राहुल गांधी को जो है वो बाहर निकाला गया है। उनके साथ कई सारे कार्यकर्ता भी जो है वो इस वक्त नजर आ रहे हैं। ये देखिए राहुल गांधी की तस्वीरें, अब आगे की तरफ जाते हैं वो राहुल गांधी। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि आगे की तरफ बढ़े, ये तस्वीरें।
0: तो ये राहुल गांधी अब बाराखंबा पुलिस स्टेशन पहुंच गए हैं या उनको छोड़ दिया गया है पुलिस हिरासत से? सुशांत
2: देखिए राहुल गांधी फिलहाल यहां से, उनको फिलहाल अगर कहा जाए तो दूसरे गेट से निकाला गया है, क्योंकि उनका सिर्फ पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स जो हैं वो मौजूद थे। इसका मतलब उनको यहां से छोड़ दिया गया है। राहुल गांधी का काफिला वो यहाँ पर जाता हुआ नजर आ रहा है। गेट जो दूसरा गेट था वहाँ से उनको निकाला गया, क्योंकि जहाँ पर राहुल गांधी मौजूद थे अंदर थे उनको दूसरे गेट से बाहर निकाला गया, क्योंकि कड़ी सुरक्षा थी, कई सारे कार्यकर्ता थे, पुलिस काफ़ी ज़्यादा थी, जिसकी वजह से अब राहुल गांधी को यहाँ से फिलहाल अगर कहा जाए तो जो जानकारी अभी पूरी तरीके से क्लियर होगी कि उनको वहाँ से हटाया गया है, छोड़ दिया गया है या फिर दूसरी जगह लेके जाया गया है, क्योंकि जिस तरीके से अगर उनको डिटेन किया जाता तो निश्चित तौर पर उनके साथ दिल्ली पुलिस के जवान होते, लेकिन दिल्ली पुलिस के जवान नहीं थे बल्कि उनके पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड से उनको यहाँ से फिलहाल जो है वो अगर देखा जाए तो छोड़ दिया गया है।
0: चलिए सुशांत हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त है अब एक ब्रेक का, आप देखते रहिए आज तक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: सर गैसो फास्ट की ग्रोथ तो चेक कीजिए। गैसो फास्ट 27%, इनो 9.2%।
2: गड़बड़ है।
3: आहा, गैसो फास्ट वाले जीरे का जादू चला रहे, इसीलिए इनके चाहने वाले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। गैसो फास्ट, इंडिया की एसिडिटी का असली इंडियन सॉल्यूशन।
4: मैडी, आई नीड टू ओपन अ सेविंग्स अकाउंट।
5: अरे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोल लो।
4: स्मॉल बैंक,
5: स्मॉल privilege savings account, garima savings account, maxima business, edge current account, business maxima, business privilege, rdf, there's nothing small about them.
4: Okay.
5: Ujjivan, nothing small about us.
6: tera pyar pyar pyar unta baat sir ek baar to thumka lagane bas.
7: mere paas ek idea.
6: kya?
7: ek don ke ghar ko 12 mulkon ki police ne charon taraf se gher liya hai, lekin wo ghar ko tod nahi paaye.
8: unka tmt bar se jo bana hai,
9: ek rockstar hota hai. अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिला पर स्टेज नहीं हिलता,
10: क्योंकि वो मजबूत रूंगटा टीएमटी से बना है।
11: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बाहर से बना है।
12: कौन सी बनानी है?
13: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
14: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
15: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
16: सोच बदलो और बैंक भी।
17: डायबिटीज की वजह से मुझे बार बार बाथरूम जाना पड़ता है,
18: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
17: अब मैं चैन की नींद सो पाता हूँ। कपिवा डायट्री जूस।
19: माँ के पैरों की धूल माथे पर लगा, परदेश की गलियों में अपने वतन की गीत सुनो।
20: एक दो, एक श्राम।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ
1: एक हिंट तो देते।
2: जेके मैक्स वाइप इजी,
3: दीवारों के दाग का जवाब सिर्फ जेके मैक्स वाइप इजी।

0: पड़े
1: नहीं,
0: हैं
1: नहीं, नहीं, नहीं।
0: फ्लाइट में कम से कम सफर करें मेरे हिसाब से भाई, ट्रैवल एंस कोई गांजा फूक के चला रहा है, कोई चाकू लेके घुस रहा है, क्या हो रहा है ये?
2: लेकिन हम तो हर कीमत पर समझौते के आदि हैं।
0: तुम्हारा
2: लेकिन हम तो हर कीमत पर समझौते के आदि हैं, गाल पे चाटा खाते रहने वाले गांधीवादी हैं।
0: यार काट देना ये।
3: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
5: इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
7: एक बड़ी खबर इस समय आ रही है, राहुल गांधी को हिरासत से रिहा कर दिया गया है। राहुल गांधी लगातार दूसरे दिन पहले हिरासत में लिए जाते हैं, उसके बाद रिहा कर दिए जाते हैं। तो अब आज भी राहुल गांधी ने कल की तरह धरना प्रदर्शन किया और उसके बाद उन्हें बाराखंबा पुलिस स्टेशन ले जाया गया था। और ये लगातार दूसरा दिन है जब राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया और उसके बाद रिहा किया गया। कल वो मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलने के लिए धरने पर बैठ गए थे।
3: हरियाणा की सियासत का सबसे बड़ा मंच मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ, हर सवाल पर होगी खुलकर बात। देखिए पंचायत आज तक हरियाणा 8 अक्टूबर दिन भर सिर्फ आज तक पर।
8: रियल्टी पार्टनर TDI इंफ्राटेक, नॉर्थ इंडियाज लीडिंग टाउनशिप डेवलपर।
9: हेल्थ पार्टनर वृंदा लाइफ, वी आर नोन फॉर क्वालिटी मेडिसिन।
10: बैंकिंग पार्टनर
11: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
12: स्पेशल पार्टनर ग्रेट खलीज चॉइस फॉर पावरफुल फिटनेस लिफ्ट्स बाय पोलो एलिवेटर्स।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
5: इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
13: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार। सर एक बार दो ठुमका लगाने बस।
14: मेरे पास एक आइडिया।
13: क्या?
14: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा TMT बार से जो बना है,
15: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिला पर स्टेज नहीं हिलता,
16: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा TMT से बना है।
17: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही TMT बार से बना है।
15: कौन सी बनानी है?
18: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
19: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
2: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
1: सोच बदलो और बैंक भी।
11: माँ के पैरों की धूल माथे पर लगा, परदेश की गलियों में अपने वतन के गीत सुना।

0: Max YPC.
1: चुनाव आयोग के खिलाफ संसद भवन परिसर से जब विपक्षी दलों के नेता निकले तो सब साफ थे। राहुल के आसपास तमाम विपक्षी दलों के नेताओं संग अखिलेश भी नजर आ रहे थे, लेकिन लक्ष्य पर पहुंचने से पहले रास्ते अलग हो गए, मंजिल अलग हो गई, जुबां जुदा हो गई। अखिलेश पहले पुलिस की बस में पहुंचे, राहुल बरगद के नीचे, अखिलेश लखनऊ लौट गए, राहुल वहीं बैठे रहे। और ये फर्क क्या यूपी की चुनावी राजनीति तक नजर आएगा? इस आशंका में जब अखिलेश से सवाल पूछा गया तो उनका जवाब सुनिए। यूपी की 403 सीटों पर अखिलेश भले सवाल नहीं सुनना चाह रहे, लेकिन चुनावी लड़ाई में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के मुद्दे अलग अलग हैं। ये कई मौकों पर साफ दिखा है और अब सीट बंटवारे पर यह भेद दिनों दिन चौड़ा होता जा रहा है। दरार नेताओं के रुख, हाव भाव और मुद्दों में मतभेद को लेकर दिखे ना दिखे, लेकिन यूपी के नेताओं की बयानबाजी में खूब दिख रहा है। और कांग्रेस ने जिस तरह समाजवादी पार्टी पर आक्रामक रुख अपनाने वाले इमरान मसूद को ऊंचे पद पर बैठाया, इससे कांग्रेस के हौसलों का अंदाजा लगाया जा सकता है।
2: आज आंधी राहुल गांधी की है, उसको मद्देनजर रखे कि कांग्रेस 2017 वाली कांग्रेस नहीं है, ये 2027 वाली कांग्रेस है। 10 साल के अंदर कांग्रेस में बहुत फर्क आ गया।
1: लेकिन अखिलेश और समाजवादी पार्टी के नेता इस बदलाव को चुनाव में जीत लायक असरदार मानने को तैयार नहीं, और इसी अविश्वास में अखिलेश ने रायबरेली में जाकर रथ यात्रा शुरू कर दी।
3: सीटों की संख्या और सीटों का बंटवारे का फॉर्मूला जीत का होना चाहिए। हम जीतेंगे तभी भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की सत्ता से बेदखल करेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है इंडिया गठबंधन जीत के फॉर्मूले पे एक साथ बैठेगा, सीट शेयरिंग करेगा और उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उखाड़ फेंकेगा।
1: फिलहाल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के रुख से 2027 के गठबंधन की तस्वीर पर अनिश्चितता बनी हुई है। हालांकि अखिलेश ने बार बार कांग्रेस को सांत्वना दी है कि यूपी में गठबंधन वही रहेगा जो 2024 में था। आज तक ब्यूरो।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: दिल्ली में हाई वोल्टेज राजनीतिक ड्रामे के बीच हिरासत में लेने के बाद छोड़े गए राहुल गांधी। छत्रसाल स्टेडियम ले जाई गई प्रियंका गांधी, कहा पुलिस ने सांसदों को पीटा। ज्ञानेश कुमार पर राजनीतिक घमासान तेज, खड़गे ने कहा तानाशाह मोदी सरकार और चुनाव आयोग के गठबंधन का पर्दाफाश, नितिन नवीन का पलटवार, अराजकता फैला रहे हैं राहुल। सीएम से पीएम तक जनसेवा में पीएम के 25 वर्ष, कहा एम्बिशन नहीं मिशन के लिए जीता हूं। कई शहरों में बीजेपी के कार्यक्रम, आडवाणी से मिले मोदी। यूपी में लड़ाई फिर 80-20 पर आई। राज्यसभा चुनाव के परिणाम पर सीएम योगी का समाजवादी पर तीखा कटाक्ष, कहा 27 का परिणाम साफ, अखिलेश का पलटवार, घमंड का मिलेगा दंड। और बंगाल में शिवेंदु सरकार के सलाहकार बनाए गए मिथुन चक्रवर्ती, सूचना एवं संस्कृति मंत्रालय में मिलेगा कैबिनेट मंत्री का दर्जा, पहले सीएम के पास था यह विभाग।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हेड ऑफ द गवर्नमेंट के तौर पर निरंतर सेवा करते हुए 25 वर्ष पूरे हो गए हैं। सोचा नहीं था कि कभी ये पड़ाव भी आएगा। मैं न रुकूंगा, न थकूंगा।
1: लंबे समय तक इस देश का नेतृत्व करते रहे,
2: ऐसे नेता की देश को आवश्यकता है।
3: जो अनवरत है, अविचल है, अथक यात्रा के लिए 140 करोड़ देशवासियों के तरफ से और भारतीय जनता पार्टी के लाखों लाख कार्यकर्ताओं की तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं।
4: नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। 25 साल बहुत लंबा वक्त होता है। 25 साल के रिश्ते में बिना कुछ कहे सामने वाले की बात समझ आने लगती है। यही इतने लंबे रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत होती है, क्योंकि 25 साल का रिश्ता विश्वास, परिपक्वता और गहरे जुड़ाव का प्रतीक होता है। एक प्रशासक के तौर पर नरेंद्र मोदी इस अहम पड़ाव को पार करने वाले देश के पहले और इकलौते नेता बन गए हैं। पहले गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर और फिर देश के प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी का सफर अनवरत जारी है, जिसमें स्थिरता और सुरक्षा का एहसास जनता के लिए सबसे बड़ा आकर्षण है।
5: नरेंद्र दामोदर दास मोदी,
0: आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं, केवल कृतज्ञता का भाव ही आता है। मैं कृतज्ञ हूं हर उस व्यक्ति, हर उस घटना के प्रति जिसने मुझे कुछ न कुछ सिखाया है, जिसने मुझे जिताया, उसने मुझे विनम्र होना सिखाया।
6: जिस साल के सेवा काल को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने वो सारे सबक दोहराए जो इस लंबी यात्रा ने उन्हें दिए।
0: स्वागत है, बड़ी स्वागत है। जिसने मुझे गिराया, उसने मुझे फिर खड़ा होना सिखाया। शुभचिंतकों ने मुझे प्रोत्साहित किया और आलोचकों ने मुझे अपने भीतर झोंकना सिखाया। जिसने मेरा साथ दिया, उसने मुझे विश्वास की शक्ति दिखाई। जिसने मेरा विरोध किया, उसने मुझे लोकतंत्र की शक्ति समझाई। हर संकट मेरे धैर्य की परीक्षा रहा, हर सफलता ने मेरे दायित्व बोध को विस्तार दिया और हर सिद्धि ने बड़े लक्ष्यों की तरफ बढ़ने का साहस दिया, जज्बा दिया।
6: संघर्ष की आग में तपकर मोदी आज वहां खड़े हैं जहां किसी भी नेता का सपना हो सकता है। लेकिन सेवा संकल्प के 25 सालों की वर्षगांठ के दिन कृतज्ञता का भाव ज्यादा था उस जनता के लिए, जिसके लगातार आशीर्वाद ने नरेंद्र मोदी को बीजेपी के संगठन से उठाकर भारतीय राजनीति का ध्रुव तारा बना दिया।
0: 7 अक्टूबर 2001 को जब मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, तब सोचा नहीं था कि कभी ये पड़ाव भी आएगा। आज मुझे हेड ऑफ द गवर्नमेंट के तौर पर निरंतर सेवा करते हुए 25 वर्ष पूरे हो गए हैं। मैं देश की जनता के चरणों में शीश झुकाकर नमन करता हूं।
6: प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सफर के उतार चढ़ाव को याद करते हुए कहा कि विरोध ने लोकतंत्र, संकटों ने धैर्य और असफलताओं ने फिर खड़े होने की सीख दी। लेकिन जो सबसे बड़ी बात कही वो थी विकसित भारत होने तक न थकने न रुकने का संकल्प।
0: जब तक भारत विकसित नहीं होता तब तक मैं न रुकूंगा, न थकूंगा, न अपने पद से डिगूंगा।
6: हर संकट से कुछ न कुछ सीखने के मंत्र की बदौलत ही नरेंद्र मोदी पहले गुजरात के सबसे लंबे वक्त तक रहने वाले मुख्यमंत्री बने।
0: मेरा राजनीतिक रिपोर्ट कार्ड सिर्फ संगठन का काम करने वाले का ही था। मैंने चुनाव लड़ाए थे लेकिन एक भी चुनाव नहीं लड़ा था। चुनावी राजनीति में चमकने की चाहत होती तो बहुत पहले ही मैदान में उतर सकता था, लेकिन ये मेरा मिजाज नहीं था। मैं जीवन में क्या बनूंगा, मेरा क्या होगा, ये कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि बाल्यकाल से जो मुझे शिक्षा दीक्षा मिली वो शिक्षा दीक्षा यही थी कि मैं एम्बिशन के लिए नहीं मिशन के लिए जीवन जीने वाला इंसान रहा हूं।
6: गुजरात में बना रिकॉर्ड 2014 के बाद दिल्ली में ऐतिहासिक बन गया। 2014, 2019 और फिर 2024 में नरेंद्र मोदी लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बने। जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार 3 चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बनने वाले मोदी दूसरे नेता बने। लेकिन सबसे लंबे वक्त तक निर्वाचित पीएम के रूप में मोदी ने नेहरू को भी पीछे छोड़ दिया। जवाहरलाल नेहरू 4388 दिनों तक प्रधानमंत्री रहे थे। ये रिकॉर्ड 10 जून 2026 को नरेंद्र मोदी ने तोड़ दिया और इस दिन प्रधानमंत्री के रूप में 4399 दिन पूरे किए। प्रधानमंत्री की तरह सबसे लंबे समय तक सरकार के प्रमुख रहने का रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी के नाम हो गया है। इसी साल मार्च में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में कुल 8931 दिन नरेंद्र मोदी ने पूरे किए और सिक्किम के पूर्व सीएम पवन कुमार चामलिंग के 8930 दिन के रिकॉर्ड को तोड़ा।
0: जीवन का एक ही दे था, देश के लिए निस्वार्थ कर्म, मेरे लिए कर्म ही सब कुछ है, कर्म ही मेरा धर्म है। गीता ने हमें सिखाया है कर्मण्येवाधिकारः।
4: गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में प्रशासनिक सुधारक से प्रो बिजनेस लीडर से शुरू हुआ मोदी ब्रांड का सफर कई पड़ावों से गुजरा, जो 2014 में राष्ट्रीय उम्मीद और परिवर्तन का चेहरा बना, जो विकास से आगे 370 हटाने और आतंक पर निर्णायक प्रहार करने वाले नेता के तौर पर उभरा, जिसकी अपनी ब्रांडिंग अब ब्रांड इंडिया के साथ जुड़ चुकी है।
6: जनसेवा की रजत वर्षगांठ भले ही लंबी लग रही हो, लेकिन मोदी थमने को तैयार नहीं है। इसलिए उन्होंने अपने और देश दोनों के लिए नए और बड़े लक्ष्य तय कर दिए।
0: हम करके रहेंगे, हम विकसित भारत बाय 2047, टॉप 3 इकोनॉमी, आत्मनिर्भर भारत, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, ओलंपिक्स का आयोजन, अंतरिक्ष में कदम।
6: सरकार के मुखिया के तौर पर अपने 25 साल पूरे करने के खास मौके पर मोदी ने दिन की शुरुआत श्री विनायक मंदिर में पूजा अर्चना से शुरू की। ईश्वर से देश और अपने लिए आशीर्वाद मांगा,
0: अपने लिए भी प्रार्थना की। प्रार्थना ये कि परमात्मा मुझे इतनी शक्ति और सामर्थ्य दीजिए कि मैं अपने देश के लिए और अधिक ऊर्जा के साथ काम कर सकूं। देशवासियों की और अधिक सेवा कर सकूं, दिन रात सेवा कर सकूं।
6: समर्पण और सेवा भाव से जिम्मेदारियां निभाते निभाते नरेंद्र मोदी देश को विकसित भारत के रास्ते पर तेजी से ले जाने का संकल्प ले चुके हैं।
0: हम मिलकर 2047 का विकसित भारत बनाएंगे और जरूर बनाएंगे। We will do it.
1: हम आज के दिन परम कृपालु परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि मोदी जी दीर्घायुष हो, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे और लंबे समय तक इस देश का नेतृत्व करते रहे।
3: आज का दिन ऐसे व्यक्तित्व के 25 वर्षों की उस यात्रा का साक्षी बनने का दिन है, जिस यात्रा ने संघर्षों के बीच अपनी शुरुआत की और हर चुनौती का सामना करते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहे।
2: उन्होंने यह सिद्ध कर दिया है कि राजनीति केवल सरकार बनाने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह देश बनाने का माध्यम है, क्योंकि पूरे सेवा भाव के साथ उन्होंने राजनीति।
4: जिस वक्त राजनीतिक उथल पुथल सारी दुनिया में फैली हो, तब निर्वाचित सरकार के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रमुख बनना दुर्लभ उपलब्धि ही कहा जाएगा। गुजरात के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के रूप में मोदी का कार्यकाल अगर हम मिला दें तो 9000 दिन के पार पहुंच गया है। इसकी शुरुआत 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में हुई। 25 साल के इस सफर में एक बात जो कॉमन है वो है जनता से मोदी का जुड़ाव। गुजरात हो या फिर देश, जनता से लगातार संवाद की मोदी की कोशिश साफ नजर आती है, ताकि जनता को यह हर पल लगता रहे कि वो और मोदी एक ही टीम का हिस्सा है।
7: दस 12 साल पहले के मोबाइल फोन्स को याद करिए, तब आउटडेटेड फोन की स्क्रीन घड़ी घड़ी हैंग हो जाती थी। स्क्रीन को कितना भी स्वाइप कर ले, असर कुछ होता ही नहीं था। और ऐसी ही स्थिति उस समय सरकार की भी थी।
8: Thank you. भारत मिलकर की शॉट।
6: नरेंद्र मोदी का सीएम से पीएम तक का 25 साल का सफर अभूतपूर्व है। राजनीति में कितने नेता आए और कितने गए, लेकिन सियासी कामयाबी की इतनी लंबी आयु भारत के इतिहास में किसी दूसरे नेता को नसीब नहीं। 25 साल यानी सिल्वर जुबली। साल 2001 से साल 2026 के बीच मोदी ब्रांड की सफलता देखकर लगेगा कि देश की राजनीति में मोदी नाम की चांदी रही है। लेकिन इस सफर को थोड़ा गहराई से देखें तो पता चलेगा कि मोदी के नसीब में चांदी की चम्मच नहीं, हमेशा चुनौतियां रही हैं।
0: जो लोग चांदी का चम्मच लेकर पैदा होते हैं उन्हें पता नहीं होता मेहनत क्या होती है।
6: जिस नेता के राजनीतिक सूर्यास्त की भविष्यवाणी पहले ही दिन कर दी गई हो, जिसके सामने चुनौतियों का अंबार हो, वो 25 साल तक जनता के दिलो दिमाग पर छाया रहेगा, बिना एक भी चुनाव हारे जनता की सेवा करता रहेगा। 7 अक्टूबर 2001 के दिन राजनीतिक पंडितों की ये सोच से भी परे था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने सामने आई हर चुनौती को अवसर में बदल दिया।
0: जब मैं गुजरात में था तो एक मंत्र के साथ जीता था, और वो मंत्र था गुजरात के विकास से देश का विकास। न तो सरकार चलाने का अनुभव था और न ही प्रशासनिक व्यवस्था का बहुत ज्ञान था। मेरे पास तब कुछ था तो वो था जनता पर विश्वास। गुजरात ने करके दिखाया, आज गुजरात जहां पहुंचा है उसका उदाहरण दुनिया देती है।
6: साल 2001 से 2026 के बीच नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री के रूप में 4 और प्रधानमंत्री के रूप में 3 बार शपथ ली। 25 सालों के सफर में भले ही दुनिया की नजर मोदी की कामयाबी पर रही हो, लेकिन जब उन्होंने पहली बार गुजरात की कमान संभाली तो आज अजेय लगने वाली भारतीय जनता पार्टी और मोदी का गुजरात दोनों एक साथ कई चुनौतियों से घिरे थे।
9: जब वो गुजरात आए तो स्थिति इतनी खराब थी, गुजरात में एकदम एंटी एस्टेब्लिशमेंट एंटी इनकम्बेंसी का माहौल था। भारतीय जनता पार्टी जो थी वो असेंबली के 5 चुनाव और लोकसभा का 1 चुनाव जो थी वो हार गई थी। उसमें से सिचुएशन को सुधारना वो मोदी जी के लिए बहुत बड़ी चैलेंज थी। तब मोदी जी ने, आपको अगर याद हो तो वो जब आए थे तो गुजरात में लगातार 3 साल तक सूखा पड़ा था, और वो सूखा जो था उसकी स्थिति इतनी खराब थी, उसके ऊपर से अगर आप देखें तो कच्छ में 1999-2000 में जो बहुत बड़ा साइक्लोन आया, और उसके बाद 2001 में जो भूकंप आया, उसके बाद स्थिति इतनी खराब हो गई कि लोगों को लगा कि कच्छ जो है वो तो बिल्कुल बर्बादी के कगार पे आ गया है। लेकिन मोदी जी ने कहा कि नहीं, ये आपत्ति है, उसमें से अवसर ढूंढना चाहिए।
6: लेकिन मोदी लगे रहे हर चुनौती से निपटने में, और देखते ही देखते 25 साल गुजर गए। एक चुनौती के बाद दूसरी चुनौती से जूझते जूझते, एक लक्ष्य को पाने के बाद उससे भी बड़े लक्ष्य को हासिल करते मोदी ने रिकॉर्ड बना दिया, क्योंकि सीएम और पीएम रहते नरेंद्र मोदी 9000 से ज्यादा दिनों के सेवा काल का प्रतीक बनकर देश के बाकी किसी भी नेता से आगे निकल गए हैं।
0: साथियों, गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में जो अनुभव मिला उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। जमीन पर समस्या क्या है, समाधान क्यों नहीं हो पाता, फाइल क्यों अटकती है, लास्ट माइल डिलीवरी कैसे सुनिश्चित होती है, ऐसे अनेक प्रश्नों का उत्तर मैंने खोजा। और फिर मैंने जो सीखा

0: दुनिया पर नजर दौड़ाने पर 25 साल अनवरत सेवाकाल मौजूदा किसी नेता को मिलता नहीं दिखता। जब दुनिया भर में सरकारें लड़खड़ा रही हैं, बड़े बड़े नेता कमजोर हो रहे हैं, तब भारत में नरेंद्र मोदी 25 साल बाद भी स्थिरता और भरोसे का प्रतीक बने हुए हैं। लेकिन दुनिया की उठापटक ने भारत के तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के सपने के रास्ते में रुकावटों की चुनौतियां डाल दी हैं। चिंता की बात यह है कि ये चैलेंज ऐतिहासिक रूप से बहुत बड़े हैं। दुनिया दूसरे विश्व युद्ध के बाद जितनी खतरनाक है, बड़े बड़े देश अपने संसाधनों और प्रभाव का इस्तेमाल हथियार की तरह कर रहे हैं। दोस्त और दुश्मन में फर्क करना मुश्किल है, तब भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती तेज विकास की रफ्तार को बनाए रखने की है।
1: विश्व की सबसे तेजी से ग्रो करने वाली मेजर इकोनॉमी है, जल्द ही दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं।
0: इस वक्त भारत की चिंता घरेलू से ज्यादा बाहरी है। दुनिया में इस वक्त गंभीर संकटों के अलार्म एक साथ बज रहे हैं। एक तरफ चल रहे युद्धों ने तेल की सप्लाई का संकट खड़ा कर दिया है, तो वहीं कुछ देशों की स्वार्थी नीति ने, उनकी तरफ से की जा रही राजनीति ने इसे इतिहास के सबसे गंभीर संकट में बदल दिया है। यूक्रेन युद्ध की वजह से खाद की कमी हो गई है, तो दहकते काले सागर से अनाज की सप्लाई हर दिन के साथ मुश्किल होती जा रही है। ये सिलसिला अगर नहीं थमा तो फिर इसकी चपेट में भारत आएगा। विकसित भारत के लिए जरूरी तेज रफ्तार ग्रोथ बनाए रखना मुश्किल होगा।
1: फ्रेंड्स, आज जब दुनिया में ट्रेड बैरियर्स बढ़ रहे हैं, भारत इकोनॉमिक ब्रिजेज बना रहा है। 2014 के बाद से हमने दुनिया के करीब 40 कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं।
0: जब भी दुनिया में अस्थिरता बढ़ती है तो निवेशक अपना पैसा इमर्जिंग मार्केट से बड़े देशों में ले जाते हैं। ये सिलसिला अगर नहीं थमा तो रुपए पर दबाव और विदेशी निवेशकों की बिकवाली दोनों बढ़ सकती है। तो गुजरात के मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री तक के रूप में सिल्वर जुबली मना रहे प्रधानमंत्री मोदी के सामने इस बार भी तकदीर ने चांदी की चम्मच नहीं, चुनौतियों का अंबार लगा रखा है। यानी 25 साल के सेवा काल के बाद भी मोदी को कसौटी पर कसे जाने का सिलसिला थमता नहीं दिखता।
2: नरेंद्र मोदी चाहे गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हों या फिर प्रधानमंत्री देश के, उनका सबसे ज्यादा जोर सरकार के कामकाज में बदलाव और सरकारी योजनाओं की जनता को होने वाली डिलीवरी पर फोकस रहा है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मोदी सरकार की सबसे बड़ी पहचान है, जिसने बिचौलियों, फर्जी लाभार्थियों और प्रशासनिक सुस्ती का परमानेंट इलाज किया, सरकारी योजनाओं पर गरीब का भरोसा मजबूत करने का काम किया, जिसकी बदौलत प्रधानमंत्री मोदी को लाभार्थियों की ऐसी टीम मिली जिसने पिछले 25 सालों में उन्हें अजेय बनाए रखा।

0: नरेंद्र मोदी के सीएम से पीएम तक के 25 सालों में साल 2001 से 2026 के बीच लाभार्थियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। गुजरात के ये वो चेहरे हैं जिनमें से किसी का पक्का घर बना है तो किसी की जिंदगी 24 घंटे बिजली सप्लाई से बदल गई। शौचालय और गर्भवती महिलाओं की योजना के लाभार्थी भी इसमें शामिल हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष के आरोपों के खिलाफ अपना सुरक्षा कवच बता चुके हैं।
1: 140 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद, ये मेरा सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। और गालियों के शस्त्र से, झूठ के शस्त्रास्त्रों से इस सुरक्षा कवच को कभी तुम भेद नहीं सकते हो। वो विश्वास का सुरक्षा कवच है और इन शस्त्रों से तुम कभी भेद नहीं सकते हो।

0: इसकी वजह है इसका पक्का घर, जो गुजरात सरकार पंडित दीनदयाल आवास योजना के तहत बनाती है। भरत भाई डाबला पहले कच्चे मकान में रहते थे, लेकिन सरकार ने उन्हें पक्का घर बनाने के लिए 1,70,000 रुपए दिए, जिससे उन्होंने पक्का मकान बनवाया।
1: मैंने घर बनाना स्टार्ट किया तो पहला तो मैंने वो पाया खोद के पाया काम किया तो मेरे को 30,000 मिले। बाद में मैंने जो लिंटर लेवल किया काम, 80,000 मेरे को मिले। और बाद में मैंने जब पूरा मकान कर लिया तब 50,000 मिले। बाद में 10,000 वो टॉयलेट को मेरे को मिलते हैं, वो भी 10,000 मेरे को मिल गया।
2: टोटल कितने मिले?
1: टोटल मेरे को 1,70,000 रुपये मिले।
3: मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने जो योजनाएं गुजरात में लागू की, उन्हें मोदी ने केंद्र में आकर बड़े पैमाने पर सुधार के रूप में लागू किया। नीतिगत स्तर पर इसे गुजरात मॉडल का विस्तार कहा गया, चाहे स्वच्छ भारत मिशन हो या फिर आयुष्मान भारत, मेक इन इंडिया हो या फिर डिजिटल इंडिया, गुजरात की ही योजनाओं का केंद्र में रूपांतरण दिखा। मोदी के ये सारे फैसले उन्हें रिफॉर्म के मामले में भी एक मजबूत टीम मैन के रूप में पेश करते हैं।
4: भूज के भूकंप ने मुझे पुनर्निर्माण के लिए डटे रहना सिखाया। जीवन के हर प्रवास ने मुझे नीतियों में संवेदना का रास्ता दिखाया। हर गांव, हर गरीब ने मुझे सिखाया कि साधन संसाधन भले ही सीमित हो, लेकिन सपने बड़े होने चाहिए।
0: मोदी कहते हैं कि चुनौतियों ने सेवा और गुजरात को दोबारा खड़ा करने का उनका संकल्प मजबूत किया। इसकी एक मिसाल है गुजरात का धुर्गो।
4: गुजरात के अंदर पाकिस्तान की सीमा पर आखिरी गांव है कच्छ के रेगिस्तान में दोरडो। आखिरी गांव को जिंदा कर दिया, उसके कारण पूरा इलाका जिंदा हो गया।
0: धोरडो, एक गुमनाम सा गांव, कैसे बेस्ट टूरिज्म विलेज बन गया, दुनिया में गुजरात का चेहरा बन गया, ये कहानी मोदी से ही जुड़ी है।
4: आज धोरडो बहुत बड़ा टूरिस्ट सेंटर बना हुआ है, लाखों लोग हर साल आते हैं, वहां के लोगों के लिए करोड़ों रुपए का व्यापार होता है। सीमा पर बसा हर गांव देश का पहला गांव ही है।
0: जिन्होंने कच्छ में भूकंप की तबाही के 5 साल बाद इस इलाके में रंगों का मेला सजाने का सपना जो नरेंद्र मोदी ने देखा, वो एक दिन पूरे इलाके की तस्वीर बदल देगा, किसी ने नहीं सोचा था।
5: लोगों को लगा कि कच्छ जो है वो तो बिल्कुल बर्बादी के कगार पे आ गया है, लेकिन मोदी जी ने कहा कि नहीं, ये आपत्ति है, उसमें से अवसर ढूंढना चाहिए। और आज वो कच्छ जो है, वहां अगर आप जमीन खरीदने जाओगे ना तो मुंबई में मरीन ड्राइव का जो रेट है ना, उस रेट पे भी कच्छ में जमीन नहीं मिल रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि कच्छ का डेवलपमेंट इतना ज्यादा हुआ।
0: कच्छ के विकास की कहानी अब आपको मियां हुसैन सुनाएंगे, जो धोरडो के सरपंच, जिनकी मुस्कान के पीछे मोदी की वो सोच है जिसने खेल ही बदल दिया।
6: नरेंद्र मोदी साहब ने ये जो नमक का रण था, मीठों का, उसको मिठाई बना दिया। आज पूरी दुनिया हमारे गांव में आती है और इतनी बड़ी टेंट सिटी भी लगती है, और यहाँ से लेके भरंडियारा तक 30 किलोमीटर के अंदर 37 रिसोर्ट है, जिसमें पूरे हमारे लोकल लोग चलाते हैं, होम स्टे चलाते हैं, गुजरात टूरिज्म उनको लाइसेंस भी देते हैं, और ऐसे करके यहाँ का पूरा जबरदस्त डेवलपमेंट हुआ है। हमारे गांव में मैडम 7 तो हेलीपैड है।
5: अच्छा।
6: और दूसरा वाईफाई, अमुक जो ऐसी अमुक चीजें हैं जिसका नाम भी कभी नहीं लोगों ने सुना था।
0: धोडो की कहानी आज की, लेकिन इसकी तकदीर मोदी के मुख्यमंत्री रहते बदली, जिन्होंने रन उत्सव का आयोजन शुरू किया, दुनिया के सामने इसे पेश किया।
5: जी, कितने महीने चलता है?
6: जी यहाँ पे ये 11 महीने मतलब नवंबर से शुरू होता है और 31 मार्च तक चलता है।
5: ठीक है, गांव को इनकम होता है इससे?
6: जी बहुत बढ़िया होता है। ये जहाँ जिस जगह पे आप खड़े हैं, इसका नाम है गेटवे टू रन रिसोर्ट, गवर्नमेंट का है, BADP ग्रांट में से बना है, और DM साहब इसके चेयरमैन रहते हैं, उसके अंडर में रह के हम लोग चलाते हैं, और इसका जो बेनिफिट होता है वो गाँव के विकास में जाता है।
7: रन ऑफ कच्छ में पर्यटकों के ठहरने और घूमने मनोरंजन की बेहतरीन सुविधाएं। सफेद रन के पास रजवाड़ी टेंट से लेकर स्थानीय संस्कृति का अनुभव देने के लिए पारंपरिक मिट्टी के घरों में ठहरने के विकल्प भी मिलते हैं, जिन्हें भुंगा कहा जाता है। मियां हुसैन से आज तक संवाददाता श्वेता सिंह की मुलाकात कच्छ घूमने के दौरान हुई, जिसमें उन्होंने धोडो के उस दौर की कहानी भी सुनाई जब गांव वाले पलायन की सोच रहे थे। 2001 के भूकंप ने इस इलाके को पूरी तरह तबाह कर दिया था, रेगिस्तान भी बढ़ता जा रहा था, लेकिन मोदी ने इस जगह के खारेपन को विकास की मिठास में बदल दिया।
8: आप कह रहे थे कि आप लोग गांव छोड़कर जाने
6: के पहले जब कोई आमदनी नहीं होती थी लोगों को यहाँ पे, हम मालदारी लोग हैं, जो ऋण बढ़ता था, जो खारास है इसको ये बढ़ रही थी, तो हमारे बिल्कुल यहाँ तक आ गए थे। तो हमने सोचा अभी क्या करें, यहाँ घास नहीं होगा तो मालदारी लोग हम कैसे रहेंगे, तो गांव छोड़ के और कहीं जाए जहाँ ऋण दूर हो, लेकिन ये तो कमाल हो गया।
7: आज ही कमाल इस पूरे गांव में ही नहीं पूरे इलाके में दिखता है। 3 साल पहले कच्छ के रण उत्सव में ये गांव सूर्य की ऊर्जा से जगमग होकर अपनी उपलब्धि की रोशनी सारी दुनिया तक पहुंचा चुका है।
6: हम लोगों तो 11 पीढ़ी से यहां रहते हैं, लेकिन मालदारी हो गए, गाय भैंस पालने वाले, और दूसरा ये जो हमारा डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, जब ये रणोत्सव शुरू हुआ 2006 से लेके आज तक, तो इसमें तो हम समझते हैं कि हमारा जबरदस्त विकास हुआ। मेरा गांव जो है वो छोटा है, 550 पॉपुलेशन है, लेकिन इस गांव के अंदर आज हर फैसिलिटी है, बैंक है, 3 ATM है, बायोमेट्रिक ATM है, सोलर है, 2 साल पीने का, इतना विकास हुआ है। अगर 40 मुंदा विकास का हुआ है वो सब रणोत्सव की वजह से, क्योंकि लोग आने लगे, हमारे रोड रास्ते अच्छे हो गए।
7: चुनौतियों के बीच मलबे से भविष्य गढ़ने की इसी आदत ने मोदी को जनता के इतने करीब पहुंचाया। ऐसी ही एक कहानी एक मुस्लिम गर्भवती महिला से जुड़ी है, जिससे मिली प्रेरणा ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बीज डाले। केंद्र सरकार की इस योजना का मकसद गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पोषण पहुंचाना है, लेकिन इसकी प्रेरणा के केंद्र में वरिष्ठ पत्रकार अजय उम्मत के मुताबिक एक गर्भवती मुस्लिम महिला से जुड़ा एक किस्सा है।
5: मुझे याद है कि 3रा दिन था और मोदी जी भरूच में, तब एयरपोर्ट नहीं था लेकिन हेलीपैड जो था, हेलीपैड से वो अहमदाबाद के लिए हेलीकॉप्टर में बैठने जा रहे थे, और भरूच के SP उस वक्त जो थे, उन्होंने मोदी जी को कहा कि एक मुस्लिम महिला सामने बैठी हुई है, करीब 2-2.5 घंटे से आपका इंतजार कर रही है, और वो कहती है कि मुझे मोदी जी से 1 मिनट बात करनी है। अब वो जेड प्लस सिक्योरिटी का मामला था, एक मुस्लिम महिला हाथ में गुलाब लिए हुए 2 घंटे से इंतजार करके मोदी जी से क्या बात करना चाहती है, तो मोदी जी ने कहा कि ठीक है बुलाइए, वो बुरखा परस्त महिला मुझे अभी भी याद है। तो उसको मोदी जी ने बुलाया और फिर बताइए मोहतरमा, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। तो वो मुस्लिम महिला ने बड़े ही भावुक होकर बोला कि सर, मैं गर्भवती महिला हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा जो है आपके जैसा होनहार और तेज तर्रार निकले, तो मुझे आपसे आशीर्वाद चाहिए, तो मुझे शुभकामना दीजिए। तो मोदी जी ने उसको कहा कि बहन, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। उनके साथ जो भरूच डिस्ट्रिक्ट के जो हॉस्पिटल के सुपरिंटेंडेंट थे, उन्होंने कहा कि भाई ये महिला के सब उनका एड्रेस और उनकी डिटेल्स ले लीजिए, और मुझे लगता है कि ये महिला शायद एनीमिक है, कुपोषित महिला है, तो उस महिला को जब तक बच्चा और जच्चा नहीं आता है तब तक उस महिला को जो भी पौष्टिक आहार मिलना चाहिए वो आहार देने की जवाबदारी स्टेट गवर्नमेंट की है। बाद में उन्होंने फिर कैबिनेट में आके अपने साथियों के साथ ये पूरा किस्सा जो था वो शेयर किया, और मुझे अभी भी याद है कि आनंदी बहन तब एजुकेशन और रेवेन्यू मिनिस्टर थी, तो उन्होंने आनंदी बहन को कहा कि हमें ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के प्रति ध्यान देना चाहिए और कुपोषित बच्चे जो हैं गुजरात में पैदा ना हो, उसके लिए गर्भवती महिला जो है उनका पूरा ख्याल रखना चाहिए। तो आनंदी बहन ने अलग अलग डॉक्टर्स के साथ बात करके, गायनेकोलॉजिस्ट के साथ और फिर जो भी फूड एक्सपर्ट्स और न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट थे उनके साथ बात करके, उन्होंने एक स्कीम बनाई, और वो स्कीम में जितनी भी गर्भवती महिला होती थी उनको एक किट दिया जाता था। और आप जो आज ये देख रहे हैं आयुष्मान योजना और ये सब चीजें जो हैं वो उस वक्त की देन है कि एक मुस्लिम महिला को देख के मोदी जी ने ये पूरी स्कीम बनाई थी।
7: इस तरह एक मुलाकात ने पहले गुजरात और फिर पूरे देश की गर्भवती महिलाओं की सेहत से जुड़ी योजना को जन्म दिया, जिसका सीधा फायदा देश की महिलाओं को मिल रहा है।
1: इसमें साफ सफाई रहती है, गंदगी भी नहीं रहती है और सुख शांति में रह सकते हैं। धूप हो, बारिश हो, ठंडा मौसम हो, हमको सब सुरक्षा मिलती है।
7: प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश भर में करोड़ से ज्यादा घर बनाए गए हैं। बड़े बदलाव लाने वाली ऐसी ही एक योजना गुजरात की दूध संजीवनी योजना है।

लाभार्थियों की ताकत के बलबूते ही प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में खड़े होकर कहा था, एक अकेला सब पर भारी। मोदी की सियासी ताकत को समझने के लिए गुजरात के बनासकांठा चलिए, जिसके डीसा तालुका के विठोदरा गांव में खड़े इस नौजवान की जिंदगी ही बदल गई

0: परन गाजर पानी पी।
1: आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में कुपोषण से लड़ने की दिशा में गुजरात की इस योजना ने बड़ा काम किया है। आदिवासी और पिछड़े इलाकों के स्कूलों में बच्चों को स्कूल आते ही दूध दिया जाता है। बच्चों के अलावा गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी इस योजना का फायदा मिला है, ताकि वो कुपोषण, खून की कमी और कम वजन जैसी समस्याओं से दूर रहे। नवसारी जिले के आदिवासी क्षेत्रों में ये योजना बच्चों और माताओं के लिए सही मायने में संजीवनी का काम कर रही है।
2: यहाँ मुझे सरकार से की दूध संजीवनी की योजना का लाभ दिया जाता है। वहाँ दूध संजीवनी में मुझे हर बुधवार और शुक्रवार को 200 ml दूध दिया जाता है।
3: सगर्भा बहनों और धात्री माताओं को सप्ताह में दो बार 200 ml दिया जाता है। और बच्चों की बात की जाए तो बच्चों को सप्ताह में पाँच दिन 100 ml का दूध दिया जाता है। इससे बच्चों में शारीरिक और मानसिक विकास बहुत अच्छे से हो रहा है। दूध संजीवनी का हेतु बच्चों को सुपोषित करना है और कुपोषण को घटाना है।
1: ज्योति ग्राम योजना गुजरात सरकार की एक अनूठी पहल थी, जिसे आगे जाकर दीन दयाल उपाध्याय ज्योति ग्राम योजना के रूप में बढ़ाया गया। साबरकांठा जिले के इडर तालुका के कावा गांव तक बिजली पहुंचे, इसके लिए साल 2006 में ये योजना शुरू हुई, जिसने पिछले 20 सालों में गांव की शक्ल ही बदल दी है। 24 घंटे लगातार बिजली ने गुजरात के इस गांव में सिर्फ बल्ब ही नहीं जलाए, बल्कि गांव वालों की आजीविका, बच्चों की पढ़ाई और बुजुर्गों की जिंदगी में नई रोशनी भरी है। वहीं बिजली की सप्लाई होने से पानी की समस्या भी खत्म हुई, तो गाँव वालों ने पशुपालन करके अपनी जिंदगी संवार ली।
4: ज्योति ग्राम योजना आने से 24 घंटे बिजली आई है, तो हम हमारे घर पे पशु भी रख सकते हैं। पशु रखने के लिए पानी चाहिए था, लेकिन पानी पहले तो नहीं आता था, बिजली नहीं थी, लेकिन अब 24 घंटे ज्योति ग्राम योजना से बिजली आई है। बिजली आने से हमारे घर पे पानी आया है, पानी आने से हम हमारे घर पे पशु रख सकते हैं, और पशु अभी हम रखे हैं, और आने में हर समय में हम हमारे घर में ज्यादा पशु रख सकते हैं और ज्यादा हम कमाई भी कर सकते हैं, हम तो बहुत खुशी होगी।
1: देश ने भले ही मोदी सरकार के आने के बाद खुले में शौच मुक्त करने का लक्ष्य रखा हो, लेकिन मोदी ने इसे साल 2006 में गुजरात में लागू किया। मोदी के मुख्यमंत्री रहते निर्मल गुजरात योजना शुरू की गई, जो स्वच्छता का जन अभियान था। इसके तहत शहरी झुग्गियों गांव में बड़े पैमाने पर शौचालय बनाए गए और खुले में शौच से मुक्ति मिली। इसी निर्मल गुजरात के एक लाभार्थी वलसाड़ जिले के मंगू भाई पटेल, जिनके परिवार को अब शौच के लिए बाहर जाना नहीं पड़ता। इस तरह मोदी ने गुजरात के अपने अनुभव और योजना का इस्तेमाल केंद्र में किया और उसका फायदा देश को मिला।
5: उस वक्त भी वो सर्वस्पर्शीय सर्वसमावेशी विकास के लिए काम करते थे, यहां पर भी किया। जैसे यहां है तो 11 साल के कम समय के अंदर देश के 60 करोड़ गरीबों को घर, बिजली, शौचालय, गैस, शुद्ध पीने का पानी, 5 किलो अनाज हर व्यक्ति को प्रतिमा, और 5 लाख तक का दवाइयों की और हॉस्पिटल की सुविधाएं दे दी, जिसके लिए 60 करोड़ लोग लगभग 8 दशक से राह देखते थे। एक ही दशक में सारी समस्याओं को निर्मूल कर रख दिया।
1: हर सरकार नौजवान, गरीब, महिला और किसान को ध्यान में रखकर योजना बनाती है, लेकिन मोदी सरकार की असल कामयाबी कई एक्सपर्ट को उसे जमीन पर लागू करने में दिखती है, जिसने एक ऐसा वर्ग तैयार कर दिया है जो जाति, धर्म और लिंग के पुरानी राजनीति के फॉर्मूले में नहीं आता, जिसे मोदी अपना सुरक्षा कवच मानते हैं।
6: 25 साल में एक और चीज जो स्पष्ट रही है वो है इंडिया फर्स्ट की नीति। मोदी खुद कह चुके हैं वो इंडिया फर्स्ट की नीति पर चलते हैं। कम शब्दों में यही उनकी विचारधारा है, जिसकी छाप उनके हर फैसले में दिखती है। विदेश नीति से लेकर भारत की रक्षा तैयारियों में इसका असर दिखता है। सीमाओं पर किसी भी प्रकार का खतरा हो या आतंकवाद के खिलाफ जवाबी कार्रवाई, देश के हितों को सर्वोपरि रखकर रणनीतिक और सख्त फैसले लेना ही मोदी अपनी सबसे बड़ी पहचान मानते हैं। बिल्कुल एक सफल टीम के कप्तान की तरह, जो वो फैसले लेता है जो टीम के लिए जरूरी है।
7: आज देश अपनी चुनौतियों का स्थायी समाधान कर रहा है। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की समस्या, ऐसा लगता था कि यह अंतहीन है, और देश इसके दुष्प्रभावों से बाहर नहीं निकल पाएगा। लेकिन आज आर्टिकल 370 की दीवार पूरी तरह टूट चुकी है। देशवासी मान चुके थे कि न तो ये आतंकवादी मानेंगे और न ही उनके आका मानेंगे, लेकिन ये भारत की अदम्य इच्छा शक्ति है, हमने घर में घुसकर मारा।
1: नरेंद्र मोदी ने सीएम और पीएम के अपने 25 साल के कार्यकाल की कई उपलब्धियों के आधार पर ये बताने की कोशिश की कि उनका कार्यकाल क्यों अलग है।
8: भारत माता की, मोदी जी को जय श्री राम।
1: बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि मोदी ने अपनी राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ जनसेवा और सुशासन को प्राथमिकता दी।
8: उनके इस 25 वर्ष की सेवा और समर्पण की इस यात्रा को जो अनवरत है, अविचल है, अथक यात्रा के लिए 140 करोड़ देशवासियों के तरफ से और भारतीय जनता पार्टी के लाखों लाख कार्यकर्ताओं की तरफ से हार्दिक बधाई देता हूँ।
1: अमित शाह ने भी नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे होने पर बधाई देते हुए उनकी उपलब्धियां गिनवाई। कहा कि पीएम मोदी ने गुजरात के सुशासन मॉडल को पूरे देश में खड़ा करके रख दिया है।
9: जब भी भारत का इतिहास लिखा जाएगा, ये 25 साल स्वर्णिम अक्षरों से लिखे जाएंगे।
1: दिल्ली में आयोजित सेवा ज्योति कार्यक्रम में राजनाथ सिंह ने भी पीएम की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने सिखाया कि राजनीति का मकसद सिर्फ सरकार बनाना नहीं है।
10: उन्होंने यह सिद्ध कर दिया है कि राजनीति केवल सरकार बनाने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह देश बनाने का माध्यम है, क्योंकि पूरे सेवा भाव के साथ उन्होंने राजनीति की है।
11: आसान नहीं है लगातार।
1: बीजेपी के तमाम नेताओं ने पीएम मोदी को बधाई दी, लेकिन दो विरोधी दल के नेता भी बधाई देने सामने आए। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि 25 साल जीतते रहना कोई छोटी बात नहीं है।
12: कुछ तो किया होगा कि लोगों ने बार बार वोट दिए। आसान नहीं है लगातार 25 साल इलेक्शन जीतना रियासत में और उसके बाद मरकजी लेवल पर। ये अच्छा, मैं अपनी तरफ से और अपने साथियों की तरफ से उन्हें मुबारक पेश करता हूँ।
1: उमर की तरह बीजेपी की कट्टर राजनीतिक विरोधी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी ने सार्वजनिक सेवा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 साल पूरे होने पर शुभकामनाएं दी। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने एक्स पोस्ट पर लिखा, एक ऐतिहासिक उपलब्धि जिसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पहले गुजरात के मुख्यमंत्री और फिर भारत के प्रधानमंत्री के रूप में लगातार 25 साल की जनसेवा पूरी करने पर हार्दिक बधाई। आपको हार्दिक शुभकामनाएं। विदेशी नेताओं के तरफ से भी पीएम मोदी को बधाई दी गई। जापान की पीएम साना ताकाची ने एक्स पर लिखा,
13: पीएम मोदी ने भारतीय समाज और देश के विकास के लिए लगातार काम किया है और भारत के विकास को गति देने के साथ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश की प्रतिष्ठा मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है।
1: नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिबनू ने लोकतंत्र में लगातार 25 साल तक सरकार के प्रमुख के रूप में नेतृत्व करने को एक दुर्लभ उपलब्धि बताया। वहीं भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे ने सहयोग के लिए आभार जताया और पीएम मोदी को बड़ा भाई बताते हुए कहा कि वो मानते हैं कि मोदी विष्णु के अवतार हैं।
6: हमारी इस पेशकश में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।

0: जाके खड़ी की, पार्किंग पे तेरा नाम लिखा है और सारा शहर जानता है पार्किंग बंटी की है, तूने यहाँ गाड़ी कैसे खड़ी कर दी?
1: क्या
2: पेश है अनमोल बटर बेक बिस्किट्स, इतना बटरी कि दिल पिघल जाए।
0: कहीं पार्किंग यार, कहीं भी लगा ले।
3: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
4: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
5: इस फेस्टिव सीजन हंडे सुपर डिलाइट डेज सबके लिए लाए हैं डिलाइट। हंडे शोरूम आओ, अमेजिंग कार्स पे 1,00,000 तक की अमेजिंग डील्स पाओ।
6: यार लोन भूल गया।
7: मैरी
6: सजेस्ट अ गुड बैंक ना।
7: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक।
6: स्मॉल फाइनेंस बैंक,
7: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन, होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, माइक्रो मॉर्गेज लोन, गोल्ड लोन, प्री ओन कार लोन, टू व्हीलर लोन।
8: There's nothing small about
6: us. Ujjivan, nothing small about us.
9: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार। सर एक बार दो तीन ठुमका लगाने बस।
10: मेरे पास एक आइडिया है।
9: क्या?
10: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा TMT बार से जो बना है,
11: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिला पर स्टेज नहीं हिलता,
12: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा TMT से बना है।
13: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही TMT बार से बना है।
11: कौन सी बनानी है?
14: आगे आगे,
15: अरे उधर
14: उधर गिर।
15: करेक्ट करेक्ट,
3: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
16: सर गैसो फास्ट की ग्रोथ तो चेक कीजिए।
17: गैसो फास्ट 27%, इनो 9.2%।
18: गड़बड़ है।
19: आहा, गैसो फास्ट वाले जीरे का जादू चला रहे, इसीलिए इनके चाहने वाले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। गैसोफा, इंडिया की एसिडिटी का असली इंडियन सॉल्यूशन।
2: पेश है अनमोल बटर बेक बिस्किट्स, इतना बटरी कि दिल पिघल जाए।
20: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा। अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया।
21: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद, लायन कश्मीर हनी।
20: असली शहद, असली स्वाद।
22: इतने पेमेंट ऐप्स पर सेफ कौन सा?
23: तो स्विच टू भीम, एकदम सेफ और भरोसेमंद, रिवॉर्ड्स भी मिलते रहते हैं। पाओ 40 रुपए का कैशबैक 40 रुपए से ज्यादा की पहली पेमेंट पर। भीम ऐप से करो पे।
0: इट्स अ माय वे।
24: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
25: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
24: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस,

0: कभी कभी जब दो अलग स्वाद साथ मिलते हैं तब मजा ही कुछ और होता है, जैसे स्वीट एंड सॉल्टी अनमोल टू इन वन बिस्किट, दो स्वाद एक साथ, क्या बात।
1: जेके मैक्स वाइट इजी,
2: दीवारों के दाग का जवाब सर जेके मैक्स वाइट इजी।
3: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं, गोल्डी हिंग कण कण में जान।
2: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर, मेंटर तरक्की का ऑलराउंडर।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: पंजाब चुनाव से पहले सबसे बड़ी पंचायत, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ हर सवाल पर होगी खुलकर बात। देखिए पंचायत आज तक पंजाब, 8 अक्टूबर दिन भर सिर्फ आज तक पर।
1: रियल्टी पार्टनर TDI इंफ्राटेक, नॉर्थ इंडियाज लीडिंग टाउनशिप डेवलपर।
2: हेल्थ पार्टनर वृंदा लाइफ, वी आर नोन फॉर क्वालिटी मेडिसिन।
3: बैंकिंग पार्टनर पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
4: स्पेशल पार्टनर ग्रेट खलीज चॉइस फॉर पावरफुल फिटनेस लिफ्ट्स बाय पोलो एलिवेटर।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
1: इस फेस्टिव सीजन हंडे सुपर डिलाइट डेज सबके लिए लाए हैं डिलाइट। हंडे शोरूम आओ, अमेजिंग कार्स पे 1,00,000 तक की अमेजिंग डील्स पाओ।
2: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार सर एक बार धोती ठुमका लगाने बस।
3: मेरे पास एक आइडिया है।
2: क्या?
3: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा TMT बार से जो बना है,
4: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिलाती है, पर स्टेज नहीं हिलता,
5: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा TMT से बना है।
6: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही TMT बार से बना है।
7: कौन सी बनानी है?
8: जेके मैक्स वाइप इजी, दीवारों के दाग का जवाब सिर्फ जेके मैक्स वाइप इजी।
9: माँ के पैरों की धूल माथे पर ले, मैं परिंदा खुले आसमान जहां जीत रू सारा।
10: कभी कभी जब दो अलग स्वाद साथ मिलते हैं तब मजा ही कुछ और होता है, जैसे स्वीट एंड सॉल्टी अनमोल 2-in-1 बिस्किट, दो स्वाद एक साथ, क्या बात।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
3: In association with
4: Signature Finest Cardamom Seeds,
5: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
6: अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल।

0: वी विल डू इट। सीएम से पीएम पद की अनवरत यात्रा के 25 साल पूरे हुए तो 2047 के विकसित भारत के लिए यही नरेंद्र मोदी का मंत्र था।
1: स्वागत है भाई, स्वागत है।
0: दिल्ली में विकसित भारत सेवा संकल्प सभा में प्रधानमंत्री मोदी ने 25 साल की अपनी सियासी जमा पूंजी को कुछ यूं शब्दों में बांधा। 7 अक्टूबर 2001 को नरेंद्र मोदी ने भूकंप से तबाह हुए गुजरात की कमान संभाली थी। राजनीतिक उथल पुथल भी मची हुई थी, लेकिन लगातार 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से लेकर लगातार 3री बार प्रधानमंत्री बनने की उपलब्धि उनके खाते में आई। सरकारों के प्रमुख के तौर पर मोदी के 25 साल पूरे होने पर बीजेपी ने आज देश भर में विकसित भारत संकल्प सभाएं आयोजित की हैं। आज तक से इंटरव्यू में अमित शाह ने बताया था कि गुजरात से दिल्ली की इस यात्रा में मोदी में क्या बदला और क्या बना रहा। बीते 12 वर्षों से मोदी की सरकार में कई ऐसे काम हुए हैं जिन्हें पहले असंभव माना जाता रहा है। राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक हर मोर्चे पर मोदी की उपलब्धियों का गुलदस्ता सजा हुआ है। कोविड से लेकर पहलगाम आतंकी हमले जैसे संकट आए हो, या पायलट स्मिथ मछार की बहादुरी का क्षण, पीएम हर जगह अपने नेतृत्व से पहली पंक्ति में दिखे। सेवा संकल्प सभा में मोदी ने स्मिथ की बहादुरी को भी देश के विकास के मिशन से जोड़ा। गुजरात हो या अब देश, नरेंद्र मोदी के अगर करोड़ों समर्थक हैं तो उन्हें विपक्ष का कड़ा विरोध भी झेलने को मिला है। राजनीति की यही रफ्तीली राहें शायद नरेंद्र मोदी को शक्ति देती होंगी। आज तक ब्यूरो।

प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली की सड़कों पर आजकल सियासी हलचल जोरों पर है और इसकी सबसे बड़ी वजह है SIR विवाद। मंगलवार को जब राहुल गांधी समेत विपक्ष का मार्च आकाशवाणी भवन के पास रोका गया तो लड़ाई आर पार की हो गई। अब बिना अनुमति परिसर के भीतर दाखिल होकर धरने पर बैठने के आरोप में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कांग्रेस के कई बड़े नेताओं पर FIR दर्ज हो चुकी है। इस बीच राहुल गांधी ने कहा कि वो FIR से नहीं डरते। FIR की इस गर्माहट के बीच आज जनपद के सागर रत्ना रेस्टोरेंट में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से आयोजित लंच ने सियासी गोलबंदी को और तेज कर दिया। ये सब तब हो रहा है जब प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक सरकार के मुखिया के रूप में 25 साल पूरे कर रहे हैं। जिस वक्त विपक्ष सरकार को उखाड़ फेंकने के सपने देख रहा है तब प्रधानमंत्री मोदी ने संकेत दिए कि उनकी सरकार मजबूती से काम कर रही है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के श्री विनायक मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के सामने 5 बड़े टारगेट रखे, आज इसके बारे में भी आपको बताएंगे।

अगली खबर, दुनिया में आर्थिक अनिश्चितता और सुस्ती के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत ही शानदार और बड़ी खबर आई है। वर्ल्ड बैंक ने भारत की आर्थिक मजबूती पर मुहर लगाते हुए वित्त वर्ष 2026-27 के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर 7.1 कर दिया है। पहले यह अनुमान 6.6% था। अमेरिकी संसद यानी कैपिटल हिल में भारत के जाबाज कैप्टन स्मिथ का नाम गूंजा। ये कोई आम बात नहीं है। फ्लाई दुबई फ्लाइट में आतंकी हमले को नाकाम करने वाले कैप्टन स्मिथ के अदम्य साहस को अमेरिकी सांसदों ने न सिर्फ आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज किया बल्कि उन्हें संसद में विशेष सम्मान दिया गया। और अगली खबर फ्रांस से, जहां पर फ्रांस में भड़की हिंसा के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा बयान दिया है। फ्रांस में स्कूलों की बदहाली के नाम पर हो रहे प्रदर्शन हिंसा, आगजनी और दंगों में बदल गए हैं। ट्रंप ने इसे सीधे तौर पर इस्लाम और अनियंत्रित प्रवासन से जोड़ दिया है।

0: डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि आंदोलन शिक्षा का नहीं बल्कि फ्रांस पर इस्लाम के बढ़ते दबदबे का नतीजा है। देखिए, और अगली खबर पश्चिम बंगाल से, जहां दक्षिण दिनाजपुर में सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया है। रात के अंधेरे में अवैध रूप से भारतीय सीमा में दाखिल हो रहे लगभग 50 से अधिक बांग्लादेशियों को सुरक्षा बलों ने धर दबोचा। इस पूरे ऑपरेशन में जो आसपास के गांव के लोग थे, जो ग्रामीणों थे, उन ग्रामीणों का भरपूर सहयोग मिला और ग्रामीणों ने सतर्कता दिखाई। उनकी सतर्कता और सुरक्षा बलों की मुस्तैदी ने घुसपैठ को नाकाम किया। और अगली खबर प्रेमानंद महाराज के आश्रम से जुड़े विवाद में नाम घसीटे जाने पर क्रिकेटर विराट कोहली की टीम ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। दावा किया गया था कि प्रेमानंद महाराज के आश्रम जाने के लिए 5 करोड़ रुपए की डील हुई थी। विराट कोहली के प्रवक्ता ने फलाहारी महाराज के दावों को पूरी तरह झूठा, बकवास और निराधार बताया है। टीम का कहना है कि विराट और अनुष्का की वृंदावन यात्रा सिर्फ और सिर्फ अटूट आध्यात्मिक आस्था का विषय है, किसी कमर्शियल डील का नहीं। और अगली खबर देहरादून से, जहां पुलिस की ढिलाई और बेखौफ चोरों का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। पीड़ित का आरोप है कि 12 सितंबर को हॉस्टल से आईफोन चोरी होने के बाद बेखौफ चोर अब खुद व्हाट्सएप पर मैसेज कर उनसे फोन का पासवर्ड मांग रहा है। पीड़ित का कहना है कि पुलिस चोर तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन चोर उल्टा उन तक पहुंच गया है। और अगली खबर जिस पर पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने एआई डीप फेक से बचने के लिए अपनी आवाज को ट्रेडमार्क कराने का आवेदन दिया है। इसके लिए उन्होंने लो सोनो जॉर्जिया यानी मैं जॉर्जिया हूं बोलते हुए यूरोपियन यूनियन के जो उसका पेटेंट दफ्तर है वहां पर 4 सेकंड की ऑडियो रिकॉर्डिंग जमा कराई है। सिर्फ कुछ सेकंड के ऑडियो से एआई किसी भी फर्जी आवाज को बना सकता है और इसी खतरे से निपटने के लिए जॉर्जिया मेलोनी ने यह अनोखा एक तरह से कानूनी रास्ता चुना है। अगली खबर पति की डांट से लेकर प्रियंका चोपड़ा की तारीफ तक, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से बड़ी ही दिलचस्प और प्रेरणादायक खबर सामने आई है। यशोदा लोधी, जिन्हें सोशल मीडिया पर लोग देहाती मैडम के नाम से जानते हैं, वो अंग्रेजी सिखाने के वीडियो बनाती है। एक दिन जब वो अपने खेत में काम करते करते वीडियो बना रही थी तो उनके पति ने उन्हें डांट दिया, लेकिन यशोदा रुकी नहीं, उन्होंने वीडियो इंटरनेट पर डाल दिया और फिर क्या, वो देहाती शब्द के मिथक को तोड़ते हुए सोशल मीडिया पर छा गई और अब लोग उनकी अंग्रेजी भाषा की बड़ी तारीफ कर रहे हैं।
1: फ्रेंड्स, लिटिल डिड आई नो दैट प्रियंका चोपड़ा जोनस मैम वुड शेयर माय वीडियो ऑन हर स्टोरी। यू नो, यस्टरडे व्हेन आई वेंट टू फार्म, आई वर्कड देयर एंड आई वाज अबाउट टू मेक अ वीडियो, देन आई वाज कॉल्ड बाय माय हस्बैंड फॉर मेकिंग अ वीडियो। समहाउ आई कुड मैनेज एंड आई मेड अ वीडियो एंड आई पोस्टेड इट ऑन इंस्टाग्राम एंड then something truly unexpected happened and today itself I have completed 4 lakh followers on Instagram. Yes friends, so for many people it might just be a story, but for me it really means a lot. It reminded me that you never know where your small efforts can take you.
0: लेकिन आज लगातार दूसरे दिन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और गिरफ्तारी की मांग को लेकर काफी हंगामा और विपक्ष का गतिरोध दिखा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली के जनपद स्थित सागर रत्न रेस्टोरेंट में इंडिया ब्लॉक के सांसदों को लंच पर आमंत्रित किया था और इस लंच मीटिंग में विपक्ष ने चुनाव आयोग के खिलाफ अपने मोर्चे को लेकर आगे की रणनीति पर मंथन किया। यहीं पर तय हुआ कि सभी सांसद जंतर मंतर जाकर मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ धरना देंगे। लंच खत्म होने के बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, डेरेक ओब्रायन और केसी वेणुगोपाल समेत इंडिया ब्लॉक के तमाम सांसद 3 अलग अलग बसों में सवार होकर जंतर मंतर विरोध प्रदर्शन के लिए रवाना हुए। यहां इन विपक्षी सांसदों का तर्क यह था कि जब जंतर मंतर विरोध प्रदर्शन के लिए एक तय जगह है तो पुलिस उन्हें वहां भी जाने से क्यों रोक रही है। जैसे ही सांसदों का काफिला आगे बढ़ा, दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के भारी बल ने पहले ही सागर रत्न

0: के पास फुटपाथ और रास्तों की घेराबंदी कर दी। इस दौरान पुलिस ने विपक्षी सांसदों की बसों को पहली रेड लाइट को तो पार करने दिया, लेकिन अशोक रोड के पास भारी बैरिकेडिंग लगा दी गई, बसों और सांसदों को रोक दिया गया। पुलिस का कहना था कि इस क्षेत्र में धारा 163 लागू है और विपक्ष को बिना अनुमति के मार्च करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। जब पुलिस ने आगे बढ़ने से रोका और पूरी तरह मना कर दिया तो माहौल तनावपूर्ण हो गया। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने वहीं रुकने का फैसला किया। विरोध दर्ज कराने के लिए वो सड़क पर लेट गईं, जबकि उनके ठीक पास में राहुल गांधी और दूसरे नेता भी खड़े थे। इस दौरान प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि जो सांसद केवल चुनाव आयुक्त से मिलने की मांग कर रहे हैं उनके साथ सरकार ऐसा व्यवहार कर रही है, सांसदों को पीटा जा रहा है। सड़क पर चल रहे इस हाई वोल्टेज हंगामे के बाद दिल्ली पुलिस ने भी सख्त रुख अपनाया। पुलिस बल ने घेरा बनाकर सभी प्रदर्शनकारियों को जबरन उठाना शुरू किया। इनमें भी लगातार दूसरे दिन ऐसा हुआ जब पुलिसकर्मियों को राहुल गांधी को जबरन उठाकर बस में बैठाना पड़ा, जिसे कांग्रेस कार्यकर्ता नाराज हुए और ये पूरा राजनीतिक घटनाक्रम एक बड़े विवाद में तब्दील हो गया। हाई वोल्टेज एक्शन का ये पूरा टाइमलाइन देखिए।
1: हम आपके साथ ऐसे नहीं होगा सर, आप प्लीज रोक लीजिए।
2: ऐसे नहीं होगा,
3: आप बताइए कैसे होगा।
2: आपने इसको धकेला नीचे।
3: नहीं सर, आप बताइए कैसे होगा, आप बताइए कैसे होगा।
2: हम यहाँ हैं, हटाओ हमें यहाँ।
4: सर मैं एक हमें तो हटा दे
2: सर, मैं कल भी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था,
4: रिक्वेस्ट करनी चाहिए
3: सर। ये हजारों की भीड़ है सर, सर ये हजारों की भीड़ है, किसी को चोट लग जाए।
5: जिस प्रकार से आज असामाजिक तत्वों के साथ अराजकता के वातावरण में इस देश के विपक्ष के नेता काम कर रहे हैं, मैं स्पष्ट रूप से उनके कहता हूं, जो उनका मकसद है, जो उनकी नियत है, मैं उनके मकसद और नियत को कभी भी भारत की जनता पूरी नहीं होने देगी। क्योंकि आपने केवल उन लोगों की चिंता की है जो यहाँ के लोगों का हक छीनते रहे। आज जिस प्रकार की चर्चा और जिस प्रकार के असामाजिक तत्वों को लेकर अराजकता को फैलाने का काम कर रहे हैं दिल्ली के अंदर, मैं आज कहना चाहता हूं नेता प्रतिपक्ष को कि आप जिन लोगों को हक दिलाने की बात करते हैं उन घुसपैठियों को भारत की जनता कभी हक नहीं देने देगी।
6: उनकी सोच और विचारधारा राष्ट्र के प्रति नहीं है, उनकी सोच और विचारधारा कुर्सी के प्रति है। प्रधानमंत्री जी, एनडीए की सरकार और देश की जनता राष्ट्र प्रथम की सोच और विचारधारा के साथ कार्य कर रही है, और जो नकारात्मक शक्तियां हैं उनको 3 बार देश की जनता ने जवाब दे दिया है, और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में 4थी बार भी देश की जनता उन्हें जवाब देगी।
7: FIR का मतलब है राहुल जी के लिए फेलवर इन रिजल्ट, FIR। अब 99 बाहर तो उनके नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव हार चुकी है, अब वो शतक लगाना चाहते हैं।
8: मुंबई में धरना हुआ विरोधी दलों के द्वारा, 2 घंटे मीटिंग करी, अपना जुलूस निकाला, जो कहना था कहा, चले गए। एक तो ये भी विपक्ष का आचरण है मुंबई में, और यहां पर आपने कैओस करा रखा है, पूरी दिल्ली को एक प्रकार से जाम कर रखा है। ये राहुल गांधी कौन सा आचरण दिखाना चाहते हैं?
0: अब ये समझिए कि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष और खासकर राहुल गांधी इट्स डन ब्रो का नारा क्यों लगा रहे हैं। बतौर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का कार्यकाल जनवरी 2029 तक है, और यहां बात सिर्फ इतनी नहीं है कि ज्ञानेश कुमार अगले 2 साल से ज्यादा वक्त तक इस देश के चुनाव आयोग की जिम्मेदारी संभालेंगे। विपक्ष के लिए इससे बड़ा मुद्दा यह है कि अगर वो अपना कार्यकाल पूरा करते हैं तो उनके नेतृत्व में कुल 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभा चुनाव होंगे, और इनमें ज्यादातर राज्य ऐसे हैं जहां पर सालों से विपक्षी दल जो हैं वो सत्ता से दूर हैं। जैसे साल 2027 में 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे, जिनमें

गोवा में साल 2012 से कांग्रेस सत्ता में नहीं आई है, गुजरात में 1995 से यानी पिछले 32 सालों से सत्ता में नहीं आई है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर पिछले 10 सालों से सत्ता में नहीं आई है, पंजाब में भी आम आदमी पार्टी सत्ता में है जिसने इंडिया गठबंधन और कांग्रेस से दूरी बनाकर रखी, जबकि ज्ञानेश कुमार के ही नेतृत्व में 2027 में हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं जहां कांग्रेस अपने दम कर सरकार में है। अगर 2028 से जनवरी 2029 तक की बात करें तो ज्ञानेश कुमार छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में भी चुनाव कराएंगे जहां बीजेपी और एनडीए की सरकार है, जबकि इसी दौरान तेलंगाना, कर्नाटक यहां भी चुनाव होंगे जहां कांग्रेस की सरकारें हैं। मुख्य रूप से देखें तो 2029 तक ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में जितने भी राज्यों में चुनाव होने हैं वहां बीजेपी की सीधी लड़ाई कांग्रेस से है, और सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश जहां समाजवादी पार्टी को छोड़कर इंडिया गठबंधन के बाकी दलों का ज्यादा कुछ दांव पर नहीं है, और यही कारण है कि कांग्रेस ज्ञानेश कुमार से कह रही है कि अब वो इस्तीफा दें, मुख्य चुनाव आयुक्त का पद किसी और के लिए खाली कर दें। यानी कांग्रेस नहीं चाहती कि ज्ञानेश कुमार अपना कार्यकाल पूरा करें और इन राज्यों में विधानसभा चुनाव की कमान वो संभालें। अगली खबर, अक्टूबर 2001 से 7 अक्टूबर 2026 ये वक्त है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस यात्रा का जो 25 साल बाद भी लगातार जारी है, जिसे बीजेपी राजनीति नहीं बल्कि राष्ट्रनीति की नई परिभाषा बता रही है। गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक सरकार के प्रमुख के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को 25 साल हो चुके हैं। इस मौके पर एक तरफ दिल्ली के श्री विनायक मंदिर में आस्था की तस्वीर दिखी तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित भारत का एक नया मंत्र दिया है, और 2047 का नया मंत्र है वी विल डू इट।

0: ਦਾਸ ਮੋਦੀ
1: ਨਰੇਂਦਰ ਦਾਮੋਦਰ ਦਾਸ ਮੋਦੀ ਈਸ਼ਵਰ ਕੀ ਸ਼ਪਥ ਲੇਤਾ ਹੂੰ।
2: 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण से लेकर देश के प्रधानमंत्री के रूप में तीसरे कार्यकाल तक 25 वर्षों में वक्त का पहिया घूमा और इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई है एक अभूतपूर्व यात्रा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के रूप में यानी लोकतंत्र के शीर्ष पद पर देश और प्रदेश की सरकार चलाते हुए 25 साल हो चुके हैं। बीजेपी दावा करती है कि ये वो यात्रा है जिसने भारत की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल दी। इस ऐतिहासिक पड़ाव पर पीएम मोदी ने भगवान श्री गणेश के चरणों में शीश नवाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब विनायक जी के दरबार में पहुंचे तो माहौल भक्ति और आस्था से सराबोर हो उठा। सात अक्टूबर 2001 जब गुजरात भूकंप की विभीषिका से जूझ रहा था तब नरेंद्र मोदी ने पहली बार मुख्यमंत्री के रूप में कमान संभाली थी और तब से अब तक अलग अलग पड़ाव से गुजरते हुए उनकी ये यात्रा निरंतर जारी है। साल गुजरात का नेतृत्व और 2014 से लगातार भारत के प्रधान सेवक के रूप में देश का मार्गदर्शन। 25 सालों के इस सफर में पीएम मोदी ने कई उतार चढ़ाव देखे। इस यात्रा के 25 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने रुकने या सुस्ताने की जगह देश के सामने एक नया नारा बुलंद किया।
0: स्वागत है भाई, स्वागत है।
2: नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 2047 तक भारत को विकसित और आत्मनिर्भर बनाना ही हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है और जब पूरा देश एक साथ बोलेगा तब हर असंभव लक्ष्य आसान हो जाएगा। पीएम के साथ लोगों ने भी इन नारों को दोहराया।
0: विकसित भारत बाय 2047, विकसित भारत बाय 2047, वी विल डू इट। विकसित भारत बाय 2047, मेरे साथ बोलिए। ये ऊर्जा, ये उत्साह, ये आत्मविश्वास ये अद्भुत है।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, भारत को दुनिया का एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने, अंतरिक्ष की खोज का विस्तार करने और यहां तक कि ओलंपिक की मेजबानी करने समेत जिन भी लक्ष्यों का जिक्र किया, भीड़ ने हर लक्ष्य के लिए हम इसे करके दिखाएंगे का नारा लगाया।
0: टॉप थ्री इकोनॉमी, आत्मनिर्भर भारत, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, ओलंपिक्स का आयोजन, अंतरिक्ष में कदम।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मेरे जीवन का कण कण क्षण क्षण भारत भूमि को समर्पित रहेगा।
0: स्वयं से समस्ती तक, स्वयं से व्यम तक मेरे जीवन का कण कण क्षण क्षण भारत भूमि को समर्पित रहेगा।
2: अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री ने भगवद गीता का कई बार जिक्र किया। उन्होंने संकल्प, साधना और कर्म जैसे शब्दों का भी बार बार इस्तेमाल किया और इन्हें देश के प्रति कर्तव्य और गर्व से जोड़ा। आज तक ब्यूरो।
3: लेकिन आज सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि जब देश के लिए जीते गए मेडल्स का रंग एक है तो राज्यों में इन्हीं मेडल्स की इनाम की राशि अलग अलग क्यों है। हमारे देश में आज एक देश एक कानून, एक देश एक चुनाव, एक देश एक टैक्स, एक देश एक पेंशन जैसे बड़े बड़े मुद्दों पर बहस हो रही है। सरकारों का पूरा जोर इस बात पर रहता है कि पूरे देश में हर व्यवस्था एक जैसी। भारत में उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, नियम एक हो। लेकिन आज हम एक ऐसा बुनियादी मुद्दा उठाना चाहते हैं जिस पर अमूमन चुप्पी साध ली जाती है, और वो मुद्दा है एक मेडल एक इनाम राशि का मुद्दा, वन मेडल वन प्राइज मनी। जापान के नागोया में हुए एशियाई खेलों में जब हमारे खिलाड़ी तिरंगा लहराकर लौटे तो उनके चेहरों पर देश का नाम रोशन करने की एक अजीब सी अनूठी सी तिरंगे के रंग में रंगी चमक थी। नागोया के स्टेडियम में जब भारत का राष्ट्रगान गूंजा तो वहां मौजूद हर भारतीय खिलाड़ी की आंखों में गर्व के आंसू एक जैसे थे। तिरंगा सबके लिए एक ही ऊंचाई पर लहराया गया और मेडल की चमक भी सबके लिए बराबर थी। वहां कोई भी खिलाड़ी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड का नहीं था, सभी खिलाड़ी सिर्फ और सिर्फ भारत के थे। लेकिन जैसे ही ये खिलाड़ी अपने वतन वापस लौटे वैसे ही पोडियम का वो एक भारत अचानक कई राज्यों की सीमाओं में बट गया। न सिर्फ बट गया बल्कि देश के लिए जीता गया वही मेडल किसी राज्य में पहुंचते ही करोड़ों का हो गया, किसी राज्य में उसकी कीमत महज चंद लाख रुपए रह गई। और हमें लगता है कि ये फर्क देश के लिए जान लगाने वाले खिलाड़ियों के दिल पर लगी गहरी चोट जैसा है। तो हमने सोचा आज ब्लैक एंड व्हाइट में सबसे पहले हम उन देशवासियों के लिए, उन खिलाड़ियों की चर्चा करेंगे। इस दर्द की गूंज आज कई राज्यों से आ रही है और आज देश के सामने सबसे बड़ा और चुभता हुआ सवाल यही है कि जो मेडल उत्तर प्रदेश के किसी खिलाड़ी के गले में सजने पर 75 लाख रुपए का सम्मान पाता है, वही उत्तराखंड के खिलाड़ी के गले में सिर्फ 15 लाख रुपए का कैसे रह जाता है। और सोचिए, क्या उत्तराखंड के खिलाड़ी की मेहनत कम थी, क्या उसके पसीने की बूंदों का रंग अलग था, या फिर देश के लिए जीते गए मेडल की कीमत अब इस बात से तय होगी कि खिलाड़ी का आधार कार्ड किस राज्य का है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि जब देश का नाम पूरी दुनिया में ऊंचा होता है तो पूरा देश एक साथ जश्न मनाता है, लेकिन इसके बावजूद जब उन्हीं नायकों को सम्मानित करने की बारी आती है तो सरकारों की नीतियां इतनी अलग और असंवेदनशील क्यों हो जाती है। उदाहरण के लिए उत्तराखंड से इस बार सिर्फ एक ही खिलाड़ी ने एशियन गेम्स में मेडल जीता है, नाम है कपिल पोखरिया। उन्होंने बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल मिला, लेकिन उत्तराखंड की खेल नीति के कारण उन्हें इस मेडल के लिए सिर्फ

15 लाख रुपए का ही इनाम राशि मिलेगी। जबकि उत्तराखंड के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में यही ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को मिलेगा 75 लाख रुपए। इस पर रमेश पोखरिया खुद रूंधे गले से ये पूछते हैं कि जो मेडल यूपी के खिलाड़ी के गले में 75 लाख रुपए का है, वही उत्तराखंड के खिलाड़ी के गले में 15 लाख का क्यों है? और ये भेदभाव या ये अंतर यही खत्म नहीं होता है।

0: महिला हॉकी टीम ने 44 सालों के बाद देश की झोली में गोल्ड मेडल डाला और इस जीत की नायिकाओं में मिजोरम की लालरेम स्यामी को राज्य सरकार ने 40 लाख रुपए देने का ऐलान किया, जबकि उत्तर भारत में यही गोल्ड जो है वो जीतने वाले खिलाड़ियों को 75 लाख से 4 करोड़ रुपए के बीच इनाम राशि मिलती है। इस अंतर पर लालरेम सियासी माफ कीजिएगा लालरेम जो है वो खुद ये सवाल पूछती है कि जब मेडल का रंग एक है तो राज्यों की इनाम राशि में इतना बड़ा फासला है। अगर आप इस ग्राफिक्स को देखेंगे तो ये फर्क आपको खिलाड़ियों का असली दर्द साफ साफ दिखाएगा बताएगा। एशियाई खेलों में जिस गोल्ड मेडल के जीतने पर पश्चिम बंगाल की सरकार 5 करोड़ रुपए देती है, उसी गोल्ड मेडल के लिए हिमाचल प्रदेश में खिलाड़ियों को 4 करोड़, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में 3-3 करोड़, पंजाब और कर्नाटक में 1-1 करोड़, तमिलनाडु में 75 लाख, उत्तराखंड में सिर्फ 30 लाख रुपए मिलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई खिलाड़ी देश के लिए मेडल जीतता है तो उस मेडल में तो कोई फर्क नहीं होता, जब वहां पर राष्ट्रगान गाया जाता है और जब तिरंगा लहराता है, लेकिन जब यही खिलाड़ी अपने देश वापस लौटते हैं तो किसी राज्य में इसी गोल्ड मेडल पर 5 करोड़ रुपए की इनाम राशि मिलती है और किसी राज्य में सिर्फ 30 लाख रुपए। सोचिए उस वक्त इन खिलाड़ियों पर क्या बीतती होगी। और हम तो चाहते हैं कि ये मुद्दा सबकी नजरों में आए, राज्यों से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजरों में आए, ताकि एक व्यवस्था इसके लिए बनाई जाए। उदाहरण के लिए रिले रेस में इस बार हरियाणा की किरण पाहल और कर्नाटक की एमआर पुवम्मा ने एक साथ खेलते हुए गोल्ड मेडल जीता, लेकिन किरण पाहल को इस गोल्ड मेडल के लिए हरियाणा सरकार ने दिए हैं 3 करोड़ मिले, जबकि कर्नाटक की एमआर पुवम्मा को इसी गोल्ड मेडल के लिए 35 लाख। 35 लाख और 3 करोड़, फर्क आप समझ रहे हैं, है ना। जब इस पर सवाल उठे तो कर्नाटक सरकार ने इनाम राशि बढ़ाकर अब 1 करोड़ कर दिया, लेकिन फिर भी 3 गुना किसी और को मिला है। फैसला किया लेकिन तब भी दोनों खिलाड़ियों को ही एक गोल्ड मेडल पर बराबर राशि नहीं मिल रही है, जबकि दोनों ने एक साथ गोल्ड मेडल जीता है। इसी तरह हॉकी में गोल्ड मेडल जीतने वाली 12 महिला खिलाड़ियों में 4 महिला खिलाड़ी झारखंड से थी, जिन्हें हेमंत सोरेन की सरकार ने 40 लाख रुपए की इनाम राशि देने की घोषणा की। लेकिन हिमाचल प्रदेश में गोल्ड मेडल जीतकर आए कबड्डी के खिलाड़ियों को 33 लाख रुपए ही देने का ऐलान किया गया। यहां हिमाचल प्रदेश की सरकार ने यह दलील दी कि गोल्ड मेडल पूरी टीम ने जीता है, इसलिए इनाम की 4 करोड़ रुपए की राशि उनके 4 खिलाड़ियों को नहीं दी जा सकती। यानी झारखंड में अलग नीति चल रही है, हिमाचल प्रदेश में अलग नीति। और यही वजह है कि आज सबसे पहले हमने एक मेडल एक इनाम राशि का यह पूरा मुद्दा उठाया है। आज हमारा बड़ा सवाल है कि जब हमारे नेता और हमारी सरकार एक देश की बातें करती है, एक भावना की बातें करती है, एक कानून की बातें करती है, एक देश एक टैक्स की बातें करती है, एक देश एक चुनाव की बात करती है, एक देश एक पेंशन की बात करती है, उसे लागू भी कर सकते हैं, तो यही नेता और सरकारें देश के सम्मान में जीते गए मेडल के लिए एक समान इनाम राशि का कानून क्यों नहीं बना सकते। देखिए
1: दीदी, आपके स्टेट में कितना दे रहे हैं, क्या रिकग्नाइजेशन है। हमारे में तो डीएसपी कोर्स दे रहे हैं, हमें गोल्ड के लिए 3 करोड़ है, पंजाब गवर्नमेंट के 4 करोड़।

हम उम्मीद करते हैं कि हमारी सरकारें इसके बारे में सोचेंगी और पूरे देश में एक मेडल के लिए एक इनाम राशि का मॉडल अपनाया जाएगा। एक तरफ अंतर इनाम राशि का है तो दूसरी तरफ अंतर लोगों की सोच में नजर आता है। जब क्रिकेट का बल्ला घूमता है तो सड़कों पर जश्न मनाया जाता है, लेकिन जब खिलाड़ी एशियन गेम्स में तिरंगा लहराकर घर लौटते हैं तो एयरपोर्ट पर सन्नाटा पसर जाता है।

0: जब इस देश में क्रिकेट का बल्ला घूमता है तो सड़कें जाम हो जाती हैं। जब क्रिकेट का कोई मैच हार जाते हैं तो हफ्ते महीने के कई बार तो सालों तक उस मैच को याद करके मातम मनाया जाता है। लेकिन जब इसी देश के बेटे और बेटियां एशियन गेम्स की कड़ी प्रतिस्पर्धा में अपना पसीना बहाकर दुनिया के सामने तिरंगा लहराते हैं तो हमारे एयरपोर्ट्स पर सन्नाटा क्यों पसर जाता है? जापान के आईची नगोया एशियन गेम्स से लौट रहे देश के असली नायकों में से अधिकतर का स्वागत करने कोई बड़ा नेता नहीं पहुंचा, कोई बड़ा खेल अधिकारी भी नहीं दिखा और न ही चमचमाती गाड़ियों का कोई काफिला नजर आया। स्वागत में थे तो बस वही बूढ़े माँ बाप, बचपन के दोस्त, एयरपोर्ट से गुजरने वाले चुनिंदा खेल प्रेमी या गांव की चौपाल से आए मुट्ठी भर लोग और ढोल ढीली पड़ती था। आज लोग सवाल पूछते हैं कि भारत एशियन गेम्स में सिर्फ 85 मेडल ही क्यों लाया। सवाल यह है कि जो लोग मेडल टैली पर बैठकर ज्ञान बांट रहे हैं वो इन खिलाड़ियों को कितना भाव दे रहे हैं। तस्वीरें झूठ नहीं बोलती और ये तस्वीरें हमारे समाज की उस कड़वी सच्चाई का आईना है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। आईची नगोया एशियन गेम्स में भारत ने 85 पदक जीते, एशिया में चौथा स्थान बरकरार रखा, लेकिन 21 गोल्ड, 27 सिल्वर और 37 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर जब ये एथलीट भारत लौटे तो उनके स्वागत के लिए रेड कार्पेट नहीं बिछा था। सोचिए जिस खिलाड़ी ने दिन रात एक करके देश को दुनिया के नक्शे पर चमकाया हो, वो जैसे ही अपने देश की जमीन पर उतरा सिस्टम के लिए मामूली हो। ये वही देश है जहां आईपीएल जीतने वाले लोगों को देखने के लिए लाखों लोग इकट्ठे होते हैं। लेकिन गोल्फ में 24 साल का अकाल खत्म करने वाली प्रणवी उर्स कौन है? मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में भारत का झंडा गाड़ने वाली सुचिका तड़ियाल का नाम कितने लोगों को याद है? शूटिंग में दो दो गोल्ड छीन कर लाने वाली नीरू ढांडा जब एयरपोर्ट से बाहर निकली तो क्या किसी ने उनके संघर्ष की कहानी पूछी? शायद हमारे देश में सम्मान का पैमाना अब देश का गौरव नहीं बल्कि खेल का ग्लैमर बन चुका है। जो खिलाड़ी बिना सुख सुविधाओं के गांव की पगडंडियों से निकलकर ओलंपिक्स या एशियन गेम्स का रास्ता तय करते हैं उन्हें हम सिर्फ 15 दिन के टूर्नामेंट में याद करते हैं और फिर भूल जाते हैं। पिछली बार एशियन गेम्स में 106 मेडल्स थे भारत के, इस बार 85 आए तो उंगलियां उठने लगी। लेकिन क्या किसी ने ये पूछा कि पिछले एक साल में इन खिलाड़ियों को वो मानसिक और सामाजिक सपोर्ट मिला भी या नहीं जिसकी बदौलत मेडल जीते जाते हैं? क्या किसी ने पूछा कि बिना किसी पक्के रोजगार और बेसिक डाइट के संघर्ष कर रहे ये खिलाड़ी किस मानसिक तनाव से गुजरते हैं? गोल्ड आ गया तो कुछ लोग फोटो खिंचवाने पहुंच जाते हैं, लेकिन मेडल नहीं आया तो कोई इनकी तरफ देखता भी नहीं।
1: 40 दिनों की अथक खोज, 13,000 से ज्यादा जिंदगियां बचाने की जद्दोजहद और अंत में बचा रह गया 5,285 परिवारों का कभी न खत्म होने वाला इंतजार। जी हाँ, अगली खबर नेपाल से है। नेपाल ने भीषण जल प्रलय के बाद अपने सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशंस को अब जाकर आधिकारिक तौर पर रोक दिया है। इसमें 1,455 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, यानी लगभग 1,500 लोग। लेकिन 189 भारतीयों समेत 5,000 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं, जिन्हें शायद कंक्रीट की तरह जम चुके मलबे और खौफनाक सैलाब ने निकल दिया।
2: हिमालय की गोद में बसे नेपाल में पिछले 40 दिनों से जारी खोज और बचाव अभियान को आखिरकार औपचारिक रूप से रोक दिया गया है। 26 अगस्त को भोटेकोशी और त्रिशूली नदियों में आई विनाशकारी जल प्रलय में 1,455 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 5,285 लोग अब भी लापता हैं। सबसे बड़ा दर्द यह है कि सर्च ऑपरेशन समाप्त होने के बाद भी इन 5,000 से ज्यादा लोगों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। नेपाल सरकार ने आपदा के 40 दिन बाद खोज और बचाव कार्य को बंद कर अब पुनर्वास पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर आधुनिक तकनीक के प्रयोग और इतने लंबे ऑपरेशन के बावजूद 5,285 इंसानों या उनके शवों का कोई निशान क्यों नहीं मिल रहा। इसके पीछे विशेषज्ञों ने कुछ बड़े कारण बताए हैं। पहला, मलबे का पहाड़ों जैसा जमाव। लैंग टैंग लिरुंग के पास जब चट्टान और बर्फ का भारी एवलांच हुआ तो पानी के साथ लाखों टन मिट्टी, विशाल बोल्डर और गाद बहकर आई। ये मलबा बस्तियों पर कई फीट गहरी परतों में जम गया, जो समय के साथ सीमेंट की तरह ठोस हो चुका है। इतने भारी ठोस मलबे को हटाना मशीनों के लिए भी आसान नहीं है। दूसरा, बाढ़ का वेग इतना प्रचंड था कि शव बहकर सैकड़ों किलोमीटर दूर मैदानी इलाकों और भारत की सीमा में बहने वाली नदियों तक चले गए। तीसरा, सीमावर्ती इलाकों में करीब 12 से 13 पन बिजली परियोजनाएं पूरी तरह तबाह हो गईं। सुरंगों के भीतर काम कर रहे 800 से अधिक मजदूर गाद भर जाने से अंदर ही दफन हो गए। और चौथा है पहचान की समस्या। जो शव बरामद हुए हैं वो इतने क्षत विक्षत हैं कि डीएनए जांच के बाद भी सिर्फ 112 शव परिजनों को सौंपे जा सके हैं, जबकि 1,333 शवों का बिना पहचान के ही अंतिम संस्कार किया गया। हिमालयी क्षेत्र में जब भी ऐसी आपदाएं आती हैं, तो अपनों के शव तक न मिल पाने का ये दर्द नया नहीं है। केदारनाथ से लेकर चमोली तक का इतिहास इसका गवाह है। 2013 की केदारनाथ त्रासदी में करीब 5,700 मौतें हुईं, 4,000 लापता लोगों को मृत मान दिया गया। 2021 की चमोली त्रासदी में 100 से ज्यादा लापता लोगों को मृत मान लिया गया। इसी तरह 2015 के नेपाल भूकंप में 300 से ज्यादा लापता लोगों को मृत मान लिया गया। नेपाल की इस त्रासदी ने भौगोलिक सीमाओं को मिटा दिया है। कुल लापता लोगों में 36 देशों के 606 विदेशी पर्यटक शामिल हैं, जिनमें सबसे बड़ा आंकड़ा भारत का है। 189 भारतीय नागरिक इस आपदा में गुम हो चुके हैं। नेपाल सरकार अब इन लापता 5,285 लोगों को कानूनी रूप से मृत घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर रही है, ताकि पीड़ित परिवार इंश्योरेंस और बैंकिंग कागजी कार्रवाई पूरी कर सके। बालेन शाह का ये बयान भी आज चर्चाओं में है।
3: The resulting devastation unleashed havoc on both sides of Nepal-China border. The flood continued downstream to the India. This tells of us something fundamental. Climate change does not recognize borders. Glaciers and floods do not travel with stamps and passports.
2: ये बयान पूरी दुनिया के लिए एक सीधी चेतावनी है। प्रकृति जब अपना संतुलन खोती है तो नक्शे पर खिंची लकीरें और इंसानी पासपोर्ट बेमानी हो जाते हैं। नेपाल में सर्च ऑपरेशन भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन हजारों परिवारों का अपनी मिट्टी और अपनों के अवशेष पाने का इंतजार अभी खत्म नहीं हुआ है। नेपाल अब पुनर्वास और ग्लेशियल झीलों को खाली करने के जोखिम भरे मिशन पर बढ़ रहा है, लेकिन 5,285 लापता लोगों की टीस हमेशा के लिए इस हिमालयी क्षेत्र की वादियों में दफन रह जाएगी। आज तक ब्यूरो।
1: और अब बात करेंगे फ्रांस में बड़े पैमाने पर फैल रही हिंसा की। 17 सितंबर को शिक्षा की बदहाली जैसे मुद्दे पर वहां छात्रों और शिक्षकों का एक आंदोलन शुरू हुआ था, और अब यह आंदोलन अपने चरम पर पहुंच रहा है। इस वक्त फ्रांस के 40 से ज्यादा शहरों में 4.5 लाख से ज्यादा प्रदर्शनकारी सड़कों पर हैं, और इन प्रदर्शनकारियों को रोकने का कोई रास्ता इमैनुअल मैक्रों सरकार को तो समझ में नहीं आ रहा। सरकार के लिए आंदोलन खत्म करना एक बड़ी चुनौती बन गया है, क्योंकि प्रदर्शनकारियों में बड़ी संख्या नाबालिग प्रदर्शनकारियों की है। पिछले एक हफ्ते में 6,500 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 80% प्रदर्शनकारी नाबालिग है। फ्रांस की इस हिंसा को देखकर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी बात कही। उनका कहना है कि फ्रांस में होने वाली हिंसा और उसकी वजह शिक्षा की बदहाली नहीं बल्कि इस्लाम है। देखिए,
2: शिक्षकों की कमी और स्कूलों की बदहाली का गुस्सा फ्रांस के 40 से ज्यादा शहरों में आगजनी और तोड़फोड़ की शक्ल में उतर रहा है। सड़कों पर लाखों की संख्या में छात्र, शिक्षक, अभिभावक और स्टूडेंट यूनियन के लोग शामिल हैं, जिन्हें फ्रांस के कई संगठनों का समर्थन भी मिल रहा है। ये लोग हाथों में बैनर, पोस्टर और मुंह पर मास्क लगाकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। पेरिस के अलावा लियोन, स्ट्रैसबर्ग, मरसेई और केइन में हालात काबू से बाहर हो चुके हैं। इन शहरों में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प की सैकड़ों तस्वीरें आ रही हैं। कहीं पर पुलिसकर्मी प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करते नजर आए तो कहीं पर प्रदर्शनकारी पुलिसकर्मियों से हाथापाई करते दिखे। पेरिस में हिंसा को रोकने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया और लाठीचार्ज भी हुआ। दावा किया जा रहा है कि इस हिंसा में अभी तक 700 से ज्यादा पुलिसकर्मी और प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं। दो दिन पहले पुलिस के स्टन ग्रेनेड से एक 15 साल की नाबालिग प्रदर्शनकारी का हाथ कट गया था, जिसके बाद हालात और ज्यादा खराब हो गए।
4: इसका मतलब ये है कि उस अधिकारी को पक्का पता होगा कि उसके शॉट से जान जा सकती है, और इस तरह के हथियार के इस्तेमाल के लिए पहले से ही नियम बने हुए हैं। इसलिए ये मामला सिर्फ जानबूझकर की गई हत्या का नहीं है, बल्कि एक ग्रुप द्वारा किए गए गंभीर हमले का भी है, क्योंकि इससे पहले 3 पुलिस अधिकारियों ने एक बच्चे का सामना किया था और उसे लाठी या कूगर के पिछले हिस्से से मारा था। हमें ठीक ठीक नहीं पता कि किससे मारा, लेकिन वो 3 थे और बच्चा अकेला। वो 15 साल से कम उम्र का था। वे कानून लागू करने वाले अधिकारी थे और वो एक ग्रुप के तौर पर काम कर रहे थे। ये ऐसी बातें हैं जो अपराध को और गंभीर बनाती है, और आखिर में सबसे बड़ा अपराध है खतरे में पड़े व्यक्ति की मदद ना करना, क्योंकि जब वो बच्चा जमीन पर पड़ा था तो उन्होंने कोई मदद नहीं की।
5: अगर मैं दिखाए गए वीडियो के बारे में ऐसी कोई सफाई देता तो असल में मैं जांच की प्रक्रिया में दखल दे रहा होता, और ये वाकई अफसोस की बात होती, क्योंकि मुझे नहीं पता क्या ये संभालने में हुई कोई गलती थी या किसी स्थिति से निकलने के लिए जानबूझकर चलाई गई गोली थी। मुझे नहीं पता, मेरे पास रिपोर्ट नहीं है, और सच कहूं तो ये अच्छी बात है कि मेरे पास रिपोर्ट नहीं है, क्योंकि याद दिला दूं कि IGPN एक कानूनी दायरे में काम कर रहा है और इस देश में कानूनी कार्रवाई अभी भी एक तरह से गोपनीयता के घेरे में रहती है।
2: प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि फ्रांस के स्कूलों में बेसिक सुविधाएं तक नहीं है, स्कूल की इमारतों का मेंटेनेंस नहीं होता है, वहां पर शिक्षकों की कमी है, स्कूलों की छत से पानी टपकता है, और चूहे एक बड़ी समस्या है, और इसी वजह से आंदोलन हो रहा है। फ्रांस के प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकॉर्न्यू तो यहां तक कह रहे हैं कि ये आंदोलन पिछले एक दशक का सबसे बड़ा हिंसक आंदोलन है, और उनका मानना है कि इस प्रदर्शन को बाहरियों ने हाईजैक कर लिया है। स्कूलों की बदहाली से जुड़े इस आंदोलन में अब तक फ्रांस में 24 से ज्यादा स्कूलों को प्रदर्शनकारी जला चुके हैं। फ्रांस में 3700 स्कूल हैं, जिनमें 900 से ज्यादा स्कूलों को प्रदर्शनकारियों द्वारा बंद करवाया जा चुका है। आंदोलन से जुड़े स्टूडेंट यूनियंस का दावा है कि उन्होंने 1800 स्कूलों को बंद करवा दिया है। इन प्रदर्शनों को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अलग तर्क है। उनका कहना है कि ये प्रदर्शन अब इस्लामिक कट्टरपंथियों के हाथों में पल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस हिंसा को अवैध घुसपैठियों को शरण देने की यूरोपियन नीति से जोड़ा है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि हिंसा का कारण शिक्षा नीति नहीं है, बल्कि ये कट्टरपंथी इस्लाम की देश पर नियंत्रण पाने की नीति है, और इस बयान की एक वजह है। शरणार्थियों के मामले में फ्रांस दुनिया का 5वां बड़ा देश है। यहाँ पर करीब 92 लाख शरणार्थी रहते हैं। फ्रांस की कुल आबादी में ये संख्या करीब 13.8% है। फ्रांस में रहने वाले शरणार्थियों में 49.2% लोग अफ्रीकी देशों से हैं, जिनमें सबसे ज्यादा संख्या अल्जीरिया और मोरक्को जैसे मुस्लिम देशों से आने वाले शरणार्थियों की है। फ्रांस में 30.3% शरणार्थी पुर्तगाल, इटली और स्पेन से आए हुए लोग हैं, और 13.5% लोग एशियाई या अन्य देशों से आए हुए हैं। साल 1968 में फ्रांस में रहने वाले हर 4 में से 3 विदेशी यूरोपियन थे, लेकिन अब स्थिति यह है कि हर 10 में से 3 ही यूरोपियन हैं, 5 अफ्रीकी देशों और 2 एशियाई या अन्य देशों से हैं। ये भी एक सच है कि फ्रांस में इस्लाम के मानने वाले तेजी से बढ़े हैं। फ्रेंच इंस्टीट्यूट ऑफ ओपिनियन पोल्स के सर्वे में बताया गया है कि 1985 में फ्रांस की कुल आबादी में मुस्लिमों की संख्या करीब 0.5% थी, जो साल 2004 में बढ़कर 2% हो गई, फिर 2009 में 4%, 2016 में 5.5% और फिर 2025 में बढ़कर 7% तक पहुंच चुकी है। जिस तेजी से फ्रांस में इस्लाम के मानने वालों की संख्या बढ़ी है, उसकी वजह से आज फ्रांस में इस्लाम दूसरा सबसे बड़ा धर्म बन चुका है, जबकि 1985 से 2025 के बीच कैथोलिक धर्म के मानने वालों की संख्या 83% से गिरकर 43% तक आ चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने इशारों में ये बताने की कोशिश की है कि मुस्लिम शरणार्थियों को शरण देने की पॉलिसी ने फ्रांस को आज इस स्थिति में ला दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
1: अगली खबर पाकिस्तान से, जहां पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रिहाई को लेकर एक बड़ा आंदोलन शुरू हो गया है। इस्लामाबाद में इस आंदोलन को लेकर काफी हलचल है। दरअसल इस तरह के आंदोलन पाकिस्तान सरकार और वहां की सेना के लिए एक बड़ी मुसीबत बनते आए हैं। पीटीआई के नेता, समर्थक, कार्यकर्ता एक मार्च की शक्ल में निकले हैं। उनका मकसद है इस्लामाबाद का घेराव। तहरीक इंसाफ के इस मार्च से शाहबाज शरीफ और असिम मुनीर दोनों परेशान हैं। हालात यह है कि इस्लामाबाद की ओर जाने वाली जितनी भी सड़कें हैं, उन सभी सड़कों पर बड़े बड़े कंटेनर्स रखकर उन्हें ब्लॉक किया गया है।
6: इमरान खान की रिहाई को लेकर चल रहा लॉन्ग मार्च जैसे जैसे इस्लामाबाद के पास पहुंच रहा है, वैसे वैसे शहबाज और मुनीर की सांसें तेज हो गई। खैबर पख्तूनख्वा से शुरू हुआ यह लॉन्ग मार्च अब पेशावर पहुंच चुका है। पेशावर में लाखों की संख्या में इमरान समर्थकों ने इसराइली में हिस्सा लिया और अब ये प्रदर्शनकारी इस्लामाबाद कूच कर रहे हैं। पेशावर से इस्लामाबाद की दूरी करीब 180 किलोमीटर है और इस दौरान रास्ते में पड़ने वाले शहरों में इमरान समर्थक इस आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए तैयार खड़े हैं। पीटीआई की मांग है कि जेल में इमरान से मिलने की अनुमति दी जाए और उन्हें तुरंत किसी प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट किया जाए और पर्सनल डॉक्टर से इलाज करवाया जाए। इसके अलावा इमरान की बहनों और गिरफ्तार नेताओं को छोड़ा जाए। लॉन्ग मार्च में शामिल पीटीआई नेताओं और समर्थकों का गुस्सा देखकर शहबाज शरीफ परेशान हो गए। उन्होंने पीटीआई नेताओं और समर्थकों को बातचीत के लिए बुलाया है। हालांकि इससे पहले खबर आई थी कि शहबाज ने प्रदर्शनकारियों से किसी तरह की बातचीत से साफ इनकार कर दिया था, लेकिन अब इमरान समर्थकों ने बातचीत का प्रस्ताव ठुकरा दिया है और उनकी मांग है कि जब तक इमरान की रिहाई नहीं होगी तब तक मार्च खत्म नहीं होगा। एक्सपर्ट्स का दावा है कि लॉन्ग मार्च जैसे जैसे इस्लामाबाद के करीब पहुंचेगा, शहबाज की कुर्सी खतरे में पड़ती जाएगी। इतनी बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों को रोकना मुनीर के बूते से भी बाहर हो जाएगा। पाकिस्तानी सेना भी पीओके वाले फॉर्मूले पर गोलियां चलाकर इन्हें रोक नहीं पाएगी, इसीलिए पाकिस्तान सरकार और सेना घबराए हुए हैं। मुनीर भी चाहते हैं कि इस प्रदर्शन के जरिए शहबाज सरकार कमजोर दिखे ताकि वो ताकतवर हो जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 4 अक्टूबर को खैबर पख्तूनख्वा के लक्की मरवत से लॉन्ग मार्च शुरू किया है। पीटीआई के नेता, समर्थक और कार्यकर्ता एक रैली की शक्ल में निकले हैं और उनका मकसद है कि इस्लामाबाद का घेराव करना और इमरान को किसी भी हाल में छुड़वाना। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए इस्लामाबाद की ओर आने वाले हर हाईवे पर बड़े बड़े कंटेनर रख दिए गए हैं, सड़कों को ब्लॉक कर दिया है। इसके अलावा इस्लामाबाद के अंदर पाकिस्तानी संसद के आसपास भी कंटेनर रख दिए गए हैं ताकि अगर
1: और इसी के साथ हम रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार अंजना की विचारधारा, देखते रहिए आज तक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: मैं करता हूँ ना,
3: मैं करूँगा।
4: ओए कार्ड्स की दुकान, इतने कार्ड्स कौन रखता है?
2: ये ग्लोबल लग्जरी होटल्स के लिए, ये स्टे स्पा फाइन डाइनिंग के लिए, वर्ल्ड क्लास गोल्फ प्रिविलेजेस के लिए।
4: पंजाब नेशनल बैंक का लग्जरा मेटल क्रेडिट कार्ड लो एंड गेट अनलिमिटेड डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस, अनलिमिटेड स्टे, डाइनिंग एंड मच मोर।
2: क्रिकेट में आप और बैंकिंग में PNB, दोनों ही चैंपियन है।
4: PNB लग्जरा मेटल क्रेडिट कार्ड, PNB मेरा अपना बैंक।
5: एक दो विश्राम।

0: सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ
1: एक हिंट तो देते।
2: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
3: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर। मेंटर तरक्की का ऑलराउंडर।
4: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
5: इस फेस्टिव सीजन हंडे सुपर डिलाइट डे सबके लिए लाए हैं डिलाइट। हंडे शोरूम आओ, अमेजिंग कार्स पे 1,00,000 तक की अमेजिंग डील्स पाओ।
2: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
3: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर। मेंटर तरक्की का ऑलराउंडर।

0: इन एसोसिएशन विद
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबां केसरी, हिंट एक हिंट तो देते।
2: उनसे सवाल पूछना चाहते हैं, एसआईआर के बारे में पूछना चाहते हैं।
3: तो चोर की दाढ़ी में तिनका है कि नहीं है?
2: इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार और उनके दो जो कॉलीग्स हैं उनसे मिलना चाहते थे।
3: चीफ इलेक्शन कमिश्नर जहां बैठते हैं वहीं पर एक फ्लोर ले लेते, वहीं से काम चलाते रहते
4: हैं। हम लोग सतर्क हैं, फॉर्म 7 उनको बंद करना पड़ा।
5: चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष का दिल्ली में मजमा जुटा। इंडिया गठबंधन के बैनर तले तमाम बड़े बड़े नेता जुटे। राहुल गांधी भी आए, अखिलेश भी आए, लेकिन एक मंच पर होने के बावजूद दोनों में दूरियां दिखी। जरा इन दो तस्वीरों पर गौर कीजिए, क्या ये महज संयोग था? ये ऐसा जानबूझकर हुआ कि इंडिया गठबंधन के कल के प्रदर्शन में राहुल गांधी और अखिलेश यादव कभी एक फ्रेम में नहीं दिखे। राहुल गांधी बैरिकेड पर भी चढ़े, पुलिस की बस से निकलकर आकाशवाणी भवन चले गए जहां देर रात तक उनका धरना चला, लेकिन इस दौरान अखिलेश कहीं नहीं नजर आए। हालांकि चुनाव आयोग और बीजेपी पर दोनों के हमले पूरी रफ्तार से जारी रहे। गौर करने वाली बात यह भी है कि जब इंडिया गठबंधन का मार्च चल रहा था तभी अखिलेश यादव का एक पोस्ट भी सामने आया जिसमें कहा गया कि हमारी नजर 3 पर नहीं 403 पर है। आखिर इस पोस्ट का क्या मतलब है? क्या ये कांग्रेस के लिए संदेश है कि अगर सीटों के बंटवारे में कांग्रेस ने मनमानी करने की कोशिश की तो उसके लिए दरवाजे बंद भी हो सकते हैं? याद करिए, जेंजी के सवालों पर जब प्रधानमंत्री आवास के बाहर राहुल गांधी का धरना हुआ तो उसमें अखिलेश यादव भी शामिल थे। मानसून सत्र के दौरान भी अखिलेश और राहुल गांधी में अच्छा तालमेल दिखा था, लेकिन जैसे ही यूपी में सीटों के बंटवारे पर सुगबुगाहट शुरू हुई दोनों में दूरियां दिखने लगी। इसका सबसे बड़ा सबूत था अखिलेश का इंडिया गठबंधन की बैठक से दूर रहना। तो क्या ये दूरी बीते वक्त के साथ और बढ़ती जा रही है? समर श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
0: इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: पंजाब चुनाव से पहले सबसे बड़ी पंचायत, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ हर सवाल पर होगी खुलकर बात। देखिए पंचायत आज तक पंजाब, 8 अक्टूबर दिन भर सिर्फ आज तक पर।
1: रियल्टी पार्टनर TDI इंफ्राटेक, नॉर्थ इंडियाज लीडिंग टाउनशिप डेवलपर।
2: हेल्थ पार्टनर
3: वृंदा लाइफ, वी आर नोन फॉर क्वालिटी मेडिसिन।
4: बैंकिंग पार्टनर
5: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
6: स्पेशल पार्टनर ग्रेट खलीस चॉइस फॉर पावरफुल फिटनेस लिफ्ट्स बाय पोलो एलिवेटर।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: एक को विश्राम।

0: सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: इस फेस्टिव सीजन हंडे सुपर डिलाइट डेज सबके लिए लाए हैं डिलाइट। हंडे शोरूम आओ, अमेजिंग कार्स पे 1,00,000 तक की अमेजिंग डील्स पाओ।
3: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर। मेंटर तरक्की का ऑलराउंडर।
4: चुनाव आयोग के खिलाफ संसद भवन परिसर से जब विपक्षी दलों के नेता निकले तो सब साफ थे। राहुल के आसपास तमाम विपक्षी दलों के नेताओं संग अखिलेश भी नजर आ रहे थे, लेकिन लक्ष्य पर पहुंचने से पहले रास्ते अलग हो गए, मंजिल अलग हो गई, जुबां जुदा हो गई। अखिलेश पहले पुलिस की बस में पहुंचे, राहुल बरगद के नीचे, अखिलेश लखनऊ लौट गए, राहुल वहीं बैठे रहे। और ये फर्क क्या यूपी की चुनावी राजनीति तक नजर आएगा? इस आशंका में जब अखिलेश से सवाल पूछा गया तो उनका जवाब सुनिए। यूपी की 403 सीटों पर अखिलेश भले सवाल नहीं सुनना चाह रहे, लेकिन चुनावी लड़ाई में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के मुद्दे अलग अलग हैं। ये कई मौकों पर साफ दिखा है और अब सीट बंटवारे पर यह भेद दिनों दिन चौड़ा होता जा रहा है। दरार नेताओं के रुख, हाव भाव और मुद्दों में मतभेद को लेकर दिखे ना दिखे, लेकिन यूपी के नेताओं की बयानबाजी में खूब दिख रहा है। और कांग्रेस ने जिस तरह समाजवादी पार्टी पर आक्रामक रुख अपनाने वाले इमरान मसूद को ऊंचे पद पर बैठाया, इससे कांग्रेस के हौसलों का अंदाजा लगाया जा सकता है।
5: आज आंधी राहुल गांधी की है, उसको मद्देनजर रखें कि कांग्रेस 2017 वाली कांग्रेस नहीं है, ये 2027 वाली कांग्रेस है। 10 साल के अंदर कांग्रेस में बहुत फर्क आ गया।
4: लेकिन अखिलेश और समाजवादी पार्टी के नेता इस बदलाव को चुनाव में जीत लायक असरदार मानने को तैयार नहीं, और इसी अविश्वास में अखिलेश ने रायबरेली में जाकर रथ यात्रा शुरू कर दी।
6: सीटों की संख्या और सीटों का बंटवारे का फॉर्मूला जीत का होना चाहिए। हम जीतेंगे तभी भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की सत्ता से बेदखल करेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है इंडिया गठबंधन जीत के फॉर्मूले पे एक साथ बैठेगा, सीट शेयरिंग करेगा और उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उखाड़ फेंकेगा।
4: फिलहाल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के रुख से 2027 के गठबंधन की तस्वीर पर अनिश्चितता बनी हुई है। हालांकि अखिलेश ने बार बार कांग्रेस को सांत्वना दी है कि यूपी में गठबंधन वही रहेगा जो 2024 में था। आज तक ब्यूरो।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जो आपके होते हुए कहीं और हो उन्हें कहीं और ही रहने दें। नमस्कार।
0: हरियाणा की सियासत का सबसे बड़ा मंच मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ, हर सवाल पर होगी खुलकर बात। देखिए पंचायत आज तक हरियाणा 8 अक्टूबर दिन भर सिर्फ आज तक पर।
3: रियल्टी पार्टनर TDI इंफ्राटेक, नॉर्थ इंडियाज लीडिंग टाउनशिप डेवलपर।
4: हेल्थ पार्टनर
5: वृंदा लाइफ, वी आर नोन फॉर क्वालिटी मेडिसिन।
4: बैंकिंग पार्टनर
6: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
7: स्पेशल पार्टनर ग्रेट खलीस चॉइस फॉर पावरफुल फिटनेस लिफ्ट्स बाय पोलो एलिवेटर।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: दिल्ली में हाई वोल्टेज राजनीतिक ड्रामे के बीच हिरासत में लेने के बाद छोड़े गए राहुल गांधी और प्रियंका, कल पूरे देश में प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। ज्ञानेश कुमार पर राजनीतिक घमासान तेज, खड़गे बोले तानाशाह मोदी सरकार और चुनाव आयोग के गठबंधन का पर्दाफाश, नितिन नवीन का पलटवार, अराजकता फैला रहे हैं राहुल। सीएम से पीएम तक जनसेवा में पीएम मोदी के 25 वर्ष, कहा एम्बिशन नहीं मिशन के लिए जीता हूं, कई शहरों में बीजेपी के कार्यक्रम, आडवाणी से मिले मोदी। यूपी में लड़ाई फिर 80-20 पर आई, राज्यसभा चुनाव के रिजल्ट पर सीएम योगी का एसपी पर तीखा कटाक्ष, 2027 का परिणाम साफ, अखिलेश का पलटवार, घमंड का मिलेगा दंड। और दिल्ली के सीमापुरी में गिरी 4 मंजिला इमारत, 3 की मौत, मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका, राहत बचाव का काम जारी।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं आज तक पर, आप देख रहे हैं दस्तक। और आज दस्तक में खबर, ज्ञानेश कुमार पर लड़ाई जंतर मंतर तक आई। राहुल दूसरे दिन प्रियंका के साथ धरने पर थे। राहुल और प्रियंका गांधी ने सीईसी के खिलाफ न सिर्फ संग्राम छेड़ा बल्कि दिल्ली पुलिस से भी टकरा गए। लगातार दूसरे दिन राहुल और प्रियंका को पुलिस ने जबरन धरने से उठाया और हिरासत में ले लिया। लेकिन आज शुरुआत इंडिया गठबंधन के सांसदों के लंच से हुई और जंतर मंतर के मंच तक जाने के लिए एक राजनीतिक रण में बदल गई। जब पुलिस ने विपक्षी सांसदों की बस को रोका तो राहुल प्रियंका ने जंतर मंतर के करीब सड़क पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। तो आइए दिखाएं आपको कि कैसे राहुल प्रियंका और पूरा विपक्ष ज्ञानेश के इस्तीफे पर अड़ा है और तगड़ा संग्राम छिड़ा है।

0: राहुल की ललकार, ज्ञानेश के खिलाफ गलगार।
1: हटाओ नहीं यार। सर,
0: पहले आकाशवाणी, फिर जंतर मंतर के लिए कूच। पुलिस ने रोका इंडिया गठबंधन की बस का रास्ता।
1: सर, ये हजारों की भीड़ है, किसी को चोट लगे।
0: सड़क पर राहुल प्रियंका की हुंकार, ज्ञानेश पर आर पार।
2: Let them call their forces back. I will not move from here.
0: जंतर मंतर पर बैरिकेडिंग, सड़क पर ही छिड़ा संग्राम।
3: ऐसे नहीं होगा,
4: आप बताएं कैसे होगा?
3: आपने इसको धकेला नीचे।
0: तस्वीरें जंतर मंतर चौराहे की हैं। आप देख सकते हैं जंतर मंतर पर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ धरना देने निकले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को दिल्ली पुलिस जबरन उठाकर हिरासत में ले लेती है। ये दो तस्वीरें देखिए, कैसे राहुल गांधी को उठाकर गाड़ी में डाला जाता है, और दूसरी तस्वीर में प्रियंका गांधी को देखिए, कैसे सड़क पर लेटी प्रियंका गांधी को उठाने के लिए पुलिस और केंद्रीय बलों को खासी मशक्कत करनी पड़ती है, और फिर प्रियंका गांधी को सड़क से उठाकर हिरासत में लिया जाता है। सड़क पर तगड़ा संग्राम छिड़ जाता है, क्योंकि प्रियंका गांधी सड़क से उठने को तैयार नहीं होती है।
2: This is how they treat members of parliament who are asking simply to meet the election commissioner. This is how they treat us. Let them call their forces back. I will not move from here.
0: और अब आपको ज्ञानेश कुमार के खिलाफ छिड़े रण की पूरी टाइमलाइन दिखाते हैं। पहले राहुल गांधी कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन के सांसदों के साथ जनपद पर सागर रत्ना रेस्टोरेंट में लंच करते हैं, और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नया मोर्चा खोलने के लिए जंतर मंतर के लिए निकल पड़ते हैं।
5: प्रोटेस्ट साइट है जंतर मंतर, वहाँ पे हम जाकर सब आज फिर से बैठे और देश को बताएं कि हमारे लिए ज्ञानेश कुमार जी देश के लेजिटिमेट इलेक्शन कमिश्नर नहीं है। मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, मोहन भगवत, ज्ञानेश कुमार जी ने देश के लोकतंत्र को खत्म किया है, और मैंने कल भी कहा था जिन्होंने ये काम किया है ये देशद्रोही है, और इन पर हम एक्शन लेंगे। मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा देना पड़ेगा।
6: इलेक्शन कमीशन कर रही है और मोदी जी करा रहे हैं, और जब मोदी जी ऐसी गलती करा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि इस देश में डेमोक्रेसी को खत्म करने की कोशिश वो कर रहे हैं।
7: वी आर ऑल हियर टुगेदर, वी आर ऑल हियर यूनाइटेड, एंड वी आर ऑल हियर विदाउट एनी ईगोज।
8: जो ज्ञानेश है ना, ये इस देश का सबसे बड़ा गद्दा घोषित हो, इसे कोई नहीं बचा पाएगा। जहां ज्ञानेश मिलेगा वहीं खोजने जा रहे हैं, वहीं ढूंढेंगे, जहां बंद करके इसको रखा हो।
9: ज्ञानेश की तलाश में आप जा रहे हैं,
8: क्या करेंगे? ज्ञानेश बोल ही नहीं रहा है, और लॉ मिनिस्टर बोल ही नहीं रहा है, बीजेपी का प्रवक्ता ज्ञानेश को बचा रहा है।
0: राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ यलगार छेड़ दिया है। पहले आकाशवाणी भवन परिसर में 8 घंटे तक धरना, और फिर जंतर मंतर से धावा बोलने के लिए राहुल, प्रियंका और इंडिया गठबंधन के 200 सांसद बस में सवार हो जाते हैं।
10: Government is a illegitimate government. Not only Ganesh Kumar and Narendra Modi government also has to go. Writing is on the wall. They are seeing, they are afraid. That is why they are using a brutal force against us. But we are not intimidated.
0: उधर जंतर मंतर जैसे दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों की छावनी में तब्दील कर दिया जाता है, और जंतर मंतर चौराहे पर राहुल प्रियंका समेत सभी विपक्षी सांसदों की बस रोक ली जाती है।
11: उनका इस्तीफा मांगना चाहते हैं, क्योंकि हमें विश्वास नहीं है उन्हें। ये जो चुनाव आयोग है, ये किस लिए चलता है? इस देश की जनता के लिए। हम जनता के प्रतिनिधि हैं। ढाई

0: जनता के प्रतिनिधि, उनमें से एक एक प्रतिनिधि कम से कम 20 से 30 लाख लोगों के प्रतिनिधि हैं, और हम सच में कह रहे हैं कि हम शांतिपूर्वक जाएंगे, बात करेंगे। और ये सरकार इतनी कायर है, इतनी डरती है इस जनता की आवाज से कि हर जगह प्रदर्शन रोक रही है।
1: आपको लगता है हम यहाँ से हिल जाएंगे? क्या समझ रखा है इन लोगों ने? ये देश की राजधानी की ये हालत है।
2: ब्रूटली लाठीचार्ज कर रहे हैं, ये सीधे गुनाहगार हैं। ज्ञानेश जी, अमित शाह जी और मोदी जी, ये विजुअल्स कई साल तक हमने नहीं देखे थे। ब्रूटालिटी की इंतहा है। यू स्टैंड एक्सपोज।
3: बस का घेराव देखकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों बस से नीचे उतर आते हैं और वहीं सड़क पर बैठकर धरना देने लगते हैं। दिल्ली पुलिस के अफसर राहुल गांधी से बात कर उन्हें सड़क से उतरने के लिए कहते हैं।
4: आप इसको ऐसे नहीं होगा, आप बताइए कैसे होगा, आपने इसको धकेला नीचे।
3: जबकि प्रियंका गांधी सड़क पर देखकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर देती हैं। ये सब देखकर जैसे पुलिस के हाथ पांव फूलने लगते हैं। फिर पुलिस प्रियंका गांधी को हटाने की कोशिश करती है, लेकिन प्रियंका गांधी तस से बस नहीं होती।
5: They are beating members of parliament. Their police members have scratched me all over. They have thrown us to the ground, and now we are not going to move from here.
6: गुंडागर्दी, अरे इनका इतिहास क्या है? जरा पेज पलट करिए तो नई नई शान पहन के घूम रहे होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, सबको मालूम इनका इरादा क्या है। तो अगर ये सोच रहे हैं कि हम डर के रुक जाएंगे, बेटा उनको बोल दो ये होने वाला नहीं।
3: काफी देर तक पुलिस और राहुल प्रियंका के बीच एक संघर्ष चलता है। आखिर में दिल्ली पुलिस राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को सड़क से जबरन उठाकर ले जाती है और हिरासत में ले लेती है।
7: अमित शाह, नरेंद्र मोदी, ज्ञानेश कुमार, मोहन भगवत, एंड दे कैन डू ऑल दिस स्टफ, बट वी आर गोइंग टू ब्रिंग देम टू जस्टिस। माय गारंटी दैट ऑल फोर ऑफ देम विल बी ब्रॉट टू जस्टिस।
3: ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर विपक्ष अड़ा हुआ है। राहुल और प्रियंका से पहले सुबह में लेफ्ट पार्टियां और आम आदमी पार्टी ने भी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लड़ाई बड़ी है। अब ये लड़ाई कहां तक जाएगी, आगे आगे देखते हैं होता है क्या। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
8: इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, इसी धरना प्रदर्शन के बीच दिल्ली पुलिस ने वीडियो जारी किया है और इस वीडियो में दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि पुलिस कर्मियों के साथ धक्का मुक्की बदसलूकी की गई है। दिल्ली पुलिस जो कि इस प्रदर्शन को रोक रही थी, ये देखिए दिल्ली पुलिस के जवानों को दिखाया गया है जहां उन्हें चोटें आई हैं, उन्हें नोचा गया है, उनके साथ बदसलूकी की गई है, उनके कपड़े फाड़ने की कोशिश की गई है। तो दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल पर यह हमला हुआ है। हमलावरों में पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल थी। ये देखिए हाथ में चोट आई है। दिल्ली पुलिस के इस कांस्टेबल, इस जवान की ये तस्वीर दिखाई जा रही है। ये वीडियो खुद दिल्ली पुलिस ने जारी किया है और अगर अंदर ये चोट के निशान हैं तो इसका मतलब इन लोगों के साथ बदसलूकी की गई, या आरोप दिल्ली पुलिस ने लगाया है वीडियो जारी कर।
9: जो लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल कर रही है अपने तौर तरीके से कर रही है सर। कुछ लोग वहाँ पे जो कि मीडिया के नहीं हैं, वो हमारे काम में बाधा डाल रहे हैं सर। वो सच में मीडिया के नहीं हैं, उनसे अगर कार्ड्स मांगा जाता है तो वो उल्टे हमारी नेम प्लेट्स पे वो करे जाते हैं कि आप अपनी नेम प्लेट दिखाइए, नेम प्लेट दिखाइए। जब हम उनसे प्रेस कार्ड मांगते हैं तो वो हमारे को गालियाँ बकना शुरू कर देते हैं, सुअर सुअर बोलना शुरू कर देते हैं। शायद इस दिन पहले मैं भर्ती नहीं हुआ था। मैं अपनी देश की सेवा करने के लिए दिल्ली पुलिस में, दिल्ली की पब्लिक की सेवा करने के लिए भर्ती हुआ था और आज भी मैं चाहे जख्मी हूँ, अगर मेरे सीनियर अफसर मुझे इस देश की सेवा करने के लिए कहेंगे तो मैं सेवा करूँगा, मैं डरूंगा नहीं। बस मेरी सेफ्टी नहीं, मेरे परिवार की सेफ्टी मुझे चाहिए कि मेरे परिवार को कुछ ना हो, क्योंकि ये लोग टारगेट करते हैं।
8: राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्ष के प्रदर्शन ने दिल्ली पुलिस की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। पुलिस की तरफ से राहुल गांधी को रोकने की तैयारी की जाती है, लेकिन राहुल पुलिस के बंदोबस्त को चकमा देते हुए एक नई जगह पर प्रदर्शन के लिए पहुंच जाते हैं। मतलब ये हुआ कि दिल्ली पुलिस के नहले पर राहुल गांधी दहला चल रहे हैं।

0: मेरे पास 45 FIR है। मेरा लक्ष्य है कि मुझे 100 चाहिए। मैं चाहता हूं कि मेरे ऊपर 100 FIR लगे। हर FIR मेरे लिए एक मेडल है।
1: राहुल गांधी पर FIR दर्ज हो गई, लेकिन वो रुकेंगे नहीं, बल्कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे तक सड़क पर सीधी लड़ाई जारी रखेंगे। राहुल गांधी के इसी तेवर ने दिल्ली पुलिस की नींद उड़ा रखी है। दिल्ली पुलिस राहुल गांधी को रोकने के लिए पूरा होमवर्क करती है, लेकिन बीच में राहुल गांधी दिल्ली पुलिस की तमाम तैयारियों को चकमा दे देते हैं। बीते दिन संसद भवन से राहुल गांधी को चुनाव आयोग के दफ्तर जाना था। पुलिस की तैयारी यही थी कि राहुल गांधी को चुनाव आयोग के दफ्तर से पहले हिरासत में लिया जा सके, लेकिन राहुल गांधी पुलिस को चकमा देकर आकाशवाणी भवन में दाखिल हुए और धरने पर बैठ गए। कई घंटों के बाद दिल्ली पुलिस किसी तरह राहुल का धरना खत्म करवा पाई। पुलिस के हाथ पांव फूल गए। आज दिल्ली पुलिस को पहले से पता था कि विपक्ष के सांसदों के साथ राहुल गांधी जनपद के पास लंच करेंगे, उसके बाद आज जंतर मंतर जाएंगे। लिहाजा राहुल गांधी से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस के DCP ने अपने अधीनस्थों को खास ट्रेनिंग दी,
2: विद ऑल वेरी वेरी रिस्पेक्टफुली।
1: क्योंकि राहुल गांधी के दिमाग में क्या है, राहुल का प्लान क्या है, ये दिल्ली पुलिस के लिए किसी पहेली से कम नहीं था।
2: जो लोग सीधे सीधे चलने लग गए उनको आप आराम से ले जाके कोशिश पहली यही होनी है कि आराम से प्यार से बोल के रेस्पेक्टफुली बोल के हम सबको ले जाएं और सबको बैठा लें, ठीक है। नेक्स्ट ये होने वाला है अपना कि क्योंकि सपोर्टर्स भी बहुत सारे होते हैं तो वो भी रेजिस्ट करते हैं, पकड़ लेते हैं, ग्रुप कर लेते हैं, ठीक है। मेल को फीमेल्स भी कर लेती हैं, पकड़ लेती हैं बहुत जोर से, तो इन चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और बसेस, बस में बैठा दिया तो बस से निकल ना पाएं और बस के आगे की क्लैरिटी देनी पड़ेगी ताकि बस सीधा सीधा निकल जाए।
1: नई दिल्ली के DCP सचिन शर्मा उन पुलिस वालों को क्लास दे रहे हैं जिनके कंधों पर राहुल गांधी को रोकने की जिम्मेदारी है। राहुल गांधी लोकसभा में नेता विपक्ष हैं, लिहाजा आज DCP ने पुलिस वालों को हिरासत में लेने का पूरा तरीका समझाया।
2: सेंसिटिवली, सारा अदब और रिस्पेक्टफुली इनको रिक्वेस्ट करते रहना है। ओरली हम रिक्वेस्ट करते रहेंगे, सर, ऑनरेबल सर, ठीक है। तो वो चीज़ों का आप, हो सकता है काफ़ी सारे ऑनरेबल MPs को नहीं पहचानते हो, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ भी जो भी हो या तो उनके साथ वाला बता देता है, नहीं भी बताए तो ट्रीट एवरीबडी लाइक विद ऑल वेरी वेरी रिस्पेक्टफुली, ठीक है।
1: राहुल गांधी के एक्शन से दिल्ली पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि राहुल गांधी का प्लान दिल्ली पुलिस की तमाम तैयारियों पर भारी है। दिल्ली पुलिस की कोशिश है राहुल को धरने पर बैठने से रोकना, लेकिन राहुल मार्च भी निकाल रहे हैं और धरने पर भी बैठ रहे हैं। मतलब यही है कि दिल्ली पुलिस के तमाम तिकड़म को राहुल बार बार चकमा देने में कामयाब हो रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
3: DCP सचिन शर्मा ने अपने पुलिसकर्मियों को ट्रेनिंग दी, उन्हें बताया, लेकिन फिर भी आरोप लगे। लेकिन इस बीच BJP ने एक वीडियो जारी कर राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगा दिया। BJP के अनुसार राहुल गांधी ने महिला कांस्टेबल से बदसलूकी की है और ये वीडियो BJP की तरफ से जारी किया गया है। यहां पर राहुल गांधी पर महिला कांस्टेबल के साथ बदसलूकी का आरोप लगा है। ये वीडियो जारी करते हुए देखिए, इस घेरे में आप देख रहे हैं ये राहुल गांधी आपको नजर आ रहे हैं और ये महिला कांस्टेबल यहां प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश कर रहे हैं और राहुल गांधी उस महिला कांस्टेबल को धक्का देते हुए छूते हुए नजर आ रहे हैं। ये वीडियो BJP की तरफ से जारी किया गया, दिल्ली पुलिस ने भी एक वीडियो जारी किया जो हमने आपको बताया था। और ये देखिए राहुल गांधी इस
4: कि जिस प्रकार से आज असामाजिक तत्वों के साथ अराजकता के वातावरण में इस देश के विपक्ष के नेता काम कर रहे हैं, मैं स्पष्ट रूप से उनका कहता हूं, जो उनका मकसद है, जो उनकी नियत है, मैं उनके मकसद और नियत को कभी भी भारत की जनता पूरी नहीं होने देगी, क्योंकि आपने केवल

0: उन लोगों की चिंता की है जो यहां के लोगों का हक छीनते रहे। आज जिस प्रकार की चर्चा और जिस प्रकार के असामाजिक तत्वों को लेकर अराजकता को फैलाने का काम कर रहे हैं दिल्ली के अंदर, मैं आज कहना चाहता हूं नेता प्रतिपक्ष को कि आप जिन लोगों को हक दिलाने की बात करते हैं उन घुसपैठियों को भारत की जनता कभी हक नहीं देने देगी। आपने किसके लिए चिंता की, आप किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं? मैं यहां पर बैठे हुए हैं हमारे असम के मुख्यमंत्री जी, यहां पर बैठे हुए हैं उत्तर प्रदेश के अपने माननीय मुख्यमंत्री जी। अगर एसआईआर के माध्यम से अगर उन घुसपैठियों का नाम कटता है और उसके लिए देश के लोकतंत्र को आप सवाल उठा रहे हैं तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सवाल आपके ऊपर उठ रहा है। और मैं कह सकता हूं कि इस अराजकतावादी मानसिकता को और इस अराजकतावादी सोच को भारत की जनता पूरी तरह से करारा जवाब देगी।
1: आज दिल्ली में इंडिया गठबंधन ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया और इससे पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी भी प्रदर्शन कर चुकी है, लेकिन दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से 10 अक्टूबर को इसी मुद्दे पर प्रदर्शन का ऐलान किया गया। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने ऐलान किया कि ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे तक जंतर मंतर पर सीजेपी के कार्यकर्ता डटे रहेंगे, जैसे पेपर लीक के मामले पर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर उन्होंने प्रदर्शन किया था। दीपके का आरोप है कि जंतर मंतर पार्ट टू से ही डरकर पुलिस की तरफ से उनके कार्यकर्ताओं को नोटिस सरकार भिजवा रही है, तो क्या जंतर मंतर पर एक बार फिर ज्ञानेश कुमार पर आर पार की लड़ाई का बिगुल सीजेपी ने फूंक दिया है?
2: ज्ञानेश कुमार पर सीजेपी का प्लान जंतर मंतर।
3: मैं कहना चाहता हूँ जहां रुकोगे उसी को जंतर मंतर बना दें। और कितने लोगों की आवाज बढ़ा होगा, पूरा देश जंतर मंतर बन जाएगा अगर ज्ञानेश कुमार को हटाया नहीं, पूरा देश जंतर मंतर बन जाएगा।
2: 10 अक्टूबर को जंतर मंतर से नई लड़ाई।
4: जब भी दिल्ली पुलिस हमें रोके वहाँ पे हम लोग बैठ जाएंगे, वो कहलाएगा जंतर मंतर। हमारा यही प्लान होने वाला है, पूरा दिल्ली जंतर मंतर बनने वाला है।
2: केंद्र सरकार को सीजेपी का सीधा अल्टीमेटम।
3: और आज ये लोग आते वोटिंग राइट छीनना चाहते, तो ये बात किसी पार्टी की नहीं, ये बात किसी आइडियोलॉजी की नहीं है, ये बात लोगों के फंडामेंटल राइट्स की है। अगर लोगों से उनका वोटिंग राइट छीना जाएगा तो क्या डेमोक्रेसी बचेगी? वन नेशन वन इलेक्शन ये स्लोगन है, लेकिन असली इंटेंशन है वन नेशन वन पार्टी।
2: चुनावी सिस्टम बदलने निकलेगी टीम सीजेपी। अभिजीत दीपके का जंतर मंतर पार्ट टू।
3: क्योंकि कहीं ना कहीं जो 10 अक्टूबर को हमारा मार्च होने जा रहा है जंतर मंतर को, उसको लेकर सरकार डरी हुई है, जिसके कारण सोशल मीडिया पर भी इंस्टाग्राम पर भी इन्होंने जितने भी सीजेपी से रिलेटेड कंटेंट है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। इंडिया
2: पेपर लीक मामले में अभिजीत दीपके की अगुवाई में सीजेपी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर जून महीने में शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग के साथ आंदोलन शुरू किया था। दुनिया ने जेन जी की शक्ति देखी और आखिरकार सरकार को सीजेपी की मांग के आगे झुकना पड़ा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, एक बार फिर अभिजीत दीपके जंतर मंतर पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर मंतर आ रहे हैं। 10 अक्टूबर को सीजेपी ने जंतर मंतर पर देश भर के जेन जी को जुटने के लिए बुलाया है।
3: इसमें देखिए हमारी तीन डिमांड्स है, हम भी मानते हैं कि एक का रेजिग्नेशन लेकर कुछ बदलेगा नहीं। हमारी तीन डिमांड्स है, पहला डिमांड जो है वो ज्ञानेश कुमार का रेजिग्नेशन है, उसके साथ ही उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगने चाहिए। दूसरी हमारी डिमांड है कि एसआईआर का जो रोल है वो फ्रीज होना चाहिए। और तीसरी डिमांड जो है, जो इलेक्शन कमीशनर का अपॉइंटमेंट होता है वो इंडिपेंडेंटली हो जाए, न्यूट्रली हो जाए। ऐसा ना हो कि अमित शाह और मोदी जी एक दिन दोनों साथ में बैठे नाश्ता करते हुए डिसाइड कर ले ये बंदा बड़ा सही है, ये अपने साइड का इसको बना देते भाई ये सही लग रहा है।
1: दशक में एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं, लौट कर आएंगे तो दशक के अगले हिस्से में आपको दिखाएंगे अमेरिका में मिड टर्म चुनाव, ट्रंप छेड़ेंगे महायुद्ध। आप देखते रहिए दशक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से, इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: यार लोन भूल गया मैरी।
3: इट्स
2: जस्ट अ गुड बैंक ना।
4: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक।
2: स्मॉल फाइनेंस बैंक।
4: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन, होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, माइक्रो मॉर्गेज लोन, गोल्ड लोन।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: यार लोन भूल गया मैरी।
2: इट्स
1: जस्ट अ गुड बैंक ना।
3: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक।
1: स्मॉल फाइनेंस बैंक
3: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन, होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, माइक्रो मॉर्गेज लोन, गोल्ड लोन, प्री ओन कार लोन, टू व्हीलर लोन।
4: देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट
1: अस। उज्जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस।
5: आगे आगे
6: करेक्ट करेक्ट
7: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
8: सर गैसो फास्ट की ग्रोथ तो चेक कीजिए।
9: गैसो फास्ट 27%,
8: इनो 9.2%।
10: गड़बड़ है।
11: आहा, गैसो फास्ट वाले जीरे का जादू चला रहे, इसीलिए इनके चाहने वाले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे। गैसोफा, इंडिया की एसिडिटी का असली इंडियन सॉल्यूशन।
12: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार। सर एक बार दो ठुमका लगाने बस।
13: मेरे पास एक आइडिया है।
12: क्या?
13: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा TMT बार से जो बना है।
14: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिलाती पर स्टेज नहीं हिलता,
15: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा TMT से बना है।
16: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही TMT बार से बना है।
17: कौन सी बनानी है?
18: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
19: इतने पेमेंट ऐप्स पर सेफ कौन सा?
20: तो स्विच टू भीम, एकदम सेफ और भरोसेमंद। रिवॉर्ड्स भी मिलते रहते हैं, पाओ 40 रुपए का कैशबैक 40 रुपए से ज्यादा की पहली पेमेंट पर। भीम ऐप से करो पे।
21: इट्स अ माय वे।
22: और वही कहाँ गए थे घूमने?
23: जीके मैक्स।
24: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
23: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
24: जेके वॉल मैक्स
23: बेस्ट पेंट,
24: जेके मैक्स।
23: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
25: ये डायबिटीज मुझे बार बार थका देता है,
26: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
25: अब मुझे जल्दी थकान नहीं होती। कपिवा डायफ्री जूस।
27: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
28: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
29: सोच बदलो और बैंक भी।
30: Love and Care, the world's finest range of rubber pet toys.
31: माँ के पैरों की धूल माथे पर लगा, परदेश की गलियों में अपने वतन के गीत सुनो।
32: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर। मेंटर तरक्की का ऑलराउंडर।
33: In association with Signature Finest Cardamom Seeds, E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल।
34: जहां जुर्म वहीं कहानी, जहां कहानी वहीं साजिश, जहां साजिश वहां क्राइम। जुर्म चाहे कितना ही उलझा हो, उसकी परतें हम सुलझाते हैं। देखिए क्राइम तक YouTube पर और बचिए हर क्राइम से।
35: हरियाणा की सियासत का सबसे बड़ा मंच, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ हर सवाल पर होगी खुलकर बात। देखिए पंचायत आज तक हरियाणा।

0: 8 अक्टूबर दिन भर सिर्फ आज तक पर।
1: दो सौ किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पैदल तय करके आदिवासी छात्र नासिक से मुंबई आए थे। छात्रों को लगा था कि नासिक में उनकी सुध किसी ने नहीं ली, लेकिन राजधानी मुंबई में सरकार उनकी मांग सुनेगी, उनसे संवाद करेगी, उनकी मांगें मंजूर करेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुंबई पुलिस ने आदिवासी छात्रों को जबरन बसों में ठूस कर वापस नासिक भेज दिया। इस दौरान जिन छात्रों ने पुलिस का विरोध किया तो पुलिस ने अपनी शैली में उन्हें समझाकर बस में जबरन भर दिया। ऐसे में छात्रों ने पुलिस पर पीटने का आरोप लगाया है।
2: ये पुलिस गुंडा कर दिया, गुंडा कर दी, हम स्टूडेंट है, हमें गुंडा कर देने करते, हमें केला है।
1: नासिक से मुंबई पहुंचने के बाद से आदिवासी छात्र कांग्रेस मुख्यालय तिलक भवन में शरण लिए हुए थे। आदिवासी छात्रावासों से जुड़ी मांगों को लेकर महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों से 300 से ज्यादा आदिवासी छात्र मुंबई पहुंचे थे। इन आदिवासी छात्रों ने मुंबई के आजाद मैदान में प्रदर्शन की अनुमति मांगी थी, लेकिन मंजूरी नहीं मिलने के बाद वो तिलक भवन में रुके हुए थे। छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती वो अपना आंदोलन अलग अलग जिलों में जारी रखेंगे।
3: विद्यार्थ्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून आपलं राजकारण चालवण्याचा प्रयत्न आहे। विद्यार्थ्यांना वेठीस धरून या ठिकाणी अराजकता तयार करण्याचा प्रयत्न आहे।
1: अब आदिवासी छात्र अपनी मांगों को लेकर सरकार के रुख का इंतजार कर रहे हैं। छात्रों ने 25 अक्टूबर को दोबारा मुंबई आकर अपनी मांगों को लेकर बड़ा आंदोलन खड़ा करने का अल्टीमेटम दिया है। दीपेश त्रिपाठी, मुंबई आज तक। दो सौ किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पैदल तय करके आदिवासी छात्र नासिक से मुंबई आए थे। छात्रों को लगा था कि नासिक में उनकी सुध किसी ने नहीं ली, लेकिन राजधानी मुंबई में सरकार उनकी मांग सुनेगी, उनसे संवाद करेगी, उनकी मांगें मंजूर करेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुंबई पुलिस ने आदिवासी छात्रों को जबरन बसों में ठूस कर वापस नासिक भेज दिया। इस दौरान जिन छात्रों ने पुलिस का विरोध किया तो पुलिस ने अपनी शैली में उन्हें समझाकर बस में जबरन भर दिया। ऐसे में छात्रों ने पुलिस पर पीटने का आरोप लगाया है।
2: ये पुलिस गुंडा कर दिया, गुंडा कर दी।
1: नासिक से मुंबई पहुंचने के बाद से आदिवासी छात्र कांग्रेस मुख्यालय तिलक भवन में शरण लिए हुए थे। आदिवासी छात्रावासों से जुड़ी मांगों को लेकर महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों से 300 से ज्यादा आदिवासी छात्र मुंबई पहुंचे थे। आदिवासी छात्र राज्यपाल से मिलने और अपनी मांगे रखने की मांग को लेकर तिलक भवन के बाहर बड़ी संख्या में इकट्ठा हो रहे थे, लेकिन भारी पुलिस बल की तैनाती ने इनके इरादों पर पानी फेर दिया।
4: जो पूर्ण भारत में पूरे भारत में बोलते मुंबई पुलिस क्यूट पुलिस है, आपने देखा होगा हम विद्यार्थियों को कैसे लातों से मार रहे। हमको हम सीधे सीधे आ रहे थे, लातों बुक्के से देखा गया। जब महाराष्ट्र की पुलिस क्यूट पुलिस बोलते ना,
5: हम 300-400 किलोमीटर चल के आ रहे, वहाँ से आए, हमको आंदोलन का कुछ भी नहीं, मतलब परमिशन नहीं दे रहे, इसलिए हम घर जा रहे, फिर भी हमको मार रहे वो लोग।
1: इन आदिवासी छात्रों ने मुंबई के आजाद मैदान में प्रदर्शन की अनुमति मांगी थी, लेकिन मंजूरी नहीं मिलने के बाद वो तिलक भवन में रुके हुए थे। छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती वो अपना आंदोलन अलग अलग जिलों में जारी रखेंगे। 5 अक्टूबर को राहुल गांधी ने आदिवासी छात्रों की मांग को लेकर फडणवीस सरकार को घेरा था। आज सीएम फडणवीस ने कहा कि सरकार हमेशा छात्रों के हितों के साथ है और विपक्ष छात्रों के कंधों का इस्तेमाल करना बंद करे।
3: विद्यार्थ्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून आपलं राजकारण चालवण्याचा प्रयत्न आहे। विद्यार्थ्यांना वेठीस धरून या ठिकाणी अराजकता तयार करण्याचा प्रयत्न आहे। राज्य सरकारने विद्यार्थ्यांचे जे जे प्रश्न आले, प्रश्न आहेत का तर हो आहेत, ते जेन्युइन आहेत का तर हो 100% जेन्युइन आहेत, असे सगळे विद्यार्थ्यांचे जेन्युइन प्रश्न सोडवण्याकरता पुढाकार घेतला, निर्णय घेतले आहेत। राज्य सरकार पूर्ण त्याबाबतीत सकारात्मक आहे, पण केवळ या ठिकाणी आपल्या लीडरशिप करता, आपल्या पक्षाकरता विद्यार्थ्यांना कोणी वेठीस धरून राजकारण करत असेल, राजकारणाला उत्तर राजकारण, विद्यार्थ्यांचं उत्तर हे कृतीतून।
1: अब आदिवासी छात्र अपनी मांगों को लेकर सरकार के रुख का इंतजार कर रहे हैं। छात्रों ने 25 अक्टूबर को दोबारा मुंबई आकर अपनी मांगों को लेकर बड़ा आंदोलन खड़ा करने का अल्टीमेटम दिया है। दीपेश त्रिपाठी, मुंबई आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: स्वागत एक बार फिर से आपका, आप देख रहे हैं दस्तक, आपके साथ मैं हूँ सईद अंसारी। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत के दरवाजे बंद हैं। ईरान ने खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया है कि अब अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। इस बीच अमेरिका ने ईरान बॉर्डर के करीब सैनिकों की तैनाती को बढ़ा दिया, हॉर्मुज के नजदीक नए युद्धपोत तैनात कर दिए। तो सवाल यही है कि ट्रंप के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? क्या अमेरिका में होने वाले मिड टर्म चुनाव से पहले ट्रंप ईरान पर किसी बड़े हमले की प्लानिंग में जुटे हैं? क्या मिड टर्म चुनाव से पहले महायुद्ध तय है?

0: मिड टर्म चुनाव में ट्रंप को हार का डर, हार के डर से ईरान पर हमले की तैयारी। ईरान बॉर्डर भेजी सैनिकों की नई टुकड़ी। हुर्मुज के करीब युद्ध पोत की तैनाती बढ़ाई। चुनावी जीत के लिए ट्रंप का प्लान महायुद्ध। तीन नवंबर को अमेरिका में मिड टर्म चुनाव होने हैं। ये चुनाव अमेरिकी राष्ट्रपति की अग्नि परीक्षा है। भले ही नतीजे ट्रंप के कार्यकाल या शक्ति पर सीधा असर न डालें, लेकिन चुनावी हार ट्रंप के बचे हुए कार्यकाल की राह में सबसे बड़ा रोड़ा बन सकती है, क्योंकि चुनाव की टाइमिंग अहम है। मिड टर्म चुनाव युद्ध के बीच में हो रहा है, लिहाजा ट्रंप अपनी जीत सुनिश्चित कर दुनिया को बताएंगे कि ईरान पर हमले के निर्णय पर जनता की मोहर लग गई। अगर ट्रंप की पार्टी मिड टर्म चुनाव में हार जाती है तो नतीजों का सारांश यही है कि ईरान पर हमले के निर्णय के साथ अमेरिका नहीं खड़ा है, मतलब ट्रंप अपने घर में अलग थलग पड़ जाएंगे। लिहाजा ट्रंप अपने चुनावी अभियान में यही दोहरा रहे हैं कि ईरान युद्ध हार चुका है और अब ईरान में बातचीत के लिए कोई लीडरशिप मौजूद नहीं है।
1: Their economy is in ruins. They have inflation like no other country anywhere in the world. And the man who left the other day said, I'm leaving because our country is finished. That's what he said. I don't know. I don't take anything for granted, but they're not doing well. And thanks to the men and women of America's armed forces, dozens of Iran's terrorist leaders have been blown out of existence and straight through to the gates of hell. As you know, their leaders are gone. Their second group of leaders are gone. And the biggest problem I have is nobody knows who the hell is running the country. Nobody knows, but maybe that's a good thing.
0: ट्रंप पर दबाव की एक वजह ईरानी सेना की तरफ से अमेरिकी नागरिकों को लिखा गया खुला खत भी है। खत में ईरान ने मिड टर्म के वोटरों से अपील की है। अपील में कहा है कि अमेरिका और ईरान के लोगों के बीच में नफरत की वजह इसराइल है। अगर इसराइल से अमेरिका दूरी बना लेता है तो युद्ध की आग शांति में बदल सकती है। आप अमेरिकी जनता इस भयावह स्थिति को टालने की शक्ति रखते हैं। आपको अपनी सरकार को इसराइल से दूरी बनाने के लिए मजबूर करना होगा, क्योंकि फिलिस्तीन पर कब्जा करने वालों को देर सवेर अपने कब्जे वाली जमीन छोड़कर अपने मूल देशों में लौटना ही होगा। हम शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में एक साथ रह सकते हैं। अमेरिका की वर्तमान स्थिति के लिए जिम्मेदार हिंसक राजनेताओं को सत्ता से हटा दें। अपने मामलों को बुद्धिमानों को सौंपें, न कि धूर्तों को। सुनिश्चित करें कि आपके राजनेता ये समझें कि दुनिया बदल चुकी है। दूसरी तरफ ईरान युद्ध को लेकर ट्रंप अपनी घटती हुई लोकप्रियता को लेकर तनाव में हैं। तनाव की वजह है अमेरिकी नागरिकों का ट्रंप की नीतियों से उठता भरोसा। एपी नॉर्क सर्वे के मुताबिक ट्रंप के कामकाज से सिर्फ 30% लोग खुश हैं, यानी 70% अमेरिकी ट्रंप से खुश नहीं हैं। वहीं इकोनॉमी के मोर्चे पर ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग 26% है। 65% से ज्यादा अमेरिकी बढ़ती हुई कीमतों के लिए ट्रंप की नीतियों को जिम्मेदार मानते हैं। सिर्फ 28% अमेरिकियों को लगता है कि ईरान पर हमले का फैसला सही था, जबकि 66% लोग युद्ध के फैसले के खिलाफ हैं। सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि 64% अमेरिकी मानते हैं कि ईरान के खिलाफ युद्ध में अमेरिका की जीत नहीं हुई। 78% अमेरिकी मानते हैं कि युद्ध को खत्म करने के लिए ट्रंप ने जरूरी कदम नहीं उठाए। इतना ही नहीं, ट्रंप की पार्टी के 63% समर्थक ही ट्रंप के फैसले के साथ खड़े हैं। ताजा सर्वे ने मिड टर्म चुनाव में ट्रंप के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। ऐसे में ईरान युद्ध ट्रंप के लिए गले की हड्डी बन गया है। इसी खतरे से निपटने के लिए ट्रंप मिड टर्म चुनाव से पहले ईरान पर बड़ा हमला कर सकते हैं। इसके संकेत भी मिले हैं। बड़ा संकेत है विमान हाईजैक की कोशिश से ईरान का नाम जोड़ना। आतंकवाद से ईरान का नाम जोड़कर ट्रंप हमले की नई पटकथा लिख चुके हैं। अमेरिकी मीडिया में छपी रिपोर्ट और मिडल ईस्ट में अमेरिकी सैनिकों की अतिरिक्त तैनाती भी इसी ओर इशारा कर रही है, क्योंकि चंद दिन पहले ही एयरक्राफ्ट कैरियर को खाड़ी देशों के करीब भेजा गया है। अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती की गई है। माना जा रहा है कि ट्रंप गुपचुप तरीके से ईरान पर बड़े हमले की तैयारी कर चुके हैं। इसी कड़ी में बीते कुछ दिनों से सीक्रेट बैठकों का दौर जारी है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने टॉप सिक्योरिटी टीम के साथ एक मीटिंग की है। बैठक में विदेश मंत्री मार्को रूबियो, रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ, विशेष दूत स्टीव विटकॉफ, CIA निदेशक जॉन रैटक्लिफ और शीर्ष सैन्य प्रमुख डैन केन शामिल थे। अमेरिका की सैन्य तैयारियों को लेकर ईरानी रक्षा मंत्रालय की तरफ से नए हमले की आशंका को लेकर ट्रंप को सीधी धमकी दी गई है। किसी भी नए हमले के बाद ईरान की तरफ से पलटवार होगा। ईरान ज्यादा उन्नत हथियारों का इस्तेमाल करेगा। ईरान के पास हथियारों की कोई कमी नहीं है। युद्ध शुरू होने से पहले जितनी क्षमता थी, आज उस क्षमता को 2.5 गुना बढ़ा दिया जा चुका है। दुश्मन के मनोवैज्ञानिक अभियानों और हालिया गतिविधियों से नए सिरे से आक्रामकता की संभावना का संकेत मिलता है, जिसका निश्चित रूप से निर्णायक जवाब दिया जाएगा। दुश्मन को भारी हार का सामना करना पड़ेगा। पूरे इलाके से अमेरिका का खात्मा हमारा संकल्प है। अगर दुश्मन गलत अनुमान लगाता है तो उसे निश्चित रूप से ज्यादा उन्नत हथियारों और सशस्त्र बलों की ओर से भारी जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, ईरान की तरफ से युद्ध का नया रिहर्सल भी शुरू हो गया है। बेलारूस में ईरानी सैनिक युद्ध अभ्यास के लिए पहुंचे हैं। वहीं हूतियों के हमले से सऊदी अरब दहल रहा है। मतलब युद्ध के किसी भी मोर्चे पर ईरान झुकने को तैयार नहीं है। ईरान ने ऐलान कर दिया है कि युद्ध में अमेरिका की हार हुई, अगर अमेरिका हमला करता है तो एक बार फिर हार होगी। आप सैन्य युद्ध हार चुके हैं, आप आर्थिक युद्ध में भी असफल होंगे। हुर्मुज को धमकियों या दबाव से नहीं खोला जा सकता। ईरान पीछे नहीं हटेगा। अमेरिका की भ्रामक भविष्यवाणियों में तो पहले से ही कोई विश्वसनीयता नहीं थी। उनके नए दुष्प्रचार का भी जीवन काल उतना ही अल्पकालिक होगा। भले ही मिड टर्म चुनाव से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति के दिमाग में ईरान पर नए हमले का प्लान घूम रहा हो, लेकिन ईरान भी नए हमलों से निपटने के लिए तैयार है। प्लान पूरे मिडल ईस्ट को युद्ध के दायरे में लाना है। आज तक ब्यूरो।
2: और अब खबर फ्रांस की, कि कैसे फ्रांस में जेनजी ने अपनी मांगों को लेकर पूरे फ्रांस को सुलगा दिया। जी हां, शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर छात्र सड़कों पर उतरे हैं। सितंबर में शुरू हुआ जेनजी का यह आंदोलन अब पूरे देश में फैल गया है। छात्र स्कूलों में बढ़ती भीड़, जर्जर इमारतों, शिक्षकों की कमी का विरोध कर रहे हैं। आंदोलन के दौरान कई जगह जेनजी और पुलिस के बीच जमकर झड़प हुई और इस पूरे आंदोलन पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बयान ने एक नई बहस छेड़ दी। जी हां, ट्रंप ने कहा कि यह मामला स्कूलों से जुड़ा नहीं बल्कि फ्रांस पर इस्लाम कब्जा करना चाहता है। तो आइए दिखाएं आपको फ्रांस में जेनजी का युद्ध।
0: सुलग उठा फ्रांस, जेन जी और जेन अल्फा का विद्रोह। स्कूलों की बदहाली, फ्रांस में जेन जी आंदोलन की चिंगारी। स्कूलों से सड़क तक जेन जी की पुलिस से सीधी भिड़न। अब तक 5,000 से ज्यादा छात्र गिरफ्तार। स्कूलों पर संग्राम। बवाल के बीच ट्रंप का बयान, फ्रांस पर कब्जा चाहता है इस्लाम। ये तस्वीरें फ्रांस की हैं। सड़कों पर आग है, पुलिस है, आंसू गैस है और पुलिस के सामने खड़ी है फ्रांस की नई पीढ़ी। एक ऐसी पीढ़ी जिसमें जेन जी और जेन अल्फा शामिल हैं और इन्होंने बदहाल स्कूलों के लिए फ्रांस की सरकार के खिलाफ एक जंग छेड़ दी है। कहीं स्कूल के गेट पर बैरिकेडिंग है, कहीं सड़कों पर छात्रों का हुजूम है और कहीं पुलिस के साथ सीधा टकराव। आपको बता दें कि फ्रांस के लेंस शहर में एक स्कूल के पास हुए धमाके में 15 साल के एक छात्र का हाथ उड़ गया तो इससे पहले पिछले हफ्ते 14 साल के ईडन नाम के छात्र के सिर पर आंसू गैस का गोला लगने की खबर सामने आई। उसके जबड़े में दो जगह फ्रैक्चर हुआ था और उसे बड़ी सर्जरी करानी पड़ी। मानवाधिकार संगठनों, छात्रों और अभिभावक समूहों ने नाबालिगों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई को जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग बताया है। स्ट्रासबर्ग में पुलिस ने छात्रों पर आंसू गैस छोड़ी, छात्र सड़कों पर भागते नजर आए, यानी स्कूलों की समस्या को लेकर शुरू हुआ आंदोलन अब कई जगह हिंसक टकराव में बदल चुका है। प्रदर्शन के दौरान करीब 200 लोग घायल हुए हैं तो 5000 से अधिक छात्रों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें करीब 87% नाबालिग हैं, यानी बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां 18 साल से कम उम्र के छात्रों की हुई हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक इस आंदोलन के दौरान 85 टीचिंग स्टाफ भी घायल हुए हैं। आंदोलन की शुरुआत 21 सितंबर को पेरिस के एक स्कूल से होती है। छात्रों की मांग थी कि स्कूल में स्टाफ और संसाधनों की कमी दूर की जाए। स्कूल में अतिरिक्त स्टाफ भेजे जाने के बाद वहां की हड़ताल तो खत्म हो गई, लेकिन तब तक दूसरे इलाकों में भी विरोध शुरू हो चुका था। इसके बाद विश्वविद्यालयों के छात्र भी आंदोलन में शामिल हो गए। इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर में बड़ी हुई ये नई पीढ़ी अब ऑनलाइन शिकायत करने के बजाय सड़कों पर उतरकर अपने स्कूलों की हालत पर सवाल पूछ रही है। लेकिन फ्रांस में जेन जी और जेन अल्फा के इस धधकते आक्रोश के बीच अमेरिका से एक ऐसा बयान आया जिसने बहस की दिशा ही बदल दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि फ्रांस में जो हो रहा है वो बड़े पैमाने पर बाहर से लोगों के बेकाबू ढंग से आने का मामला है। ये स्कूलों से जुड़ा मामला नहीं है, ये एक महान देश पर इस्लाम के कब्जा करने का मामला है। यानी जहां फ्रांस के छात्र शिक्षकों की कमी, स्कूलों की खराब हालत, भरी हुई कक्षाओं और शिक्षा व्यवस्था में ज्यादा निवेश की मांग कर रहे हैं, वहीं ट्रंप ने इस पूरे घटनाक्रम को बाहर से लोगों के आने और इस्लाम के मुद्दे से जोड़ दिया। लेकिन ट्रंप के इस बयान के पीछे सिर्फ फ्रांस का मुद्दा नहीं देखा जा रहा, इसके पीछे अमेरिका की घरेलू राजनीति भी है। अगले महीने अमेरिका में मिड टर्म चुनाव होने हैं और ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के लिए बाहर से आने वाले लोगों का मुद्दा और इस्लाम से जुड़ी राजनीति दक्षिणपंथी वोटरों को लामबंद करने वाले बड़े मुद्दों में शामिल है। यानी फ्रांस के स्कूलों में चल रहे आंदोलन को ट्रंप ने अपने उस राजनीतिक नैरेटिव से जोड़ दिया जिसका इस्तेमाल अमेरिका में अपने समर्थकों को एकजुट करने के लिए किया जाता रहा है। तो मिड टर्म चुनाव से ठीक पहले क्या फ्रांस के इस विवाद को बाहर से आने वाले लोगों और इस्लाम के मुद्दे से जोड़कर ट्रंप अपने समर्थक वोटरों को एकजुट करने का राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं? हालांकि फ्रांस की सड़कों पर मौजूद छात्रों से अगर पूछा जाए तो उनकी घोषित मांगे फिलहाल बिल्कुल अलग हैं। शिक्षक चाहिए, स्कूलों की मरम्मत चाहिए, कक्षाओं में भीड़ कम चाहिए और शिक्षा व्यवस्था के लिए ज्यादा संसाधन चाहिए। यानी एक तरफ फ्रांस की जेन अल्फा और नई पीढ़ी का स्कूलों को लेकर गुस्सा और दूसरी तरफ ट्रंप का इसे बाहर से लोगों के आने और इस्लाम से जोड़ना। लेकिन अब मामला सिर्फ स्कूलों तक सीमित नहीं रहा, हिंसा बढ़ी है, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव बढ़ा है, सैकड़ों छात्र और स्कूल कर्मचारी घायल हुए हैं और 700 से ज्यादा पुलिस कर्मियों के भी घायल होने की जानकारी है। फ्रांस के प्रधानमंत्री सेबेस्टियन डेकोर्नू ने इसे कई दशकों में सबसे हिंसक स्कूल प्रदर्शनों में से एक बताया है और मंत्रियों को छात्रों की मांगों पर काम करने का निर्देश दिया है। सरकार के सामने मुश्किल इसलिए भी बड़ी है क्योंकि फ्रांस पहले से भारी सरकारी कर्ज, कमजोर आर्थिक विकास और बढ़ते बजट घाटे से जूझ रहा है। यानी सड़कों पर छात्र हैं, स्कूलों की बदहाली है और सरकार के सामने पैसे की भी बड़ी चुनौती है। आज तक ब्यूरो।
2: दर्शक में आज के लिए बस इतना ही, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: सर गैसो फास्ट की ग्रोथ तो चेक कीजिए।
2: गैसो फास्ट 27%,
1: इनो 9.2%।
3: गड़बड़ है।
4: आहा, गैसो फास्ट वाले जीरे का जादू चला रहे, इसीलिए इनके चाहने वाले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे। गैसो फास्ट, इंडिया की एसिडिटी का असली इंडियन सॉल्यूशन।
5: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। Signature Finest Silver Elaichi, a premium product from Dilbagh Group.
6: और वही कहाँ गए थे घूमने?
7: GK Max.
8: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
7: GK Max. Best putty.
8: JK Wall Max.
7: Best paint.
8: JK Max.
9: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन most beautiful walls के लिए सिर्फ JK Max paints.
10: JK Max. JK Max paints. खुशियों के रंग।
11: ये डायबिटीज मुझे बार बार थका देता है।
12: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
11: अब मुझे जल्दी थकान नहीं होती। कपीवा डायफ्री जूस।
13: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
14: AU सोच बदलो और बैंक भी।
15: इन एसोसिएशन विद सिग्नेचर फाइनेस्ट कार्डमम सीड्स, E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल।
16: सरकार के मुखिया के तौर पर 25 वर्षों की ये निरंतर यात्रा, लोग इसे उपलब्धि मानते हैं, लेकिन मैं इसे कैसे देखता हूं? मेरे लिए ये व्यक्तिगत महिमा मंडन का विषय नहीं है और न ही ये इसका अवसर है। आज से 25 साल पहले 50 वर्ष की आयु में जंगलों में आदिवासियों की सेवा करते करते गुजरा, पहाड़ों में जिंदगी बिताई और भारतीय जनता पार्टी में संगठन की राह चुनी। मेरा राजनीतिक रिपोर्ट कार्ड सिर्फ संगठन का काम करने वाले का ही था। मैंने चुनाव लड़ाए थे लेकिन एक भी चुनाव नहीं लड़ा था। चुनावी राजनीति में चमकने की चाहत होती तो बहुत पहले ही मैदान में उतर सकता था, लेकिन ये मेरा मिजाज नहीं था। मैं जीवन में क्या बनूंगा, मेरा क्या होगा, ये कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि बाल्यकाल से जो मुझे शिक्षा दीक्षा मिली, वो शिक्षा दीक्षा यही थी कि मैं एम्बिशन के लिए नहीं, मिशन के लिए जीवन जीने वाला इंसान रहा हूं।
17: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
18: इन एसोसिएशन विद
19: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: पंजाब चुनाव से पहले सबसे बड़ी पंचायत, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ हर सवाल पर होगी खुलकर बात। देखिए पंचायत आज तक पंजाब, 8 अक्टूबर दिन भर सिर्फ आज तक पर।
1: रियल्टी पार्टनर TDI इंफ्राटेक, नॉर्थ इंडियाज लीडिंग टाउनशिप डेवलपर।
2: हेल्थ पार्टनर
3: वृंदा लाइफ, वी आर नोन फॉर क्वालिटी मेडिसिन।
2: बैंकिंग पार्टनर
4: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
5: स्पेशल पार्टनर ग्रेट खलीज चॉइस फॉर पावरफुल फिटनेस लिफ्ट्स बाय पोलो एलिवेटर।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
7: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
8: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
9: AU
10: सोच बदलो और बैंक भी।

0: वी विल डू इट। सीएम से पीएम पद की अनवरत यात्रा के 25 साल पूरे हुए तो 2047 के विकसित भारत के लिए यही नरेंद्र मोदी का मंत्र था।
1: स्वागत है भाई, स्वागत है।
0: दिल्ली में विकसित भारत सेवा संकल्प सभा में प्रधानमंत्री मोदी ने 25 साल की अपनी सियासी जमा पूंजी को कुछ यूं शब्दों में बांधा। 7 अक्टूबर 2001 को नरेंद्र मोदी ने भूकंप से तबाह हुए गुजरात की कमान संभाली थी। राजनीतिक उथल पुथल भी मची हुई थी, लेकिन लगातार 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से लेकर लगातार 3री बार प्रधानमंत्री बनने की उपलब्धि उनके खाते में आई। सरकारों के प्रमुख के तौर पर मोदी के 25 साल पूरे होने पर बीजेपी ने आज देश भर में विकसित भारत संकल्प सभाएं आयोजित की हैं। आज तक से इंटरव्यू में अमित शाह ने बताया था कि गुजरात से दिल्ली की इस यात्रा में मोदी में क्या बदला और क्या बना रहा। बीते 12 वर्षों से मोदी की सरकार में कई ऐसे काम हुए हैं जिन्हें पहले असंभव माना जाता रहा है। राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक हर मोर्चे पर मोदी की उपलब्धियों का गुलदस्ता सजा हुआ है। कोविड से लेकर पहलगाम आतंकी हमले जैसे संकट आए हो, या पायलट स्मिथ मछार की बहादुरी का क्षण, पीएम हर जगह अपने नेतृत्व से पहली पंक्ति में दिखे। सेवा संकल्प सभा में मोदी ने स्मिथ की बहादुरी को भी देश के विकास के मिशन से जोड़ा। गुजरात हो या अब देश, नरेंद्र मोदी के अगर करोड़ों समर्थक हैं तो उन्हें विपक्ष का कड़ा विरोध भी झेलने को मिला है। राजनीति की यही रफ्तीली राहें शायद नरेंद्र मोदी को शक्ति देती होंगी। आज तक ब्यूरो।
2: नरेंद्र दामोदर दास मोदी के कायदा के स्थापित भारत में
3: 25 साल पहले 2001 को आज की ही तारीख, जब पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी। 7 अक्टूबर 2001 से जनसेवा की जो शुरुआत हुई वो बिना रुके आज भी जारी है। गुजरात के मुख्यमंत्री से देश के प्रधानमंत्री तक का सफर और अब सरकार के मुखिया के तौर पर 25 साल पूरे, मोदी भारतीय राजनीति के सबसे लंबे समय तक सरकार का नेतृत्व करने वाले नेताओं में शामिल है। गुजरात में 3 लगातार चुनावी जीत के बाद 2014 में मोदी ने राष्ट्रीय राजनीति का रुख किया और प्रधानमंत्री बने। 2019 और 2024 में भी बीजेपी को लोकसभा में सरकार बनाने का जनादेश मिला। मोदी के 25 साल के शासन की कहानी को उनके समर्थक विकास और कल्याणकारी योजनाओं के विस्तार के रूप में देखते हैं। गुजरात में प्रशासनिक सुधारों से लेकर केंद्र में जनधन, उज्ज्वला आवास, स्वच्छ भारत, डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण जैसी पहलुओं तक सरकार ने गरीब और वंचित वर्गों तक सरकारी योजनाओं की पहुंच बढ़ाने पर जोर दिया।
4: सेवा का संदेश सिर्फ कथन से नहीं बल्कि हमारे कार्यों से आगे बढ़ना चाहिए, और वो आप सभी मेरे नौजवान साथी, देश के कोने कोने से मोटरसाइकिल पर निकले हुए साथी, आप सबने करके दिखाया है।
3: आज जब जनसेवा के क्षेत्र में पीएम मोदी के 25 साल पूरे हो चुके हैं तो कई कार्यक्रमों के साथ इसका जश्न मनाया जाएगा। पीएम मोदी की जन्मभूमि वड़नगर से उनकी कर्मभूमि वाराणसी के लिए निकली सेवा संकल्प बाइक यात्रा वाराणसी पहुंचेगी, तो वाराणसी से निकली बाइक यात्रा वड़नगर पहुंचेगी। इधर दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में पीएम मोदी विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित करेंगे। आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: और इस वक्त बड़ी और अहम खबर बता दें, जानकारी मिल रही है विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी है बिजली गिरने की वजह से। जी हां, पटना से लखनऊ आ रहा था विमान और इस फ्लाइट पर बिजली गिरी है, बिजली की चपेट में विमान आया है जिसकी वजह से इमरजेंसी लैंडिंग इसकी कराई गई है। करीब 17,000 फीट की ऊंचाई पर यह आकाशीय बिजली गिरी है जिसके बाद इस विमान को इमरजेंसी लैंड कराया गया है। खराब मौसम के दौरान ये आकाशीय बिजली गिरने की खबर है। पटना से ये फ्लाइट लखनऊ आ रही थी और 17,000 फीट की ऊंचाई पर थी ये फ्लाइट जब मौसम खराब होने के बाद बिजली गिरने की घटना सामने आई। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से इस फ्लाइट के ऊपर बिजली गिरी है। और आपको ये बता दें कि पायलट की सूझबूझ से बड़ी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है, बड़ी दुर्घटना होने से बची है। लखनऊ एयरपोर्ट पर विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी है। पटना से जो ये फ्लाइट है ये लखनऊ के लिए आ रही थी।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

दिल्ली में हाई वोल्टेज सियासी ड्रामे के बीच हिरासत में लेने के बाद छोड़े गए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, कल पूरे देश में प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। ज्ञानेश कुमार पर सियासी घमासान तेज हुआ, खड़गे ने कहा तानाशाह मोदी सरकार और चुनाव आयोग के गठबंधन का पर्दाफाश, नितिन नवीन का पलटवार, अराजकता फैला रहे हैं राहुल गांधी। पीएम तक जनसेवा में प्रधानमंत्री मोदी के 25 साल का एम्बिशन नहीं मिशन के लिए जीता हूं, कई शहरों में बीजेपी ने के कार्यक्रम, आडवाणी से मिले प्रधानमंत्री।

टीकातंज का 2027 का परिणाम साफ, अखिलेश का पलटवार, घमंड का मिलेगा दंड। इंडिगो की फ्लाइट पर गिरी बिजली, खराब मौसम की वजह से 17,000 फीट पर हादसा, लखनऊ में सुरक्षित लैंडिंग।

0: नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। वैसे तो ऐसे केस की लंबी लिस्ट है जिसका सीबीआई ने कत्ल किया, लेकिन पटना की नीट छात्रा के मामले में सीबीआई ने केस को जिस तरह से मारा है उसके बाद इन अफवाहों को पर मिल गए कि सीबीआई किसी ताकतवर शख्स को बचाने की कोशिश कर रही है। बस यूं समझ लीजिए कि अब कोई करिश्मा है पटना की नीट छात्रा की मौत का रहस्य उजागर कर सकता है, वरना पटना पुलिस से लेकर देश की सबसे नामचीन जांच एजेंसी सीबीआई ने जांच के नाम पर इस केस का जो हश्र किया है उसकी दूसरी मिसाल पूरे देश में ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। क्या आपने कभी किस्से कहानियों में भी सुना है कि किसी लड़की का रेप होता है, फिर उसकी मौत होती है और उस मौत के बाद सीबीआई भूल जाती है कि नाबालिग मौत और रेप के मामले में उसे पॉक्सो की धारा लगा दी। सीबीआई भूल जाती है कि जिस गर्ल्स हॉस्टल में नीट छात्रा बेहोश मिली थी उस हॉस्टल में उस रात एक्टिव मोबाइल के कॉल डिटेल भी खंगालने होते हैं। सीबीआई भूल जाती है कि नीट छात्रा के अंडरगार्मेंट से जो स्पर्म मिले उसकी आरोपियों के साथ मिलान भी करानी होती। सीबीआई भूल जाती है कि नीट छात्रा की फॉरेंसिक रिपोर्ट जो दिल्ली के एम्स में पड़ी है उसे मंगाकर उसे पढ़ना भी होता है। सीबीआई भूल जाती है कि इस पूरे केस में जो इकलौती गिरफ्तारी हुई गर्ल्स हॉस्टल के उस मालिक मनीष रंजन से पूछताछ भी करनी है। हद तो यह है कि सीबीआई ये तक भूल जाती है कि इस मामले में 90 दिन के अंदर अदालत में उसे चार्जशीट यानी आरोप पत्र भी दाखिल करनी है। लिहाजा इस भुलक्कड़ सीबीआई की सबसे बड़ी भूल का अंजाम ये कि गर्ल्स हॉस्टल का मालिक मनीष रंजन अपने आप जमानत पाने का हकदार हो जाता है और बड़ी आसानी से जेल से बाहर भी आ जाता है। और फिर इस भुलावे में रही सही आखिरी कसर भी अब पूरी होगी, लेकिन इस पूरी होने की कीमत केस ने अधूरी रहकर चुकाई। जी हाँ, भारी भरकम नाम वाली सीबीआई के हिस्से एक और क्लोजर रिपोर्ट आई है। पटना की नीट छात्रा की मौत की जांच के 8 महीने बाद भी जब सीबीआई के हाथ खाली रह गए तब उसने सबसे आसान काम किया, कोर्ट में जाकर केस की क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी, ये कहते हुए कि इस केस में न कोई सबूत मिला न कोई गुनहगार, इसलिए केस क्लोज ही कर दीजिए। इस एक केस में की गई गलतियों की ये तमाम गलतियां शायद न इत्तेफाक है, न गलती, न लापरवाही और न ही इतनी बड़ी जांच एजेंसी का नौसिखियापन। तो फिर आप पूछेंगे कि भला सीबीआई खुद इस बेशर्मी के साथ अपनी भद्द क्यों पिटवाएगी? तो आपके इसी सवाल में ही तो वो सवाल है कि आखिर नीट छात्रा के रेपिस्ट या कातिल को कौन, क्यों और किस लिए बचाने की कोशिश कर रहा है? वो कौन है जो इतना ताकतवर है कि पटना पुलिस से लेकर सीबीआई की 5 अलग अलग टीमों के हाथों से जांच गुजर गई पर क्या मजाल जो कि कोई भी टीम या जांच अधिकारी सच के करीब जाने की हिम्मत भी दिखा पाता। पहले दिन से लेकर अब तक और पटना पुलिस से लेकर सीबीआई तक इस केस में हर पल हर मोड़ पर इतनी गलतियां की गई है कि अब सचमुच पटना में सत्ता के गलियारों में जो चर्चा आम है उस पर यकीन होने लगा है। चर्चा ये कि ये केस कभी इसलिए नहीं खुल पाएगा क्योंकि इसके पीछे सत्ता के करीबी एक बड़े और ताकतवर शख्स का नाम है। सीबीआई अपनी बचकानी जांच की हरकतों से इन चर्चाओं पर हकीकत की मुहर लगाने में चुकी है। ये पटना में मौजूद शंभू गर्ल्स हॉस्टल है, ये वही हॉस्टल है जहां 6 जनवरी को नाबालिग नीट छात्रा बेहोशी की हालत में मिली थी, फिर 3-3 अस्पताल में उसका इलाज चला और आखिरकार 11 जनवरी को उसने दम तोड़ दिया। और ये मनीष रंजन है, उसी शंभू गर्ल्स हॉस्टल का मालिक जिसे पटना पुलिस ने शुरुआत में ही गिरफ्तार कर लिया था। तब से मनीष रंजन पटना के बेऊर जेल में बंद था। इस दौरान उसने जमानत पाने की तमाम कोशिश की लेकिन अदालत ने उसे जमानत देने से इनकार कर दिया। पर अब इस केस में गिरफ्तार इकलौता मनीष रंजन भी जमानत पर रिहा हो गया। जानते हैं कैसे? अदालत ने मनीष रंजन को जमानत नहीं दी, बल्कि जिस जांच एजेंसी सीबीआई को पुख्ता सबूतों के साथ उसे जेल की सलाखों के पीछे रखने की जिम्मेदारी दी गई थी, उसी सीबीआई की जाने अनजाने मिली कृपा से मनीष रंजन आजाद हो गया। मनीष रंजन को जमानत पाने के लिए अदालत में बहस तक नहीं करनी पड़ी, क्योंकि सीबीआई ने इसकी नौबत ही नहीं आने दी। लिहाजा डिफॉल्ट बेल की कृपा के सहारे मनीष छूट गया। पुलिस में भर्ती होने वाला नौसिखिया पुलिस अफसर भी इतना तो जानता है कि हर केस में 90 दिन के अंदर अंदर उस केस से जुड़ी चार्जशीट यानी आरोप पत्र अदालत में दाखिल करनी होती है। इसी चार्जशीट की बुनियाद पर आरोपी या आरोपियों के खिलाफ आरोप तय होते हैं, फिर उन पर उन्हीं आरोपों से जुड़ी धाराओं में मुकदमा चलता है। इसी चार्जशीट के आधार पर फिर मुकदमे का फैसला होता है। अब अगर 90 दिन के इस तय म्याद में देश की कोई भी जांच एजेंसी चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाती, तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जिस आरोपी को जांच एजेंसी ने पहले से ही पकड़कर जेल में डाला हुआ है, उसके खिलाफ कोई आरोप है ही नहीं। अब जब आरोपी के खिलाफ आरोप ही नहीं है, तो फिर उसे जेल में कैसे रख सकते हैं? इसीलिए कानून कहता है कि जांच एजेंसी को 90 दिन के अंदर अंदर चार्जशीट दाखिल करनी ही करनी। अब सोचिए, एक पूरा केस जिस एक चार्जशीट पर खड़ा होता है, वही चार्जशीट नीट छात्रा के केस में सीबीआई तय मियाद यानी 90 दिन के अंदर कोर्ट में दाखिल करना ही भूल गई। अब जब आरोप पत्र है ही नहीं, तो 90 दिन से ज्यादा आरोपी को जेल में कैसे बंद रखा जा सकता है? बस इसी वजह से मनीष रंजन अपने आप जमानत पर बाहर आ गया। कहने को कहने वाले कह सकते हैं कि शायद सीबीआई चार्जशीट दाखिल करना भूल गई, पर सीबीआई की जिस जांच टीम में इतने लोग शामिल हो, जिनके पास अपना वकील हो, वो भला इतनी अहम बात कैसे भूल सकती है? या अनजाने में हुई भूल तो कतई नहीं हो सकती। तो क्या सीबीआई ने जानबूझकर मनीष रंजन को रिहाई का परवाना थमा दिया? पर क्यों? तो क्या सचमुच सत्ता के गलियारों में जारी ये चर्चा सच है कि इस केस के पीछे सत्ता के करीबी एक बड़े और ताकतवर शख्स का नाम? अभी तो आपने सिर्फ बानगी भर सुनी। सीबीआई ने जांच हाथ में लेने के बाद कदम कदम पर इस केस का कत्ल कैसे किया, अब सिलसिलेवार वो भी जान लीजिए। ये जो अब आपको बताने जा रहा हूँ, ये पटना में सत्ता के गलियारों में जारी चर्चा वाली बात नहीं है, बल्कि बाकायदा कोर्ट के अंदर खुद सीबीआई का अपना कबूलनामा है। दरअसल पटना की एक कोर्ट ने नाबालिग नीट छात्रा की मौत के मामले में सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी। स्टेटस रिपोर्ट मतलब ये कि अब तक इस केस की जांच कहां तक पहुंची। उसी दौरान जज और सीबीआई के बीच सवालों और जवाबों का दौर चला था। नीट छात्रा का केस सीबीआई को 30 जनवरी को सौंपा गया था। पूरी फरवरी और मार्च निकल गई। अप्रैल के पहले हफ्ते में पटना की एक अदालत ने सीबीआई को तलब कर ये पूछा कि केस की जांच कहां तक पहुंची है। शुरुआत में तो सीबीआई ने गोलमोल जवाब देकर एक तरह से अदालत को ही गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन फिर जब कोर्ट ने हर पॉइंट पर सीधे सवाल पूछा तो सीबीआई फंस गई। कोर्ट ने पूछा कि नीट की जिस छात्रा के साथ रेप हुआ और फिर कत्ल, वो नाबालिग थी, लेकिन सीबीआई के किसी दस्तावेज या एफआईआर में पॉक्सो एक्ट के तहत धारा क्यों नहीं लगाई गई? जानते हैं सीबीआई का जवाब क्या था, कि पटना पुलिस ने शुरुआत में जो एफआईआर दर्ज की थी उसमें पॉक्सो की धारा नहीं थी और खुद सीबीआई भी ये धारा लगाना भूल गई। अब सोचिए, वो पॉक्सो जिसमें सीधे 20 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो, जिसमें जमानत मिलना सबसे मुश्किल, उसी धारा को भूल कर सीबीआई किसकी मदद करने जा रही थी? कोर्ट की फटकार के बाद सीबीआई ने अदालत को भरोसा दिया है कि वो इसमें पॉक्सो एक्ट की धारा भी जोड़ेगी। कोर्ट ने दूसरा सवाल पूछा कि नीट छात्रा के अंडरगार्मेंट्स पर जो स्पर्म पाए गए, क्या आपने पता किया कि वो किसके थे? सीबीआई फिर हैरान, कहा अभी तो पता नहीं, पर हम पता लगा रहे हैं। पीड़िता के पास से जो फॉरेंसिक नमूने उठाए गए थे, उन्हें एम्स भेजा गया। इन फॉरेंसिक नमूनों की रिपोर्ट इस केस में बेहद अहम मानी जा रही है। इससे आरोपियों तक पहुंचने में आसानी हो सकती है। जब कोर्ट ने पूछा कि एम्स की उस रिपोर्ट में क्या निकला, तो जानते हैं सीबीआई का जवाब क्या था? अभी तो हमने एम्स से वो रिपोर्ट मंगवा ही नहीं। शंभुगंज हॉस्टल का मालिक मनीष रंजन बेऊर जेल में बंद था। कोर्ट ने पूछा कि क्या सीबीआई ने मनीष रंजन से कोई पूछताछ की, क्या उसने कुछ खुलासा किया? सीबीआई का जवाब आया, अभी मनीष रंजन से कोई पूछताछ नहीं हुई है। ना कमाल, इस केस में अब तक की जो इकलौती गिरफ्तारी हुई वो मनीष रंजन था। गर्ल्स हॉस्टल का मालिक मनीष रंजन है, लेकिन हैरत की बात ये कि सीबीआई को ये सूझा ही नहीं कि चलो मनीष रंजन से भी पूछताछ कर। हालांकि मनीष रंजन को ढूंढने की भी जरूरत नहीं थी, बस बेऊर जेल तक जाना था, पर सीबीआई गए ही नहीं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इससे पहले जब पटना पुलिस ने मनीष रंजन को गिरफ्तार किया था, तब भी उससे कोई पूछताछ नहीं की गई थी। यानी मनीष रंजन करीब 3 महीने तक जेल में रहा, पर इन 3 महीनों में एक बार भी न पटना पुलिस ने और न बाद में सीबीआई ने उससे पूछताछ की। तो फिर सवाल ये कि आखिर मनीष रंजन को पकड़ा ही क्यों गया था? या फिर उससे बड़ा सवाल ये कि क्या मनीष रंजन ही वो शख्स है जिसके पास इस केस का सारा सच है, और वही सच उस ताकतवर शख्स को बेनकाब कर सकता था? कोर्ट ने सीबीआई से फिर पूछा, चलिए आपने मनीष रंजन से पूछताछ नहीं की, पर 5 और 6 फरवरी की रात जब नाबालिग नीट छात्रा उस हॉस्टल में थी, तो क्या आपने मनीष रंजन की कॉल डिटेल से ये पता लगाया कि वारदात वाली रात वो कहाँ था या उसका लोकेशन क्या था? मनीष रंजन समेत कई संदिग्धों के कुल 8 मोबाइल आपकी कस्टडी में, तो क्या मोबाइल टावर से उसके लोकेशन की जानकारी मिली? सीबीआई का जवाब था कि फिलहाल हमने वारदात वाली रात मनीष रंजन की लोकेशन या कॉल डिटेल की जांच नहीं की है। तो सवाल तो बनता है ना कि ये सारी जरूरी चीजें जब की ही नहीं तो फिर कर क्या रहे थे? कुल मिलाकर कोर्ट में सीबीआई के जवाब से ये पता चल चुका था कि नीट छात्रा की मौत कैसे हुई, रेप हुआ तो किसने किया, अंडरगार्मेंट्स पर स्पर्म किसके थे, वो बेहोश कैसे हुई, उसे किसने मारा, इन सारी चीजों के पीछे वजह क्या थी, इनमें से एक भी सवाल का जवाब सीबीआई के पास नहीं था। असल में ये वो केस है जिसकी जांच 5 अलग-अलग टीमें ये जांच एजेंसी कर चुकी है या कर रही है। सबसे पहले 11 जनवरी को नीट छात्रा की मौत हुई, तब उससे 2 दिन पहले 9 जनवरी को पटना पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज की। मौत के 2 दिन बाद 13 जनवरी को अचानक पटना पुलिस बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये ऐलान कर देती है कि नीट छात्रा की मौत मर्डर नहीं सुसाइड है और उसके साथ कोई रेप नहीं हुआ, जबकि उस वक्त तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ ही नहीं थी।
1: जो प्रथम दृष्टया है डॉक्टर के द्वारा इंकार किया गया है, लिखित में भी दिया गया है, वीडियो पे भी साक्ष्य पे उनका बयान डॉक्टरों का दर्ज किया गया है। जो गायनी की डॉक्टर थी उनका कहना है कि बच्ची के साथ सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ है, प्राइवेट पार्ट पे किसी तरीके का चोट जख्म या कोई भी असॉल्ट का कोई साइन नहीं मिला है।
0: लगा केस खत्म, लेकिन तभी नीट छात्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ जाती है, पूरा केस ही पलट जाता है। नीट छात्रा के जिस्म पर अनगिनत जख्म थे जो कत्ल की तरफ इशारा कर रहे थे। इसके बाद जैसे ही फॉरेंसिक रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट में अंडरगार्मेंट्स में स्पर्म मिलने के सबूत मिले, तो केस और पलट गया। अब शर्मिंदा पटना पुलिस से ये मामला लेकर SIT को सौंप दिया गया, पर SIT भी पटना पुलिस की शुरुआती लाइन पर ही तफ्तीश करने लगी। अब तक मामला तूल पकड़ चुका था, बिहार पुलिस पर मामले की लीपापोती के इल्जाम लगने शुरू हो चुके थे। इसी फजीहत से बचने के लिए तब बिहार सरकार ने 30 जनवरी को केस बिहार पुलिस से लेकर CBI को सौंपने की सिफारिश कर दी। CBI की पटना ब्रांच ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। भारी भरकम टीम ने नीट छात्रा के घर जहानाबाद से लेकर गर्ल्स हॉस्टल तक छापेमारी की, बाकायदा मीडिया के कैमरों पर। तब इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग अफसर थे ASP पवन कुमार श्रीवास्तव, लेकिन CBI की ये टीम भी कहीं न कहीं पटना पुलिस की शुरुआती लाइन पर ही जांच करने लगी। फिर बाद में CBI को लगा कि जांच अधिकारी किसी महिला अफसर को होना चाहिए, तब CBI की DSP विभा कुमारी को केस का IO बना दिया गया। अब यही टीम इस केस की तफ्तीश कर रही थी। अप्रैल के पहले हफ्ते उस दिन तक जिस दिन कोर्ट के सामने स्टेटस रिपोर्ट देनी थी। अब CBI की पटना ब्रांच की जो टीम 2 महीने से भी ज्यादा वक्त में न पॉक्सो धारा लगा पाई न मनीष रंजन से पूछताछ कर पाई, न उसकी कॉल डिटेल देखने पढ़ने का वक्त निकाल पाई और न ही एम्स से रिपोर्ट तक मंगा पाई, तो कोर्ट ने सीधे सीधे कार्रवाई करते हुए आदेश दिया कि सीबीआई पटना ब्रांच की इस जांच टीम को ही हटा दिया जाए। कोर्ट ने आदेश दिया कि अब मामले की जांच दिल्ली में मौजूद सीबीआई को ट्रांसफर कर दी जाए। कोर्ट के हुक्म पर ऐसा ही हुआ और इस तरह इस केस में पांचवें इन्वेस्टिगेटिंग अफसर की एंट्री हुई, पर पांच पांच आईओ के एक ही केस पर काम करने के बावजूद नतीजा ये कि अब भी इस केस का कोई नतीजा नहीं निकला और जिस केस का कोई नतीजा नहीं निकलता उसे बंद कर दिया जाता है। यही है सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट। जहानाबाद से सैयद मुशर्रफ इमाम और शशि भूषण के साथ रोहित कुमार सिंह, पटना आज तक। वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से।
3: हरियाणा की सियासत का सबसे बड़ा मंच मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ, हर सवाल पर होगी खुलकर बात। देखिए पंचायत आज तक हरियाणा 8 अक्टूबर दिन भर सिर्फ आज तक पर।
4: पुणे में महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन जारी है। छात्रों ने ऐलान कर दिया है कि जब तक एमपीएससी के चेयरमैन का इस्तीफा नहीं हो जाता वो पीछे हटने वाले नहीं।
5: पहले इस्तीफा होना चाहिए, मतलब कुछ अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए अध्यक्ष की, उसके बाद मतलब ये पूरा सिस्टम ही भ्रष्ट हो चुका है।
4: पुणे के नवी पेठ इलाके में 6 दिन से महाराष्ट्र भर के छात्र जिद पर अड़े हुए हैं। ये छात्र सिस्टम के खिलाफ गुस्से में, छात्र महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन की आयोजित परीक्षाओं की प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं। इन छात्रों को विपक्षी दलों का पूरा समर्थन मिल रहा है। विपक्ष भी छात्रों के साथ मिलकर महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग के चेयरमैन के इस्तीफे से कम में मानने को राजी नहीं है, इसीलिए छात्रों के प्रदर्शन पर सीएम फडणवीस का बयान सामने आया।
6: अतिशय स्पष्टपणे सांगतो की एमपीएससीच्या अध्यक्षांचा राजीनामा घेणं किंवा त्यांना हटवणं हे राज्य सरकारच्या हातामध्ये नाही, राष्ट्रपतींना सुप्रीम कोर्टाच्या शिफारसीवरूनच फक्त त्यांना हटवता येतं हे संविधानात लिहिलेलं आहे, ते त्यांनाही माहिती आहे, सर्व लोकांना माहिती आहे।
4: इन प्रदर्शनकारी छात्रों के धरने में रोज

0: हरियाणा की सियासत का सबसे बड़ा मंच, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ हर सवाल पर होगी खुलकर बात। देखिए पंचायत आज तक हरियाणा 8 अक्टूबर दिन भर सिर्फ आज तक पर।
1: पुणे में महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन जारी है। छात्रों ने ऐलान कर दिया है कि जब तक एमपीएससी के चेयरमैन का इस्तीफा नहीं हो जाता वो पीछे हटने वाले नहीं।
2: पहले इस्तीफा होना चाहिए, मतलब कुछ अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए अध्यक्ष की, उसके बाद मतलब ये पूरा सिस्टम ही भ्रष्ट हो चुका है।
1: पुणे के नवी पेठ इलाके में 6 दिन से महाराष्ट्र भर के छात्र जिद पर अड़े हुए हैं। ये छात्र सिस्टम के खिलाफ गुस्से में हैं। छात्र महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन की आयोजित परीक्षाओं की प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं। इन छात्रों को विपक्षी दलों का पूरा समर्थन मिल रहा है। विपक्ष भी छात्रों के साथ मिलकर महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग के चेयरमैन के इस्तीफे से कम में मानने को राजी नहीं है। इसीलिए छात्रों के प्रदर्शन पर सीएम फडणवीस का बयान सामने आया।
3: अतिशय स्पष्टपणे सांगतो की एमपीएससीच्या अध्यक्षांचा राजीनामा घेणं किंवा त्यांना हटवणं हे राज्य सरकारच्या हातामध्ये नाही। राष्ट्रपतींना सुप्रीम कोर्टाच्या शिफारसीवरनंच फक्त त्यांना हटवता येतं हे संविधानात लिहिलेलं आहे, ते त्यांनाही माहिती आहे, सर्व लोकांना माहिती आहे।
1: इन प्रदर्शनकारी छात्रों के धरने में रोज नए नए रैपर और मराठी कलाकार पहुंच रहे हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे भी छात्रों के प्रदर्शन में पहुंचे और छात्रों को भरोसा दिलाया कि पूरा विपक्ष उनकी लड़ाई में साथ खड़ा है।
4: एमपीएससी स्टूडेंट जो है महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए जो पढ़ाई करते हैं उन सभी छात्रों का तक मोर्चा जारी है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि 5 से 6 ऐसे यहाँ स्टूडेंट्स हैं जो पिछले 3 दिन से अनशन पर बैठे हैं और पूरे आंदोलन का वैसे आज 6ठा दिन है। उनकरवाबले आज तक
1: लखनऊ के ग्रामीण इलाकों में बाढ़ का असर साफ दिखाई दे रहा है। इन तस्वीरों में पानी से घिरे गांव और जलमग्न सड़कें नजर आ रही हैं। कई जगहों पर पानी का बहाव तेज है और लोगों की आवाजाही भी प्रभावित हुई है। लोगों को आने जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। तस्वीरों में ग्रामीण पानी के बीच नाव से सफर करते दिखाई दे रहे हैं। कई इलाकों में घरों और रास्तों तक पानी पहुँच चुका है। सड़कें पूरी तरह पानी में डूबी नजर आ रही हैं और लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुँचने में परेशानी हो रही है। बाढ़ के बीच ग्रामीण जरूरी काम के लिए पानी से होकर गुजर रहे हैं। इसी दौरान पानी के तेज बहाव में डूबने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसके साथ मौजूद 5 दोस्तों को सुरक्षित बचा लिया गया। मौके पर प्रशासन और पुलिस की टीमों की मौजूदगी भी दिखाई दे रही है। इन तस्वीरों में लखनऊ के ग्रामीण इलाकों में बाढ़ से बने हालात और पानी के बीच लोगों की मुश्किलें साफ नजर आ रही हैं। लखनऊ से अंकित मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: जुड़ रही है। डेटा के मुताबिक मार्च 2026 में पहले क्रेडिट कार्ड लेने वालों में 50% जेंजी थे, जबकि 2025 में यह हिस्सेदारी 43% थी। भारत में करीब 40 करोड़ जेंजी आबादी है और देश की कुल खपत में इनका 40% से ज्यादा योगदान है। वित्त मंत्रालय भी सरकारी बैंक को युवाओं की जरूरतें समझने और उनसे उनकी भाषा में जुड़ने की सलाह दे चुका है। बैंक की दिलचस्पी केवल आज के कारोबार में नहीं, भविष्य में सिस्टम से जुड़ने वाले ग्राहकों में है। फिलहाल बड़ी संख्या में युवा बैंकिंग सिस्टम का इस्तेमाल पेमेंट और रोजमर्रा के लेन देन के लिए कर रहे हैं, लेकिन आगे चलकर ये ग्राहक लोन लेंगे, क्रेडिट कार्ड का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे और अपनी बचत भी बैंकिंग सिस्टम में रखेंगे। जाहिर है इसके बाद बचत और निवेश भी इसी वर्ग से आएगा और जल्द ही जुड़ने वाला ग्राहक लंबे समय तक बैंक के साथ रहने की ज्यादा संभावना बढ़ाएगा। इसी वजह से बैंक अब अपनी ब्रांडिंग और मार्केटिंग का तरीका बदल रहे हैं। इसके लिए वो फिटनेस और स्पोर्ट्स इवेंट्स पर फोकस बढ़ा रहे हैं। वहीं तेजी से लोकप्रिय होते जा रहे AI प्लेटफॉर्म्स पर भी विज्ञापन चलाकर युवाओं को लुभाने की कोशिश की जा रही है। युवाओं को रिवॉर्ड्स में रनिंग शूज और जिम सब्सक्रिप्शन जैसे विकल्प दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही डिजिटल और आसान बैंकिंग अनुभव पर ध्यान बढ़ाया जा रहा है, यानी युवाओं को लुभाने के लिए पारंपरिक विज्ञापन के साथ साथ ChatGPT जैसे AI प्लेटफॉर्म्स पर भी अपने क्रेडिट कार्ड का प्रचार किया जा रहा है। वहीं रिवॉर्ड प्रोग्राम्स को भी युवाओं की पसंद के मुताबिक ढाला जा रहा है।
1: इट इज वेरी इजी, अब उनको बैंक जाना नहीं है, सिर्फ मोबाइल में बैठे बैठे उनको क्रेडिट कार्ड मिल रहा है। द सेकंड रीजन इज दैट कि UPI पे क्रेडिट कार्ड मिलने लगा है, तो उनको अभी बड़ी आसानी हो गई है सब पेमेंट करने में। एंड द तीसरा रीजन जो है वो ये है कि ब्रांजी को पता चल गया है कि कल जाके अगर होम लोन लेना है तो सिबिल स्कोर अच्छा करना पड़ेगा, एंड क्रेडिट कार्ड इज द बेस्ट सोर्स टू इम्प्रूव योर सिबिल स्कोर अगर आप टाइमली पेमेंट करेंगे तो।
0: यही वजह है कि कई बैंक मोबाइल एप्स में निवेश, वित्तीय योजना और व्यक्तिगत सुझाव जैसे फीचर्स जोड़ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक युवा ग्राहक छोटी रकम से शेयर और म्यूचुअल फंड में निवेश करना भी सीखना चाहते हैं। ऐसे में बैंकिंग सेक्टर की अगली बड़ी दौड़ सिर्फ अकाउंट खोलने की नहीं, भरोसा जीतने की भी होगी। आज तक ब्यूरो।
2: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

आज के युवाओं के लिए बैंक केवल पैसे जमा रखने की जगह नहीं रह गया है। पेमेंट से लेकर क्रेडिट कार्ड और निवेश तक उनकी जरूरतें तेजी से बदल रही हैं। यही वजह है कि देश के बैंक अब युवा ग्राहकों को जोड़ने के लिए अपनी रणनीति बदल रहे हैं। ट्रांस यूनियन सिबिल के आंकड़े बताते हैं कि भारत में नई पीढ़ी पहले के मुकाबले काफी कम उम्र में औपचारिक क्रेडिट सिस्टम से

त्योहारों और शादियों के सीजन में निवेश की बात हो तो सबसे पहले सोने का नाम याद आता है। ये पीली धातु सुंदरता और शोभा में निखार लाने के साथ साथ मुश्किल वक्त में काम आने वाला बेहतरीन एसेट बन जाती है। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है, क्योंकि सोने के मुकाबले चांदी की ज्यादा चर्चा हो रही है। दरअसल लगातार बढ़ती इंडस्ट्रियल डिमांड और सप्लाई की कमी के बीच एक रिपोर्ट में चांदी को लेकर बड़ा अनुमान लगाया गया है। केडिया एडवाइजरी की दिवाली 2027 सिल्वर रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले महीनों में चांदी की कीमतों में तेज बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। हालांकि ये अनुमान बाजार की मौजूदा परिस्थितियों पर आधारित है। रिपोर्ट का अनुमान है कि कॉमेक्स पर फिलहाल करीब $65 प्रति आउंस पर मौजूद चांदी का भाव अगले 6 महीनों में $85 से $90 प्रति आउंस तक पहुंच सकता है और दिवाली 2027 तक इसके $120 प्रति आउंस तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। यानी घरेलू बाजार में चांदी एक बार फिर से 4 लाख रुपए प्रति किलो तक पहुँच सकती है, जो मौजूदा स्तर के मुकाबले करीब 71% की बढ़ोतरी होगी। रिपोर्ट का कहना है कि इस तेजी के पीछे निवेशकों की दिलचस्पी के साथ साथ इंडस्ट्री की बढ़ती जरूरत भी बड़ी वजह है। सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरी इंडस्ट्रियल जरूरतों में चांदी की मांग लगातार बढ़ रही है। दूसरी तरफ खदानों से सप्लाई उसी रफ्तार से नहीं बढ़ पा रही है। इसी वजह से वैश्विक बाजार में डिमांड और सप्लाई के बीच अंतर बना हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक 2026 में 4.63 करोड़ आउंस सप्लाई डेफिसिट का अनुमान है और लगातार 6ठे साल कमी रहने की संभावना जताई गई है। एक तरफ माइन प्रोडक्शन 84.41 करोड़ आउंस रहने का अनुमान है और कुल उत्पादन का महज 1/4 हिस्सा प्राइमरी सिल्वर माइन से आएगा। रिपोर्ट के मुताबिक चांदी की कीमतें बढ़ने के बावजूद सप्लाई में तुरंत बड़ा इजाफा आसान नहीं है, क्योंकि ज्यादातर चांदी तांबा, जिंक और सीसा जैसी धातुओं के खनन के दौरान बाय प्रोडक्ट के तौर पर निकलती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो रिपोर्ट का आकलन है कि आने वाले समय में चांदी केवल गहनों तक सीमित नहीं रहेगी, ये तो निवेश और इंडस्ट्री दोनों के लिए अहम धातु बनी रहेगी। हालांकि कीमतों की दिशा वैश्विक अर्थव्यवस्था, डॉलर, ब्याज दरों और निवेशकों की मांग पर भी निर्भर करेगी। आज तक ब्यूरो।

0: नहीं पड़े
1: नहीं, नहीं, नहीं, नहीं।
0: फ्लाइट में कम से कम सफर करें मेरे हिसाब से भाई, ट्रैवल एंस कोई गांजा फूक के चला रहा है, कोई चाकू लेके घुस रहा है, क्या हो रहा है ये?
2: लेकिन हम तो हर कीमत पर समझौते के आदि हैं।
0: तुम्हारा
2: लेकिन हम तो हर कीमत पर समझौते के आदि हैं, गाल पे चाटा खाते रहने वाले गांधीवादी हैं।
0: यार काट देना।

दिल्ली में हाई वोल्टेज सियासी ड्रामे के बीच हिरासत में लेने के बाद छोड़े गए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, पूरे देश में प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। ज्ञानेश कुमार पर सियासी घमासान तेज, खड़गे ने कहा तानाशाह मोदी सरकार और चुनाव आयोग के गठबंधन का पर्दाफाश, नितिन नवीन का पलटवार, अराजकता फैला रहे हैं राहुल गांधी। सीएम से पीएम तक जनसेवा में प्रधानमंत्री मोदी के 25 साल का एम्बिशन नहीं मिशन के लिए जीता हूं, कई शहरों में बीजेपी के कार्यक्रम, आडवाणी से मिले प्रधानमंत्री। यूपी में लड़ाई फिर, 80 और 20 पर आई राज्यसभा चुनाव के नतीजों पर सीएम योगी का एसपी पर तीखा तंज का, 2027 का परिणाम साफ, अखिलेश का पलटवार, घमंड का मिलेगा दंड। और दिल्ली के सीमापुरी इलाके में गिरी 4 मंजिला इमारत, अब तक 3 लोगों की मौत, अस्पताल में घायलों का इलाज जारी।

0: एमपीएससी छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर बॉम्बे हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, कोर्ट ने छात्रों की मांग पर ध्यान देने का आग्रह किया। पुणे में एमपीएससी आंदोलन से ट्रैफिक और जनजीवन प्रभावित होने का दावा, स्कूल कॉलेज और एम्बुलेंस सेवाओं में बाधा के आरोप। महाराष्ट्र के लातूर में और एक 60 साल के किसान ने अपने ही खेत में खुद को पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बैंक लोन और सूखे की खरीफ की फसल के चलते उठाया था कदम, पिछले 15 दिनों में चौथे किसान की आत्महत्या। अकोला में सूखे का संकट, 10 दिन में एक बार फिर से मिलेगा पानी, फिर भी निर्माण कार्य में टूटी पाइपलाइन, सूखे के बीच हजारों लीटर पानी बर्बाद। मराठवाड़ा में सूखे से हाहाकार, संभाजीनगर में फसल बर्बाद होने से मवेशी बेचने के लिए मजबूर हैं किसान। संजय राउत का चुनाव आयोग पर हमला, बोले इसी बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहा है। नांदेड़ में एसआईआर के खिलाफ इंडिया गठबंधन का महामोर्चा, फडणवीस का बयान, ये सब अराजकता फैलाने वाला काम कर रहे हैं। नागपुर में छोटी बच्ची से अश्लील कृत्य देखकर भड़के थे लोग, आरोपी को पीट पीट कर मार डाला। करण जौहर और अभिषेक वर्मा ने अपनी नई फिल्म गदादारी भीम का किया ऐलान, जल्द ही शुरू की जाएगी शूटिंग। 15 साल के बाद फिर साथ नजर आएंगे शाहरुख खान और करीना कपूर, किंग में हुई है करीना कपूर की एंट्री। फिल्म रामायण से राजा दशरथ का नया पोस्टर जारी, दशरथ के किरदार में नजर आएंगे अरुण गोविल। जैकी श्रॉफ और शरद केलकर की फिल्म काली खेती की बदली है रिलीज डेट, अब 20 नवंबर को फिल्म को रिलीज किया जाएगा। फिल्म धूल का ट्रेलर रिलीज हुआ है, साइकोलॉजिकल थ्रिलर कहानी लेकर आए यशपाल शर्मा, 23 अक्टूबर को फिल्म रिलीज होगी। दूसरी बार पेरेंट्स बनेंगे कियारा और सिद्धार्थ, सोशल मीडिया पर दिया जानकारी, लिखा एक बार फिर से हमें जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा मिलने वाला है। राजपाल यादव को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, तत्काल 1,15,00,000 रुपए का ड्राफ्ट जमा करने के लिए कहा, 7 चेक बाउंस के मामले में पेश हुए एक्टर। आरबीआई ने करीब 3.5 साल के बाद रेपो रेट को 4.5% बढ़ाकर 5.5% किया, आने वाले दिनों में होम लोन और कार लोन की एमआई महंगी होने की आशंका बढ़ी। सेंट्रम इंस्टीट्यूशनल रिसर्च के मुताबिक अगले कुछ महीनों में मोबाइल रिचार्ज प्लान 12-15% तक महंगे हो सकते हैं। टेलीकॉम सेक्टर में कंपनियों की घटती संख्या से ग्राहकों को नुकसान, रिजर्व फोरस के मुताबिक बड़े शहरों में घरों की बिक्री की रफ्तार धीमी पड़ी है और लॉन्चेस में तेजी आई है, इससे बिना बिके घरों का स्टॉक बढ़कर करीब 8.5 लाख यूनिट तक पहुंचने का दावा। महंगे एविएशन टर्बाइन फ्यूल और लंबे होते फ्लाइट रूट से आगे चलकर हवाई किराए पर दबाव बढ़ने की आशंका, एयरलाइंस ने कुछ रूट्स पर इसका सीधा असर होने की आशंका जताई। गोल्ड लोन की जबरदस्त ग्रोथ ने एनबीएफसी सेक्टर में कुल कर्ज तेजी से बढ़ गया, कर्ज लेने वालों के व्यवहार में बड़े बदलाव से गोल्ड और सिक्योर्ड लोन की डिमांड में इजाफा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। मुंबई मेट्रो में आपका स्वागत है। विपक्षी गठबंधन इंडिया मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे पर अड़ा हुआ है। दिल्ली से महाराष्ट्र तक विपक्षी दल लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आज राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्षी सांसदों ने जोरदार प्रदर्शन किया। लंच के बहाने इकट्ठा हुए सांसदों ने जंतर मंतर तक जाने के लिए जोर आजमाइश की। कई घंटे के हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद आखिरकार राहुल और प्रियंका गांधी समेत सभी सांसदों को हिरासत में ले लिया गया। इसी बीच दिल्ली पहुंचे देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि ये लोग संविधान की प्रति हाथ में लेकर असंवैधानिक काम कर रहे हैं।
1: तस्वीरें जंतर मंतर चौराहे की हैं। आप देख सकते हैं जंतर मंतर पर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ धरना देने निकले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को दिल्ली पुलिस जबरन उठाकर हिरासत में ले लेती है। ये दो तस्वीरें देखिए, कैसे राहुल गांधी को उठाकर गाड़ी में डाला जाता है और दूसरी तस्वीर में प्रियंका गांधी को देखिए, कैसे सड़क पर लेटी प्रियंका गांधी को उठाने के लिए पुलिस और केंद्रीय बलों को खासी मशक्कत करनी पड़ती है और फिर प्रियंका गांधी को सड़क से उठाकर हिरासत में लिया जाता है। सड़क पर तगड़ा संग्राम छिड़ जाता है क्योंकि प्रियंका गांधी सड़क से उठने को तैयार नहीं होती है।
2: This is how they treat members of parliament who are asking simply to meet the election commissioner. This is how they treat us. Let them call their forces back. I will not move from here.
1: और अब आपको ज्ञानेश कुमार के खिलाफ छिड़े ड्रम की पूरी टाइमलाइन दिखाते हैं। पहले राहुल गांधी कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन के सांसदों के साथ जनपद पर सागर रत्ना रेस्टोरेंट में लंच करते हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नया मोर्चा खोलने के लिए जंतर मंतर के लिए निकल पड़ते हैं।
3: प्रोटेस्ट साइट है जंतर मंतर, वहाँ पे हम जाकर सब आज फिर से बैठे और देश को बताएं कि हमारे लिए ज्ञानेश कुमार जी देश के लेजिटिमेट इलेक्शन कमिश्नर नहीं है। मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, मोहन भगवत, ज्ञानेश कुमार जी ने देश के लोकतंत्र को खत्म किया है और मैंने कल भी कहा था जिन्होंने ये काम किया है ये देशद्रोही है और इन पर हम एक्शन लेंगे। मैं आपको अभी बता रहा हूँ ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा देना पड़ेगा।
4: राहुल गांधी जी ने सच कहा है, इलेक्शन कमीशन ये बीजेपी का एजेंट बनकर काम कर रहा है ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ये जो ज्ञानेश कुमार, उससे पहले थे एक मान्यवर राजीव कुमार, ये दोनों राजीव कुमार को नहीं छोड़ना चाहिए। राजीव कुमार ज्ञानेश कुमार के खिलाफ है। ये जो हमारे पार्टी के बारे में जो निर्णय लिया है आज जो सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है ना, चोरों के हाथ में हमारी पार्टी देने का काम ये राजीव कुमार ने किया, धनुष बाण और शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस और उनकी निशानी घड़ी, ये जो परंपरा है ये राजीव कुमार ने शुरू की है पार्टी तोड़ने की और जो टूटे हुए लोग हैं उनको प्रतिष्ठा देने की। तो ज्ञानेश कुमार के साथ राजीव कुमार भी अपराधी है देश का।
5: देखिए, ये सारा प्रोटेस्ट जो है एक प्रकार से अराजकता निर्माण करने का ये प्रयास है। ये हाथ में संविधान लेते हैं लेकिन इनका षड्यंत्र अलग है, भारत के संविधान के खिलाफ ये काम कर रहे हैं, क्योंकि भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने तैयार किए हुए संविधान ने जितनी संस्थाएं तैयार की है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो CAG हो, चाहे वो RBI हो या फिर इलेक्शन कमीशन हो, ये सारे के सारे संस्थाओं पर ये प्रश्न चिन्ह निर्माण करते, ये सारी संस्थाएं खराब है ये कहते। एक प्रकार से इनके मन में जो एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट इस प्रकार का राज, इस प्रकार की राज व्यवस्था ये भारत में कायम करना चाहते।
0: पुणे में महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग के खिलाफ चल रहे छात्रों के आंदोलन पर आज बॉम्बे हाई कोर्ट में अहम सुनवाई हुई है। कोर्ट ने एक तरफ छात्रों की शिकायतों को गंभीर माना है तो दूसरी तरफ उनसे आंदोलन खत्म करके पढ़ाई पर लौटने की अपील भी की है। कोर्ट ने साफ कहा कि छात्र असामाजिक तत्व नहीं है और अगर परीक्षा प्रक्रिया में गड़बड़ी का शक है तो उन्हें विरोध करने का पूरा अधिकार है, लेकिन सड़कों पर जाम लगाकर आम लोगों को परेशान नहीं किया जा सकता।
6: पुणे में MPSC यानी महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग के खिलाफ छात्रों के प्रदर्शन के सातवें दिन भी हंगामा जारी रहा। MPSC की कथित गड़बड़ियों से नाराज छात्र ये कह रहे हैं कि MPSC चेयरमैन के इस्तीफे तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा।
7: ये पेपर पूरी तरह से कैंसिल करना चाहिए क्योंकि जो पेपर हुआ है ना वो पूरी तरह से मतलब पारदर्शक तरीके से नहीं हुआ। अगर ये पेपर कंडक्ट हो जाता है तो हमारे साथ अन्याय है। जो 80 लड़कियां वहां थी उनके साथ अन्याय है और हम बहुत सालों से तैयारी कर रहे हैं, हम सब इस सिस्टम के शिकार हुए हैं। ये नहीं होना चाहिए क्योंकि हम सब नहीं, हम क्या 17-18 साल के बच्चे नहीं है, हम 25 साल से ऊपर के बच्चे हैं। हमको नौकरी चाहिए, हमको जॉब चाहिए, हमारा आगे का करियर पूरा पड़ा है। हम कब तक इनके शिकार पड़े, कब तक लाइब्रेरी में बैठ के 10-10, 12-12 घंटे पढ़ते रहे, बस पढ़ते ही रहे, कब हमको नौकरी लगेगी? इसके क्वेश्चन को, इसका आंसर कौन देगा? आज हम हर दूसरे दिन डिप्रेशन का शिकार होते हैं, हर दूसरे दिन कोई बच्चा आत्महत्या करता है, कोई क्या करता है। हमारी, हम सब गरीब बच्चे हैं क्योंकि हम इस फील्ड में क्यों आए, क्योंकि अगर हम इंजीनियरिंग बनते या डॉक्टर बनने जाते तो वहाँ पैसा लगता है, पर हमारे पास पैसा नहीं है वहाँ जाने के लिए, इसीलिए हमने ये फील्ड चुनी है MPSC।
6: एक याचिका पर सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाई कोर्ट ने पुणे में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से अपनी पढ़ाई पर लौटने का अनुरोध किया है। साथ ही कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया कि वो महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग के खिलाफ आंदोलन कर रहे छात्रों की शिकायतों को दूर करने के लिए गंभीर प्रयास करे। चीफ जस्टिस MC त्रिपाठी ने कहा कि ज्यादातर छात्रों की दिलचस्पी धरना प्रदर्शन में नहीं बल्कि पढ़ाई में है, लेकिन अब पूरा माहौल खराब हो चुका है। भरोसा बहाल करने के लिए सरकार की तरफ से ईमानदार कोशिश होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि छात्र असामाजिक तत्व नहीं है, गड़बड़ी का शक है तो छात्रों को विरोध का पूरा अधिकार है। परीक्षा प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए, लेकिन सड़कों को जाम कर होने वाले आंदोलनों से आम लोगों को दिक्कत भी बर्दाश्त नहीं।
8: पुणे में चल रहे छात्रों के प्रदर्शन के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दाखिल हुई थी और इसी पिटीशन पर सुनवाई होने के बाद अब कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि छात्र जो पुणे में आ रहे हैं उन्हें आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन कोर्ट ने यह कहा है कि अलग अलग जगहों से जहां से वो छात्र आए हैं वे अब पढ़ाई पर ध्यान दें और 3 हफ्ते की मोहलत राज्य सरकार को दी गई है, क्योंकि इससे पहले जो पेपर लीक हुए हैं उनके लिए एसआईटी स्थापित हुई थी। तो छात्रों के मन में अब यह सवाल है कि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं हो रही, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की है कि सरकार को 3 हफ्ते की मोहलत दी जाएगी जिसमें सरकार इस पूरे मामले का रिपोर्ट दे दे।
6: आंदोलन से परेशान पुणे के नागरिकों ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। याचिका में कहा गया, छात्रों के आंदोलन से पूरे पुणे शहर को परेशानी हो रही है जिससे ट्रैफिक पर बुरा असर पड़ा है, ऑफिस जाने वाले लोगों को परेशानी हो रही है, स्कूल कॉलेज पहुंचने वाले छात्रों को दिक्कत हो रही है, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की आवाजाही भी प्रभावित होने का दावा किया जा रहा है।
0: और इसी के साथ मुंबई मेट्रो में हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: उनसे सवाल पूछना चाहते हैं, एसआईआर के बारे में पूछना चाहते हैं।
1: तो चोर की दाढ़ी में तिनका है कि नहीं है?
0: इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार और उनके दो जो कॉलीग्स हैं उनसे मिलना चाहते थे।
1: चीफ इलेक्शन कमिश्नर जहां बैठते हैं वहीं पर एक फ्लोर ले लेते, वहीं से काम चलाते रहते हैं।
2: हम लोग सतर्क हैं, फॉर्म 7 उनको बंद करना पड़ा।
3: चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष का दिल्ली में मजमा जुटा। इंडिया गठबंधन के बैनर तले तमाम बड़े बड़े नेता जुटे। राहुल गांधी भी आए, अखिलेश भी आए, लेकिन एक मंच पर होने के बावजूद दोनों में दूरियां दिखी। जरा इन दो तस्वीरों पर गौर कीजिए, क्या ये महज संयोग था? ये ऐसा जानबूझकर हुआ कि इंडिया गठबंधन के कल के प्रदर्शन में राहुल गांधी और अखिलेश यादव कभी एक फ्रेम में नहीं दिखे। राहुल गांधी बैरिकेड पर भी चढ़े, पुलिस की बस से निकलकर आकाशवाणी भवन चले गए जहां देर रात तक उनका धरना चला, लेकिन इस दौरान अखिलेश कहीं नहीं नजर आए। हालांकि चुनाव आयोग और बीजेपी पर दोनों के हमले पूरी रफ्तार से जारी रहे। गौर करने वाली बात यह भी है कि जब इंडिया गठबंधन का मार्च चल रहा था तभी अखिलेश यादव का एक पोस्ट भी सामने आया जिसमें कहा गया कि हमारी नजर 3 पर नहीं 403 पर है। आखिर इस पोस्ट का क्या मतलब है? क्या ये कांग्रेस के लिए संदेश है कि अगर सीटों के बंटवारे में कांग्रेस ने मनमानी करने की कोशिश की तो उसके लिए दरवाजे बंद भी हो सकते हैं? याद करिए, जेंजी के सवालों पर जब प्रधानमंत्री आवास के बाहर राहुल गांधी का धरना हुआ तो उसमें अखिलेश यादव भी शामिल थे। मानसून सत्र के दौरान भी अखिलेश और राहुल गांधी में अच्छा तालमेल दिखा था, लेकिन जैसे ही यूपी में सीटों के बंटवारे पर सुगबुगाहट शुरू हुई दोनों में दूरियां दिखने लगी। इसका सबसे बड़ा सबूत था अखिलेश का इंडिया गठबंधन की बैठक से दूर रहना। तो क्या ये दूरी बीतते वक्त के साथ और बढ़ती जा रही है? समर श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
4: आ गया सोमवार और आ गए
5: चकमक चाचा।
4: एक कचौड़ी, दो समोसा, चकमक तेरा क्या भरोसा?
6: चकमक चाचा से सीधे चकमक है?
4: अरे नारा है, दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है, महिला लोग एकदम नारा लगाए जा रही, बुझ रहा ना।
6: लेकिन भैया नारे अरे फालतू में सब बेकार, एकदम बेकार। अरे होते थे हमारे टाइम।
4: अच्छा
6: सुनाए, जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, जेपी भाई छूटेंगे।
4: अच्छा तो हमारे टाइम वाले सुनिए, दो कुलचा एक बिरयानी, इन नेताओं की खत्म कहानी।
6: अरे जमीन के चकबंदी में क्या फाइनेंस बंदी में?
4: ठंडी चाय गरम करो चकमक चाचा, शर्म करो।
6: अरे राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर।
4: अरे लाठी गोली खाएंगे, इस्तीफा दे के जाएंगे।
6: अरे सुनो, इस दीपक में तेल नहीं, सरकार चलाना खेल नहीं।
4: अरे लाल फूल, नीला फूल, जंजी नंगे ब्यूटीफुल।
6: अरे बारी बारी, सबकी बारी, अब की बारी अटल बिहारी।
4: चाय गरम, दूध गरम, चकमक चाचा भी शरम। हाँ,
6: जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है।
4: अरे मेरे सिर में दर्द है जिसका कारण मर्द है आप जैसा।
7: हम जैसे? इधर आओ।
8: हम जैसे मर्द नहीं होते किसी नारे से ऑफेंड, हम तो भैया करते हैं हर सही मुद्दे को डिफेंड।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
10: एक तरफ महाराष्ट्र के 75% हिस्से में सूखे का संकट है जिसकी वजह से मुंबई में 10% पानी की कटौती की गई है, लेकिन दूसरी तरफ बीएमसी ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सड़कों पर धुलाई पर 8 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला किया है, जिस पर विपक्ष अब सवाल खड़े कर रहा है।
11: महाराष्ट्र के कई तालुकों में सूखे जैसी स्थिति है। महाराष्ट्र में और मुंबई में पानी कटौती करने के बाद अगले साल तक, मई तक पानी बचेगा, इस तरह का नियोजन चल रहा है। ऐसे समय में 8 करोड़ रुपए खर्च कर धूल से बचने के लिए मुंबई के रास्ते धोना, ये कितना योग्य फैसला है, इस बात का फैसला जो है, डिस्कशन जो है, वो मुंबई में आने वाले बीएमसी की स्टैंडिंग कमेटी में होना बाकी है। लेकिन फिलहाल विपक्ष ने इस पूरे मामले पर सत्ता पक्ष पर तंज कसा है और सत्ता पक्ष ने भी बीएमसी एडमिनिस्ट्रेशन को कहा है कि पूरी तैयारी करने के बाद ये पानी कहां से सोर्स किया जाएगा वो सारी क्लैरिटी लाने के बाद ही इस प्रपोजल को आगे डिस्कस किया जाए। कैमरा पर्सन आशीष धामापुरकर के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक।
10: और इसी के साथ मुंबई मेट्रो में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरें आज तक पर लगातार जारी।
5: पंजाब चुनाव से पहले सबसे बड़ी पंचायत, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ हर सवाल पर होगी खुलकर बात। देखिए पंचायत आज तक पंजाब, 8 अक्टूबर दिन भर सिर्फ आज तक पर।
9: रियल्टी पार्टनर TDI इंफ्राटेक, नॉर्थ इंडियाज लीडिंग टाउनशिप डेवलपर। हेल्थ पार्टनर वृंदा लाइफ, वी आर नोन फॉर क्वालिटी मेडिसिन। बैंकिंग पार्टनर पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक। स्पेशल पार्टनर ग्रेट खलीज चॉइस फॉर पावरफुल फिटनेस लिफ्ट्स बाय पोलो एलिवेटर्स। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: चुनाव आयोग के खिलाफ संसद भवन परिसर से जब विपक्षी दलों के नेता निकले तो सब साफ थे। राहुल के आसपास तमाम विपक्षी दलों के नेताओं संग अखिलेश भी नजर आ रहे थे, लेकिन लक्ष्य पर पहुंचने से पहले रास्ते अलग हो गए, मंजिल अलग हो गई, जुबां जुदा हो गई। अखिलेश पहले पुलिस की बस में पहुंचे, राहुल बरगद के नीचे, अखिलेश लखनऊ लौट गए, राहुल वहीं बैठे रहे। और ये फर्क क्या यूपी की चुनावी राजनीति तक नजर आएगा? इस आशंका में जब अखिलेश से सवाल पूछा गया तो उनका जवाब सुनिए। यूपी की 403 सीटों पर अखिलेश भले सवाल नहीं सुनना चाह रहे, लेकिन चुनावी लड़ाई में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के मुद्दे अलग अलग हैं। ये कई मौकों पर साफ दिखा है और अब सीट बंटवारे पर यह भेद दिनों दिन चौड़ा होता जा रहा है। दरार नेताओं के रुख, हाव भाव और मुद्दों में मतभेद को लेकर दिखे ना दिखे, लेकिन यूपी के नेताओं की बयानबाजी में खूब दिख रहा है। और कांग्रेस ने जिस तरह समाजवादी पार्टी पर आक्रामक रुख अपनाने वाले इमरान मसूद को ऊंचे पद पर बैठाया, इससे कांग्रेस के हौसलों का अंदाजा लगाया जा सकता है।
1: आज आंधी राहुल गांधी की है, उसको मद्देनजर रखें कि कांग्रेस 2017 वाली कांग्रेस नहीं है, ये 2027 वाली कांग्रेस है। 10 साल के अंदर कांग्रेस में बहुत फर्क आ गया।
0: लेकिन अखिलेश और समाजवादी पार्टी के नेता इस बदलाव को चुनाव में जीत लायक असरदार मानने को तैयार नहीं, और इसी अविश्वास में अखिलेश ने रायबरेली में जाकर रथ यात्रा शुरू कर दी।
2: सीटों की संख्या और सीटों का बंटवारे का फॉर्मूला जीत का होना चाहिए। हम जीतेंगे तभी भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की सत्ता से बेदखल करेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है इंडिया गठबंधन जीत के फॉर्मूले पे एक साथ बैठेगा, सीट शेयरिंग करेगा और उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उखाड़ फेंकेगा।
0: फिलहाल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के रुख से 2027 के गठबंधन की तस्वीर पर अनिश्चितता बनी हुई है। हालांकि अखिलेश ने बार बार कांग्रेस को सांत्वना दी है कि यूपी में गठबंधन वही रहेगा जो 2024 में था। आज तक ब्यूरो।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: हरियाणा की सियासत का सबसे बड़ा मंच, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ हर सवाल पर होगी खुलकर बात। देखिए पंचायत आज तक हरियाणा 8 अक्टूबर दिन भर सिर्फ आज तक पर।
1: रियल्टी पार्टनर TDI इंफ्राटेक, नॉर्थ इंडियाज लीडिंग टाउनशिप डेवलपर। हेल्थ पार्टनर वृंदा लाइफ, वी आर नोन फॉर क्वालिटी मेडिसिंस। बैंकिंग पार्टनर पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक। स्पेशल पार्टनर ग्रेट खलीज चॉइस फॉर पावरफुल फिटनेस लिफ्ट्स बाय पोलो एलिवेटर्स। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: दिल्ली पुलिस से कांग्रेस नेताओं की कई बार नोकझोंक हुई। जब पुलिस ने मीडिया को हटाया तो राहुल भी पास आकर खड़े हो गए। राहुल को धरने पर बैठा देख गेट के बाहर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आकाशवाणी कैंपस में खूब हंगामा किया। गेट के पास जाने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने हटा दिया।
3: देश को नरेंद्र मोदी ने वोट चोरी करके हाईजैक किया है, अमित शाह जी ने हाईजैक किया है, मोहन भगवत जी ने हाईजैक किया और ज्ञानेश कुमार ने उनकी मदद की है।
4: ईमानदारी से चुनाव में जनता बार बार उनको परास्त करती है तो रोज नया नया जो बतंगा खड़ा करते हैं।
2: राहुल गांधी से अलग समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को पुलिस ने बस में बिठा लिया। उनके साथ तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन भी थे। इस दौरान अखिलेश चुनाव आयोग पर चुटकी लेना नहीं भूले।
5: अभी पुलिस हमें ज्ञानेश जी से मिलाने ले जा रही है, चीफ इलेक्शन कमीशन। उन्होंने ये कहा है वो व्यक्तिगत इस्तीफा देंगे, ऐसे इस्तीफा नहीं देंगे।
2: अखिलेश ने चुनाव आयोग और बीजेपी में मिली भगत का आरोप लगाया और कहा कि बीजेपी चुनाव हारने के डर से बच रही है। दिल्ली पुलिस ने भले ही विपक्षी सांसदों को हिरासत में लेकर संसद नहीं जाने दिया लेकिन विपक्षी सांसद आर पार के मूड में है।
6: बीजेपी जब से आई है तब से चुनाव आयोग ने बीजेपी के लिए काम करना शुरू कर दिया।
7: वो वोट चोर गणेश को रिजाइन करना चाहिए, उसका पहले जाना चाहिए देश से।
8: जया जी, कहां तक जाएंगे आप लोग? लगातार आप लोग का ये आंदोलन चलेगा?
9: अभी जब तक पैर चलेगा।

0: नहीं पड़े हैं।
1: फ्लाइट में कम से कम सफर करें मेरे हिसाब से भाई। ट्रैवल एजेंट कोई गांजा फूंक के चला रहा है, कोई चाकू लेके घुस रहा है, क्या हो रहा है ये?
2: लेकिन हम तो हर कीमत पर समझौते के आदि हैं।
1: तुम्हारा
2: लेकिन हम तो हर कीमत पर समझौते के आदि हैं, गाल पे चाटा खाते रहने वाले गांधीवादी हैं।
0: यार काट देना ये।
3: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

हाई वोल्टेज सियासी ड्रामे के बीच हिरासत में लेने के बाद छोड़े गए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, आज पूरे देश में प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। ज्ञानेश कुमार पर सियासी घमासान तेज, खड़गे ने कहा तानाशाह मोदी सरकार और चुनाव आयोग के गठबंधन का पर्दाफाश, नितिन नवीन का पलटवार, अराजकता फैला रहे हैं राहुल गांधी। सीएम से पीएम तक जनसेवा में प्रधानमंत्री मोदी के 25 साल का एम्बिशन नहीं मिशन के लिए जीता हूं, कई शहरों में बीजेपी के कार्यक्रम, आडवाणी से मिले प्रधानमंत्री। यूपी में लड़ाई फिर 80-20 पर आई, राज्यसभा चुनाव के नतीजों पर सीएम योगी का एसपी पर तीखा तंज का, 2027 का परिणाम साफ, अखिलेश का पलटवार, घमंड का मिलेगा दंड। और दिल्ली के सीमापुरी इलाके में गिरी 4 मंजिला इमारत, अब तक 3 लोगों की मौत, अस्पताल में घायलों का इलाज जारी।

दिल्ली में हाई वोल्टेज सियासी ड्रामे के बीच हिरासत में लेने के बाद छोड़े गए राहुल गांधी। छत्रसाल स्टेडियम में ले जाए गए प्रियंका गांधी। पुलिस पर लगाया गया आरोप, कहा पुलिस ने सांसदों को पीटा। ज्ञानेश कुमार पर सियासी घमासान तेज हुआ। खड़गे ने कहा तानाशाह मोदी सरकार और चुनाव आयोग के गठबंधन का पर्दाफाश। राहुल गांधी पर बीजेपी का वार। नितिन नवीन ने पलटवार करते हुए कहा अराजकता फैला रहे हैं राहुल गांधी। एसपी को लेकर नितिन नवीन का विपक्ष पर निशाना। बोले घुसपैठियों के नाम हटाने पर लोकतंत्र पर सवाल क्यों। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला। बोले जनता की इच्छा नहीं रोक सकते, पूरी व्यवस्था को न्याय के कटघरे में लाएंगे। दिल्ली में प्रदर्शन के मद्देनजर केंद्रीय बलों की बड़ी तैनाती। 50 और अतिरिक्त सीएपीएफ की कंपनियां दिल्ली में तैनात की गई हैं। पहले से ही 50 करीब 150 सीएपीएफ की कंपनियां तैनात। बीजेपी के राहुल गांधी पर हमला। महिला पुलिस अधिकारी से अनुचित व्यवहार के आरोप लगाए। कहा राहुल की कथनी और करनी का फर्क कैमरे में लाइव। सीएम से पीएम तक जनसेवा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 साल पूरे। एमिशन नहीं मिशन के लिए जीता हूं। बीजेपी ने कई शहरों में कार्यक्रम किए। प्रधानमंत्री मोदी ने आडवाणी से आशीर्वाद लिया। बोले देश के लिए उनका योगदान अहम। यूपी में अगली लड़ाई 80-20 पर आई है। राज्यसभा चुनाव के नतीजों पर सीएम योगी का एसपी पर तीखा तंज। का 2027 का परिणाम साफ। समाजवादी पर योगी के तंज पर अखिलेश यादव का पलटवार। कहा इस घमंड का मिलेगा दंड। बंगाल में शुभेंदु सरकार के सलाहकार बनाए गए मिथुन चक्रवर्ती। सूचना और संस्कृति मंत्रालय में मिलेगा कैबिनेट मंत्री का दर्जा। पहले सीएम के पास था यह विभाग। कुलगांव में बीजेपी की पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 5 आतंकवादी सहयोगी गिरफ्तार किए गए। हथियार और गोला बारूद भी बरामद। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। आतंकवादियों का बड़ा ठिकाना ध्वस्त किया गया। भारी मात्रा में हथियार बरामद। एमपीएससी छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर बॉम्बे हाईकोर्ट में हुई है सुनवाई। कोर्ट ने छात्रों की मांग पर ध्यान देने के लिए आग्रह किया। पुणे में एमपीएससी आंदोलन से ट्रैफिक और जनजीवन प्रभावित होने का दावा है। स्कूल कॉलेजेस एम्बुलेंस सेवाओं में बाधाओं के आरोप। महाराष्ट्र के लातूर में एक और 60 साल के किसान ने अपने ही खेत में खुद को पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या की। बैंक लोन और सूख रही खरीफ की फसलों के चलते उठाया था कदम। पिछले 15 दिनों में ये चौथे किसान की आत्महत्या। अकोला में सूखे का संकट। 10 दिन में एक बार मिलेगा पानी, फिर भी निर्माण कार्य में टूटी पाइपलाइन। सूखे के बीच हजारों लीटर पानी बर्बाद। मराठवाड़ा में सूखे से हाहाकार। संभाजीनगर में फसल बर्बाद होने से मवेशी बेचने के लिए मजबूर हैं किसान। लुधियाना में तेज रफ्तार स्कूल बस ने साइकिल सवार छात्रों को कुचल डाला। छात्रा की हालत नाजुक है, सीसीटीवी फुटेज सामने आया। बेगूसराय में बाइक सवार बदमाशों ने बस स्टैंड गेट पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर डाली। 2 लोगों की गोली लगने से घायल हुए। हैदराबाद में सिरपुर कागजनगर एक्सप्रेस में भीषण आग लगी। यात्रियों में अफरा तफरी मची। इंदौर में सवारी का बैग लेकर फरार हुआ ऑटो चालक, पुलिस ने गिरफ्तार किया। दिल्ली में सीमापुर में 4 मंजिला इमारत गिर गई थी। हादसे के बाद 3 लोगों की मौत की खबर। इंदौर में फिर से धसी सड़क। नर्मदा पाइपलाइन में लीकेज से बन गया था बड़ा गड्ढा। जांच में जुटी हुई है पुलिस। आगरा में 2 बाइकों की जोरदार टक्कर हुई। सीसीटीवी फुटेज में हवा में उछलते हुए नजर आए दोनों ही सवार। देहरादून के कॉलेज में बड़ा बवाल। कॉलेज के बाहर तलवार ईंट और पत्थर लेकर खड़े हुए छात्र। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। सतना में रेत पर कारोबारी पर फायरिंग। 2 सगे भाई गिरफ्तार, पुलिस ने निकाला पैदल जुलूस। नागपुर में छोटी बच्ची से अश्लील कृत्य देकर भड़के लोग। आरोपी को पीट पीट कर मार डाला। उदयपुर में स्कूल की जर्जर छत का प्लास्टर गिरा। 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए। मुजफ्फरपुर में मंदिर के महंत की संदिग्ध मौत हुई। अंदर से गेट बंद था, फर्श पर मिली 80 साल के बुजुर्ग की लाश। झांसी की सब्जी मंडी में भीषण आग लगी। 30 से ज्यादा दुकानें जलकर खाक हुई। सीसीटीवी फुटेज में एक संदिग्ध व्यक्ति पेट्रोल डालकर आग लगाता हुआ नजर आया। लुधियाना में स्कूल बस खंभे से टकराई। 20 बच्चे सवार थे। तेज रफ्तार रेत के ढेर पर बेकाबू हुई। हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। टोंक में गिफ्ट सेंटर से बच्चों की साइकिल चोरी हुई। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ महिला पुरुष गिरोह का कारनामा। सूरत में वाटरवर्क्स पर क्लोरीन गैस के सिलेंडर में लीकेज। फायर टीम ने पीपी और क्लोरीन अरेस्ट किट की मदद से किया था रिसाव बंद। मेरठ में रिटायर्ड सूबेदार के घर पर आग लगाने की साजिश में कई झुलस गए। सीसीटीवी में बाइक सवार 2 संदिग्ध कैद हुए। बिजनौर में चलती स्कॉर्पियो बनी आग का गोला। 7 लोगों ने कूद कर जान बचाई। झांसी में रिश्तों को शर्मसार करने वाली छेड़खानी के आरोप से मचा बवाल। महिलाओं ने आरोपी के पिता को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पुलिस के सामने चप्पलें भी बरसाई।
बागेश्वर में बढ़ा तेंदुए का आतंक, खेतों और आबादी वाले क्षेत्रों में दहशत, वन विभाग ने बढ़ाई है गश्त और लगाए पिंजरे। बागपत में जिम में वर्कआउट के बीच छिड़ा दंगल, पहले अंदर चले लात घूंसे फिर बाहर हुई जमकर मारपीट। फरीदाबाद में सिरोही पहाड़ पर मिला था 19 साल के युवक का शव, आरोपी दोस्त को गिरफ्तार किया गया। भोपाल में पीजी डॉक्टर ने एक्स गर्लफ्रेंड डॉक्टर पर चलाई थी 3 गोलियां, एक कनपट्टी पर लगी थी, भाई भी घायल हुआ, फायरिंग के बाद खुदकुशी की भी कोशिश। झांसी में दिनदहाड़े घर में घुसकर प्रेमी ने प्रेमिका की गोली मारकर हत्या कर डाली, गोली मारने से पहले आरोपी ने सोशल मीडिया पर किया था एक वीडियो वायरल। गाजियाबाद के संजय नगर में वर्चस्व की रंजिश में दो पक्षों में मारपीट हुई, जूस कॉर्नर से घर तक पहुंचा विवाद, पथराव से दहशत। लखनऊ में बाढ़ का पानी अब लोगों के घरों के अंदर तक पहुंच चुका है, लोग छतों पर बैठकर मदद का कर रहे हैं इंतजार। सुबह से हाथ में ब्रेड और नाश्ते का सामान लिए लोग वोट का इंतजार करते हुए नजर आए। सकरी गलियों जलभराव के बीच वोट के लिए लोगों के लिए खाने का और पीने का सामान भी पहुंचाया जा रहा है, परेशान नजर आए लोग। राहत के लिए करीब 100 बोट लगा दी गई है, करीब 1000 परिवारों तक मदद पहुंचाई जा रही है। चमोली में बद्रीनाथ संतोपत में भारी बर्फबारी, रास्ते में 2 फीट से ज्यादा बर्फ, हर तरफ बर्फ ही बर्फ। हिमाचल में मौसम ने अचानक से करवट लिए, धर्मशाला समेत तमाम ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और बारिश। शिमला में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया, 9 अक्टूबर तक बारिश की संभावना। हिमाचल के किन्नौर में बारिश के साथ ओले गिरे, तापमान में गिरावट। ओलावृष्टि से फसलों और सब्जियों को पहुंचाया भारी नुकसान, किसान परेशान हो गए। कांगड़ा, कुल्लू और लाहौल स्पीति से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी की संभावना, ऊंचाई वाले इलाकों में बढ़ सकती है ठंड। चंबा के साथ पास के पास ताजा बर्फबारी से पहाड़ सफेद चादर में ढक गए हैं, करीब 5 से 6 इंच बर्फ गिरने से ठंड भी बढ़ गई है। बर्फ जमने से बैरागढ़ साचपाट किलाड़ मार्ग पर यातायात प्रभावित हुआ है, सड़क पर फिसलन बढ़ने से सफर करना मुश्किल हो गया है। देहरादून में मूसलाधार बारिश और आंधी और तेज हवाओं से कई इलाकों में गिर गए पेड़, यातायात भी प्रभावित हुआ। देहरादून में भारी बारिश के बाद सड़कों पर मलबा, प्रशासन ने संभाला मोर्चा, लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई। रांची पहुंची भारत की वेस्टइंडीज की टीमें, 9 अक्टूबर को जेएससीए में होगा दूसरी टी20 का मुकाबला। नवी मुंबई में नेक्सस 26 के तहत खाद्य और फार्मा विशेषज्ञों की बड़ी बैठक हुई है, मीटिंग में खाद्य सुरक्षा मानकों के नए मानदंड पर चर्चा, विशेषज्ञों के विचार साझा किए गए। जोधपुर में तरंग शक्ति युद्धाभ्यास 2026 की गर्जना जारी, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी समेत कई देश इसमें शामिल हुए, आसमान में दिखाई दिया साझेदारी का दम। भारतीय वायुसेना की तरफ से राफेल, सुखोई, मिराज 2000, तेजस और जगुआर और मिग-29 जैसे लड़ाकू विमान आसमान में दिखाई अपनी ताकत, 12 अक्टूबर तक चलेगी एक्सरसाइज। एलजीबी के सक्सेना ने लद्दाख पुलिस कर्मियों की विदाई और पासिंग आउट परेड में शामिल हुए हैं, लद्दाख को मिले 114 नए एसपीओ। विजयदशमी से पहले प्रयागराज की सड़कों पर निकली रावण की भव्य शोभा यात्रा, निराले अंदाज में रावण की पूजा अर्चना के साथ उत्सव का आगाज। ग्रेटर नोएडा में आज से शुरू हुआ कपिल देव इन्विटेशनल टूर चैंपियनशिप, 2 करोड़ रुपए की प्राइज मनी। आज से 10 अक्टूबर तक किया जाएगा प्रतियोगिता का आयोजन, जेपी ग्रीन्स में जुटे देश विदेश के 64 गोल्फर, खिताब के लिए मुकाबला। कपिल देव बोले बच्चों को दें ज्यादा मौके, आज का गोल्फर कल बन सकता है वर्ल्ड चैंपियन, बोले बेहतर इंफ्रा से बढ़ेंगे मेडल। भारतीय वायुसेना 8 अक्टूबर को अपना 94वां स्थापना दिवस मनाएगी, हिंडन एयरबेस पर भव्य परेड और फ्लाईपास्ट होगा। राफेल, सुखोई 30 और तेजस जैसे लड़ाकू विमान अपनी ताकत और उड़ान कौशल दिखाएंगे, हेलीकॉप्टर भी फ्लाईपास्ट में शामिल होंगे। फिल्म रामायण से राजा दशरथ का नया पोस्टर जारी किया गया, दशरथ के किरदार में नजर आएंगे अरुण गोविल। जैकी श्रॉफ और शरद केलकर की फिल्म काली खेती की बदली रिलीज डेट, अब 20 नवंबर को रिलीज होगी। फिल्म धूल का ट्रेलर रिलीज हुआ है, साइकोलॉजिकल थ्रिलर कहानी लेकर आए हैं यशपाल शर्मा, 23 अक्टूबर को फिल्म रिलीज होगी। दूसरी बार पेरेंट्स बनेंगे कियारा और सिद्धार्थ, सोशल मीडिया पर दी जानकारी, लिखा हम एक बार फिर से जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा हमें मिलने वाला है। राजपाल यादव को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, तत्काल 125 करोड़ रुपए का ड्राफ्ट जमा कराया, 7 चेक बाउंस मामले में पेश हुए एक्टर। दृश्यम 3 ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाई, 300 करोड़ के पार मोहनलाल को ओरिजिनल फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ डाला। रजनीकांत की जेलर 2 का प्रमोशन होगा, जरा हटके 3 घंटे दर्शकों से रूबरू होंगे थलाइवा। जल्द शुरू होगा करीना कपूर के टॉक शो व्हाट वुमेन वांट का सीजन 6, कृति सेनन समेत कई बड़ी हस्तियां नजर आएंगी। 15 साल के बाद फिर साथ देखेंगे शाहरुख खान और करीना कपूर, किंग में हुई है करीना की एंट्री।
करण जौहर और अभिषेक वर्मा ने अपनी नई फिल्म गदादारी भीम का ऐलान कर दिया, जल्दी शुरू होगी फिल्म की शूटिंग। आरबीआई ने करीब 3.5 साल के बाद रेपो रेट को 4.5% बढ़ाकर 5.5% कर दिया। आने वाले दिनों में होम लोन और कार लोन की ईएमआई महंगी होने की आशंका बढ़ी। सेंट्रम इंडस्ट्रियल रिसर्च के मुताबिक अगले कुछ महीनों में मोबाइल रिचार्ज प्लान 12-15% तक महंगे हो सकते हैं। टेलीकॉम सेक्टर में कंपनियों की घटती हुई संख्या से ग्राहकों को नुकसान। एस फॉरेस्ट के मुताबिक बड़े शहरों में घरों की बिक्री की रफ्तार धीमी पड़ गई है, लॉन्च में तेजी आई है, इससे बिना बिके घरों का स्टॉक बढ़कर करीब 8.5 लाख यूनिट्स तक पहुंचने का दावा। महंगे एविएशन टर्बाइन फ्यूल और लंबे होते फ्लाइट रूट से आगे चलकर हवाई किराए पर दबाव बढ़ने की आशंका, एयरलाइंस ने कुछ रूट्स पर इसका सीधा असर होने की आशंका जताई। गोल्ड लोन के जबरदस्त ग्रोथ से एनबीएफसी सेक्टर में कुल कर्ज तेजी से बढ़ गया है, कर्ज लेने वाले व्यवहार में बदलाव से गोल्ड और दूसरे सिक्योर्ड लोन्स की डिमांड में इजाफा। जीएसटी काउंसिल की बैठक में ऑटो रिफंड और तेज इनपुट टैक्स क्रेडिट जैसे प्रस्तावों पर चर्चा होगी। कारोबारियों की कंप्लायंस लागत घटने का सीधा फायदा लंबे समय में कीमतों पर भी नजर आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी प्रोडक्ट पर लगने वाला टैक्स उसकी बिक्री के वक्त की फिजिकल फॉर्म के आधार पर तय होगा, इससे कुछ पैकेज्ड प्रोडक्ट्स की कीमतों पर असर पड़ने का अनुमान है। फेस्टिव सीजन में क्विक कॉमर्स, ई कॉमर्स, लॉजिस्टिक्स और ट्रैवल सेक्टर में नौकरियों की मांग बढ़ गई है, व्हाइट कॉलर नौकरियों का मार्केट अभी भी सुस्ती वाला बना हुआ है। चीन में बढ़ते हुए कारोबारी और जियोपॉलिटिकल जोखिम के बीच बड़ी संख्या में जापानीज कंपनियों ने समेट लिया अपना कारोबार, अपने बड़े बाजार और मैन्युफैक्चरिंग क्षमता की वजह से भारत बन गया है मजबूत विकल्प। सरकार ने मुंबई एयरपोर्ट से इंटरनेशनल फ्लाइट्स को नवी मुंबई शिफ्ट करने की योजना फिलहाल टालने का कहा है। अडानी एयरपोर्ट को सभी पक्षों से बातचीत के बाद ही आगे का फैसला लेने का निर्देश। यमन में हूती विद्रोहियों के द्वारा अदन इंटरनेशनल एयरपोर्ट और सऊदी अरब पर मिसाइल हमले से बढ़ गया तनाव। हूती लड़ाकों की चेतावनी, संघर्ष में शामिल होने वाले किसी भी विदेशी देश के खिलाफ ली जाएगी जवाबी कार्रवाई। ईरानी अधिकारी के हवाले से बड़ी खबर, ईरान कभी नहीं छोड़ेगा अपना यूरेनियम संवर्धन का अधिकार, लेकिन संवर्धन की शर्तों पर बाद में हो सकती है चर्चा। ग्रीस पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का ईरान को लेकर बड़ा बयान का। ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका के साथ समझौते के लिए मिले कई मौकों को गवाया। हमास के इसराइल पर हमले में तीसरी बरसी के मौके पर वेस्ट बैंक में दिखाई दिया जबरदस्त तनाव, इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक में अलग अलग इलाकों में सैन्य कार्रवाई को दिया अंजाम। रूसी सेना का यूक्रेन के कई इलाकों पर भीषण हमला, यूक्रेन के उत्तरी शहर प्रुलुकी में हुए हमले में 16 लोगों की मौत हुई, 50 लोग घायल हुए। शहर के गवर्नर का दावा, रूस ने रिहायशी इमारतों पर किया हमला। फ्रांस के द्वारा परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइलों से परीक्षण से भड़काया रूस, कहा फ्रांस के मिसाइल परीक्षण से साफ है कि यूरोप रूस के साथ टकराव को देखते हुए अपनी तैयारियां कर रहे हैं तेज। फ्रांस में नहीं थम रहे छात्रों का प्रदर्शन, राजधानी पेरिस समेत कई शहरों में अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी, काबू में करने के लिए पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। फ्रांस की तरह बेल्जियम में भी छात्रों का हिंसक प्रदर्शन, लीज शहर में छात्र प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के बीच झड़प की भी खबरें, 50 से ज्यादा लोगों को किया गया गिरफ्तार। जॉर्जिया में यूरेनियम 238 को सरेआम बेचने का ऐलान करने वाला मामला सामने आया, $7 लाख में विदेशी नागरिकों को बेचने की कोशिश कर रहा था एक शख्स। केमिस्ट्री के नोबेल पुरस्कार का ऐलान, हेनरी बी कागन और कैंसो सोई को मिला है यह सम्मान।

एंड राइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली की सड़कों पर आजकल सियासी हलचल जोरों पर है और इसकी सबसे बड़ी वजह है SIR विवाद। मंगलवार को जब राहुल गांधी समेत विपक्ष का मार्च आकाशवाणी भवन के पास रोका गया तो लड़ाई आर पार की हो गई। अब बिना अनुमति परिसर के भीतर दाखिल होकर धरने पर बैठने के आरोप में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कांग्रेस के कई बड़े नेताओं पर FIR दर्ज हो चुकी है। इस बीच राहुल गांधी ने कहा कि वो FIR से नहीं डरते। FIR की इस गर्माहट के बीच आज जनपद के सागर रत्ना रेस्टोरेंट में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से आयोजित लंच ने सियासी गोलबंदी को और तेज कर दिया। ये सब तब हो रहा है जब प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक सरकार के मुखिया के रूप में 25 साल पूरे कर रहे हैं। जिस वक्त विपक्ष सरकार को उखाड़ फेंकने के सपने देख रहा है तब प्रधानमंत्री मोदी ने संकेत दिए कि उनकी सरकार मजबूती से काम कर रही है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के श्री विनायक मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के सामने 5 बड़े टारगेट रखे, आज इसके बारे में भी आपको बताएंगे।

अगली खबर, दुनिया में आर्थिक अनिश्चितता और सुस्ती के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत ही शानदार और बड़ी खबर आई है। वर्ल्ड बैंक ने भारत की आर्थिक मजबूती पर मुहर लगाते हुए वित्त वर्ष 2026-27 के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर 7.1 कर दिया है। पहले यह अनुमान 6.6% था। अमेरिकी संसद यानी कैपिटल हिल में भारत के जाबाज कैप्टन स्मिथ का नाम गूंजा। ये कोई आम बात नहीं है। फ्लाई दुबई फ्लाइट में आतंकी हमले को नाकाम करने वाले कैप्टन स्मिथ के अदम्य साहस को अमेरिकी सांसदों ने न सिर्फ आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज किया बल्कि उन्हें संसद में विशेष सम्मान दिया गया। और अगली खबर फ्रांस से, जहां पर फ्रांस में भड़की हिंसा के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने

0: सिर्फ कुछ सेकंड के ऑडियो से एआई किसी भी फर्जी आवाज को बना सकता है और इसी खतरे से निपटने के लिए जॉर्जिया मेलोनी ने ये अनोखा एक तरह से कानूनी रास्ता चुना है। अगली खबर, पति की डांट से लेकर प्रियंका चोपड़ा की तारीफ तक। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से बड़ी ही दिलचस्प और प्रेरणादायक खबर सामने आई है। यशोदा लोधी, जिन्हें सोशल मीडिया पर लोग देहाती मैडम के नाम से जानते हैं, वो अंग्रेजी सिखाने के वीडियो बनाती है। एक दिन जब वो अपने खेत में काम करते करते वीडियो बना रही थी तो उनके पति ने उन्हें डांट दिया, लेकिन यशोदा रुकी नहीं, उन्होंने वीडियो इंटरनेट पर डाल दिया और फिर क्या, वो देहाती शब्द के मिथक को तोड़ते हुए सोशल मीडिया पर छा गई और अब लोग उनकी अंग्रेजी भाषा की बड़ी तारीफ कर रहे हैं।
1: फ्रेंड्स, लिटिल डिड आई नो दैट प्रियंका चोपड़ा जोनस मैम वुड शेयर माय वीडियो ऑन हर स्टोरी। यू नो, यस्टरडे व्हेन आई वेंट टू फार्म, आई वर्क देयर एंड आई वाज अबाउट टू मेक अ वीडियो, देन आई वाज कॉल्ड बाय माय हस्बैंड फॉर मेकिंग अ वीडियो। समहाउ आई कुड मैनेज एंड आई मेड अ वीडियो एंड आई पोस्टेड इट ऑन इंस्टाग्राम एंड then something truly unexpected happened and today itself I have completed 4 lakh followers on Instagram. Yes friends, so for many people it might just be a story, but for me it really means a lot. It reminded me that you never know where your small efforts can take you.
0: Lekin aaj lagatar dusre din मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और गिरफ्तारी की मांग को लेकर काफी हंगामा और विपक्ष का गतिरोध दिखा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली के जनपद स्थित सागर रत्न रेस्टोरेंट में इंडिया ब्लॉक के सांसदों को लंच पर आमंत्रित किया था और इस लंच मीटिंग में विपक्ष ने चुनाव आयोग के खिलाफ अपने मोर्चे को लेकर आगे की रणनीति पर मंथन किया। यहीं पर तय हुआ कि सभी सांसद जंतर मंतर जाकर मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ धरना देंगे। लंच खत्म होने के बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, डेरेक ओब्रायन और केसी वेणुगोपाल समेत इंडिया ब्लॉक के तमाम सांसद 3 अलग अलग बसों में सवार होकर जंतर मंतर विरोध प्रदर्शन के लिए रवाना हुए। यहां इन विपक्षी सांसदों का तर्क यह था कि जब जंतर मंतर विरोध प्रदर्शन के लिए एक तय जगह है तो पुलिस उन्हें वहां भी जाने से क्यों रोक रही है। जैसे ही सांसदों का काफिला आगे बढ़ा, दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के भारी बल ने पहले ही सागर रत्ना के पास फुटपाथ और रास्तों की घेराबंदी कर दी। इस दौरान पुलिस ने विपक्षी सांसदों की बसों को पहली रेड लाइट को तो पार करने दिया, लेकिन अशोक रोड के पास भारी बैरिकेडिंग लगा दी गई, बसों और सांसदों को रोक दिया गया। पुलिस का कहना था कि इस क्षेत्र में धारा 163 लागू है और विपक्ष को बिना अनुमति के मार्च करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। जब पुलिस ने आगे बढ़ने से रोका और पूरी तरह मना कर दिया तो माहौल तनावपूर्ण हो गया। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने वहीं रुकने का फैसला किया। विरोध दर्ज कराने के लिए वो सड़क पर लेट गई, जबकि उनके ठीक पास में राहुल गांधी और दूसरे नेता भी खड़े थे। इस दौरान प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि जो सांसद केवल चुनाव आयुक्त से मिलने की मांग कर रहे हैं, उनके साथ सरकार ऐसा व्यवहार कर रही है, सांसदों को पीटा जा रहा है। सड़क पर चल रहे इस हाई वोल्टेज हंगामे के बाद दिल्ली पुलिस ने भी सख्त रुख अपनाया। पुलिस बल ने घेरा बनाकर सभी प्रदर्शनकारियों को जबरन उठाना शुरू किया। इनमें भी लगातार दूसरे दिन ऐसा हुआ जब पुलिसकर्मियों को राहुल गांधी को जबरन उठाकर बस में बैठाना पड़ा, जिससे कांग्रेस कार्यकर्ता नाराज हुए और ये पूरा राजनीतिक घटनाक्रम एक बड़े विवाद में तब्दील हो गया। हाई वोल्टेज एक्शन का ये पूरा टाइमलाइन देखिए।
2: हम आपके साथ ऐसे नहीं होगा सर, आप प्लीज को
3: ऐसे नहीं होगा। आप बताइए कैसे होगा,
2: आपने इसको धकेला नीचे।
3: नहीं सर, आप बताइए कैसे होगा, आप बताइए कैसे होगा।
2: हम यहाँ हैं, हटाओ हमें यहाँ सर। मैं एक हमें तो हटा दे सर, मैं कल भी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था, रिक्वेस्ट कर रही थी
3: सर। ये हजारों की भीड़ है सर, ये हजारों की भीड़ है, किसी को चोट लग जाए।
4: जिस प्रकार से आज असामाजिक तत्वों के साथ अराजकता के वातावरण में

0: इस देश के विपक्ष के नेता काम कर रहे हैं, मैं स्पष्ट रूप से उनके कहता हूं, जो उनका मकसद है, जो उनकी नियत है, मैं उनके मकसद और नियत को कभी भी भारत की जनता पूरी नहीं होने देगी, क्योंकि आपने केवल उन लोगों की चिंता की है जो यहां के लोगों का हक छीनते रहे। आज जिस प्रकार की चर्चा और जिस प्रकार के असामाजिक तत्वों को लेकर अराजकता को फैलाने का काम कर रहे हैं दिल्ली के अंदर, मैं आज कहना चाहता हूं नेता प्रतिपक्ष को कि आप जिन लोगों को हक दिलाने की बात करते हैं, उन घुसपैठियों को भारत की जनता कभी हक नहीं देने देगी।
1: उनकी सोच और विचारधारा राष्ट्र के प्रति नहीं है, उनकी सोच और विचारधारा कुर्सी के प्रति है। प्रधानमंत्री जी, एनडीए की सरकार और देश की जनता राष्ट्र प्रथम की सोच और विचारधारा के साथ कार्य कर रही है, और जो नकारात्मक शक्तियां हैं उनको 3 बार देश की जनता ने जवाब दे दिया है, और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में 4थी बार भी देश की जनता उन्हें जवाब देगी।
2: FIR का मतलब है राहुल जी के लिए फेलवर इन रिजल्ट, FIR। अब 99 बाहर तो उनके नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव हार चुकी है, अब वो शतक लगाना चाहते हैं।
3: मुंबई में धरना हुआ विरोधी दलों के द्वारा, 2 घंटे मीटिंग करी, अपना जुलूस निकाला, जो कहना था कहा, चले गए। एक तो ये भी विपक्ष का आचरण है मुंबई में, और यहां पर आपने कैओस करा कर रखा है, पूरी दिल्ली को एक प्रकार से जाम कर रखा है। ये राहुल गांधी कौन सा आचरण दिखाना चाहते हैं?
4: अब ये समझिए कि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष और खासकर राहुल गांधी इट्स डन ब्रो का नारा क्यों लगा रहे हैं। बतौर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का कार्यकाल जनवरी 2029 तक है, और यहां बात सिर्फ इतनी नहीं है कि ज्ञानेश कुमार अगले 2 साल से ज्यादा वक्त तक इस देश के चुनाव आयोग की जिम्मेदारी संभालेंगे। विपक्ष के लिए इससे बड़ा मुद्दा यह है कि अगर वो अपना कार्यकाल पूरा करते हैं तो उनके नेतृत्व में कुल 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभा चुनाव होंगे, और इनमें ज्यादातर राज्य ऐसे हैं जहां पर सालों से विपक्षी दल जो है वो सत्ता से दूर है। जैसे साल 2027 में 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे, जिनमें गोवा में साल 2012 से कांग्रेस सत्ता में नहीं आई है, गुजरात में 1995 से यानी पिछले 32 सालों से सत्ता में नहीं आई है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर पिछले 10 सालों से सत्ता में नहीं आई है, पंजाब में भी आम आदमी पार्टी सत्ता में है जिसने इंडिया गठबंधन और कांग्रेस से दूरी बनाकर रखी, जबकि ज्ञानेश कुमार के ही नेतृत्व में 2027 में हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं जहां कांग्रेस अपने दम कर सरकार में है। अगर 2028 से जनवरी 2029 तक की बात करें तो ज्ञानेश कुमार छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में भी चुनाव कराएंगे जहां बीजेपी और एनडीए की सरकार है, जबकि इसी दौरान तेलंगाना, कर्नाटक यहां भी चुनाव होंगे जहां कांग्रेस की सरकारें हैं। मुख्य रूप से देखें तो 2029 तक ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में जितने भी राज्यों में चुनाव होने हैं वहां बीजेपी की सीधी लड़ाई कांग्रेस से है, और सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश जहां समाजवादी पार्टी को छोड़कर इंडिया गठबंधन के बाकी दलों का ज्यादा कुछ दांव पर नहीं है, और यही कारण है कि कांग्रेस ज्ञानेश कुमार से कह रही है कि अब वो इस्तीफा दें, मुख्य चुनाव आयुक्त का पद किसी और के लिए खाली कर दें। यानी कांग्रेस नहीं चाहती कि ज्ञानेश कुमार अपना कार्यकाल पूरा करें और इन राज्यों में विधानसभा चुनाव की कमान वो संभालें। अगली खबर, अक्टूबर 2001 से 7 अक्टूबर 2026 ये वक्त है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस यात्रा का जो 25 साल बाद भी लगातार जारी है, जिसे बीजेपी राजनीति नहीं बल्कि राष्ट्रनीति की नई परिभाषा बता रही है। गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक सरकार के प्रमुख के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को 25 साल हो चुके हैं। इस मौके पर एक तरफ दिल्ली के श्री विनायक मंदिर में आस्था की तस्वीर दिखी तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित भारत का एक नया मंत्र दिया है, और 2047 का नया मंत्र है वी विल डू इट।

0: दामोदर दास मोदी,
1: नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूँ।
2: 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण से लेकर देश के प्रधानमंत्री के रूप में तीसरे कार्यकाल तक 25 वर्षों में वक्त का पहिया घूमा और इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई है एक अभूतपूर्व यात्रा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के रूप में यानी लोकतंत्र के शीर्ष पद पर देश और प्रदेश की सरकार चलाते हुए 25 साल हो चुके हैं। बीजेपी दावा करती है कि ये वो यात्रा है जिसने भारत की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल दी। इस ऐतिहासिक पड़ाव पर पीएम मोदी ने भगवान श्री गणेश के चरणों में शीश नवाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब विनायक जी के दरबार में पहुंचे तो माहौल भक्ति और आस्था से सराबोर हो उठा। सात अक्टूबर 2001 जब गुजरात भूकंप की विभीषिका से जूझ रहा था तब नरेंद्र मोदी ने पहली बार मुख्यमंत्री के रूप में कमान संभाली थी और तब से अब तक अलग अलग पड़ाव से गुजरते हुए उनकी ये यात्रा निरंतर जारी है। साल गुजरात का नेतृत्व और 2014 से लगातार भारत के प्रधान सेवक के रूप में देश का मार्गदर्शन। 25 सालों के इस सफर में पीएम मोदी ने कई उतार चढ़ाव देखे। इस यात्रा के 25 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने रुकने या सुस्ताने की जगह देश के सामने एक नया नारा बुलंद किया।
3: स्वागत है भाई, स्वागत है।
2: नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 2047 तक भारत को विकसित और आत्मनिर्भर बनाना ही हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है और जब पूरा देश एक साथ बोलेगा तब हर असंभव लक्ष्य आसान हो जाएगा। पीएम के साथ लोगों ने भी इन नारों को दोहराया।
3: विकसित भारत बाय 2047, विकसित भारत बाय 2047, वी विल डू इट। विकसित भारत बाय 2047, मेरे साथ बोलिए, मेरे साथ बोलिए। ये ऊर्जा, ये उत्साह, ये आत्मविश्वास ये अद्भुत है।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, भारत को दुनिया का एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने, अंतरिक्ष की खोज का विस्तार करने और यहां तक कि ओलंपिक की मेजबानी करने समेत जिन भी लक्ष्यों का जिक्र किया, भीड़ ने हर लक्ष्य के लिए हम इसे करके दिखाएंगे का नारा लगाया।
3: टॉप थ्री इकोनॉमी, टॉप थ्री इकोनॉमी, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, ओलंपिक्स का आयोजन, ओलंपिक्स का आयोजन, अंतरिक्ष में कदम, अंतरिक्ष में कदम।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मेरे जीवन का कण कण क्षण क्षण भारत भूमि को समर्पित रहेगा।
3: स्वयं से समष्टि तक, स्वयं से व्यय तक, मेरे जीवन का कण कण क्षण क्षण भारत भूमि को समर्पित रहेगा।
2: अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री ने भगवद गीता का कई बार जिक्र किया। उन्होंने संकल्प, साधना और कर्म जैसे शब्दों का भी बार बार इस्तेमाल किया और इन्हें देश के प्रति कर्तव्य और गर्व से जोड़ा। आज तक ब्यूरो।
4: लेकिन आज सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि जब देश के लिए जीते गए मेडल्स का रंग एक है तो राज्यों में इन्हीं मेडल्स की इनाम की राशि अलग अलग क्यों है। हमारे देश में आज एक देश एक कानून, एक देश एक चुनाव, एक देश एक टैक्स, एक देश एक पेंशन जैसे बड़े बड़े मुद्दों पर बहस हो रही है। सरकारों का पूरा जोर इस बात पर रहता है कि पूरे देश में हर व्यवस्था एक जैसी। भारत में उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, नियम एक हो। लेकिन आज हम एक ऐसा बुनियादी मुद्दा उठाना चाहते हैं जिस पर अमूमन चुप्पी साध ली जाती है, और वो मुद्दा है एक मेडल एक इनाम राशि का मुद्दा, वन मेडल वन प्राइज मनी। जापान के नागोया में हुए एशियाई खेलों में जब हमारे खिलाड़ी तिरंगा लहराकर लौटे तो उनके चेहरों पर देश का नाम रोशन करने की एक अजीब सी अनूठी सी तिरंगे के रंग में रंगी चमक थी। नागोया के स्टेडियम में जब भारत का राष्ट्रगान गूंजा तो वहां मौजूद हर भारतीय खिलाड़ी की आंखों में गर्व के आंसू एक जैसे थे। तिरंगा सबके लिए एक ही ऊंचाई पर लहराया गया और मेडल की चमक भी सबके लिए बराबर थी। वहां कोई भी खिलाड़ी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड का नहीं था, सभी खिलाड़ी सिर्फ और सिर्फ भारत के थे। लेकिन जैसे ही ये खिलाड़ी अपने वतन वापस लौटे वैसे ही पोडियम का वो एक भारत अचानक कई राज्यों की सीमाओं में बट गया। न सिर्फ बट गया बल्कि देश के लिए जीता गया वही मेडल किसी राज्य में पहुंचते ही करोड़ों का हो गया, किसी राज्य में उसकी कीमत महज चंद लाख रुपए रह गई। और हमें लगता है कि ये फर्क देश के लिए जान लगाने वाले खिलाड़ियों के दिल पर लगी गहरी चोट जैसा है। तो हमने सोचा आज ब्लैक एंड व्हाइट में सबसे पहले हम उन देशवासियों के लिए, उन खिलाड़ियों की चर्चा करेंगे। इस दर्द की गूंज आज कई राज्यों से आ रही है और आज देश के सामने सबसे बड़ा और चुभता हुआ सवाल यही है कि जो मेडल उत्तर प्रदेश के किसी खिलाड़ी के गले में सजने पर 75 लाख रुपए का सम्मान पाता है, वही उत्तराखंड के खिलाड़ी के गले में सिर्फ 15 लाख रुपए का कैसे रह जाता है। और सोचिए क्या उत्तराखंड के खिलाड़ी की मेहनत कम थी, क्या उसके पसीने की बूंदों का रंग अलग था, या फिर देश के लिए जीते गए मेडल की कीमत अब इस बात से तय होगी कि खिलाड़ी का आधार कार्ड किस राज्य का है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि जब देश का नाम पूरी दुनिया में ऊंचा होता है तो पूरा देश एक साथ जश्न मनाता है, लेकिन इसके बावजूद जब उन्हीं नायकों को सम्मानित करने की बारी आती है तो सरकारों की नीतियां इतनी अलग और असंवेदनशील क्यों हो जाती है। उदाहरण के लिए उत्तराखंड से इस बार सिर्फ एक ही खिलाड़ी ने एशियन गेम्स में मेडल जीता है, नाम है कपिल पोखरिया। उन्होंने बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल मिला, लेकिन उत्तराखंड की खेल नीति के कारण उन्हें इस मेडल के लिए सिर्फ 15 लाख रुपए का ही इनाम राशि मिलेगी, जबकि उत्तराखंड के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में यही ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को मिलेगा 75 लाख रुपए। इस पर रमेश पोखरिया खुद रूंधे गले से ये पूछते हैं कि जो मेडल यूपी के खिलाड़ी के गले में 75 लाख रुपए का है वही उत्तराखंड के खिलाड़ी के गले में 15 लाख का क्यों है, और ये भेदभाव या ये अंतर यही खत्म नहीं होता है। महिला हॉकी टीम ने 44 सालों के बाद देश की झोली में गोल्ड मेडल डाला और इस जीत की नायिकाओं में मिजोरम की लालरेम स्यामी को राज्य सरकार ने 40 लाख रुपए देने का ऐलान किया, जबकि उत्तर भारत में यही गोल्ड जो है वो जीतने वाले खिलाड़ियों को 75 लाख से 4 करोड़ रुपए के बीच इनाम राशि मिलती है। इस अंतर पर लालरेम सियासी माफ कीजिएगा लालरेम जो है वो खुद ये सवाल पूछती है कि जब मेडल का रंग एक है तो राज्यों की इनाम राशि में इतना बड़ा फासला है। अगर आप इस ग्राफिक्स को देखेंगे तो ये फर्क आपको खिलाड़ियों का असली दर्द साफ साफ दिखाएगा बताएगा। एशियाई खेलों में जिस गोल्ड मेडल के जीतने पर पश्चिम बंगाल की सरकार 5 करोड़ रुपए देती है, उसी गोल्ड मेडल के लिए हिमाचल प्रदेश में खिलाड़ियों को 4 करोड़, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में 3-3 करोड़, पंजाब और कर्नाटक में 1-1 करोड़, तमिलनाडु में 75 लाख, उत्तराखंड में सिर्फ 30 लाख रुपए मिलते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जब कोई खिलाड़ी देश के लिए मेडल जीतता है तो उस मेडल में तो कोई फर्क नहीं होता, जब वहां पर राष्ट्रगान गाया जाता है और जब तिरंगा लहराता है, लेकिन जब यही खिलाड़ी अपने देश वापस लौटते हैं तो किसी राज्य में इसी गोल्ड मेडल पर 5 करोड़ रुपए की इनाम राशि मिलती है और किसी राज्य में सिर्फ 30 लाख रुपए। सोचिए उस वक्त इन खिलाड़ियों पर क्या बीतती होगी। और हम तो चाहते हैं कि ये मुद्दा सबकी नजरों में आए, राज्यों से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजरों में आए, ताकि एक व्यवस्था इसके लिए बनाई जाए। उदाहरण के लिए रिले रेस में इस बार हरियाणा की किरण पाहल और कर्नाटक की एमआर पुवम्मा ने एक साथ खेलते हुए गोल्ड मेडल जीता, लेकिन किरण पाहल को इस गोल्ड मेडल के लिए हरियाणा सरकार ने दिए हैं 3 करोड़ मिले, जबकि कर्नाटक की एमआर पुवम्मा को इसी गोल्ड मेडल के लिए 35 लाख। 35 लाख और 3 करोड़, फर्क आप समझ रहे हैं, है ना? जब इस पर सवाल उठे तो कर्नाटक सरकार ने इनाम राशि बढ़ाकर अब 1 करोड़ कर दिया, लेकिन फिर भी 3 गुना किसी और को मिला है। फैसला किया, लेकिन तब भी दोनों खिलाड़ियों को ही एक गोल्ड मेडल पर बराबर राशि नहीं मिल रही, जबकि दोनों ने एक साथ गोल्ड मेडल जीता है। इसी तरह हॉकी में गोल्ड मेडल जीतने वाली 12 महिला खिलाड़ियों में 4 महिला खिलाड़ी झारखंड से थी, जिन्हें हेमंत सोरेन की सरकार ने 40-40 लाख रुपए की इनाम राशि देने की घोषणा की। लेकिन हिमाचल प्रदेश में गोल्ड मेडल जीतकर आए कबड्डी के खिलाड़ियों को 33-33 लाख रुपए ही देने का ऐलान किया गया। यहां हिमाचल प्रदेश की सरकार ने यह दलील दी कि गोल्ड मेडल पूरी टीम ने जीता है, इसलिए इनाम की 4 करोड़ रुपए की राशि उनके 4 खिलाड़ियों को नहीं दी जा सकती। यानी झारखंड में अलग नीति चल रही है, हिमाचल प्रदेश में अलग नीति, और यही वजह है कि आज सबसे पहले हमने एक मेडल एक इनाम राशि का यह पूरा मुद्दा उठाया है। आज हमारा बड़ा सवाल है कि जब हमारे नेता और हमारी सरकार एक देश की बातें करती है, एक भावना की बातें करती है, एक कानून की बातें करती है, एक देश एक टैक्स की बातें करती है, एक देश एक चुनाव की बात करती है, एक देश एक पेंशन की बात करती है, उसे लागू भी कर सकते हैं, तो यही नेता और सरकारें देश के सम्मान में जीते गए मेडल के लिए एक समान इनाम राशि का कानून क्यों नहीं बना सकते? देखिए
0: दीदी, आपके स्टेट में कितना दे रहे हैं, क्या रिकग्निशन है? हमारे में तो डीएसपी कोर्स दे रहे हैं, हमें गोल्ड के लिए 3 करोड़ है, पंजाब गवर्नमेंट के 4 करोड़।

0: हम उम्मीद करते हैं कि हमारी सरकारें इसके बारे में सोचेंगी और पूरे देश में एक मेडल के लिए एक इनाम राशि का मॉडल अपनाया जाएगा। एक तरफ अंतर इनाम राशि का है तो दूसरी तरफ अंतर लोगों की सोच में नजर आता है। जब क्रिकेट का बल्ला घूमता है तो सड़कों पर जश्न मनाया जाता है, लेकिन जब खिलाड़ी एशियन गेम्स में तिरंगा लहराकर घर लौटते हैं तो एयरपोर्ट पर सन्नाटा पसर जाता है।
1: जब इस देश में क्रिकेट का बल्ला घूमता है तो सड़कें जाम हो जाती हैं। जब क्रिकेट का कोई मैच हार जाते हैं तो हफ्ते महीने के कई बार तो सालों तक उस मैच को याद करके मातम मनाया जाता है। लेकिन जब इसी देश के बेटे और बेटियां एशियन गेम्स की कड़ी प्रतिस्पर्धा में अपना पसीना बहाकर दुनिया के सामने तिरंगा लहराते हैं तो हमारे एयरपोर्ट्स पर सन्नाटा क्यों पसर जाता है? जापान के आईची नगोया एशियन गेम्स से लौट रहे देश के असली नायकों में से अधिकतर का स्वागत करने कोई बड़ा नेता नहीं पहुंचा, कोई बड़ा खेल अधिकारी भी नहीं दिखा और न ही चमचमाती गाड़ियों का कोई काफिला नजर आया। स्वागत में थे तो बस वही बूढ़े माँ बाप, बचपन के दोस्त, एयरपोर्ट से गुजरने वाले चुनिंदा खेल प्रेमी या गांव की चौपाल से आए मुट्ठी भर लोग और ढोल की ढीली पड़ती थाम। आज लोग सवाल पूछते हैं कि भारत एशियन गेम्स में सिर्फ 85 मेडल ही क्यों लाया। सवाल यह है कि जो लोग मेडल टैली पर बैठकर ज्ञान बांट रहे हैं वो इन खिलाड़ियों को कितना भाव दे रहे हैं। तस्वीरें झूठ नहीं बोलती और ये तस्वीरें हमारे समाज की उस कड़वी सच्चाई का आईना है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। आईची नगोया एशियन गेम्स में भारत ने 85 पदक जीते, एशिया में चौथा स्थान बरकरार रखा, लेकिन 21 गोल्ड, 27 सिल्वर और 37 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर जब ये एथलीट भारत लौटे तो उनके स्वागत के लिए रेड कार्पेट नहीं बिछा था। सोचिए जिस खिलाड़ी ने दिन रात एक करके देश को दुनिया के नक्शे पर चमकाया हो, वो जैसे ही अपने देश की जमीन पर उतरा सिस्टम के लिए मामूली हो। ये वही देश है जहां आईपीएल जीतने वाले लोगों को देखने के लिए लाखों लोग इकट्ठे होते हैं। लेकिन गोल्फ में 24 साल का अकाल खत्म करने वाली प्रणवी उर्स कौन है? मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में भारत का झंडा गाड़ने वाली सुचिका तड़ियाल का नाम कितने लोगों को याद है? शूटिंग में दो दो गोल्ड छीन कर लाने वाली नीरू ढांडा जब एयरपोर्ट से बाहर निकली तो क्या किसी ने उनके संघर्ष की कहानी पूछी? शायद हमारे देश में सम्मान का पैमाना अब देश का गौरव नहीं बल्कि खेल का ग्लैमर बन चुका है। जो खिलाड़ी बिना सुख सुविधाओं के गांव की पगडंडियों से निकलकर ओलंपिक्स या एशियन गेम्स का रास्ता तय करते हैं उन्हें हम सिर्फ 15 दिन के टूर्नामेंट में याद करते हैं और फिर भूल जाते हैं। पिछली बार एशियन गेम्स में 106 मेडल्स थे भारत के, इस बार 85 आए तो उंगलियां उठने लगी। लेकिन क्या किसी ने ये पूछा कि पिछले एक साल में इन खिलाड़ियों को वो मानसिक और सामाजिक सपोर्ट मिला भी या नहीं जिसकी बदौलत मेडल जीते जाते हैं? क्या किसी ने पूछा कि बिना किसी पक्के रोजगार और बेसिक डाइट के संघर्ष कर रहे ये खिलाड़ी किस मानसिक तनाव से गुजरते हैं? गोल्ड आ गया तो कुछ लोग फोटो खिंचवाने पहुंच जाते हैं, लेकिन मेडल नहीं आया तो कोई इनकी तरफ देखता भी नहीं।
0: 40 दिनों की अथक खोज, 13,000 से ज्यादा जिंदगियां बचाने की जद्दोजहद और अंत में बचा रह गया 5,285 परिवारों का कभी न खत्म होने वाला इंतजार। जी हाँ, अगली खबर नेपाल से है। नेपाल ने भीषण जल प्रलय के बाद अपने सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशंस को अब जाकर आधिकारिक तौर पर रोक दिया है। इसमें 1,455 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, यानी लगभग 1,500 लोग, लेकिन 189 भारतीयों समेत 5,000 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं, जिन्हें शायद कंक्रीट की तरह जम चुके मलबे और खौफनाक सैलाब ने निकल दिया।
1: हिमालय की गोद में बसे नेपाल में पिछले 40 दिनों से जारी खोज और बचाव अभियान को आखिरकार औपचारिक रूप से रोक दिया गया है। 26 अगस्त को भोटेकोशी और त्रिशूली नदियों में आई विनाशकारी जल प्रलय में 1455 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 5285 लोग अब भी लापता हैं। सबसे बड़ा दर्द यह है कि सर्च ऑपरेशन समाप्त होने के बाद भी इन 5000 से ज्यादा लोगों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। नेपाल सरकार ने आपदा के 40 दिन बाद खोज और बचाव कार्य को बंद कर अब पुनर्वास पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर आधुनिक तकनीक के प्रयोग और इतने लंबे ऑपरेशन के बावजूद 5285 इंसानों या उनके शवों का कोई निशान क्यों नहीं मिल रहा। इसके पीछे विशेषज्ञों ने कुछ बड़े कारण बताए हैं। पहला, मलबे का पहाड़ों जैसा जमाव। लैंग टैंग लिरुंग के पास जब चट्टान और बर्फ का भारी एवलांच हुआ तो पानी के साथ लाखों टन मिट्टी, विशाल बोल्डर और गाद बहकर आई। ये मलबा बस्तियों पर कई फीट गहरी परतों में जम गया, जो समय के साथ सीमेंट की तरह ठोस हो चुका है। इतने भारी ठोस मलबे को हटाना मशीनों के लिए भी आसान नहीं है। दूसरा, बाढ़ का वेग इतना प्रचंड था कि शव बहकर सैकड़ों किलोमीटर दूर मैदानी इलाकों और भारत की सीमा में बहने वाली नदियों तक चले गए। तीसरा, सीमावर्ती इलाकों में करीब 12 से 13 पनबिजली परियोजनाएं पूरी तरह तबाह हो गईं। सुरंगों के भीतर काम कर रहे 800 से अधिक मजदूर गाद भर जाने से अंदर ही दफन हो गए। और चौथा है पहचान की समस्या। जो शव बरामद हुए हैं वो इतने क्षत विक्षत हैं कि डीएनए जांच के बाद भी सिर्फ 112 शव परिजनों को सौंपे जा सके हैं, जबकि 1333 शवों का बिना पहचान के ही अंतिम संस्कार किया गया। हिमालयी क्षेत्र में जब भी ऐसी आपदाएं आती हैं, तो अपनों के शव तक न मिल पाने का ये दर्द नया नहीं है। केदारनाथ से लेकर चमोली तक का इतिहास इसका गवाह है। 2013 की केदारनाथ त्रासदी में करीब 5700 मौतें हुई, 4000 लापता लोगों को मृत मान दिया गया। 2021 की चमोली त्रासदी में 100 से ज्यादा लापता लोगों को मृत मान लिया गया। इसी तरह 2015 के नेपाल भूकंप में 300 से ज्यादा लापता लोगों को मृत मान लिया गया। नेपाल की इस त्रासदी ने भौगोलिक सीमाओं को मिटा दिया है। कुल लापता लोगों में 36 देशों के 606 विदेशी पर्यटक शामिल हैं, जिनमें सबसे बड़ा आंकड़ा भारत का है। 189 भारतीय नागरिक इस आपदा में गुम हो चुके हैं। नेपाल सरकार अब इन लापता 5285 लोगों को कानूनी रूप से मृत घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर रही है, ताकि पीड़ित परिवार इंश्योरेंस और बैंकिंग कागजी कार्रवाई पूरी कर सके। बालेन शाह का ये बयान भी आज चर्चाओं में है।
2: The resulting devastation unleashed havoc on both sides of Nepal-China border. The flood continued downstream to the India. This tells of us something fundamental. Climate change does not recognize borders. Glaciers and floods do not travel with stamps and passports.
1: ये बयान पूरी दुनिया के लिए एक सीधी चेतावनी है। प्रकृति जब अपना संतुलन खोती है तो नक्शे पर खिंची लकीरें और इंसानी पासपोर्ट बेमानी हो जाते हैं। नेपाल में सर्च ऑपरेशन भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन हजारों परिवारों का अपनी मिट्टी और अपनों के अवशेष पाने का इंतजार अभी खत्म नहीं हुआ है। नेपाल अब पुनर्वास और ग्लेशियल झीलों को खाली करने के जोखिम भरे मिशन पर बढ़ रहा है, लेकिन 5285 लापता लोगों की टीस हमेशा के लिए इस हिमालयी क्षेत्र की वादियों में दफन रह जाएगी। आज तक ब्यूरो।
0: और अब बात करेंगे फ्रांस में बड़े पैमाने पर फैल रही हिंसा की। 17 सितंबर को शिक्षा की बदहाली जैसे मुद्दे पर वहां छात्रों और शिक्षकों का एक आंदोलन शुरू हुआ था, और अब यह आंदोलन अपने चरम पर पहुंच रहा है। इस वक्त फ्रांस के 40 से ज्यादा शहरों में 4.5 लाख से ज्यादा प्रदर्शनकारी सड़कों पर हैं, और इन प्रदर्शनकारियों को रोकने का कोई रास्ता इमैनुअल मैक्रों सरकार को तो समझ में नहीं आ रहा। सरकार के लिए आंदोलन खत्म करना एक बड़ी चुनौती बन गया है, क्योंकि प्रदर्शनकारियों में बड़ी संख्या नाबालिग प्रदर्शनकारियों की है। पिछले एक हफ्ते में 6,500 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 80% प्रदर्शनकारी नाबालिग हैं। फ्रांस की इस हिंसा को देखकर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी बात कही। उनका कहना है कि फ्रांस में होने वाली हिंसा और उसकी वजह शिक्षा की बदहाली नहीं बल्कि इस्लाम है। देखिए,
1: शिक्षकों की कमी और स्कूलों की बदहाली का गुस्सा फ्रांस के 40 से ज्यादा शहरों में आगजनी और तोड़फोड़ की शक्ल में उतर रहा है।
3: सड़कों पर लाखों की संख्या में छात्र, शिक्षक, अभिभावक और स्टूडेंट यूनियन के लोग शामिल हैं, जिन्हें फ्रांस के कई संगठनों का समर्थन भी मिल रहा है। ये लोग हाथों में बैनर, पोस्टर और मुंह पर मास्क लगाकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। पेरिस के अलावा लियोन, स्ट्रैसबर्ग, मर्सेई और केन में हालात काबू से बाहर हो चुके हैं। इन शहरों में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प की सैकड़ों तस्वीरें आ रही हैं। कहीं पर पुलिसकर्मी प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करते नजर आए, तो कहीं पर प्रदर्शनकारी पुलिसकर्मियों से हाथापाई करते दिखे। पेरिस में हिंसा को रोकने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया और लाठीचार्ज भी हुआ। दावा किया जा रहा है कि इस हिंसा में अभी तक 700 से ज्यादा पुलिसकर्मी और प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं। दो दिन पहले पुलिस के स्टन ग्रेनेड से एक 15 साल की नाबालिग प्रदर्शनकारी का हाथ कट गया था, जिसके बाद हालात और ज्यादा खराब हो गए।
4: इसका मतलब ये है कि उस अधिकारी को पक्का पता होगा कि उसके शॉट से जान जा सकती है, और इस तरह के हथियार के इस्तेमाल के लिए पहले से ही नियम बने हुए हैं। इसलिए ये मामला सिर्फ जानबूझकर की गई हत्या का नहीं है, बल्कि एक ग्रुप द्वारा किए गए गंभीर हमले का भी है, क्योंकि इससे पहले 3 पुलिस अधिकारियों ने एक बच्चे का सामना किया था और उसे लाठी या कूगर के पिछले हिस्से से मारा था। हमें ठीक ठीक नहीं पता कि किससे मारा, लेकिन वो 3 थे और बच्चा अकेला। वो 15 साल से कम उम्र का था। वे कानून लागू करने वाले अधिकारी थे और वो एक ग्रुप के तौर पर काम कर रहे थे। ये ऐसी बातें हैं जो अपराध को और गंभीर बनाती है, और आखिर में सबसे बड़ा अपराध है खतरे में पड़े व्यक्ति की मदद ना करना, क्योंकि जब वो बच्चा जमीन पर पड़ा था तो उन्होंने कोई मदद नहीं की।
5: अगर मैं दिखाए गए वीडियो के बारे में ऐसी कोई सफाई देता तो असल में मैं जांच की प्रक्रिया में दखल दे रहा होता, और ये वाकई अफसोस की बात होती, क्योंकि मुझे नहीं पता क्या ये संभालने में हुई कोई गलती थी या किसी स्थिति से निकलने के लिए जानबूझकर चलाई गई गोली थी। मुझे नहीं पता, मेरे पास रिपोर्ट नहीं है, और सच कहूं तो ये अच्छी बात है कि मेरे पास रिपोर्ट नहीं है, क्योंकि याद दिला दूं कि IGPN एक कानूनी दायरे में काम कर रहा है और इस देश में कानूनी कार्रवाई अभी भी एक तरह से गोपनीयता के घेरे में रहती है।
3: प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि फ्रांस के स्कूलों में बेसिक सुविधाएं तक नहीं है। स्कूल की इमारतों का मेंटेनेंस नहीं होता है, वहां पर शिक्षकों की कमी है, स्कूलों की छत से पानी टपकता है और चूहे एक बड़ी समस्या है, और इसी वजह से आंदोलन हो रहा है। फ्रांस के प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकॉर्न्यू तो यहां तक कह रहे हैं कि ये आंदोलन पिछले एक दशक का सबसे बड़ा हिंसक आंदोलन है, और उनका मानना है कि इस प्रदर्शन को बाहरियों ने हाईजैक कर लिया है। स्कूलों की बदहाली से जुड़े इस आंदोलन में अब तक फ्रांस में 24 से ज्यादा स्कूलों को प्रदर्शनकारी जला चुके हैं। फ्रांस में 3700 स्कूल हैं, जिनमें 900 से ज्यादा स्कूलों को प्रदर्शनकारियों द्वारा बंद करवाया जा चुका है। आंदोलन से जुड़े स्टूडेंट यूनियंस का दावा है कि उन्होंने 1800 स्कूलों को बंद करवा दिया है। इन प्रदर्शनों को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अलग तर्क है। उनका कहना है कि ये प्रदर्शन अब इस्लामिक कट्टरपंथियों के हाथों में पड़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस हिंसा को अवैध घुसपैठियों को शरण देने की यूरोपियन नीति से जोड़ा है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि हिंसा का कारण शिक्षा नीति नहीं है, बल्कि ये कट्टरपंथी इस्लाम की देश पर नियंत्रण पाने की नीति है और इस बयान की एक वजह है। शरणार्थियों के मामले में फ्रांस दुनिया का 5वां बड़ा देश है। यहाँ पर करीब 92 लाख शरणार्थी रहते हैं। फ्रांस की कुल आबादी में ये संख्या करीब 13.8% है। फ्रांस में रहने वाले शरणार्थियों में 49.2% लोग अफ्रीकी देशों से हैं, जिनमें सबसे ज्यादा संख्या अल्जीरिया और मोरक्को जैसे मुस्लिम देशों से आने वाले शरणार्थियों की है। फ्रांस में 30.3% शरणार्थी पुर्तगाल, इटली और स्पेन से आए हुए लोग हैं, और 13.5% लोग एशियाई या अन्य देशों से आए हुए हैं। साल 1968 में फ्रांस में रहने वाले हर 4 में से 3 विदेशी यूरोपियन थे, लेकिन अब स्थिति यह है कि हर 10 में से 3 ही यूरोपियन हैं, 5 अफ्रीकी देशों और 2 एशियाई या अन्य देशों से हैं। ये भी एक सच है कि फ्रांस में इस्लाम के मानने वाले तेजी से बढ़े हैं। फ्रेंच इंस्टीट्यूट ऑफ ओपिनियन पोल्स के सर्वे में बताया गया है कि 1985 में फ्रांस की कुल आबादी में मुस्लिमों की संख्या करीब 0.5% थी, जो साल 2004 में बढ़कर 2% हो गई, फिर 2009 में 4%, 2016 में 5.5% और फिर 2025 में बढ़कर 7% तक पहुंच चुकी है। जिस तेजी से फ्रांस में इस्लाम के मानने वालों की संख्या बढ़ी है उसकी वजह से आज फ्रांस में इस्लाम दूसरा सबसे बड़ा धर्म बन चुका है, जबकि 1985 से 2025 के बीच कैथोलिक धर्म के मानने वालों की संख्या 83% से गिरकर 43% तक आ चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने इशारों में ये बताने की कोशिश की है कि मुस्लिम शरणार्थियों को शरण देने की पॉलिसी ने फ्रांस को आज इस स्थिति में ला दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
0: अगली खबर पाकिस्तान से, जहां पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रिहाई को लेकर एक बड़ा आंदोलन शुरू हो गया है। इस्लामाबाद में इस आंदोलन को लेकर काफी हलचल है। दरअसल इस तरह के आंदोलन पाकिस्तान सरकार और वहां की सेना के लिए एक बड़ी मुसीबत बनते आए हैं। पीटीआई के नेता, समर्थक, कार्यकर्ता एक मार्च की शक्ल में निकले हैं। उनका मकसद है इस्लामाबाद का घेराव। तहरीके इंसाफ के इस मार्च से शाहबाज शरीफ और असिम मुनीर दोनों परेशान हैं। हालात यह है कि इस्लामाबाद की ओर जाने वाली जितनी भी सड़कें हैं उन सभी सड़कों पर बड़े बड़े कंटेनर्स रखकर उन्हें ब्लॉक किया गया है।
6: इमरान खान की रिहाई को लेकर चल रहा लॉन्ग मार्च जैसे जैसे इस्लामाबाद के पास पहुंच रहा है वैसे वैसे शहबाज और मुनीर की सांसें तेज हो गई। खैबर पख्तूनख्वा से शुरू हुआ यह लॉन्ग मार्च अब पेशावर पहुंच चुका है। पेशावर में लाखों की संख्या में इमरान समर्थकों ने इस रैली में हिस्सा लिया और अब ये प्रदर्शनकारी इस्लामाबाद कूच कर रहे हैं। पेशावर से इस्लामाबाद की दूरी करीब 180 किलोमीटर है और इस दौरान रास्ते में पड़ने वाले शहरों में इमरान समर्थक इस आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए तैयार खड़े हैं। पीटीआई की मांग है कि जेल में इमरान से मिलने की अनुमति दी जाए और उन्हें तुरंत किसी प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट किया जाए और पर्सनल डॉक्टर से इलाज करवाया जाए। इसके अलावा इमरान की बहनों और गिरफ्तार नेताओं को छोड़ा जाए। लॉन्ग मार्च में शामिल पीटीआई नेताओं और समर्थकों का गुस्सा देखकर शहबाज शरीफ परेशान हो गए हैं। उन्होंने पीटीआई नेताओं और समर्थकों को बातचीत के लिए बुलाया है। हालांकि इससे पहले खबर आई थी कि शहबाज ने प्रदर्शनकारियों से किसी तरह की बातचीत से साफ इनकार कर दिया था, लेकिन अब इमरान समर्थकों ने बातचीत का प्रस्ताव ठुकरा दिया है और उनकी मांग है कि जब तक इमरान की रिहाई नहीं होगी तब तक मार्च खत्म नहीं होगा। एक्सपर्ट्स का दावा है कि लॉन्ग मार्च जैसे जैसे इस्लामाबाद के करीब पहुंचेगा शहबाज की कुर्सी खतरे में पड़ती जाएगी। इतनी बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों को रोकना मुनीर के बूते से भी बाहर हो जाएगा। पाकिस्तानी सेना भी पीओके वाले फॉर्मूले पर गोलियां चलाकर इन्हें रोक नहीं पाएगी, इसीलिए पाकिस्तान सरकार और सेना घबराए हुए हैं। मुनीर भी चाहते हैं कि इस प्रदर्शन के जरिए शहबाज सरकार कमजोर दिखे ताकि वो ताकतवर हो जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 4 अक्टूबर को खैबर पख्तूनख्वा के लक्की मरवत से लॉन्ग मार्च शुरू किया है। पीटीआई के नेता, समर्थक और कार्यकर्ता एक रैली की शक्ल में निकले हैं और उनका मकसद है कि इस्लामाबाद का घेराव करना और इमरान को किसी भी हाल में छुड़वाना। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए इस्लामाबाद की ओर आने वाले हर हाईवे पर बड़े बड़े कंटेनर रख दिए गए हैं, सड़कों को ब्लॉक कर दिया है। इसके अलावा इस्लामाबाद के अंदर पाकिस्तानी संसद के आसपास भी कंटेनर रख दिए गए हैं।
0: तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जो आपके होते हुए कहीं और हो उन्हें कहीं और ही रहने दें। नमस्कार।

0: सीसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आज कांग्रेस देश में प्रदर्शन करेगी। बुधवार को लगातार दूसरे दिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने सीसी के खिलाफ न सिर्फ संग्राम छेड़ा बल्कि दिल्ली पुलिस से भी टकरा गए। लगातार दूसरे दिन राहुल और प्रियंका को पुलिस ने जबरदस्ती धरने से उठाया और हिरासत में ले लिया। हालांकि बाद में पुलिस हिरासत में दोनों को रिहा कर दिया गया था।
1: राहुल की ललकार ज्ञानेश के खिलाफ गलगार।
2: हटाओ नहीं यार।
1: पहले आकाशवाणी फिर जंतर मंतर के लिए कूच। पुलिस ने रोका इंडिया गठबंधन की बस का रास्ता।
2: सर ये हजारों की भीड़ है, किसी को चोट लग गई।
1: सड़क पर राहुल प्रियंका की हुंकार, ज्ञानेश पर आर पार।
3: Let them call their forces back. I will not move from here.
1: जंतर मंतर पर बैरिकेडिंग, सड़क पर ही छिड़ा संग्राम।
4: ऐसे नहीं होगा।
5: आप बताएं कैसे होगा?
4: आपने इसको धकेला नीचे।
1: तस्वीरें जंतर मंतर चौराहे की हैं। आप देख सकते हैं जंतर मंतर पर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ धरना देने निकले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को दिल्ली पुलिस जबरन उठाकर हिरासत में ले लेती है। ये दो तस्वीरें देखिए, कैसे राहुल गांधी को उठाकर गाड़ी में डाला जाता है, और दूसरी तस्वीर में प्रियंका गांधी को देखिए, कैसे सड़क पर लेटी प्रियंका गांधी को उठाने के लिए पुलिस और केंद्रीय बलों को खासी मशक्कत करनी पड़ती है, और फिर प्रियंका गांधी को सड़क से उठाकर हिरासत में लिया जाता है। सड़क पर तगड़ा संग्राम छिड़ जाता है क्योंकि प्रियंका गांधी सड़क से उठने को तैयार नहीं होती है।
3: This is how they treat members of parliament who are asking simply to meet the election commissioner. This is how they treat us. Let them call their forces back. I will not move from here.
1: और अब आपको ज्ञानेश कुमार के खिलाफ छिड़े रण की पूरी टाइमलाइन दिखाते हैं। पहले राहुल गांधी कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन के सांसदों के साथ जनपद पर सागर रत्ना रेस्टोरेंट में लंच करते हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नया मोर्चा खोलने के लिए जंतर मंतर के लिए निकल पड़ते हैं।
6: प्रोटेस्ट साइट है जंतर मंतर, वहां पे हम जाकर सब आज फिर से बैठे और देश को बताएं कि हमारे लिए ज्ञानेश कुमार जी देश के लेजिटिमेट इलेक्शन कमिश्नर नहीं है। मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, मोहन भगवत, ज्ञानेश कुमार जी ने देश के लोकतंत्र को खत्म किया है, और मैंने कल भी कहा था जिन्होंने ये काम किया है ये देशद्रोही है और इन पर हम एक्शन लेंगे। मैं आपको अभी बता रहा हूँ ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा देना पड़ेगा।
7: इलेक्शन कमीशन कर रही है और मोदी जी करा रहे हैं, और जब मोदी जी ऐसी गलती करा रहे हैं इसका मतलब यह है कि इस देश में डेमोक्रेसी को खत्म करने की कोशिश वो कर रहे हैं।
8: We are all here together. We are all here united. And we are all here without any egos. We will fight these guys.
9: जो ज्ञानेश है ना, ये इस देश का सबसे बड़ा गद्दा घोषित हो, इसे कोई नहीं बचा पाएगा। जहां ज्ञानेश मिलेगा वहीं खोजने जा रहे हैं, वहीं ढूंढेंगे जहां बंद करके इसको रखा हो।
10: ज्ञानेश की तलाश में आप जा रहे हैं?
9: क्या करेंगे, ज्ञानेश बोल ही नहीं रहा है और लॉ मिनिस्टर बोल ही नहीं रहा है, बीजेपी का प्रवक्ता ज्ञानेश को बचा रहा है।
1: राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ यलगार छेड़ दिया है। पहले आकाशवाणी भवन परिसर में 8 घंटे तक धरना और फिर जंतर मंतर से धावा बोलने के लिए राहुल, प्रियंका और इंडिया गठबंधन के 200 सांसद बस में सवार हो जाते हैं।
11: नरेंद्र मोदी
5: Modi government is an illegitimate government. Not only Ganesh Kumar and Narendra Modi government also has to go. Writing is on the wall. They are seeing, they are afraid. That is why they are using a brutal force against us. But we are not intimidated.
1: उधर जंतर मंतर जैसे दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों की छावनी में तब्दील कर दिया जाता है और जंतर मंतर चौराहे पर राहुल प्रियंका समेत सभी विपक्षी सांसदों की बस रोक ली जाती है।
11: हम उनका इस्तीफा मांगना चाहते हैं क्योंकि हमें विश्वास नहीं है उन्हें। ये जो चुनाव आयोग है ये किस लिए चलता है? इस देश की जनता के लिए। हम जनता के प्रतिनिधि है, 250 जनता के प्रतिनिधि, उनमें से एक एक प्रतिनिधि कम से कम 20 से 30 लाख लोगों के प्रतिनिधि हैं और हम सच में कह रहे हैं कि हम शांतिपूर्वक जाएंगे, बात करेंगे और ये सरकार इतनी कायर है, इतनी डरती है इस जनता की आवाज से कि हर जगह प्रदर्शन रोक रही है।
12: आपको लगता है हम यहाँ से हिल जाएंगे? क्या समझ रखा है इन लोगों ने? ये देश की राजधानी की ये हालत है।
13: ब्रूटली लाठीचार्ज कर रहे हैं, ये सीधे गुनहगार हैं। ज्ञानेश जी, अमित शाह जी और मोदी जी, ये विजुअल्स कई साल तक हमने नहीं देखे थे। ब्रुटैलिटी की इंतहा है। यू स्टैंड एक्सपोज।
1: बस का घेराव देखकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों बस से नीचे उतर आते हैं और वहीं सड़क पर बैठकर धरना देने लगते हैं। दिल्ली पुलिस के अफसर राहुल गांधी से बात कर उन्हें सड़क से उतरने के लिए कहते हैं। जबकि प्रियंका गांधी सड़क पर देखकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर देती हैं। ये सब देखकर जैसे पुलिस के हाथ पांव फूलने लगते हैं। फिर पुलिस प्रियंका गांधी को हटाने की कोशिश करती है लेकिन प्रियंका गांधी तस से बस नहीं होती।
3: Their policemen have scratched me all over. They have thrown us to the ground, and now we are not going to move from here.
5: गुंडागर्दी, अरे इनका इतिहास क्या है? जरा पेज पलट करिए तो नई नई शान पहन के घूम रहे होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, सबको मालूम इनका इरादा क्या है। तो अगर ये सोच रहे हैं कि हम डर के रुक जाएंगे, बेटा उनको बोल दो ये होने वाला नहीं।
1: काफी देर तक पुलिस और राहुल प्रियंका के बीच एक संघर्ष चलता है। आखिर में दिल्ली पुलिस राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को सड़क से जबरन उठाकर ले जाती है और हिरासत में ले लेती है।
14: अमित शाह, नरेंद्र मोदी, ज्ञानेश कुमार, मोहन भगवत एंड दे कैन डू ऑल दिस स्टफ बट वी आर गोइंग टू ब्रिंग देम
1: ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर विपक्ष अड़ा हुआ है। राहुल और प्रियंका से पहले सुबह में लेफ्ट पार्टियां और आम आदमी पार्टी ने भी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लड़ाई बड़ी है। अब ये लड़ाई कहां तक जाएगी, आगे आगे देखते हैं होता है क्या। दिल्ली से बॉस्मी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
0: राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्ष के प्रदर्शन के दिल्ली पुलिस की मुश्किलें बढ़ गई हैं क्योंकि पुलिस की तरफ से राहुल गांधी को रोकने की तैयारियां की जाती हैं लेकिन राहुल पुलिस के बंदोबस्त को चकमा देते हुए नई जगह पर प्रदर्शन के लिए पहुंच जाते हैं। मतलब यही है कि दिल्ली पुलिस के नहले पर राहुल गांधी दहला चल रहे हैं।

0: होगा।
1: मेरे पास 45 FIR है। मेरा लक्ष्य है कि मुझे 100 चाहिए। मैं चाहता हूं कि मेरे ऊपर 100 FIR लगे। हर FIR मेरे लिए एक मेडल है।
2: राहुल गांधी पर FIR दर्ज हो गई, लेकिन वो रुकेंगे नहीं, बल्कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे तक सड़क पर सीधी लड़ाई जारी रखेंगे। राहुल गांधी के इसी तेवर ने दिल्ली पुलिस की नींद उड़ा रखी है। दिल्ली पुलिस राहुल गांधी को रोकने के लिए पूरा होमवर्क करती है, लेकिन बीच में राहुल गांधी दिल्ली पुलिस की तमाम तैयारियों को चकमा दे देते हैं। बीते दिन संसद भवन से राहुल गांधी को चुनाव आयोग के दफ्तर जाना था। पुलिस की तैयारी यही थी कि राहुल गांधी को चुनाव आयोग के दफ्तर से पहले हिरासत में लिया जा सके, लेकिन राहुल गांधी पुलिस को चकमा देकर आकाशवाणी भवन में दाखिल हुए और धरने पर बैठ गए। कई घंटों के बाद दिल्ली पुलिस किसी तरह राहुल का धरना खत्म करवा पाई। पुलिस के हाथ पांव फूल गए। आज दिल्ली पुलिस को पहले से पता था कि विपक्ष के सांसदों के साथ राहुल गांधी जनपद के पास लंच करेंगे, उसके बाद आज जंतर मंतर जाएंगे। लिहाजा राहुल गांधी से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस के DCP ने अपने अधीनस्थों को खास ट्रेनिंग दी,
3: लाइक विद ऑल वेरी वेरी रिस्पेक्टफुली,
2: क्योंकि राहुल गांधी के दिमाग में क्या है, राहुल का प्लान क्या है, ये दिल्ली पुलिस के लिए किसी पहेली से कम नहीं था।
3: जो लोग सीधे सीधे चलने लग गए उनको आप आराम से ले जाके कोशिश पहली यही होनी है कि आराम से प्यार से बोल के रेस्पेक्टफुली बोल के हम सबको ले जाएं और सबको बैठा लें, ठीक है। नेक्स्ट ये होने वाला है अपना कि क्योंकि सपोर्टर्स भी बहुत सारे होते हैं तो वो भी रेजिस्ट करते हैं, पकड़ लेते हैं, ग्रुप कर लेते हैं, ठीक है। मेल को फीमेल्स भी कर लेती हैं, पकड़ लेती हैं बहुत जोर से, तो इन चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और बसेस, बस में बैठा दिया तो बस से निकल ना पाएं और बस के आगे की क्लैरिटी देनी पड़ेगी ताकि बस सीधा सीधा निकल जाए।
2: नई दिल्ली के DCP सचिन शर्मा उन पुलिस वालों को क्लास दे रहे हैं जिनके कंधों पर राहुल गांधी को रोकने की जिम्मेदारी है। राहुल गांधी लोकसभा में नेता विपक्ष हैं, लिहाजा आज DCP ने पुलिस वालों को हिरासत में लेने का पूरा तरीका समझाया।
3: सेंसिटिवली, सारा अदब और रेस्पेक्टफुली इनको रिक्वेस्ट करते रहना है। ओरली हम रिक्वेस्ट करते रहेंगे, सर, ऑनरेबल सर, ठीक है। तो वो चीज़ों का आप, हो सकता है काफ़ी सारे ऑनरेबल MPs को नहीं पहचानते हो, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ भी जो भी हो या तो उनके साथ वाला बता देता है, नहीं भी बताए तो ट्रीट एवरीबडी लाइक विद ऑल वेरी वेरी रिस्पेक्टफुली, ठीक है।
2: राहुल गांधी के एक्शन से दिल्ली पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि राहुल गांधी का प्लान दिल्ली पुलिस की तमाम तैयारियों पर भारी है। दिल्ली पुलिस की कोशिश है राहुल को धरने पर बैठने से रोकना, लेकिन राहुल मार्च भी निकाल रहे हैं और धरने पर भी बैठ रहे हैं। मतलब यही है कि दिल्ली पुलिस के तमाम तिक्रम को राहुल बार बार चकमा देने में कामयाब हो रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
4: अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत के दरवाजे बंद हैं। ईरान ने खुल्लम खुल्ला ऐलान किया है कि अब अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। इसी बीच अमेरिका ने ईरान बॉर्डर के करीब सैनिकों की तैनाती भी बढ़ा दी है। हॉर्मुज के करीब नए युद्ध पोत तैनात किया गया है। सवाल यही है कि ट्रंप के दिमाग में चल क्या रहा है? क्या अमेरिका में होने वाले मिड टर्म चुनाव से पहले ट्रंप ईरान पर किसी बड़े हमले की प्लानिंग में जुटे हैं?

0: मिड टर्म चुनाव में ट्रंप को हार का डर, हार के डर से ईरान पर हमले की तैयारी। ईरान बॉर्डर भेजी सैनिकों की नई टुकड़ी। हुर्मुज के करीब युद्धपोत की तैनाती बढ़ाई। चुनावी जीत के लिए ट्रंप का प्लान महायुद्ध। तीन नवंबर को अमेरिका में मिड टर्म चुनाव होने हैं। ये चुनाव अमेरिकी राष्ट्रपति की अग्नि परीक्षा है। भले ही नतीजे ट्रंप के कार्यकाल या शक्ति पर सीधा असर न डालें, लेकिन चुनावी हार ट्रंप के बचे हुए कार्यकाल की राह में सबसे बड़ा रोड़ा बन सकती है, क्योंकि चुनाव की टाइमिंग अहम है। मिड टर्म चुनाव युद्ध के बीच में हो रहा है, लिहाजा ट्रंप अपनी जीत सुनिश्चित कर दुनिया को बताएंगे कि ईरान पर हमले के निर्णय पर जनता की मोहर लग गई। अगर ट्रंप की पार्टी मिड टर्म चुनाव में हार जाती है तो नतीजों का सारांश यही है कि ईरान पर हमले के निर्णय के साथ अमेरिका नहीं खड़ा है, मतलब ट्रंप अपने घर में अलग थलग पड़ जाएंगे। लिहाजा ट्रंप अपने चुनावी अभियान में यही दोहरा रहे हैं कि ईरान युद्ध हार चुका है और अब ईरान में बातचीत के लिए कोई लीडरशिप मौजूद नहीं है।
1: Their economy is in ruins. They have inflation like no other country anywhere in the world. And the man who left the other day said, "I'm leaving because our country is finished." That's what he said. I don't know. I don't take anything for granted, but they're not doing well. And thanks to the men and women of America's armed forces, dozens of Iran's terrorist leaders have been blown out of existence and straight through to the gates of hell. As you know, their leaders are gone. Their second group of leaders are gone. And the biggest problem I have is nobody knows who the hell is running the country. Nobody knows, but maybe that's a good thing.
0: ट्रंप पर दबाव की एक वजह ईरानी सेना की तरफ से अमेरिकी नागरिकों को लिखा गया खुला खत भी है। खत में ईरान ने मिड टर्म के वोटरों से अपील की है। अपील में कहा है कि अमेरिका और ईरान के लोगों के बीच में नफरत की वजह इसराइल है। अगर इसराइल से अमेरिका दूरी बना लेता है तो युद्ध की आग शांति में बदल सकती है। आप अमेरिकी जनता इस भयावह स्थिति को टालने की शक्ति रखते हैं। आपको अपनी सरकार को इसराइल से दूरी बनाने के लिए मजबूर करना होगा, क्योंकि फिलिस्तीन पर कब्जा करने वालों को देर सवेर अपने कब्जे वाली जमीन छोड़कर अपने मूल देशों में लौटना ही होगा। हम शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में एक साथ रह सकते हैं। अमेरिका की वर्तमान स्थिति के लिए जिम्मेदार हिंसक राजनेताओं को सत्ता से हटा दें। अपने मामलों को बुद्धिमानों को सौंपें, न कि धूर्तों को। सुनिश्चित करें कि आपके राजनेता ये समझें कि दुनिया बदल चुकी है। दूसरी तरफ ईरान युद्ध को लेकर ट्रंप अपनी घटती हुई लोकप्रियता को लेकर तनाव में हैं। तनाव की वजह है अमेरिकी नागरिकों का ट्रंप की नीतियों से उठता भरोसा। एपी नॉर्क सर्वे के मुताबिक ट्रंप के कामकाज से सिर्फ 30% लोग खुश हैं, यानी 70% अमेरिकी ट्रंप से खुश नहीं हैं। वहीं इकोनॉमी के मोर्चे पर ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग 26% है। 65% से ज्यादा अमेरिकी बढ़ती हुई कीमतों के लिए ट्रंप की नीतियों को जिम्मेदार मानते हैं। सिर्फ 28% अमेरिकियों को लगता है कि ईरान पर हमले का फैसला सही था, जबकि 66% लोग युद्ध के फैसले के खिलाफ हैं। सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि 64% अमेरिकी मानते हैं कि ईरान के खिलाफ युद्ध में अमेरिका की जीत नहीं हुई। 78% अमेरिकी मानते हैं कि युद्ध को खत्म करने के लिए ट्रंप ने जरूरी कदम नहीं उठाए। इतना ही नहीं, ट्रंप की पार्टी के 63% समर्थक ही ट्रंप के फैसले के साथ खड़े हैं। ताजा सर्वे ने मिड टर्म चुनाव में ट्रंप के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। ऐसे में ईरान युद्ध ट्रंप के लिए गले की हड्डी बन गया है। इसी खतरे से निपटने के लिए ट्रंप मिड टर्म चुनाव से पहले ईरान पर बड़ा हमला कर सकते हैं। इसके संकेत भी मिले हैं। बड़ा संकेत है विमान हाईजैक की कोशिश से ईरान का नाम जोड़ना। आतंकवाद से ईरान का नाम जोड़कर ट्रंप हमले की नई पटकथा लिख चुके हैं। अमेरिकी मीडिया में छपी रिपोर्ट और मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैनिकों की अतिरिक्त तैनाती भी इसी ओर इशारा कर रही है, क्योंकि चंद दिन पहले ही एयरक्राफ्ट कैरियर को खाड़ी देशों के करीब भेजा गया है। अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती की गई है। माना जा रहा है कि ट्रंप गुपचुप तरीके से ईरान पर बड़े हमले की तैयारी कर चुके हैं। इसी कड़ी में बीते कुछ दिनों से सीक्रेट बैठकों का दौर जारी है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने टॉप सिक्योरिटी टीम के साथ एक मीटिंग की है। बैठक में विदेश मंत्री मार्को रूबियो, रक्षा मंत्री पीट हेक्सेट, विशेष दूत स्टीव विटकॉफ, CIA निदेशक जॉन रैटक्लिफ और शीर्ष सैन्य प्रमुख डैन केन शामिल थे। अमेरिका की सैन्य तैयारियों को लेकर ईरानी रक्षा मंत्रालय की तरफ से नए हमले की आशंका को लेकर ट्रंप को सीधी धमकी दी गई है। किसी भी नए हमले के बाद ईरान की तरफ से पलटवार होगा। ईरान ज्यादा उन्नत हथियारों का इस्तेमाल करेगा। ईरान के पास हथियारों की कोई कमी नहीं है। युद्ध शुरू होने से पहले जितनी क्षमता थी, आज उस क्षमता को 2.5 गुना बढ़ा दिया जा चुका है।

0: सिरे से आक्रामकता की संभावना का संकेत मिलता है, जिसका निश्चित रूप से निर्णायक जवाब दिया जाएगा। दुश्मन को भारी हार का सामना करना पड़ेगा। पूरे इलाके से अमेरिका का खात्मा हमारा संकल्प है। अगर दुश्मन गलत अनुमान लगाता है तो उसे निश्चित रूप से ज्यादा उन्नत हथियारों और सशस्त्र बलों की ओर से भारी जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, ईरान की तरफ से युद्ध का नया रिहर्सल भी शुरू हो गया है। बेलारूस में ईरानी सैनिक युद्ध अभ्यास के लिए पहुंचे हैं। वहीं हूतियों के हमले से सऊदी अरब दहल रहा है, मतलब युद्ध के किसी भी मोर्चे पर ईरान झुकने को तैयार नहीं है। ईरान ने ऐलान कर दिया है कि युद्ध में अमेरिका की हार हुई, अगर अमेरिका हमला करता है तो एक बार फिर हार होगी। आप सैन्य युद्ध हार चुके हैं, आप आर्थिक युद्ध में भी असफल होंगे। हुर्मुज को धमकियों या दबाव से नहीं खोला जा सकता। ईरान पीछे नहीं हटेगा। अमेरिका की भ्रामक भविष्यवाणियों में तो पहले से ही कोई विश्वसनीयता नहीं थी। उनके नए दुष्प्रचार का भी जीवन काल उतना ही अल्पकालिक होगा। भले ही मिड टर्म चुनाव से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति के दिमाग में ईरान पर नए हमले का प्लान घूम रहा हो, लेकिन ईरान भी नए हमलों से निपटने के लिए तैयार है। प्लान पूरे मिडल ईस्ट को युद्ध के दायरे में लाना है। आज तक ब्यूरो।
1: फ्रांस में शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर छात्र सड़कों पर उतर आए। सितंबर में शुरू आए आंदोलन अब पूरे देश में फैल गया है। छात्र स्कूलों में बढ़ती भीड़, जर्जर इमारतों और शिक्षकों की कमी का विरोध कर रहे हैं। आंदोलन के दौरान कई जगहों पर छात्रों और पुलिस के बीच में झड़पें भी हुई और इसी पूरे आंदोलन पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बयान ने एक नई बहस छेड़ दी है।
0: सुलग उठा फ्रांस, जेन जी और जेन अल्फा का विद्रोह। स्कूलों की बदहाली, फ्रांस में जेन जी आंदोलन की चिंगारी। स्कूलों से सड़क तक जेन जी की पुलिस से सीधी भिड़ंत। अब तक 5,000 से ज्यादा छात्र गिरफ्तार। स्कूलों पर संग्राम। बवाल के बीच ट्रंप का बयान, फ्रांस पर कब्जा चाहता है इस्लाम। ये तस्वीरें फ्रांस की हैं। सड़कों पर आग है, पुलिस है, आंसू गैस है और पुलिस के सामने खड़ी है फ्रांस की नई पीढ़ी। एक ऐसी पीढ़ी जिसमें जेन जी और जेन अल्फा शामिल हैं और इन्होंने बदहाल स्कूलों के लिए फ्रांस की सरकार के खिलाफ एक जंग छेड़ दी है। कहीं स्कूल के गेट पर बैरिकेडिंग है, कहीं सड़कों पर छात्रों का हुजूम है और कहीं पुलिस के साथ सीधा टकराव। आपको बता दें कि फ्रांस के लेंस शहर में एक स्कूल के पास हुए धमाके में 15 साल के एक छात्र का हाथ उड़ गया। तो इससे पहले पिछले हफ्ते 14 साल के ईडन नाम के छात्र के सिर पर आंसू गैस का गोला लगने की खबर सामने आई। उसके जबड़े में 2 जगह फ्रैक्चर हुआ था और उसे बड़ी सर्जरी करानी पड़ी। मानवाधिकार संगठनों, छात्रों और अभिभावक समूहों ने नाबालिगों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई को जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग बताया है। स्ट्रासबर्ग में पुलिस ने छात्रों पर आंसू गैस छोड़ी, छात्र सड़कों पर भागते नजर आए। यानी स्कूलों की समस्या को लेकर शुरू हुआ आंदोलन अब कई जगह हिंसक टकराव में बदल चुका है। प्रदर्शन के दौरान करीब 200 लोग घायल हुए हैं तो 5,000 से अधिक छात्रों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें करीब 87% नाबालिग हैं। यानी बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां 18 साल से कम उम्र के छात्रों की हुई हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक इस आंदोलन के दौरान 85 टीचिंग स्टाफ भी घायल हुए हैं। आंदोलन की शुरुआत 21 सितंबर को पेरिस के एक स्कूल से होती है। छात्रों की मांग थी कि स्कूल में स्टाफ और संसाधनों की कमी दूर की जाए। स्कूल में अतिरिक्त स्टाफ भेजे जाने के बाद वहां की हड़ताल तो खत्म हो गई,

0: लेकिन तब तक दूसरे इलाकों में भी विरोध शुरू हो चुका था। इसके बाद विश्वविद्यालयों के छात्र भी आंदोलन में शामिल हो गए। इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर में बड़ी हुई ये नई पीढ़ी अब ऑनलाइन शिकायत करने के बजाय सड़कों पर उतरकर अपने स्कूलों की हालत पर सवाल पूछ रही है। लेकिन फ्रांस में जेन जी और जेन अल्फा के इस धधकते आक्रोश के बीच अमेरिका से एक ऐसा बयान आया जिसने बहस की दिशा ही बदल दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि फ्रांस में जो हो रहा है वो बड़े पैमाने पर बाहर से लोगों के बेकाबू ढंग से आने का मामला है। ये स्कूलों से जुड़ा मामला नहीं है, ये एक महान देश पर इस्लाम के कब्जा करने का मामला है। यानी जहां फ्रांस के छात्र शिक्षकों की कमी, स्कूलों की खराब हालत, भरी हुई कक्षाओं और शिक्षा व्यवस्था में ज्यादा निवेश की मांग कर रहे हैं, वहीं ट्रंप ने इस पूरे घटनाक्रम को बाहर से लोगों के आने और इस्लाम के मुद्दे से जोड़ दिया। लेकिन ट्रंप के इस बयान के पीछे सिर्फ फ्रांस का मुद्दा नहीं देखा जा रहा, इसके पीछे अमेरिका की घरेलू राजनीति भी है। अगले महीने अमेरिका में मिड टर्म चुनाव होने हैं और ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के लिए बाहर से आने वाले लोगों का मुद्दा और इस्लाम से जुड़ी राजनीति दक्षिणपंथी वोटरों को लामबंद करने वाले बड़े मुद्दों में शामिल है। यानी फ्रांस के स्कूलों में चल रहे आंदोलन को ट्रंप ने अपने उस राजनीतिक नैरेटिव से जोड़ दिया जिसका इस्तेमाल अमेरिका में अपने समर्थकों को एकजुट करने के लिए किया जाता रहा है। तो मिड टर्म चुनाव से ठीक पहले क्या फ्रांस के इस विवाद को बाहर से आने वाले लोगों और इस्लाम के मुद्दे से जोड़कर ट्रंप अपने समर्थक वोटरों को एकजुट करने का राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं? हालांकि फ्रांस की सड़कों पर मौजूद छात्रों से अगर पूछा जाए तो उनकी घोषित मांगे फिलहाल बिल्कुल अलग है। शिक्षक चाहिए, स्कूलों की मरम्मत चाहिए, कक्षाओं में भीड़ कम चाहिए और शिक्षा व्यवस्था के लिए ज्यादा संसाधन चाहिए। यानी एक तरफ फ्रांस की जेन अल्फा और नई पीढ़ी का स्कूलों को लेकर गुस्सा और दूसरी तरफ ट्रंप का इसे बाहर से लोगों के आने और इस्लाम से जोड़ना। लेकिन अब मामला सिर्फ स्कूलों तक सीमित नहीं रहा, हिंसा बढ़ी है, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव बढ़ा है, सैकड़ों छात्र और स्कूल कर्मचारी घायल हुए हैं और 700 से ज्यादा पुलिस कर्मियों के भी घायल होने की जानकारी है। फ्रांस के प्रधानमंत्री सेबेस्टियन डेकोर्नू ने इसे कई दशकों में सबसे हिंसक स्कूल प्रदर्शनों में से एक बताया है और मंत्रियों को छात्रों की मांगों पर काम करने का निर्देश दिया है। सरकार के सामने मुश्किल इसलिए भी बड़ी है क्योंकि फ्रांस पहले से भारी सरकारी कर्ज, कमजोर आर्थिक विकास और बढ़ते बजट घाटे से जूझ रहा है। यानी सड़कों पर छात्र हैं, स्कूलों की बदहाली है और सरकार के सामने पैसे की भी बड़ी चुनौती है। आज तक ब्यूरो।
1: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: पंजाब चुनाव से पहले सबसे बड़ी पंचायत। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ हर सवाल पर होगी खुलकर बात। देखिए पंचायत आज तक पंजाब 8 अक्टूबर दिन भर सिर्फ आज तक पर।
1: रियल्टी पार्टनर TDI इंफ्राटेक नॉर्थ इंडियाज लीडिंग टाउनशिप डेवलपर।
2: हेल्थ पार्टनर वृंदा लाइफ, वी आर नोन फॉर क्वालिटी मेडिसिन।
3: बैंकिंग पार्टनर पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
4: स्पेशल पार्टनर ग्रेट खलीज चॉइस फॉर पावरफुल फिटनेस लिफ्ट्स बाय पोलो एलिवेटर्स।

0: वोल्टेज सियासी ड्रामे के बीच हिरासत में लेने के बाद छोड़े गए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, आज पूरे देश में प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। ज्ञानेश कुमार पर सियासी घमासान तेज, खड़गे ने कहा तानाशाह मोदी सरकार और चुनाव आयोग के गठबंधन का पर्दाफाश, नितिन नवीन का पलटवार, अराजकता फैला रहे हैं राहुल गांधी। सीएम से पीएम तक जनसेवा में प्रधानमंत्री मोदी के 25 साल का एम्बिशन नहीं मिशन के लिए जीता हूं, कई शहरों में बीजेपी के कार्यक्रम, आडवाणी से मिले प्रधानमंत्री। यूपी में लड़ाई फिर 80-20 पर आई, राज्यसभा चुनाव के नतीजों पर सीएम योगी का एसपी पर तीखा तंज, का 2027 का परिणाम साफ, अखिलेश का पलटवार, घमंड का मिलेगा दंड। और दिल्ली के सीमापुरी इलाके में गिरी 4 मंजिला इमारत, अब तक 3 लोगों की मौत, अस्पताल में घायलों का इलाज जारी। सीसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आज कांग्रेस देश में प्रदर्शन करेगी। बुधवार को लगातार दूसरे दिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने सीसी के खिलाफ न सिर्फ संग्राम छेड़ा बल्कि दिल्ली पुलिस से भी टकरा गए। लगातार दूसरे दिन राहुल और प्रियंका को पुलिस ने जबरदस्ती धरने से उठाया और हिरासत में ले लिया, हालांकि बाद में पुलिस हिरासत में दोनों को रिहा कर दिया गया था।
1: राहुल की ललकार ज्ञानेश के खिलाफ गलगार।
2: हटाओ नहीं,
1: पहले आकाशवाणी फिर जंतर मंतर के लिए कूच।
3: पुलिस में ग्राउंड
1: पुलिस ने रोका इंडिया गठबंधन की बस का रास्ता।
4: सर ये हजारों की भीड़ है, किसी को चोट लग जाए।
1: सड़क पर राहुल प्रियंका की हुंकार, ज्ञानेश पर आर पार।
3: Let them call their forces back. I will not move from here.
1: जंतर मंतर पर बैरिकेडिंग, सड़क पर ही छिड़ा संग्राम।
5: ऐसे नहीं होगा,
6: आप बताएं कैसे होगा?
5: आपने इसको धकेला नीचे।
1: तस्वीरें जंतर मंतर चौराहे की हैं। आप देख सकते हैं जंतर मंतर पर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ धरना देने निकले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को दिल्ली पुलिस जबरन उठाकर हिरासत में ले लेती है। ये दो तस्वीरें देखिए, कैसे राहुल गांधी को उठाकर गाड़ी में डाला जाता है, और दूसरी तस्वीर में प्रियंका गांधी को देखिए, कैसे सड़क पर लेटी प्रियंका गांधी को उठाने के लिए पुलिस और केंद्रीय बलों को खासी मशक्कत करनी पड़ती है, और फिर प्रियंका गांधी को सड़क से उठाकर हिरासत में लिया जाता है। सड़क पर तगड़ा संग्राम छिड़ जाता है क्योंकि प्रियंका गांधी सड़क से उठने को तैयार नहीं होती है।
3: This is how they treat members of parliament who are asking simply to meet the election commissioner. This is how they treat us. Let them call their forces back. I will not move from here.
1: और अब आपको ज्ञानेश कुमार के खिलाफ छिड़े रण की पूरी टाइमलाइन दिखाते हैं। पहले राहुल गांधी कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन के सांसदों के साथ जनपद पर सागर रत्ना रेस्टोरेंट में लंच करते हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नया मोर्चा खोलने के लिए जंतर मंतर के लिए निकल पड़ते हैं।
7: प्रोटेस्ट साइट है जंतर मंतर, वहाँ पे हम जाकर सब आज फिर से बैठे और देश को बताएं कि हमारे लिए ज्ञानेश कुमार जी देश के लेजिटिमेट इलेक्शन कमिश्नर नहीं है। मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, मोहन भगवत, ज्ञानेश कुमार जी ने देश के लोकतंत्र को खत्म किया है, और मैंने कल भी कहा था जिन्होंने ये काम किया है ये देशद्रोही है और इन पर हम एक्शन लेंगे। मैं आपको अभी बता रहा हूँ ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा देना पड़ेगा।
8: इलेक्शन कमीशन कर रही है और मोदी जी करा रहे हैं, और जब मोदी जी ऐसी गलती करा रहे हैं इसका मतलब यह है कि इस देश में डेमोक्रेसी को खत्म करने की कोशिश वो कर रहे हैं।
6: are all here together. We are all here united. And we are all here without any egos. We will fight these guys.
9: जो ज्ञानेश है ना, ये इस देश का सबसे बड़ा गद्दा घोषित हो, इसे कोई नहीं बचा पाएगा। जहां ज्ञानेश मिलेगा वहीं खोजने जा रहे हैं, वहीं ढूंढेंगे जहां बंद करके इसको रखा हो।
10: ज्ञानेश की तलाश में आप जा रहे हैं?
9: क्या करेंगे, ज्ञानेश बोल ही नहीं रहा है और लॉ मिनिस्टर बोल ही नहीं रहा है, बीजेपी का प्रवक्ता ज्ञानेश को बचा रहा है।
1: राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ यलगार छेड़ दिया है। पहले आकाशवाणी भवन परिसर में 8 घंटे तक धरना और फिर जंतर मंतर से धावा बोलने के लिए राहुल, प्रियंका और इंडिया गठबंधन के 200 सांसद बस में सवार हो जाते हैं।
11: Narendra Modi government is an illegitimate government. Not only Ganesh Kumar, and Narendra Modi government also has to go. Writing is on the wall. They are seeing, they are afraid. That is why they are using a brutal force against us. But we are not intimidated.
1: उधर जंतर मंतर जैसे दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों की छावनी में तब्दील कर दिया जाता है, और जंतर मंतर चौराहे पर राहुल, प्रियंका समेत सभी विपक्षी सांसदों की बस रोक ली जाती है।
12: उनका इस्तीफा मांगना चाहती है क्योंकि हमें विश्वास नहीं है उनमें। ये जो चुनाव आयोग है ये किस लिए चलता है? इस देश की जनता के लिए। हम जनता के प्रतिनिधि हैं, 250 जनता के प्रतिनिधि, उनमें से एक एक प्रतिनिधि कम से कम 20 से 30 लाख लोगों के प्रतिनिधि हैं। और हम सच में कह रहे हैं कि हम शांतिपूर्वक जाएंगे, बात करेंगे। और ये सरकार इतनी कायर है, इतनी डरती है इस जनता की आवाज से कि हर जगह प्रदर्शन रोक रही है।
13: आपको लगता है हम यहाँ से हिल जाएंगे? क्या समझ रखा है इन लोगों ने? ये देश की राजधानी की यह हालत है।
14: ब्रूटली लाठी चार्ज कर रहे हैं, ये सीधे गुनहगार हैं। ज्ञानेश जी, अमित शाह जी और मोदी जी, ये विजुअल्स कई साल तक हमने नहीं देखे थे। ब्रुटैलिटी की इंतहा है। यू स्टैंड एक्सपोज।
1: बस का घेराव देखकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों बस से नीचे उतर आते हैं और वहीं सड़क पर बैठकर धरना देने लगते हैं। दिल्ली पुलिस के अफसर राहुल गांधी से बात कर उन्हें सड़क से उतरने के लिए कहते हैं। जबकि प्रियंका गांधी सड़क पर देखकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर देती हैं। ये सब देखकर जैसे पुलिस के हाथ पांव फूलने लगते हैं। फिर पुलिस प्रियंका गांधी को हटाने की कोशिश करती है, लेकिन प्रियंका गांधी तस से बस नहीं होती।
3: Their policemen have scratched me all over. They have thrown us to the ground, and now we are not going to move from here.
15: गुंडागर्दी, अरे इनका इतिहास क्या है? जरा पेज पलट के दिए तो नई नई शान पहन के घूम रहे होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, सबको मालूम इनका इरादा क्या है। तो अगर ये सोच रहे हैं कि हम डर के रुक जाएंगे, बेटा उनको बोल दो ये होने वाला नहीं।
1: काफी देर तक पुलिस और राहुल, प्रियंका के बीच एक संघर्ष चलता है। आखिर में दिल्ली पुलिस राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को सड़क से जबरन उठाकर ले जाती है और हिरासत में ले लेती है।
16: अमित शाह, नरेंद्र मोदी, ज्ञानेश कुमार, मोहन भगवत, एंड दे कैन डू ऑल दिस स्टफ, बट वी आर गोइंग टू ब्रिंग देम to justice. My guarantee that all four of them will be brought to justice.
1: ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर विपक्ष अड़ा हुआ है। राहुल और प्रियंका से पहले सुबह में लेफ्ट पार्टियां और आम आदमी पार्टी ने भी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लड़ाई बड़ी है। अब ये लड़ाई कहां तक जाएगी, आगे आगे देखते हैं होता है क्या। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
0: राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्ष के प्रदर्शन के दिल्ली पुलिस की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि पुलिस की तरफ से राहुल गांधी को रोकने की तैयारियां की जाती हैं, लेकिन राहुल पुलिस के बंदोबस्त को चकमा देते हुए नई जगह पर प्रदर्शन के लिए पहुंच जाते हैं। मतलब यही है कि दिल्ली पुलिस के नहले पर राहुल गांधी दहला चल रहे हैं।

0: मेरे पास 45 FIR है। मेरा लक्ष्य है कि मुझे 100 चाहिए। मैं चाहता हूं कि मेरे ऊपर 100 FIR लगे। हर FIR मेरे लिए एक मेडल है।
1: राहुल गांधी पर FIR दर्ज हो गई, लेकिन वो रुकेंगे नहीं, बल्कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे तक सड़क पर सीधी लड़ाई जारी रखेंगे। राहुल गांधी के इसी तेवर ने दिल्ली पुलिस की नींद उड़ा रखी है। दिल्ली पुलिस राहुल गांधी को रोकने के लिए पूरा होमवर्क करती है, लेकिन बीच में राहुल गांधी दिल्ली पुलिस की तमाम तैयारियों को चकमा दे देते हैं। बीते दिन संसद भवन से राहुल गांधी को चुनाव आयोग के दफ्तर जाना था। पुलिस की तैयारी यही थी कि राहुल गांधी को चुनाव आयोग के दफ्तर से पहले हिरासत में लिया जा सके, लेकिन राहुल गांधी पुलिस को चकमा देकर आकाशवाणी भवन में दाखिल हुए और धरने पर बैठ गए। कई घंटों के बाद दिल्ली पुलिस किसी तरह राहुल का धरना खत्म करवा पाई। पुलिस के हाथ पांव फूल गए। आज दिल्ली पुलिस को पहले से पता था कि विपक्ष के सांसदों के साथ राहुल गांधी जनपद के पास लंच करेंगे, उसके बाद आज जंतर मंतर जाएंगे। लिहाजा राहुल गांधी से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस के DCP ने अपने अधीनस्थों को खास ट्रेनिंग दी,
2: लाइक विद ऑल वेरी वेरी रिस्पेक्टफुली।
1: क्योंकि राहुल गांधी के दिमाग में क्या है, राहुल का प्लान क्या है, ये दिल्ली पुलिस के लिए किसी पहेली से कम नहीं था।
2: जो लोग सीधे सीधे चलने लग गए उनको आप आराम से ले जा ले जाके, कोशिश पहली यही होनी है कि आराम से प्यार से बोल के रेस्पेक्टफुली बोल के हम सबको ले जाएं और सबको बैठा लें, ठीक है। नेक्स्ट ये होने वाला है अपना कि क्योंकि सपोर्टर्स भी बहुत सारे होते हैं तो वो भी रेजिस्ट करते हैं, पकड़ लेते हैं, ग्रुप कर लेते हैं, ठीक है। मेल को फीमेल्स भी कर लेती हैं, पकड़ लेती हैं बहुत ज़ोर से, तो इन चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और बसेस, बस में बैठा दिया तो बस से निकल ना पाएं और बस के आगे की क्लैरिटी देनी पड़ेगी ताकि बस सीधा सीधा निकल जाए।
1: नई दिल्ली के DCP सचिन शर्मा उन पुलिस वालों को क्लास दे रहे हैं जिनके कंधों पर राहुल गांधी को रोकने की जिम्मेदारी है। राहुल गांधी लोकसभा में नेता विपक्ष हैं, लिहाजा आज DCP ने पुलिस वालों को हिरासत में लेने का पूरा तरीका समझाया।
2: सेंसिटिवली सारा अदब और रिस्पेक्टफुली इनको रिक्वेस्ट करते रहना है, ओरली हम रिक्वेस्ट करते रहेंगे सर, ऑनरेबल सर, ठीक है। तो वो चीज़ों का आप, हो सकता है काफ़ी सारे ऑनरेबल MPs को नहीं पहचानते हो, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ भी जो भी हो या तो उनके साथ वाला बता देता है, नहीं भी बताए तो ट्रीट एवरीबडी लाइक विद ऑल वेरी वेरी रिस्पेक्टफुली, ठीक है।
1: राहुल गांधी के एक्शन से दिल्ली पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि राहुल गांधी का प्लान दिल्ली पुलिस की तमाम तैयारियों पर भारी है। दिल्ली पुलिस की कोशिश है राहुल को धरने पर बैठने से रोकना, लेकिन राहुल मार्च भी निकाल रहे हैं और धरने पर भी बैठ रहे हैं। मतलब यही है कि दिल्ली पुलिस के तमाम तिक्रम को राहुल बार बार चकमा देने में कामयाब हो रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
3: दिल्ली में इंडिया गठबंधन ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया है। इससे पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी भी प्रदर्शन कर चुकी है, लेकिन दिल्ली के जंतर मंतर पर CJP की तरफ से 10 अक्टूबर को इसी मुद्दे पर प्रदर्शन का ऐलान किया गया। CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके ने ऐलान कर दिया है कि ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे तक जंतर मंतर पर CJP कार्यकर्ता डटे रहेंगे, जैसे पेपर लीक के मामले पर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था।
1: ज्ञानेश कुमार पर CJP का प्लान जंतर मंतर।
4: मैं ये कहना चाहता हूँ जहाँ रुकोगे उसी को जंतर मंतर बना दें, और कितने लोगों की आवाज उठाओगे, पूरा देश जंतर मंतर बन जाएगा अगर ज्ञानेश कुमार को हटाया नहीं, पूरा देश जंतर मंतर बन जाएगा।
1: 10 अक्टूबर को जंतर मंतर से नई लड़ाई।
5: जब भी दिल्ली पुलिस हमें रोके वहाँ पे हम लोग बैठ जाएंगे, वो कहलाएगा जंतर मंतर। हमारा यही प्लान होने वाला है, पूरा दिल्ली जंतर मंतर बनने वाला है।
1: केंद्र सरकार को CJP का सीधा अल्टीमेटम।
4: और आज ये लोग आते वोटिंग राइट छीनना चाहते, तो ये बात किसी पार्टी की नहीं, ये बात किसी आइडियोलॉजी की नहीं है, ये बात लोगों के फंडामेंटल राइट्स की है। अगर लोगों से उनका वोटिंग राइट छीना जाएगा तो क्या डेमोक्रेसी बचेगी? वन नेशन वन इलेक्शन ये स्लोगन है, लेकिन असली इंटेंशन है वन नेशन वन पार्टी।
1: चुनावी सिस्टम बदलने निकलेगी टीम CJP। अभिजीत दिपके का जंतर मंतर पार्ट 2।
4: क्योंकि कहीं ना कहीं जो 10 अक्टूबर को हमारा मार्च होने जा रहा है जंतर मंतर को, उसको लेकर सरकार डरी हुई है, जिसके कारण सोशल मीडिया पर भी इंस्टाग्राम पर भी इन्होंने जितने भी CJP से रिलेटेड कंटेंट है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है इंडिया।
1: पेपर लीक मामले में अभिजीत दिपके की अगुवाई में CJP ने दिल्ली के जंतर मंतर पर जून महीने में शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग के साथ आंदोलन शुरू किया था। दुनिया ने जेन जी की शक्ति देखी और आखिरकार सरकार को CJP की मांग के आगे झुकना पड़ा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, एक बार फिर अभिजीत दिपके जंतर मंतर पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर मंतर आ रहे हैं। 10 अक्टूबर को CJP ने जंतर मंतर पर देश भर के जेन जी को जुटने के लिए बुलाया है।
4: इसमें देखिए हमारी 3 डिमांड्स है। हम भी मानते हैं कि एक का रेजिग्नेशन लेकर कुछ बदलेगा नहीं। हमारी 3 डिमांड्स है। पहला डिमांड जो है वो ज्ञानेश कुमार का रेजिग्नेशन है, उसके साथ ही उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगने चाहिए। दूसरी हमारी डिमांड है कि SIR का जो रोल है वो फ्रीज होना चाहिए। और तीसरी डिमांड जो है, जो इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट होता है वो इंडिपेंडेंटली हो जाए, न्यूट्रली हो जाए। ऐसा ना हो कि अमित शाह और मोदी जी एक दिन दोनों साथ में बैठे नाश्ता करते हुए डिसाइड कर ले ये बंदा बड़ा सही है, ये अपने साइड का इसको बना देते भाई ये सही लग रहा है, ऐसा नहीं चल सकता।
1: जंतर मंतर पर प्रदर्शन को लेकर अभिजीत दिपके की 3 मांगे हैं। पहली मांग ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा और आपराधिक मुकदमा। दूसरी मांग देश भर में जारी SIR की प्रक्रिया तुरंत बंद होनी चाहिए। तीसरी मांग मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का सिस्टम बदले। दरअसल दिपके ने वोटर लिस्ट की SIR में कथित गड़बड़ियों का हवाला देते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की है। मतलब शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद अब दिपके मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर मंतर पर आर पार की लड़ाई लड़ने महाराष्ट्र से दिल्ली आ रहे हैं। दावा यही है कि देश का जेन जी अब चुनावी सिस्टम में मौजूद खामियों को दूर करके ही दम लेगा।
5: 10 अक्टूबर से देश बहुत बड़ा मोबिलाइजेशन देखने वाला है देश के युवाओं का, क्योंकि भले ही कांग्रेस जनता पार्टी ने ये कॉल दिया हो, लेकिन ये कॉल प्रोटेस्ट का देश के युवाओं का है, देश के जेन जी का है। देश का युवा 10 अक्टूबर से बाहर निकल रहा है एंड बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला है। जब तक ज्ञानू का रेजिग्नेशन नहीं हो जाता तब तक हम लोग वापस नहीं जाएंगे। जब तक ये सिस्टम नहीं बदल जाए, इलेक्टोरल सिस्टम, तब तक हम लोग बाहर नहीं जाएंगे, वापस नहीं जाएंगे घर।
1: दिल्ली पुलिस की तरफ से जंतर मंतर पर किसी भी तरह के प्रदर्शन पर रोक है। दिपके का कहना है कि पाबंदियों के पीछे सरकार का डर है। आरोप यही है कि महाराष्ट्र में CJP कार्यकर्ताओं को दिल्ली जाने से पुलिस रोक रही है।
4: लोगों को बताया पिछले कुछ दिनों से मैं महाराष्ट्र पुलिस की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहा था कि कैसे उन्होंने मुंबई में जो हमारा प्रोटेस्ट हुआ उसको कोऑपरेट किया, कहीं से भी दिल्ली पुलिस की तरह डंडा नहीं चलाया। लेकिन कहीं ना कहीं आज थोड़ा हार्ट ब्रेक हुआ है, क्योंकि एक तरफ हम बता रहे हैं कि महाराष्ट्र की पुलिस इस देश की सबसे बेस्ट पुलिस है, क्योंकि वो कभी भी ब्रूटल नहीं होती है दिल्ली पुलिस की तरह, दिल्ली पुलिस जिस तरीके से बच्चों को पीटती है। लेकिन आज ही CJP के वॉलंटियर्स को नोटिस आया है, उसमें ये पूछा है कि चंद्रपुर महाराष्ट्र से जो लोग दिल्ली जा रहे हैं वो कैसे जा रहे हैं, इसका पैसा कहाँ से आ रहा है। अब ट्रेन का 1,000-1,500 का जो खर्चा है, ट्रेन का टिकट है, उसका भी हिसाब पुलिस को देना पड़ेगा क्या? कुछ और काम बचा नहीं है पुलिस को।
1: CJP अध्यक्ष अभिजीत दिपके का आरोप है चंद्रपुर में उनके कार्यकर्ताओं को पुलिस की तरफ से नोटिस भेजा गया है। नोटिस में महाराष्ट्र से दिल्ली जाने वाले कार्यकर्ताओं से ट्रेन के टिकट का सोर्स पूछा गया है। पुलिस नोटिस पर भड़के दिपके ने पूछा है कि महाराष्ट्र पुलिस दिल्ली के जंतर मंतर पर होने वाले प्रोटेस्ट को लेकर नोटिस कैसे भेज सकती है।
4: एक चीज बोली है कि आप आंदोलन में चले गए तो आपके ऊपर लीगल एक्शन होगा। चंद्र पुलिस कौन होती है डिसाइड करने वाली कौन आंदोलन में जाएगा और कौन नहीं? और जंतर मंतर का आंदोलन चंद्रपुर पुलिस के अंदर कब से आ गया? क्या जंतर मंतर चंद्रपुर पुलिस के अंदर आता है? और तीसरी चीज कही जा रही है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस आंदोलन में मत जाइए, आंदोलन हिंसक है। चंद्रपुर पुलिस को, महाराष्ट्र पुलिस को कैसे पता पहले से ही कि आंदोलन हिंसक है? क्या पहले से ये लोग कुछ प्लान कर रहे हैं क्या?
1: बड़ी बात यह है कि दीपके ने ऐलान किया है कि वो गिरफ्तारी से नहीं डरते। अगर पुलिस ने जंतर मंतर जाने से रोका और जेल भेजा तो भी ये आंदोलन रुकेगा नहीं।
4: मैं कहना चाहता हूँ कि अरेस्ट करना है तो कर लो यार, यही बैठा हूँ मैं, उठा लो, 3 महीने नहीं 6 महीने रख दो, 1 साल रख दो, एनएसए लगाना है एनएसए लगा दो, यूएपीए लगाना है यूएपीए लगा दो, जो लगाना है लगा दो। अगर आपको लगता है अरेस्ट की धमकियां देकर या जेल का डर दिखाकर हम चुपचाप बैठेंगे तो ऐसा नहीं है। जब अमेरिका से आया था तब यही सोचकर आया था कि जेल जा रहा हूं, तो डालना है जेल में तो डाल दो, लेकिन उसके बाद भी हम लड़ते रहेंगे, डेमोक्रेसी को बचाने की बात है, उसके लिए हम लड़ते रहेंगे।
1: दीपके इसी मुद्दे पर मुंबई के शिवाजी पार्क में प्रदर्शन कर चुके हैं। पुलिस की मनाही के बावजूद ये प्रदर्शन हुआ। तब दीपके ने कहा था ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा नहीं हुआ तो वो दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने जाएंगे। सीजीपी के ऐलान ने दिल्ली पुलिस की नींदें उड़ा रखी हैं, क्योंकि दीपके का प्लान जंतर मंतर पर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एक बड़े आंदोलन को शुरू करना है। आज तक ब्यूरो।
3: पुणे में महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग के खिलाफ चल रहे छात्रों के आंदोलन पर आज बॉम्बे हाई कोर्ट में अहम सुनवाई हुई है। कोर्ट ने एक तरफ छात्रों की शिकायतों को गंभीर माना तो दूसरी तरफ उनसे आंदोलन खत्म कर पढ़ाई पर लौटने की अपील की। कोर्ट ने साफ कहा कि छात्र असामाजिक तत्व नहीं है और अगर परीक्षा प्रक्रिया में गड़बड़ी का शक है तो उन्हें विरोध करने का अधिकार है, लेकिन सड़कों पर जाम लगाकर आम लोगों को परेशान नहीं किया जा सकता।
6: पुणे में एमपीएससी यानी महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग के खिलाफ छात्रों के प्रदर्शन के 7वें दिन भी हंगामा जारी रहा। एमपीएससी की कथित गड़बड़ियों से नाराज छात्र ये कह रहे हैं कि एमपीएससी चेयरमैन के इस्तीफे तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा।
7: ये पेपर पूरी तरह से कैंसिल करना चाहिए, क्योंकि जो पेपर हुआ है ना वो पूरी तरह से मतलब पारदर्शक तरीके से नहीं हुआ। अगर ये पेपर कंडक्ट हो जाता है तो हमारे साथ अन्याय है, जो 80 लड़कियां वहां थी उनके साथ अन्याय है, और हम बहुत सालों से तैयारी कर रहे हैं, हम सब इस सिस्टम के शिकार हुए हैं। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सब नहीं, हम क्या 17-18 साल के बच्चे नहीं है, हम 25 साल से ऊपर के बच्चे हैं। हमको नौकरी चाहिए, हमको जॉब चाहिए, हमारा आगे का करियर पूरा पड़ा है। हम कब तक इनके शिकार पड़े, कब तक लाइब्रेरी में बैठ के 10-10, 12-12 घंटे पढ़ते रहे, बस पढ़ते ही रहे, कब हमको नौकरी लगेगी? इसके क्वेश्चन को, इसका आंसर कौन देगा? आज हम हर दूसरे दिन डिप्रेशन का शिकार होते हैं, हर दूसरे दिन कोई बच्चा आत्महत्या करता है, कोई क्या करता है। हमारी, हम सब गरीब बच्चे हैं, क्योंकि हम इस फील्ड में क्यों आए, क्योंकि अगर हम इंजीनियरिंग बनते हैं या डॉक्टर बनने जाते हैं तो वहाँ पैसा लगता है, पर हमारे पास पैसा नहीं है वहाँ जाने के लिए, इसीलिए हमने ये फील्ड चुनी है, एमपीएससी।
6: एक याचिका पर सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाई कोर्ट ने पुणे में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से अपनी पढ़ाई पर लौटने का अनुरोध किया है। साथ ही कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया कि वो महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग के खिलाफ आंदोलन कर रहे छात्रों की शिकायतों को दूर करने के लिए गंभीर प्रयास करे। चीफ जस्टिस एमसी त्रिपाठी ने कहा कि ज्यादातर छात्रों की दिलचस्पी धरना प्रदर्शन में नहीं बल्कि पढ़ाई में है, लेकिन अब पूरा माहौल खराब हो चुका है। भरोसा बहाल करने के लिए सरकार की तरफ से ईमानदार कोशिश होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि छात्र असामाजिक तत्व नहीं है, गड़बड़ी का शक है तो छात्रों को विरोध का पूरा अधिकार है। परीक्षा प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए, लेकिन सड़कों को जाम कर होने वाले आंदोलनों से आम लोगों को दिक्कत भी बर्दाश्त नहीं।
8: पुणे में चल रहे छात्रों के प्रदर्शन के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दाखिल हुई थी और इसी पिटीशन पर सुनवाई होने के बाद अब कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि छात्र जो पुणे में आ रहे हैं उन्हें आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन कोर्ट ने यह कहा है कि अलग अलग जगहों से जहां से वो छात्र आए हैं वे अब पढ़ाई पर ध्यान दें और 3 हफ्ते की मोहलत राज्य सरकार को दी गई है, क्योंकि इससे पहले जो पेपर लीक हुए हैं उनके लिए एसआईटी स्थापित हुई थी। तो छात्रों के मन में अब यह सवाल है कि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं हो रही, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की है कि सरकार को 3 हफ्ते की मोहलत दी जाएगी जिसमें सरकार इस पूरे मामले का रिपोर्ट दे दे।
6: आंदोलन से परेशान पुणे के नागरिकों ने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। याचिका में कहा गया छात्रों के आंदोलन से पूरे पुणे शहर को परेशानी हो रही है, जिससे ट्रैफिक पर बुरा असर पड़ा है, ऑफिस जाने वाले लोगों को परेशानी हो रही है, स्कूल कॉलेज पहुंचने वाले छात्रों को दिक्कत हो रही है, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की आवाजाही भी प्रभावित होने का दावा किया जा रहा है। स्थानीय लोगों को कथित धमकी और उत्पीड़न के आरोप के साथ आंदोलन कवर कर रहे पत्रकारों से कथित मारपीट की शिकायत की गई है।
9: कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रदर्शनकारी छात्र कोई समाज विरोधी या देश विरोधी तत्व नहीं है और परीक्षा प्रक्रिया में गड़बड़ी लगने पर उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने का पूरा अधिकार है। हालांकि कोर्ट ने अलका टॉकीज चौक पर हो रही जो रास्ता जाम है उस पर भी अपनी चिंता जताई और कहा कि लोगों को वहां से हट जाना चाहिए और जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। इसके साथ ही कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को अगले कुछ हफ्तों के अंदर परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी बनाने और उसको उठाए गए कदमों पर पूरा एक रोड मैप पेश करने का निर्देश दिया है, जबकि सरकार की ओर से कोर्ट में यही बताया गया कि छात्रों की अधिकांश मांगे पूरी कर दी गई हैं, लेकिन अब इस पूरे मामले की सुनवाई 25 नवंबर को होगी।
6: इधर एनसीपी शरद गुट के विधायक रोहित पवार ने साफ कर दिया है कि छात्रों की सभी मांगे पूरी होने तक प्रदर्शन जारी रहेगा।
10: 20-20 घंटा ये पढ़ाई कर रहे हैं और पेपर फूट रहा है। कल तक हम तो एमपीएससी के लिए लड़ रहे थे। अभी आज सुबह अगर आपने देखा होगा, महाज्योति करके एक डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, वहाँ पे जो ऑनलाइन पेपर था वहाँ पे भी बहुत सारे सेंटर में गड़बड़ हो गए। मतलब एक तो एमपीएससी की गड़बड़ हो गई, पेपर तो फूट गया, और यहाँ पे भी अगर अलग तरीके से मास कॉपिंग हो रहा है, मतलब ये तो अगर कॉन्स्टेंटली हर जगह हो रहा है तो अभी इसके लिए तो हमको लड़ना पड़ेगा। अभी कोर्ट ने कहा है कि जाके पढ़ाई करो, ये लोग बच्चे कह रहे पढ़ाई करके अगर पेपर फूटेगा 50,00,001,00,00 को अगर पेपर जाएगा वो पैसा हम गरीब होने के कारण हम कहाँ से लाएंगे। इसलिए बच्चों का कहना है कि अध्यक्ष को हटाओ, एमपीएससी का टोटल रिस्ट्रक्चरिंग कर लो, ट्रांसपेरेंसी ला दो एंड वी आर रेडी टू गिव द एग्जाम।
6: एडवोकेट जनरल मिलिंद साठे ने कोर्ट को बताया कि पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों के प्रति अब तक संयम बरता है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि पुणे की 70,00,000 आबादी को इन प्रदर्शनकारियों ने बंधक बना रखा है। सीएम फडणवीस भी कह रहे हैं कि छात्रों की ज्यादातर मांगे पहले ही मंजूर हो चुकी है।
11: एमपीएससी च्या विद्यार्थ्यांचं आंदोलन हे हायजॅक झालेलं आहे, ते आता पूर्णपणे राजकीय नेत्यांचं आंदोलन झालंय। एमपीएससी च्या विषयांपेक्षा त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या राजकीय विषयांवर भाषण होऊ लागलेली आहेत। एमपीएससीचं आंदोलन असताना मोदीजींचा विषय, देशाचा विषय, वेगवेगळे विषय त्या ठिकाणी येत आहेत जे पूर्णपणे राजकीय आहेत। की एमपीएससीच्या चेअरमनला हटवण्याचा अधिकार हा केवळ राष्ट्रपतींकडे आहे आणि तोही सुप्रीम कोर्टाला राष्ट्रपती सांगतात, सुप्रीम कोर्ट इन्क्वायरी करतं आणि त्यानंतर राष्ट्रपती तो काढू शकतात, तो आमच्या कोणाच्याही हातामध्ये नाही। त्यामुळे तुम्ही म्हणत असाल तर आम्ही ज्युडिशियल इन्क्वायरी करायला तयार आहोत, ते त्यांनी मान्य केलं। ती पेपर फूट झाली तेव्हा हे अध्यक्षच नव्हते, जॉईनच झालेले नव्हते, हे त्या एमपीएससीचे अध्यक्ष नसताना झालेल्या पेपर फुटीकरता त्यांचा राजीनामा घ्या आग्रह असताना राज्य सरकारने मान्य केलं की त्यांची निष्पक्ष चौकशी करून।
6: हायकोर्टने राज्य सरकार को भर्ती प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के निर्देश दिए हैं, साथ ही करीब 70,000 रिक्त पदों का विभाग और आरक्षण के आधार पर ब्यौरा देने और भर्ती प्रक्रिया का रोडमैप 3 हफ्ते में पेश करने को कहा है।
8: तो अब आपकी क्या मांग है? कोर्ट ने तो टिप्पणी कर दी है कि आपको पढ़ाई भी करनी चाहिए।
12: पढ़ाई, ये बात सच है, पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन उसके लिए वो जो एग्जाम है वो पारदर्शी, मतलब ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, होना चाहिए। ये तो मांग है ना हमारी, इसलिए हमने जो एमपीसी के चेयरमैन है उनका रेजिग्नेशन मांगा है।
8: देखो, बात यह है कि जितने भी मांगे पहले की गई थी वो सब एक्सेप्ट हो चुकी है, सिर्फ इस्तीफे की मांग बची है। तो क्या आपको क्या लगता है कि अब कोर्ट की टिप्पणी भी आ गई है तो आपको क्या करना चाहिए?
12: सर, वो जो अदर जो मांगे है ना जी, उसका कुछ मतलब नहीं रहेगा अगर इनका राजीनामा, जो रेजिग्नेशन है वो नहीं लिया तो, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी तो एग्जाम देने में कुछ मतलब नहीं है ना फिर।
6: कोर्ट ने छात्रों से कहा है कि जब मामला अदालत के सामने है तो उन्हें कोर्ट का भरोसा रखना चाहिए और अगर आंदोलन जारी रखना है तो प्रशासन से अनुमति लेकर वैकल्पिक जगह पर प्रदर्शन किया जाए।
8: महाराष्ट्र सरकार हो या फिर एमपीएससी यानी कि महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, उसे लेकर यहाँ के छात्रों के मन में कुछ सवाल है जिसके जवाब नहीं मिल रहे, और ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी, ये दोनों के जवाब कौन देगा, इसी पर पूरा आंदोलन की आगे एग्जैक्टली क्या होगा वो देखना अहम रहेगा। जवाब ले आज तक पूरे।
3: और इसी के साथ हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: हाई वोल्टेज सियासी ड्रामे के बीच हिरासत में लेने के बाद छोड़े गए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। आज पूरे देश में प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। ज्ञानेश कुमार पर सियासी घमासान तेज। खड़गे ने कहा तानाशाह मोदी सरकार और चुनाव आयोग के गठबंधन का पर्दाफाश। नितिन नवीन का पलटवार, अराजकता फैला रहे हैं राहुल गांधी। सीएम से पीएम तक जनसेवा में प्रधानमंत्री मोदी के 25 साल का एम्बिशन नहीं मिशन के लिए जीता हूं। कई शहरों में बीजेपी के कार्यक्रम। आडवाणी से मिले प्रधानमंत्री। यूपी में लड़ाई फिर 80-20 पर आई। राज्यसभा चुनाव के नतीजों पर सीएम योगी का एसपी पर तीखा तंज का। 2027 का परिणाम साफ। अखिलेश का पलटवार, घमंड का मिलेगा दंड। और दिल्ली के सीमापुरी इलाके में गिरी 4 मंजिला इमारत। अब तक 3 लोगों की मौत, अस्पताल में घायलों का इलाज जारी। सीसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आज कांग्रेस देश में प्रदर्शन करेगी। बुधवार को लगातार दूसरे दिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने सीसी के खिलाफ न सिर्फ संग्राम छेड़ा बल्कि दिल्ली पुलिस से भी टकरा गए। लगातार दूसरे दिन राहुल और प्रियंका को पुलिस ने जबरदस्ती धरने से उठाया और हिरासत में ले लिया। हालांकि बाद में पुलिस हिरासत में दोनों को रिहा कर दिया गया था।
1: राहुल की ललकार ज्ञानेश के खिलाफ यलगार।
2: हटाओ नहीं सर, मैं को हटा दे। कल भी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था।
1: पहले आकाशवाणी फिर जंतर मंतर के लिए कूच।
3: पुलिस में दे स्क्रैच मी ऑल ओवर, दे थ्रोन अस टू द ग्राउंड।
1: पुलिस ने रोका इंडिया गठबंधन की बस का रास्ता।
2: सर ये हजारों की भीड़ है, किसी को चोट लग जाए।
1: सड़क पर राहुल प्रियंका की हुंकार, ज्ञानेश पर आर पार।
3: Let them call their forces back. I will not move from here.
1: जंतर मंतर पर बैरिकेडिंग, सड़क पर ही छिड़ा संग्राम।
4: ऐसे नहीं होगा,
2: आप बताएं कैसे होगा?
4: आपने इसको धकेला नीचे।
1: तस्वीरें जंतर मंतर चौराहे की हैं। आप देख सकते हैं जंतर मंतर पर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ धरना देने निकले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को दिल्ली पुलिस जबरन उठाकर हिरासत में ले लेती है। ये दो तस्वीरें देखिए, कैसे राहुल गांधी को उठाकर गाड़ी में डाला जाता है। और दूसरी तस्वीर में प्रियंका गांधी को देखिए, कैसे सड़क पर लेटी प्रियंका गांधी को उठाने के लिए पुलिस और केंद्रीय बलों को खासी मशक्कत करनी पड़ती है। और फिर प्रियंका गांधी को सड़क से उठाकर हिरासत में लिया जाता है। सड़क पर तगड़ा संग्राम छिड़ जाता है क्योंकि प्रियंका गांधी सड़क से उठने को तैयार नहीं होती है।
3: दिस इज हाउ दे ट्रीट मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हु आर आस्किंग सिंपली टू मीट द इलेक्शन कमिश्नर। दिस इज हाउ दे ट्रीट अस। लेट देम कॉल देयर फोर्सेस बैक। आई विल नॉट मूव फ्रॉम हियर।
1: और अब आपको ज्ञानेश कुमार के खिलाफ छिड़े रण की पूरी टाइमलाइन दिखाते हैं। पहले राहुल गांधी कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन के सांसदों के साथ जनपद पर सागर रत्ना रेस्टोरेंट में लंच करते हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नया मोर्चा खोलने के लिए जंतर मंतर के लिए निकल पड़ते हैं।
5: प्रोटेस्ट साइट है जंतर मंतर, वहाँ पे हम जाकर सब आज फिर से बैठे और देश को बताएं कि हमारे लिए ज्ञानेश कुमार जी देश के लेजिटिमेट इलेक्शन कमिश्नर नहीं है। मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, मोहन भगवत, ज्ञानेश कुमार जी ने देश के लोकतंत्र को खत्म किया है। और मैंने कल भी कहा था जिन्होंने ये काम किया है ये देशद्रोही है और इन पर हम एक्शन लेंगे। मैं आपको अभी बता रहा हूँ ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा देना पड़ेगा।
6: इलेक्शन कमीशन कर रही है और मोदी जी करा रहे हैं, और जब मोदी जी ऐसी गलती करा रहे हैं इसका मतलब यह है कि इस देश में डेमोक्रेसी को खत्म करने की कोशिश वो कर रहे हैं।
7: वी आर ऑल हियर टुगेदर, वी आर ऑल हियर यूनाइटेड एंड वी आर ऑल हियर विदाउट एनी ईगोज, वी विल फाइट दिस गाइस।
8: जो ज्ञानेश है ना, ये इस देश का सबसे बड़ा गद्दा घोषित हो, इसे कोई नहीं बचा पाएगा। जहां ज्ञानेश मिलेगा वहीं खोजने जा रहे हैं, वहीं ढूंढेंगे, जहां बंद करके इसको रखा हो।
9: ज्ञानेश की तलाश में आप जा रहे हैं,
8: क्या करेंगे? ज्ञानेश बोल ही नहीं रहा है और लॉ मिनिस्टर बोल ही नहीं रहा है, बीजेपी का प्रवक्ता ज्ञानेश को बचा रहा है।
10: राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जलगार छेड़ दिया है। पहले आकाशवाणी भवन परिसर में 8 घंटे तक धरना और फिर जंतर मंतर से धावा बोलने के लिए राहुल, प्रियंका और इंडिया गठबंधन के 200 सांसद बस में सवार हो जाते हैं।
11: नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट इज अ इललेजिटिमेट गवर्नमेंट, नॉट ओनली ज्ञानेश कुमार, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ऑल्सो हैज टू गो, राइटिंग इज ऑन द वॉल, दे आर सीइंग, दे आर अफ्राइड, दैट इज व्हाई दे आर यूजिंग अ ब्रूटल फोर्स अगेंस्ट अस, बट वी आर नॉट इंटिमिडेटेड।
10: उधर जंतर मंतर जैसे दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों की छावनी में तब्दील कर दिया जाता है और जंतर मंतर चौराहे पर राहुल, प्रियंका समेत सभी विपक्षी सांसदों की बस रोक ली जाती है।
12: हम उनका इस्तीफा मांगना चाहते हैं क्योंकि हमें विश्वास नहीं है उन्हें। ये जो चुनाव आयोग है ये किस लिए चलता है? इस देश की जनता के लिए। हम जनता के प्रतिनिधि हैं, 250 जनता के प्रतिनिधि, उनमें से एक एक प्रतिनिधि कम से कम 20 से 30 लाख लोगों के प्रतिनिधि हैं और हम सच में कह रहे हैं कि हम शांतिपूर्वक जाएंगे, बात करेंगे। और ये सरकार इतनी कायर है, इतनी डरती है इस जनता की आवाज से कि हर जगह प्रदर्शन रोक रही है।
13: आपको लगता है हम यहाँ से हिल जाएंगे? क्या समझ रखा है इन लोगों ने? ये देश की राजधानी की ये हालत है।
14: ब्रूटली लाठीचार्ज कर रहे हैं, ये सीधे गुनहगार हैं। ज्ञानेश जी, अमित शाह जी और मोदी जी, ये विजुअल्स कई साल तक हमने नहीं देखे थे। ब्रुटैलिटी की इंतहा है। यू स्टैंड एक्सपोज।
10: बस का घेराव देखकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों बस से नीचे उतर आते हैं और वहीं सड़क पर बैठकर धरना देने लगते हैं। दिल्ली पुलिस के अफसर राहुल गांधी से बात कर उन्हें सड़क से उतरने के लिए कहते हैं। जबकि प्रियंका गांधी सड़क पर देखकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर देती हैं। ये सब देखकर जैसे पुलिस के हाथ पांव फूलने लगते हैं। फिर पुलिस प्रियंका गांधी को हटाने की कोशिश करती है लेकिन प्रियंका गांधी टस से बस नहीं होती।
3: Their policemen have scratched me all over. They have thrown us to the ground, and now we are not going to move from here.
15: गुंडागर्दी, अरे इनका इतिहास क्या है? जरा पेज पलट करिए तो नई नई शान पहन के घूम रहे होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, सबको मालूम इनका इरादा क्या है। तो अगर ये सोच रहे हैं कि हम डर के रुक जाएंगे, बेटा उनको बोल दो ये होने वाला नहीं।
10: काफी देर तक पुलिस और राहुल प्रियंका के बीच एक संघर्ष चलता है। आखिर में दिल्ली पुलिस राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को सड़क से जबरन उठाकर ले जाती है और हिरासत में ले लेती है।
16: अमित शाह, नरेंद्र मोदी, ज्ञानेश कुमार, मोहन भगवत एंड दे कैन डू ऑल दिस स्टफ बट वी आर गोइंग टू ब्रिंग देम
10: जस्टिस। ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर विपक्ष अड़ा हुआ है। राहुल और प्रियंका से पहले सुबह में लेफ्ट पार्टियां और आम आदमी पार्टी ने भी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लड़ाई बड़ी है, अब ये लड़ाई कहां तक जाएगी आगे आगे देखते हैं होता है क्या। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
0: राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्ष के प्रदर्शन के दिल्ली पुलिस की मुश्किलें बढ़ गई हैं क्योंकि पुलिस की तरफ से राहुल गांधी को रोकने की तैयारियां की जाती हैं लेकिन राहुल पुलिस के बंदोबस्त को चकमा देते हुए नई जगह पर प्रदर्शन के लिए पहुंच जाते हैं। मतलब यही है कि दिल्ली पुलिस के नहले पर राहुल गांधी दहला चल रही हैं।
17: 48 एफआईआर हैं, मेरा लक्ष्य है कि मुझे 100 चाहिए। मैं चाहता हूं कि मेरे ऊपर 100 एफआईआर लगे, हर एफआईआर मेरे लिए एक मेडल है।
10: राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज हो गई, लेकिन वो रुकेंगे नहीं बल्कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे तक सड़क पर सीधी लड़ाई जारी रखेंगे। राहुल गांधी के इसी तेवर ने दिल्ली पुलिस की नींद उड़ा रखी है। दिल्ली पुलिस राहुल गांधी को रोकने के लिए पूरा होमवर्क करती है, लेकिन बीच में राहुल गांधी दिल्ली पुलिस की तमाम तैयारियों को चकमा दे देते हैं। बीते दिन संसद भवन से राहुल गांधी को चुनाव आयोग के दफ्तर जाना था। पुलिस की तैयारी यही थी कि राहुल गांधी को चुनाव आयोग के दफ्तर से पहले हिरासत में लिया जा सके, लेकिन राहुल गांधी पुलिस को चकमा देकर आकाशवाणी भवन में दाखिल हुए और धरने पर बैठ गए। कई घंटों के बाद दिल्ली पुलिस किसी तरह राहुल का धरना खत्म करवा पाई। पुलिस के हाथ पांव फूल गए। आज दिल्ली पुलिस को पहले से पता था कि विपक्ष के सांसदों के साथ राहुल गांधी जनपद के पास लंच करेंगे, उसके बाद आज जंतर मंतर जाएंगे, लिहाजा राहुल गांधी से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस के डीसीपी ने अपने अधीनस्थों को खास ट्रेनिंग दी। क्योंकि राहुल गांधी के दिमाग में क्या है, राहुल का प्लान क्या है, ये दिल्ली पुलिस के लिए किसी पहेली से कम नहीं था।
18: जो लोग सीधे सीधे चलने लग गए उनको आप आराम से ले जा ले जाके, कोशिश पहली यही होनी है कि आराम से प्यार से बोल के रेस्पेक्टफुली बोल के हम सबको ले जाएं और सबको बैठा लें, ठीक है। नेक्स्ट ये होने वाला है अपना कि क्योंकि सपोर्टर्स भी बहुत सारे होते हैं तो वो भी रेजिस्ट करते हैं, पकड़ लेते हैं, ग्रुप कर लेते हैं, ठीक है, मेल को फीमेल्स भी कर लेती हैं, पकड़ लेती हैं बहुत जोर से, तो इन चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और बसेस, बस में बैठा दिया तो बस से निकल ना पाए और बस के आगे की क्लैरिटी देनी पड़ेगी ताकि बस सीधा सीधा निकल जाए।
10: नई दिल्ली के डीसीपी सचिन शर्मा उन पुलिस वालों को क्लास दे रहे हैं जिनके कंधों पर राहुल गांधी को रोकने की जिम्मेदारी है। राहुल गांधी लोकसभा में नेता विपक्ष हैं, लिहाजा आज डीसीपी ने पुलिस वालों को हिरासत में लेने का पूरा तरीका समझाया।
18: सेंसिटिवली सारा अदब और रिस्पेक्टफुली इनको रिक्वेस्ट करते रहना है, ओरली हम रिक्वेस्ट करते रहेंगे सर, ऑनरेबल सर, ठीक है, तो वो चीज़ों का आप हो सकता है काफ़ी सारे ऑनरेबल एमपीज को नहीं पहचानते हो, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ भी जो भी हो या तो उनके साथ वाला बता देता है, नहीं भी बताए तो ट्रीट एवरीबडी लाइक विद ऑल वेरी वेरी रिस्पेक्टफुली, ठीक है।
10: राहुल गांधी के एक्शन से दिल्ली पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि राहुल गांधी का प्लान दिल्ली पुलिस की तमाम तैयारियों पर भारी है। दिल्ली पुलिस की कोशिश है राहुल को धरने पर बैठने से रोकना, लेकिन राहुल मार्च भी निकाल रहे हैं और धरने पर भी बैठ रहे हैं। मतलब यही है कि दिल्ली पुलिस के तमाम तिकड़म को राहुल बार बार चकमा देने में कामयाब हो रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
0: दिल्ली में इंडिया गठबंधन ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया है। इससे पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी भी प्रदर्शन कर चुकी है, लेकिन दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी की तरफ से 10 अक्टूबर को इसी मुद्दे पर प्रदर्शन का ऐलान किया गया। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने ऐलान कर दिया है कि ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे तक जंतर मंतर पर सीजेपी कार्यकर्ता डटे रहेंगे, जैसे पेपर लीक के मामले पर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था।
10: ज्ञानेश कुमार पर सीजेपी का प्लान जंतर मंतर।
19: मैं ये कहना चाहता हूँ जहाँ रुकोगे उसी को जंतर मंतर बना दें, और कितने लोगों की आवाज उठाओगे, पूरा देश जंतर मंतर बन जाएगा अगर ज्ञानेश कुमार को हटाया नहीं, पूरा देश जंतर मंतर बन जाएगा।
10: 10 अक्टूबर को जंतर मंतर से नई लड़ाई।
20: जब भी दिल्ली पुलिस हमें रोके वहाँ पे हम लोग बैठ जाएंगे, वो कहलाएगा जंतर मंतर। हमारा यही प्लान होने वाला है, पूरा दिल्ली जंतर मंतर बनने वाला है।
10: केंद्र सरकार को सीजेपी का सीधा अल्टीमेटम।
19: और आज ये लोग आते वोटिंग राइट छीनना चाहते हैं, तो ये बात किसी पार्टी की नहीं, ये बात किसी आइडियोलॉजी की नहीं है, ये बात लोगों के फंडामेंटल राइट्स की है। अगर लोगों से उनका वोटिंग राइट छीना जाएगा तो क्या डेमोक्रेसी बचेगी? वन नेशन वन इलेक्शन, ये स्लोगन है लेकिन असली इंटेंशन है वन नेशन वन पार्टी।
10: चुनावी सिस्टम बदलने निकलेगी टीम CJP। अभिजीत दिपके का जंतर मंतर पार्ट टू।
19: क्योंकि कहीं ना कहीं जो 10 अक्टूबर को हमारा मार्च होने जा रहा है जंतर मंतर को, उसको लेकर सरकार डरी हुई है, जिसके कारण सोशल मीडिया पर भी इंस्टाग्राम पर भी इन्होंने जितने भी CJP से रिलेटेड कंटेंट है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है इंडिया।
10: पेपर लीक मामले में अभिजीत दिपके की अगुवाई में CJP ने दिल्ली के जंतर मंतर पर जून महीने में शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग के साथ आंदोलन शुरू किया था। दुनिया ने जेन जी की शक्ति देखी और आखिरकार सरकार को CJP की मांग के आगे झुकना पड़ा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, एक बार फिर अभिजीत दिपके जंतर मंतर पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर मंतर आ रहे हैं। 10 अक्टूबर को CJP ने जंतर मंतर पर देश भर के जेन जी को जुटने के लिए बुलाया है।
19: इसमें देखिए हमारी तीन डिमांड्स हैं। हम भी मानते हैं कि एक का रेजिग्नेशन लेकर कुछ बदलेगा नहीं। हमारी तीन डिमांड्स हैं। पहला डिमांड जो है वो ज्ञानेश कुमार का रेजिग्नेशन है, उसके साथ ही उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगने चाहिए। दूसरी हमारी डिमांड है कि SIR का जो रोल है वो फ्रीज होना चाहिए। और तीसरी डिमांड जो है, जो इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट होता है वो इंडिपेंडेंटली हो जाए, न्यूट्रली हो जाए। ऐसा ना हो कि अमित शाह और मोदी जी एक दिन दोनों साथ में बैठे नाश्ता करते हुए डिसाइड कर ले ये बंदा बड़ा सही है, ये अपने साइड का इसको बना देते भाई ये सही लग रहा है, ऐसा नहीं चल सकता।
10: जंतर मंतर पर प्रदर्शन को लेकर अभिजीत दिपके की तीन मांगे हैं। पहली मांग ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा और आपराधिक मुकदमा। दूसरी मांग देश भर में जारी SIR की प्रक्रिया तुरंत बंद होनी चाहिए। तीसरी मांग मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का सिस्टम बदले। दरअसल दिपके ने वोटर लिस्ट की SIR में कथित गड़बड़ियों का हवाला देते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की है। मतलब शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद अब दिपके मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर मंतर पर आर पार की लड़ाई लड़ने महाराष्ट्र से दिल्ली आ रहे हैं। दावा यही है कि देश का जेन जी अब चुनावी सिस्टम में मौजूद खामियों को दूर करके ही दम लेगा।
20: 10 अक्टूबर से देश बहुत बड़ा मोबिलाइजेशन देखने वाला है देश के युवाओं का, क्योंकि भले ही कांग्रेस जनता पार्टी ने ये कॉल दिया हो लेकिन ये कॉल प्रोटेस्ट का देश के युवाओं का है, देश के जेन जी का है। ये देश का युवा 10 अक्टूबर से बाहर निकल रहा है एंड बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला है। जब तक ज्ञानू का रेजिग्नेशन नहीं हो जाता तब तक हम लोग वापस नहीं जाएंगे। जब तक ये सिस्टम नहीं बदल जाए, इलेक्टोरल सिस्टम, तब तक हम लोग बाहर नहीं जाएंगे, वापस नहीं जाएंगे घर।
10: दिल्ली पुलिस की तरफ से जंतर मंतर पर किसी भी तरह के प्रदर्शन पर रोक है। दिपके का कहना है कि पाबंदियों के पीछे सरकार का डर है। आरोप यही है कि महाराष्ट्र में CJP कार्यकर्ताओं को दिल्ली जाने से पुलिस रोक रही है।
19: लोगों को बताया पिछले कुछ दिनों से मैं महाराष्ट्र पुलिस की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहा था कि कैसे उन्होंने मुंबई में जो हमारा प्रोटेस्ट हुआ उसको कोऑपरेट किया, कहीं से भी दिल्ली पुलिस की तरह डंडा नहीं चलाया। लेकिन कहीं ना कहीं आज थोड़ा हार्ट ब्रेक हुआ है, क्योंकि एक तरफ हम बता रहे हैं कि महाराष्ट्र की पुलिस इस देश की सबसे बेस्ट पुलिस है, क्योंकि वो कभी भी ब्रूटल नहीं होती है दिल्ली पुलिस की तरह, दिल्ली पुलिस जिस तरीके से बच्चों को पीटती है। लेकिन आज ही CJP के वॉलंटियर्स को नोटिस आया है, उसमें ये पूछा है कि चंद्रपुर महाराष्ट्र से जो लोग दिल्ली जा रहे हैं वो कैसे जा रहे हैं, इसका पैसा कहाँ से आ रहा है। अब ट्रेन का 1,000-1,500 का जो खर्चा है, ट्रेन का टिकट है, उसका भी हिसाब पुलिस को देना पड़ेगा क्या? कुछ और काम बचा नहीं है पुलिस को।
10: CJP अध्यक्ष अभिजीत दिपके का आरोप है चंद्रपुर में उनके कार्यकर्ताओं को पुलिस की तरफ से नोटिस भेजा गया है। नोटिस में महाराष्ट्र से दिल्ली जाने वाले कार्यकर्ताओं से ट्रेन के टिकट का सोर्स पूछा गया है। पुलिस नोटिस पर भड़के दिपके ने पूछा है कि महाराष्ट्र पुलिस दिल्ली के जंतर मंतर पर होने वाले प्रोटेस्ट को लेकर नोटिस कैसे भेज सकती है।
19: एक चीज बोली है कि आप आंदोलन में चले गए तो आपके ऊपर लीगल एक्शन होगा। चंद्र पुलिस कौन होती है डिसाइड करने वाली, कौन आंदोलन में जाएगा और कौन नहीं? और जंतर मंतर का आंदोलन चंद्रपुर पुलिस के अंदर कब से आ गया? क्या जंतर मंतर चंद्रपुर पुलिस के अंदर आता है? और तीसरी चीज कही जा रही है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस आंदोलन में मत जाइए, आंदोलन हिंसक है। चंद्रपुर पुलिस को, महाराष्ट्र पुलिस को कैसे पता पहले से ही कि आंदोलन हिंसक है? क्या पहले से ये लोग कुछ प्लान कर रहे हैं क्या?
10: बड़ी बात यह है कि दिपके ने ऐलान किया है कि वो गिरफ्तारी से नहीं डरते। अगर पुलिस ने जंतर मंतर जाने से रोका और जेल भेजा तो तो भी ये आंदोलन रुकेगा नहीं।
19: मैं कहना चाहता हूँ कि अरेस्ट करना है तो कर लो यार, यही बैठा हूँ मैं, उठा लो, 3 महीने नहीं 6 महीने रख दो, 1 साल रख दो, एनएसए लगाना है एनएसए लगा दो, यूएपीए लगाना है यूएपीए लगा दो, जो लगाना है लगा दो। अगर आपको लगता है अरेस्ट की धमकी देकर या जेल का डर दिखाकर हम चुपचाप बैठेंगे तो ऐसा नहीं है। जब अमेरिका से आया था तब यही सोचकर आया था कि जेल जा रहा हूं, तो डालना है जेल में तो डाल दो, लेकिन उसके बाद भी हम लड़ते रहेंगे डेमोक्रेसी।

0: सीजीपी के ऐलान ने दिल्ली पुलिस की नींदें उड़ा रखी हैं, क्योंकि दीपके का प्लान जंतर मंतर पर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एक बड़े आंदोलन को शुरू करना है। आज तक ब्यूरो।
1: पुणे में महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग के खिलाफ चल रहे छात्रों के आंदोलन पर आज बॉम्बे हाई कोर्ट में अहम सुनवाई हुई है। कोर्ट ने एक तरफ छात्रों की शिकायतों को गंभीर माना तो दूसरी तरफ उनसे आंदोलन खत्म कर पढ़ाई पर लौटने की अपील की। कोर्ट ने साफ कहा कि छात्र असामाजिक तत्व नहीं है और अगर परीक्षा प्रक्रिया में गड़बड़ी का शक है तो उन्हें विरोध करने का अधिकार है, लेकिन सड़कों पर जाम लगाकर आम लोगों को परेशान नहीं किया जा सकता।
2: पुणे में एमपीएससी यानी महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग के खिलाफ छात्रों के प्रदर्शन के सातवें दिन भी हंगामा जारी रहा। एमपीएससी की कथित गड़बड़ियों से नाराज छात्र ये कह रहे हैं कि एमपीएससी चेयरमैन के इस्तीफे तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा।
3: ये पेपर पूरी तरह से कैंसिल करना चाहिए, क्योंकि जो पेपर हुआ है ना वो पूरी तरह से मतलब पारदर्शक तरीके से नहीं हुआ। अगर ये पेपर कंडक्ट हो जाता है तो हमारे साथ अन्याय है। जो 80 लड़कियां वहां थी उनके साथ अन्याय है, और हम बहुत सालों से तैयारी कर रहे हैं, हम सब इस सिस्टम के शिकार हुए हैं। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सब नहीं, हम क्या 17-18 साल के बच्चे नहीं है, हम 25 साल से ऊपर के बच्चे हैं। हमको नौकरी चाहिए, हमको जॉब चाहिए, हमारा आगे का करियर पूरा पड़ा है। हम कब तक इनके शिकार पड़े, कब तक लाइब्रेरी में बैठ के 10-10, 12-12 घंटे पढ़ते रहे, बस पढ़ते ही रहे, कब हमको नौकरी लगेगी? इसके क्वेश्चन को इसका आंसर कौन देगा? आज हम हर दूसरे दिन डिप्रेशन का शिकार होते हैं, हर दूसरे दिन कोई बच्चा आत्महत्या करता है, कोई क्या करता है। हमारी हम सब गरीब बच्चे हैं, क्योंकि हम इस फील्ड में क्यों आए, क्योंकि अगर हम इंजीनियरिंग बनते हैं या डॉक्टर बनने जाते हैं तो वहाँ पैसा लगता है, पर हमारे पास पैसा नहीं है वहाँ जाने के लिए, इसीलिए हमने ये फील्ड चुनी एमपीएससी।
2: एक याचिका पर सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाई कोर्ट ने पुणे में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से अपनी पढ़ाई पर लौटने का अनुरोध किया है। साथ ही कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया कि वो महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग के खिलाफ आंदोलन कर रहे छात्रों की शिकायतों को दूर करने के लिए गंभीर प्रयास करे। चीफ जस्टिस एमसी त्रिपाठी ने कहा कि ज्यादातर छात्रों की दिलचस्पी धरना प्रदर्शन में नहीं बल्कि पढ़ाई में है, लेकिन अब पूरा माहौल खराब हो चुका है। भरोसा बहाल करने के लिए सरकार की तरफ से ईमानदार कोशिश होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि छात्र असामाजिक तत्व नहीं है, गड़बड़ी का शक है तो छात्रों को विरोध का पूरा अधिकार है। परीक्षा प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए, लेकिन सड़कों को जाम कर होने वाले आंदोलनों से आम लोगों को दिक्कत भी बर्दाश्त नहीं।
4: पुणे में चल रहे छात्रों के प्रदर्शन के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दाखिल हुई थी और इसी पिटीशन पर सुनवाई होने के बाद अब कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि छात्र जो पुणे में आ रहे हैं उन्हें आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन कोर्ट ने यह कहा है कि अलग अलग जगहों से जहां से वो छात्र आए हैं वे अब पढ़ाई पर ध्यान दें और 3 हफ्ते की मोहलत राज्य सरकार को दी गई है, क्योंकि इससे पहले जो पेपर लीक हुए हैं उनके लिए एसआईटी स्थापित हुई थी। तो छात्रों के मन में अब यह सवाल है कि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं हो रही, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की है कि सरकार को 3 हफ्ते की मोहलत दी जाएगी जिसमें सरकार इस पूरे मामले का रिपोर्ट दे दे।
2: आंदोलन से परेशान पुणे के नागरिकों ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। याचिका में कहा गया छात्रों के आंदोलन से पूरे पुणे शहर को परेशानी हो रही है, जिससे ट्रैफिक पर बुरा असर पड़ा है, ऑफिस जाने वाले लोगों को परेशानी हो रही है, स्कूल कॉलेज पहुंचने वाले छात्रों को दिक्कत हो रही है, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की आवाजाही भी प्रभावित होने का दावा किया जा रहा है। स्थानीय लोगों को कथित धमकी और उत्पीड़न के आरोप के साथ आंदोलन कवर कर रहे पत्रकारों से कथित मारपीट की शिकायत की गई है।
5: कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रदर्शनकारी छात्र कोई समाज विरोधी या देश विरोधी तत्व नहीं है और परीक्षा प्रक्रिया में गड़बड़ी लगने पर उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने का पूरा अधिकार है। हालांकि कोर्ट ने अलका टॉकीज चौक पर हो रही जो रास्ता जाम है उस पर भी अपनी चिंता जताई और कहा कि लोगों को वहां से हट जाना चाहिए और जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। इसके साथ ही कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को अगले कुछ हफ्तों के अंदर परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी बनाने और उसको उठाए गए कदमों पर पूरा एक रोड मैप पेश करने का निर्देश दिया है, जबकि सरकार की ओर से कोर्ट में यही बताया गया कि छात्रों की अधिकांश मांगे पूरी कर दी गई हैं, लेकिन अब इस पूरे मामले की सुनवाई 25 नवंबर को होगी।
2: इधर एनसीपी शरद गुट के विधायक रोहित पवार ने साफ कर दिया है कि छात्रों की सभी मांगे पूरी होने तक प्रदर्शन जारी रहेगा।
6: 20-20 घंटा ये पढ़ाई कर रहे हैं और पेपर फूट रहा है। कल तक हम तो एमपीएससी के लिए लड़ रहे थे, अभी आज सुबह अगर आपने देखा होगा महाज्योति करके एक डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, वहाँ पे जो ऑनलाइन पेपर था वहाँ पे भी बहुत सारे सेंटर में गड़बड़ हो गए। मतलब एक तो एमपीएससी की गड़बड़ हो गई, पेपर तो फूट गया,

0: और यहाँ पे भी अगर अलग तरीके से मास कॉपिंग हो रहा है, मतलब ये तो अगर कॉन्स्टेंटली हर जगह हो रहा है तो अभी इसके लिए तो हमको लड़ना पड़ेगा। अभी कोर्ट ने कहा है कि जाके पढ़ाई करो, ये लोग बच्चे कह रहे पढ़ाई करके अगर पेपर फूटेगा 50 लाख 1 करोड़ को अगर पेपर जाएगा, वो पैसा हम गरीब होने के कारण हम कहाँ से लाएंगे। इसलिए बच्चों का कहना है कि अध्यक्ष को हटाओ, MPSC का टोटल रिस्ट्रक्चरिंग कर लो, ट्रांसपेरेंसी ला दो, एंड वी आर रेडी टू गिव द एग्जाम्स।
1: एडवोकेट जनरल मिलिंद साठे ने कोर्ट को बताया कि पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों के प्रति अब तक संयम बरता है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि पुणे की 70 लाख आबादी को इन प्रदर्शनकारियों ने बंधक बना रखा है। सीएम फडणवीस भी कह रहे हैं कि छात्रों की ज्यादातर मांगे पहले ही मंजूर हो चुकी है।
2: MPSC च्या विद्यार्थ्यांचं आंदोलन हे हायजॅक झालेलं आहे, ते आता पूर्णपणे राजकीय नेत्यांचं आंदोलन झालंय। MPSC च्या विषयांपेक्षा त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या राजकीय विषयांवर भाषण होऊ लागलेली आहेत। MPSC आंदोलन असताना मोदीजींचा विषय, देशाचा विषय, वेगवेगळे विषय त्या ठिकाणी येतात जे पूर्णपणे राजकीय आहेत। की MPSC चेअरमनला हटवण्याचा अधिकार हा केवळ राष्ट्रपतींकडे आहे आणि तोही सुप्रीम कोर्टाला राष्ट्रपती सांगतात, सुप्रीम कोर्ट इन्क्वायरी करतो आणि त्यानंतर राष्ट्रपती तो काढू शकतात, तो आमच्या कोणाच्याही हातामध्ये नाही। त्यामुळे तुम्ही म्हणत असाल तर आम्ही ज्युडिशियल इन्क्वायरी करायला तयार आहोत, ते त्यांनी मान्य केलं। ती पेपर फूट झाली तेव्हा हे अध्यक्षच नव्हते, जॉईनच झालेले नव्हते, हे त्या MPSC अध्यक्ष नसताना झालेल्या पेपर फुटी करता त्यांचा राजीनामा घ्या आग्रह असताना राज्य सरकारने मान्य केलं की त्यांची निष्पक्ष चौकशी करून।
1: हायकोर्ट ने राज्य सरकार को भर्ती प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के निर्देश दिए हैं, साथ ही करीब 70,000 रिक्त पदों का विभाग और आरक्षण के आधार पर ब्यौरा देने और भर्ती प्रक्रिया का रोडमैप 3 हफ्ते में पेश करने को कहा है।
3: तो अब अभी क्या मांगे, कोर्ट ने तो टिप्पणी कर दी कि आपको पढ़ाई भी करनी चाहिए।
4: पढ़ाई, ये बात सच है, पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन उसके लिए वो जो एग्जाम है वो पारदर्शी, मतलब ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ये तो मांग है ना हमारी, इसलिए हमने जो MPSC के चेयरमैन है उनका रेजिग्नेशन मांगा है।
3: देखो बात यह है कि जितने भी मांगे पहले की गई थी वो सब एक्सेप्ट हो चुकी है, सिर्फ इस्तीफे की मांग बची है। तो क्या आपको क्या लगता है कि अब कोर्ट की टिप्पणी भी आ गई है तो आपको क्या करना चाहिए?
4: सर वो जो अदर जो मांगे है ना
3: जी,
4: उसका कुछ मतलब नहीं रहेगा अगर इनका राजीनामा, जो रेजिग्नेशन है वो नहीं लिया तो, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी तो एग्जाम देने में कुछ मतलब नहीं है ना फिर।
1: कोर्ट ने छात्रों से कहा है कि जब मामला अदालत के सामने है तो उन्हें कोर्ट का भरोसा रखना चाहिए और अगर आंदोलन जारी रखना है तो प्रशासन से अनुमति लेकर वैकल्पिक जगह पर प्रदर्शन किया जाए।
3: महाराष्ट्र सरकार हो या फिर MPSC यानी कि महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, उसे लेकर यहाँ के छात्रों के मन में कुछ सवाल है जिसके जवाब नहीं मिल रहे, और ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी, ये दोनों के जवाब कौन देगा, इसी पर पूरा आंदोलन की आगे एग्जैक्टली क्या होगा वो देखना अहम रहेगा। जवाब ले आज तक पूरे।
5: और इसी के साथ हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: हरियाणा की सियासत का सबसे बड़ा मंच, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ हर सवाल पर होगी खुलकर बात। देखिए पंचायत आज तक हरियाणा 8 अक्टूबर दिन भर सिर्फ आज तक पर।
1: रियल्टी पार्टनर TDI इंफ्राटेक नॉर्थ इंडियाज लीडिंग टाउनशिप डेवलपर।
2: हेल्थ पार्टनर वृंदा लाइफ, वी आर नोन फॉर क्वालिटी मेडिसिंस।
3: बैंकिंग पार्टनर पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
4: स्पेशल पार्टनर ग्रेट खलीज चॉइस फॉर पावरफुल फिटनेस लिफ्ट्स बाय पोलो एलिवेटर्स।

0: हाई वोल्टेज सियासी ड्रामे के बीच हिरासत में लेने के बाद छोड़े गए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, आज पूरे देश में प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। ज्ञानेश कुमार पर सियासी घमासान तेज, खड़गे ने कहा तानाशाह मोदी सरकार और चुनाव आयोग के गठबंधन का पर्दाफाश, नितिन नवीन का पलटवार, अराजकता फैला रहे हैं राहुल गांधी। सीएम से पीएम तक जनसेवा में प्रधानमंत्री मोदी के 25 साल का एम्बिशन नहीं मिशन के लिए जीता हूं, कई शहरों में बीजेपी के कार्यक्रम, आडवाणी से मिले प्रधानमंत्री। यूपी में लड़ाई फिर 80-20 पर आई, राज्यसभा चुनाव के नतीजों पर सीएम योगी का एसपी पर तीखा तंज का, 2027 का परिणाम साफ, अखिलेश का पलटवार, घमंड का मिलेगा दंड। और दिल्ली के सीमापुरी इलाके में गिरी 4 मंजिला इमारत, अब तक 3 लोगों की मौत, अस्पताल में घायलों का इलाज जारी। सीसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आज कांग्रेस देश में प्रदर्शन करेगी। बुधवार को लगातार दूसरे दिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने सीसी के खिलाफ न सिर्फ संग्राम छेड़ा बल्कि दिल्ली पुलिस से भी टकरा गए। लगातार दूसरे दिन राहुल और प्रियंका को पुलिस ने जबरदस्ती धरने से उठाया और हिरासत में ले लिया, हालांकि बाद में पुलिस हिरासत में दोनों को रिहा कर दिया गया था।
1: राहुल की ललकार ज्ञानेश के खिलाफ गलगार।
2: हटाओ नहीं,
1: पहले आकाशवाणी फिर जंतर मंतर के लिए कूच।
3: पुलिस मेंबर्स हैव स्क्रैच्ड मी ऑल ओवर, दे हैव थ्रोन अस टू द ग्राउंड।
1: पुलिस ने रोका इंडिया गठबंधन की बस का रास्ता।
4: सर ये हजारों की भीड़ है, किसी को चोट लग गई।
1: सड़क पर राहुल प्रियंका की हुंकार, ज्ञानेश पर आर पार।
3: Let them call their forces back. I will not move from here.
1: जंतर मंतर पर बैरिकेडिंग, सड़क पर ही छिड़ा संग्राम।
5: ऐसे नहीं होगा,
6: आप बताएं कैसे होगा?
5: आपने इसको धकेला नीचे।
1: तस्वीरें जंतर मंतर चौराहे की हैं। आप देख सकते हैं जंतर मंतर पर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ धरना देने निकले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को दिल्ली पुलिस जबरन उठाकर हिरासत में ले लेती है। ये दो तस्वीरें देखिए, कैसे राहुल गांधी को उठाकर गाड़ी में डाला जाता है, और दूसरी तस्वीर में प्रियंका गांधी को देखिए, कैसे सड़क पर लेटी प्रियंका गांधी को उठाने के लिए पुलिस और केंद्रीय बलों को खासी मशक्कत करनी पड़ती है, और फिर प्रियंका गांधी को सड़क से उठाकर हिरासत में लिया जाता है। सड़क पर तगड़ा संग्राम छिड़ जाता है क्योंकि प्रियंका गांधी सड़क से उठने को तैयार नहीं होती है।
3: This is how they treat members of parliament who are asking simply to meet the election commissioner. This is how they treat us. Let them call their forces back. I will not move from here.
1: और अब आपको ज्ञानेश कुमार के खिलाफ छिड़े रण की पूरी टाइमलाइन दिखाते हैं। पहले राहुल गांधी कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन के सांसदों के साथ जनपद पर सागर रत्ना रेस्टोरेंट में लंच करते हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नया मोर्चा खोलने के लिए जंतर मंतर के लिए निकल पड़ते हैं।
7: प्रोटेस्ट साइट है जंतर मंतर, वहाँ पे हम जाकर सब आज फिर से बैठे और देश को बताएं कि हमारे लिए ज्ञानेश कुमार जी देश के लेजिटिमेट इलेक्शन कमिश्नर नहीं है। मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, मोहन भगवत, ज्ञानेश कुमार जी ने देश के लोकतंत्र को खत्म किया है, और मैंने कल भी कहा था जिन्होंने ये काम किया है ये देशद्रोही है और इन पर हम एक्शन लेंगे। मैं आपको अभी बता रहा हूँ ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा देना पड़ेगा।
8: इलेक्शन कमीशन कर रही है और मोदी जी करा रहे हैं, और जब मोदी जी ऐसी गलती करा रहे हैं इसका मतलब यह है कि इस देश में डेमोक्रेसी को खत्म करने की कोशिश वो कर रहे हैं।
6: are all here together. We are all here united. And we are all here without any egos. We will fight these guys.
9: जो ज्ञानेश है ना, ये इस देश का सबसे बड़ा गद्दा घोषित हो, इसे कोई नहीं बचा पाएगा। जहां ज्ञानेश मिलेगा वहीं खोजने जा रहे हैं, वहीं ढूंढेंगे जहां बंद करके इसको रखा हो।
10: ज्ञानेश की तलाश में आप जा रहे हैं?
9: क्या करेंगे, ज्ञानेश बोल ही नहीं रहा है और लॉ मिनिस्टर बोल ही नहीं रहा है, बीजेपी का प्रवक्ता ज्ञानेश को बचा रहा है।
1: राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ यलगार छेड़ दिया है। पहले आकाशवाणी भवन परिसर में 8 घंटे तक धरना और फिर जंतर मंतर से धावा बोलने के लिए राहुल, प्रियंका और इंडिया गठबंधन के 200 सांसद बस में सवार हो जाते हैं।
11: Narendra Modi government is a illegitimate government. Not only Ganesh Kumar, and Narendra Modi government also has to go. Writing is on the wall. They are seeing, they are afraid. That is why they are using a brutal force against us. But we are not intimidated.
1: उधर जंतर मंतर जैसे दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों की छावनी में तब्दील कर दिया जाता है, और जंतर मंतर चौराहे पर राहुल, प्रियंका समेत सभी विपक्षी सांसदों की बस रोक ली जाती है।
12: उनका इस्तीफा मांगना चाहती है क्योंकि हमें विश्वास नहीं है उन्हें। ये जो चुनाव आयोग है ये किस लिए चलता है? इस देश की जनता के लिए। हम जनता के प्रतिनिधि हैं, 250 जनता के प्रतिनिधि, उनमें से एक एक प्रतिनिधि कम से कम 20 से 30 लाख लोगों के प्रतिनिधि हैं। और हम सच में कह रहे हैं कि हम शांतिपूर्वक जाएंगे, बात करेंगे। और ये सरकार इतनी कायर है, इतनी डरती है इस जनता की आवाज से कि हर जगह प्रदर्शन रोक रही है।
13: आपको लगता है हम यहाँ से हिल जाएंगे? क्या समझ रखा है इन लोगों ने? ये देश की राजधानी की ये हालत है?
14: ब्रूटली लाठीचार्ज कर रहे हैं, ये सीधे गुनहगार हैं। ज्ञानेश जी, अमित शाह जी और मोदी जी, ये विजुअल्स कई साल तक हमने नहीं देखे थे। ब्रूटालिटी की इंतहा है। यू स्टैंड एक्सपोज।
1: बस का घेराव देखकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों बस से नीचे उतर आते हैं और वहीं सड़क पर बैठकर धरना देने लगते हैं। दिल्ली पुलिस के अफसर राहुल गांधी से बात कर उन्हें सड़क से उतरने के लिए कहते हैं। जबकि प्रियंका गांधी सड़क पर देखकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर देती हैं। ये सब देखकर जैसे पुलिस के हाथ पांव फूलने लगते हैं। फिर पुलिस प्रियंका गांधी को हटाने की कोशिश करती है, लेकिन प्रियंका गांधी टस से मस नहीं होती।
3: Their policemen have scratched me all over. They have thrown us to the ground, and now we are not going to move from here.
15: गुंडागर्दी? अरे इनका इतिहास क्या है? जरा पेज पलट करिए तो नई नई शान पहन के घूम रहे होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, सबको मालूम इनका इरादा क्या है। तो अगर ये सोच रहे हैं कि हम डर के रुक जाएंगे, बेटा उनको बोल दो ये होने वाला नहीं।
1: काफी देर तक पुलिस और राहुल, प्रियंका के बीच एक संघर्ष चलता है। आखिर में दिल्ली पुलिस राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को सड़क से जबरन उठाकर ले जाती है और हिरासत में ले लेती है।
16: अमित शाह, नरेंद्र मोदी, ज्ञानेश कुमार, मोहन भगवत, एंड दे कैन डू ऑल दिस स्टफ, बट वी आर गोइंग टू ब्रिंग देम to justice. My guarantee that all four of them will be brought to justice.
1: ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर विपक्ष अड़ा हुआ है। राहुल और प्रियंका से पहले सुबह में लेफ्ट पार्टियां और आम आदमी पार्टी ने भी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लड़ाई बड़ी है। अब ये लड़ाई कहां तक जाएगी, आगे आगे देखते हैं होता है क्या। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
0: राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्ष के प्रदर्शन के दिल्ली पुलिस की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि पुलिस की तरफ से राहुल गांधी को रोकने की तैयारियां की जाती हैं, लेकिन राहुल पुलिस के बंदोबस्त को चकमा देते हुए नई जगह पर प्रदर्शन के लिए पहुंच जाते हैं। मतलब यही है कि दिल्ली पुलिस के नहले पर राहुल गांधी दहला चल रहे हैं।
17: 45 एफआईआर हैं, मेरा लक्ष्य है कि मुझे 100 चाहिए। मैं चाहता हूं कि मेरे ऊपर 100 एफआईआर लगे, हर एफआईआर मेरे लिए एक मेडल है।
1: राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज हो गई, लेकिन वो रुकेंगे नहीं बल्कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे तक सड़क पर सीधी लड़ाई जारी रखेंगे। राहुल गांधी के इसी तेवर ने दिल्ली पुलिस की नींद उड़ा रखी है। दिल्ली पुलिस राहुल गांधी को रोकने के लिए पूरा होमवर्क करती है, लेकिन बीच में राहुल गांधी दिल्ली पुलिस की तमाम तैयारियों को चकमा दे देते हैं। बीते दिन संसद भवन से राहुल गांधी को चुनाव आयोग के दफ्तर जाना था। पुलिस की तैयारी यही थी कि राहुल गांधी को चुनाव आयोग के दफ्तर से पहले हिरासत में लिया जा सके, लेकिन राहुल गांधी पुलिस को चकमा देकर आकाशवाणी भवन में दाखिल हुए और धरने पर बैठ गए। कई घंटों के बाद दिल्ली पुलिस किसी तरह राहुल का धरना खत्म करवा पाई। पुलिस के हाथ पांव फूल गए। आज दिल्ली पुलिस को पहले से पता था कि विपक्ष के सांसदों के साथ राहुल गांधी जनपद के पास लंच करेंगे, उसके बाद आज जंतर मंतर जाएंगे। लिहाजा राहुल गांधी से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस के डीसीपी ने अपने अधीनस्थों को खास ट्रेनिंग दी,
18: विद ऑल वेरी वेरी रिस्पेक्टफुली।
1: क्योंकि राहुल गांधी के दिमाग में क्या है, राहुल का प्लान क्या है, ये दिल्ली पुलिस के लिए किसी पहेली से कम नहीं था।
18: जो लोग सीधे सीधे चलने लग गए उनको आप आराम से ले जाके कोशिश पहली यही होनी है कि आराम से प्यार से बोल के रेस्पेक्टफुली बोल के हम सबको ले जाएं और सबको बिठा लें, ठीक है। नेक्स्ट ये होने वाला है अपना कि क्योंकि सपोर्टर्स भी बहुत सारे होते हैं तो वो भी रेजिस्ट करते हैं, पकड़ लेते हैं, ग्रुप कर लेते हैं, ठीक है। मेल को फीमेल्स भी कर लेती हैं, पकड़ लेती हैं बहुत जोर से, तो इन चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और बसेस, बस में बैठा दिया तो बस से निकल ना पाए और बस के आगे की क्लैरिटी देनी पड़ेगी ताकि बस सीधा सीधा निकल जाए।
1: नई दिल्ली के डीसीपी सचिन शर्मा उन पुलिस वालों को क्लास दे रहे हैं जिनके कंधों पर राहुल गांधी को रोकने की जिम्मेदारी है। राहुल गांधी लोकसभा में नेता विपक्ष हैं, लिहाजा आज डीसीपी ने पुलिस वालों को हिरासत में लेने का पूरा तरीका समझाया।
18: सेंसिटिवली, सारा अदब और रिस्पेक्टफुली इनको रिक्वेस्ट करते रहना है। ओरली हम रिक्वेस्ट करते रहेंगे सर, ऑनरेबल सर, ठीक है। तो वो चीज़ों का आप, हो सकता है काफ़ी सारे ऑनरेबल एमपीज को नहीं पहचानते हो, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ भी जो भी हो या तो उनके साथ वाला बता देता है, नहीं भी बताए तो ट्रीट एवरीबडी लाइक विद ऑल वेरी वेरी रिस्पेक्टफुली, ठीक है।
1: राहुल गांधी के एक्शन से दिल्ली पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि राहुल गांधी का प्लान दिल्ली पुलिस की तमाम तैयारियों पर भारी है। दिल्ली पुलिस की कोशिश है राहुल को धरने पर बैठने से रोकना, लेकिन राहुल मार्च भी निकाल रहे हैं और धरने पर भी बैठ रहे हैं। मतलब यही है कि दिल्ली पुलिस के तमाम तिकड़म को राहुल बार बार चकमा देने में कामयाब हो रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
0: दिल्ली में इंडिया गठबंधन ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया है। इससे पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी भी प्रदर्शन कर चुकी है, लेकिन दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी की तरफ से 10 अक्टूबर को इसी मुद्दे पर प्रदर्शन का ऐलान किया गया। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने ऐलान कर दिया है कि ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे तक जंतर मंतर पर सीजेपी कार्यकर्ता डटे रहेंगे, जैसे पेपर लीक के मामले पर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था।
1: ज्ञानेश कुमार पर सीजेपी का प्लान जंतर मंतर।
19: मैं ये कहना चाहता हूँ जहाँ रुकोगे उसी को जंतर मंतर बना दें और कितने लोगों की आवाज बढ़ा होगा, पूरा देश जंतर मंतर बन जाएगा अगर ज्ञानेश कुमार को हटाया नहीं, पूरा देश जंतर मंतर बन जाएगा।
1: 10 अक्टूबर को जंतर मंतर से नई लड़ाई।
20: जब भी दिल्ली पुलिस हमें रोके वहाँ पे हम लोग बैठ जाएंगे, वो कहलाएगा जंतर मंतर। हमारा यही प्लान होने वाला है, पूरा दिल्ली जंतर मंतर बनने वाला है।
1: केंद्र सरकार को सीजेपी का सीधा अल्टीमेटम।
19: और आज ये लोग आकर वोटिंग राइट्स छीनना चाहते हैं, तो ये बात किसी पार्टी की नहीं, ये बात किसी आइडियोलॉजी की नहीं है, ये बात लोगों के फंडामेंटल राइट्स की है। अगर लोगों से उनका वोटिंग राइट छीना जाएगा तो क्या डेमोक्रेसी बचेगी? वन नेशन वन इलेक्शन, ये स्लोगन है लेकिन असली इंटेंशन है वन नेशन वन पार्टी।
1: चुनावी सिस्टम बदलने निकलेगी टीम CJP। अभिजीत दिपके का जंतर मंतर पार्ट 2।
19: क्योंकि कहीं ना कहीं जो 10 अक्टूबर को हमारा मार्च होने जा रहा है जंतर मंतर को, उसको लेकर सरकार डरी हुई है, जिसके कारण सोशल मीडिया पर भी इंस्टाग्राम पर भी इन्होंने जितने भी CJP से रिलेटेड कंटेंट है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है इंडिया।
1: पेपर लीक मामले में अभिजीत दिपके की अगुवाई में CJP ने दिल्ली के जंतर मंतर पर जून महीने में शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग के साथ आंदोलन शुरू किया था। दुनिया ने जेन जी की शक्ति देखी और आखिरकार सरकार को CJP की मांग के आगे झुकना पड़ा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, एक बार फिर अभिजीत दिपके जंतर मंतर पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर मंतर आ रहे हैं। 10 अक्टूबर को CJP ने जंतर मंतर पर देश भर के जेन जी को जुटने के लिए बुलाया है।
19: इसमें देखिए हमारी 3 डिमांड्स है। हम भी मानते हैं कि एक का रेजिग्नेशन लेकर कुछ बदलेगा नहीं। हमारी 3 डिमांड्स है। पहला डिमांड जो है वो ज्ञानेश कुमार का रेजिग्नेशन है, उसके साथ ही उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगने चाहिए। दूसरी हमारी डिमांड है कि SIR का जो रोल है वो फ्रीज होना चाहिए। और तीसरी डिमांड जो है, जो इलेक्शन कमीशनर का अपॉइंटमेंट होता है वो इंडिपेंडेंटली हो जाए, न्यूट्रली हो जाए। ऐसा ना हो कि अमित शाह और मोदी जी एक दिन दोनों साथ में बैठे नाश्ता करते हुए डिसाइड कर ले ये बंदा बड़ा सही है, ये अपने साइड का इसको बना देते भाई ये सही लग रहा है, ऐसा नहीं चल सकता।
1: जंतर मंतर पर प्रदर्शन को लेकर अभिजीत दिपके की 3 मांगे हैं। पहली मांग ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा और आपराधिक मुकदमा। दूसरी मांग देश भर में जारी SIR की प्रक्रिया तुरंत बंद होनी चाहिए। तीसरी मांग मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का सिस्टम बदले। दरअसल दिपके ने वोटर लिस्ट की SIR में कथित गड़बड़ियों का हवाला देते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की है। मतलब शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद अब दिपके मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर मंतर पर आर पार की लड़ाई लड़ने महाराष्ट्र से दिल्ली आ रहे हैं। दावा यही है कि देश का जेन जी अब चुनावी सिस्टम में मौजूद खामियों को दूर करके ही दम लेगा।
20: 10 अक्टूबर से देश बहुत बड़ा मोबिलाइजेशन देखने वाला है देश के युवाओं का, क्योंकि भले ही कांग्रेस जनता पार्टी ने ये कॉल दिया हो लेकिन ये कॉल प्रोटेस्ट का देश के युवाओं का है, देश के जेंजी का है। ये देश का युवा 10 अक्टूबर से बाहर निकल रहा है एंड बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला है। जब तक ज्ञानू का रेजिग्नेशन नहीं हो जाता तब तक हम लोग वापस नहीं जाएंगे। जब तक ये सिस्टम नहीं बदल जाए, इलेक्टोरल सिस्टम, तब तक हम लोग बाहर नहीं जाएंगे, वापस नहीं जाएंगे घर।
1: दिल्ली पुलिस की तरफ से जंतर मंतर पर किसी भी तरह के प्रदर्शन पर रोक है। दिपके का कहना है कि पाबंदियों के पीछे सरकार का डर है। आरोप यही है कि महाराष्ट्र में CJP कार्यकर्ताओं को दिल्ली जाने से पुलिस रोक रही है।
19: लोगों को बताया पिछले कुछ दिनों से मैं महाराष्ट्र पुलिस की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहा था कि कैसे उन्होंने मुंबई में जो हमारा प्रोटेस्ट हुआ उसको कोऑपरेट किया, कहीं से भी दिल्ली पुलिस की तरह डंडा नहीं चलाया। लेकिन कहीं ना कहीं आज थोड़ा हार्ट ब्रेक हुआ है, क्योंकि एक तरफ हम बता रहे हैं कि महाराष्ट्र की पुलिस इस देश की सबसे बेस्ट पुलिस है, क्योंकि वो कभी भी ब्रूटल नहीं होती है दिल्ली पुलिस की तरह, दिल्ली पुलिस जिस तरीके से बच्चों को पीटती है। लेकिन आज ही CJP के वॉलंटियर्स को नोटिस आया है, उसमें ये पूछा है कि चंद्रपुर महाराष्ट्र से जो लोग दिल्ली जा रहे हैं वो कैसे जा रहे, इसका पैसा कहाँ से आ रहा है। अब ट्रेन का 1,000-1,500 का जो खर्चा है, ट्रेन का टिकट है, उसका भी हिसाब पुलिस को देना पड़ेगा क्या? कुछ और काम बचा नहीं है पुलिस को।
1: CJP अध्यक्ष अभिजीत दिपके का आरोप है चंद्रपुर में उनके कार्यकर्ताओं को पुलिस की तरफ से नोटिस भेजा गया है। नोटिस में महाराष्ट्र से दिल्ली जाने वाले कार्यकर्ताओं से ट्रेन के टिकट का सोर्स पूछा गया है। पुलिस नोटिस पर भड़के दिपके ने पूछा है कि महाराष्ट्र पुलिस दिल्ली के जंतर मंतर पर होने वाले प्रोटेस्ट को लेकर नोटिस कैसे भेज सकती है।
19: चीज बोली है कि आप आंदोलन में चले गए तो आपके ऊपर लीगल एक्शन होगा। चंद्र पुलिस कौन होती है डिसाइड करने वाली कौन आंदोलन में जाएगा कौन नहीं? और जंतर मंतर का आंदोलन चंद्रपुर पुलिस के अंडर कब से आ गया? क्या जंतर मंतर चंद्रपुर पुलिस के अंडर आता है? और तीसरी चीज कही जा रही है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस आंदोलन में मत जाइए, आंदोलन हिंसक है। चंद्रपुर पुलिस को, महाराष्ट्र पुलिस को कैसे पता पहले से ही कि आंदोलन हिंसक है? क्या पहले से ये लोग कुछ प्लान कर रहे हैं क्या?
1: बड़ी बात यह है कि दिपके ने ऐलान किया है कि वो गिरफ्तारी से नहीं डरते। अगर पुलिस ने जंतर मंतर जाने से रोका और जेल भेजा तो भी ये आंदोलन रुकेगा नहीं।
19: मैं कहना चाहता हूँ कि अरेस्ट करना है तो कर लो यार, यही बैठा हूँ मैं, उठा लो, 3 महीने नहीं 6 महीने रख दो, 1 साल रख दो, एनएसए लगाना है एनएसए लगा दो, यूएपीए लगाना है यूएपीए लगा दो, जो लगाना है लगा दो। अगर आपको लगता है अरेस्ट की धमकियां देकर या जेल का डर दिखाकर हम चुपचाप बैठेंगे तो ऐसा नहीं है। जब अमेरिका से आया था तब यही सोचकर आया था कि जेल जा रहा हूं, तो डालना है जेल में तो डाल दो, लेकिन उसके बाद भी हम लड़ते रहेंगे, डेमोक्रेसी को बचाने की बात है, उसके लिए हम लड़ते रहेंगे।
1: दीप के इसी मुद्दे पर मुंबई के शिवाजी पार्क में प्रदर्शन कर चुके हैं। पुलिस की मनाही के बावजूद ये प्रदर्शन हुआ। तब दीपके ने कहा था ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा नहीं हुआ तो वो दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने जाएंगे। सीजीपी के ऐलान ने दिल्ली पुलिस की नींदें उड़ा रखी हैं, क्योंकि दीपके का प्लान जंतर मंतर पर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एक बड़े आंदोलन को शुरू करना है। आज तक ब्यूरो।
0: पुणे में महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग के खिलाफ चल रहे छात्रों के आंदोलन पर आज बॉम्बे हाई कोर्ट में अहम सुनवाई हुई है। कोर्ट ने एक तरफ छात्रों की शिकायतों को गंभीर माना तो दूसरी तरफ उनसे आंदोलन खत्म कर पढ़ाई पर लौटने की अपील की। कोर्ट ने साफ कहा कि छात्र असामाजिक तत्व नहीं है और अगर परीक्षा प्रक्रिया में गड़बड़ी का शक है तो उन्हें विरोध करने का अधिकार है, लेकिन सड़कों पर जाम लगाकर आम लोगों को परेशान नहीं किया जा सकता।
2: पुणे में एमपीएससी यानी महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग के खिलाफ छात्रों के प्रदर्शन के 7वें दिन भी हंगामा जारी रहा। एमपीएससी की कथित गड़बड़ियों से नाराज छात्र ये कह रहे हैं कि एमपीएससी चेयरमैन के इस्तीफे तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा।
21: ये पेपर पूरी तरह से कैंसिल करना चाहिए, क्योंकि जो पेपर हुआ है ना वो पूरी तरह से मतलब पारदर्शक तरीके से नहीं हुआ। अगर ये पेपर कंडक्ट हो जाता है तो हमारे साथ अन्याय है, जो 80 लड़कियां वहां थी उनके साथ अन्याय है, और हम बहुत सालों से तैयारी कर रहे हैं, हम सब इस सिस्टम के शिकार हुए हैं। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सब नहीं, हम क्या 17-18 साल के बच्चे नहीं है, हम 25 साल से ऊपर के बच्चे हैं। हमको नौकरी चाहिए, हमको जॉब चाहिए, हमारा आगे का करियर पूरा पड़ा है, हम कब तक इनके शिकार पड़े, कब तक लाइब्रेरी में बैठ के 10-10, 12-12 घंटे पढ़ते रहे, बस पढ़ते ही रहे, कब हमको नौकरी लगेगी, इसके क्वेश्चन को इसका आंसर कौन देगा। आज हम हर दूसरे दिन डिप्रेशन का शिकार होते हैं, हर दूसरे दिन कोई बच्चा आत्महत्या करता है, कोई क्या करता है, हमारी हम सब गरीब बच्चे हैं, क्योंकि हम इस फील्ड में क्यों आए, क्योंकि अगर हम इंजीनियरिंग बनते हैं या डॉक्टर बनने जाते हैं तो वहाँ पैसा लगता है, पर हमारे पास पैसा नहीं है वहाँ जाने के लिए, इसीलिए हमने ये फील्ड चुनी एमपीएससी।
2: एक याचिका पर सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाई कोर्ट ने पुणे में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से अपनी पढ़ाई पर लौटने का अनुरोध किया है। साथ ही कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया कि वो महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग के खिलाफ आंदोलन कर रहे छात्रों की शिकायतों को दूर करने के लिए गंभीर प्रयास करे। चीफ जस्टिस एमसी त्रिपाठी ने कहा कि ज्यादातर छात्रों की दिलचस्पी धरना प्रदर्शन में नहीं बल्कि पढ़ाई में है, लेकिन अब पूरा माहौल खराब हो चुका है, भरोसा बहाल करने के लिए सरकार की तरफ से ईमानदार कोशिश होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि छात्र असामाजिक तत्व नहीं है, गड़बड़ी का शक है तो छात्रों को विरोध का पूरा अधिकार है, परीक्षा प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए, लेकिन सड़कों को जाम कर होने वाले आंदोलनों से आम लोगों को दिक्कत भी बर्दाश्त नहीं।
22: पुणे में चल रहे छात्रों के प्रदर्शन के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दाखिल हुई थी और इसी पिटीशन पर सुनवाई होने के बाद अब कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि छात्र जो पुणे में आ रहे हैं उन्हें आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन कोर्ट ने यह कहा है कि अलग अलग जगहों से जहां से वो छात्र आए हैं वे अब पढ़ाई पर ध्यान दें, और 3 हफ्ते की मोहलत राज्य सरकार को दी गई है, क्योंकि इससे पहले जो पेपर लीक हुए हैं उनके लिए एसआईटी स्थापित हुई थी, तो छात्रों के मन में अब यह सवाल है कि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं हो रही। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की है कि सरकार को 3 हफ्ते की मोहलत दी जाएगी जिसमें सरकार इस पूरे मामले का रिपोर्ट दे दे।
2: आंदोलन से परेशान पुणे के नागरिकों ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। याचिका में कहा गया छात्रों के आंदोलन से पूरे पुणे शहर को परेशानी हो रही है, जिससे ट्रैफिक पर बुरा असर पड़ा है, ऑफिस जाने वाले लोगों को परेशानी हो रही है, स्कूल कॉलेज पहुंचने वाले छात्रों को दिक्कत हो रही है, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की आवाजाही भी प्रभावित होने का दावा किया जा रहा है। स्थानीय लोगों को कथित धमकी और उत्पीड़न के आरोप के साथ आंदोलन कवर कर रहे पत्रकारों से कथित मारपीट की शिकायत की गई है।
4: कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रदर्शनकारी छात्र कोई समाज विरोधी या देश विरोधी तत्व नहीं है और परीक्षा प्रक्रिया में गड़बड़ी लगने पर उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने का पूरा अधिकार है। हालांकि कोर्ट ने अलका टॉकीज चौक पर हो रही जो रास्ता जाम है उस पर भी अपनी चिंता जताई और कहा कि लोगों को वहां से हट जाना चाहिए और जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। इसके साथ ही कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को अगले कुछ हफ्तों के अंदर परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी बनाने और उसको उठाए गए कदमों पर पूरा एक रोड मैप पेश करने का निर्देश दिया है, जबकि सरकार की ओर से कोर्ट में यही बताया गया कि छात्रों की अधिकांश मांगे पूरी कर दी गई हैं, लेकिन अब इस पूरे मामले की सुनवाई 25 नवंबर को होगी।
2: इधर एनसीपी शरद गुट के विधायक रोहित पवार ने साफ कर दिया है कि छात्रों की सभी मांगे पूरी होने तक प्रदर्शन जारी रहेगा।
5: 20-20 घंटा ये पढ़ाई कर रहे हैं और पेपर फूट रहा है। कल तक हम तो एमपीएससी के लिए लड़ रहे थे, अभी आज सुबह अगर आपने देखा होगा महाज्योति करके एक डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, वहाँ पे जो ऑनलाइन पेपर था वहाँ पे भी बहुत सारे सेंटर में गड़बड़ हो गई। मतलब एक तो एमपीएससी की गड़बड़ हो गई, पेपर तो फूट गया, और यहाँ पे भी अगर अलग तरीके से मास कॉपिंग हो रहा है, मतलब ये तो अगर कॉन्स्टेंटली हर जगह हो रहा है तो अभी इसके लिए तो हमको लड़ना पड़ेगा। अभी कोर्ट ने कहा है कि जाके पढ़ाई करो, ये लोग बच्चे कह रहे पढ़ाई करके अगर पेपर फूटेगा 50,00,000-1,00,000 को अगर पेपर जाएगा वो पैसा हम गरीब होने के कारण हम कहाँ से लाएंगे। इसलिए बच्चों का कहना है कि अध्यक्ष को हटाओ, एमपीएससी का टोटल रिस्ट्रक्चरिंग कर लो, ट्रांसपेरेंसी ला दो एंड वी आर रेडी टू गिव द एग्जाम्स।
2: एडवोकेट जनरल मिलिंद साठे ने कोर्ट को बताया कि पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों के प्रति अब तक संयम बरता है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि पुणे की 70,00,000 आबादी को इन प्रदर्शनकारियों ने बंधक बना रखा है। सीएम फडणवीस भी कह रहे हैं कि छात्रों की ज्यादातर मांगे पहले ही मंजूर हो चुकी है।
7: एमपीएससी च्या विद्यार्थ्यांचं आंदोलन हे हायजॅक झालेलं आहे, ते आता पूर्णपणे राजकीय नेत्यांचं आंदोलन झालंय। एमपीएससी च्या विषयांपेक्षा त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या राजकीय विषयांवर भाषण होऊ लागलेली आहेत। एमपीएससीचं आंदोलन असताना मोदीजींचा विषय, देशाचा विषय, वेगवेगळे विषय त्या ठिकाणी येत आहेत जे पूर्णपणे राजकीय आहेत। की एमपीएससीच्या चेअरमनला हटवण्याचा अधिकार हा केवळ राष्ट्रपतींकडे आहे आणि तोही सुप्रीम कोर्टाला राष्ट्रपती सांगतात, सुप्रीम कोर्ट इन्क्वायरी करतं आणि त्यानंतर राष्ट्रपती तो काढू शकतात, तो आमच्या कोणाच्याही हातामध्ये नाही। त्यामुळे तुम्ही म्हणत असाल तर आम्ही ज्युडिशियल इन्क्वायरी करायला तयार आहोत, ते त्यांनी मान्य केलं। ती पेपर फूट झाली तेव्हा हे अध्यक्षच नव्हते, जॉईनच झालेले नव्हते, हे त्या एमपीएससीचे अध्यक्ष नसताना झालेल्या पेपर फुटीकरता त्यांचा राजीनामा घ्या आग्रह असताना राज्य सरकारने मान्य केलं की त्यांची निष्पक्ष चौकशी करून।
2: हायकोर्टने राज्य सरकार को भर्ती प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के निर्देश दिए हैं, साथ ही करीब 70,000 रिक्त पदों का विभाग और आरक्षण के आधार पर ब्यौरा देने और भर्ती प्रक्रिया का रोडमैप 3 हफ्ते में पेश करने को कहा है।
23: तो अब आपकी क्या मांग है? कोर्ट ने तो टिप्पणी कर दी है कि आपको पढ़ाई भी करनी चाहिए।
24: पढ़ाई, ये बात सच है, पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन उसके लिए वो जो एग्जाम है वो पारदर्शी मतलब ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, होना चाहिए, ये तो मांग है ना हमारी। इसलिए हमने जो एमपीसी के चेयरमैन है उनका रेजिग्नेशन मांगा है।
23: देखो बात यह है कि जितने भी मांगे पहले की गई थी वो सब एक्सेप्ट हो चुकी है, सिर्फ इस्तीफे की मांग बची है। तो क्या आपको क्या लगता है कि अब कोर्ट की टिप्पणी भी आ गई है तो आपको क्या करना चाहिए?
24: सर वो जो अदर जो मांगे है ना जी, उसका कुछ मतलब नहीं रहेगा अगर इनका राजीनामा जो रेजिग्नेशन है वो नहीं लिया तो, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी तो एग्जाम देने में कुछ मतलब नहीं है ना फिर।
2: कोर्ट ने छात्रों से कहा है कि जब मामला अदालत के सामने है तो उन्हें कोर्ट का भरोसा रखना चाहिए और अगर आंदोलन जारी रखना है तो प्रशासन से अनुमति लेकर वैकल्पिक जगह पर प्रदर्शन किया जाए।
23: महाराष्ट्र सरकार हो या फिर एमपीएससी यानी कि महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उसे लेकर यहाँ के छात्रों के मन में कुछ सवाल है जिसके जवाब नहीं मिल रहे, और ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी ये दोनों के जवाब कौन देगा, इसी पर पूरा आंदोलन की आगे एग्जैक्टली क्या होगा वो देखना अहम रहेगा। जवाब ले आज तक पुणे।
0: और इसी के साथ हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: पंजाब चुनाव से पहले सबसे बड़ी पंचायत। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ हर सवाल पर होगी खुलकर बात। देखिए पंचायत आज तक पंजाब, 8 अक्टूबर दिन भर सिर्फ आज तक पर।
1: रियल्टी पार्टनर TDI इंफ्राटेक, नॉर्थ इंडियाज लीडिंग टाउनशिप डेवलपर।
2: हेल्थ पार्टनर
3: वृंदा लाइफ, वी आर नोन फॉर क्वालिटी मेडिसिन।
4: बैंकिंग पार्टनर
5: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
6: स्पेशल पार्टनर ग्रेट खलीज चॉइस फॉर पावरफुल फिटनेस लिफ्ट्स बाय पोलो एलिवेटर।

0: हाई वोल्टेज सियासी ड्रामे के बीच हिरासत में लेने के बाद छोड़े गए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, आज पूरे देश में प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। ज्ञानेश कुमार पर सियासी घमासान तेज, खड़गे ने कहा तानाशाह मोदी सरकार और चुनाव आयोग के गठबंधन का पर्दाफाश, नितिन नवीन का पलटवार, अराजकता फैला रहे हैं राहुल गांधी। सीएम से पीएम तक जनसेवा में प्रधानमंत्री मोदी के 25 साल का एम्बिशन नहीं मिशन के लिए जीता हूं, कई शहरों में बीजेपी के कार्यक्रम, आडवाणी से मिले प्रधानमंत्री। यूपी में लड़ाई फिर 80-20 पर आई, राज्यसभा चुनाव के नतीजों पर सीएम योगी का एसपी पर तीखा तंज का, 2027 का परिणाम साफ, अखिलेश का पलटवार, घमंड का मिलेगा दंड। और दिल्ली के सीमापुरी इलाके में गिरी 4 मंजिला इमारत, अब तक 3 लोगों की मौत, अस्पताल में घायलों का इलाज जारी। सीसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आज कांग्रेस देश में प्रदर्शन करेगी। बुधवार को लगातार दूसरे दिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने सीसी के खिलाफ न सिर्फ संग्राम छेड़ा बल्कि दिल्ली पुलिस से भी टकरा गए। लगातार दूसरे दिन राहुल और प्रियंका को पुलिस ने जबरदस्ती धरने से उठाया और हिरासत में ले लिया, हालांकि बाद में पुलिस हिरासत में दोनों को रिहा कर दिया गया था।
1: राहुल की ललकार ज्ञानेश के खिलाफ गलगार।
2: हटाओ नहीं यार। सर मैं तो हटा दे। सर मैं कल भी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था।
1: पहले आकाशवाणी फिर जंतर मंतर के लिए कूच।
3: द पुलिस में बट हैव स्क्रैच मी ऑल ओवर, दे हैव थ्रोन अस टू द ग्राउंड।
1: पुलिस ने रोका इंडिया गठबंधन की बस का रास्ता।
2: सर ये हजारों की भीड़ है, किसी को चोट लग जाएगी।
1: सड़क पर राहुल प्रियंका की हुंकार, ज्ञानेश पर आर पार।
3: Let them call their forces back. I will not move from here.
1: जंतर मंतर पर बैरिकेडिंग, सड़क पर ही छिड़ा संग्राम।
4: ऐसे नहीं होगा,
5: आप बताएं कैसे होगा?
4: आपने इसको धकेला नीचे।
1: तस्वीरें जंतर मंतर चौराहे की हैं। आप देख सकते हैं जंतर मंतर पर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ धरना देने निकले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को दिल्ली पुलिस जबरन उठाकर हिरासत में ले लेती है। ये दो तस्वीरें देखिए, कैसे राहुल गांधी को उठाकर गाड़ी में डाला जाता है, और दूसरी तस्वीर में प्रियंका गांधी को देखिए, कैसे सड़क पर लेटी प्रियंका गांधी को उठाने के लिए पुलिस और केंद्रीय बलों को खासी मशक्कत करनी पड़ती है, और फिर प्रियंका गांधी को सड़क से उठाकर हिरासत में लिया जाता है। सड़क पर तगड़ा संग्राम छिड़ जाता है क्योंकि प्रियंका गांधी सड़क से उठने को तैयार नहीं होती है।
3: This is how they treat members of parliament who are asking simply to meet the election commissioner. This is how they treat us. Let them call their forces back. I will not move from here.
1: और अब आपको ज्ञानेश कुमार के खिलाफ छिड़े रण की पूरी टाइमलाइन दिखाते हैं। पहले राहुल गांधी कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन के सांसदों के साथ जनपद पर सागर रत्ना रेस्टोरेंट में लंच करते हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नया मोर्चा खोलने के लिए जंतर मंतर के लिए निकल पड़ते हैं।
6: प्रोटेस्ट साइट है जंतर मंतर, वहाँ पे हम जाकर सब आज फिर से बैठे और देश को बताएं कि हमारे लिए ज्ञानेश कुमार जी देश के लेजिटिमेट इलेक्शन कमिश्नर नहीं है। मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, मोहन भगवत, ज्ञानेश कुमार जी ने देश के लोकतंत्र को खत्म किया है, और मैंने कल भी कहा था जिन्होंने ये काम किया है ये देशद्रोही है और इन पर हम एक्शन लेंगे। मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा देना पड़ेगा।
7: इलेक्शन कमीशन कर रही है और मोदी जी करा रहे हैं, और जब मोदी जी ऐसी गलती करा रहे हैं इसका मतलब यह है कि इस देश में डेमोक्रेसी को खत्म करने की कोशिश वो कर रहे हैं।
5: are all here together. We are all here united. And we are all here without any egos. We will fight these guys.
8: जो ज्ञानेश है ना, ये इस देश का सबसे बड़ा गद्दा घोषित हो, इसे कोई नहीं बचा पाएगा। जहां ज्ञानेश मिलेगा वहीं खोजने जा रहे हैं, वहीं ढूंढेंगे जहां बंद करके इसको रखा हो।
9: ज्ञानेश की तलाश में आप जा रहे हैं?
8: क्या करेंगे, ज्ञानेश बोल ही नहीं रहा है और लॉ मिनिस्टर बोल ही नहीं रहा है, बीजेपी का प्रवक्ता ज्ञानेश को बचा रहा है।
1: राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ यलगार छेड़ दिया है। पहले आकाशवाणी भवन परिसर में 8 घंटे तक धरना और फिर जंतर मंतर से धावा बोलने के लिए राहुल, प्रियंका और इंडिया गठबंधन के 200 सांसद बस में सवार हो जाते हैं।
10: Narendra Modi government is a illegitimate government. Not only Ganesh Kumar, and Narendra Modi government also has to go. Writing is on the wall. They are seeing, they are afraid. That is why they are using a brutal force against us. But we are not intimidated.
1: उधर जंतर मंतर जैसे दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों की छावनी में तब्दील कर दिया जाता है, और जंतर मंतर चौराहे पर राहुल, प्रियंका समेत सभी विपक्षी सांसदों की बस रोक ली जाती है।
11: उनका इस्तीफा मांगना चाहती है क्योंकि हमें विश्वास नहीं है उनमें। ये जो चुनाव आयोग है ये किस लिए चलता है? इस देश की जनता के लिए। हम जनता के प्रतिनिधि हैं, 250 जनता के प्रतिनिधि, उनमें से एक एक प्रतिनिधि कम से कम 20 से 30 लाख लोगों के प्रतिनिधि हैं। और हम सच में कह रहे हैं कि हम शांतिपूर्वक जाएंगे, बात करेंगे। और ये सरकार इतनी कायर है, इतनी डरती है इस जनता की आवाज से कि हर जगह प्रदर्शन रोक रही है।
12: आपको लगता है हम यहाँ से हिल जाएंगे? क्या समझ रखा है इन लोगों ने? ये देश की राजधानी की ये हालत है।
13: ब्रूटली लाठीचार्ज कर रहे हैं, ये सीधे गुनहगार हैं। ज्ञानेश जी, अमित शाह जी और मोदी जी, ये विजुअल्स कई साल तक हमने नहीं देखे थे। ब्रूटैलिटी की इंतहा है। यू स्टैंड एक्सपोज।
1: बस का घेराव देखकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों बस से नीचे उतर आते हैं और वहीं सड़क पर बैठकर धरना देने लगते हैं। दिल्ली पुलिस के अफसर राहुल गांधी से बात कर उन्हें सड़क से उतरने के लिए कहते हैं। जबकि प्रियंका गांधी सड़क पर देखकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर देती हैं। ये सब देखकर जैसे पुलिस के हाथ पांव फूलने लगते हैं। फिर पुलिस प्रियंका गांधी को हटाने की कोशिश करती है, लेकिन प्रियंका गांधी तस से बस नहीं होती।
3: Their police members have scratched me all over. They have thrown us to the ground, and now we are not going to move from here.
14: गुंडागर्दी? अरे इनका इतिहास क्या है? जरा पेज पलट के दिए तो नई नई शान पहन के घूम रहे होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, सबको मालूम इनका इरादा क्या है। तो अगर ये सोच रहे हैं कि हम डर के रुक जाएंगे, बेटा उनको बोल दो ये होने वाला नहीं।
1: काफी देर तक पुलिस और राहुल, प्रियंका के बीच एक संघर्ष चलता है। आखिर में दिल्ली पुलिस राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को सड़क से जबरन उठाकर ले जाती है और हिरासत में ले लेती है।
15: अमित शाह, नरेंद्र मोदी, ज्ञानेश कुमार, मोहन भगवत, एंड दे कैन डू ऑल दिस स्टफ, बट वी आर गोइंग टू ब्रिंग देम to justice. My guarantee that all four of them will be brought to justice.
1: ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर विपक्ष अड़ा हुआ है। राहुल और प्रियंका से पहले सुबह में लेफ्ट पार्टियां और आम आदमी पार्टी ने भी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लड़ाई बड़ी है। अब ये लड़ाई कहां तक जाएगी, आगे आगे देखते हैं होता है क्या। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
0: राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्ष के प्रदर्शन के दिल्ली पुलिस की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि पुलिस की तरफ से राहुल गांधी को रोकने की तैयारियां की जाती हैं, लेकिन राहुल पुलिस के बंदोबस्त को चकमा देते हुए नई जगह पर प्रदर्शन के लिए पहुंच जाते हैं। मतलब यही है कि दिल्ली पुलिस के नहले पर राहुल गांधी दहला चल रही है।

0: 45 FIR हैं, मेरा लक्ष्य है कि मुझे 100 चाहिए। मैं चाहता हूं कि मेरे ऊपर 100 FIR लगे, हर FIR मेरे लिए एक मेडल है।
1: राहुल गांधी पर FIR दर्ज हो गई, लेकिन वो रुकेंगे नहीं बल्कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे तक सड़क पर सीधी लड़ाई जारी रखेंगे। राहुल गांधी के इसी तेवर ने दिल्ली पुलिस की नींद उड़ा रखी है। दिल्ली पुलिस राहुल गांधी को रोकने के लिए पूरा होमवर्क करती है, लेकिन बीच में राहुल गांधी दिल्ली पुलिस की तमाम तैयारियों को चकमा दे देते हैं। बीते दिन संसद भवन से राहुल गांधी को चुनाव आयोग के दफ्तर जाना था। पुलिस की तैयारी यही थी कि राहुल गांधी को चुनाव आयोग के दफ्तर से पहले हिरासत में लिया जा सके, लेकिन राहुल गांधी पुलिस को चकमा देकर आकाशवाणी भवन में दाखिल हुए और धरने पर बैठ गए। कई घंटों के बाद दिल्ली पुलिस किसी तरह राहुल का धरना खत्म करवा पाई। पुलिस के हाथ पांव फूल गए। आज दिल्ली पुलिस को पहले से पता था कि विपक्ष के सांसदों के साथ राहुल गांधी जनपद के पास लंच करेंगे, उसके बाद आज जंतर मंतर जाएंगे। लिहाजा राहुल गांधी से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस के DCP ने अपने अधीनस्थों को खास ट्रेनिंग दी,
2: विद ऑल वेरी वेरी रिस्पेक्टफुली,
1: क्योंकि राहुल गांधी के दिमाग में क्या है, राहुल का प्लान क्या है, ये दिल्ली पुलिस के लिए किसी पहेली से कम नहीं था।
2: जो लोग सीधे सीधे चलने लग गए उनको आप आराम से ले जाके कोशिश पहली यही होनी है कि आराम से प्यार से बोल के रेस्पेक्टफुली बोल के हम सबको ले जाएं और सबको बिठा लें, ठीक है। नेक्स्ट ये होने वाला है अपना कि क्योंकि सपोर्टर्स भी बहुत सारे होते हैं तो वो भी रेजिस्ट करते हैं, पकड़ लेते हैं, ग्रुप कर लेते हैं, ठीक है। मेल को फीमेल्स भी कर लेती हैं, पकड़ लेती हैं बहुत जोर से, तो इन चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और बसेस, बस में बैठा दिया तो बस से निकल ना पाए और बस के आगे की क्लैरिटी देनी पड़ेगी ताकि बस सीधा सीधा निकल जाए।
1: नई दिल्ली के DCP सचिन शर्मा उन पुलिस वालों को क्लास दे रहे हैं जिनके कंधों पर राहुल गांधी को रोकने की जिम्मेदारी है। राहुल गांधी लोकसभा में नेता विपक्ष हैं, लिहाजा आज DCP ने पुलिस वालों को हिरासत में लेने का पूरा तरीका समझाया।
2: सेंसिटिवली, सारा अदब और रिस्पेक्टफुली इनको रिक्वेस्ट करते रहना है। ओरली हम रिक्वेस्ट करते रहेंगे सर, ऑनरेबल सर, ठीक है। तो वो चीज़ों का आप, हो सकता है काफ़ी सारे ऑनरेबल MPs को नहीं पहचानते हो, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ भी जो भी हो या तो उनके साथ वाला बता देता है, नहीं भी बताए तो ट्रीट एवरीबडी लाइक विद ऑल वेरी वेरी रिस्पेक्टफुली, ठीक है।
1: राहुल गांधी के एक्शन से दिल्ली पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि राहुल गांधी का प्लान दिल्ली पुलिस की तमाम तैयारियों पर भारी है। दिल्ली पुलिस की कोशिश है राहुल को धरने पर बैठने से रोकना, लेकिन राहुल मार्च भी निकाल रहे हैं और धरने पर भी बैठ रहे हैं। मतलब यही है कि दिल्ली पुलिस के तमाम तिकड़म को राहुल बार बार चकमा देने में कामयाब हो रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
3: दिल्ली में इंडिया गठबंधन ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया है। इससे पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी भी प्रदर्शन कर चुकी है, लेकिन दिल्ली के जंतर मंतर पर CJP की तरफ से 10 अक्टूबर को इसी मुद्दे पर प्रदर्शन का ऐलान किया गया। CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके ने ऐलान कर दिया है कि ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे तक जंतर मंतर पर CJP कार्यकर्ता डटे रहेंगे, जैसे पेपर लीक के मामले पर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था।
1: ज्ञानेश कुमार पर CJP का प्लान जंतर मंतर।
4: मैं ये कहना चाहता हूँ जहाँ रुकोगे उसी को जंतर मंतर बना देंगे, और कितने लोगों की आवाज बढ़ा होगा, पूरा देश जंतर मंतर बन जाएगा अगर ज्ञानेश कुमार को हटाया नहीं, पूरा देश जंतर मंतर बन जाएगा।
1: 10 अक्टूबर को जंतर मंतर से नई लड़ाई।
5: जब भी दिल्ली पुलिस हमें रोके वहाँ पे हम लोग बैठ जाएंगे, वो कहलाएगा जंतर मंतर। हमारा यही प्लान होने वाला है, पूरा दिल्ली जंतर मंतर बनने वाला है।
1: केंद्र सरकार को CJP का सीधा अल्टीमेटम।
4: और आज ये लोग आते वोटिंग राइट छीनना चाहते, तो ये बात किसी पार्टी की नहीं, ये बात किसी आइडियोलॉजी की नहीं है, ये बात लोगों के फंडामेंटल राइट्स की है। अगर लोगों से उनका वोटिंग राइट छीना जाएगा तो क्या डेमोक्रेसी बचेगी? वन नेशन वन इलेक्शन, ये स्लोगन है लेकिन असली इंटेंशन है वन नेशन वन पार्टी।
1: चुनावी सिस्टम बदलने निकलेगी टीम CJP। अभिजीत दिपके का जंतर मंतर पार्ट 2।
4: क्योंकि कहीं ना कहीं जो 10 अक्टूबर को हमारा मार्च होने जा रहा है जंतर मंतर को, उसको लेकर सरकार डरी हुई है, जिसके कारण सोशल मीडिया पर भी इंस्टाग्राम पर भी इन्होंने जितने भी CJP से रिलेटेड कंटेंट है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है इंडिया।
1: पेपर लीक मामले में अभिजीत दिपके की अगुवाई में CJP ने दिल्ली के जंतर मंतर पर जून महीने में शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग के साथ आंदोलन शुरू किया था। दुनिया ने जेन जी की शक्ति देखी और आखिरकार सरकार को CJP की मांग के आगे झुकना पड़ा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। एक बार फिर अभिजीत दिपके जंतर मंतर पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर मंतर आ रहे हैं। 10 अक्टूबर को CJP ने जंतर मंतर पर देश भर के जेन जी को जुटने के लिए बुलाया है।
4: इसमें देखिए हमारी 3 डिमांड्स है। हम भी मानते हैं कि एक का रेजिग्नेशन लेकर कुछ बदलेगा नहीं। हमारी 3 डिमांड्स है। पहला डिमांड जो है वो ज्ञानेश कुमार का रेजिग्नेशन है, उसके साथ ही उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगने चाहिए। दूसरी हमारी डिमांड है कि SIR का जो रोल है वो फ्रीज होना चाहिए। और तीसरी डिमांड जो है, जो इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट होता है वो इंडिपेंडेंटली हो जाए, न्यूट्रली हो जाए। ऐसा ना हो कि अमित शाह और मोदी जी एक दिन दोनों साथ में बैठे नाश्ता करते हुए डिसाइड कर ले ये बंदा बड़ा सही है, ये अपने साइड का इसको बना देते भाई ये सही लग रहा है, ऐसा नहीं चल सकता।
1: जंतर मंतर पर प्रदर्शन को लेकर अभिजीत दिपके की 3 मांगे हैं। पहली मांग ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा और आपराधिक मुकदमा। दूसरी मांग देश भर में जारी SIR की प्रक्रिया तुरंत बंद होनी चाहिए। तीसरी मांग मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का सिस्टम बदले। दरअसल दिपके ने वोटर लिस्ट की SIR में कथित गड़बड़ियों का हवाला देते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की है। मतलब शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद अब दिपके मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर मंतर पर आर पार की लड़ाई लड़ने महाराष्ट्र से दिल्ली आ रहे हैं। दावा यही है कि देश का जेन जी अब चुनावी सिस्टम में मौजूद खामियों को दूर करके ही दम लेगा।
5: 10 अक्टूबर से देश बहुत बड़ा मोबिलाइजेशन देखने वाला है देश के युवाओं का, क्योंकि भले ही कांग्रेस जनता पार्टी ने ये कॉल दिया हो लेकिन ये कॉल प्रोटेस्ट का देश के युवाओं का है, देश के जेंजी का है। देश का युवा 10 अक्टूबर से बाहर निकल रहा है एंड बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला है। जब तक ज्ञानू का रेजिग्नेशन नहीं हो जाता तब तक हम लोग वापस नहीं जाएंगे। जब तक ये सिस्टम नहीं बदल जाए, इलेक्टोरल सिस्टम, तब तक हम लोग बाहर नहीं जाएंगे, वापस नहीं जाएंगे घर।
1: दिल्ली पुलिस की तरफ से जंतर मंतर पर किसी भी तरह के प्रदर्शन पर रोक है। दिपके का कहना है कि पाबंदियों के पीछे सरकार का डर है। आरोप यही है कि महाराष्ट्र में CJP कार्यकर्ताओं को दिल्ली जाने से पुलिस रोक रही है।
4: लोगों को बताया पिछले कुछ दिनों से मैं महाराष्ट्र पुलिस की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहा था कि कैसे उन्होंने मुंबई में जो हमारा प्रोटेस्ट हुआ उसको कोऑपरेट किया, कहीं से भी दिल्ली पुलिस की तरह डंडा नहीं चलाया। लेकिन कहीं ना कहीं आज थोड़ा हार्ट ब्रेक हुआ है, क्योंकि एक तरफ हम बता रहे हैं कि महाराष्ट्र की पुलिस इस देश की सबसे बेस्ट पुलिस है, क्योंकि वो कभी भी ब्रूटल नहीं होती है दिल्ली पुलिस की तरह, दिल्ली पुलिस जिस तरीके से बच्चों को पीटती है। लेकिन आज ही CJP के वॉलंटियर्स को नोटिस आया है, उसमें ये पूछा है कि चंद्रपुर महाराष्ट्र से जो लोग दिल्ली जा रहे हैं वो कैसे जा रहे, इसका पैसा कहाँ से आ रहा है। अब ट्रेन का 1,000-1,500 का जो खर्चा है, ट्रेन का टिकट है, उसका भी हिसाब पुलिस को देना पड़ेगा क्या? कुछ और काम बचा नहीं है पुलिस को।
1: CJP अध्यक्ष अभिजीत दिपके का आरोप है चंद्रपुर में उनके कार्यकर्ताओं को पुलिस की तरफ से नोटिस भेजा गया है। नोटिस में महाराष्ट्र से दिल्ली जाने वाले कार्यकर्ताओं से ट्रेन के टिकट का सोर्स पूछा गया है। पुलिस नोटिस पर भड़के दिपके ने पूछा है कि महाराष्ट्र पुलिस दिल्ली के जंतर मंतर पर होने वाले प्रोटेस्ट को लेकर नोटिस कैसे भेज सकती है।
4: चीज बोली है कि आप आंदोलन में चले गए तो आपके ऊपर लीगल एक्शन होगा। चंद्र पुलिस कौन होती है डिसाइड करने वाली कौन आंदोलन में जाएगा और कौन नहीं? और जंतर मंतर का आंदोलन चंद्रपुर पुलिस के अंडर कब से आ गया? क्या जंतर मंतर चंद्रपुर पुलिस के अंडर आता है? और तीसरी चीज कही जा रही है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस आंदोलन में मत जाइए, आंदोलन हिंसक है। चंद्रपुर पुलिस को महाराष्ट्र पुलिस को कैसे

0: इसको कैसे पता पहले से ही कि आंदोलन हिंसक है? क्या पहले से ये लोग कुछ प्लान कर रहे हैं क्या?
1: बड़ी बात यह है कि दीपके ने ऐलान किया है कि वो गिरफ्तारी से नहीं डरते। अगर पुलिस ने जंतर मंतर जाने से रोका और जेल भेजा तो भी ये आंदोलन रुकेगा नहीं।
0: मैं कहना चाहता हूँ कि अरेस्ट करना है तो कर लो यार, यही बैठा हूँ मैं, उठा लो, 3 महीने नहीं 6 महीने रख दो, 1 साल रख दो, एनएसए लगाना है एनएसए लगा दो, यूएपीए लगाना है यूएपीए लगा दो, जो लगाना है लगा दो। अगर आपको लगता है अरेस्ट की धमकियां देकर या जेल का डर दिखाकर हम चुपचाप बैठेंगे तो ऐसा नहीं है। जब अमेरिका से आया था तब यही सोचकर आया था कि जेल जा रहा हूं, तो डालना है जेल में तो डाल दो, लेकिन उसके बाद भी हम लड़ते रहेंगे, डेमोक्रेसी को बचाने की बात है, उसके लिए हम लड़ते रहेंगे।
1: दीपके इसी मुद्दे पर मुंबई के शिवाजी पार्क में प्रदर्शन कर चुके हैं। पुलिस की मनाही के बावजूद ये प्रदर्शन हुआ। तब दीपके ने कहा था ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा नहीं हुआ तो वो दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने जाएंगे। सीजीपी के ऐलान ने दिल्ली पुलिस की नींदें उड़ा रखी हैं, क्योंकि दीपके का प्लान जंतर मंतर पर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एक बड़े आंदोलन को शुरू करना है। आज तक ब्यूरो।
2: पुणे में महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग के खिलाफ चल रहे छात्रों के आंदोलन पर आज बॉम्बे हाई कोर्ट में अहम सुनवाई हुई है। कोर्ट ने एक तरफ छात्रों की शिकायतों को गंभीर माना तो दूसरी तरफ उनसे आंदोलन खत्म कर पढ़ाई पर लौटने की अपील की। कोर्ट ने साफ कहा कि छात्र असामाजिक तत्व नहीं है और अगर परीक्षा प्रक्रिया में गड़बड़ी का शक है तो उन्हें विरोध करने का अधिकार है, लेकिन सड़कों पर जाम लगाकर आम लोगों को परेशान नहीं किया जा सकता।
3: पुणे में एमपीएससी यानी महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग के खिलाफ छात्रों के प्रदर्शन के 7वें दिन भी हंगामा जारी रहा। एमपीएससी की कथित गड़बड़ियों से नाराज छात्र ये कह रहे हैं कि एमपीएससी चेयरमैन के इस्तीफे तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा।
4: ये पेपर पूरी तरह से कैंसिल करना चाहिए, क्योंकि जो पेपर हुआ है ना वो पूरी तरह से मतलब पारदर्शक तरीके से नहीं हुआ। अगर ये पेपर कंडक्ट हो जाता है तो हमारे साथ अन्याय है। जो 80 लड़कियां वहां थी उनके साथ अन्याय है, और हम बहुत सालों से तैयारी कर रहे हैं, हम सब इस सिस्टम के शिकार हुए हैं। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सब नहीं, हम क्या 17-18 साल के बच्चे नहीं है, हम 25 साल से ऊपर के बच्चे हैं। हमको नौकरी चाहिए, हमको जॉब चाहिए, हमारा आगे का करियर पूरा पड़ा है। हम कब तक इनके शिकार पड़े, कब तक लाइब्रेरी में बैठ के 10-10, 12-12 घंटे पढ़ते रहे, बस पढ़ते ही रहे, कब हमको नौकरी लगेगी? इसके क्वेश्चन को इसका आंसर कौन देगा? आज हम हर दूसरे दिन डिप्रेशन का शिकार होते हैं, हर दूसरे दिन कोई बच्चा आत्महत्या करता है, कोई क्या करता है। हमारी हम सब गरीब बच्चे हैं, क्योंकि हम इस फील्ड में क्यों आए? क्योंकि अगर हम इंजीनियरिंग बनते हैं या डॉक्टर बनने जाते हैं तो वहाँ पैसा लगता है, पर हमारे पास पैसा नहीं है वहाँ जाने के लिए, इसीलिए हमने ये फील्ड चुनी एमपीएससी।
3: एक याचिका पर सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाई कोर्ट ने पुणे में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से अपनी पढ़ाई पर लौटने का अनुरोध किया है। साथ ही कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया कि वो महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग के खिलाफ आंदोलन कर रहे छात्रों की शिकायतों को दूर करने के लिए गंभीर प्रयास करे। चीफ जस्टिस एमसी त्रिपाठी ने कहा कि ज्यादातर छात्रों की दिलचस्पी धरना प्रदर्शन में नहीं बल्कि पढ़ाई में है, लेकिन अब पूरा माहौल खराब हो चुका है। भरोसा बहाल करने के लिए सरकार की तरफ से ईमानदार कोशिश होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि छात्र असामाजिक तत्व नहीं है, गड़बड़ी का शक है तो छात्रों को विरोध का पूरा अधिकार है। परीक्षा प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए, लेकिन सड़कों को जाम कर होने वाले आंदोलनों से आम लोगों को दिक्कत भी बर्दाश्त नहीं।
5: पुणे में चल रहे छात्रों के प्रदर्शन के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दाखिल हुई थी, और इसी पिटीशन पर सुनवाई होने के बाद अब कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि छात्र जो पुणे में आ रहे हैं उन्हें आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन कोर्ट ने यह कहा है कि अलग अलग जगहों से जहां से वो छात्र आए हैं वे अब पढ़ाई पर ध्यान दें, और 3 हफ्ते की मोहलत राज्य सरकार को दी गई है, क्योंकि इससे पहले जो पेपर लीक हुए हैं उनके लिए एसआईटी स्थापित हुई थी। तो छात्रों के मन में अब यह सवाल है कि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं हो रही, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की है कि सरकार को 3 हफ्ते की मोहलत दी जाएगी जिसमें सरकार इस पूरे मामले का रिपोर्ट दे दे।
3: आंदोलन से परेशान पुणे के नागरिकों ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। याचिका में कहा गया छात्रों के आंदोलन से पूरे पुणे शहर को परेशानी हो रही है, जिससे ट्रैफिक पर बुरा असर पड़ा है, ऑफिस जाने वाले लोगों को परेशानी हो रही है, स्कूल कॉलेज पहुंचने वाले छात्रों को दिक्कत हो रही है, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की आवाजाही भी प्रभावित होने का दावा किया जा रहा है। स्थानीय लोगों को कथित धमकी और उत्पीड़न के आरोप के साथ आंदोलन कवर कर रहे पत्रकारों से कथित मारपीट की शिकायत की गई है।
6: कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रदर्शनकारी छात्र कोई समाज विरोधी या देश विरोधी तत्व नहीं है, और परीक्षा प्रक्रिया में गड़बड़ी लगने पर उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने का पूरा अधिकार है। हालांकि कोर्ट ने अलका टॉकी

0: चौक पर हो रही जो रास्ता जाम है उस पर भी अपनी चिंता जताई और कहा कि लोगों को वहां से हट जाना चाहिए और जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। इसके साथ ही कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार का निर्देश दिया है, जबकि सरकार की ओर से कोर्ट में यही बताया गया कि छात्रों की अधिकांश मांगे पूरी कर दी गई हैं, लेकिन अब इस पूरे मामले की सुनवाई 25 नवंबर को होगी।
1: इधर एनसीपी शरद गुट के विधायक रोहित पवार ने साफ कर दिया है कि छात्रों की सभी मांगे पूरी होने तक प्रदर्शन जारी रहेगा।
2: 20-20 घंटा ये पढ़ाई कर रहे हैं और पेपर फूट रहा है। कल तक हम तो एमपीएससी के लिए लड़ रहे थे। अभी आज सुबह अगर आपने देखा होगा, महाज्योति करके एक डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, वहाँ पे जो ऑनलाइन पेपर था वहाँ पे भी बहुत सारे सेंटर में गड़बड़ हो गई। मतलब एक तो एमपीएससी की गड़बड़ हो गई, पेपर तो फूट गया, और यहाँ पे भी अगर अलग तरीके से मास कॉपिंग हो रहा है, मतलब ये तो अगर कॉन्स्टेंटली हर जगह हो रहा है तो अभी इसके लिए तो हमको लड़ना पड़ेगा। अभी कोर्ट ने कहा है कि जाके पढ़ाई करो, ये लोग बच्चे कह रहे पढ़ाई करके अगर पेपर फूटेगा 50 लाख 1 करोड़ को अगर पेपर जाएगा वो पैसा हम गरीब होने के कारण हम कहाँ से लाएंगे। इसलिए बच्चों का कहना है कि अध्यक्ष को हटाओ, एमपीएससी का टोटल रिस्ट्रक्चरिंग कर लो, ट्रांसपेरेंसी ला दो एंड वी आर रेडी टू गिव द एग्जाम।
1: एडवोकेट जनरल मिलिंद साठे ने कोर्ट को बताया कि पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों के प्रति अब तक संयम बरता है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि पुणे की 70 लाख आबादी को इन प्रदर्शनकारियों ने बंधक बना रखा है। सीएम फडणवीस भी कह रहे हैं कि छात्रों की ज्यादातर मांगे पहले ही मंजूर हो चुकी है।
3: एमपीएससी च्या विद्यार्थ्यांचं आंदोलन हे हायजॅक झालेलं आहे, ते आता पूर्णपणे राजकीय नेत्यांचं आंदोलन झालंय। एमपीएससी च्या विषयांपेक्षा त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या राजकीय विषयांवर भाषण होऊ लागलेली आहेत। एमपीएससीचं आंदोलन असताना मोदीजींचा विषय, देशाचा विषय, वेगवेगळे विषय त्या ठिकाणी येत आहेत जे पूर्णपणे राजकीय आहेत। की एमपीएससीच्या चेअरमनला हटवण्याचा अधिकार हा केवळ राष्ट्रपतींकडे आहे आणि तोही सुप्रीम कोर्टाला राष्ट्रपती सांगतात, सुप्रीम कोर्ट इन्क्वायरी करतं आणि त्यानंतर राष्ट्रपती तो काढू शकतात, तो आमच्या कोणाच्याही हातामध्ये नाही। त्यामुळे तुम्ही म्हणत असाल तर आम्ही ज्युडिशियल इन्क्वायरी करायला तयार आहोत, ते त्यांनी मान्य केलं। ती पेपर फूट झाली तेव्हा हे अध्यक्षच नव्हते, जॉईनच झालेले नव्हते, हे त्या एमपीएससीचे अध्यक्ष नसताना झालेल्या पेपर फुटीकरता त्यांचा राजीनामा घ्या आग्रह असताना राज्य सरकारने मान्य केलं की त्यांची निष्पक्ष चौकशी करून।
1: हायकोर्टने राज्य सरकार को भर्ती प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के निर्देश दिए हैं, साथ ही करीब 70,000 रिक्त पदों का विभाग और आरक्षण के आधार पर ब्यौरा देने और भर्ती प्रक्रिया का रोडमैप 3 हफ्ते में पेश करने को कहा है।
4: तो अब आपकी क्या मांग है? कोर्ट ने तो टिप्पणी कर दी कि आपको पढ़ाई भी करनी चाहिए।
5: पढ़ाई, ये बात सच है, पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन उसके लिए वो जो एग्जाम है वो पारदर्शी, मतलब ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, होना चाहिए। ये तो मांग है ना हमारी, इसलिए हमने जो एमपीसी के चेयरमैन है उनका रेजिग्नेशन मांगा है।
4: देखो, बात यह है कि जितने भी मांगी पहली की गई थी वो सब एक्सेप्ट हो चुकी है, सिर्फ इस्तीफे की मांग बची है। तो क्या आपको क्या लगता है कि अब कोर्ट की टिप्पणी भी आ गई है तो आपको क्या करना चाहिए?
5: सर, वो जो अदर जो मांगे है ना
4: जी,
5: उसका कुछ मतलब नहीं रहेगा अगर इनका राजीनामा, जो रेजिग्नेशन है वो नहीं लिया तो, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी तो एग्जाम देने में कुछ मतलब नहीं है ना फिर।
1: कोर्ट ने छात्रों से कहा है कि जब मामला अदालत के सामने है तो उन्हें कोर्ट का भरोसा रखना चाहिए और अगर आंदोलन जारी रखना है तो प्रशासन से अनुमति लेकर वैकल्पिक जगह पर प्रदर्शन किया जाए।
4: महाराष्ट्र सरकार हो या फिर एमपीएससी यानी कि महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, उसे लेकर यहाँ के छात्रों के मन में कुछ सवाल है जिसके जवाब नहीं मिल रहे, और ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी, ये दोनों के जवाब कौन देगा, इसी पर पूरा आंदोलन की आगे एग्जैक्टली क्या होगा वो देखना अहम रहेगा। जवाब ले आज तक पूरे,
6: और इसी के साथ हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: हरियाणा की सियासत का सबसे बड़ा मंच, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ हर सवाल पर होगी खुलकर बात। देखिए पंचायत आज तक हरियाणा 8 अक्टूबर दिन भर सिर्फ आज तक पर।
1: रियल्टी पार्टनर TDI इंफ्राटेक नॉर्थ इंडियाज लीडिंग टाउनशिप डेवलपर।
2: हेल्थ पार्टनर
3: वृंदा लाइफ, वी आर नोन फॉर क्वालिटी मेडिसिन।
4: बैंकिंग पार्टनर
5: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
6: स्पेशल पार्टनर ग्रेट खलीज चॉइस फॉर पावरफुल फिटनेस लिफ्ट्स बाय पोलो एलिवेटर।

0: हाई वोल्टेज सियासी ड्रामे के बीच हिरासत में लेने के बाद छोड़े गए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, आज पूरे देश में प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। ज्ञानेश कुमार पर सियासी घमासान तेज, खड़गे ने कहा तानाशाह मोदी सरकार और चुनाव आयोग के गठबंधन का पर्दाफाश, नितिन नवीन का पलटवार, अराजकता फैला रहे हैं राहुल गांधी। सीएम से पीएम तक जनसेवा में प्रधानमंत्री मोदी के 25 साल का एम्बिशन नहीं मिशन के लिए जीता हूं, कई शहरों में बीजेपी के कार्यक्रम, आडवाणी से मिले प्रधानमंत्री। यूपी में लड़ाई फिर 80-20 पर आई, राज्यसभा चुनाव के नतीजों पर सीएम योगी का एसपी पर तीखा तंज का, 2027 का परिणाम साफ, अखिलेश का पलटवार, घमंड का मिलेगा दंड। और दिल्ली के सीमापुरी इलाके में गिरी 4 मंजिला इमारत, अब तक 3 लोगों की मौत, अस्पताल में घायलों का इलाज जारी। सीसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आज कांग्रेस देश में प्रदर्शन करेगी। बुधवार को लगातार दूसरे दिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने सीसी के खिलाफ न सिर्फ संग्राम छेड़ा बल्कि दिल्ली पुलिस से भी टकरा गए। लगातार दूसरे दिन राहुल और प्रियंका को पुलिस ने जबरदस्ती धरने से उठाया और हिरासत में ले लिया, हालांकि बाद में पुलिस हिरासत में दोनों को रिहा कर दिया गया था।
1: राहुल की ललकार ज्ञानेश के खिलाफ गलगार।
2: हटाओ नहीं सर, मैं काम को हटा दे सर, मैं कल भी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था।
1: पहले आकाशवाणी फिर जंतर मंतर के लिए कूच।
3: पुलिस में बट हैव स्क्रैच मी ऑल ओवर, दे हैव थ्रोन अस टू द ग्राउंड।
1: पुलिस ने रोका इंडिया गठबंधन की बस का रास्ता।
2: सर ये हजारों की भीड़ है, किसी को चोट लग गई।
1: सड़क पर राहुल प्रियंका की हुंकार, ज्ञानेश पर आर पार।
3: Let them call their forces back. I will not move from here.
1: जंतर मंतर पर बैरिकेडिंग, सड़क पर ही छिड़ा संग्राम।
4: ऐसे नहीं होगा,
5: आप बताएं कैसे होगा?
4: आपने इसको धकेला नीचे।
1: तस्वीरें जंतर मंतर चौराहे की हैं। आप देख सकते हैं जंतर मंतर पर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ धरना देने निकले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को दिल्ली पुलिस जबरन उठाकर हिरासत में ले लेती है। ये दो तस्वीरें देखिए, कैसे राहुल गांधी को उठाकर गाड़ी में डाला जाता है, और दूसरी तस्वीर में प्रियंका गांधी को देखिए, कैसे सड़क पर लेटी प्रियंका गांधी को उठाने के लिए पुलिस और केंद्रीय बलों को खासी मशक्कत करनी पड़ती है, और फिर प्रियंका गांधी को सड़क से उठाकर हिरासत में लिया जाता है। सड़क पर तगड़ा संग्राम छिड़ जाता है क्योंकि प्रियंका गांधी सड़क से उठने को तैयार नहीं होती है।
3: This is how they treat members of parliament who are asking simply to meet the election commissioner. This is how they treat us. Let them call their forces back. I will not move from here.
1: और अब आपको ज्ञानेश कुमार के खिलाफ छिड़े रण की पूरी टाइमलाइन दिखाते हैं। पहले राहुल गांधी कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन के सांसदों के साथ जनपद पर सागर रत्ना रेस्टोरेंट में लंच करते हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नया मोर्चा खोलने के लिए जंतर मंतर के लिए निकल पड़ते हैं।
6: प्रोटेस्ट साइट है जंतर मंतर, वहां पे हम जाकर सब आज फिर से बैठे और देश को बताएं कि हमारे लिए ज्ञानेश कुमार जी देश के लेजिटिमेट इलेक्शन कमिश्नर नहीं है। मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, मोहन भगवत, ज्ञानेश कुमार जी ने देश के लोकतंत्र को खत्म किया है, और मैंने कल भी कहा था जिन्होंने ये काम किया है ये देशद्रोही है और इन पर हम एक्शन लेंगे। मैं आपको अभी बता रहा हूँ ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा देना पड़ेगा।
7: इलेक्शन कमीशन कर रही है और मोदी जी करा रहे हैं, और जब मोदी जी ऐसी गलती करा रहे हैं इसका मतलब यह है कि इस देश में डेमोक्रेसी को खत्म करने की कोशिश वो कर रहे हैं।
5: are all here together. We are all here united. And we are all here without any egos. We will fight these guys.
8: जो ज्ञानेश है ना, ये इस देश का सबसे बड़ा गद्दा घोषित हो, इसे कोई नहीं बचा पाएगा। जहां ज्ञानेश मिलेगा वहीं खोजने जा रहे हैं, वहीं ढूंढेंगे जहां बंद करके इसको रखा हो।
9: ज्ञानेश की तलाश में आप जा रहे हैं?
8: क्या करेंगे, ज्ञानेश बोल ही नहीं रहा है और लॉ मिनिस्टर बोल ही नहीं रहा है, बीजेपी का प्रवक्ता ज्ञानेश को बचा रहा है।
1: राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ यलगार छेड़ दिया है। पहले आकाशवाणी भवन परिसर में 8 घंटे तक धरना और फिर जंतर मंतर से धावा बोलने के लिए राहुल, प्रियंका और इंडिया गठबंधन के 200 सांसद बस में सवार हो जाते हैं।
10: नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट इज अ इललेजिटिमेट गवर्नमेंट, नॉट ओनली ज्ञानेश कुमार, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ऑल्सो हैज टू गो, राइटिंग इज ऑन द वॉल, दे आर सीइंग, दे आर अफ्राइड, दैट इज व्हाई दे आर यूजिंग अ ब्रूटल फोर्स अगेंस्ट अस, बट वी आर नॉट इंटिमिडेटेड।
1: उधर जंतर मंतर जैसे दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों की छावनी में तब्दील कर दिया जाता है और जंतर मंतर चौराहे पर राहुल, प्रियंका समेत सभी विपक्षी सांसदों की बस रोक ली जाती है।
11: हम उनका इस्तीफा मांगना चाहते हैं क्योंकि हमें विश्वास नहीं है उनमें। ये जो चुनाव आयोग है ये किस लिए चलता है? इस देश की जनता के लिए। हम जनता के प्रतिनिधि हैं, 250 जनता के प्रतिनिधि, उनमें से एक एक प्रतिनिधि कम से कम 20 से 30 लाख लोगों के प्रतिनिधि हैं और हम सच में कह रहे हैं कि हम शांतिपूर्वक जाएंगे, बात करेंगे। और ये सरकार इतनी कायर है, इतनी डरती है इस जनता की आवाज से कि हर जगह प्रदर्शन रोक रही है।
12: आपको लगता है हम यहाँ से हिल जाएंगे? क्या समझ रखा है इन लोगों ने? ये देश की राजधानी की यह हालत है।
13: ब्रूटली लाठीचार्ज कर रहे हैं, ये सीधे गुनहगार हैं। ज्ञानेश जी, अमित शाह जी और मोदी जी, ये विजुअल्स कई साल तक हमने नहीं देखे थे। ब्रूटालिटी की इंतहा है। यू स्टैंड एक्सपोज।
1: बस का घेराव देखकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों बस से नीचे उतर आते हैं और वहीं सड़क पर बैठकर धरना देने लगते हैं। दिल्ली पुलिस के अफसर राहुल गांधी से बात कर उन्हें सड़क से उतरने के लिए कहते हैं। जबकि प्रियंका गांधी सड़क पर देखकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर देती हैं। ये सब देखकर जैसे पुलिस के हाथ पांव फूलने लगते हैं। फिर पुलिस प्रियंका गांधी को हटाने की कोशिश करती है लेकिन प्रियंका गांधी तस से बस नहीं होती।
3: They are beating members of parliament. Their police members have scratched me all over. They have thrown us to the ground, and now we are not going to move from here.
10: गुंडागर्दी, अरे इनका इतिहास क्या है? जरा पेज पलट के दिए तो नई नई शान पहन के घूम रहे होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, सबको मालूम इनका इरादा क्या है। तो अगर ये सोच रहे हैं कि हम डर के रुक जाएंगे, बेटा उनको बोल दो ये होने वाला नहीं।
1: काफी देर तक पुलिस और राहुल, प्रियंका के बीच एक संघर्ष चलता है। आखिर में दिल्ली पुलिस राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को सड़क से जबरन उठाकर ले जाती है और हिरासत में ले लेती है।
14: अमित शाह, नरेंद्र मोदी, ज्ञानेश कुमार, मोहन भगवत, एंड दे कैन डू ऑल दिस स्टफ, बट वी आर गोइंग टू ब्रिंग देम to justice. My guarantee that all four of them will be brought to justice.
1: ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर विपक्ष अड़ा हुआ है। राहुल और प्रियंका से पहले सुबह में लेफ्ट पार्टियां और आम आदमी पार्टी ने भी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लड़ाई बड़ी है। अब ये लड़ाई कहां तक जाएगी, आगे आगे देखते हैं होता है क्या। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
0: राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्ष के प्रदर्शन के दिल्ली पुलिस की मुश्किलें बढ़ गई हैं क्योंकि पुलिस की तरफ से राहुल गांधी को रोकने की तैयारियां की जाती हैं लेकिन राहुल पुलिस के बंदोबस्त को चकमा देते हुए नई जगह पर प्रदर्शन के लिए पहुंच जाते हैं। मतलब यही है कि दिल्ली पुलिस के नहले पर राहुल गांधी दहला चल रहे हैं।

0: 45 एफआईआर हैं, मेरा लक्ष्य है कि मुझे 100 चाहिए। मैं चाहता हूं कि मेरे ऊपर 100 एफआईआर लगे, हर एफआईआर मेरे लिए एक मेडल है।
1: राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज हो गई, लेकिन वो रुकेंगे नहीं बल्कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे तक सड़क पर सीधी लड़ाई जारी रखेंगे। राहुल गांधी के इसी तेवर ने दिल्ली पुलिस की नींद उड़ा रखी है। दिल्ली पुलिस राहुल गांधी को रोकने के लिए पूरा होमवर्क करती है, लेकिन बीच में राहुल गांधी दिल्ली पुलिस की तमाम तैयारियों को चकमा दे देते हैं। बीते दिन संसद भवन से राहुल गांधी को चुनाव आयोग के दफ्तर जाना था। पुलिस की तैयारी यही थी कि राहुल गांधी को चुनाव आयोग के दफ्तर से पहले हिरासत में लिया जा सके, लेकिन राहुल गांधी पुलिस को चकमा देकर आकाशवाणी भवन में दाखिल हुए और धरने पर बैठ गए। कई घंटों के बाद दिल्ली पुलिस किसी तरह राहुल का धरना खत्म करवा पाई। पुलिस के हाथ पांव फूल गए। आज दिल्ली पुलिस को पहले से पता था कि विपक्ष के सांसदों के साथ राहुल गांधी जनपद के पास लंच करेंगे, उसके बाद आज जंतर मंतर जाएंगे। लिहाजा राहुल गांधी से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस के डीसीपी ने अपने अधीनस्थों को खास ट्रेनिंग दी,
2: लाइक विद ऑल वेरी वेरी रिस्पेक्टफुली।
1: क्योंकि राहुल गांधी के दिमाग में क्या है, राहुल का प्लान क्या है, ये दिल्ली पुलिस के लिए किसी पहेली से कम नहीं था।
2: जो लोग सीधे सीधे चलने लग गए उनको आप आराम से ले जा ले जाके, कोशिश पहली यही होनी है कि आराम से प्यार से बोल के रेस्पेक्टफुली बोल के हम सबको ले जाएं और सबको बैठा लें, ठीक है। नेक्स्ट ये होने वाला है अपना कि क्योंकि सपोर्टर्स भी बहुत सारे होते हैं तो वो भी रेजिस्ट करते हैं, पकड़ लेते हैं, ग्रुप कर लेते हैं, ठीक है। मेल को फीमेल्स भी कर लेती हैं, पकड़ लेती हैं बहुत जोर से, तो इन चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और बसेस, बस में बैठा दिया तो बस से निकल ना पाएं और बस के आगे की क्लैरिटी देनी पड़ेगी ताकि बस सीधा सीधा निकल जाए।
1: नई दिल्ली के डीसीपी सचिन शर्मा उन पुलिस वालों को क्लास दे रहे हैं जिनके कंधों पर राहुल गांधी को रोकने की जिम्मेदारी है। राहुल गांधी लोकसभा में नेता विपक्ष हैं, लिहाजा आज डीसीपी ने पुलिस वालों को हिरासत में लेने का पूरा तरीका समझाया।
2: सेंसिटिवली सारा अदब और रिस्पेक्टफुली इनको रिक्वेस्ट करते रहना है, ओरली हम रिक्वेस्ट करते रहेंगे सर, ऑनरेबल सर, ठीक है। तो वो चीज़ों का आप, हो सकता है काफ़ी सारे ऑनरेबल एमपीज को नहीं पहचानते हो, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ भी जो भी हो या तो उनके साथ वाला बता देता है, नहीं भी बताए तो ट्रीट एवरीबडी लाइक विद ऑल वेरी वेरी रिस्पेक्टफुली, ठीक है।
1: राहुल गांधी के एक्शन से दिल्ली पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि राहुल गांधी का प्लान दिल्ली पुलिस की तमाम तैयारियों पर भारी है। दिल्ली पुलिस की कोशिश है राहुल को धरने पर बैठने से रोकना, लेकिन राहुल मार्च भी निकाल रहे हैं और धरने पर भी बैठ रहे हैं। मतलब यही है कि दिल्ली पुलिस के तमाम तिकड़म को राहुल बार बार चकमा देने में कामयाब हो रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
3: दिल्ली में इंडिया गठबंधन ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया है। इससे पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी भी प्रदर्शन कर चुकी है, लेकिन दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी की तरफ से 10 अक्टूबर को इसी मुद्दे पर प्रदर्शन का ऐलान किया गया। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने ऐलान कर दिया है कि ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे तक जंतर मंतर पर सीजेपी कार्यकर्ता डटे रहेंगे, जैसे पेपर लीक के मामले पर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था।
1: ज्ञानेश कुमार पर सीजेपी का प्लान जंतर मंतर।
4: मैं ये कहना चाहता हूँ जहाँ रोकोगे उसी को जंतर मंतर बना देंगे, और कितने लोगों की आवाज उठाओगे, पूरा देश जंतर मंतर बन जाएगा अगर ज्ञानेश कुमार को हटाया नहीं, पूरा देश जंतर मंतर बन जाएगा।
1: 10 अक्टूबर को जंतर मंतर से नई लड़ाई।
5: जब भी दिल्ली पुलिस हमें रोके वहाँ पे हम लोग बैठ जाएंगे, वो कहलाएगा जंतर मंतर। हमारा यही प्लान होने वाला है, पूरा दिल्ली जंतर मंतर बनने वाला है।
1: केंद्र सरकार को सीजेपी का सीधा अल्टीमेटम।
4: और आज ये लोग आते वोटिंग राइट छीनना चाहते, तो ये बात किसी पार्टी की नहीं, ये बात किसी आइडियोलॉजी की नहीं है, ये बात लोगों के फंडामेंटल राइट्स की है। अगर लोगों से उनका वोटिंग राइट छीना जाएगा तो क्या डेमोक्रेसी दिखेगी? वन नेशन वन इलेक्शन, ये स्लोगन है लेकिन असली इंटेंशन है वन नेशन वन पार्टी।
1: चुनावी सिस्टम बदलने निकलेगी टीम CJP। अभिजीत दिपके का जंतर मंतर पार्ट टू।
4: क्योंकि कहीं ना कहीं जो 10 अक्टूबर को हमारा मार्च होने जा रहा है जंतर मंतर को, उसको लेकर सरकार डरी हुई है, जिसके कारण सोशल मीडिया पर भी इंस्टाग्राम पर भी इन्होंने जितने भी CJP से रिलेटेड कंटेंट है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है इंडिया।
1: पेपर लीक मामले में अभिजीत दिपके की अगुवाई में CJP ने दिल्ली के जंतर मंतर पर जून महीने में शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग के साथ आंदोलन शुरू किया था। दुनिया ने जेन जी की शक्ति देखी और आखिरकार सरकार को CJP की मांग के आगे झुकना पड़ा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। एक बार फिर अभिजीत दिपके जंतर मंतर पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर मंतर आ रहे हैं। 10 अक्टूबर को CJP ने जंतर मंतर पर देश भर के जेन जी को जुटने के लिए बुलाया है।
4: इसमें देखिए हमारी 3 डिमांड्स है। हम भी मानते हैं कि एक का रेजिग्नेशन लेकर कुछ बदलेगा नहीं। हमारी 3 डिमांड्स है। पहला डिमांड जो है वो ज्ञानेश कुमार का रेजिग्नेशन है, उसके साथ ही उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगने चाहिए। दूसरी हमारी डिमांड है कि SIR का जो रोल है वो फ्रीज होना चाहिए। और तीसरी डिमांड जो है, जो इलेक्शन कमीशनर का अपॉइंटमेंट होता है वो इंडिपेंडेंटली हो जाए, न्यूट्रली हो जाए। ऐसा ना हो कि अमित शाह और मोदी जी एक दिन दोनों साथ में बैठे नाश्ता करते हुए डिसाइड कर ले ये बंदा बड़ा सही है, ये अपने साइड का इसको बना देते भाई ये सही लग रहा है, ऐसा नहीं चल सकता।
1: जंतर मंतर पर प्रदर्शन को लेकर अभिजीत दिपके की 3 मांगे हैं। पहली मांग ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा और आपराधिक मुकदमा। दूसरी मांग देश भर में जारी SIR की प्रक्रिया तुरंत बंद होनी चाहिए। तीसरी मांग मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का सिस्टम बदले। दरअसल दिपके ने वोटर लिस्ट की SIR में कथित गड़बड़ियों का हवाला देते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की है। मतलब शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद अब दिपके मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर मंतर पर आर पार की लड़ाई लड़ने महाराष्ट्र से दिल्ली आ रहे हैं। दावा यही है कि देश का जेन जी अब चुनावी सिस्टम में मौजूद खामियों को दूर करके ही दम लेगा।
5: 10 अक्टूबर से देश बहुत बड़ा मोबिलाइजेशन देखने वाला है देश के युवाओं का, क्योंकि भले ही कांग्रेस जनता पार्टी ने ये कॉल दिया हो लेकिन ये कॉल प्रोटेस्ट का देश के युवाओं का है, देश के जेंजी का है। ये देश का युवा 10 अक्टूबर से बाहर निकल रहा है एंड बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला है। जब तक ज्ञानू का रेजिग्नेशन नहीं हो जाता तब तक हम लोग वापस नहीं जाएंगे। जब तक ये सिस्टम नहीं बदल जाए, इलेक्टोरल सिस्टम, तब तक हम लोग बाहर नहीं जाएंगे, वापस नहीं जाएंगे घर।
1: दिल्ली पुलिस की तरफ से जंतर मंतर पर किसी भी तरह के प्रदर्शन पर रोक है। दिपके का कहना है कि पाबंदियों के पीछे सरकार का डर है। आरोप यही है कि महाराष्ट्र में CJP कार्यकर्ताओं को दिल्ली जाने से पुलिस रोक रही है।
4: लोगों को बताया पिछले कुछ दिनों से मैं महाराष्ट्र पुलिस की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहा था कि कैसे उन्होंने मुंबई में जो हमारा प्रोटेस्ट हुआ उसको कोऑपरेट किया, कहीं से भी दिल्ली पुलिस की तरह डंडा नहीं चलाया। लेकिन कहीं ना कहीं आज थोड़ा हार्ट ब्रेक हुआ है, क्योंकि एक तरफ हम बता रहे हैं कि महाराष्ट्र की पुलिस इस देश की सबसे बेस्ट पुलिस है, क्योंकि वो कभी भी ब्रूटल नहीं होती है दिल्ली पुलिस की तरह, दिल्ली पुलिस जिस तरीके से बच्चों को पीटती है। लेकिन आज ही CJP के वॉलंटियर्स को नोटिस आया है, उसमें ये पूछा है कि चंद्रपुर महाराष्ट्र से जो लोग दिल्ली जा रहे हैं वो कैसे जा रहे हैं, इसका पैसा कहाँ से आ रहा है। अब ट्रेन का 1,000-1,500 का जो खर्चा है, ट्रेन का टिकट है, उसका भी हिसाब पुलिस को देना पड़ेगा क्या? कुछ और काम बचा नहीं है पुलिस को।
1: CJP अध्यक्ष अभिजीत दिपके का आरोप है चंद्रपुर में उनके कार्यकर्ताओं को पुलिस की तरफ से नोटिस भेजा गया है। नोटिस में महाराष्ट्र से दिल्ली जाने वाले कार्यकर्ताओं से ट्रेन के टिकट का सोर्स पूछा गया है। पुलिस नोटिस पर भड़के दिपके ने पूछा है कि महाराष्ट्र पुलिस दिल्ली के जंतर मंतर पर होने वाले प्रोटेस्ट को लेकर नोटिस कैसे भेज सकती है।
4: चीज बोली है कि आप आंदोलन में चले गए तो आपके ऊपर लीगल एक्शन होगा। चंद्र पुलिस कौन होती है डिसाइड करने वाली कौन आंदोलन में जाएगा और कौन नहीं? और जंतर मंतर का आंदोलन चंद्रपुर पुलिस के अंदर कब से आ गया? क्या जंतर मंतर चंद्रपुर पुलिस के अंदर आता है? और तीसरी चीज कही जा रही है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस आंदोलन में मत जाइए, आंदोलन हिंसक है। चंद्रपुर पुलिस को महाराष्ट्र पुलिस को कैसे पता पहले से कि आंदोलन हिंसक है? क्या पहले से ये लोग कुछ प्लान कर रहे हैं क्या?
1: बड़ी बात यह है कि दिपके ने ऐलान किया है कि वो गिरफ्तारी से नहीं डरते। अगर पुलिस ने जंतर मंतर जाने से रोका और जेल भेजा तो भी ये आंदोलन रुकेगा नहीं।
4: मैं कहना चाहता हूँ कि अरेस्ट करना है तो कर लो यार, यही बैठा हूँ मैं, उठा लो, 3 महीने नहीं 6 महीने रख दो, 1 साल रख दो, एनएसए लगाना है एनएसए लगा दो, यूएपीए लगाना है यूएपीए लगा दो, जो लगाना है लगा दो। अगर आपको लगता है अरेस्ट की धमकियां देकर या जेल का डर दिखाकर हम चुपचाप बैठेंगे तो ऐसा नहीं है। जब अमेरिका से आया था तब यही सोचकर आया था कि जेल जा रहा हूं, तो डालना है जेल में तो डाल दो, लेकिन उसके बाद भी हम लड़ते रहेंगे, डेमोक्रेसी को बचाने की बात है, उसके लिए हम लड़ते रहेंगे।
1: दीप के इसी मुद्दे पर मुंबई के शिवाजी पार्क में प्रदर्शन कर चुके हैं। पुलिस की मनाही के बावजूद ये प्रदर्शन हुआ। तब दीपके ने कहा था ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा नहीं हुआ तो वो दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने जाएंगे। सीजीपी के ऐलान ने दिल्ली पुलिस की नींदें उड़ा रखी हैं, क्योंकि दीपके का प्लान जंतर मंतर पर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एक बड़े आंदोलन को शुरू करना है। आज तक ब्यूरो।
3: फ्रांस में शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर छात्र सड़कों पर उतर आए। सितंबर में शुरू आया आंदोलन अब पूरे देश में फैल गया है। छात्र स्कूलों में बढ़ती भीड़, जर्जर इमारतों और शिक्षकों की कमी का विरोध कर रहे हैं। आंदोलन के दौरान कई जगहों पर छात्रों और पुलिस के बीच में झड़पें भी हुई और इसी पूरे आंदोलन पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बयान ने एक नई बहस छेड़ दी है।
1: सुलग उठा फ्रांस, जेन जी और जेन अल्फा का विद्रोह। स्कूलों की बदहाली, फ्रांस में जेन जी आंदोलन की चिंगारी। स्कूलों से सड़क तक जेन जी की पुलिस से सीधी भिड़ंत। अब तक 5,000 से ज्यादा छात्र गिरफ्तार, स्कूलों पर संग्राम। बवाल के बीच ट्रंप का बयान, फ्रांस पर कब्जा चाहता है इस्लाम। ये तस्वीरें फ्रांस की हैं। सड़कों पर आग है, पुलिस है, आंसू गैस है और पुलिस के सामने खड़ी है फ्रांस की नई पीढ़ी। एक ऐसी पीढ़ी जिसमें जेन जी और जेन अल्फा शामिल हैं और इन्होंने बदहाल स्कूलों के लिए फ्रांस की सरकार के खिलाफ एक जंग छेड़ दी है। कहीं स्कूल के गेट पर बैरिकेडिंग है, कहीं सड़कों पर छात्रों का हुजूम है और कहीं पुलिस के साथ सीधा टकराव। आपको बता दें कि फ्रांस के लेंस शहर में एक स्कूल के पास हुए धमाके में 15 साल के एक छात्र का हाथ उड़ गया। तो इससे पहले पिछले हफ्ते 14 साल के ईडन नाम के छात्र के सिर पर आंसू गैस का गोला लगने की खबर सामने आई। उसके जबड़े में 2 जगह फ्रैक्चर हुआ था और उसे बड़ी सर्जरी करानी पड़ी। मानवाधिकार संगठनों, छात्रों और अभिभावक समूहों ने नाबालिगों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई को जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग बताया है। स्ट्रासबर्ग में पुलिस ने छात्रों पर आंसू गैस छोड़ी, छात्र सड़कों पर भागते नजर आए। यानी स्कूलों की समस्या को लेकर शुरू हुआ आंदोलन अब कई जगह हिंसक टकराव में बदल चुका है। प्रदर्शन के दौरान करीब 200 लोग घायल हुए हैं तो 5,000 से अधिक छात्रों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें करीब 87% नाबालिग हैं। यानी बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां 18 साल से कम उम्र के छात्रों की हुई हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक इस आंदोलन के दौरान 85 टीचिंग स्टाफ भी घायल हुए हैं। आंदोलन की शुरुआत 21 सितंबर को पेरिस के एक स्कूल से होती है। छात्रों की मांग थी कि स्कूल में स्टाफ और संसाधनों की कमी दूर की जाए। स्कूल में अतिरिक्त स्टाफ भेजे जाने के बाद वहां की हड़ताल तो खत्म हो गई, लेकिन तब तक दूसरे इलाकों में भी विरोध शुरू हो चुका था। इसके बाद विश्वविद्यालयों के छात्र भी आंदोलन में शामिल हो गए। इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर में बड़ी हुई ये नई पीढ़ी अब ऑनलाइन शिकायत करने के बजाय सड़कों पर उतरकर अपने स्कूलों की हालत पर सवाल पूछ रही है। लेकिन फ्रांस में जेन जी और जेन अल्फा के इस धधकते आक्रोश के बीच अमेरिका से एक ऐसा बयान आया जिसने बहस की दिशा ही बदल दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि फ्रांस में जो हो रहा है वो बड़े पैमाने पर बाहर से लोगों के बेकाबू ढंग से आने का मामला है। ये स्कूलों से जुड़ा मामला नहीं है, ये एक महान देश पर इस्लाम के कब्जा करने का मामला है। यानी जहां फ्रांस के छात्र शिक्षकों की कमी, स्कूलों की खराब हालत, भरी हुई कक्षाओं और शिक्षा व्यवस्था में ज्यादा निवेश की मांग कर रहे हैं, वहीं ट्रंप ने इस पूरे घटनाक्रम को बाहर से लोगों के आने और इस्लाम के मुद्दे से जोड़ दिया। लेकिन ट्रंप के इस बयान के पीछे सिर्फ फ्रांस का मुद्दा नहीं देखा जा रहा, इसके पीछे अमेरिका की घरेलू राजनीति भी है। अगले महीने अमेरिका में मिड टर्म चुनाव होने हैं और ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के लिए बाहर से आने वाले लोगों का मुद्दा और इस्लाम से जुड़ी राजनीति दक्षिणपंथी वोटरों को लामबंद करने वाले बड़े मुद्दों में शामिल है। यानी फ्रांस के स्कूलों में चल रहे आंदोलन को ट्रंप ने अपने उस राजनीतिक नैरेटिव से जोड़ दिया जिसका इस्तेमाल अमेरिका में अपने समर्थकों को एकजुट करने के लिए किया जाता रहा है। तो मिड टर्म चुनाव से ठीक पहले क्या फ्रांस के इस विवाद को बाहर से आने वाले लोगों और इस्लाम के मुद्दे से जोड़कर ट्रंप अपने समर्थक वोटरों को एकजुट करने का राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं? हालांकि फ्रांस की सड़कों पर मौजूद छात्रों से अगर पूछा जाए तो उनकी घोषित मांगे फिलहाल बिल्कुल अलग हैं। शिक्षक चाहिए, स्कूलों की मरम्मत चाहिए, कक्षाओं में भीड़ कम चाहिए और शिक्षा व्यवस्था के लिए ज्यादा संसाधन चाहिए। यानी एक तरफ फ्रांस की जेन अल्फा और नई पीढ़ी का स्कूलों को लेकर गुस्सा और दूसरी तरफ ट्रंप का इसे बाहर से लोगों के आने और इस्लाम से जोड़ना। लेकिन अब मामला सिर्फ स्कूलों तक सीमित नहीं रहा, हिंसा बढ़ी है, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव बढ़ा है, सैकड़ों छात्र और स्कूल कर्मचारी घायल हुए हैं और 700 से ज्यादा पुलिस कर्मियों के भी घायल होने की जानकारी है। फ्रांस के प्रधानमंत्री सेबेस्टियन डेकोर्नू ने इसे कई दशकों में सबसे हिंसक स्कूल प्रदर्शनों में से एक बताया है और मंत्रियों को छात्रों की मांगों पर काम करने का निर्देश दिया है। सरकार के सामने मुश्किल इसलिए भी बड़ी है क्योंकि फ्रांस पहले से भारी सरकारी कर्ज, कमजोर आर्थिक विकास और बढ़ते बजट घाटे से जूझ रहा है। यानी सड़कों पर छात्र हैं, स्कूलों की बदहाली है और सरकार के सामने पैसे की भी बड़ी चुनौती है। आज तक ब्यूरो।
3: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: हाई वोल्टेज सियासी ड्रामे के बीच हिरासत में लेने के बाद छोड़े गए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, आज पूरे देश में प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। ज्ञानेश कुमार पर सियासी घमासान तेज, खड़गे ने कहा तानाशाह मोदी सरकार और चुनाव आयोग के गठबंधन का पर्दाफाश, नितिन नवीन का पलटवार, अराजकता फैला रहे हैं राहुल गांधी। सीएम से पीएम तक जनसेवा में प्रधानमंत्री मोदी के 25 साल का एम्बिशन नहीं मिशन के लिए जीता हूं, कई शहरों में बीजेपी के कार्यक्रम, आडवाणी से मिले प्रधानमंत्री। यूपी में लड़ाई फिर 80-20 पर आई, राज्यसभा चुनाव के नतीजों पर सीएम योगी का एसपी पर तीखा तंज का, 2027 का परिणाम साफ, अखिलेश का पलटवार, घमंड का मिलेगा दंड। और दिल्ली के सीमापुरी इलाके में गिरी 4 मंजिला इमारत, अब तक 3 लोगों की मौत, अस्पताल में घायलों का इलाज जारी। सीसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आज कांग्रेस देश में प्रदर्शन करेगी। बुधवार को लगातार दूसरे दिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने सीसी के खिलाफ न सिर्फ संग्राम छेड़ा बल्कि दिल्ली पुलिस से भी टकरा गए। लगातार दूसरे दिन राहुल और प्रियंका को पुलिस ने जबरदस्ती धरने से उठाया और हिरासत में ले लिया, हालांकि बाद में पुलिस हिरासत में दोनों को रिहा कर दिया गया था।
1: राहुल की ललकार ज्ञानेश के खिलाफ गलगार।
2: हटाओ नहीं यार। सर मैं एकदम तो हटा दे। सर मैं कल भी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था।
1: पहले आकाशवाणी फिर जंतर मंतर के लिए कूच।
3: द पुलिस में बट हैव स्क्रैच मी ऑल ओवर, दे हैव थ्रोन अस टू द ग्राउंड।
1: पुलिस ने रोका इंडिया गठबंधन की बस का रास्ता।
2: सर ये हजारों की भीड़ है, किसी को चोट लग जाएगी।
1: सड़क पर राहुल प्रियंका की हुंकार, ज्ञानेश पर आर पार।
3: Let them call their forces back. I will not move from here.
1: जंतर मंतर पर बैरिकेडिंग, सड़क पर ही छिड़ा संग्राम।
4: ऐसे नहीं होगा,
5: आप बताएं कैसे
4: होगा? आपने इसको धकेला नीचे।
1: तस्वीरें जंतर मंतर चौराहे की हैं। आप देख सकते हैं जंतर मंतर पर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ धरना देने निकले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को दिल्ली पुलिस जबरन उठाकर हिरासत में ले लेती है। ये दो तस्वीरें देखिए, कैसे राहुल गांधी को उठाकर गाड़ी में डाला जाता है, और दूसरी तस्वीर में प्रियंका गांधी को देखिए, कैसे सड़क पर लेटी प्रियंका गांधी को उठाने के लिए पुलिस और केंद्रीय बलों को खासी मशक्कत करनी पड़ती है, और फिर प्रियंका गांधी को सड़क से उठाकर हिरासत में लिया जाता है। सड़क पर तगड़ा संग्राम छिड़ जाता है क्योंकि प्रियंका गांधी सड़क से उठने को तैयार नहीं होती है।
3: This is how they treat members of parliament who are asking simply to meet the election commissioner. This is how they treat us. Let them call their forces back. I will not move from here.
1: और अब आपको ज्ञानेश कुमार के खिलाफ छिड़े रण की पूरी टाइमलाइन दिखाते हैं। पहले राहुल गांधी कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन के सांसदों के साथ जनपद पर सागर रत्ना रेस्टोरेंट में लंच करते हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नया मोर्चा खोलने के लिए जंतर मंतर के लिए निकल पड़ते हैं।
6: प्रोटेस्ट साइट है जंतर मंतर, वहाँ पे हम जाकर सब आज फिर से बैठे और देश को बताएं कि हमारे लिए ज्ञानेश कुमार जी देश के लेजिटिमेट इलेक्शन कमिश्नर नहीं है। मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, मोहन भगवत, ज्ञानेश कुमार जी ने देश के लोकतंत्र को खत्म किया है, और मैंने कल भी कहा था जिन्होंने ये काम किया है ये देशद्रोही है और इन पर हम एक्शन लेंगे। मैं आपको अभी बता रहा हूँ ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा देना पड़ेगा।
7: इलेक्शन कमीशन कर रही है और मोदी जी करा रहे हैं, और जब मोदी जी ऐसी गलती करा रहे हैं इसका मतलब यह है कि इस देश में डेमोक्रेसी को खत्म करने की कोशिश वो कर रहे हैं।
8: यदि
5: are all here together. We are all here united. And we are all here without any egos. We will fight these guys.
8: जो ज्ञानेश है ना, ये इस देश का सबसे बड़ा गद्दा घोषित हो, इसे कोई नहीं बचा पाएगा। जहां ज्ञानेश मिलेगा वहीं खोजने जा रहे हैं, वहीं ढूंढेंगे, जहां बंद करके इसको रखा हो।
9: ज्ञानेश की तलाश में आप जा रहे हैं?
8: क्या करेंगे, ज्ञानेश बोल ही नहीं रहा है और लॉ मिनिस्टर बोल ही नहीं रहा है, बीजेपी का प्रवक्ता ज्ञानेश को बचा रहा है।
1: राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ यलगार छेड़ दिया है। पहले आकाशवाणी भवन परिसर में 8 घंटे तक धरना और फिर जंतर मंतर से धावा बोलने के लिए राहुल, प्रियंका और इंडिया गठबंधन के 200 सांसद बस में सवार हो जाते हैं।
10: Narendra Modi government is a illegitimate government. Not only Ganesh Kumar and Narendra Modi government also has to go. Writing is on the wall. They are seeing, they are afraid. That is why they are using a brutal force against us. But we are not intimidated.
1: उधर जंतर मंतर जैसे दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों की छावनी में तब्दील कर दिया जाता है और जंतर मंतर चौराहे पर राहुल, प्रियंका समेत सभी विपक्षी सांसदों की बस रोक ली जाती है।
11: उनका इस्तीफा मांगना चाहते हैं क्योंकि हमें विश्वास नहीं है उनमें। ये जो चुनाव आयोग है ये किस लिए चलता है? इस देश की जनता के लिए। हम जनता के प्रतिनिधि हैं, 250 जनता के प्रतिनिधि, उनमें से एक एक प्रतिनिधि कम से कम 20 से 30 लाख लोगों के प्रतिनिधि हैं और हम सच में कह रहे हैं कि हम शांतिपूर्वक जाएंगे, बात करेंगे। और ये सरकार इतनी कायर है, इतनी डरती है इस जनता की आवाज से कि हर जगह प्रदर्शन रोक रही है।
12: आपको लगता है हम यहाँ से हिल जाएंगे? क्या समझ रखा है इन लोगों ने? ये देश की राजधानी की यह हालत है।
13: ब्रूटली लाठी चार्ज कर रहे हैं, ये सीधे गुनहगार हैं। ज्ञानेश जी, अमित शाह जी और मोदी जी, ये विजुअल्स कई साल तक हमने नहीं देखे थे। ब्रूटालिटी की इंतहा है। यू स्टैंड एक्सपोज।
1: बस का घेराव देखकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों बस से नीचे उतर आते हैं और वहीं सड़क पर बैठकर धरना देने लगते हैं। दिल्ली पुलिस के अफसर राहुल गांधी से बात कर उन्हें सड़क से उतरने के लिए कहते हैं। जबकि प्रियंका गांधी सड़क पर देखकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर देती हैं। ये सब देखकर जैसे पुलिस के हाथ पांव फूलने लगते हैं। फिर पुलिस प्रियंका गांधी को हटाने की कोशिश करती है लेकिन प्रियंका गांधी तस से मस नहीं होती।
14: Their policemen have scratched me all over. They have thrown us to the ground, and now we are not going to move from here.
15: गुंडागर्दी, अरे इनका इतिहास क्या है? जरा पेज पलट कर ये तो नई नई शान पहन के घूम रहे होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, सबको मालूम इनका इरादा क्या है। तो अगर ये सोच रहे हैं कि हम डर के रुक जाएंगे, बेटा उनको बोल दो ये होने वाला नहीं।
1: काफी देर तक पुलिस और राहुल, प्रियंका के बीच एक संघर्ष चलता है। आखिर में दिल्ली पुलिस राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को सड़क से जबरन उठाकर ले जाती है और हिरासत में ले लेती है।
16: अमित शाह, नरेंद्र मोदी, ज्ञानेश कुमार, मोहन भगवत, दे कैन डू ऑल दिस स्टफ बट वी आर गोइंग टू ब्रिंग देम टू जस्टिस। माय गारंटी दैट ऑल फोर ऑफ देम विल बी ब्रॉट टू जस्टिस।
1: ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर विपक्ष अड़ा हुआ है। राहुल और प्रियंका से पहले सुबह में लेफ्ट पार्टियां और आम आदमी पार्टी ने भी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लड़ाई बड़ी है। अब ये लड़ाई कहां तक जाएगी, आगे आगे देखते हैं होता है क्या। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
0: राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्ष के प्रदर्शन के दिल्ली पुलिस की मुश्किलें बढ़ गई हैं क्योंकि पुलिस की तरफ से राहुल गांधी को रोकने की तैयारियां की जाती हैं लेकिन राहुल पुलिस के बंदोबस्त को चकमा देते हुए नई जगह पर प्रदर्शन के लिए पहुंच जाते हैं। मतलब यही है कि दिल्ली पुलिस के नहले पर राहुल गांधी दहला चल रहे हैं।
17: 45 एफआईआर हैं, मेरा लक्ष्य है कि मुझे 100 चाहिए। मैं चाहता हूं कि मेरे ऊपर 100 एफआईआर लगे, हर एफआईआर मेरे लिए एक मेडल है।
1: राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज हो गई, लेकिन वो रुकेंगे नहीं बल्कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे तक सड़क पर सीधी लड़ाई जारी रखेंगे। राहुल गांधी के इसी तेवर ने दिल्ली पुलिस की नींद उड़ा रखी है। दिल्ली पुलिस राहुल गांधी को रोकने के लिए पूरा होमवर्क करती है, लेकिन बीच में राहुल गांधी दिल्ली पुलिस की तमाम तैयारियों को चकमा दे देते हैं। बीते दिन संसद भवन से राहुल गांधी को चुनाव आयोग के दफ्तर जाना था। पुलिस की तैयारी यही थी कि राहुल गांधी को चुनाव आयोग के दफ्तर से पहले हिरासत में लिया जा सके, लेकिन राहुल गांधी पुलिस को चकमा देकर आकाशवाणी भवन में दाखिल हुए और धरने पर बैठ गए। कई घंटों के बाद दिल्ली पुलिस किसी तरह राहुल का धरना खत्म करवा पाई। पुलिस के हाथ पांव फूल गए। आज दिल्ली पुलिस को पहले से पता था कि विपक्ष के सांसदों के साथ राहुल गांधी जनपद के पास लंच करेंगे, उसके बाद आज जंतर मंतर जाएंगे। लिहाजा राहुल गांधी से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस के डीसीपी ने अपने अधीनस्थों को खास ट्रेनिंग दी,
18: विद ऑल वेरी वेरी रिस्पेक्टफुली।
1: क्योंकि राहुल गांधी के दिमाग में क्या है, राहुल का प्लान क्या है, ये दिल्ली पुलिस के लिए किसी पहेली से कम नहीं था।
18: जो लोग सीधे सीधे चलने लग गए उनको आप आराम से ले जाके कोशिश पहली यही होनी है कि आराम से प्यार से बोल के रेस्पेक्टफुली बोल के हम सबको ले जाएं और सबको बैठा लें, ठीक है। नेक्स्ट ये होने वाला है अपना कि क्योंकि सपोर्टर्स भी बहुत सारे होते हैं तो वो भी रेजिस्ट करते हैं, पकड़ लेते हैं, ग्रुप कर लेते हैं, ठीक है। मेल को फीमेल्स भी कर लेती हैं, पकड़ लेती हैं बहुत जोर से, तो इन चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और बसेस, बस में बैठा दिया तो बस से निकल ना पाएं और बस के आगे की क्लैरिटी देनी पड़ेगी ताकि बस सीधा सीधा निकल जाए।
1: नई दिल्ली के डीसीपी सचिन शर्मा उन पुलिस वालों को क्लास दे रहे हैं जिनके कंधों पर राहुल गांधी को रोकने की जिम्मेदारी है। राहुल गांधी लोकसभा में नेता विपक्ष हैं, लिहाजा आज डीसीपी ने पुलिस वालों को हिरासत में लेने का पूरा तरीका समझाया।
18: सेंसिटिवली, सारा अदब और रिस्पेक्टफुली इनको रिक्वेस्ट करते रहना है। ओरली हम रिक्वेस्ट करते रहेंगे सर, ऑनरेबल सर, ठीक है। तो वो चीज़ों का आप, हो सकता है काफ़ी सारे ऑनरेबल एमपीज़ को नहीं पहचानते हो, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ भी जो भी हो या तो उनके साथ वाला बता देता है, नहीं भी बताए तो ट्रीट एवरीबडी लाइक विद ऑल वेरी वेरी रिस्पेक्टफुली, ठीक है।
1: राहुल गांधी के एक्शन से दिल्ली पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि राहुल गांधी का प्लान दिल्ली पुलिस की तमाम तैयारियों पर भारी है। दिल्ली पुलिस की कोशिश है राहुल को धरने पर बैठने से रोकना, लेकिन राहुल मार्च भी निकाल रहे हैं और धरने पर भी बैठ रहे हैं। मतलब यही है कि दिल्ली पुलिस के तमाम तिकड़म को राहुल बार बार चकमा देने में कामयाब हो रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
0: दिल्ली में इंडिया गठबंधन ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया है। इससे पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी भी प्रदर्शन कर चुकी है, लेकिन दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी की तरफ से 10 अक्टूबर को इसी मुद्दे पर प्रदर्शन का ऐलान किया गया। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने ऐलान कर दिया है कि ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे तक जंतर मंतर पर सीजेपी कार्यकर्ता डटे रहेंगे, जैसे पेपर लीक के मामले पर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था।
1: ज्ञानेश कुमार पर सीजेपी का प्लान जंतर मंतर।
19: मैं ये कहना चाहता हूँ जहाँ रुकोगे उसी को जंतर मंतर बना देंगे, और कितने लोगों की आवाज बढ़ा होगा, पूरा देश जंतर मंतर बन जाएगा अगर ज्ञानेश कुमार को हटाया नहीं, पूरा देश जंतर मंतर बन जाएगा।
1: 10 अक्टूबर को जंतर मंतर से नई लड़ाई।
20: जब भी दिल्ली पुलिस हमें रोके वहाँ पे हम लोग बैठ जाएंगे, वो कहलाएगा जंतर मंतर। हमारा यही प्लान होने वाला है, पूरा दिल्ली जंतर मंतर बनने वाला है।
1: केंद्र सरकार को सीजेपी का सीधा अल्टीमेटम।
19: और आज ये लोग आते वोटिंग राइट छीनना चाहते, तो ये बात किसी पार्टी की नहीं, ये बात किसी आइडियोलॉजी की नहीं है, ये बात लोगों के फंडामेंटल राइट्स की है। अगर लोगों से उनका वोटिंग राइट छीना जाएगा तो क्या डेमोक्रेसी बचेगी? वन नेशन वन इलेक्शन, ये स्लोगन है लेकिन असली इंटेंशन है वन नेशन वन पार्टी।
1: चुनावी सिस्टम बदलने निकलेगी टीम CJP। अभिजीत दिपके का जंतर मंतर पार्ट टू।
19: क्योंकि कहीं ना कहीं जो 10 अक्टूबर को हमारा मार्च होने जा रहा है जंतर मंतर को, उसको लेकर सरकार डरी हुई है, जिसके कारण सोशल मीडिया पर भी इंस्टाग्राम पर भी इन्होंने जितने भी CJP से रिलेटेड कंटेंट है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है इंडिया।
1: पेपर लीक मामले में अभिजीत दिपके की अगुवाई में CJP ने दिल्ली के जंतर मंतर पर जून महीने में शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग के साथ आंदोलन शुरू किया था। दुनिया ने जेन जी की शक्ति देखी और आखिरकार सरकार को CJP की मांग के आगे झुकना पड़ा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। एक बार फिर अभिजीत दिपके जंतर मंतर पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर मंतर आ रहे हैं। 10 अक्टूबर को CJP ने जंतर मंतर पर देश भर के जेन जी को जुटने के लिए बुलाया है।
19: इसमें देखिए हमारी तीन डिमांड्स हैं। हम भी मानते हैं कि एक का रेजिग्नेशन लेकर कुछ बदलेगा नहीं। हमारी तीन डिमांड्स हैं। पहला डिमांड जो है वो ज्ञानेश कुमार का रेजिग्नेशन है, उसके साथ ही उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगने चाहिए। दूसरी हमारी डिमांड है कि SIR का जो रोल है वो फ्रीज होना चाहिए। और तीसरी डिमांड जो है, जो इलेक्शन कमीशनर का अपॉइंटमेंट होता है वो इंडिपेंडेंटली हो जाए, न्यूट्रली हो जाए। ऐसा ना हो कि अमित शाह और मोदी जी एक दिन दोनों साथ में बैठे नाश्ता करते हुए डिसाइड कर ले ये बंदा बड़ा सही है, ये अपने साइड का इसको बना देते भाई ये सही लग रहा है, ऐसा नहीं चल सकता।
1: जंतर मंतर पर प्रदर्शन को लेकर अभिजीत दिपके की तीन मांगे हैं। पहली मांग ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा और आपराधिक मुकदमा। दूसरी मांग देश भर में जारी SIR की प्रक्रिया तुरंत बंद होनी चाहिए। तीसरी मांग मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का सिस्टम बदले। दरअसल दिपके ने वोटर लिस्ट की SIR में कथित गड़बड़ियों का हवाला देते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की है। मतलब शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद अब दिपके मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर मंतर पर आर पार की लड़ाई लड़ने महाराष्ट्र से दिल्ली आ रहे हैं। दावा यही है कि देश का जेन जी अब चुनावी सिस्टम में मौजूद खामियों को दूर करके ही दम लेगा।
20: 10 अक्टूबर से देश बहुत बड़ा मोबिलाइजेशन देखने वाला है देश के युवाओं का, क्योंकि भले ही कांग्रेस जनता पार्टी ने ये कॉल दिया हो लेकिन ये कॉल प्रोटेस्ट का देश के युवाओं का है, देश के जेन जी का है। देश का युवा 10 अक्टूबर से बाहर निकल रहा है एंड बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला है। जब तक ज्ञानू का रेजिग्नेशन नहीं हो जाता तब तक हम लोग वापस नहीं जाएंगे। जब तक ये सिस्टम नहीं बदल जाए, इलेक्टोरल सिस्टम, तब तक हम लोग बाहर नहीं जाएंगे, वापस नहीं जाएंगे घर।
1: दिल्ली पुलिस की तरफ से जंतर मंतर पर किसी भी तरह के प्रदर्शन पर रोक है। दिपके का कहना है कि पाबंदियों के पीछे सरकार का डर है। आरोप यही है कि महाराष्ट्र में CJP कार्यकर्ताओं को दिल्ली जाने से पुलिस रोक रही है।
19: लोगों को बताया, पिछले कुछ दिनों से मैं महाराष्ट्र पुलिस की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहा था कि कैसे उन्होंने मुंबई में जो हमारा प्रोटेस्ट हुआ उसको कोऑपरेट किया, कहीं से भी दिल्ली पुलिस की तरह डंडा नहीं चलाया। लेकिन कहीं ना कहीं आज थोड़ा हार्ट ब्रेक हुआ है, क्योंकि एक तरफ हम बता रहे हैं कि महाराष्ट्र की पुलिस इस देश की सबसे बेस्ट पुलिस है, क्योंकि वो कभी भी ब्रूटल नहीं होती है दिल्ली पुलिस की तरह, दिल्ली पुलिस जिस तरीके से बच्चों को पीटती है। लेकिन आज ही CJP के वॉलंटियर्स को नोटिस आया है, उसमें ये पूछा है कि चंद्रपुर महाराष्ट्र से जो लोग दिल्ली जा रहे हैं वो कैसे जा रहे, इसका पैसा कहाँ से आ रहा है। अब ट्रेन का 1,000-1,500 का जो खर्चा है, ट्रेन का टिकट है, उसका भी हिसाब पुलिस को देना पड़ेगा क्या? कुछ और काम बचा नहीं है पुलिस को।
1: CJP अध्यक्ष अभिजीत दिपके का आरोप है चंद्रपुर में उनके कार्यकर्ताओं को पुलिस की तरफ से नोटिस भेजा गया है। नोटिस में महाराष्ट्र से दिल्ली जाने वाले कार्यकर्ताओं से ट्रेन के टिकट का सोर्स पूछा गया है। पुलिस नोटिस पर भड़के दिपके ने पूछा है कि महाराष्ट्र पुलिस दिल्ली के जंतर मंतर पर होने वाले प्रोटेस्ट को लेकर नोटिस कैसे भेज सकती है।
19: चीज बोली है कि आप आंदोलन में चले गए तो आपके ऊपर लीगल एक्शन होगा। चंद्र पुलिस कौन होती है डिसाइड करने वाली, कौन आंदोलन में जाएगा कौन नहीं? और जंतर मंतर का आंदोलन चंद्रपुर पुलिस के अंदर कब से आ गया? क्या जंतर मंतर चंद्रपुर पुलिस के अंदर आता है? और तीसरी चीज कही जा रही है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस आंदोलन में मत जाइए, आंदोलन हिंसक है। चंद्रपुर पुलिस को, महाराष्ट्र पुलिस को कैसे पता पहले से ही कि आंदोलन हिंसक है? क्या पहले से ये लोग कुछ प्लान कर रहे हैं क्या?
1: बड़ी बात यह है कि दिपके ने ऐलान किया है कि वो गिरफ्तारी से नहीं डरते। अगर पुलिस ने जंतर मंतर जाने से रोका और जेल भेजा तो भी ये आंदोलन रुकेगा नहीं।
19: मैं कहना चाहता हूँ कि अरेस्ट करना है तो कर लो यार, यही बैठा हूँ मैं, उठा लो, 3 महीने नहीं 6 महीने रख दो, 1 साल रख दो, एनएसए लगाना है एनएसए लगा दो, यूएपीए लगाना है यूएपीए लगा दो, जो लगाना है लगा दो। अगर आपको लगता है अरेस्ट की धमकियां देकर या जेल का डर दिखाकर हम चुपचाप बैठेंगे तो ऐसा नहीं है। जब अमेरिका से आया था तब यही सोचकर आया था कि जेल जा रहा हूं, तो डालना है जेल में तो डाल दो, लेकिन उसके बाद भी हम लड़ते रहेंगे, डेमोक्रेसी को बचाने की बात है, उसके लिए हम लड़ते रहेंगे।
1: दीप के इसी मुद्दे पर मुंबई के शिवाजी पार्क में प्रदर्शन कर चुके हैं। पुलिस की मनाही के बावजूद ये प्रदर्शन हुआ,

0: А, читак бюро.
1: पुणे में महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग के खिलाफ चल रहे छात्रों के आंदोलन पर आज बॉम्बे हाई कोर्ट में अहम सुनवाई हुई है। कोर्ट ने एक तरफ छात्रों की शिकायतों को गंभीर माना तो दूसरी तरफ उनसे आंदोलन खत्म कर पढ़ाई पर लौटने की अपील की। कोर्ट ने साफ कहा कि छात्र असामाजिक तत्व नहीं है और अगर परीक्षा प्रक्रिया में गड़बड़ी का शक है तो उन्हें विरोध करने का अधिकार है, लेकिन सड़कों पर जाम लगाकर आम लोगों को परेशान नहीं किया जा सकता।
2: पुणे में एमपीएससी यानी महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग के खिलाफ छात्रों के प्रदर्शन के सातवें दिन भी हंगामा जारी रहा। एमपीएससी की कथित गड़बड़ियों से नाराज छात्र ये कह रहे हैं कि एमपीएससी चेयरमैन के इस्तीफे तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा।
3: ये पेपर पूरी तरह से कैंसिल करना चाहिए क्योंकि जो पेपर हुआ है ना वो पूरी तरह से मतलब पारदर्शक तरीके से नहीं हुआ। अगर ये पेपर कंडक्ट हो जाता है तो हमारे साथ अन्याय है। जो 80 लड़कियां वहां थी उनके साथ अन्याय है और हम बहुत सालों से तैयारी कर रहे हैं। हम सब इस सिस्टम के शिकार हुए हैं। ये नहीं होना चाहिए क्योंकि हम सब नहीं, हम क्या 17-18 साल के बच्चे नहीं है, हम 25 साल से ऊपर के बच्चे हैं। हमको नौकरी चाहिए, हमको जॉब चाहिए, हमारा आगे का करियर पूरा पड़ा है। हम कब तक इनके शिकार पड़े, कब तक लाइब्रेरी में बैठ के 10-10, 12-12 घंटे पढ़ते रहे, बस पढ़ते ही रहे, कब हमको नौकरी लगेगी? इसके क्वेश्चन को इसका आंसर कौन देगा? आज हम हर दूसरे दिन डिप्रेशन का शिकार होते हैं। हर दूसरे दिन कोई बच्चा आत्महत्या करता है, कोई क्या करता है। हमारी हम सब गरीब बच्चे हैं क्योंकि हम इस फील्ड में क्यों आए, क्योंकि अगर हम इंजीनियरिंग बनते हैं या डॉक्टर बनने जाते हैं तो वहाँ पैसा लगता है, पर हमारे पास पैसा नहीं है वहाँ जाने के लिए,
4: स्कॉलरशिप के लिए।
3: इसीलिए हमने ये फील्ड चुनी एमपीएससी।
2: एक याचिका पर सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाई कोर्ट ने पुणे में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से अपनी पढ़ाई पर लौटने का अनुरोध किया है। साथ ही कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया कि वो महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग के खिलाफ आंदोलन कर रहे छात्रों की शिकायतों को दूर करने के लिए गंभीर प्रयास करे। चीफ जस्टिस एमसी त्रिपाठी ने कहा कि ज्यादातर छात्रों की दिलचस्पी धरना प्रदर्शन में नहीं बल्कि पढ़ाई में है, लेकिन अब पूरा माहौल खराब हो चुका है। भरोसा बहाल करने के लिए सरकार की तरफ से ईमानदार कोशिश होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि छात्र असामाजिक तत्व नहीं है, गड़बड़ी का शक है तो छात्रों को विरोध का पूरा अधिकार है। परीक्षा प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए, लेकिन सड़कों को जाम कर होने वाले आंदोलनों से आम लोगों को दिक्कत भी बर्दाश्त नहीं।
5: पुणे में चल रहे छात्रों के प्रदर्शन के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दाखिल हुई थी और इसी पिटीशन पर सुनवाई होने के बाद अब कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि छात्र जो पुणे में आ रहे हैं उन्हें आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन कोर्ट ने यह कहा है कि अलग अलग जगहों से जहां से वो छात्र आए हैं वे अब पढ़ाई पर ध्यान दें और 3 हफ्ते की मोहलत राज्य सरकार को दी गई है, क्योंकि इससे पहले जो पेपर लीक हुए हैं उनके लिए एसआईटी स्थापित हुई थी। तो छात्रों के मन में अब यह सवाल है कि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं हो रही, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की है कि सरकार को 3 हफ्ते की मोहलत दी जाएगी जिसमें सरकार इस पूरे मामले का रिपोर्ट दे दे।
2: आंदोलन से परेशान पुणे के नागरिकों ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। याचिका में कहा गया छात्रों के आंदोलन से पूरे पुणे शहर को परेशानी हो रही है जिससे ट्रैफिक पर बुरा असर पड़ा है, ऑफिस जाने वाले लोगों को परेशानी हो रही है, स्कूल कॉलेज पहुंचने वाले छात्रों को दिक्कत हो रही है, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की आवाजाही भी प्रभावित होने का दावा किया जा रहा है। स्थानीय लोगों को कथित धमकी और उत्पीड़न के आरोप के साथ आंदोलन कवर कर रहे पत्रकारों से कथित मारपीट की शिकायत की गई है।
6: कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रदर्शनकारी छात्र कोई समाज विरोधी या देश विरोधी तत्व नहीं है और परीक्षा प्रक्रिया में गड़बड़ी लगने पर उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने का पूरा अधिकार है। हालांकि कोर्ट ने अलका टॉकीज चौक पर हो रही जो रास्ता जाम है उस पर भी अपनी चिंता जताई और कहा कि लोगों को वहां से हट जाना चाहिए और जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। इसके साथ ही कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को अगले कुछ हफ्तों के अंदर परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी बनाने और उसको उठाए गए कदमों पर पूरा एक रोड मैप पेश करने का निर्देश दिया है, जबकि सरकार की ओर से कोर्ट में यही बताया गया कि छात्रों की अधिकांश मांगे पूरी कर दी गई हैं, लेकिन अब इस पूरे मामले की सुनवाई 25 नवंबर को होगी।
2: इधर एनसीपी शरद गुट के विधायक रोहित पवार ने साफ कर दिया है कि छात्रों की सभी मांगे पूरी होने तक प्रदर्शन जारी रहेगा।
7: 20-20 घंटा ये पढ़ाई कर रहे हैं और पेपर फूट रहा है। कल तक हम तो एमपीएससी के लिए लड़ रहे थे, अभी आज सुबह अगर आपने देखा होगा महाज्योति करके एक डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, वहाँ पे जो ऑनलाइन पेपर था वहाँ पे भी बहुत सारे सेंटर में गड़बड़ हो गए। मतलब एक तो एमपीएससी की गड़बड़ हो गई, पेपर तो फूट गया, और यहाँ पे भी अगर अलग तरीके से मास कॉपिंग हो रहा है, मतलब ये तो अगर कॉन्स्टेंटली हर जगह हो रहा है तो अभी इसके लिए तो हमको लड़ना पड़ेगा अभी।

0: कोर्ट ने कहा है कि जाके पढ़ाई करो। ये लोग बच्चे कह रहे पढ़ाई करके अगर पेपर फूटेगा 50 लाख 1 करोड़ को अगर पेपर जाएगा वो पैसा हम गरीब होने के कारण हम कहाँ से लाएंगे। इसलिए बच्चों का कहना है कि अध्यक्ष को हटाओ, MPSC का टोटल रिस्ट्रक्चरिंग कर लो, ट्रांसपेरेंसी ला दो एंड वी आर रेडी टू गिव द एग्जाम।
1: एडवोकेट जनरल मिलिंद साठे ने कोर्ट को बताया कि पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों के प्रति अब तक संयम बरता है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि पुणे की 70 लाख आबादी को इन प्रदर्शनकारियों ने बंधक बना रखा है। CM फडणवीस भी कह रहे हैं कि छात्रों की ज्यादातर मांगे पहले ही मंजूर हो चुकी है।
2: MPSC च्या विद्यार्थ्यांचं आंदोलन हे हायजॅक झालेलं आहे, ते आता पूर्णपणे राजकीय नेत्यांचं आंदोलन झालंय। MPSC च्या विषयांपेक्षा त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या राजकीय विषयांवर भाषण होऊ लागलेली आहेत। MPSC चं आंदोलन असताना मोदीजींचा विषय, देशाचा विषय, वेगवेगळे विषय त्या ठिकाणी येत आहेत जे पूर्णपणे राजकीय आहेत। की MPSC च्या चेअरमनला हटवण्याचा अधिकार हा केवळ राष्ट्रपतींकडे आहे आणि तोही सुप्रीम कोर्टाला राष्ट्रपती सांगतात, सुप्रीम कोर्ट इन्क्वायरी करतं आणि त्यानंतर राष्ट्रपती तो काढू शकतात, तो आमच्या कोणाच्याही हातामध्ये नाही। त्यामुळे तुम्ही म्हणत असाल तर आम्ही ज्युडिशियल इन्क्वायरी करायला तयार आहोत, ते त्यांनी मान्य केलं। ती पेपर फूट झाली तेव्हा हे अध्यक्षच नव्हते, जॉईनच झालेले नव्हते, हे त्या MPSC चे अध्यक्ष नसताना झालेल्या पेपर फुटीकरता त्यांचा राजीनामा घ्या आग्रह असताना राज्य सरकारने मान्य केलं की त्यांची निष्पक्ष चौकशी करून।
1: हायकोर्ट ने राज्य सरकार को भर्ती प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के निर्देश दिए हैं, साथ ही करीब 70,000 रिक्त पदों का विभाग और आरक्षण के आधार पर ब्यौरा देने और भर्ती प्रक्रिया का रोडमैप 3 हफ्ते में पेश करने को कहा है।
3: तो अब आपकी क्या मांग है? कोर्ट ने तो टिप्पणी कर दी कि आपको पढ़ाई भी करनी चाहिए।
4: पढ़ाई, ये बात सच है, पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन उसके लिए वो जो एग्जाम है वो पारदर्शी मतलब ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ये तो मांग है ना हमारी, इसलिए हमने जो MPSC के चेयरमैन है उनका रेजिग्नेशन मांगा है।
3: देखो, बात यह है कि जितने भी मांगी पहली की गई थी वो सब एक्सेप्ट हो चुकी है, सिर्फ इस्तीफे की मांग बची है। तो क्या आपको क्या लगता है कि अब कोर्ट की टिप्पणी भी आ गई है तो आपको क्या करना चाहिए?
4: सर, वो जो अदर जो मांगे है ना जी, उसका कुछ मतलब नहीं रहेगा अगर इनका राजीनामा जो रेजिग्नेशन है वो नहीं लिया तो, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी तो एग्जाम देने में कुछ मतलब नहीं है ना फिर।
1: कोर्ट ने छात्रों से कहा है कि जब मामला अदालत के सामने है तो उन्हें कोर्ट का भरोसा रखना चाहिए और अगर आंदोलन जारी रखना है तो प्रशासन से अनुमति लेकर वैकल्पिक जगह पर प्रदर्शन किया जाए।
3: महाराष्ट्र सरकार हो या फिर MPSC यानी कि महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उसे लेकर यहाँ के छात्रों के मन में कुछ सवाल है जिसके जवाब नहीं मिल रहे, और ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी, ये दोनों के जवाब कौन देगा, इसी पर पूरा आंदोलन की आगे एग्जैक्टली क्या होगा वो देखना अहम रहेगा। जवाब ले आज तक पूरे।
5: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: पंजाब चुनाव से पहले सबसे बड़ी पंचायत। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ हर सवाल पर होगी खुलकर बात। देखिए पंचायत आज तक पंजाब, 8 अक्टूबर दिन भर सिर्फ आज तक पर।
1: रियल्टी पार्टनर TDI इंफ्राटेक, नॉर्थ इंडियाज लीडिंग टाउनशिप डेवलपर।
2: हेल्थ पार्टनर वृंदा लाइफ, वी आर नोन फॉर क्वालिटी मेडिसिन।
3: बैंकिंग पार्टनर
4: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
5: स्पेशल पार्टनर ग्रेट खलीज चॉइस फॉर पावरफुल फिटनेस लिफ्ट्स बाय पोलो एलिवेटर।

0: वोल्टेज सियासी ड्रामे के बीच हिरासत में लेने के बाद छोड़े गए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, आज पूरे देश में प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। ज्ञानेश कुमार पर सियासी घमासान तेज, खड़गे ने कहा तानाशाह मोदी सरकार और चुनाव आयोग के गठबंधन का पर्दाफाश, नितिन नवीन का पलटवार, अराजकता फैला रहे हैं राहुल गांधी। सीएम से पीएम तक जनसेवा में प्रधानमंत्री मोदी के 25 साल का एम्बिशन नहीं मिशन के लिए जीता हूं, कई शहरों में बीजेपी के कार्यक्रम, आडवाणी से मिले प्रधानमंत्री। यूपी में लड़ाई फिर 80-20 पर आई, राज्यसभा चुनाव के नतीजों पर सीएम योगी का एसपी पर तीखा तंज, का 2027 का परिणाम साफ, अखिलेश का पलटवार, घमंड का मिलेगा दंड। और दिल्ली के सीमापुरी इलाके में गिरी 4 मंजिला इमारत, अब तक 3 लोगों की मौत, अस्पताल में घायलों का इलाज जारी। सीसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आज कांग्रेस देश में प्रदर्शन करेगी। बुधवार को लगातार दूसरे दिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने सीसी के खिलाफ न सिर्फ संग्राम छेड़ा बल्कि दिल्ली पुलिस से भी टकरा गए। लगातार दूसरे दिन राहुल और प्रियंका को पुलिस ने जबरदस्ती धरने से उठाया और हिरासत में ले लिया, हालांकि बाद में पुलिस हिरासत में दोनों को रिहा कर दिया गया था।
1: राहुल की ललकार ज्ञानेश के खिलाफ गलगार।
2: हटाओ नहीं,
1: पहले आकाशवाणी फिर जंतर मंतर के लिए कूच।
3: पुलिस में ग्राउंड
1: पुलिस ने रोका इंडिया गठबंधन की बस का रास्ता।
2: सर ये हजारों की भीड़ है, किसी को चोट लग गई।
1: सड़क पर राहुल प्रियंका की हुंकार, ज्ञानेश पर आर पार।
3: Let them call their forces back. I will not move from here.
1: जंतर मंतर पर बैरिकेडिंग, सड़क पर ही छिड़ा संग्राम।
4: ऐसे नहीं होगा,
5: आप बताएं कैसे होगा?
4: आपने इसको धकेला नीचे।
1: तस्वीरें जंतर मंतर चौराहे की हैं। आप देख सकते हैं जंतर मंतर पर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ धरना देने निकले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को दिल्ली पुलिस जबरन उठाकर हिरासत में ले लेती है। ये दो तस्वीरें देखिए, कैसे राहुल गांधी को उठाकर गाड़ी में डाला जाता है, और दूसरी तस्वीर में प्रियंका गांधी को देखिए, कैसे सड़क पर लेटी प्रियंका गांधी को उठाने के लिए पुलिस और केंद्रीय बलों को खासी मशक्कत करनी पड़ती है, और फिर प्रियंका गांधी को सड़क से उठाकर हिरासत में लिया जाता है। सड़क पर तगड़ा संग्राम छिड़ जाता है क्योंकि प्रियंका गांधी सड़क से उठने को तैयार नहीं होती है।
3: This is how they treat members of parliament who are asking simply to meet the election commissioner. This is how they treat us. Let them call their forces back. I will not move from here.
1: और अब आपको ज्ञानेश कुमार के खिलाफ छिड़े रण की पूरी टाइमलाइन दिखाते हैं। पहले राहुल गांधी कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन के सांसदों के साथ जनपद पर सागर रत्ना रेस्टोरेंट में लंच करते हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नया मोर्चा खोलने के लिए जंतर मंतर के लिए निकल पड़ते हैं।
6: प्रोटेस्ट साइट है जंतर मंतर, वहाँ पे हम जाकर सब आज फिर से बैठे और देश को बताएं कि हमारे लिए ज्ञानेश कुमार जी देश के लेजिटिमेट इलेक्शन कमिश्नर नहीं है। मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, मोहन भगवत, ज्ञानेश कुमार जी ने देश के लोकतंत्र को खत्म किया है, और मैंने कल भी कहा था जिन्होंने ये काम किया है ये देशद्रोही है और इन पर हम एक्शन लेंगे। मैं आपको अभी बता रहा हूँ ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा देना पड़ेगा।
7: इलेक्शन कमीशन कर रही है और मोदी जी करा रहे हैं, और जब मोदी जी ऐसी गलती करा रहे हैं इसका मतलब यह है कि इस देश में डेमोक्रेसी को खत्म करने की कोशिश वो कर रहे हैं।
5: We are all here together. We are all here united. And we are all here without any egos. We will fight these guys.
8: जो ज्ञानेश है ना, ये इस देश का सबसे बड़ा गद्दा घोषित हो, इसे कोई नहीं बचा पाएगा। जहां ज्ञानेश मिलेगा वहीं खोजने जा रहे हैं, वहीं ढूंढेंगे जहां बंद करके इसको रखा हो।
9: ज्ञानेश की तलाश में आप जा रहे हैं,
8: क्या करेंगे? ज्ञानेश बोल ही नहीं रहा है और लॉ मिनिस्टर बोल ही नहीं रहा है, बीजेपी का प्रवक्ता ज्ञानेश को बचा रहा है।
1: राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ यलगार छेड़ दिया है। पहले आकाशवाणी भवन परिसर में 8 घंटे तक धरना और फिर जंतर मंतर से धावा बोलने के लिए राहुल, प्रियंका और इंडिया गठबंधन के 200 सांसद बस में सवार हो जाते हैं।
10: Narendra Modi government is a illegitimate government. Not only Ganesh Kumar, and Narendra Modi government also has to go. Writing is on the wall. They are seeing, they are afraid. That is why they are using a brutal force against us. But we are not intimidated.
1: उधर जंतर मंतर जैसे दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों की छावनी में तब्दील कर दिया जाता है, और जंतर मंतर चौराहे पर राहुल, प्रियंका समेत सभी विपक्षी सांसदों की बस रोक ली जाती है।
11: उनका इस्तीफा मांगना चाहते हैं क्योंकि हमें विश्वास नहीं है उनमें। ये जो चुनाव आयोग है ये किस लिए चलता है? इस देश की जनता के लिए। हम जनता के प्रतिनिधि हैं, 250 जनता के प्रतिनिधि, उनमें से एक एक प्रतिनिधि कम से कम 20 से 30 लाख लोगों के प्रतिनिधि हैं। और हम सच में कह रहे हैं कि हम शांतिपूर्वक जाएंगे, बात करेंगे। और ये सरकार इतनी कायर है, इतनी डरती है इस जनता की आवाज से कि हर जगह प्रदर्शन रोक रही है।
12: आपको लगता है हम यहाँ से हिल जाएंगे? क्या समझ रखा है इन लोगों ने? ये देश की राजधानी की ये हालत है?
13: ब्रूटली लाठीचार्ज कर रहे हैं, ये सीधे गुनहगार हैं। ज्ञानेश जी, अमित शाह जी और मोदी जी, ये विजुअल्स कई साल तक हमने नहीं देखे थे। ब्रुटैलिटी की इंतहा है। यू स्टैंड एक्सपोज।
1: बस का घेराव देखकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों बस से नीचे उतर आते हैं और वहीं सड़क पर बैठकर धरना देने लगते हैं। दिल्ली पुलिस के अफसर राहुल गांधी से बात कर उन्हें सड़क से उतरने के लिए कहते हैं। जबकि प्रियंका गांधी सड़क पर देखकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर देती हैं। ये सब देखकर जैसे पुलिस के हाथ पांव फूलने लगते हैं। फिर पुलिस प्रियंका गांधी को हटाने की कोशिश करती है, लेकिन प्रियंका गांधी तस से बस नहीं होती।
3: Their police members have scratched me all over. They have thrown us to the ground, and now we are not going to move from here.
14: गुंडागर्दी, अरे इनका इतिहास क्या है? जरा पेज पलट के दिए तो नई नई शान पहन के घूम रहे होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, सबको मालूम इनका इरादा क्या है। तो अगर ये सोच रहे हैं कि हम डर के रुक जाएंगे, बेटा उनको बोल दो ये होने वाला नहीं।
1: काफी देर तक पुलिस और राहुल, प्रियंका के बीच एक संघर्ष चलता है। आखिर में दिल्ली पुलिस राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को सड़क से जबरन उठाकर ले जाती है और हिरासत में ले लेती है।
15: अमित शाह, नरेंद्र मोदी, ज्ञानेश कुमार, मोहन भगवत, एंड वी कैन डू ऑल दिस स्टफ, बट वी आर गोइंग टू ब्रिंग देम to justice. My guarantee that all four of them will be brought to justice.
1: ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर विपक्ष अड़ा हुआ है। राहुल और प्रियंका से पहले सुबह में लेफ्ट पार्टियां और आम आदमी पार्टी ने भी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लड़ाई बड़ी है। अब ये लड़ाई कहां तक जाएगी, आगे आगे देखते हैं होता है क्या। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
0: राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्ष के प्रदर्शन के दिल्ली पुलिस की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि पुलिस की तरफ से राहुल गांधी को रोकने की तैयारियां की जाती हैं, लेकिन राहुल पुलिस के बंदोबस्त को चकमा देते हुए नई जगह पर प्रदर्शन के लिए पहुंच जाते हैं। मतलब यही है कि दिल्ली पुलिस के नहले पर राहुल गांधी दहला चल रही हैं।
16: 45 एफआईआर हैं, मेरा लक्ष्य है कि मुझे 100 चाहिए। मैं चाहता हूं कि मेरे ऊपर 100 एफआईआर लगे, हर एफआईआर मेरे लिए एक मेडल है।
1: राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज हो गई, लेकिन वो रुकेंगे नहीं बल्कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे तक सड़क पर सीधी लड़ाई जारी रखेंगे। राहुल गांधी के इसी तेवर ने दिल्ली पुलिस की नींद उड़ा रखी है। दिल्ली पुलिस राहुल गांधी को रोकने के लिए पूरा होमवर्क करती है, लेकिन बीच में राहुल गांधी दिल्ली पुलिस की तमाम तैयारियों को चकमा दे देते हैं। बीते दिन संसद भवन से राहुल गांधी को चुनाव आयोग के दफ्तर जाना था। पुलिस की तैयारी यही थी कि राहुल गांधी को चुनाव आयोग के दफ्तर से पहले हिरासत में लिया जा सके, लेकिन राहुल गांधी पुलिस को चकमा देकर आकाशवाणी भवन में दाखिल हुए और धरने पर बैठ गए। कई घंटों के बाद दिल्ली पुलिस किसी तरह राहुल का धरना खत्म करवा पाई। पुलिस के हाथ पांव फूल गए। आज दिल्ली पुलिस को पहले से पता था कि विपक्ष के सांसदों के साथ राहुल गांधी जनपद के पास लंच करेंगे, उसके बाद आज जंतर मंतर जाएंगे। लिहाजा राहुल गांधी से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस के डीसीपी ने अपने अधीनस्थों को खास ट्रेनिंग दी। क्योंकि राहुल गांधी के दिमाग में क्या है, राहुल का प्लान क्या है, ये दिल्ली पुलिस के लिए किसी पहेली से कम नहीं था।
17: जो लोग सीधे सीधे चलने लग गए उनको आप आराम से ले जा ले जाके, कोशिश पहली यही होनी है कि आराम से प्यार से बोल के रेस्पेक्टफुली बोल के हम सबको ले जाएं और सबको बैठा लें, ठीक है। नेक्स्ट ये होने वाला है अपना कि क्योंकि सपोर्टर्स भी बहुत सारे होते हैं तो वो भी रेजिस्ट करते हैं, पकड़ लेते हैं, ग्रुप कर लेते हैं, ठीक है। मेल को फीमेल्स भी कर लेती हैं, पकड़ लेती हैं बहुत जोर से, तो इन चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और बसेस, बस में बैठा दिया तो बस से निकल ना पाए और बस के आगे की क्लैरिटी देनी पड़ेगी ताकि बस सीधा सीधा निकल जाए।
1: नई दिल्ली के डीसीपी सचिन शर्मा उन पुलिस वालों को क्लास दे रहे हैं जिनके कंधों पर राहुल गांधी को रोकने की जिम्मेदारी है। राहुल गांधी लोकसभा में नेता विपक्ष हैं, लिहाजा आज डीसीपी ने पुलिस वालों को हिरासत में लेने का पूरा तरीका समझाया।
17: सेंसिटिवली, सारा अदब और रिस्पेक्टफुली इनको रिक्वेस्ट करते रहना है। ओरली हम रिक्वेस्ट करते रहेंगे सर, ऑनरेबल सर, ठीक है। तो वो चीज़ों का आप, हो सकता है काफ़ी सारे ऑनरेबल एमपीज को नहीं पहचानते हो, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ भी जो भी हो या तो उनके साथ वाला बता देता है, नहीं भी बताए तो ट्रीट एवरीबडी लाइक विद ऑल वेरी वेरी रिस्पेक्टफुली, ठीक है।
1: राहुल गांधी के एक्शन से दिल्ली पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि राहुल गांधी का प्लान दिल्ली पुलिस की तमाम तैयारियों पर भारी है। दिल्ली पुलिस की कोशिश है राहुल को धरने पर बैठने से रोकना, लेकिन राहुल मार्च भी निकाल रहे हैं और धरने पर भी बैठ रहे हैं। मतलब यही है कि दिल्ली पुलिस के तमाम तिकड़म को राहुल बार बार चकमा देने में कामयाब हो रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
0: दिल्ली में इंडिया गठबंधन ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया है। इससे पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी भी प्रदर्शन कर चुकी है, लेकिन दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी की तरफ से 10 अक्टूबर को इसी मुद्दे पर प्रदर्शन का ऐलान किया गया। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने ऐलान कर दिया है कि ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे तक जंतर मंतर पर सीजेपी कार्यकर्ता डटे रहेंगे, जैसे पेपर लीक के मामले पर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था।
1: ज्ञानेश कुमार पर सीजेपी का प्लान जंतर मंतर।
18: मैं ये कहना चाहता हूँ जहाँ रुकोगे उसी को जंतर मंतर बना दें और कितने लोगों की आवाज बढ़ा होगा, पूरा देश जंतर मंतर बन जाएगा अगर ज्ञानेश कुमार को हटाया नहीं, पूरा देश जंतर मंतर बन जाएगा।
1: 10 अक्टूबर को जंतर मंतर से नई लड़ाई।
19: जब भी दिल्ली पुलिस हमें रोके वहाँ पे हम लोग बैठ जाएंगे, वो कहलाएगा जंतर मंतर। हमारा यही प्लान होने वाला है, पूरा दिल्ली जंतर मंतर बनने वाला है।
1: केंद्र सरकार को सीजेपी का सीधा अल्टीमेटम।
18: और आज ये लोग आते वोटिंग राइट छीनना चाहते, तो ये बात किसी पार्टी की नहीं, ये बात किसी आइडियोलॉजी की नहीं है, ये बात लोगों के फंडामेंटल राइट्स की है। अगर लोगों से उनका वोटिंग राइट छीना जाएगा तो क्या डेमोक्रेसी बचेगी? वन नेशन वन इलेक्शन, ये स्लोगन है लेकिन असली इंटेंशन है वन नेशन वन पार्टी।
1: चुनावी सिस्टम बदलने निकलेगी टीम CJP। अभिजीत दिपके का जंतर मंतर पार्ट 2।
18: क्योंकि कहीं ना कहीं जो 10 अक्टूबर को हमारा मार्च होने जा रहा है जंतर मंतर को, उसको लेकर सरकार डरी हुई है, जिसके कारण सोशल मीडिया पर भी इंस्टाग्राम पर भी इन्होंने जितने भी CJP से रिलेटेड कंटेंट है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है इंडिया।
1: पेपर लीक मामले में अभिजीत दिपके की अगुवाई में CJP ने दिल्ली के जंतर मंतर पर जून महीने में शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग के साथ आंदोलन शुरू किया था। दुनिया ने जेन जी की शक्ति देखी और आखिरकार सरकार को CJP की मांग के आगे झुकना पड़ा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, एक बार फिर अभिजीत दिपके जंतर मंतर पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर मंतर आ रहे हैं। 10 अक्टूबर को CJP ने जंतर मंतर पर देश भर के जेन जी को जुटने के लिए बुलाया है।
18: इसमें देखिए हमारी 3 डिमांड्स है। हम भी मानते हैं कि एक का रेजिग्नेशन लेकर कुछ बदलेगा नहीं। हमारी 3 डिमांड्स है। पहला डिमांड जो है वो ज्ञानेश कुमार का रेजिग्नेशन है, उसके साथ ही उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगने चाहिए। दूसरी हमारी डिमांड है कि SIR का जो रोल है वो फ्रीज होना चाहिए। और तीसरी डिमांड जो है, जो इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट होता है वो इंडिपेंडेंटली हो जाए, न्यूट्रली हो जाए। ऐसा ना हो कि अमित शाह और मोदी जी एक दिन दोनों साथ में बैठे नाश्ता करते हुए डिसाइड कर ले ये बंदा बड़ा सही है, ये अपने साइड का इसको बना देते भाई ये सही लग रहा है, ऐसा नहीं चल सकता।
1: जंतर मंतर पर प्रदर्शन को लेकर अभिजीत दिपके की 3 मांगे हैं। पहली मांग ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा और आपराधिक मुकदमा। दूसरी मांग देश भर में जारी SIR की प्रक्रिया तुरंत बंद होनी चाहिए। तीसरी मांग मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का सिस्टम बदले। दरअसल दिपके ने वोटर लिस्ट की SIR में कथित गड़बड़ियों का हवाला देते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की है। मतलब शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद अब दिपके मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर मंतर पर आर पार की लड़ाई लड़ने महाराष्ट्र से दिल्ली आ रहे हैं। दावा यही है कि देश का जेन जी अब चुनावी सिस्टम में मौजूद खामियों को दूर करके ही दम लेगा।
19: 10 अक्टूबर से देश बहुत बड़ा मोबिलाइजेशन देखने वाला है देश के युवाओं का, क्योंकि भले ही कांग्रेस जनता पार्टी ने ये कॉल दिया हो लेकिन ये कॉल प्रोटेस्ट का देश के युवाओं का है, देश के जेंजी का है। देश का युवा 10 अक्टूबर से बाहर निकल रहा है एंड बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला है। जब तक ज्ञानू का रेजिग्नेशन नहीं हो जाता तब तक हम लोग वापस नहीं जाएंगे। जब तक ये सिस्टम नहीं बदल जाए, इलेक्टोरल सिस्टम, तब तक हम लोग बाहर नहीं जाएंगे, वापस नहीं जाएंगे घर।
1: दिल्ली पुलिस की तरफ से जंतर मंतर पर किसी भी तरह के प्रदर्शन पर रोक है। दिपके का कहना है कि पाबंदियों के पीछे सरकार का डर है। आरोप यही है कि महाराष्ट्र में CJP कार्यकर्ताओं को दिल्ली जाने से पुलिस रोक रही है।
18: लोगों को बताया, पिछले कुछ दिनों से मैं महाराष्ट्र पुलिस की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहा था कि कैसे उन्होंने मुंबई में जो हमारा प्रोटेस्ट हुआ उसको कोऑपरेट किया, कहीं से भी दिल्ली पुलिस की तरह डंडा नहीं चलाया। लेकिन कहीं ना कहीं आज थोड़ा हार्ट ब्रेक हुआ है, क्योंकि एक तरफ हम बता रहे हैं कि महाराष्ट्र की पुलिस इस देश की सबसे बेस्ट पुलिस है, क्योंकि वो कभी भी ब्रूटल नहीं होती है दिल्ली पुलिस की तरह, दिल्ली पुलिस जिस तरीके से बच्चों को पीटती है। लेकिन आज ही CJP के वॉलंटियर्स को नोटिस आया है, उसमें ये पूछा है कि चंद्रपुर महाराष्ट्र से जो लोग दिल्ली जा रहे हैं वो कैसे जा रहे, इसका पैसा कहाँ से आ रहा है। अब ट्रेन का 1,000-1,500 का जो खर्चा है, ट्रेन का टिकट है, उसका भी हिसाब पुलिस को देना पड़ेगा क्या? कुछ और काम बचा नहीं है पुलिस को।
1: CJP अध्यक्ष अभिजीत दिपके का आरोप है चंद्रपुर में उनके कार्यकर्ताओं को पुलिस की तरफ से नोटिस भेजा गया है। नोटिस में महाराष्ट्र से दिल्ली जाने वाले कार्यकर्ताओं से ट्रेन के टिकट का सोर्स पूछा गया है। पुलिस नोटिस पर भड़के दिपके ने पूछा है कि महाराष्ट्र पुलिस दिल्ली के जंतर मंतर पर होने वाले प्रोटेस्ट को लेकर नोटिस कैसे भेज सकती है।
18: चीज बोली है कि आप आंदोलन में चले गए तो आपके ऊपर लीगल एक्शन होगा। चंद्र पुलिस कौन होती है डिसाइड करने वाली कौन आंदोलन में जाएगा और कौन नहीं? और जंतर मंतर का आंदोलन चंद्रपुर पुलिस के अंदर कब से आ गया? क्या जंतर मंतर चंद्रपुर पुलिस के अंदर आता है? और तीसरी चीज कही जा रही है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस आंदोलन में मत जाइए, आंदोलन हिंसक है। चंद्रपुर पुलिस को, महाराष्ट्र पुलिस को कैसे पता पहले से ही कि आंदोलन हिंसक है? क्या पहले से ये लोग कुछ प्लान कर रहे हैं क्या?
1: बड़ी बात यह है कि दिपके ने ऐलान किया है कि वो गिरफ्तारी से नहीं डरते। अगर पुलिस ने जंतर मंतर जाने से रोका और जेल भेजा तो भी ये आंदोलन रुकेगा नहीं।
18: मैं कहना चाहता हूँ कि अरेस्ट करना है तो कर लो यार, यही बैठा हूँ मैं, उठा लो, 3 महीने नहीं 6 महीने रख दो, 1 साल रख दो, एनएसए लगाना है एनएसए लगा दो, यूएपीए लगाना है यूएपीए लगा दो, जो लगाना है लगा दो। अगर आपको लगता है अरेस्ट की धमकियां देकर या जेल का डर दिखाकर हम चुपचाप बैठेंगे तो ऐसा नहीं है। जब अमेरिका से आया था तब यही सोचकर आया था कि जेल जा रहा हूं, तो डालना है जेल में तो डाल दो, लेकिन उसके बाद भी हम लड़ते रहेंगे, डेमोक्रेसी को बचाने की बात है, उसके लिए हम लड़ते रहेंगे।
1: दीप के इसी मुद्दे पर मुंबई के शिवाजी पार्क में प्रदर्शन कर चुके हैं। पुलिस की मनाही के बावजूद ये प्रदर्शन हुआ। तब दीपके ने कहा था ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा नहीं हुआ तो वो दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने जाएंगे। सीजीपी के ऐलान ने दिल्ली पुलिस की नींदें उड़ा रखी हैं, क्योंकि दीपके का प्लान जंतर मंतर पर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एक बड़े आंदोलन को शुरू करना है। आज तक ब्यूरो।
0: पुणे में महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग के खिलाफ चल रहे छात्रों के आंदोलन पर आज बॉम्बे हाई कोर्ट में अहम सुनवाई हुई है। कोर्ट ने एक तरफ छात्रों की शिकायतों को गंभीर माना तो दूसरी तरफ उनसे आंदोलन खत्म कर पढ़ाई पर लौटने की अपील की। कोर्ट ने साफ कहा कि छात्र असामाजिक तत्व नहीं है और अगर परीक्षा प्रक्रिया में गड़बड़ी का शक है तो उन्हें विरोध करने का अधिकार है, लेकिन सड़कों पर जाम लगाकर आम लोगों को परेशान नहीं किया जा सकता।
20: पुणे में एमपीएससी यानी महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग के खिलाफ छात्रों के प्रदर्शन के 7वें दिन भी हंगामा जारी रहा। एमपीएससी की कथित गड़बड़ियों से नाराज छात्र ये कह रहे हैं कि एमपीएससी चेयरमैन के इस्तीफे तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा।
21: ये पेपर पूरी तरह से कैंसिल करना चाहिए, क्योंकि जो पेपर हुआ है ना वो पूरी तरह से मतलब पारदर्शक तरीके से नहीं हुआ। अगर ये पेपर कंडक्ट हो जाता है तो हमारे साथ अन्याय है, जो 80 लड़कियां वहां थी उनके साथ अन्याय है, और हम बहुत सालों से तैयारी कर रहे हैं, हम सब इस सिस्टम के शिकार हुए हैं। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सब नहीं, हम क्या 17-18 साल के बच्चे नहीं है, हम 25 साल से ऊपर के बच्चे हैं। हमको नौकरी चाहिए, हमको जॉब चाहिए, हमारा आगे का करियर पूरा पड़ा है, हम कब तक इनके शिकार पड़े, कब तक लाइब्रेरी में बैठ के 10-10, 12-12 घंटे पढ़ते रहे, बस पढ़ते ही रहे, कब हमको नौकरी लगेगी, इसके क्वेश्चन को इसका आंसर कौन देगा। आज हम हर दूसरे दिन डिप्रेशन का शिकार होते हैं, हर दूसरे दिन कोई बच्चा आत्महत्या करता है, कोई क्या करता है, हमारी हम सब गरीब बच्चे हैं, क्योंकि हम इस फील्ड में क्यों आए, क्योंकि अगर हम इंजीनियरिंग बनते हैं या डॉक्टर बनने जाते हैं तो वहाँ पैसा लगता है, पर हमारे पास पैसा नहीं है वहाँ जाने के लिए, इसीलिए हमने ये फील्ड चुनी एमपीएससी।
20: एक याचिका पर सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाई कोर्ट ने पुणे में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से अपनी पढ़ाई पर लौटने का अनुरोध किया है। साथ ही कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया कि वो महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग के खिलाफ आंदोलन कर रहे छात्रों की शिकायतों को दूर करने के लिए गंभीर प्रयास करे। चीफ जस्टिस एमसी त्रिपाठी ने कहा कि ज्यादातर छात्रों की दिलचस्पी धरना प्रदर्शन में नहीं बल्कि पढ़ाई में है, लेकिन अब पूरा माहौल खराब हो चुका है, भरोसा बहाल करने के लिए सरकार की तरफ से ईमानदार कोशिश होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि छात्र असामाजिक तत्व नहीं है, गड़बड़ी का शक है तो छात्रों को विरोध का पूरा अधिकार है, परीक्षा प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए, लेकिन सड़कों को जाम कर होने वाले आंदोलनों से आम लोगों को दिक्कत भी बर्दाश्त नहीं।
22: पुणे में चल रहे छात्रों के प्रदर्शन के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दाखिल हुई थी और इसी पिटीशन पर सुनवाई होने के बाद अब कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि छात्र जो पुणे में आ रहे हैं उन्हें आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन कोर्ट ने यह कहा है कि अलग अलग जगहों से जहां से वो छात्र आए हैं वे अब पढ़ाई पर ध्यान दें और 3 हफ्ते की मोहलत राज्य सरकार को दी गई है, क्योंकि इससे पहले जो पेपर लीक हुए हैं उनके लिए एसआईटी स्थापित हुई थी। तो छात्रों के मन में अब यह सवाल है कि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं हो रही, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की है कि सरकार को 3 हफ्ते की मोहलत दी जाएगी जिसमें सरकार इस पूरे मामले का रिपोर्ट दे दे।
20: आंदोलन से परेशान पुणे के नागरिकों ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। याचिका में कहा गया छात्रों के आंदोलन से पूरे पुणे शहर को परेशानी हो रही है, जिससे ट्रैफिक पर बुरा असर पड़ा है, ऑफिस जाने वाले लोगों को परेशानी हो रही है, स्कूल कॉलेज पहुंचने वाले छात्रों को दिक्कत हो रही है, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की आवाजाही भी प्रभावित होने का दावा किया जा रहा है। स्थानीय लोगों को कथित धमकी और उत्पीड़न के आरोप के साथ आंदोलन कवर कर रहे पत्रकारों से कथित मारपीट की शिकायत की गई है।
2: कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रदर्शनकारी छात्र कोई समाज विरोधी या देश विरोधी तत्व नहीं है और परीक्षा प्रक्रिया में गड़बड़ी लगने पर उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने का पूरा अधिकार है। हालांकि कोर्ट ने अलका टॉकीज चौक पर हो रही जो रास्ता जाम है उस पर भी अपनी चिंता जताई और कहा कि लोगों को वहां से हट जाना चाहिए और जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। इसके साथ ही कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को अगले कुछ हफ्तों के अंदर परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी बनाने और उसको उठाए गए कदमों पर पूरा एक रोड मैप पेश करने का निर्देश दिया है, जबकि सरकार की ओर से कोर्ट में यही बताया गया कि छात्रों की अधिकांश मांगे पूरी कर दी गई हैं, लेकिन अब इस पूरे मामले की सुनवाई 25 नवंबर को होगी।
20: इधर एनसीपी शरद गुट के विधायक रोहित पवार ने साफ कर दिया है कि छात्रों की सभी मांगे पूरी होने तक प्रदर्शन जारी रहेगा।
4: 20-20 घंटा ये पढ़ाई कर रहे हैं और पेपर फूट रहा है। कल तक हम तो एमपीएससी के लिए लड़ रहे थे, अभी आज सुबह अगर आपने देखा होगा महाज्योति करके एक डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, वहाँ पे जो ऑनलाइन पेपर था वहाँ पे भी बहुत सारे सेंटर में गड़बड़ हो गई। मतलब एक तो एमपीएससी की गड़बड़ हो गई, पेपर तो फूट गया, और यहाँ पे भी अगर अलग तरीके से मास कॉपिंग हो रहा है, मतलब ये तो अगर कॉन्स्टेंटली हर जगह हो रहा है तो अभी इसके लिए तो हमको लड़ना पड़ेगा। अभी कोर्ट ने कहा है कि जाके पढ़ाई करो, ये लोग बच्चे कह रहे पढ़ाई करके अगर पेपर फूटेगा 50,00,000-1,00,000 को अगर पेपर जाएगा वो पैसा हम गरीब होने के कारण हम कहाँ से लाएंगे। इसलिए बच्चों का कहना है कि अध्यक्ष को हटाओ, एमपीएससी का टोटल रिस्ट्रक्चरिंग कर लो, ट्रांसपेरेंसी ला दो एंड वी आर रेडी टू गिव द एग्जाम्स।
20: एडवोकेट जनरल मिलिंद साठे ने कोर्ट को बताया कि पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों के प्रति अब तक संयम बरता है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि पुणे की 70,00,000 आबादी को इन प्रदर्शनकारियों ने बंधक बना रखा है। सीएम फडणवीस भी कह रहे हैं कि छात्रों की ज्यादातर मांगे पहले ही मंजूर हो चुकी है।
6: एमपीएससी च्या विद्यार्थ्यांचं आंदोलन हे हायजॅक झालेलं आहे, ते आता पूर्णपणे राजकीय नेत्यांचं आंदोलन झालंय। एमपीएससी च्या विषयांपेक्षा त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या राजकीय विषयांवर भाषण होऊ लागलेली आहेत। एमपीएससीचं आंदोलन असताना मोदीजींचा विषय, देशाचा विषय, वेगवेगळे विषय त्या ठिकाणी येतात जे पूर्णपणे राजकीय आहेत। की एमपीएससीच्या चेअरमनला हटवण्याचा अधिकार हा केवळ राष्ट्रपतींकडे आहे आणि तोही सुप्रीम कोर्टाला राष्ट्रपती सांगतात, सुप्रीम कोर्ट इन्क्वायरी करतं आणि त्यानंतर राष्ट्रपती तो काढू शकतात, तो आमच्या कोणाच्याही हातामध्ये नाही। त्यामुळे तुम्ही म्हणत असाल तर आम्ही ज्युडिशियल इन्क्वायरी करायला तयार आहोत, ते त्यांनी मान्य केलं। ती पेपर फूट झाली तेव्हा हे अध्यक्षच नव्हते, जॉईनच झालेले नव्हते, हे त्या एमपीएससीचे अध्यक्ष नसताना झालेल्या पेपर फुटीकरता त्यांचा राजीनामा घ्या आग्रह असताना राज्य सरकारने मान्य केलं की त्यांची निष्पक्ष चौकशी करून।
20: हायकोर्टने राज्य सरकार को भर्ती प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के निर्देश दिए हैं, साथ ही करीब 70,000 रिक्त पदों का विभाग और आरक्षण के आधार पर ब्यौरा देने और भर्ती प्रक्रिया का रोडमैप 3 हफ्ते में पेश करने को कहा है।
23: तो अब आपकी क्या मांग है? कोर्ट ने तो टिप्पणी कर दी है कि आपको पढ़ाई भी करनी चाहिए।
24: पढ़ाई, ये बात सच है, पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन उसके लिए वो जो एग्जाम है वो पारदर्शी, मतलब ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, होना चाहिए। ये तो मांग है ना हमारी, इसलिए हमने जो एमपीसी के चेयरमैन है उनका रेजिग्नेशन मांगा है।
23: देखो बात यह है कि जितने भी मांगी पहले की गई थी वो सब एक्सेप्ट हो चुकी है, सिर्फ इस्तीफे की मांग बची है। तो क्या आपको क्या लगता है कि अब कोर्ट की टिप्पणी भी आ गई है तो आपको क्या करना चाहिए?
24: सर वो जो अदर जो मांगे है ना
23: जी,
24: उसका कुछ मतलब नहीं रहेगा अगर इनका राजीनामा, ये जो रेजिग्नेशन है वो नहीं लिया तो, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी तो एग्जाम देने में कुछ मतलब नहीं है ना फिर।
20: कोर्ट ने छात्रों से कहा है कि जब मामला अदालत के सामने है तो उन्हें कोर्ट का भरोसा रखना चाहिए और अगर आंदोलन जारी रखना है तो प्रशासन से अनुमति लेकर वैकल्पिक जगह पर प्रदर्शन किया जाए।
23: महाराष्ट्र सरकार हो या फिर एमपीएससी यानी कि महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उसे लेकर यहाँ के छात्रों के मन में कुछ सवाल है जिसके जवाब नहीं मिल रहे, और ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी ये दोनों के जवाब कौन देगा, इसी पर पूरा आंदोलन की आगे एग्जैक्टली क्या होगा वो देखना अहम रहेगा। जवाब ले आज तक पूरे,
0: और इसी के साथ हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: हरियाणा की सियासत का सबसे बड़ा मंच, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ हर सवाल पर होगी खुलकर बात। देखिए पंचायत आज तक हरियाणा 8 अक्टूबर दिन भर सिर्फ आज तक पर।
1: रियल्टी पार्टनर TDI इंफ्राटेक नॉर्थ इंडियाज लीडिंग टाउनशिप डेवलपर। हेल्थ पार्टनर वृंदा लाइफ, वी आर नोन फॉर क्वालिटी मेडिसिन। बैंकिंग पार्टनर पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक। स्पेशल पार्टनर ग्रेट खलीज चॉइस फॉर पावरफुल फिटनेस लिफ्ट्स बाय पोलो एलिवेटर।

0: हाई वोल्टेज सियासी ड्रामे के बीच हिरासत में लेने के बाद छोड़े गए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, आज पूरे देश में प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। ज्ञानेश कुमार पर सियासी घमासान तेज, खड़गे ने कहा तानाशाह मोदी सरकार और चुनाव आयोग के गठबंधन का पर्दाफाश, नितिन नवीन का पलटवार, अराजकता फैला रहे हैं राहुल गांधी। सीएम से पीएम तक जनसेवा में प्रधानमंत्री मोदी के 25 साल का एम्बिशन नहीं मिशन के लिए जीता हूं, कई शहरों में बीजेपी के कार्यक्रम, आडवाणी से मिले प्रधानमंत्री। यूपी में लड़ाई फिर 80-20 पर आई, राज्यसभा चुनाव के नतीजों पर सीएम योगी का एसपी पर तीखा तंज का, 2027 का परिणाम साफ, अखिलेश का पलटवार, घमंड का मिलेगा दंड। और दिल्ली के सीमापुरी इलाके में गिरी 4 मंजिला इमारत, अब तक 3 लोगों की मौत, अस्पताल में घायलों का इलाज जारी। सीसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आज कांग्रेस देश में प्रदर्शन करेगी। बुधवार को लगातार दूसरे दिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने सीसी के खिलाफ न सिर्फ संग्राम छेड़ा बल्कि दिल्ली पुलिस से भी टकरा गए। लगातार दूसरे दिन राहुल और प्रियंका को पुलिस ने जबरदस्ती धरने से उठाया और हिरासत में ले लिया, हालांकि बाद में पुलिस हिरासत में दोनों को रिहा कर दिया गया था।
1: राहुल की ललकार ज्ञानेश के खिलाफ गलगार।
2: हटाओ नहीं सर, मैं तो हटा दे सर, मैं कल भी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था।
1: पहले आकाशवाणी फिर जंतर मंतर के लिए कूद,
3: पुलिस मेंबर्स हैव स्क्रैच्ड मी ऑल ओवर, दे हैव थ्रोन अस टू द ग्राउंड।
1: पुलिस ने रोका इंडिया गठबंधन की बस का रास्ता।
2: सर ये हजारों की भीड़ है, किसी को चोट लग जाएगी।
1: सड़क पर राहुल प्रियंका की हुंकार, ज्ञानेश पर आर पार।
3: Let them call their forces back. I will not move from here.
1: जंतर मंतर पर बैरिकेडिंग, सड़क पर ही छिड़ा संग्राम।
4: ऐसे नहीं होगा,
5: आप बताइए कैसे होगा?
4: आपने इसको धकेला नीचे।
1: तस्वीरें जंतर मंतर चौराहे की हैं। आप देख सकते हैं जंतर मंतर पर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ धरना देने निकले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को दिल्ली पुलिस जबरन उठाकर हिरासत में ले लेती है। ये दो तस्वीरें देखिए, कैसे राहुल गांधी को उठाकर गाड़ी में डाला जाता है, और दूसरी तस्वीर में प्रियंका गांधी को देखिए, कैसे सड़क पर लेटी प्रियंका गांधी को उठाने के लिए पुलिस और केंद्रीय बलों को खासी मशक्कत करनी पड़ती है, और फिर प्रियंका गांधी को सड़क से उठाकर हिरासत में लिया जाता है। सड़क पर तगड़ा संग्राम छिड़ जाता है क्योंकि प्रियंका गांधी सड़क से उठने को तैयार नहीं होती हैं।
3: This is how they treat members of parliament who are asking simply to meet the election commissioner. This is how they treat us. Let them call their forces back. I will not move from here.
1: और अब आपको ज्ञानेश कुमार के खिलाफ छिड़े रण की पूरी टाइमलाइन दिखाते हैं। पहले राहुल गांधी कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन के सांसदों के साथ जनपद पर सागर रत्न रेस्टोरेंट में लंच करते हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नया मोर्चा खोलने के लिए जंतर मंतर के लिए निकल पड़ते हैं।
6: प्रोटेस्ट साइट है जंतर मंतर, वहां पे हम जाकर सब आज फिर से बैठे और देश को बताएं कि हमारे लिए ज्ञानेश कुमार जी देश के लेजिटिमेट इलेक्शन कमिश्नर नहीं है। मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, मोहन भगवत, ज्ञानेश कुमार जी ने देश के लोकतंत्र को खत्म किया है, और मैंने कल भी कहा था जिन्होंने ये काम किया है ये देशद्रोही है और इन पर हम एक्शन लेंगे। मैं आपको अभी बता रहा हूँ ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा देना पड़ेगा।
7: इलेक्शन कमीशन कर रही है और मोदी जी करा रहे हैं, और जब मोदी जी ऐसी गलती करा रहे हैं इसका मतलब ये है कि इस देश में डेमोक्रेसी को खत्म करने की कोशिश वो कर रहे हैं।
5: all here together. We are all here united. And we are all here without any egos. We will fight these guys.
8: Jo gyanesh hai na.
0: राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्ष के प्रदर्शन के दिल्ली पुलिस की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि पुलिस की तरफ से राहुल गांधी को रोकने की तैयारियां की जाती हैं, लेकिन राहुल पुलिस के बंदोबस्त को चकमा देते हुए नई जगह पर प्रदर्शन के लिए पहुंच जाते हैं। मतलब यही है कि दिल्ली पुलिस के नहले पर राहुल गांधी दहला चल रहे हैं।

0: मेरे पास 45 FIR है। मेरा लक्ष्य है कि मुझे 100 चाहिए। मैं चाहता हूं कि मेरे ऊपर 100 FIR लगे। हर FIR मेरे लिए एक मेडल है।
1: राहुल गांधी पर FIR दर्ज हो गई, लेकिन वो रुकेंगे नहीं, बल्कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे तक सड़क पर सीधी लड़ाई जारी रखेंगे। राहुल गांधी के इसी तेवर ने दिल्ली पुलिस की नींद उड़ा रखी है। दिल्ली पुलिस राहुल गांधी को रोकने के लिए पूरा होमवर्क करती है, लेकिन बीच में राहुल गांधी दिल्ली पुलिस की तमाम तैयारियों को चकमा दे देते हैं। बीते दिन संसद भवन से राहुल गांधी को चुनाव आयोग के दफ्तर जाना था। पुलिस की तैयारी यही थी कि राहुल गांधी को चुनाव आयोग के दफ्तर से पहले हिरासत में लिया जा सके, लेकिन राहुल गांधी पुलिस को चकमा देकर आकाशवाणी भवन में दाखिल हुए और धरने पर बैठ गए। कई घंटों के बाद दिल्ली पुलिस किसी तरह राहुल का धरना खत्म करवा पाई। पुलिस के हाथ पांव फूल गए। आज दिल्ली पुलिस को पहले से पता था कि विपक्ष के सांसदों के साथ राहुल गांधी जनपद के पास लंच करेंगे, उसके बाद आज जंतर मंतर जाएंगे। लिहाजा राहुल गांधी से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस के DCP ने अपने अधीनस्थों को खास ट्रेनिंग दी,
2: विद ऑल वेरी वेरी रिस्पेक्टफुली।
1: क्योंकि राहुल गांधी के दिमाग में क्या है, राहुल का प्लान क्या है, ये दिल्ली पुलिस के लिए किसी पहेली से कम नहीं था।
2: जो लोग सीधे सीधे चलने लग गए उनको आप आराम से ले जाके कोशिश पहली यही होनी है कि आराम से प्यार से बोल के रेस्पेक्टफुली बोल के हम सबको ले जाएं और सबको बैठा लें, ठीक है। नेक्स्ट ये होने वाला है अपना कि क्योंकि सपोर्टर्स भी बहुत सारे होते हैं तो वो भी रेजिस्ट करते हैं, पकड़ लेते हैं, ग्रुप कर लेते हैं, ठीक है। मेल को फीमेल्स भी कर लेती हैं, पकड़ लेती हैं बहुत जोर से, तो इन चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और बसेस, बस में बैठा दिया तो बस से निकल ना पाएं और बस के आगे की क्लैरिटी देनी पड़ेगी ताकि बस सीधा सीधा निकल जाए।
1: नई दिल्ली के DCP सचिन शर्मा उन पुलिस वालों को क्लास दे रहे हैं जिनके कंधों पर राहुल गांधी को रोकने की जिम्मेदारी है। राहुल गांधी लोकसभा में नेता विपक्ष हैं, लिहाजा आज DCP ने पुलिस वालों को हिरासत में लेने का पूरा तरीका समझाया।
2: सेंसिटिवली, सारा अदब और रिस्पेक्टफुली इनको रिक्वेस्ट करते रहना है। ओरली हम रिक्वेस्ट करते रहेंगे, सर, ऑनरेबल सर, ठीक है। तो वो चीज़ों का आप, हो सकता है काफ़ी सारे ऑनरेबल MPs को नहीं पहचानते हो, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ भी जो भी हो या तो उनके साथ वाला बता देता है, नहीं भी बताए तो ट्रीट एवरीबडी लाइक विद ऑल वेरी वेरी रिस्पेक्टफुली, ठीक है।
1: राहुल गांधी के एक्शन से दिल्ली पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि राहुल गांधी का प्लान दिल्ली पुलिस की तमाम तैयारियों पर भारी है। दिल्ली पुलिस की कोशिश है राहुल को धरने पर बैठने से रोकना, लेकिन राहुल मार्च भी निकाल रहे हैं और धरने पर भी बैठ रहे हैं। मतलब यही है कि दिल्ली पुलिस के तमाम तिकड़म को राहुल बार बार चकमा देने में कामयाब हो रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
3: दिल्ली में इंडिया गठबंधन ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया है। इससे पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी भी प्रदर्शन कर चुकी है, लेकिन दिल्ली के जंतर मंतर पर CJP की तरफ से 10 अक्टूबर को इसी मुद्दे पर प्रदर्शन का ऐलान किया गया। CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके ने ऐलान कर दिया है कि ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे तक जंतर मंतर पर CJP कार्यकर्ता डटे रहेंगे, जैसे पेपर लीक के मामले पर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था।
1: ज्ञानेश कुमार पर CJP का प्लान जंतर मंतर।
4: मैं ये कहना चाहता हूँ, जहाँ रुकोगे उसी को जंतर मंतर बना दो, और कितने लोगों की आवाज उठाओगे, पूरा देश जंतर मंतर बन जाएगा अगर ज्ञानेश कुमार को हटाया नहीं, पूरा देश जंतर मंतर बन जाएगा।
1: 10 अक्टूबर को जंतर मंतर से नई लड़ाई।
5: जब भी दिल्ली पुलिस हमें रोके वहाँ पे हम लोग बैठ जाएंगे, वो कहलाएगा जंतर मंतर। हमारा यही प्लान होने वाला है, पूरा दिल्ली जंतर मंतर बनने वाला है।
1: केंद्र सरकार को CJP का सीधा अल्टीमेटम।
4: और आज ये लोग आते वोटिंग राइट छीनना चाहते हैं, तो ये बात किसी पार्टी की नहीं, ये बात किसी आइडियोलॉजी की नहीं है, ये बात लोगों के फंडामेंटल राइट्स की है, अगर लोगों से उनका वोटिंग राइट छीना जाएगा तो क्या डेमोक्रेसी दिखेगी। वन नेशन वन इलेक्शन ये स्लोगन है, लेकिन असली इंटेंशन है वन नेशन वन पार्टी।
1: चुनावी सिस्टम बदलने निकलेगी टीम CJP। अभिजीत दिपके का जंतर मंतर पार्ट 2।
4: क्योंकि कहीं ना कहीं जो 10 अक्टूबर को हमारा मार्च होने जा रहा है जंतर मंतर को, उसको लेकर सरकार डरी हुई है, जिसके कारण सोशल मीडिया पर भी इंस्टाग्राम पर भी इन्होंने जितने भी CJP से रिलेटेड कंटेंट है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है इंडिया।
1: पेपर लीक मामले में अभिजीत दिपके की अगुवाई में CJP ने दिल्ली के जंतर मंतर पर जून महीने में शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग के साथ आंदोलन शुरू किया था। दुनिया ने जेन जी की शक्ति देखी और आखिरकार सरकार को CJP की मांग के आगे झुकना पड़ा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, एक बार फिर अभिजीत दिपके जंतर मंतर पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर मंतर आ रहे हैं। 10 अक्टूबर को CJP ने जंतर मंतर पर देश भर के जेन जी को जुटने के लिए बुलाया है।
4: इसमें देखिए हमारी 3 डिमांड्स है। हम भी मानते हैं कि एक का रेजिग्नेशन लेकर कुछ बदलेगा नहीं। हमारी 3 डिमांड्स है। पहला डिमांड जो है वो ज्ञानेश कुमार का रेजिग्नेशन है, उसके साथ ही उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगने चाहिए। दूसरी हमारी डिमांड है कि SIR का जो रोल है वो फ्रीज होना चाहिए। और तीसरी डिमांड जो है, जो इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट होता है वो इंडिपेंडेंटली हो जाए, न्यूट्रली हो जाए। ऐसा ना हो कि अमित शाह और मोदी जी एक दिन दोनों साथ में बैठे नाश्ता करते हुए डिसाइड कर ले ये बंदा बड़ा सही है, ये अपने साइड का इसको बना देते भाई ये सही लग रहा है, ऐसा नहीं चल सकता।
1: जंतर मंतर पर प्रदर्शन को लेकर अभिजीत दिपके की 3 मांगे हैं। पहली मांग ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा और आपराधिक मुकदमा। दूसरी मांग देश भर में जारी SIR की प्रक्रिया तुरंत बंद होनी चाहिए। तीसरी मांग मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का सिस्टम बदले। दरअसल दिपके ने वोटर लिस्ट की SIR में कथित गड़बड़ियों का हवाला देते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की है। मतलब शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद अब दिपके मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर मंतर पर आर पार की लड़ाई लड़ने महाराष्ट्र से दिल्ली आ रहे हैं। दावा यही है कि देश का जेन जी अब चुनावी सिस्टम में मौजूद खामियों को दूर करके ही दम लेगा।
5: 10 अक्टूबर से देश बहुत बड़ा मोबिलाइजेशन देखने वाला है देश के युवाओं का, क्योंकि भले ही कांग्रेस जनता पार्टी ने ये कॉल दिया हो, लेकिन ये कॉल प्रोटेस्ट का देश के युवाओं का है, देश के जेन जी का है। देश का युवा 10 अक्टूबर से बाहर निकल रहा है एंड बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला है। जब तक ज्ञानू का रेजिग्नेशन नहीं हो जाता तब तक हम लोग वापस नहीं जाएंगे। जब तक ये सिस्टम नहीं बदल जाए, इलेक्टोरल सिस्टम, तब तक हम लोग बाहर नहीं जाएंगे, वापस नहीं जाएंगे घर।
1: दिल्ली पुलिस की तरफ से जंतर मंतर पर किसी भी तरह के प्रदर्शन पर रोक है। दिपके का कहना है कि पाबंदियों के पीछे सरकार का डर है। आरोप यही है कि महाराष्ट्र में CJP कार्यकर्ताओं को दिल्ली जाने से पुलिस रोक रही है।
4: लोगों को बताया पिछले कुछ दिनों से मैं महाराष्ट्र पुलिस की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहा था कि कैसे उन्होंने मुंबई में जो हमारा प्रोटेस्ट हुआ उसको कोऑपरेट किया, कहीं से भी दिल्ली पुलिस की तरह डंडा नहीं चलाया। लेकिन कहीं ना कहीं आज थोड़ा हार्ट ब्रेक हुआ है, क्योंकि एक तरफ हम बता रहे हैं कि महाराष्ट्र की पुलिस इस देश की सबसे बेस्ट पुलिस है, क्योंकि वो कभी भी ब्रूटल नहीं होती है दिल्ली पुलिस की तरह, दिल्ली पुलिस जिस तरीके से बच्चों को पीटती है। लेकिन आज ही CJP के वॉलंटियर्स को नोटिस आया है, उसमें ये पूछा है कि चंद्रपुर महाराष्ट्र से जो लोग दिल्ली जा रहे हैं वो कैसे जा रहे हैं, इसका पैसा कहाँ से आ रहा है। अब ट्रेन का 1,000-1,500 का जो खर्चा है, ट्रेन का टिकट है, उसका भी हिसाब पुलिस को देना पड़ेगा क्या? कुछ और काम बचा नहीं है पुलिस को।
1: CJP अध्यक्ष अभिजीत दिपके का आरोप है चंद्रपुर में उनके कार्यकर्ताओं को पुलिस की तरफ से नोटिस भेजा गया है। नोटिस में महाराष्ट्र से दिल्ली जाने वाले कार्यकर्ताओं से ट्रेन के टिकट का सोर्स पूछा गया है। पुलिस नोटिस पर भड़के दिपके ने पूछा है कि महाराष्ट्र पुलिस दिल्ली के जंतर मंतर पर होने वाले प्रोटेस्ट को लेकर नोटिस कैसे भेज सकती है।
4: एक चीज बोली है कि आप आंदोलन में चले गए तो आपके ऊपर लीगल एक्शन होगा। चंद्र पुलिस कौन होती है डिसाइड करने वाली कौन आंदोलन में जाएगा और कौन नहीं? और जंतर मंतर का आंदोलन चंद्रपुर पुलिस के अंदर कब से आ गया? क्या जंतर मंतर चंद्रपुर पुलिस के अंदर आता है? और तीसरी चीज कही जा रही है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस आंदोलन में मत जाइए, आंदोलन हिंसक है। चंद्रपुर पुलिस को, महाराष्ट्र पुलिस को कैसे पता पहले से ही कि आंदोलन हिंसक है? क्या पहले से ये लोग कुछ प्लान कर रहे हैं क्या?
1: बड़ी बात यह है कि दीपके ने ऐलान किया है कि वो गिरफ्तारी से नहीं डरते। अगर पुलिस ने जंतर मंतर जाने से रोका और जेल भेजा तो भी ये आंदोलन रुकेगा नहीं।
4: मैं कहना चाहता हूँ कि अरेस्ट करना है तो कर लो यार, यही बैठा हूँ मैं, उठा लो, 3 महीने नहीं 6 महीने रख दो, 1 साल रख दो, एनएसए लगाना है एनएसए लगा दो, यूएपीए लगाना है यूएपीए लगा दो, जो लगाना है लगा दो। अगर आपको लगता है अरेस्ट की धमकियां देकर या जेल का डर दिखाकर हम चुपचाप बैठेंगे तो ऐसा नहीं है। जब अमेरिका से आया था तब यही सोचकर आया था कि जेल जा रहा हूं, तो डालना है जेल में तो डाल दो, लेकिन उसके बाद भी हम लड़ते रहेंगे, डेमोक्रेसी को बचाने की बात है, उसके लिए हम लड़ते रहेंगे।
1: दीपके इसी मुद्दे पर मुंबई के शिवाजी पार्क में प्रदर्शन कर चुके हैं। पुलिस की मनाही के बावजूद ये प्रदर्शन हुआ। तब दीपके ने कहा था ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा नहीं हुआ तो वो दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने जाएंगे। सीजीपी के ऐलान ने दिल्ली पुलिस की नींदें उड़ा रखी हैं, क्योंकि दीपके का प्लान जंतर मंतर पर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एक बड़े आंदोलन को शुरू करना है। आज तक ब्यूरो।
3: फ्रांस में शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर छात्र सड़कों पर उतर आए। सितंबर में शुरू आए आंदोलन अब पूरे देश में फैल गया है। छात्र स्कूलों में बढ़ती भीड़, जर्जर इमारतों और शिक्षकों की कमी का विरोध कर रहे हैं। आंदोलन के दौरान कई जगहों पर छात्रों और पुलिस के बीच में झड़पें भी हुई और इसी पूरे आंदोलन पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बयान ने एक नई बहस छेड़ दी है।
1: लग उठा फ्रांस, जेन जी और जेन अल्फा का विद्रोह। स्कूलों की बदहाली, फ्रांस में जेन जी आंदोलन की चिंगारी। स्कूलों से सड़क तक जेन जी की पुलिस से सीधी भिड़न। अब तक 5,000 से ज्यादा छात्र गिरफ्तार, स्कूलों पर संग्राम। बवाल के बीच ट्रंप का बयान, फ्रांस पर कब्जा चाहता है इस्लाम। ये तस्वीरें फ्रांस की हैं। सड़कों पर आग है, पुलिस है, आंसू गैस है और पुलिस के सामने खड़ी है फ्रांस की नई पीढ़ी। एक ऐसी पीढ़ी जिसमें जेन जी और जेन अल्फा शामिल हैं और इन्होंने बदहाल स्कूलों के लिए फ्रांस की सरकार के खिलाफ एक जंग छेड़ दी है। कहीं स्कूल के गेट पर बैरिकेडिंग है, कहीं सड़कों पर छात्रों का हुजूम है और कहीं पुलिस के साथ सीधा टकराव। आपको बता दें कि फ्रांस के लेंस शहर में एक स्कूल के पास हुए धमाके में 15 साल के एक छात्र का हाथ उड़ गया, तो इससे पहले पिछले हफ्ते 14 साल के ईडन नाम के छात्र के सिर पर आंसू गैस का गोला लगने की खबर सामने आई। उसके जबड़े में 2 जगह फ्रैक्चर हुआ था और उसे बड़ी सर्जरी करानी पड़ी। मानवाधिकार संगठनों, छात्रों और अभिभावक समूहों ने नाबालिगों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई को जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग बताया है। स्ट्रासबर्ग में पुलिस ने छात्रों पर आंसू गैस छोड़ी, छात्र सड़कों पर भागते नजर आए, यानी स्कूलों की समस्या को लेकर शुरू हुआ आंदोलन अब कई जगह हिंसक टकराव में बदल चुका है। प्रदर्शन के दौरान करीब 200 लोग घायल हुए हैं तो 5,000 से अधिक छात्रों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें करीब 87% नाबालिग हैं, यानी बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां 18 साल से कम उम्र के छात्रों की हुई हैं।

0: इसके बाद विश्वविद्यालयों के छात्र भी आंदोलन में शामिल हो गए। इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर में बड़ी हुई ये नई पीढ़ी अब ऑनलाइन शिकायत करने के बजाय सड़कों पर उतरकर अपने स्कूलों की हालत पर सवाल पूछ रही है। लेकिन फ्रांस में जेन जी और जेन अल्फा के इस धधकते आक्रोश के बीच अमेरिका से एक ऐसा बयान आया जिसने बहस की दिशा ही बदल दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि फ्रांस में जो हो रहा है वो बड़े पैमाने पर बाहर से लोगों के बेकाबू ढंग से आने का मामला है। ये स्कूलों से जुड़ा मामला नहीं है, ये एक महान देश पर इस्लाम के कब्जा करने का मामला है। यानी जहां फ्रांस के छात्र शिक्षकों की कमी, स्कूलों की खराब हालत, भरी हुई कक्षाओं और शिक्षा व्यवस्था में ज्यादा निवेश की मांग कर रहे हैं, वहीं ट्रंप ने इस पूरे घटनाक्रम को बाहर से लोगों के आने और इस्लाम के मुद्दे से जोड़ दिया। लेकिन ट्रंप के इस बयान के पीछे सिर्फ फ्रांस का मुद्दा नहीं देखा जा रहा, इसके पीछे अमेरिका की घरेलू राजनीति भी है। अगले महीने अमेरिका में मिड टर्म चुनाव होने हैं और ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के लिए बाहर से आने वाले लोगों का मुद्दा और इस्लाम से जुड़ी राजनीति दक्षिणपंथी वोटरों को लामबंद करने वाले बड़े मुद्दों में शामिल है। यानी फ्रांस के स्कूलों में चल रहे आंदोलन को ट्रंप ने अपने उस राजनीतिक नैरेटिव से जोड़ दिया जिसका इस्तेमाल अमेरिका में अपने समर्थकों को एकजुट करने के लिए किया जाता रहा है। तो मिड टर्म चुनाव से ठीक पहले क्या फ्रांस के इस विवाद को बाहर से आने वाले लोगों और इस्लाम के मुद्दे से जोड़कर ट्रंप अपने समर्थक वोटरों को एकजुट करने का राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं? हालांकि फ्रांस की सड़कों पर मौजूद छात्रों से अगर पूछा जाए तो उनकी घोषित मांगे फिलहाल बिल्कुल अलग हैं। शिक्षक चाहिए, स्कूलों की मरम्मत चाहिए, कक्षाओं में भीड़ कम चाहिए और शिक्षा व्यवस्था के लिए ज्यादा संसाधन चाहिए। यानी एक तरफ फ्रांस की जेन अल्फा और नई पीढ़ी का स्कूलों को लेकर गुस्सा और दूसरी तरफ ट्रंप का इसे बाहर से लोगों के आने और इस्लाम से जोड़ना। लेकिन अब मामला सिर्फ स्कूलों तक सीमित नहीं रहा, हिंसा बढ़ी है, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव बढ़ा है, सैकड़ों छात्र और स्कूल कर्मचारी घायल हुए हैं और 700 से ज्यादा पुलिसकर्मियों के भी घायल होने की जानकारी है। फ्रांस के प्रधानमंत्री सेबेस्टियन डेकोर्नू ने इसे कई दशकों में सबसे हिंसक स्कूल प्रदर्शनों में से एक बताया है और मंत्रियों को छात्रों की मांगों पर काम करने का निर्देश दिया है। सरकार के सामने मुश्किल इसलिए भी बड़ी है क्योंकि फ्रांस पहले से भारी सरकारी कर्ज, कमजोर आर्थिक विकास और बढ़ते बजट घाटे से जूझ रहा है। यानी सड़कों पर छात्र हैं, स्कूलों की बदहाली है और सरकार के सामने पैसे की भी बड़ी चुनौती है। आज तक ब्यूरो।
1: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: पंजाब चुनाव से पहले सबसे बड़ी पंचायत, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ हर सवाल पर होगी खुलकर बात। देखिए पंचायत आज तक पंजाब, 8 अक्टूबर दिन भर सिर्फ आज तक पर।
1: रियल्टी पार्टनर टीडीआई इंफ्राटेक, नॉर्थ इंडियाज लीडिंग टाउनशिप डेवलपर।
2: हेल्थ पार्टनर वृंदा लाइफ, वी आर नोन फॉर क्वालिटी मेडिसिंस।
3: बैंकिंग पार्टनर पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
4: स्पेशल पार्टनर ग्रेट खलीज चॉइस फॉर पावरफुल फिटनेस लिफ्ट्स बाय पोलो एलिवेटर।

वोल्टेज सियासी ड्रामे के बीच हिरासत में लेने के बाद छोड़े गए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, आज पूरे देश में प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। ज्ञानेश कुमार पर सियासी घमासान तेज, खड़गे ने कहा तानाशाह मोदी सरकार और चुनाव आयोग के गठबंधन का पर्दाफाश, नितिन नवीन का पलटवार, अराजकता फैला रहे हैं राहुल गांधी। सीएम से पीएम तक जनसेवा में प्रधानमंत्री मोदी के 25 साल का एम्बिशन नहीं मिशन के लिए जीता हूं, कई शहरों में बीजेपी के कार्यक्रम, आडवाणी से मिले प्रधानमंत्री।

0: यूपी में लड़ाई फिर 80-20 पर आई। राज्यसभा चुनाव के नतीजों पर सीएम योगी का एसपी पर तीखा तंज का। 2027 का परिणाम साफ। अखिलेश का पलटवार, घमंड का मिलेगा दंड। और दिल्ली के सीमापुरी इलाके में गिरी 4 मंजिला इमारत, अब तक 3 लोगों की मौत, अस्पताल में घायलों का इलाज जारी। सीसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आज कांग्रेस देश में प्रदर्शन करेगी। बुधवार को लगातार दूसरे दिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने सीसी के खिलाफ न सिर्फ संग्राम छेड़ा बल्कि दिल्ली पुलिस से भी टकरा गए। लगातार दूसरे दिन राहुल और प्रियंका को पुलिस ने जबरदस्ती धरने से उठाया और हिरासत में ले लिया। हालांकि बाद में पुलिस हिरासत में दोनों को रिहा कर दिया गया था।
1: राहुल की ललकार ज्ञानेश के खिलाफ गलगार।
2: हटाओ नहीं यार। सर,
1: पहले आकाशवाणी फिर जंतर मंतर के लिए कूद।
3: पुलिस में स्क्रैच मी ऑल ओवर, दे हैव थ्रोन अस टू द ग्राउंड।
1: पुलिस ने रोका इंडिया गठबंधन की बस का रास्ता।
2: सर ये हजारों की भीड़ है, किसी को चोट लग गई।
1: सड़क पर राहुल प्रियंका की हुंकार, ज्ञानेश पर आर पार।
3: Let them call their forces back. I will not move from here.
1: जंतर मंतर पर बैरिकेडिंग, सड़क पर ही छिड़ा संग्राम।
4: ऐसे नहीं होगा।
5: आप बताएं कैसे होगा?
4: आपने इसको धकेला नीचे।
1: तस्वीरें जंतर मंतर चौराहे की हैं। आप देख सकते हैं जंतर मंतर पर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ धरना देने निकले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को दिल्ली पुलिस जबरन उठाकर हिरासत में ले लेती है। ये दो तस्वीरें देखिए, कैसे राहुल गांधी को उठाकर गाड़ी में डाला जाता है, और दूसरी तस्वीर में प्रियंका गांधी को देखिए, कैसे सड़क पर लेटी प्रियंका गांधी को उठाने के लिए पुलिस और केंद्रीय बलों को खासी मशक्कत करनी पड़ती है, और फिर प्रियंका गांधी को सड़क से उठाकर हिरासत में लिया जाता है। सड़क पर तगड़ा संग्राम छिड़ जाता है क्योंकि प्रियंका गांधी सड़क से उठने को तैयार नहीं होती है।
3: This is how they treat members of parliament who are asking simply to meet the election commissioner. This is how they treat us. Let them call their forces back. I will not move from here.
1: और अब आपको ज्ञानेश कुमार के खिलाफ छिड़े रण की पूरी टाइमलाइन दिखाते हैं। पहले राहुल गांधी कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन के सांसदों के साथ जनपद पर सागर रत्ना रेस्टोरेंट में लंच करते हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नया मोर्चा खोलने के लिए जंतर मंतर के लिए निकल पड़ते हैं।
6: प्रोटेस्ट साइट है जंतर मंतर, वहाँ पे हम जाकर सब आज फिर से बैठे और देश को बताएं कि हमारे लिए ज्ञानेश कुमार जी देश के लेजिटिमेट इलेक्शन कमिश्नर नहीं है। मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, मोहन भगवत, ज्ञानेश कुमार जी ने देश के लोकतंत्र को खत्म किया है, और मैंने कल भी कहा था जिन्होंने ये काम किया है ये देशद्रोही है और इन पर हम एक्शन लेंगे। मैं आपको अभी बता रहा हूँ ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा देना पड़ेगा।
7: इलेक्शन कमीशन कर रही है और मोदी जी करा रहे हैं, और जब मोदी जी ऐसी गलती करा रहे हैं इसका मतलब यह है कि इस देश में डेमोक्रेसी को खत्म करने की कोशिश वो कर रहे हैं।
8: We are all here together. We are all here united. And we are all here without any egos. We will fight these guys.
9: जो ज्ञानेश है ना, ये इस देश का सबसे बड़ा गद्दा घोषित हो, इसे कोई नहीं बचा पाएगा। जहां ज्ञानेश मिलेगा वहीं खोजने जा रहे हैं, वहीं ढूंढेंगे जहां बंद करके इसको रखा हो।
10: ज्ञानेश की तलाश में आप जा रहे हैं?
9: क्या करेंगे, ज्ञानेश बोल ही नहीं रहा है और लॉ मिनिस्टर बोल ही नहीं रहा है। बीजेपी का प्रवक्ता